0: इलेक्शन चोरी करो, एमपी एमएलए चोरी करो, उसके खिलाफ ये रिवोल्ट है, बंड है, जैसे 1857 में हो गया था इस देश में, उनकी शुरुआत है और मुंबई से शुरुआत हो रही है।
1: ये जो मोर्चा है आपको पता है कि संविधान बचाने के लिए है। जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन को हाथ में पकड़ के भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मतदार यादी में बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रही है, ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ी कर रही है, जो जो राज्य में चुनाव होते चाहे वो महाराष्ट्र हो, गोवा हो, पश्चिम बंगाल हो, वहां पे इलेक्शन कमीशन को हाथ में पकड़ के चुनाव जीतने का काम पूरे देश में चालू है।
2: चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध की गूंज दिल्ली से शुरू हुई थी, अब देश के अलग अलग हिस्सों में विपक्ष इसे और बड़ा कर रहा है और चुनाव आयुक्त के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। ओंकार वाबले, मुंबई आज तक।
3: अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एसआईआर, ईवीएम और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। खड़गे ने लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं को भंग करके नए सिरे से बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग की। अब खड़गे के ताजा हमलों के बीच में सियासी तनातनी ज्यादा बढ़ गई।
2: एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों के बीच सीईसी ज्ञानेश कुमार पर संग्राम बढ़ता जा रहा है। मांग इस्तीफे की हो रही है, शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा तेज होता जा रहा है, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान ने देश की सियासत को सुलगा दिया है। पहले खड़गे का वो बयान,
4: देश जो चल रहा है वो इलीगल इलेक्शन पे चल रहा है। मोदी इलीगल प्राइम मिनिस्टर, शाह इलीगल मिनिस्टर और जितने भी अब चीफ मिनिस्टर्स बने कहां के भी, वो सब इलीगल, सबको डिसॉल्व करना, इलेक्शन कराना और बैलेट पे इलेक्शन कराना, क्योंकि ईवीएम का मिसयूज हो रहा है ये खुद ही उनके लोग कर रहे हैं।
2: खड़गे के मुताबिक 2014 के बाद से बीजेपी की जितनी सरकारें बनी हैं, जितने मंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं, सब इलीगल हैं। खड़गे का ये बयान बीजेपी को तीर की तरह चुभा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खड़गे को गांधी परिवार का दास बता दिया।
5: मल्लिकार्जुन भले गांधी परिवार के दास हो सकते हैं, देश का लोकतंत्र मजबूत है। कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रहा, ये मुस्लिम लीग कांग्रेस है जो सोची समझी रणनीति के तहत देश के संवैधानिक संस्थान के ऊपर आरोप लगाना, देश में भ्रम फैलाना, ये काम हो गया है राहुल गांधी एंड कंपनी का।
2: शिवराज सिंह चौहान ने भी खड़गे पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि खड़गे चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं।
6: दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है और दुनिया उदाहरण देती है भारत के लोकतंत्र के, लेकिन लोकतंत्र का अपमान करना, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना, चुनाव हारने पर चुनाव आयोग को बदनाम करना, जनता के जनादेश का अपमान करना, ये कांग्रेस के डीएनए में है। राहुल गांधी जी के इशारे पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को अवैध कहा, ये लोकतंत्र का अपमान है।
2: अब एक तरफ चुनाव आयोग का विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ खड़गे के बयान पर सियासत धधक रही है। आज तक ब्यूरो।
3: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन को लेकर अब तीखी बयानबाजी जारी है। इस बीच अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर सोशल मीडिया पर एक अहम पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि बात सीट की नहीं, जीत की है और अब सियासत तेज है।
7: जीती सीट का आधार है।
2: अखिलेश यादव का ये बयान आज ऐसे वक्त में आया है जब यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों पर मतभेद खुलकर सामने आ गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया का ये बयान यूपी में 2027 की सियासी पटकथा का पहला अध्याय माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए गुंजाइश का कोना भी छोड़ रखा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मकसद जब साफ हो तो हाथ में हाथ होता है, निगाह मंजिल

0: है कि जीत गठबंधन की हो, फिर दोहराते हैं बात सीट की नहीं जीत की है। यूपी की राजनीति में सीट सिर्फ एक नंबर नहीं होती, एक सीट मतलब संगठन, एक सीट मतलब उम्मीदवार, एक सीट मतलब वोट बैंक और सबसे बढ़कर एक सीट मतलब गठबंधन के भीतर राजनीतिक हैसियत। इसलिए जब बात यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तलखी पर आई तो बीजेपी टूट पड़ी।
1: हैसियत बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में हैसियत सीट जीतने की जितनी है उतनी ही डिमांड करे, और कांग्रेस लगातार 150 सीट 200 सीट की डिमांड कर रही है।
0: जब बीजेपी ने इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तलखी पर हाथ रख दिया तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के एनडीए के बीच बड़े कील कांटे को उभार कर बीजेपी पर पलटवार किया।
2: ये श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तय करेंगे। इसमें तो ये तो एक अच्छा बयान है श्री अखिलेश यादव जी।
3: भारतीय जनता पार्टी में सब गड़बड़ चल रहा है, एनडीए गठबंधन में सीट को लेकर सरफुटोवल है, इसलिए वो अपना ध्यान भटकाने के लिए इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। इंडिया गठबंधन का गठबंधन मजबूत है।
0: 2017 में यूपी के दो लड़के अखिलेश और राहुल साथ है, गठबंधन हुआ लेकिन नतीजा सिफर रहा। समाजवादी पार्टी 311 सीटों पर लड़ी लेकिन जीती 47 सीटें। वहीं कांग्रेस ने 114 सीट पर चुनाव लड़ा लेकिन जीते सिर्फ 7 सीट, यानी यूपी विधानसभा की 403 सीटों में से 54 सीटें सिर्फ जीत सके। फिर आया 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव। इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग मैदान में थे। समाजवादी पार्टी ने 347 सीटों पर चुनाव लड़ा और 111 जीती। कांग्रेस ने भी लगभग पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ा लेकिन उसके खाते में आई सिर्फ 2 सीटें, यानी आंकड़े सवाल छोड़ गए। इन आंकड़ों में नया मोड़ 2024 लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला। 2024 लोकसभा में समाजवादी पार्टी 80 में से 37 सीटें जीती, वही कांग्रेस को 6 सीटों पर कामयाबी मिली। सीटों के इसी खेल के जरिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं।
4: मैं समझता हूँ कि सम्मानजनक हिस्सेदारी भागीदारी होगी, क्योंकि हम लोग बराबर के हिस्सेदार हैं।
5: कि राहुल गांधी भी यहाँ चुनाव लड़ने से डर रहे थे, अमेठी तो छोड़ ही दिया था। रायबरेली जब अखिलेश यादव के समझाने पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समझाने पर गए हैं, तब उन्होंने पर्चा भरा। जब उन्होंने कह दिया अगर आप नहीं करेंगे तो मैं अपना कैंडिडेट घोषित करता हूँ।
0: ऐसा नहीं है कि सीटों की ये लड़ाई इंडिया गठबंधन के बीच में ही है। यूपी में एनडीए में भी सीटों की दावेदारी शुरू हो चुकी है। आरएलडी, निषाद पार्टी, अपना दल और एसबीएसपी जैसे सहयोगी अपनी अपनी राजनीतिक जमीन के हिसाब से हिस्सेदारी चाहते हैं। यानी यूपी में दोनों गठबंधनों के सामने एक ही सवाल है कि साथी कितने मजबूत हैं और उनकी कीमत कितनी है। फिलहाल तो बीजेपी एनडीए से लड़ने से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की आपसी खींचतान सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। क्या अखिलेश का ताजा बयान इस विवाद को खत्म कर पाएगा? आज तक ब्यूरो।
6: अमृतसर में दिन दहाड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट मैट संधू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार दो हमलावरों ने बीच सड़क पर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। अस्पताल ले जाते समय मैट संधू की मौत हो गई। इस हत्याकांड को लेकर अब सियासत गर्म है, आप सरकार सवालों में हैं।

0: अमृतसर में दिन दहाड़े फायरिंग से मचा हड़कंप, बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद इलाके में दहशत। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मैड संधु को मृत घोषित कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मैड संधु की हत्या क्यों की गई? बाइक पर आए हमलावर कौन थे? अमृतसर की सड़कों पर खून से लथपथ पड़े एक शख्स की तस्वीरें और वीडियो सामने आते ही हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि घायल शख्स कोई और नहीं बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट मैड संधु है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को मैड संधु पर गोली चलाई गई। गोली लगने के बाद वह सड़क पर गिर पड़े। मौके पर आसपास के लोग भी जमा हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मैड संधु गंभीर रूप से घायल हालत में दिखाई दे रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर मैड संधु पर हमला किसने किया और हमले की वजह क्या थी।
1: हाँ, उनके फादर, उनकी फैमिली सारी यहाँ पे, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके हमने FIR दर्ज करके इनिशियली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी।
0: दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।
2: 2025 में भी एक इन्फ्लुएंसर को निशाना बनाया गया था। उसी बीच में जहाँ पे इलेक्शन चंद महीने दूर है, वहाँ पे अब सवालिया निशान उठ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर।
0: वहीं इस वारदात को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस नेता डॉक्टर राजकुमार वेरका ने मैड संधु की हत्या

0: को लेकर पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि पंजाब में डर का माहौल है।
1: पंजाब में डर का माहौल है, पंजाब के लोग डर के साये के नीचे सो रहे हैं और यहाँ पे भगवंत मान की सरकार बड़े बड़े होल्डिंग लगा कर के कह रही है कि शानदार सरकार, ईमानदार सरकार। अरे ये तो बेईमान सरकार है।
0: इस बीच सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी, ढिल्लों और जग्गा तरनतारन की ओर से लिए जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस दावे की भी जांच कर रही है। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक गोल्डी ढिल्लो फरार है और उसके ब्रिटेन में छिपे होने की जानकारी है। उसे गोल्डी बराड का करीबी भी बताया जाता है। फिलहाल अमृतसर में हुई इस फायरिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों की जानकारी के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। पंजाब से कमलजीत संधू के साथ आज तक।
2: स्पेन के माद्रिद के रास्ते में भारी बारिश के बाद अब बाढ़ ने तबाही मचाई है। सड़कों पर गाड़ियां बहती दिखाई दी, घरों और इमारतों में पानी घुस गया और अब पानी उतरने के बाद लोग कीचड़ और मलबे से परेशान हैं। रिकॉर्ड गर्मी के बाद से इस भारी बारिश ने स्पेन में चिंता बढ़ा दी है।
0: ये तस्वीरें हैं स्पेन के माद्रिगेरास शहर की, जहां भारी बारिश के बाद पूरा इलाका पानी और कीचड़ से भर गया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में तैरती नजर आईं। कहीं कारें एक दूसरे से टकराकर फंसी हैं, तो कहीं मलबे के बीच पूरी तरह दब गई हैं। ये तस्वीरें बाढ़ के पानी के उतरने के बाद की हैं, जहां तबाही का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। लोग अपने घरों से कीचड़ निकाल रहे हैं, सड़कें साफ की जा रही हैं, फर्नीचर और घर का सामान बाहर निकाला जा रहा है। कई गाड़ियां मलबे में फंसी हुई हैं, कुछ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं और कई एक दूसरे के ऊपर जा चढ़ी हैं।
3: Son absolutamente tremendos. Es inimaginable la altura que ha alcanzado el agua en un pueblo aparentemente llano. Lo podrán comprobar, se ha invadido la iglesia, el cuartel, el ayuntamiento y ha derribado puertas de cientos de kilos, lo cual es prácticamente inimaginable.
0: बाढ़ ने सिर्फ घरों और सड़कों को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, चर्च, बैरक और टाउन हॉल भी पानी में डूब गए। करीब 5,000 की आबादी वाले इस शहर में बाढ़ के कहर से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया।
4: Todo negado, vino el agua buscando su cauce y todo lo que pilló, pues se lo llevó para adelante y un desastre, tipo Dana.
0: ये भारी बारिश ऐसे वक्त हुई है जब स्पेन इस साल रिकॉर्ड गर्मी का सामना कर चुका है। अगस्त में गर्मी के कहर से यहाँ करीब 2,000 लोगों की मौत हुई थी। अब रिकॉर्ड गर्मी के बाद भारी बारिश और बाढ़ ने एक और गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। आज तक ब्यूरो।
2: एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करके पदक जीतने वाले खिलाड़ी अपने देश वापस लौट रहे हैं और उनकी वापसी पर जोरदार जश्न मनाया जा रहा है। एयरपोर्ट से लेकर खिलाड़ियों के घर तक जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है।
5: कहीं ढोल बज रहे हैं तो कहीं फूल बरस रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर अलग अलग शहरों में लौट रहे एशियन गेम्स के चैंपियंस का जमकर स्वागत हो रहा है। रांची की इन तस्वीरों को देखिए। झारखंड के कई खिलाड़ियों ने टीम को 44 साल बाद चैंपियन बनाने में अहम किरदार निभाया है। इतिहास रचने के बाद बेटियां जब घर लौटी तो परंपरागत तरीके से उनका स्वागत किया गया। जश्न के इस माहौल में चैंपियंस भी खुद को नाचने से नहीं रोक सकी। इन हॉकी सितारों के स्वागत में तो बेंगलुरु भी पीछे नहीं रहा। बॉक्सिंग में देश का मान बढ़ाने वाले बॉक्सर बीती रात जब दिल्ली लौटे तो आज तक ने उनके साथ उनकी खुशी साझा की।
6: आने से पहले मतलब यही था कि देश के लिए कुछ करना है और अपना 100% देना है। रिजल्ट की वो निकलनी, अपना 100% देना, रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा और फिर गोल्ड आने के बाद तो फिर रिजल्ट आ ही गया था।
7: ये कंपटीशन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल था। सबसे पहले कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ला पाई, वो भी मेरे बर्थडे के दिन। सबको याद रहेगा, मुझे तो हमेशा ही याद रहेगा। और इसीलिए भी स्पेशल है कि लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था और इस टाइम मैं गोल्ड मेडल ला पाई, तो कहीं ना कहीं माइंड में था और ऐसे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेरा सिल्वर था, तो कहीं ना कहीं थोड़े से उसके वजह से ही कहीं ना कहीं नेशनल एंथम छूट रहा था, तो उसको मुझे करना था इस बार, और इस बार इसीलिए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे वजह से नेशनल एंथम बजे और मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाई।
5: स्क्वैश में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी अनाहत सिंह का दिल्ली में मालाओं और तालियों के साथ स्वागत किया गया।
8: It feels amazing to, you know, get to be the first woman to get a silver medal and get a chance to stand up on the podium. It was my first time playing a singles event, so getting to, you know, win a medal and also, you know, getting a silver was amazing. Of course, you know, with the Olympic criteria of getting the gold, I wanted to, you know, push a bit further and, you know, possibly go into getting gold, but, you know, it doesn't always go your way.
5: इस बार भारत ने एशियन गेम्स में 21 गोल्ड समेत कुल 85 मेडल जीते हैं। इसके साथ ही भारत एशियन गेम्स में चौथे पायदान पर रहा है। बैडमिंटन, टेबल टेनिस और कुछ हद तक शूटिंग में नतीजे उम्मीदों के मुताबिक बेशक ना रहे हों, लेकिन कई खेलों में भारतीय एथलीट ने गर्व करने लायक लम्हे दिए हैं। दिल्ली से सिद्धार्थ विश्वनाथन के साथ आज तक ब्यूरो।
2: कैप्टन स्मिथ मच्छार, जिन्होंने प्लेन को क्रैश होने से बचाया, जिन्होंने 170 लोगों की जिंदगी बचाया, अब उनकी बहादुरी की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। इसराइली पीएम नेतन्याहू ने फोन पर बात कर उन्हें दुनिया का हीरो बताया, इसराइल आने का निमंत्रण भी दिया है।

0: मान ज्ञान कुछ सागर जय कपिस्ते हूँ लोग कुछ अगर राम श्मिश जस्ट डू इट
1: You are a true hero of the brave peoples of India and Israel, and you are a hero of the entire world.
2: आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग.
3: I guess he still is in very bad shape, but he had the sense to amazing, to in a way he was a hero.
4: दुनिया कर रही है. हीरो हिंदुस्तानी को सलाम. दुनिया मान रही है भारतीय जाबाज का लोहा. दुनिया कह रही है कि ये है भारत का वीर योद्धा. दुनिया सजदा कर रही है भारतीय पायलट का. जी हाँ, 34,000 फीट की ऊंचाई, कॉकपिट में हमला, सिर पर लगातार वार और नीचे तेजी से गिरता विमान. लेकिन भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार ने हिम्मत नहीं हारी. अब उनकी बहादुरी को दुनिया सलाम कर रही है. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ मच्छार से फोन पर बात की. नेतन्याहू ने मच्छार को पूरी दुनिया का हीरो बताया. इजरायली पीएम ने स्मिथ को इजराइल आने का न्योता भी दिया. कहा, आइए, दीप जलाइए और बताइए अपनी बहादुरी के किस्से.
1: कैप्टन, आई वांट टू इनवाइट यू एंड माय डियर फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लाइट अ सेलिब्रेटरी फ्लेम ऑन आवर नेक्स्ट इंडिपेंडेंट डे. यू आर ट्रू हीरो ऑफ द ब्रेव पीपल्स ऑफ इंडिया एंड इजराइल एंड यू आर अ हीरो ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. आई विश यू अ वेरी स्पीडी एंड कंप्लीट रिकवरी.
4: करीब 6 मिनट की बातचीत में नेतन्याहू ने कैप्टन मच्छार से उस खौफनाक पल के बारे में पूरी जानकारी ली. फ्लाइट में आखिर हुआ क्या था, कैसे बहादुरी से सभी यात्रियों की जान बचाई गई, ये सब बातें कैप्टन मच्छार ने इजरायली पीएम को बताई.
1: Tell me, I wanted to ask you, how did it all begin? Can you tell me how it began?
5: It was a normal flight and the co-pilot offered, I mean, he demanded, not demanded, but he wanted to pray, which a lot of locals, they do pray, and which is not out of the ordinary. But while he was praying, out of respect, I was just looking at the front and not at the back. And suddenly, after, I think I would say about 4-5 minutes, there was a big blow to the back of my head.
4: कैप्टन मच्छार पर वार इतनी जोर से हुआ था कि उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था. बावजूद इसके उन्होंने स्थिति को कैसे संभाला, कैसे हमला करने वाले पायलट का सामना किया, बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी जाना कि फिर आगे क्या हुआ.
5: My first thought was that there was a catastrophic damage to the aircraft and something is not right, but then after that the blow kept coming one after the other, and that's when I realized that it's not the aircraft, it's the other guy who was in the cockpit with me. I did try to stop him, but because of his initial blows, my vision was almost like nothing, and I was completely blurred out. And at that point, the next feeling that I had was that the aircraft was sharply going down. So my memory is still in bits and pieces right now, but this is what I remember out of that time. And I did try and manage to open the door once, but I think he shut it back close. And at this point, I remember I was lying down on the cockpit floor, and I felt the aircraft and the whooshing sound and people screaming.
4: कैप्टन स्मिथ अभी इलाज के लिए अबू धाबी के अस्पताल में हैं, जहां दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद ने उनसे मुलाकात की और उनके साहस की जमकर तारीफ की। देखिए, ये तब की तस्वीरें हैं जब दुबई के क्राउन प्रिंस मच्छार से मिलने पहुंचे थे। क्राउन प्रिंस ने मच्छार से उनका हाल जाना, उनकी बहादुरी की तारीफ की और साथ ही कहा कि उन्हें गर्व है कि स्मिथ मच्छार उनकी टीम का हिस्सा हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी स्मिथ की बहादुरी को सलाम कर चुके हैं। ट्रंप ने स्मिथ को हीरो बताया और उनके जज्बे को सलाम किया, उनकी समझ को सलाम किया।
3: And it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job, and he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape, and I guess he still is in very bad shape, but he had the sense to, amazing, to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel, you can't get them open from outside. He was able to fall back and get the door open and scream.
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्मिथ से वीडियो कॉल पर बात की। मोदी से बातचीत में स्मिथ ने उस भयावह घटना के बारे में बताया कि किस तरह उन्होंने आखिरी दम तक विमान और यात्रियों की सुरक्षा के लिए संघर्ष किया। पीएम ने भी कैप्टन के साहस की जमकर तारीफ की।
2: देखिए, पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं। आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई, और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग।
4: स्मिथ मच्छार अभी अस्पताल में है, इलाज जारी है, उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है, लेकिन उनकी कहानी अब सिर्फ एक विमान हादसे या हमले की खबर नहीं रह गई है। ये कहानी बन चुकी है हिम्मत की, कर्तव्य की और उस इंसानी जज्बे की, जिसने संकट की सबसे ऊंची ऊंचाई पर अपनी वीरता का परिचय दिया और 174 यात्रियों की जान बचाई। आज तक ब्यूरो।
6: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

खुद और राहुल भी हैं अवैध सांसद। यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस में सीट बंटवारे पर तेज हुई तकरार। इशारों में अखिलेश की नसीहत के बाद कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र गौतम का पलटवार, कहा हमने 150 नहीं 200 सीट की कही है बात।

यूसीसी लागू होने के बाद बंगाल के सीएम शुभेंदु का बड़ा बयान, कहा 6 महीने के अंदर राज्य में लाएंगे कानून, जबरन धर्मांतरण पर होगी सख्ती। तेल रिफाइनरी पर ज़ेलेंस्की के हमले की धमकी का भड़का रूस, कहा यूक्रेन पर बरसाएंगे और बारूद, पुतिन बोले हमारे पास सबसे खतरनाक हथियार।

0: पूजा शर्मा बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के उस्मानपुर यमुना खादर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ऐसे में उत्तर पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ ने लॉरेंस बिश्नोई और राशिद केवलवाला गैंग से जुड़े दो कथित शार्प शूटर्स को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद कैफ और जसीम के तौर पर हुई है। वहीं पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाशों ने 2 अक्टूबर को भजनपुरा में एक कारोबारी के घर के बाहर रंगदारी के लिए फायरिंग की थी। कार्रवाई के दौरान बदमाशों की गोली स्पेशल स्टाफ के एसआई और हेड कांस्टेबल की बुलेटप्रूफ जैकेट में लगी और जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली भी लगी और पुलिस ने मौके से 3 पिस्टल 1 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। फिलहाल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। भजनपुरा में कारोबारी के घर पर भी फायरिंग की थी और पुलिस से मुठभेड़ हुई। इन आरोपियों की 2 आरोपी बताए जा रहे हैं जिनके पैर में गोली लगी है जिसके बाद गिरफ्तारी हो चुकी है। लॉरेंस केबलवाला गैंग के 2 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। एक बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। दिल्ली के उस्मानपुर यमुना खादर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। लॉरेंस और केबलवाला गैंग के दोनों लोग बताए जा रहे हैं और पुलिस मुठभेड़ में 2 शार्प शूटर को पैर में गोली लगी है जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है।
1: फिलहाल हमारी मौजूदगी यमुना खादर में है जहां पर अब से कुछ देर पहले बदमाशों और उत्तर पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम के बीच मुठभेड़ हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से फायरिंग की गई है जिसमें एसआई कौशिक घोष यादव के बुलेटप्रूफ जैकेट में गोली लगी है जबकि आमिर जो कि हेड कांस्टेबल है उनकी बुलेटप्रूफ जैकेट में भी गोली लगी है। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों की पुलिस को एक सूचना मिली थी, गुप्त सूचना मिली थी जिसमें बताया जा रहा था कि यमुना खादर में ये बदमाश गुजरने वाले हैं और पुलिस ने ट्रैप लगाया और इनको रुकने की इशारा किया। जब पुलिस को चारों तरफ से घिरता देख इन बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बदमाशों के पास से रंगदारी में शामिल 3 पिस्टल बरामद की गई हैं जिससे 2 अक्टूबर के दिन इन बदमाशों ने गोलियां चलाई थी जबकि बताया ये जा रहा है कि बदमाशों के पास से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। वहीं आपको यह भी बता दें यह शार्प शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के और राशिद केवलवाला गैंग से बताए जा रहे हैं जिनकी पहचान जसीम और मोहम्मद कैफ के रूप में हुई है। कैमरा आरिफ के साथ इसरार अहमद आज तक।
0: मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। एक बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग और केबलवाला गैंग के ये 2 शार्प शूटर हैं। अब इनसे आगे की जांच पड़ताल की जाएगी और ये मुठभेड़ उस्मानपुर यमुना खादर में हुई। दिल्ली के इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ ने लॉरेंस बिश्नोई और राशिद केबलवाला गैंग से जुड़े इन 2 कथित शार्प शूटर्स को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। अब गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद कैफ और जसीम के तौर पर हुई है और इनसे आगे अब पूछताछ की जाएगी। कई चीजें भी इनके पास से बरामद की गई हैं और दोनों के पैर में गोली लगी जिसके बाद दोनों की गिरफ्तारी हो पाई है। शार्प शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग और केबलवाला गैंग के दोनों बताए जा रहे हैं और ये मुठभेड़ उस्मानपुर यमुना खादर में हुई है। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी क्योंकि इन्होंने भी अपनी तरफ से भागने की वहां से पूरी कोशिश की थी। पुलिस ने मौके से 3 पिस्टल बरामद की है और 1 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। फिलहाल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले का जायजा उन्होंने लिया और मुठभेड़ में दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी अब हो चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों की मोर्चाबंदी तेज है और इस बीच मुंबई में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर विपक्ष ने मुंबई में विरोध प्रदर्शन किया। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की अगुवाई में आज मुंबई में गर्जना मार्च निकाला गया है।
2: चुनाव आयोग के खिलाफ मुंबई में विपक्ष का ये गर्जना मार्च है। शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे और एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे एक साथ एक मंच पर चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। ठाकरे बंधु एक सुर में मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा मांग रहे हैं। तस्वीरें देखिए, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों की मोर्चाबंदी की तस्वीरें हैं ये। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर विपक्ष बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में उद्धव और राज ठाकरे के अलावा शरद पवार वाली एनसीपी भी शामिल है। चुनाव आयोग पर उद्धव ने जोरदार निशाना साधा, उनके निशाने पर ज्ञानेश कुमार रहे।
3: नागरिकत्व रद्द करण्याचा अधिकार हा गृहमंत्र्याचा आहे, गृह मंत्रालय हा निवडणूक आयोगाचा म्हणजे ज्ञानेश कुमारच्या बापाचा अधिकार नाही आणि त्याचा बापाचा म्हणजे या अमित शहांचा हा अधिकार आहे आणि तो अधिकार ते ज्ञानेश कुमारच्या माध्यमातून वापरतायत म्हणून आम्हाला ज्ञानेश कुमार नको आहे। काय थट्टा चालले आजपर्यंत या लोकांनी, म्हणजे जेव्हा जोपर्यंत काँग्रेसचं सरकार तिकडे होतं तेव्हा आपणही गेलो होतो यांच्या बरोबर वाहत भाजप बरोबर आणि मग सरकार त्यांनी एक असं वातावरण केलं की काँग्रेस एवढं भ्रष्ट सरकार नाही, इंडिया अगेन्स्ट करप्शन, आता संपूर्ण इंडिया उभा राहिलेला आहे, इंडिया अगेन्स्ट वोट चोर।
2: इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने अपील की है कि इंडिया अगेंस्ट वोट चोर के नारे गली गली में लगाए जाने चाहिए।
3: इंडिया अगेंस्ट वोट चोर ही घोषणा पूर्ण गल्ली गल्ली मध्ये गेली पाहिजे। 13 कोटी मतदार अचानक तुम्ही गालताय। बंगाल मध्ये जे आतापर्यंत अर्जांची छाननी झाली अवैध ठरलेल्या, त्यातल्या काही लोकांना वैध ठरवलं गेलं।
2: उद्धव ठाकरे के बाद मंच से राज ठाकरे ने हुंकार भरी। उन्होंने मांग की कि चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, ईव्हीएम से नहीं।
4: म्हणून माझे सर्व राजकीय पक्षांना विनंती आहे, ज्यावेळेला तुम्ही सगळेजण दिल्लीत ज्यावेळेला हा बोलाल त्यावेळेला एक तर एसआयआर हा रद्द झाला पाहिजे कोणत्याही परिस्थितीत, आणि दुसरं म्हणजे या देशातलं वोटिंग मशीन बंद होऊन बॅलेट पेपर वरती याच्या पुढे मतदान झालं पाहिजे।
2: चुनाव गड़बड़ी के आरोपों पर विरोध प्रदर्शन जारी है। विपक्ष दावा कर रहा है कि पूरे देश में सीसी का इसी तरह से विरोध होगा।
5: ये देश में जो हिटलरशाही चल रही है ना, इलेक्शन हाईजैक करो, इलेक्शन कमीशन को अपने जेब में रखो, सुप्रीम कोर्ट को जेब में रखो, तानाशाही चलाओ, वोट चोरी करो, इलेक्शन चोरी करो, एमपी एमएलए चोरी करो, उसके खिलाफ ये रिवोल्ट है, बंड है। जैसे 1857 में हो गया था इस देश में, उनकी शुरुआत है और मुंबई से शुरुआत हो रही है।
6: ये जो मोर्चा है आपको पता है कि संविधान बचाने के लिए है। जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन को हाथ में पकड़ के भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मतदार यादी में बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रही है, ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ी कर रही है, जो जो राज्य में चुनाव होते चाहे वो महाराष्ट्र हो, गोवा हो, पश्चिम बंगाल हो, वहां पे इलेक्शन कमीशन को हाथ में पकड़ के चुनाव जीतने का काम पूरे देश में चालू है।
2: चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध की गूंज दिल्ली से शुरू हुई थी, अब देश के अलग अलग हिस्सों में विपक्ष इसे और बड़ा कर रहा है और चुनाव आयुक्त के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। ओंकार वाबले, मुंबई आज तक।
0: तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एसआईआर, ईवीएम और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खड़गे ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को भंग कर नए चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की है। खड़गे के ताजा हमलों के बीच सियासी तनातनी और ज्यादा बढ़ गई है।
2: एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों के बीच सीसी ज्ञानेश कुमार पर संग्राम बढ़ता जा रहा है। मांग इस्तीफे की हो रही है, शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा तेज होता जा रहा है, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान ने देश की सियासत को सुलगा दिया है। पहले खड़गे का वो बयान,
7: देश जो चल रहा है वो इलीगल इलेक्शन पे चल रहा है, मोदी इलीगल प्राइम मिनिस्टर, शाह इलीगल मिनिस्टर और जितने भी अब चीफ मिनिस्टर्स बने कहां के भी वो सब इलीगल, सबको डिसॉल्व करना, इलेक्शन कराना और बैलेट पे इलेक्शन कराना, क्योंकि ईवीएम का मिसयूज हो रहा है ये खुद ही उनके लोग कर रहे हैं।
2: खरगे के मुताबिक 2014 के बाद से बीजेपी की जितनी सरकारें बनी हैं, जितने मंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं, सब इलीगल हैं। खरगे का ये बयान बीजेपी को तीर की तरह चुभा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खरगे को गांधी परिवार का दास बता दिया।
8: मल्लिकार्जुन भले गांधी परिवार के दास हो सकते हैं, देश का लोकतंत्र मजबूत है। कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रहा, ये मुस्लिम लीग कांग्रेस है जो सोची समझी रणनीति के तहत देश के संवैधानिक संस्थान के ऊपर आरोप लगाना, देश में भ्रम फैलाना, ये काम हो गया है राहुल गांधी एंड कंपनी का।
2: शिवराज सिंह चौहान ने भी खरगे पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि खरगे चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं।
9: दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है और दुनिया उदाहरण देती है भारत के लोकतंत्र के, लेकिन लोकतंत्र का अपमान करना, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना, चुनाव हारने पर चुनाव आयोग को बदनाम करना, जनता के जनादेश का अपमान करना, ये कांग्रेस के डीएनए में है। राहुल गांधी जी के इशारे पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को अवैध कहा, ये लोकतंत्र का अपमान है।
2: अब एक तरफ चुनाव आयोग का विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ खरगे के बयान पर सियासत धधक रही है। आज तक ब्यूरो।
0: तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन को लेकर दोनों ओर से तीखी बयानबाजी जारी है। इस बीच अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर सोशल मीडिया पर एक अहम पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, बात सीट की नहीं जीत की है। अब इस पर भी सियासत तेज हो गई है।
10: सीट का आधार है।
2: अखिलेश यादव का ये बयान आज ऐसे वक्त में आया है जब यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों पर मतभेद खुलकर सामने आ गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया का ये बयान यूपी में 2027 की सियासी पटकथा का पहला अध्याय माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए गुंजाइश का कोना भी छोड़ रखा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मकसद जब साफ हो तो हाथ में हाथ होता है, निगाह मंजिल पर हो तो सफर आसान होता है। बात बड़ी ये नहीं कि गठबंधन में कितनी सीटें या कौन सी सीटें किसके पास जा रही हैं। बात बड़ी है कि हम सबको ये सुनिश्चित करना है कि जीत गठबंधन की हो। फिर दोहराते हैं, बात सीट की नहीं जीत की है। यूपी की राजनीति में सीट सिर्फ एक नंबर नहीं होती। एक सीट मतलब संगठन, एक सीट मतलब उम्मीदवार, एक सीट मतलब वोट बैंक, और सबसे बढ़कर एक सीट मतलब गठबंधन के भीतर राजनीतिक हैसियत। इसलिए जब बात यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तलखी पर आई तो बीजेपी टूट पड़ी।
11: हैसियत बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में हैसियत सीट जीतने की जितनी है उतनी ही डिमांड करे, और कांग्रेस लगातार 150 सीट 200 सीट की डिमांड कर रही है।
2: जब बीजेपी ने इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तलखी पर हाथ रख दिया तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के एनडीए के बीच बड़े कील कांटे को उभार कर बीजेपी पर पलटवार किया।
12: ये श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तय करेंगे। इसमें तो ये तो एक अच्छा बयान है श्री अखिलेश यादव जी।
13: भारतीय जनता पार्टी में सब गड़बड़ चल रहा है, एनडीए गठबंधन में सीट को लेकर सरफुटोवल है, इसलिए वो अपना ध्यान भटकाने के लिए इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। इंडिया गठबंधन का गठबंधन मजबूत है।
2: 2017 में यूपी के दो लड़के अखिलेश और राहुल साथ आए, गठबंधन हुआ, लेकिन नतीजा सिफर रहा। समाजवादी पार्टी 311 सीटों पर लड़ी लेकिन जीती 47 सीटें। वहीं कांग्रेस ने 114 सीट पर चुनाव लड़ा लेकिन जीते सिर्फ 7 सीट, यानी यूपी विधानसभा की 403 सीटों में से 54 सीटें सिर्फ जीत सके। फिर आया 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव। इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग मैदान में थे। समाजवादी पार्टी ने 347 सीटों पर चुनाव लड़ा और 111 जीती। कांग्रेस ने भी लगभग पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ा लेकिन उसके खाते में आई सिर्फ 2 सीटें। यानी आंकड़े सवाल छोड़ गए। इन आंकड़ों में नया मोड़ 2024 लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला। 2024 लोकसभा में समाजवादी पार्टी 80 में से 37 सीटें जीती, वही कांग्रेस को 6 सीटों पर कामयाबी मिली। सीटों के इसी खेल के जरिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं।
10: मैं समझता हूँ कि सम्मानजनक हिस्सेदारी भागीदारी होगी, क्योंकि हम लोग बराबर के हिस्सेदार हैं।
14: कि राहुल गांधी भी यहाँ चुनाव लड़ने से डर रहे थे, अमेठी तो छोड़ ही दिया था। रायबरेली जब अखिलेश यादव के समझाने पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समझाने पर गए हैं, तब उन्होंने पर्चा भरा। जब उन्होंने कह दिया अगर आप नहीं करेंगे तो मैं अपना कैंडिडेट घोषित करता हूँ।
2: ऐसा नहीं है कि सीटों की ये लड़ाई इंडिया गठबंधन के बीच में ही है। यूपी में एनडीए में भी सीटों की दावेदारी शुरू हो चुकी है। आरएलडी, निषाद पार्टी, अपना दल और एसबीएसपी जैसे सहयोगी अपनी अपनी राजनीतिक जमीन के हिसाब से हिस्सेदारी चाहते हैं। यानी यूपी में दोनों गठबंधनों के सामने एक ही सवाल है कि साथी कितने मजबूत हैं और उनकी कीमत कितनी है। फिलहाल तो बीजेपी एनडीए से लड़ने से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की आपसी खींचतान सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। क्या अखिलेश का ताजा बयान इस विवाद को खत्म कर पाएगा? आज तक ब्यूरो।
0: तो वही अमृतसर में दिन दहाड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट मद संधू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दरअसल बाइक सवार दो हमलावरों ने बीच सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत भी हो चुकी है। वहीं इस हत्याकांड को लेकर सियासत भी गर्मा गई है।

0: अमृतसर में दिन दहाड़े फायरिंग से मचा हड़कंप, बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद इलाके में दहशत। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मैड संधू को मृत घोषित कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर मैड संधू की हत्या क्यों की गई? बाइक पर आए हमलावर कौन थे? अमृतसर की सड़कों पर खून से लथपथ पड़े एक शख्स की तस्वीरें और वीडियो सामने आते ही हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि घायल शख्स कोई और नहीं बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट मैड संधू है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को मैड संधू पर गोली चलाई गई। गोली लगने के बाद वह सड़क पर गिर पड़े। मौके पर आसपास के लोग भी जमा हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मैड संधू गंभीर रूप से घायल हालत में दिखाई दे रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर मैड संधू पर हमला किसने किया और हमले की वजह क्या थी।
1: हाँ, उनके फादर, उनकी फैमिली सारी यहाँ पे, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके हमने FIR दर्ज करके इनिशियली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी।
0: दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।
2: 2025 में भी एक इन्फ्लुएंसर को निशाना बनाया गया था। उसी बीच में जहां पे इलेक्शन चंद महीने दूर है, वहां पे अब सवालिया निशान उठ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर।
0: वहीं इस वारदात को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस नेता डॉक्टर राजकुमार वेरका ने मैड संधू की हत्या को लेकर पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि पंजाब में डर का माहौल है।
3: पंजाब में डर का माहौल है, पंजाब के लोग डर के साये के नीचे सो रहे हैं और यहाँ पे भगवंत मान की सरकार बड़े बड़े होल्डिंग लगा कर के कह रही है कि शानदार सरकार, ईमानदार सरकार। अरे ये तो बेईमान सरकार है।
0: इस बीच सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी, ढिल्लों और जग्गा तरनतारन की ओर से लिए जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस दावे की भी जांच कर रही है। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक गोल्डी ढिल्लो फरार है और उसके ब्रिटेन में छिपे होने की जानकारी है। उसे गोल्डी बराड का करीबी भी बताया जाता है। फिलहाल अमृतसर में हुई इस फायरिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज और चश्मदीदों की जानकारी के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। पंजाब से कमलजीत संधू के साथ आज तक।
4: स्पेन के माद्रिगेरास में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने भारी तबाही मचाई हुई है। सड़कों पर गाड़ियां बहती हुई दिख रही हैं, जबकि घरों और सरकारी इमारतों में पानी घुस गया है। अब पानी उतरने के बाद लोग कीचड़ और मलबा साफ करने में जुटे हुए हैं। रिकॉर्ड गर्मी के बाद हुई इस भारी बारिश ने स्पेन में लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं।
0: ये तस्वीरें हैं स्पेन के माद्रिगेरास शहर की, जहां भारी बारिश के बाद पूरा इलाका पानी और कीचड़ से भर गया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में तैरती नजर आईं। कहीं कारें एक दूसरे से टकराकर फंसी हैं, तो कहीं मलबे के बीच पूरी तरह दब गई हैं। ये तस्वीरें बाढ़ के पानी के उतरने के बाद की हैं, जहां तबाही का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। लोग अपने घरों से कीचड़ निकाल रहे हैं, सड़कें साफ की जा रही हैं, फर्नीचर और घर का सामान बाहर निकाला जा रहा है। कई गाड़ियां मलबे में फंसी हुई हैं, कुछ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं और कई एक दूसरे के ऊपर जा चढ़ी हैं।
5: Son absolutamente tremendos. Es inimaginable la altura que ha alcanzado el agua en un pueblo aparentemente llano. Lo podrán comprobar, se ha invadido la iglesia, el cuartel, el ayuntamiento y ha derribado puertas de cientos de kilos, lo cual es prácticamente inimaginable.
0: बाढ़ ने सिर्फ घरों और सड़कों को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, चर्च, बैरक और टाउन हॉल भी पानी में डूब गए। करीब 5,000 की आबादी वाले इस शहर में बाढ़ के कहर से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया।
6: Todo negado, vino el agua buscando su cauce y todo lo que pilló, pues se lo llevó para adelante y un desastre, tipo Dana.
0: ये भारी बारिश ऐसे वक्त हुई है जब स्पेन इस साल रिकॉर्ड गर्मी का सामना कर चुका है। अगस्त में गर्मी के कहर से यहाँ करीब 2,000 लोगों की मौत हुई थी। अब रिकॉर्ड गर्मी के बाद भारी बारिश और बाढ़ ने एक और गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। आज तक ब्यूरो।
4: तो वही एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन कर पदक जीतने वाले खिलाड़ी अपने देश वापस लौट रहे हैं। उनकी वापसी पर जोरदार जश्न मनाया गया। एयरपोर्ट से लेकर खिलाड़ियों के घर तक जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है।
7: ढोल बज रहे हैं तो कहीं फूल बरस रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर अलग अलग शहरों में लौट रहे एशियन गेम्स के चैंपियंस का जमकर स्वागत हो रहा है। रांची की इन तस्वीरों को देखिए। झारखंड के कई खिलाड़ियों ने टीम को 44 साल बाद चैंपियन बनाने में अहम किरदार निभाया है। इतिहास रचने के बाद बेटियां जब घर लौटी तो परंपरागत तरीके से उनका स्वागत किया गया। जश्न के इस माहौल में चैंपियंस भी खुद को नाचने से नहीं रोक सकी। इन हॉकी सितारों के स्वागत में तो बेंगलुरु भी पीछे नहीं रहा। बॉक्सिंग में देश का मान बढ़ाने वाले बॉक्सर बीती रात जब दिल्ली लौटे तो आज तक ने उनके साथ उनकी खुशी साझा की।
8: आने से पहले मतलब यही था कि देश के लिए कुछ करना है और अपना 100% देना है। रिजल्ट की वो निकलनी, अपना 100% देना, रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। और फिर गोल्ड आने के बाद तो फिर रिजल्ट आ ही गया था।
9: ये कंपटीशन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल था। सबसे पहले कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ला पाई, वो भी मेरे बर्थडे के दिन। सबको याद रहेगा, मुझे तो हमेशा ही याद रहेगा। और इसीलिए भी स्पेशल है कि लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था और इस टाइम मैं गोल्ड मेडल ला पाई, तो कहीं ना कहीं माइंड में था। और ऐसे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेरा सिल्वर था, तो कहीं ना कहीं थोड़े से उसके वजह से ही कहीं ना कहीं नेशनल एंथम छूट रहा था, तो उसको मुझे करना था इस बार। और इस बार इसीलिए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे वजह से नेशनल एंथम बजे और मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाई।
7: स्क्वैश में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी अनाहत सिंह का दिल्ली में मालाओं और तालियों के साथ स्वागत किया गया।
10: It feels amazing to, you know, get to be the first woman to get a silver medal and get the chance to stand up on the podium. It was my first time playing a singles event, so getting to, you know, win a medal and also, you know, getting a silver was amazing. Of course, you know, with the Olympic criteria of getting the gold, I wanted to, you know, push a bit further and, you know, possibly go into getting gold, but, you know, it doesn't always go your way.
7: इस बार भारत ने एशियन गेम्स में 21 गोल्ड समेत कुल 85 मेडल जीते हैं। इसके साथ ही भारत एशियन गेम्स में चौथे पायदान पर रहा है। बैडमिंटन, टेबल टेनिस और कुछ हद तक शूटिंग में नतीजे उम्मीदों के मुताबिक बेशक ना रहे हों, लेकिन कई खेलों में भारतीय एथलीट ने गर्व करने लायक लम्हे दिए हैं। दिल्ली से सिद्धार्थ विश्वनाथन के साथ आज तक ब्यूरो।
4: रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपका ही मत जाएगा, देखते रहिए आज।
11: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से

0: अकेले बैठना अशुभ होता है? क्या चंद्रमा की ये अशुभता जीवन में कष्ट देती है? क्या चंद्रमा की इस स्थिति के कारण दरिद्रता भी आती है? अकेला बैठा हुआ चंद्रमा क्या कर सकता है जीवन पर प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

कांग्रेस के राज्यों के पार्टी प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक, 7 अक्टूबर को इंडिया गठबंधन के मेगा प्रदर्शन को लेकर चर्चा के आसार। पीएम मोदी पर गैर कानूनी वाले बयान को लेकर खड़गे पर बीजेपी का हमला तेज, रिजिजू ने पूछा क्या वो खुद और राहुल भी हैं अवैध सांसद। यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस में सीट बंटवारे पर तेज हुई तकरार, इशारों में अखिलेश की नसीहत के बाद कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र गौतम का पलटवार, कहा हमने 150 नहीं 200 सीट की कही है बात। उत्तराखंड और गुजरात में यूसीसी लागू होने के बाद बंगाल के सीएम शुभेंदु का बड़ा बयान, कहा 6 महीने के अंदर राज्य में लाएंगे कानून, जबरन धर्मांतरण पर होगी सख्ती। तेल रिफाइनरी पर जेलेंस्की के हमले की धमकी पर भड़का रूस, कहा यूक्रेन पर बरसाएंगे और बारूद, पुतिन बोले हमारे पास सबसे खतरनाक हथियार।

0: आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि दिल्ली के उस्मानपुर यमुना खादर से आ रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच यहां मुठभेड़ हुई। उत्तर पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ ने लॉरेंस बिश्नोई और राजपूत केबलवाला गैंग से जुड़े दो कथित शार्प शूटर्स को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद कैफ और जसीम के तौर पर हुई है। वहीं आपको ये बता दें कि पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाशों ने 2 अक्टूबर को भजनपुरा में एक कारोबारी के घर के बाहर रंगदारी के लिए फायरिंग भी की थी। कार्रवाई के दौरान बदमाशों की गोली स्पेशल स्टाफ के SI और हेड कांस्टेबल की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी के पैर में गोली लगी और पुलिस ने मौके से 3 पिस्टल, 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। फिलहाल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। 2 शार्प शूटर की गिरफ्तारी हो चुकी है। 1 लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताया जा रहा है और 1 केबल वाला गैंग। वहीं भजनपुरा में ये पूरी कारोबारी के घर पर रंगदारी के लिए ये दोनों पहुंचे थे और ऐसे में पुलिस मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी और दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
1: फिलहाल हमारी मौजूदगी यमुना खादर में है, जहां पर अब से कुछ देर पहले बदमाशों और उत्तर पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से फायरिंग की गई है, जिसमें SI कौशिक घोष यादव के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है, जबकि आमिर जो कि हेड कांस्टेबल है उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी है। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों की पुलिस को एक सूचना मिली थी, गुप्त सूचना मिली थी, जिसमें बताया जा रहा था कि यमुना खादर में ये बदमाश गुजरने वाले हैं और पुलिस ने ट्रैप लगाया और इनको रुकने की इशारा किया। जब पुलिस को चारों तरफ से घिरता देख इन बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बदमाशों के पास से रंगदारी में शामिल 3 पिस्टल बरामद की गई है, जिससे 2 अक्टूबर के दिन इन बदमाशों ने गोलियां चलाई थी, जबकि बताया ये जा रहा है कि बदमाशों के पास से 1 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। वहीं आपको यह भी बता दें, यह शार्प शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के और राशिद केवल वाला गैंग से बताए जा रहे हैं, जिनकी पहचान जसीम और मोहम्मद कैफ के रूप में हुई है। कैमरा आरिफ के साथ इसरार अहमद, आज तक।
0: वहीं चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों की मोर्चाबंदी तेज है। इस बीच मुंबई में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर विपक्ष ने मुंबई में विरोध प्रदर्शन किया। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे और MNS प्रमुख राज ठाकरे की अगुवाई में आज मुंबई में गर्जना मार्च निकाला गया है।
2: चुनाव आयोग के खिलाफ मुंबई में विपक्ष का ये गर्जना मार्च है। शिवसेना UBT के मुखिया उद्धव ठाकरे और MNS के मुखिया राज ठाकरे एक साथ एक मंच पर चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। ठाकरे बंधु एक सुर में मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा मांग रहे हैं। तस्वीरें देखिए, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों की मोर्चाबंदी की तस्वीरें हैं ये। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर विपक्ष बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में उद्धव और राज ठाकरे के अलावा शरद पवार वाली NCP भी शामिल है। चुनाव आयोग पर उद्धव ने जोरदार निशाना साधा, उनके निशाने पर ज्ञानेश कुमार रहे।
3: नागरिकत्व रद्द करण्याचा अधिकार हा गृहमंत्र्याचा आहे, गृह मंत्रालय हा निवडणूक आयोगाचा म्हणजे ज्ञानेश कुमारच्या बापाचा अधिकार नाही, आणि त्याच्या बापाचा म्हणजे या अमित शहांचा हा अधिकार आहे, आणि तो अधिकार ते ज्ञानेश कुमारच्या माध्यमातून वापरतायत, म्हणून आम्हाला ज्ञानेश कुमार नको आहे। काय थट्टा चालले? आजपर्यंत या लोकांनी म्हणजे जेव्हा जोपर्यंत काँग्रेसचं सरकार तिकडे होतं तेव्हा आपणही गेलो होतो यांच्या बरोबर वाहत भाजप बरोबर, आणि मग सरकार त्यांनी एक असं वातावरण केलं की काँग्रेस एवढं भ्रष्ट सरकार नाही, इंडिया अगेन्स्ट करप्शन, आता संपूर्ण इंडिया उभा राहिलेला आहे, इंडिया अगेन्स्ट वोट चोर।
2: इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने अपील की है कि इंडिया अगेंस्ट वोट चोर के नारे गली गली में लगाए जाने चाहिए।
3: इंडिया अगेंस्ट वोट चोर ही घोषणा पूर्ण गल्ली गल्ली मध्ये गेली पाहिजे। 13 कोटी मतदार अचानक तुम्ही गालताय, बंगाल मध्ये जे आतापर्यंत अर्जांची छाननी झाली अवैध ठरलेल्या, त्यातल्या काही लोकांना वैध ठरवलं गेलं।
2: उद्धव ठाकरे के बाद मंच से राज ठाकरे ने हुंकार भरी। उन्होंने मांग की कि चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, EVM से नहीं।
4: म्हणून माझे सर्व राजकीय पक्षांना विनंती आहे, ज्यावेळेला तुम्ही सगळेजण दिल्लीत ज्यावेळेला हा बोलाल त्याला एक तर एसआयआर हा रद्द झाला पाहिजे कोणत्याही परिस्थितीत, आणि दुसरं म्हणजे या देशातलं वोटिंग मशीन बंद होऊन बॅलेट पेपर वरती याच्यापुढे मतदान झालं पाहिजे.
2: चुनाव गड़बड़ी के आरोपों पर विरोध प्रदर्शन जारी है. विपक्ष दावा कर रहा है कि पूरे देश में सीसी का इसी तरह से विरोध होगा.
5: ये देश में जो हिटलरशाही चल रही है ना, इलेक्शन हाईजैक करो, इलेक्शन कमीशन को अपने जेब में रखो, सुप्रीम कोर्ट को जेब में रखो, तानाशाही चलाओ, वोट चोरी करो, इलेक्शन चोरी करो, एमपी एमएलए चोरी करो, उसके खिलाफ ये रिवोल्ट है, बंड है. जैसे 1857 में हो गया था इस देश में, उनकी शुरुआत है और मुंबई से शुरुआत हो रही है.
6: ये जो मोर्चा है आपको पता है कि संविधान बचाने के लिए है. जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन को हाथ में पकड़ के भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मतदार यादी में बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रही है, ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ी कर रही है, जो जो राज्य में चुनाव होते चाहे वो महाराष्ट्र हो, गोवा हो, पश्चिम बंगाल हो, वहां पे इलेक्शन कमीशन को हाथ में पकड़ के चुनाव जीतने का काम पूरे देश में चालू है.
2: चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध की गूंज दिल्ली से शुरू हुई थी. अब देश के अलग अलग हिस्सों में विपक्ष इसे और बड़ा कर रहा है और चुनाव आयुक्त के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है. ओंकार बाबले, मुंबई आज तक.
0: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एसआईआर, ईवीएम और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. खड़गे ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को भंग कर नए चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की है. खड़गे के ताजा हमलों के बीच सियासी तनातनी और ज्यादा बढ़ गई है.
2: एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों के बीच सीईसी ज्ञानेश कुमार पर संग्राम बढ़ता जा रहा है. मांग इस्तीफे की हो रही है. शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा तेज होता जा रहा है. लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान ने देश की सियासत को सुलगा दिया है. पहले खड़गे का वो बयान.
7: देश जो चल रहा है वो इलीगल इलेक्शन पे चल रहा है. मोदी इलीगल प्राइम मिनिस्टर, शाह इलीगल मिनिस्टर, और जितने भी अब चीफ मिनिस्टर्स बने कहां के भी, वो सब इलीगल. सबको डिसॉल्व करना, इलेक्शन कराना और बैलेट पे इलेक्शन कराना, क्योंकि ईवीएम का मिसयूज हो रहा है, ये खुद ही उनके लोग कर रहे हैं.
2: खड़गे के मुताबिक 2014 के बाद से बीजेपी की जितनी सरकारें बनी हैं, जितने मंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं, सब इलीगल हैं. खड़गे का ये बयान बीजेपी को तीर की तरह चुभा. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खड़गे को गांधी परिवार का दास बता दिया.
8: मल्लिकार्जुन भले गांधी परिवार के दास हो सकते हैं, देश का लोकतंत्र मजबूत है. कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रहा, ये मुस्लिम लीग कांग्रेस है जो सोची समझी रणनीति के तहत देश के संवैधानिक संस्थान के ऊपर आरोप लगाना, देश में भ्रम फैलाना, ये काम हो गया है राहुल गांधी एंड कंपनी का.
2: शिवराज सिंह चौहान ने भी खड़गे पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि खड़गे चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं.
9: दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है और दुनिया उदाहरण देती है भारत के लोकतंत्र के, लेकिन लोकतंत्र का अपमान करना, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना, चुनाव हारने पर चुनाव आयोग को बदनाम करना, जनता के जनादेश का अपमान करना, ये कांग्रेस के डीएनए में है. राहुल गांधी जी के इशारे पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को अवैध कहा, ये लोकतंत्र का अपमान है.
2: अब एक तरफ चुनाव आयोग का विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ खड़गे के बयान पर सियासत धधक रही है। आज तक ब्यूरो।
0: वही उत्तर प्रदेश विधान

0: जिसमें उन्होंने लिखा, बात सीट की नहीं जीत की है और अब इस पर सियासत तेज है।
1: जीती सीट का आधार है।
2: अखिलेश यादव का ये बयान आज ऐसे वक्त में आया है जब यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों पर मतभेद खुलकर सामने आ गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया का ये बयान यूपी में 2027 की सियासी पटकथा का पहला अध्याय माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए गुंजाइश का कोना भी छोड़ रखा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मकसद जब साफ हो तो हाथ में हाथ होता है, निगाह मंजिल पर हो तो सफर आसान होता है। बात बड़ी ये नहीं कि गठबंधन में कितनी सीटें या कौन सी सीटें किसके पास जा रही हैं। बात बड़ी है कि हम सबको ये सुनिश्चित करना है कि जीत गठबंधन की हो। फिर दोहराते हैं, बात सीट की नहीं जीत की है। यूपी की राजनीति में सीट सिर्फ एक नंबर नहीं होती। एक सीट मतलब संगठन, एक सीट मतलब उम्मीदवार, एक सीट मतलब वोट बैंक और सबसे बढ़कर एक सीट मतलब गठबंधन के भीतर राजनीतिक हैसियत। इसलिए जब बात यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तलखी पर आई तो बीजेपी टूट पड़ी।
3: हैसियत बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में हैसियत सीट जीतने की जितनी है उतनी ही डिमांड करे, और कांग्रेस लगातार 150 सीट 200 सीट की डिमांड कर रही है।
2: जब बीजेपी ने इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तलखी पर हाथ रख दिया तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के एनडीए के बीच बड़े कील कांटे को उभार कर बीजेपी पर पलटवार किया।
4: ये श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तय करेंगे। इसमें तो ये तो एक अच्छा बयान है श्री अखिलेश यादव जी।
5: भारतीय जनता पार्टी में सब गड़बड़ चल रहा है। एनडीए गठबंधन में सीट को लेकर सरफुटवल है, इसलिए वो अपना ध्यान भटकाने के लिए इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। इंडिया गठबंधन का गठबंधन मजबूत है।
2: 2017 में यूपी के दो लड़के अखिलेश और राहुल साथ है, गठबंधन हुआ लेकिन नतीजा सिफर रहा। समाजवादी पार्टी 311 सीटों पर लड़ी लेकिन जीती 47 सीटें। वहीं कांग्रेस ने 114 सीट पर चुनाव लड़ा लेकिन जीते सिर्फ 7 सीट, यानी यूपी विधानसभा की 403 सीटों में से 54 सीटें सिर्फ जीत सके। फिर आया 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव। इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग मैदान में थे। समाजवादी पार्टी ने 347 सीटों पर चुनाव लड़ा और 111 जीती। कांग्रेस ने भी लगभग पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ा लेकिन उसके खाते में आई सिर्फ 2 सीटें, यानी आंकड़े सवाल छोड़ गए। इन आंकड़ों में नया मोड़ 2024 लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला। 2024 लोकसभा में समाजवादी पार्टी 80 में से 37 सीटें जीती, वही कांग्रेस को 6 सीटों पर कामयाबी मिली। सीटों के इसी खेल के जरिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं।
6: मैं समझता हूँ कि सम्मानजनक हिस्सेदारी भागीदारी होगी, क्योंकि हम लोग बराबर के हिस्सेदार हैं।
7: कि राहुल गांधी भी यहाँ चुनाव लड़ने से डर रहे थे, अमेठी तो छोड़ ही दिया था। रायबरेली जब अखिलेश यादव के समझाने पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समझाने पर गए हैं, तब उन्होंने पर्चा भरा। जब उन्होंने कह दिया अगर आप नहीं करेंगे तो मैं अपना कैंडिडेट घोषित करता हूँ।
2: ऐसा नहीं है कि सीटों की ये लड़ाई इंडिया गठबंधन के बीच में ही है। यूपी में एनडीए में भी सीटों की दावेदारी शुरू हो चुकी है। आरएलडी, निषाद पार्टी, अपना दल और एसबीएसपी जैसे सहयोगी अपनी अपनी राजनीतिक जमीन के हिसाब से हिस्सेदारी चाहते हैं। यानी यूपी में दोनों गठबंधनों के सामने एक ही सवाल है कि साथी कितने मजबूत हैं और उनकी कीमत कितनी है। फिलहाल तो बीजेपी एनडीए से लड़ने से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की आपसी खींचतान सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। क्या अखिलेश का ताजा बयान इस विवाद को खत्म कर पाएगा? आज तक ब्यूरो।
0: अमृतसर में दिन दहाड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट मर्द संधू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार दो हमलावरों ने बीच सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। अस्पताल ले जाते वक्त मर्द संधू की मौत हो गई है, तो वहीं इस हत्याकांड को लेकर सियासत भी गर्मा गई है।

अमृतसर में दिन दहाड़े फायरिंग से मचा हड़कंप, बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद इलाके में दहशत। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मैड संधू को मृत घोषित कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर मैड संधू की हत्या क्यों की गई? बाइक पर आए हमलावर कौन थे? अमृतसर की सड़कों पर खून से लथपथ पड़े एक शख्स की तस्वीरें और वीडियो सामने आते ही हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि घायल शख्स कोई और नहीं बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट मैड संधू है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को मैड संधू पर गोली चलाई गई। गोली लगने के बाद वह सड़क पर गिर पड़े। मौके पर आसपास के लोग भी जमा हो गए। घटना का वीडियो

0: सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मैट संधू गंभीर रूप से घायल हालत में दिखाई दे रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर मैट संधू पर हमला किसने किया और हमले की वजह क्या थी।
1: हाँ, उनके फादर, उनकी फैमिली सारी यहाँ पे, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके हमने FIR दर्ज करके इनिशियली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी।
0: दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।
2: 2025 में भी एक इन्फ्लुएंसर को निशाना बनाया गया था। उसी बीच में जहां पे इलेक्शन चंद महीने दूर है, वहां पे अब सवालिया निशान उठ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर।
0: वहीं इस वारदात को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस नेता डॉक्टर राजकुमार वेरका ने मैट संधू की हत्या को लेकर पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि पंजाब में डर का माहौल है।
3: पंजाब में डर का माहौल है, पंजाब के लोग डर के साये के नीचे सो रहे हैं और यहाँ पे भगवंत मान की सरकार बड़े बड़े होल्डिंग लगा कर के कह रही है कि शानदार सरकार, ईमानदार सरकार। अरे ये तो बेईमान सरकार है।
0: इस बीच सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी, ढिल्लों और जग्गा तरनतारन की ओर से लिए जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस दावे की भी जांच कर रही है। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक गोल्डी ढिल्लो फरार है और उसके ब्रिटेन में छिपे होने की जानकारी है। उसे गोल्डी बराड का करीबी भी बताया जाता है। फिलहाल अमृतसर में हुई इस फायरिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज और चश्मदीदों की जानकारी के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। पंजाब से कमलजीत संधू के साथ आज तक।
4: वही एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन कर पदक जीतने वाले खिलाड़ी अपने देश वापस लौट रहे हैं और उनकी वापसी पर जोरदार जश्न मनाया गया। एयरपोर्ट से लेकर खिलाड़ियों के घर तक जबरदस्त तरीके से स्वागत किया जा रहा है।
5: कहीं ढोल बज रहे हैं तो कहीं फूल बरस रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर अलग अलग शहरों में लौट रहे एशियन गेम्स के चैंपियंस का जमकर स्वागत हो रहा है। रांची की इन तस्वीरों को देखिए। झारखंड के कई खिलाड़ियों ने टीम को 44 साल बाद चैंपियन बनाने में अहम किरदार निभाया है। इतिहास रचने के बाद बेटियां जब घर लौटी तो परंपरागत तरीके से उनका स्वागत किया गया। जश्न के इस माहौल में चैंपियंस भी खुद को नाचने से नहीं रोक सके। इन हॉकी सितारों के स्वागत में तो बेंगलुरु भी पीछे नहीं रहा। बॉक्सिंग में देश का मान बढ़ाने वाले बॉक्सर बीती रात जब दिल्ली लौटे तो आज तक ने उनके साथ उनकी खुशी साझा की।
6: आने से पहले मतलब यही था कि देश के लिए कुछ करना है और अपना 100% देना है। रिजल्ट की वो निगरानी, अपना 100% देना, रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा और फिर गोल्ड आने के बाद तो फिर रिजल्ट आ ही गया था।
7: ये कंपटीशन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल था। सबसे पहले कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ला पाई, वो भी मेरे बर्थडे के दिन, सबको याद रहेगा, मुझे तो हमेशा ही याद रहेगा। और इसीलिए भी स्पेशल है कि लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था और इस टाइम मैं गोल्ड मेडल ला पाई, तो कहीं ना कहीं माइंड में था। और ऐसे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेरा सिल्वर था, तो कहीं ना कहीं थोड़े से उसके वजह से ही कहीं ना कहीं नेशनल एंथम छूट रहा था, तो उसको मुझे करना था इस बार। और इस बार इसीलिए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे वजह से नेशनल एंथम बजे और मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाई।
5: स्क्वैश में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी अनाहत सिंह का दिल्ली में मालाओं और तालियों के साथ स्वागत किया गया।
8: It feels amazing to, you know, get to be the first woman to get a silver medal and get the chance to stand up on the podium. It was my first time playing a singles event, so getting to, you know, win a medal and also, you know, getting a silver was amazing. Of course, you know, with the Olympic criteria of getting the gold, I wanted to, you know, push a bit further and, you know, possibly go into getting gold, but, you know, it doesn't always go your way.
5: इस बार भारत ने एशियन गेम्स में 21 गोल्ड समेत कुल 85 मेडल जीते हैं। इसके साथ ही भारत एशियन गेम्स में चौथे पायदान पर रहा है। बैडमिंटन, टेबल टेनिस और कुछ हद तक शूटिंग में नतीजे उम्मीदों के मुताबिक बेशक ना रहे हों, लेकिन कई खेलों में भारतीय एथलीट ने गर्व करने लायक लम्हे दिए हैं। दिल्ली से सिद्धार्थ विश्वनाथन के साथ आज तक ब्यूरो।
4: कैप्टन स्मिथ मचार, जिन्होंने प्लेन को क्रैश होने से बचाया, जिन्होंने 170 लोगों की जिंदगी बचाई, अब उनकी बहादुरी की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने फोन पर बात कर उन्हें दुनिया का हीरो बताया और इजरायल आने का न्योता भी दिया।

0: मान ज्ञान गुण सागर जय कपिस्ते हुन लोक उजागर राम शमिश जस्ट डू इट।
1: You are a true hero of the brave peoples of India and Israel, and you are a hero of the entire world.
2: आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग।
3: I guess he still is in very bad shape, but he had the sense to amazing, to in a way he was a hero.
4: दुनिया कर रही है हीरो हिंदुस्तानी को सलाम, दुनिया मान रही है भारतीय जांबाज का लोहा, दुनिया कह रही है कि ये है भारत का वीर योद्धा, दुनिया सजदा कर रही है भारतीय पायलट का। जी हाँ, 34,000 फीट की ऊंचाई, कॉकपिट में हमला, सिर पर लगातार वार और नीचे तेजी से गिरता विमान, लेकिन भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार ने हिम्मत नहीं हारी। अब उनकी बहादुरी को दुनिया सलाम कर रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ मच्छार से फोन पर बात की। नेतन्याहू ने मच्छार को पूरी दुनिया का हीरो बताया। इजरायली पीएम ने स्मिथ को इजराइल आने का न्योता भी दिया, कहा आइए दीप जलाइए और बताइए अपनी बहादुरी के किस्से।
1: कैप्टन, आई वांट टू इनवाइट यू एंड माय डियर फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लाइट अ सेलिब्रेटरी फ्लेम ऑन आवर नेक्स्ट इंडिपेंडेंट डे। यू आर ट्रू हीरो ऑफ द ब्रेव पीपल्स ऑफ इंडिया एंड इजराइल एंड यू आर अ हीरो ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। आई विश यू अ वेरी स्पीडी एंड कंप्लीट रिकवरी।
4: करीब 6 मिनट की बातचीत में नेतन्याहू ने कैप्टन मच्छार से उस खौफनाक पल के बारे में पूरी जानकारी ली। फ्लाइट में आखिर हुआ क्या था, कैसे बहादुरी से सभी यात्रियों की जान बचाई गई, ये सब बातें कैप्टन मच्छार ने इजरायली पीएम को बताई।
1: Tell me, I wanted to ask you, how did it all begin? Can you tell me how it began?
5: It was a normal flight and the co-pilot offered, I mean, he demanded, not demanded, but he wanted to pray, which a lot of locals, they do pray, and which is not out of the ordinary. But while he was praying, out of respect, I was just looking at the front and not at the back. And suddenly, after, I think I would say about 4-5 minutes, there was a big blow to the back of my head.
4: कैप्टन मच्छार पर वार इतनी जोर से हुआ था कि उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। बावजूद इसके उन्होंने स्थिति को कैसे संभाला, कैसे हमला करने वाले पायलट का सामना किया, बेंजामिन नेतन्याहू ने ये भी जाना कि फिर आगे क्या हुआ।
5: My first thought was that there was a catastrophic damage to the aircraft and something is not right, but then after that the blow kept coming one after the other, and that's when I realized that it's not the aircraft, it's the other guy who was in the cockpit with me. I did try to stop him, but because of his initial blows, my vision was almost like nothing, and I was completely blurred out, and at that point the next feeling that I had was that the aircraft was sharply going down. So my memory is still in bits and pieces right now, but this is what I remember out of that time. And I did try and manage to open the door once, but I think he shut it back close. And at this point, I remember I was lying down on the cockpit floor, and I felt the aircraft and the whooshing sound and people screaming.
4: कैप्टन स्मिथ अभी इलाज के लिए अबू धाबी के अस्पताल में हैं, जहां दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद ने उनसे मुलाकात की और उनके साहस की जमकर तारीफ की। देखिए, ये तब की तस्वीरें हैं जब दुबई के क्राउन प्रिंस मच्छार से मिलने पहुंचे थे। क्राउन प्रिंस ने मच्छार से उनका हाल जाना, उनकी बहादुरी की तारीफ की और साथ ही कहा कि उन्हें गर्व है कि स्मिथ मच्छार उनकी टीम का हिस्सा हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी स्मिथ की बहादुरी को सलाम कर चुके हैं। ट्रंप ने स्मिथ को हीरो बताया और उनके जज्बे को सलाम किया, उनकी समझ को सलाम किया।
3: And it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. And I guess he still is in very bad shape. But he had the sense to, amazing, to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside. He was able to fall back and get the door open and scream.
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्मिथ से वीडियो कॉल पर बात की। मोदी से बातचीत में स्मिथ ने उस भयावह घटना के बारे में बताया कि किस तरह उन्होंने आखिरी दम तक विमान और यात्रियों की सुरक्षा के लिए संघर्ष किया। पीएम ने भी कैप्टन के साहस की जमकर तारीफ की।
2: देखिए, पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं। आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग हैं।
4: स्मिथ मच्छार अभी अस्पताल में हैं, इलाज जारी है, उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है, लेकिन उनकी कहानी अब सिर्फ एक विमान हादसे या हमले की खबर नहीं रह गई है। ये कहानी बन चुकी है हिम्मत की, कर्तव्य की और उस इंसानी जज्बे की जिसने संकट की सबसे ऊंची ऊंचाई पर अपनी वीरता का परिचय दिया और 174 यात्रियों की जान बचाई। आज तक ब्यूरो।
6: यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

बैठना अशुभ होता है? क्या चंद्रमा की ये अशुभता जीवन में कष्ट देती है? क्या चंद्रमा की इस स्थिति के कारण दरिद्रता भी आती है? अकेला बैठा हुआ चंद्रमा क्या कर सकता है जीवन पर प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

कांग्रेस के राज्यों के पार्टी प्रमुखों के साथ अहम बैठक, 7 अक्टूबर को इंडिया गठबंधन के मेगा प्रदर्शन को लेकर चर्चा के आसार। पीएम मोदी पर गैरकानूनी वाले बयान को लेकर खड़गे पर बीजेपी का हमला तेज, रिजिजू ने पूछा तो क्या वो खुद और राहुल भी हैं अवैध सांसद। यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस में सीट बंटवारे पर तेज हुई तकरार, इशारों में अखिलेश की नसीहत के बाद कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र गौतम का पलटवार, कहा हमने 150 नहीं 200 सीट की कही है बात। उत्तराखंड और गुजरात में यूसीसी लागू होने के बाद बंगाल के सीएम शुभेंदु का बड़ा बयान, कहा 6 महीने के अंदर राज्य में लाएंगे कानून, जबरन धर्मांतरण पर होगी सख्ती। तेल रिफाइनरी पर जेलेंस्की के हमले की धमकी पर भड़का रूस, कहा यूक्रेन पर बरसाएंगे और बारूद, पुतिन बोले हमारे पास सबसे खतरनाक हथियार।

आपका आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम चंद्रमा के एक बड़े अनूठे योग की बात करेंगे जिसका नाम है केमद्रुम योग। क्या होता है केमद्रुम योग, इसका प्रभाव क्या होता है और अगर ये नकारात्मक योग है तो इसके बुरे प्रभाव से कैसे बचेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 अक्टूबर 2026 दिन सोमवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, रात के 11:09 तक चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 7:30 से 9 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर दर्पण में चेहरा देखकर भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए आज हम चंद्रमा के एक बड़े महत्वपूर्ण योग के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। चंद्रमा से बनने वाले योग बहुत महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं, कौन से योग बनते हैं? देखिए चंद्रमा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असर डालने वाला ग्रह है और ज्योतिष शास्त्र का प्राण है। चंद्रमा का सीधा असर किसी व्यक्ति के मन पर और किसी व्यक्ति के संस्कारों पर पड़ता है और सबसे ज्यादा पड़ता है। इसीलिए चंद्रमा चूंकि सर्वाधिक असर डालता है, इसीलिए चंद्रमा से अच्छा योग बने या बुरा योग बने वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रमा से बहुत सारे शुभ योग बनते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार के शुभ योग ज्यादा हैं, अनफा, सुनफा और दुर्धरा। और चंद्रमा से एक बड़ा अशुभ योग भी बनता है जिसका नाम है केमद्रुम योग। कुंडली में अगर केमद्रुम योग बनता है परफेक्टली तो बहुत सारे शुभ योग होने के बावजूद व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती, शुभ योग निष्फल हो जाते हैं। केमद्रुम योग व्यक्ति को मानसिक पीड़ा और दरिद्रता देता है। केमद्रुम योग की वजह से जीवन में मानसिक कष्ट का, मानसिक पीड़ा का बहुत सामना करना पड़ता है। केमद्रुम योग पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, खान पान का ध्यान रखें,
वाद विवाद से बचाव करें। धन की हानि, धन का नुकसान हो सकता है, सतर्क रहें। दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, नौकरी में परिवर्तन होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मिथुन राशि, करियर में सफलता के योग हैं, प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब ये जानते हैं कि किसी कुंडली में केम द्रुम योग बनता कैसे है। देखिए, कुंडली में चंद्रमा जिस खाने में बैठा है, उस खाने के पहले या बाद में अगर कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा के दोनों तरफ अगर कोई ग्रह ना हो, तो केमद्रुम योग बन जाता है। आइसोलेटेड अकेला चंद्रमा कहते हैं, आइसोलेटेड मून। ऐसी दशा में व्यक्ति को मानसिक रोग का या मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। केमद्रुम योग में कभी कभी एपिलेप्सी जैसी, मिर्गी जैसी समस्या भी हो जाती है। केमद्रुम योग अगर कुंडली में बनता हो तो व्यक्ति को दरिद्रता का सामना भी जीवन में करना पड़ता है और धन को लेकर के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। चंद्रमा माता का स्वामी है, माता से संबंध रखता है, इसीलिए अगर कुंडली में केमद्रुम योग बनता है तो व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलता। केमद्रुम योग किसी भी कुंडली में बनेगा, मानसिक कष्ट का बड़ा कारण बनेगा, लेकिन ये योग कर्क लग्न में, वृश्चिक लग्न में और मीन लग्न की कुंडली में अगर बनता है, जल तत्व के लग्न में अगर बनता है, तो ये ज्यादा खराब होता है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता के योग हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके
दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी।

ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अनिल शर्मा जी ने हमें लिखा है और अनिल शर्मा जी हमें आगरा से मेल लिखते हैं, अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। बेटी की जन्म तारीख है 19 अक्टूबर 1990, जन्म का समय शाम के 6:51, जन्म स्थान है आगरा। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी का विवाह 2 साल पहले हुआ था और अब मेरी बेटी मायके में आके रहने लगी है, यहीं पे रहती है, यहीं पे नौकरी भी करती है, तो क्या ये शादी चल पाएगी, क्योंकि प्रयास बहुत कर रहे हैं कि ये मामला सुलझ जाए। देखिए, आपकी कुंडली के, आपकी बेटी की कुंडली के हिसाब से इस शादी के चलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में, साल 2027 के शुरुआती समय में, आपसी बातचीत और सुलह समझौते से सेपरेशन होगा और 2028 में आपकी बेटी का विवाह हो सकता है। आप अपनी बेटी को कहें कि वो रोज सुबह शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और एक मोती, लगभग 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को धारण करवाइएगा, इनको लाभ होगा। के मद्रुम योग अगर कुंडली में है, बन सकता है किसी की कुंडली में हो सकता है, अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम योग बन गया है और उसकी वजह से आप कष्ट उठा रहे हैं, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए, केमद्रुम योग से बचने के लिए क्या करें? रोज सवेरे अपनी माता के चरण स्पर्श करें। अगर माता नहीं है तो उनके चित्र को स्पर्श करें और उनको मानसिक नमस्कार करें। अगर मां नहीं है तो माता समान जो स्त्री है उसके चरण स्पर्श कर सकते हैं। सोमवार को किसी निर्धन व्यक्ति को दूध, चावल या चीनी का दान करिएगा। शरीर पर चांदी जरूर धारण करें, चांदी की चेन, चांदी का कड़ा या चांदी का छल्ला जरूर पहने। रोज शाम को चंद्रमा के निकल जाने के बाद कम से कम 108 बार चंद्र के मंत्र का जप करेंगे, ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। हर महीने में 1 बार शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाइए
और जल चढ़ाइए। अगर कोई व्यक्ति शिव जी की भक्ति करता है, शिव जी की शरण में रहता है, तो शिव जी की भक्ति से के मद्रुम योग निश्चित रूप से भंग हो जाता है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, सेहत अच्छी रहेगी, काम का दबाव कम होगा, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। वृश्चिक राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, रिश्तों को ठीक करने का प्रयास करें, दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा हरा। देखिए, केमद्रुम योग के बहुत सारे प्रभाव जीवन में पड़ते हैं, आपके धन पर, आपके मन पर, आपके रिश्तों पर और आपकी जीवन की स्थिरता पर। अगर केमद्रुम योग की वजह से आपको कोई मानसिक बीमारी हो रही है, आपकी सेहत खराब हो रही है, आपके स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव केमद्रुम योग का पड़ रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? देखिए, केमद्रुम योग ज्यादातर आपके मन को प्रभावित करेगा, तो मानसिक रोग होने की या मन की समस्या होने की संभावना ज्यादा होगी। केमद्रुम योग जब व्यक्ति के परेशान करता है तो व्यक्ति के अंदर भय बैठ जाता है, चिंता बैठ जाती है, नकारात्मक चीजें सोचने लगता है। अगर केमद्रुम योग की वजह से आपका मन खराब हो गया है, आपकी सेहत लगातार बिगड़ रही है, तो इस स्थिति में एकादशी और पूर्णिमा का उपवास आपको रखना चाहिए। महीने में दो एकादशी और एक पूर्णिमा आती है, उसका उपवास रखें। चांदी अवश्य धारण करिएगा और नियमित रूप से प्रातः काल सूर्योदय के पहले एक लोटा जल पीपल के वृक्ष में अर्पित करिएगा। केमद्रुम योग की वजह से अगर कोई मानसिक बीमारी हो गई है तो
तो मनोचिकित्सक से भी संपर्क करिए और साथ में शिव मंत्र का अधिक से अधिक जप करिए, शिव जी की अधिक से अधिक पूजा करिए। दोनों तरीकों से आप मुश्किलों से बाहर निकल आएंगे। कुछ लोगों की ये भी मान्यता है कि चंद्रमा से अगर केंद्र में ग्रह आ जाए, कोई भी ग्रह आ जाए, चंद्रमा से अगर केंद्र में कोई ग्रह आ गया तो भी केमद्रुम योग का प्रभाव कम हो जाता है। वास्तविकता ये है कि चंद्रमा को अगर बृहस्पति देखेगा तो केमद्रुम योग का प्रभाव ऑलमोस्ट समाप्त हो जाता है, लेकिन शनि देखने लगे, मंगल देखने लगे, सूर्य देखने लगे तो ऐसी स्थिति में केमद्रुम योग का प्रभाव उतना समाप्त नहीं होता, उतना बेहतर तरीके से कैंसिल नहीं होता। हाँ, उसके नुकसान में थोड़ी कमी आ जाती है। और चंद्रमा से जब केंद्र में कोई ग्रह आ जाता है उसमें भी अगर बृहस्पति केंद्र में आ गया तो चंद्रमा की निगेटिविटी काफी हद तक कम हो जाती है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, विवाह आपका तय हो सकता है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

राशि, करियर की समस्या हल होगी, परिवार की स्थितियां ठीक होंगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

मिलेगी, कोई अच्छी सूचना मिलेगी, वाहन सावधानी से चलाएं, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद अगर कोई दूध उधार मांगे तो उसको नहीं देना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, सूर्यास्त के तुरंत बाद का जो समय है वो माता लक्ष्मी के आगमन का समय है। दूध को भी लक्ष्मी का स्वरूप या प्रतीक, धन और संपन्नता का प्रतीक मानते हैं। इसीलिए लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप सूर्यास्त के बाद किसी को दूध देते हैं या किसी को उधार देते हैं दूध, तो ऐसी स्थिति में आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं।

होगा नंबर चार स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नंबर पांच रुके हुए काम पूरे होंगे, नंबर छह यात्रा के योग बन रहे हैं, नंबर सात चोट चपेट से बचाव करें, नंबर आठ यात्रा के योग बन रहे हैं, नंबर नौ धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात को 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में शिव जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से विवाह होने में जो अड़चने जो बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न प्रणव जी ने हमें लिखा है और प्रणव जी हमें बेंगलोर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 फरवरी 1975। जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग भोर में 3 बजे। जन्म का स्थान है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। में लिखते हैं बेंगलोर से। ये कह रहे हैं कि मेरे कुछ मित्रों की सलाह है कि मुझे उनके साथ मिल करके पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहिए, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? प्रणव, आपकी कुंडली के हिसाब से आप नौकरी करते रहिए और साइड में आप चाहें तो अपनी पत्नी आपके माता के नाम से व्यापार कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में पैसा लगाना या पार्टनरशिप में व्यापार करना उतना बेहतर दिखाई नहीं दे रहा है। अप्रैल 2027 के बाद आप नौकरी के साथ पैरेलल कोई व्यापार शुरू कर लीजिए, लेकिन पार्टनरशिप में व्यापार मत करिएगा। एक पन्ना बनवा के पहने, 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, चावल के 2-4 दाने अक्षत चबाकर खाकर जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो नारियल खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो सफेद रुमाल साथ में रखकर जाइएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कर्क राशि वालों के लिए।
कार्यों में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा कन्या राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। आज सावधान रहना होगा धनु राशि वालों को, चोट चपेट और दुर्घटनाओं की नौबत आ सकती है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज दशमी तिथि है। आज घर के मुख्य द्वार पर यम देवता के नाम से एक सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, इससे आयु बढ़ेगी, आयु की रक्षा होगी। और आज सफेद चीज का अगर आप दान करेंगे तो मानसिक स्थिति में सुधार होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

देश भर में वोट चोरी के खिलाफ गरमाई सियासत, चुनाव आयोग और एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्लान, आज दिल्ली में अपने राज्य प्रमुखों के साथ करेगी अहम बैठक। एसआईआर के खिलाफ देश भर में आंदोलन जारी, आज एनएसयूआई भी सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर वोट की चोरी के खिलाफ करेगी विरोध प्रदर्शन। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन जारी, 7 अक्टूबर को चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया, एसआईआर के खिलाफ भी उठाएंगे मुद्दा। सीसी ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बिना मंजूरी के लिए गए फैसलों को रद्द करने की याचिकाओं पर भी सुनवाई। एसआईआर पर घमासान के बीच हैदराबाद के नलसार में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइया का बड़ा बयान, कहा कोई भी दलील मताधिकार छीनने वाली प्रक्रिया को सही नहीं ठहरा सकती। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला, बोले चुनाव आयोग को बदनाम कर रही है कांग्रेस, जनादेश का अपमान करना कांग्रेस की आदत। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक साथ आए उद्धव और राज ठाकरे, मुंबई में विरोध मार्च में हुए शामिल। मुंबई में उद्धव ठाकरे ने ज्ञानेश कुमार को बताया बीजेपी का हथियार, कहा हम तानाशाह को उखाड़ फेंकने आए हैं। राज ठाकरे ने बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग की, कहा वोट चोरी के खिलाफ कदम उठाना जरूरी। संजय राउत की बड़ी चेतावनी, युवाओं का गुस्सा नहीं थमा तो देश में आग लगा देगी युवा पीढ़ी। दिल्ली में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडियन यूथ कांग्रेस का कैंडल मार्च, सीईसी के इस्तीफे की मांग तेज। दिल्ली पुलिस के खिलाफ इंडिया गेट से जंतर मंतर तक मार्च, सीईसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिसिया कार्रवाई से खफा। दिल्ली पुलिस का 3 अक्टूबर को किए गए ऐसा और दूसरे संगठन के प्रदर्शन का बयान बदसलूकी पर, कहा अगर किसी के पास कोई भी वीडियो हो तो क्राइम ब्रांच को दें। 3 महिला पत्रकारों से बदसलूकी के आरोप पर सियासत तेज, कांग्रेस ने मोदी शाह पर साधा निशाना। दिल्ली पुलिस ने वायरल वीडियो को बताया फर्जी, कहा महिला पत्रकारों से बदसलूकी का वीडियो दिल्ली पुलिस को नहीं। दिल्ली में जंतर मंतर पर हुए रविवार के प्रदर्शन में 15 पुलिसकर्मी घायल, करीब 110 प्रदर्शनकारी हिरासत में। ओवैसी का बीजेपी आरएसएस पर बड़ा आरोप, फॉर्म 7 के जरिए वोटर लिस्ट से नाम हटाने की साजिश का दावा किया। कांग्रेस अध्यक्ष के मोदी को गैर कानूनी बताने वाले पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार, पूछा क्या आप गैर कानूनी हैं खड़गे जी, क्या राहुल गांधी भी हैं गैर कानूनी सांसद। पटना में बीजेपी के शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी खड़गे का पलटवार करते हुए कहा उनका बयान 140 करोड़ भारतीयों का अपमान। राहुल गांधी के डिजिटल सत्याग्रह पर बोले चिराग पासवान, कहा सत्याग्रह नाम अच्छा लेकिन विपक्ष को झूठ और भ्रम फैलाना छोड़ सच बोलना चाहिए। यूपी में कांग्रेस एसपी में सीट बंटवारे को लेकर जुबानी जंग के बीच, बोले अखिलेश यादव बात सीट की नहीं जीत की है। अखिलेश ने योगी सरकार से लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा डबल इंजन अब बन गया है ट्रबल इंजन, जनता बीजेपी से मुक्ति का ले चुकी है संकल्प। यूपी में सीट बंटवारे पर कांग्रेस का बयान, यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र गौतम बोले मैंने 200 सीटों की बात की थी, सीटें मिलेंगी तभी जीत संभव। भदोही में सीएम योगी ने अखिलेश राज पर साधा निशाना, बोले 2017 से पहले राज्य का खजाना था खाली, यूपी अब देश का ग्रोथ इंजन। भदोही का नाम बदलकर अब होगा संत रविदास नगर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान। समाजवादी पार्टी के स्थापना के 34 साल होने पर बीजेपी का हमला, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के 34 साल का हिसाब गुंडाराज और माफिया राज के नाम से जारी किया 4 पेज का ब्रोशर। उत्तराखंड की खटीमा में उत्तराखंड आदि रंगोत्सव का सीएम धामी ने किया शुभारंभ, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सम्मान और सशक्तिकरण को मिली नई गति। खटीमा में सीएम धामी ने निकाला रोड शो, केंद्रीय मंत्री रिजिजू और ज्वेल उरांव भी हुए शामिल। 15 दिनों तक चलेगा उत्तराखंड आदि रंगोत्सव। उत्तराखंड गुजरात के बाद यूसीसी को लेकर बंगाल में भी बड़ा ऐलान, सीएम शुभेंदु अधिकारी बोले 6 महीने के भीतर लागू होगा यूसीसी। बीजेपी का कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना, पूरी दुनिया स्मित मचार की तारीफ कर रही है लेकिन गांधी परिवार ने मचार के लिए एक शब्द नहीं बोला, गाजा पर आंसू बहाने वाले मचार पर चुप क्यों। अनंत सिंह नीरज कुमार विवाद के बीच निशांत कुमार का बयान आया सामने, कहा पटन स्नातक सीट पर नीरज कुमार को जिताई। करनाल में मार्केट कमेटी के सामने किसानों का प्रदर्शन, सीएम नायब सिंह सैनी का पुतला फूंका गया, कहा जल्द सरकार ने धान खरीद को सुचारू रूप से नहीं किया तो सड़कों पर उतरेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट, उत्तराखंड से दिनेश आर्य को बनाया गया उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल से बीजेपी ने रुक्मणी मलिक उर्फ कोयल मलिक को राज्यसभा के लिए बनाया प्रत्याशी। टीएमसी राज्यसभा सांसद से 16 जुलाई को इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुई थी रुक्मणी मलिक। कोलकाता में सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के बाहर हिंदू जागरण मंच का प्रदर्शन, संस्थान के छात्रों पर भारत माता की तस्वीर फाड़ने और स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर पैर रखने का आरोप। कैप्टन स्मिथ मचार को जल्द स्वस्थ होने की कामना में आसनसोल में महामृत्युंजय जाप और हवन यज्ञ किया गया, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैप्टन स्मिथ के लिए दुबई के वापस मंदिर में भी दुआओं का दौर शुरू, यूएई से संपर्क में है भारत की एम्बेसी।
दिल्ली में आज स्टीवेंट क्रिकेट लीग में समापन समारोह में शामिल हुए आशीष सूद। दिल्ली में 5 स्टेडियम्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का किया ऐलान। ओडिशा के भुवनेश्वर में जीवन जिंदाबाद 2.0 अभियान की शुरुआत। राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया कार्यक्रम। कार्यक्रम में कई नाट्य प्रस्तुतियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए हैं पेश। सीएम मोहन चरण माझी इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के तौर पर हुए शामिल। बिहार के छपरा में बांध टूटने से गुस्साए ग्रामीणों ने इंजीनियर और एसडीओ को बाढ़ के पानी में फेंकने की कोशिश की, किसी तरह से दोनों की बची जान। बिहार के बगहा में बाढ़ से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे। करीब 1,000 परिवारों को पहुंचाई राहत सामग्री। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ के पानी में डूबी किताबें दिखाकर छात्र ने शिक्षा मंत्री से पूछा सवाल, वीडियो वायरल। बिहार के सारण में गंडक नदी का कहर, ड्रोन कैमरे में कैद जल प्रलय का खौफनाक मंजर आया सामने। कई गांव जलमग्न हुए, घर खेत रास्ते सब पानी में डूबे। लखनऊ में गोमती नदी का रौद्र रूप, खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर। बाढ़ का संकट गहराया, कई इलाके जलमग्न। तमिलनाडु में भारी बारिश, बल प्रलय में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, ट्रैफिक पर पड़ा असर। शामली में अंकित बालियान हत्याकांड में 3 इनामी आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा। सोनीपत करनाल में घरों की कुर्की। पंजाब पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का किया पर्दाफाश। सीमा पार ड्रोन से भेजी गई AK-47 और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद। गुजरात के जूनागढ़ में तेज रफ्तार बाइक का बिगड़ा संतुलन, रिक्शा को ओवरटेक करते समय युवक को मारी गई टक्कर, मौके पर हुई मौत। हैदराबाद के सिकंदराबाद में देरी से फूड डिलीवरी पर बवाल, दंपति ने डिलीवरी एजेंट को जमकर पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया केस। जयपुर में पिटाई के विरोध में सड़क पर उतरे छात्र, पुलिस ने लाठीचार्ज पर

विवाद में चली कई राउंड की गोली, एक शख्स को गोली लगी और गुस्साए लोगों ने महंत की गाड़ी को किया आग के हवाले। बिहार के जमुई में दो गर्भवती महिलाओं की मौत मामले में प्राइवेट क्लिनिक पर छापेमारी, जिला प्रशासन ने क्लिनिक को किया सील। उत्तराखंड के विकास नगर में खौफनाक सड़क हादसे का लाइव वीडियो आया सामने, एक शख्स उत्तराखंड में मौत हुई, दो घायल। लुधियाना में चचेरे भाई निकला पूर्व सरपंच का कातिल, जमीनी विवाद में कार्रवाई। बिहार के बांका में नाबालिग लड़की से छेड़खानी और जबरन मांग से सिंदूर डालने का आरोप लगा, मामला सामने आया और छह युवकों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के औरैया में कलयुगी बेटी ने ही मां को मौत के घाट उतारा, आरोपी बेटा गिरफ्तार। इंदौर में गोलीकांड का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार, एक नाबालिग भी हिरासत में लिया गया। अहमदाबाद में आरोपियों की कार के दरवाजे पर लटक कर इंस्पेक्टर के ने कार रोकी और खेड़ा रेलवे स्टेशन से 4.25 करोड़ रुपए के सोने की लूट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के वसई में परिवहन बस की बाइक को टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। अलवर में सेक्सटॉर्शन के नाम पर साइबर ठगी करने वाले बदमाश गिरफ्तार, एआई की मदद से लड़की बनकर बनाता था अश्लील वीडियो। अलीगढ़ में 45 किलो चरस के साथ चार तस्कर गिरफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 करोड़ बताई जा रही है 45 किलो चरस की कीमत। चंदौली में 1.5 करोड़ की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त, हरियाणा से बिहार ले जाते समय कार्रवाई। करनाल में 20 साल के बच्चे की हत्या मामले में 3 गिरफ्तार, कोर्ट ने एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। ग्रेटर नोएडा में दुकान का लेंटर गिरने की वजह से मजदूर की मौत हुई, एक घायल। बिहार के रोहतास में पारिवारिक विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या की, आरोपी गिरफ्तार। आगरमालवा के नलखेड़ा में व्यापारी से लूट के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करीब 14 किलो चांदी के साथ 8 आरोपी गिरफ्तार। असम के जोरहाट में नाव पलटने से बच्चे समेत 3 की मौत, छोटी नाव में थे सवार। बिहार के बेगूसराय में सोशल मीडिया पर पत्नी की तस्वीर लगाने से मना करने पर पड़ोसी ने पति पत्नी को मारी गोली, दोनों घायल। यूपी के इटावा में महादेव गेम के नाम पर करोड़ों का खेल, 15 लाख कैश के साथ 3 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सीआईएसएफ जवान की गर्लफ्रेंड की संदिग्ध मौत, साथ में रह रही थी मृतका। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में 6 लोगों पर तेंदुए का हमला, 3 की हालत नाजुक, घर में घुसकर किया वार। हल्द्वानी में घर के बाहर खड़ी स्कूटी से निकला सांप, 8 फीट लंबे सांप को स्नेक कैचर ने पकड़ा। वहीं हिमाचल के सोलन में सैलानियों का सैलाब, दिल्ली शिमला हाईवे पर लगा लंबा लंबा जाम। लॉन्ग वीकेंड पर मसूरी में उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़, 80% से ज्यादा होटल रहे बुक। सुहाने मौसम का सैलानी आनंद लेते दिखे, मॉल रोड पर दिखी सैलानियों की भारी भीड़, कारोबारियों के खिले चेहरे। बागेश्वर धाम आने वाली महिला भक्तों से बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अपील, महिलाएं अकेली ना आए धाम। धर्मशाला में पर्यटकों की भारी भीड़, बदले मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। एशियन गेम्स में देश के लिए मेडल जीतकर वतन लौटे पदकवीर, एयरपोर्ट पर एथलीट्स का भव्य तरीके से हुआ स्वागत। एशियन गेम्स में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद स्वदेश लौटे क्रिकेटर संजू सैमसन, ईशान किशन और अर्षदीप सिंह। मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे, परिवार ने किया वेलकम घर रवाना।

गोल्फ टीम इवेंट में देश को सिल्वर मेडल दिलाने वाली जज्जर की बेटी दीक्षा डागर का शानदार स्वागत, देश के लिए पदक हासिल करने को बताया ऐतिहासिक पहल। सिल्वर मेडलिस्ट पहलवान अंतिम पंगाल का भी वतन वापसी पर हुआ जोरदार तरीके से स्वागत।

0: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
1: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
0: असली शहद, असली स्वाद।
2: एक दो, एक श्राम।

0: इट्स अ माय वे
1: सर, गैसोफास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
2: गैसोफास्ट 27%,
1: इनो 9.2%।
3: गड़बड़ है।
4: आहा, गैसोफास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसोफास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
5: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर, एक बार दो थमका लगाने बस।
6: मेरे पास एक आइडिया है।
5: क्या?
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
7: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
8: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
9: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: कौन सी बनानी है?
10: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
11: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
12: जीके मैक्स।
13: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
12: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
14: जेके वॉल मैक्स
15: बेस्ट पेंट,
16: जेके मैक्स।
17: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
18: JK Maxx Paints.
17: JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।
19: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ
1: एक हिंट तो देते।
2: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
3: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो

0: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
0: अब मैं चैन की नींद सो पाता कपीवा डायफ्री जूस।
2: इन एसोसिएशन विद
3: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
4: भर्ती बोर्ड और आयोग तब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं और वहां से पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं, जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। और यह पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है कल भी है, 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: सर, गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
3: गैसो फास्ट 27%,
2: इनो 9.2%।
4: गड़बड़ है।
5: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सोल्यूशन।
6: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर, एक बार दो थमका लगाने पर
7: मेरे पास एक आइडिया है।
6: क्या?
7: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
8: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
9: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
10: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
11: कौन सी बनानी है?
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
13: और भाई, कहाँ गए थे घूमने?
14: जीके मैक्स।
15: वैसे रोहन, पढ़ाई में कैसा है?
14: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
16: जेके वॉल मैक्स
14: बेस्ट पेंट,
17: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
18: एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों के बीच सीईसी ज्ञानेश कुमार पर संग्राम बढ़ता जा रहा है। मांग इस्तीफे की हो रही है, शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा तेज होता जा रहा है, दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार जंग छिड़ी है, मुंबई में भी विरोध की आग धधक रही है। इस बीच सीईसी के बहाने केंद्र सरकार पर सियासी हमले भी तेज होते जा रहे हैं। अब विवाद के बीच बड़ा हमला हुआ है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो हाल के सालों में हुए सभी चुनाव को गैर कानूनी बता रहे हैं, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
19: देश जो चल रहा है वो इलीगल इलेक्शन पे चल रहा है। मोदी इलीगल प्राइम मिनिस्टर, शाह इलीगल मिनिस्टर, और जितने भी अब चीफ मिनिस्टर्स बने कहां के भी, वो सब इलीगल। सबको डिसॉल्व करना, इलेक्शन कराना और बैलेट पे इलेक्शन कराना, क्योंकि ईवीएम का मिसयूज हो रहा है, ये खुद ही उनके लोग कर रहे हैं।
18: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेताओं के हमले तेज हैं। तमाम संगठनों ने भी सड़क पर मोर्चा खोल रखा है। इस बीच सरकार और विपक्ष में वार पलटवार का दौर चल रहा है। विपक्ष सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। चर्चा ये भी है कि विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर भी विचार कर रहा है। इस सब के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
19: जो चल रहा है वो इलीगल इलेक्शन पे चल रहा है। मोदी इलीगल प्राइम मिनिस्टर, शाह इलीगल मिनिस्टर, और जितने भी अब चीफ मिनिस्टर्स बने कहां के भी, वो सब इलीगल। सबको डिसॉल्व करना, इलेक्शन कराना और बैलेट पे इलेक्शन कराना, क्योंकि ईवीएम का मिसयूज हो रहा है।
3: मल्लिकार्जुन भले गांधी परिवार के दास हो सकते हैं, देश का लोकतंत्र मजबूत है। कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रहा, ये मुस्लिम लीग कांग्रेस है, जो सोची समझी रणनीति के तहत देश के संवैधानिक संस्थान के ऊपर आरोप लगाना, देश में भ्रम फैलाना, ये काम हो गया है राहुल गांधी एंड कंपनी का। या तो वो सत्ता भोगेंगे नहीं तो देश को जलाने की योजना बनाएंगे।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

कांग्रेस की अहम बैठक, राज्यों के पार्टी प्रमुखों के साथ हल्ला बोल, प्लान पर चर्चा। सीसी को सस्पेंड करने और बिना अधिकार और मंजूरी के लिए गए फैसलों पर रद्द करने वाली अर्जी पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। केरल सरकार ने खोली ज्ञानेश कुमार की पुरानी फाइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खड़गे के गैर कानूनी वाले बयान को लेकर बीजेपी का पलटवार, रिजिजू ने उठाए सवाल, पूछा क्या वो खुद और राहुल भी है अवैध सांसद।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा। एक बार फिर से इस खास बुलेटिन सुपर 8 में आधे घंटे के बुलेटिन में कई अहम खबरों का जिक्र करेंगे, बताएंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्या है कांग्रेस की रणनीति, जिक्र जम्मू कश्मीर का भी होगा जहां पर आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रदर्शन की तैयारी में है। खबर यूपी में एसपी और कांग्रेस के तालमेल वाले सस्पेंस की भी आपको डिटेल के साथ बताएंगे। बात सीएम योगी के अयोध्या दौरे की भी होगी और ये भी आपको दिखाएंगे कि बंगाल में क्या है शुभेंदु का यूसीसी प्लान। खबरें बिहार और यूपी में बाढ़ संकट की भी होगी, साथ ही फ्लाई दुबई प्लेन वाले को पायलट की खौफनाक साजिश का खुलासा भी करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे यूक्रेन पर रूस ने मिसाइल दागकर तबाही मचा दी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुपर 8 की इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ, फ्लाई दुबई विमान से जुड़ी खबर। इस पूरे मामले में आरोपी को पायलट से पूछताछ के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। सामने आया है कि को पायलट इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश करना चाहता था। एयरपोर्ट के मुताबिक, इस रिपोर्ट के मुताबिक ओमान के को पायलट हमाम अल हमामी ने फ्लाई दुबई की फ्लाइट पर कब्जा करने की कोशिश की थी और इसे भारतीय पायलट स्मित मचार ने नाकाम कर दिया था। रिपोर्ट ये भी है कि आरोपी को पायलट ने जुलाई में भी हमले की साजिश रची थी लेकिन तब उसने अपनी साजिश को आखिरी समय पर रद्द कर दिया था। चैनल 12 और वाई नेट की रिपोर्ट है कि को पायलट हमामी ने यूएई में जांच अधिकारियों को इस प्लान के बारे में बताया और इस बार कैप्टन पर हमला कर कॉकपिट का कंट्रोल लेने और फ्लाइट को सामान्य रूप से जारी रखने की साजिश थी। फिर उसे आखिरी समय में एयरपोर्ट पर किसी बिल्डिंग या फिर दूसरे प्लेन से टकराने की साजिश थी। खुलासा यह भी हुआ है कि आरोपी को पायलट ने हाल के महीनों में कई बार बेन गुरियन एयरपोर्ट पर दौरा भी किया था और जून के दौरे का इस्तेमाल जानकारी इकट्ठा करने और हमले की योजना बनाने के लिए किया गया था। 30 सितंबर को आरोपी हवामी ने कैप्टन स्मित मचार पर हमला किया, चाकू मारा उन्हें, लेकिन कैप्टन कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहे और इसके बाद कई यात्रियों ने हमामी का सामना किया और उसे काबू में किया। तो एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है और साथ ही आपको ये बता दें कि बड़ा खुलासा भी किया गया है इस पूरे मामले को लेकर कि वो कहां पर हमले की साजिश रच रहा था। प्लेन क्रैश करना चाहता था ये को पायलट, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। को पायलट प्लेन पर कब्जा करना चाहता था, साथ ही बेन गुरियन एयरपोर्ट पर क्रैश की साजिश उसने रची हुई थी। बिल्डिंग या फिर दूसरे प्लेन से टकराने की उसकी साजिश थी जो कि नाकाम हो गई। जुलाई में भी रची गई थी हमले की साजिश लेकिन वो किसी कारण वजह से नहीं हो पाई। जुलाई में अचानक से उसने रद्द कर दी थी अपनी साजिश और उसके बाद एक बार फिर से ये कोशिश की गई। प्रणय हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। प्रणय, जुलाई में भी एक साजिश रची गई थी जो नाकाम हो गई, उसके बारे में क्या जानकारी है? और प्रणय, जिस तरीके से बताया जा रहा है प्लेन क्रैश वो करना चाहता था कोपायलट, एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया है प्रणय।
1: निश्चित रूप से पूजा, फ्लाई दुबई की फ्लाइट SZ1073 30 सितंबर को जिस तरीके की घटनाक्रम से गुजरी उसके जो डिटेल्स अब सामने आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले डिटेल्स हैं, क्योंकि ये सामने आ रहा है पूछताछ के बाद जो अक्यूज को पायलट था कि उसकी योजना बेन गुरियन एयरपोर्ट जो कि तेल अवीव का सबसे व्यस्ततम और बड़ा एयरपोर्ट है उसके ऊपर इस विमान को किसी बिल्डिंग से टकराने की योजना थी। और अगर आप देखें कि फ्लाइट पाथ के अंदर ये घटना जिस समय हुई उस समय में वो विमान जॉर्डन और सऊदी अरब की सीमा पर था और पूरी योजना भी यही थी कि जॉर्डन के क्रॉस करने के बाद, क्योंकि वहां से तेल अवीव तक की दूरी बहुत कम बचती है, जो अक्यूज को पायलट था, हमलावर जो को पायलट था, उसकी योजना थी कि जॉर्डन की हवाई सीमा में दाखिल होते ही वो विमान का कंट्रोल पूरी तरह अपने साथ ले रहे। कैप्टन स्मित मचार के पर हमले के पीछे भी मंशा यही थी कि उनको डिसेबल कर दिया जाए, वो किसी तरीके से विमान को कंट्रोल करने की स्थिति में ना हो और उसके बाद पूरा विमान वो सामान्य रूप से उड़ाए और उसके बाद तेल अवीव के एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान ही अचानक टर्न लेकर और विमान को किसी बिल्डिंग से या किसी दूसरे विमान से टकराने की योजना थी ताकि जो सैकड़ों जिंदगियां हैं वो संकट में आ सके और ये जो बेहद खतरनाक मंसूबा था वो कैप्टन स्मित मचार की सूझबूझ और उनके साहस से नाकाम हुआ है। लेकिन ये निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल भी छोड़ता है, क्योंकि क्या कहीं कोई चूक हुई, क्या पायलट की प्रोफाइलिंग ठीक से नहीं की गई या इस तरीके की चीजों की जानकारी क्यों नहीं पहले मिल पाई, क्योंकि अब जो डिटेल सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक उस कथित ओमानी पायलट को पहले ओमान एयर ने ग्राउंड किया था, रेडिकलाइजेशन का जो कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहा था, कहीं ना कहीं कुछ चूक जरूर हुई है जो अब डिटेल सामने आ रहे हैं। उसके बाद ये जो सारी चीजें सामने आती हैं ये बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है।
0: चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं एक और खबर, यूक्रेन की राजधानी कीव में हुई रूसी ड्रोन हमले की। दरअसल एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें कीव के नॉर्थ ब्रिज पर ड्रोन हमले की तस्वीर कैद है और यह हमला रविवार 4 अक्टूबर को उस वक्त हुआ जब जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज राष्ट्रपति जेलेंस्की के समर्थन में कीव पहुंचे थे और कीव के मेयर के मुताबिक हमले में पुल के सड़क वाले हिस्से को निशाना बनाया गया और इसी हिस्से पर शनिवार को भी हमला हुआ था। वीडियो और तस्वीरों के आधार पर हमले की जगह की पुष्टि की गई है। रूस पिछले एक हफ्ते से कीव के पुलों को निशाना बना रहा है। बताया जा रहा है कि इसका मकसद राजधानी के दोनों हिस्सों के बीच संपर्क और यूक्रेन के अहम लॉजिस्टिक्स मार्गों को बाधित करना है। ड्रोन हमले का वीडियो भी सामने आया है, तस्वीर आप देखिए। और अब एक खबर यमन के हूती विद्रोहियों की, जिन्होंने दावा किया है कि रविवार को उन्होंने रियाद और हुरैज इलाके में सऊदी अरामको कंपनी की साइट्स पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। उनके दावों के मुताबिक इन हमलों से वहां पर भीषण आग लग गई और ये कार्रवाई यमन पर सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के 50 हवाई और मिसाइल हमलों के जवाब में की गई है। 50 हवाई और मिसाइल हमले के जवाब में यह अटैक किया गया है, ये दावा किया जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर आज सियासी घमासान तेज होने वाला है। एक तरफ कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है तो दूसरी ओर एनएसयूआई की ओर से भी प्रदर्शन की तैयारी है। वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यकर्ता सेव डेमोक्रेसी के नारे के साथ प्रदर्शन करने वाले हैं। एक बड़ी खबर यह भी है कि चुनाव आयोग को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिकाओं में उनके कथित तौर पर बिना पूरी चुनाव आयोग की सहमति के फैसले लेने और कुछ फैसलों को रद्द करने की मांग भी की गई है। ऐसे में आज सड़क से लेकर अदालत तक चुनाव आयोग को लेकर सियासी और कानूनी हलचल देखने को मिलेगी। तो वही चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का विरोध अब और तेज होता जा रहा है क्योंकि आज कांग्रेस नई दिल्ली में एआईसीसी प्रभारियों और साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और वरिष्ठ संगठन पदाधिकारियों की एक अहम बैठक करने वाली है और इस बैठक में चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के विरोध में प्रस्तावित आंदोलन की रणनीति भी तय की जाएगी। बैठक में एआईसीसी प्रभारी शामिल होंगे। एक अहम बैठक आज होने वाली है जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। एसआईआर के विरोध में प्रस्तावित आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पूरे प्रदर्शन की तैयारी कांग्रेस की तरफ से है और एक अहम बैठक आज इसको लेकर होने भी वाली है। दरअसल 4 अक्टूबर मुंबई में उद्धव राज का प्रदर्शन वही एसआईआर रद्द करने की वहां पर मांग की गई और आज इलेक्शन कमीशन के खिलाफ विरोध को लेकर कांग्रेस की एक अहम बैठक होने वाली है जिसमें चर्चा की जाएगी इस मुद्दे पर। जम्मू कश्मीर में विपक्ष का सेव डेमोक्रेसी मार्च भी होने वाला है तो इन तमाम जगहों पर प्रदर्शन होने वाले हैं। 4 अक्टूबर को मुंबई में और आज इलेक्शन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सड़कों पर होगा। चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन के बीच नेताओं के बयानों ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। मुंबई में उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में सजा नहीं मिलती तब तक वो पीछे नहीं हटने वाले। वहीं संजय राउत ने युवा पीढ़ी के गुस्से का जिक्र करते हुए सरकार को आगाह किया। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में एसआईआर प्रक्रिया रद्द करने और ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी दोहराई। तो वहीं शरद पवार ने कहा कि ये मुद्दा सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है बल्कि पुणे और नागपुर में भी उठ रहा है। दूसरी ओर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी चुनावी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रही है। वहीं आपको भी बता दें कि उधर आज एनएसयूआई भी चुनाव आयोग और सीईसी के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहा है तो ये प्रदर्शन जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे से शुरू होने वाला है। दिल्ली में जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन होगा। एनएसयूआई ये दिल्ली में प्रदर्शन करने वाला है। चुनाव आयोग के विरोध में एनएसयूआई की तरफ से प्रदर्शन होगा जो कि सुबह 10 बजे जिसकी शुरुआत होगी। तो वही सुप्रीम कोर्ट आज मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने और उनके द्वारा कथित तौर पर लिए गए अनधिकृत फैसलों को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयोग के अन्य दो आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी इनकी सहमति के बिना कई महत्वपूर्ण फैसले दिशा निर्देश और सॉफ्टवेयर में बदलाव किए। याचिका में मांग की गई है कि यदि ये फैसले चुनाव आयोग की सामूहिक सहमति के बिना लिए गए हैं तो उन्हें असंवैधानिक और शून्य घोषित किया जाए। साथ ही अंतिम सुनवाई तक सीसी को उनके पद के कार्यों से निलंबित करने की मांग भी की गई है। तो मामले में मतदाता सूची के एसआईआर फॉर्म 6 में कथित बदलाव और गोवा और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से जुड़े विवादों का भी उल्लेख है। तो वहीं चुनाव आयोग ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि संस्थागत विचार विमर्श में अलग अलग राय होना सामान्य प्रक्रिया है और उसके सभी आदेश कानूनी प्रक्रिया के तहत जारी भी किए गए। तो अब जो सुनवाई होने वाली है उसको लेकर समझिए, सीईसी के सस्पेंशन की मांग इसको लेकर होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है जिसमें सस्पेंशन की मांग होगी और कहा जाएगा कि कथित अनधिकृत फैसलों को जल्द से जल्द रद्द किया जाए, तो इसकी भी मांग आज उठने वाली है। वहीं दो चुनाव आयुक्तों की मंजूरी के बिना जो भी फैसले अभी तक लिए गए हैं और फैसले लेने का आरोप भी लगाया गया है। मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण का पर भी विवाद लगातार बढ़ रहा है। तो सीईसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। फॉर्म 6 में कथित बदलाव पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही आपको ये बता दें कि सॉफ्टवेयर में नियमों के खिलाफ जो बदलाव किए गए हैं जिनके आरोप लग रहे हैं उनको लेकर भी आज सुनवाई होने वाली है। गोवा में 97 मतदाताओं से जुड़ा पूरा मामला भी आज सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा। तो साथ ही बंगाल में 16.10 लाख अपीलों का भी दावा किया गया है। तो इन तमाम मुद्दों पर सुनवाई होने वाली है। सीसी के सस्पेंशन की मांग होगी और इसको लेकर आरोप ये लग रहे हैं कि सीसी और अधिकारियों पर आपराधिक आरोप है, वही प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। सामूहिक निर्णय प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है ये आरोप लगाया जा रहा है। वही इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बयान सामने आ रहे हैं। तो अब सुनवाई भी आज होनी है और इलेक्शन कमीशन ने आरोपों को लगातार सिरे से खारिज किया है। जो आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगाए जा रहे हैं उनका कहना है कि अलग अलग राय होना सामान्य प्रक्रिया का एक हिस्सा है। वहीं आपको ये बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि सभी आदेश कानूनी प्रक्रिया के तहत ही जारी किए जाएंगे। और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने SIR, EVM और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खड़गे ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को भंग कर नए चुनाव बैलेट पेपर के कराने की मांग की है। खड़गे के ताजा हमलों के बीच सियासी तनातनी और ज्यादा बढ़ गई है।
2: SIR प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों के बीच CEC ज्ञानेश कुमार पर संग्राम बढ़ता जा रहा है। मांग इस्तीफे की हो रही है, शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा तेज होता जा रहा है। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान ने देश की सियासत को सुलगा दिया है। पहले खड़गे का वो बयान सुनिए।
3: मोदी इलीगल प्राइम मिनिस्टर, शाह इलीगल मिनिस्टर और जितने भी अब चीफ मिनिस्टर्स बने कहां के भी, वो सब इलीगल, सबको डिसॉल्व करना, इलेक्शन कराना और बैलेट पे इलेक्शन कराना, क्योंकि EVM का मिसयूज हो रहा है।
2: खड़गे के मुताबिक 2014 के बाद से बीजेपी की जितनी सरकारें बनी हैं, जितने मंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं, सब इलीगल हैं। खड़गे का ये बयान बीजेपी को तीर की तरफ चुभा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खड़गे को गांधी परिवार का दास बता दिया।
4: मल्लिकार्जुन भले गांधी परिवार के दास हो सकते हैं, देश का लोकतंत्र मजबूत है।
2: शिवराज सिंह चौहान ने भी खड़गे पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि खड़गे चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं।
5: चुनाव हारने पर चुनाव आयोग को बदनाम करना, जनता के जनादेश का अपमान करना, ये कांग्रेस के DNA में है।
2: इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अवैध वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया है। रिजिजू ने सवाल उठाया कि अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राज्यों की सरकारें अवैध हैं, तो क्या खड़गे खुद अवैध सांसद हैं? क्या राहुल गांधी भी अवैध सांसद हैं? रिजिजू ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के मुख्यमंत्रियों का भी जिक्र किया। वहीं राहुल गांधी और खड़गे पर शाहनवाज हुसैन ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, कांग्रेस 140 करोड़ जनता का अपमान कर रही है।
6: मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी को गाली नहीं दे रहे, इलीगल रूप से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नहीं कह रहे, बल्कि देश के 140 करोड़ जनता को गाली दे रहे हैं।
2: अब एक तरफ चुनाव आयोग का विरोध हो रहा है और दूसरी तरफ खड़गे के बयान पर सियासत धधक रही है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब खबर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो आज अयोध्या दौरे पर जा रहे हैं और वहां पर सीएम योगी साधु संतों से मुलाकात करेंगे। श्री उदासीन संगम ऋषि आश्रम में संतों से संवाद और आशीर्वाद का कार्यक्रम आज उनका है। अयोध्या दौरे के दौरान धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होने वाले हैं। तो उधर 2027 चुनाव को लेकर यूपी की सियासत भी तेज है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाति और क्षेत्र के नाम पर समाज को बांटने वाली ताकतों पर निशाना साधा। कल एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि भारत को जातीय खेमों में बांटा गया है और देश बनाने की सोच सही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आज भी कुछ तत्व जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज की एकता को कमजोर करने का काम कर रहे हैं।
7: गुलामी के कालखंड में भी एक तबका था जो समाज को बांट रहा था, विभाजित कर रहा था, और एक तबका ऐसा भी था जो समाज को जोड़ रहा था, और फिर उस एकता की ताकत के बल पर भारत की स्वाधीनता की हुंकार भी भर रहा था। बांटने वाले तत्व तब देश की स्वाधीनता का विरोध करते थे, लेकिन इस समाज को बांटने का पाप करते थे। आज भी वे बांटने वाले तत्व जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य वादों के आधार पर इस समाज की एकता को छिन्न भिन्न करने का काम कर रहे हैं।
0: तो एक तरफ सीएम योगी का हमला, तो दूसरी तरफ अखिलेश का पलटवार। अखिलेश यादव ने पलटवार किया, उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मंदिर में चोरी से लेकर संविधान, बाबा साहेब और हाथरस की बेटी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। अखिलेश ने कॉरिडोर, पुल, एक्सप्रेसवे और मंदिर के नाम पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। किसान, युवाओं, भर्ती और आरक्षण के मुद्दे भी उठाए गए। बुलडोजर कार्रवाई और विपक्ष पर मुकदमों को लेकर भी निशाना साधा गया। तो करीब 50 बिंदुओं में बीजेपी पर हमला करते हुए अखिलेश ने डबल इंजन वाला तंज भी कसा है। तो देखिए, यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। अब कांग्रेस ने कहा है कि उन्हें 200 सीटें चाहिए। यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने समाजवादी पार्टी से 150 सीटें मांगने के सवाल पर कहा कि उन्होंने 200 सीटों की बात कही, यानी कांग्रेस 200 सीटें चाहती है। और उन्होंने अखिलेश के एक बयान को लेकर सवालिया लहजे में कहा है कि ज्यादा सीटें मिलेंगी तभी तो चुनाव जीतेंगे।
8: 150 सीटों की कथित तौर पर मांग की गई थी आप ही की तरफ।
9: किसने किया 150 का? मैंने तो 200 की बात की थी। जिनके साथ हमारा गठबंधन है इंडिया ब्लॉक में, यूपी में तो हम दो पार्टी हैं, मैं बेसिकली तो कांग्रेस और सपा है, दोनों जिम्मेदार हैं, एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं और एक दूसरे को साथ के लेके भी चलना है। तो निश्चित तौर पर सीट शेयरिंग का मामला हमें अक्टूबर में निपटा लेना चाहिए ताकि हम अपने, कह रहा हूँ और साथ में ये भी कह रहा हूँ, हम लोग लचीले हैं भारत के संविधान की तरह। सम्मान की बात आए तो भारत के संविधान की तरह रिजिड है, सीट शेयरिंग की बात आएगी तो भारत के संविधान की तरह लचीले भी हैं, फ्लेक्सिबल भी हैं। थोड़ा बहुत झुकना पड़ेगा, झुकेंगे, क्योंकि जीतना जरूरी है, तो जीतने के लिए तो लड़ रहे हैं हम।
8: बट वो कह रहे हैं कि बात जीत की जाए
9: सीट। हाँ, तो हम भी तो जीत की कर रहे हैं।
8: आप सीट की बात कर रहे हैं,
9: सीट मिलेगी तभी तो जीतेंगे, चुनाव लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे, बिना लड़े कोई जीतता है क्या?
0: दरअसल अखिलेश ने कहा था कि यूपी चुनाव में जीत ही सीट का आधार है। देखिए,
10: किससे?
11: राहुल गांधी जी से, गठबंधन के बारे में, सीटों के बारे में, क्योंकि पार्टी के बारे में नहीं कह रहे, उनके बारे में।
10: हमारी रणनीति यही है जो दिखाई दे रही है आपको। कभी कभी विरोधी लोगों से भी सीखना चाहिए, विपक्ष के लोगों से भी सीखना चाहिए। वो लगता है झगड़ा कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर मिले रहते हैं। समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, जीत ही आधार है, जीत ही सीट का आधार है।
0: तो वही लखनऊ में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी किसी के लिए लाल कालीन नहीं बिछाएगी और मुसलमान सिर्फ वोट बैंक नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
12: हम कहते हैं हम दरी नहीं बिछाएंगे, हम ये कहते हैं कि हम वोट बैंक नहीं है, हमको हमारा हक मिलना चाहिए। हम ये कहते हैं कि मुसलमानों की एक पॉलिटिकल एजेंसी होनी चाहिए। तो अब जाहिर है कि जो लोग सच्चाई को का इनकार करते हैं और जो राइट है, जो जस्टिस होना चाहिए, उससे इनकार करते हैं तो ज्यादा तकलीफ होती होगी।
0: तो वहीं बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। सारण से लेकर बगहा और गोपालगंज तक पानी ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। कहीं पर घर और खेत पानी में डूबे हैं तो कहीं पर स्कूल और बच्चों की किताबें। वहीं लखनऊ में भी बाढ़ का असर दिखाई दे रहा है। तस्वीरें देखिए, बिहार से यूपी बाढ़ के प्रकोप पर ये तस्वीरें अलग अलग सामने आ रही है। सारण, लखनऊ, बगहा और गोपालगंज सड़कों पर सैलाब आ चुका है। चलिए सुपर एट में वक्त हो गया, एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मजा आएगा, देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, पर इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: विश्राम।
1: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
2: एक हिंट तो देते।
3: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
4: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
5: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन के गीत सुना।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
3: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
2: असली शहद, असली स्वाद।
4: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
5: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
4: स्मॉल बैंक,
5: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीएफ, देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम।
4: ओके
5: उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
4: आगे आगे, अरे उधर उधर गया। करेक्ट करेक्ट,
6: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: सर, गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
8: गड़बड़ है।
9: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसोफा, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
10: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार रोटी ठुमका लगाने बस।
11: मेरे पास एक आइडिया है।
10: क्या?
11: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुमटा टीएमटी बार से जो बना है।
12: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
13: क्योंकि वो मजबूत रुमटा टीएमटी से बना है।
14: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
15: कौन सी बनानी है?
16: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
17: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
18: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
19: इट्स अ माय वे।
20: गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
21: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
22: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
23: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर, तरक्की का ऑलराउंडर।
24: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
25: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
26: सोच बदलो और बैंक भी।
27: In association with Signature Finest Cardamom Seeds, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
28: दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है और दुनिया उदाहरण देती है भारत के लोकतंत्र के, लेकिन लोकतंत्र का अपमान करना, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना, चुनाव हारने पर चुनाव आयोग को बदनाम करना, जनता के जनादेश का अपमान करना, ये कांग्रेस के DNA में है। राहुल गांधी जी के इशारे पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को अवैध कहा, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये जनादेश का अपमान है, ये संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना है, ये लोकतंत्र के प्रति अनास्था पैदा करना है, ये देश में अराजकता फैलाने का प्रयास है।
29: I have no doubt that Mr. Gyanesh Kumar has to resign someday or other. It would be good for him to resign early But if he doesn't resign, the protest will continue. The India bloc protest will continue. The other groups are protesting, and he will be compelled to resign. The wisest thing he can do is to resign now.
0: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee, lagaye swad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.

गठबंधन के मेगा प्रदर्शन से पहले आज कांग्रेस की अहम बैठक, राज्यों के पार्टी प्रमुखों के साथ हल्ला बोल प्लान पर चर्चा। सीसी को सस्पेंड करने और बिना अधिकार के फैसले लिए गए रद्द करने वाली अर्जी पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। केरल सरकार ने खोली ज्ञानेश कुमार की कथित करप्शन वाली पुरानी फाइल। राज्यसभा चुनाव के लिए आज सामने आ सकती है यूपी से बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट। समाजवादी पार्टी के तीसरे कैंडिडेट पर भी सस्पेंस से उठ रहे हैं पर्दा। 16 अक्टूबर को होना है मतदान। पंजाब में नहीं रुक रहे हैं पुलिस वालों पर हमले। अमृतसर में फिर से जीएसपी के एएसआई पर हुई फायरिंग, जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। घर लौटते वक्त तीन लोगों ने किया था अटैक। बिल्कुल 9:11 की तर्ज पर प्लेन को इजराइल एयरपोर्ट की इमारत से टकराकर क्रैश करना चाहता था आरोपी को पायलट। पूछताछ में हुआ खुलासा, पहले भी कर चुका है हाईजैकिंग की नाकाम कोशिश।

देश भर में वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ गरमाई सियासत। चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्लान, आज दिल्ली में अपने राज्य प्रमुखों के साथ करेगी अहम बैठक। एसआईआर के खिलाफ देश भर में आंदोलन जारी, आज एनएसयूआई भी सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर वोट की चोरी के खिलाफ करेगी विरोध प्रदर्शन। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन जारी, 7 अक्टूबर को चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन का किया ऐलान, एसआईआर के खिलाफ भी उठाएंगे मुद्दा। सीसी ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बिना मंजूरी के लिए गए फैसलों को रद्द करने की याचिकाओं पर भी सुनवाई। एसआईआर पर घमासान के बीच हैदराबाद के नलसार में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां का बड़ा बयान, कहा कोई भी दलील मताधिकार छीनने वाली प्रक्रिया को सही नहीं ठहरा सकती। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला, बोले चुनाव आयोग को बदनाम कर रही है कांग्रेस, जनादेश का अपमान करना कांग्रेस की आदत। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक साथ आए उद्धव और राज ठाकरे, मुंबई में विरोध मार्च में शामिल हुए। मुंबई में उद्धव ठाकरे ने ज्ञानेश कुमार को बताया बीजेपी का हथियार, कहा हम तानाशाह को उखाड़ फेंकने आए हैं। राज ठाकरे के बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग की, कहा वोट चोरी के खिलाफ कदम उठाना जरूरी। संजय राउत की बड़ी चेतावनी, युवाओं का गुस्सा नहीं थमा तो देश में आग लगा देगी युवा पीढ़ी। दिल्ली में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडियन यूथ कांग्रेस का कैंडल मार्च, सीईसी के इस्तीफे की मांग तेज। दिल्ली पुलिस के खिलाफ इंडिया गेट से जंतर मंतर तक मार्च, सीईसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिसिया कार्रवाई से खफा। दिल्ली पुलिस का 3 अक्टूबर को किए गए ऐसा और दूसरे संगठन के प्रदर्शन का बयान, बदसलूकी पर कहा अगर किसी के पास कोई वीडियो हो तो क्राइम ब्रांच को दें। 3 महिला पत्रकारों से बदसलूकी के आरोप पर सियासत तेज, कांग्रेस ने मोदी शाह पर निशाना साधा। दिल्ली पुलिस ने वायरल वीडियो को बताया फर्जी, कहा महिला पत्रकारों से बदसलूकी का वीडियो दिल्ली पुलिस का नहीं है। दिल्ली में जंतर मंतर पर हुए रविवार के प्रदर्शन में 15 पुलिसकर्मी घायल, करीब 110 प्रदर्शनकारी हिरासत में। ओवैसी का बीजेपी आरएसएस पर बड़ा आरोप, फॉर्म 7 के जरिए वोटर लिस्ट से नाम हटाने की साजिश का दावा किया। कांग्रेस अध्यक्ष के मोदी को गैरकानूनी पीएम बताने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार, पूछा क्या आप गैरकानूनी है खड़गे जी, क्या राहुल गांधी भी है गैरकानूनी सांसद। पटना में बीजेपी के शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी खड़गे पर पलटवार करते हुए कहा उनका बयान 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। राहुल गांधी के डिजिटल सत्याग्रह पर बोले चिराग पासवान, कहा सत्याग्रह नाम अच्छा लेकिन विपक्ष को झूठ और भ्रम फैलाना छोड़ सोच सच बोलना चाहिए। यूपी में कांग्रेस एसपी में सीट बंटवारे को लेकर जुबानी जंग के बीच बोले अखिलेश यादव, बात सीट की नहीं है जीत की है। अखिलेश ने योगी सरकार से लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा, कहा डबल इंजन अब बन गया है ट्रबल इंजन, जनता बीजेपी से मुक्ति का ले चुकी है संकल्प। यूपी में सीट बंटवारे पर कांग्रेस का बयान, यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र गौतम बोले मैंने 200 सीटों की बात की थी, सीटें मिलेंगी तभी जीत संभव। भदोही में सीएम योगी ने अखिलेश राज पर साधा निशाना, बोले 2017 से पहले राज्य का खजाना था खाली, यूपी अब देश का ग्रोथ इंजन। भदोही का नाम बदलकर अब होगा संत रविदास नगर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया बड़ा फैसला। समाजवादी पार्टी के स्थापना के 34 साल होने पर बीजेपी का हमला, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के 34 साल का हिसाब गुंडा राज और माफिया राज के नाम से जारी किया, 4 पेज का प्रश्न। उत्तराखंड की खटीमा में उत्तराखंड आदि रंगोत्सव का सीएम धामी ने किया शुभारंभ, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सम्मान और सशक्तिकरण की मिली नई गति। खटीमा में सीएम धामी ने निकाला रोड शो, केंद्रीय मंत्री रिजिजू और ज्वेल उरांव भी शामिल हुए। 15 दिनों तक चलेगा उत्तराखंड आदि रंगोत्सव। उत्तराखंड गुजरात के बाद यूसीसी को लेकर बंगाल में भी बड़ा ऐलान, सीएम शुभेंदु अधिकारी बोले 6 महीने के भीतर लागू होगा यूसीसी। बीजेपी का कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना, पूरी दुनिया स्मित मचार की तारीफ कर रही लेकिन गांधी परिवार ने मचार के लिए एक शब्द नहीं बोला। गाजा पर आंसू बहाने वाले मुझार पर जो अनंत सिंह नीरज कुमार विवाद के बीच निशांत कुमार का बयान आया सामने, कहा पटन स्नातक सीट पर नीरज कुमार को जिताइए। करनाल में मार्केट कमेटी के सामने किसानों का प्रदर्शन, सीएम नायब सिंह सैनी का पुतला फूंका गया, कहा जल्द सरकार ने धान खरीद को सुचारू रूप से नहीं किया तो सड़कों पर उतरेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट, उत्तराखंड से दिनेश कार्रे बनाया गया उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने रुक्मणी मलिक उर्फ कोयल मलिक को राज्यसभा के लिए बनाया प्रत्याशी, टीएमसी राज्यसभा सांसद से 16 जुलाई को इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुई थी रुक्मणी। कोलकाता में सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के बाहर हिंदू जागरण मंच का प्रदर्शन, संस्थान के छात्रों पर भारत माता की तस्वीर फाड़ने और स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर पैर रखने का आरोप। कैप्टन स्मिथ मचार के जल्द स्वस्थ होने की कामना में आसनसोल में महामृत्युंजय जाप और हवन यज्ञ, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैप्टन स्मिथ के लिए दुबई के बाप्स मंदिर में भी दुआओं का दौर शुरू हुआ, यूएई में संपर्क में है भारत की एम्बेसी। वहीं दिल्ली में आर्टिस्ट इवन क्रिकेट लीग के समापन समारोह में शामिल हुए आशीष सूद, दिल्ली में 5 स्टेडियम्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का ऐलान। ओडिशा के भुवनेश्वर में जीवन जिंदाबाद 2.0 अभियान की शुरुआत, राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया कार्यक्रम। कार्यक्रम में कई नाट्य प्रस्तुतियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए पेश, सीएम मोहन चरण माझी इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के तौर पर शामिल हुए। बिहार के छपरा में बांध टूटने से गुस्साए ग्रामीणों ने इंजीनियर और एसडीओ को बाढ़ के पानी में फेंकने की कोशिश की, किसी तरह से दोनों की बची जान।
बिहार के बगहा में बाढ़ से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, वहीं करीब 1000 परिवारों को पहुंचाई गई राहत सामग्री। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ के पानी में डूबी किताबें दिखाकर छात्र ने शिक्षा मंत्री से पूछे सवाल, वीडियो वायरल। बिहार के सारण में गंडक नदी का कहर, ड्रोन कैमरे में कैद जल प्रलय का खौफनाक मंजर आया सामने। लखनऊ में गोमती नदी का रौद्र रूप, खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर, बाढ़ का संकट गहराया, कई इलाके जलमग्न। तमिलनाडु में भारी बारिश, जल प्रलय में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, ट्रैफिक पर पड़ा असर। शामली में अंकित बालियान हत्याकांड में 3 इनामी आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा, सोनीपत करनाल में घरों की कुर्की। पंजाब पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का किया पर्दाफाश, सीमा पार ड्रोन से भेजी गई AK-47 और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद। गुजरात के जूनागढ़ में तेज रफ्तार बाइक का बिगड़ा संतुलन, रिक्शा को ओवरटेक करते समय युवक को मारी टक्कर, मौके पर मौत। हैदराबाद के सिकंदराबाद में देरी से फूड डिलीवरी पर बवाल, दंपति ने डिलीवरी एजेंट को जमकर पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना, पुलिस ने दर्ज किया केस। जयपुर में पिटाई के विरोध में सड़क पर उतरे छात्र, पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा। पंजाब के अजनाला में तैनात एएसआई सुखचैन सिंह पर चली गोलियां, वहीं सिविल अस्पताल में कराया गया उनको भर्ती। भटिंडा के जस्सी चौक में शराब के ठेके के बाहर कुल्हाड़ी से हमला, एक शख्स की हत्या। बिहार के सहरसा में कारूबाबा स्थान न्यास विवाद में चली कई राउंड की गोली, एक शख्स को गोली लगी, गुस्साए लोगों ने महंत की गाड़ी को किया आग के हवाले। बिहार के जमुई में 2 गर्भवती महिलाओं की मौत के मामले में प्राइवेट क्लिनिक पर छापेमारी, जिला प्रशासन ने क्लिनिक को किया सील। उत्तराखंड के विकासनगर में खौफनाक सड़क हादसे का लाइव वीडियो आया सामने, एक शख्स की मौत, 2 घायल। लुधियाना में चचेरा भाई निकला पूर्व सरपंच का कातिल, जमीनी विवाद में हुई करवाई गई हत्या। बिहार के बांका में नाबालिग लड़की से छेड़खानी और जबरन मांग में सिंदूर डालने का मामला आया सामने, 6 युवकों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के औरैया में कलयुगी बेटे ने ही मां को मौत के घाट उतार दिया, आरोपी बेटा गिरफ्तार। इंदौर में गोलीकांड का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 नाबालिग भी हिरासत में लिया गया। अहमदाबाद में आरोपी की कार के दरवाजे पर लटक कर इंस्पेक्टर ने कार रोकी, खेड़ा रेलवे स्टेशन से 4.25 करोड़ रुपए के सोने की लूट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के वसई में परिवहन बस की बाइक को टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। अलवर में सेक्सटॉर्शन के नाम पर साइबर ठगी करने वाले बदमाश गिरफ्तार, एआई की मदद से लड़की बनकर बनाता था अश्लील वीडियो। अलीगढ़ में 45 किलो चरस के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 करोड़ बताई जा रही है 45 किलो चरस की कीमत। चंदौली में 1.5 करोड़ की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त, हरियाणा से बिहार ले जाते समय कार्रवाई। वहीं करनाल में 20 साल के बच्चे की हत्या मामले में 3 गिरफ्तार, कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। ग्रेटर नोएडा में दुकान का लेंटर गिरने की वजह से मजदूर की मौत, 1 घायल। बिहार के रोहतास में पारिवारिक विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या की, आरोपी गिरफ्तार। आगर मालवा के नलखेड़ा में व्यापारी से लूट के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करीब 14 किलो चांदी के साथ 8 आरोपी गिरफ्तार। असम के जोरहाट में नाव पलटने से बच्चे समेत 3 की मौत, छोटी नाव में थे सवार। बिहार के बेगूसराय में सोशल मीडिया पर पत्नी की तस्वीर लगाने से मना करने के बाद भी पड़ोसी ने पति पत्नी को मारी गोली, दोनों घायल। यूपी के इटावा में महादेव गेम के नाम पर करोड़ों का खेल, 15 लाख कैश के साथ 3 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सीआईएसएफ जवान की गर्लफ्रेंड की संदिग्ध मौत, साथ में रह रही थी मृतका। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में 6 लोगों पर तेंदुए का हमला, 3 की हालत नाजुक, घर में घुसकर किया वार। हल्द्वानी में घर के बाहर खड़ी स्कूटी से निकला सांप, 8 फीट लंबे सांप को स्नेक कैचर ने पकड़ा। हिमाचल के सोलन में सैलानियों का सैलाब, दिल्ली शिमला हाईवे पर लगा लंबा जाम। लॉन्ग वीकेंड पर मसूरी में उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़, 80% से ज्यादा होटल रहे बुक। सुहाने मौसम का सैलानी आनंद लेते दिखे, मॉल रोड पर दिखी सैलानियों की भारी भीड़, कारोबारियों के खिले चेहरे। बागेश्वर धाम आने वाले महिला भक्तों से बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अपील, महिलाएं अकेली ना आए धाम। धर्मशाला में पर्यटकों की भारी भीड़, बदले मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। एशियन गेम्स में देश के लिए मेडल जीतकर वतन लौटे पदकवीर, एयरपोर्ट पर एथलीट्स का हुआ भव्य स्वागत। एशियन गेम्स में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद स्वदेश लौटे क्रिकेटर संजू सैमसन, ईशान किशन और अर्शदीप सिंह। मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे, परिवार ने किया वेलकम, घर रवाना। गोल्फ टीम इवेंट में देश को सिल्वर मेडल दिलाने वाली जजर की बेटी दीक्षा डागर का शानदार स्वागत, देश के लिए पदक हासिल करने को बताया ऐतिहासिक पद। सिल्वर मेडलिस्ट पहलवान अंतिम पंघाल का भी वतन वापसी पर हुआ जोरदार स्वागत, बोले भविष्य में सिल्वर मेडल को गोल्ड में बदलने की करेंगे कोशिश। परिणीति चोपड़ा की नई फिल्म रिपोर्टिंग लाइव का ट्रेलर रिलीज, पत्रकार के किरदार में नजर आएंगी परिणीति। सलमान खान की फिल्म मातृभूमि को लेकर बड़ी खबर, सेंसर बोर्ड और मेकर्स की तरफ से मिली मंजूरी। आयुष्मान खुराना की आने वाली कॉमेडी ड्रामा फिल्म उड़ता तीर की रिलीज डेट को आगे बढ़ाया गया। फिल्म तू है मेरी किरण के प्रमोशन में जुटी सोनाक्षी सिन्हा, मुंबई की सोफिया कॉलेज में छात्राओं से की मुलाकात। एक्ट्रेस कृतिका कामरा अपने पति गौरव कपूर के साथ ग्रीस में आई नजर, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो।

लेंद्र पांडे, बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 अक्टूबर 2026 दिन सोमवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है पुष नक्षत्र, रात के 11:09 तक चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 7:30 से 9 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर दर्पण में चेहरा देखकर भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, खान पान का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, धन की हानि धन का नुकसान हो सकता है, सतर्क रहें, दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, नौकरी में परिवर्तन होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मिथुन राशि, करियर में सफलता के योग हैं, प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता के योग हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर

शांति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, सेहत अच्छी रहेगी, काम का दबाव कम होगा, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। वृश्चिक राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, रिश्तों को ठीक करने का प्रयास करें, दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा हरा। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, विवाह आपका तय हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

राशि, करियर की समस्या हल होगी, परिवार की स्थितियां ठीक होंगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

मिलेगी, कोई अच्छी सूचना मिलेगी, वाहन सावधानी से चलाएं, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
4: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: कौन सी बनानी है?
8: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
9: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: जो गठबंधन पहले से था, जिसने बीजेपी को हराया, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीती। समाजवादी पार्टी का वही गठबंधन उसी गठबंधन को आगे बढ़ाने का काम करे।
3: अखिलेश यादव के इस बयान के 24 घंटे के अंदर दिल्ली से एक तस्वीर सामने आई, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी से मुलाकात की और इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऐलान कर दिया।
4: इंडिया अलायंस की हिस्सा बनेगी अपनी जनता पार्टी, और आगे क्या कितनी सीट कहां कैसे होगा इस पर वार्ता बाद में होगी।
3: अब सवाल ये कि जो अखिलेश यादव यूपी में 2024 वाले गठबंधन के साथ 2027 का चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, उसमें अब स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी की एंट्री कैसे होगी। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य एक और राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बता रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं।
4: देश में हम चाहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी हों, इसके लिए समान विचारधारा के लोगों को एक साथ खड़ा करने की कवायद में भी मैं लगातार लगा। क्यों अलायंस में तो एक दर्जन पार्टियां रह सकती हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों नहीं रह सकते, उनकी पार्टी क्यों नहीं रह सकती, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं। किसको भेजें किसको नहीं भेजें उनका फैसला है, लेकिन हाँ कहीं न कहीं समाजवाद दागदार हुआ है।
3: स्वामी प्रसाद मौर्य और राहुल गांधी की मुलाकात इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि जिस कांग्रेस के गढ़ रायबरेली से अखिलेश यादव ने अपने पीडीए यात्रा की शुरुआत करके कांग्रेस में खलबली मचा दी थी, वहीं की एक विधानसभा क्षेत्र से स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी से विधायक रह चुके हैं, जहां मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी का कब्जा है। ऐसे में सवाल ये भी कि स्वामी प्रसाद मौर्य को इंडिया गठबंधन कहां फिट करेगा, क्योंकि सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। सीटों की इस खींचतान ने विरोधियों को एक बार फिर गठबंधन को घेरने का मौका दे दिया।
5: अब स्थिति साफ है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटना लगभग तय हो गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कांग्रेस को उसकी हैसियत बताने का काम किया है, कहा है दो विधायक वाली पार्टी अपनी हैसियत में रहे, और अगर कांग्रेस का गठबंधन ना होता 2024 में तो 6 सीटें जो जीत के आई है, जो 6 सांसद बने हैं, वो भी ना बनते और शून्य पे आ जाते।
3: उधर गोरखपुर से बीजेपी नेता संजयन त्रिपाठी ने बीजेपी का दामन छोड़ने के बाद समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। संजयन को बीजेपी से एमएलसी का टिकट नहीं मिला था, जिसके बाद वो पार्टी का झंडा हटाते हुए भावुक हो गए थे।
6: बहुत भारी मन से और बहुत दुखी भाव से आज हमने इस झंडे का त्याग किया, क्योंकि अब इस झंडे के इस्तेमाल का हमारा कोई अधिकार नहीं रह गया।
3: बहरहाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल जारी है, लेकिन ये प्रेशर पॉलिटिक्स कहां तक जाती है और इसमें बाजी कौन मारता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आज तक ब्यूरो।
7: जीत तो महत्वपूर्ण है ही है, गठबंधन पाने की तरीके से एक है, सीटों की संख्या पर कोई झगड़ा नहीं, 403 की 403 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। सिंबल जिस क्षेत्र में जो जीत सकता होगा उस पार्टी का सिंबल होगा, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तय करेंगे। इसमें तो ये तो एक अच्छा बयान है श्री अखिलेश यादव जी।
8: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तो तय है, जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, ये ना अनुराग भदौरिया तय करेंगे, ना हमारे सांसद एसपी सिंह पटेल साहब तय करेंगे, ना ही कांग्रेस का कोई नेता सांसद तय करेगा। ये समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, लेकिन ये तय है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

पर होगी चर्चा। सीएसी को सस्पेंड करने और बिना अधिकार के लिए गए फैसलों को रद्द करने वाली अर्जी पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। केरल सरकार ने खोली ज्ञानेश कुमार की कथित करप्शन वाली पुरानी फाइल। राज्यसभा चुनाव के लिए आज सामने आ सकती है यूपी से बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट। समाजवादी पार्टी के तीसरे कैंडिडेट पर सस्पेंस से भी उठ सकता है पर्दा। 16 अक्टूबर को होना है मतदान। पंजाब में नहीं रुक रहे हैं पुलिस वालों पर हमले। अमृतसर में फिर से जीएफपी के एएसआई पर हुई फायरिंग। जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती घर लौटते वक्त तीन लोगों ने किया था अटैक। बिल्कुल 9:11 की तर्ज पर प्लेन को इजराइल एयरपोर्ट की इमारत से टकराकर क्रैश कराना चाहता था आरोपी को पायलट। पूछताछ में हुआ खुलासा, पहले भी कर चुका है हाईजैकिंग की नाकाम कोशिश।

0: नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम टाइम के सुपर हिट शो 9 बज गए में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। हफ्ते का पहला दिन, नया दिन, नई शुरुआत, बिना ब्रेक के आपके पसंदीदा ब्रेकफास्ट न्यूज शो में देश और दुनिया की बड़ी और जरूरी खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए हमेशा की तरह नजर डालते हैं बुलेटिन में शामिल खबरों की कुछ झलकियों पर। संसद मार्ग थाने पर सुबह सुबह पुलिस एक्शन, हटाए गए धरने पर बैठे फ्रीलांस पत्रकार और यूट्यूबर। यूपी में गठबंधन को लेकर एसपी और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ी, 200 सीट तक पहुंच गई है कांग्रेस की ये मांग। तो वहीं बाहुबली विधायक अनंत सिंह के बागी तेवरों के बीच नीरज कुमार के समर्थन में खुलकर आए हैं निशांत। विधान परिषद चुनाव में नीरज कुमार के लिए मांगे गए हैं वोट। और आधे घंटे बाद यानी सुबह 9:30 बजे देखिए 100 शहर 100 खबर। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर धरने पर बैठे स्वतंत्र पत्रकारों और यूट्यूबर्स को पुलिस ने सुबह होते ही वहां से हटा दिया है। दरअसल प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि उनकी शिकायत पर तुरंत FIR दर्ज की जाए। हालांकि स्थानीय पुलिस का कहना है कि शिकायत क्राइम ब्रांच को भेज दी गई है। प्रदर्शनकारियों को वहीं जाकर अपनी शिकायत के संबंध में कार्रवाई के लिए कहा गया था, लेकिन प्रदर्शनकारी थाने के बाहर ही धरने पर डटे रहे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया है। मांगों को लेकर थाने के बाहर ही प्रदर्शनकारी बैठे थे और दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर ये बैठे थे स्वतंत्र पत्रकार और यूट्यूबर्स, जिन्हें पुलिस ने सुबह होते ही वहां से हटा दिया है। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि उनकी शिकायत पर तुरंत वहां FIR दर्ज की जाए। संसद मार्ग थाने के बाहर से अब उनको हटा दिया गया है। हिमांशु मिश्रा जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। हिमांशु, जो फ्रीलांस पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको वहां से हटा दिया गया है, अभी वहां पर कैसी स्थिति है?
1: देखिए, सिक्योरिटी तो बनी हुई है, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ समय की बात करेंगे तो ये जो सामने आपको थाना नजर आ रहा है, पार्लियामेंट स्ट्रीट संसद मार्ग थाना, ये अखाड़ा सा बन गया है। यहाँ पर अक्सर आए दिन न सिर्फ प्रोटेस्ट बल्कि उसके बाद जो कार्रवाई की भी मांग होती है, वो कार्रवाई की भी मांग यहाँ पर लगातार की जा रही है। और आप देखिए, चेतावनी भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि BNSS की धारा 163 लागू है, गैर जमानती, गैर कानूनी है अगर कोई भी लोग यहाँ पर जुटते हैं। तो इसी तरीके से पूरी रात जब यहाँ पर बैठे रहे, काफी सारे फ्रीलांस जर्नलिस्ट थे, यूट्यूबर थे, और जो कंप्लेन दी है उन लोगों ने, उस कंप्लेन पर तुरंत FIR की मांग कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि वो कंप्लेन तो क्राइम ब्रांच को भेजी जा चुकी है, अब क्राइम ब्रांच उस पर आगे एक्शन लेगा। और पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर कोई ऐसा वीडियो साक्ष्य कुछ भी अगर किसी के पास है, इनके पास, इनके दोस्तों के पास, कहीं भी अगर वायरल भी है इस पूरी घटना से, इंसिडेंट से जुड़ा, तो क्राइम ब्रांच में जाकर उसको सबमिट भी कर सकते हैं और उस पर एक्शन की मांग भी कर सकते हैं। पुलिस ने कहा कि जो यहाँ पे लोकल पुलिस का जो काम था, जब वो लेके कंप्लेन पहुंचे थे तो मेडिकल कराया गया, कंप्लेन लिया गया और फिर कंप्लेन को आगे जांच के लिए भेज दिया गया है। अब यहाँ पर अगर हम अभी की बात करें तो अभी भी आप देखिए बैरिकेडिंग की हुई है। सिर्फ यही नहीं थाने के, बल्कि जो पूरा लुटियन जोन का इलाका, अगर आप कहेंगे इंडिया गेट, जंतर मंतर से लेकर के जहां पर मैं संसद मार्ग मौजूद हूं, इस पूरे इलाके में आपको कई जगहों पर बैरिकेडिंग, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और दिल्ली पुलिस के जवानों की मौजूदगी है, क्योंकि अलग अलग संगठन
0: तस्वीरें साफ जाहिर कर रही है स्थिति काबू में है। आप बने रहिए हमारे साथ और नजर बनाए रखिएगा। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर आज सियासी घमासान तेज होने वाला है। दरअसल कांग्रेस की एक अहम बैठक होने जा रही है और कांग्रेस के राज्य प्रमुख आज दिल्ली में ज्ञानेश कुमार को हटाने की रणनीति पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे। दूसरी ओर NSUI की ओर से भी प्रदर्शन की तैयारी है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यकर्ता सेव डेमोक्रेसी के नारे के साथ प्रदर्शन भी करने वाले हैं। तो एक बड़ी खबर ये भी है कि चुनाव आयोग को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होने वाली है। इन सब के बीच दिल्ली में कल यूथ कांग्रेस और आयसा का भी प्रदर्शन हुआ है। तो जंतर मंतर पर आज NSUI का भी प्रदर्शन होगा। लगभग 10 बजे प्रदर्शन का समय रखा गया है। जम्मू कश्मीर में आज इंडिया गठबंधन का लोकतंत्र बचाओ मार्च भी होने वाला है। कल मुंबई से भी तस्वीरें सामने आई थी प्रदर्शन से जुड़ी। वहीं आज दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक भी होने जा रही है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। एक तरफ बड़ी बैठक और दूसरी तरफ प्रदर्शन की भी तैयारी है।
2: दिल्ली के जंतर मंतर पर कल देर शाम यूथ कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध की मशाल जलाई।
3: देख सकते हैं कि हाथ में संविधान की कॉपी लेकर और मोमबत्ती लेकर यहाँ पर आईवाईसी के जो कार्यकर्ता हैं भारी संख्या में रायसीना रोड अपने जो मुख्यालय के बाहर से जंतर मंतर की ओर कूच कर रहे हैं। हाथ में उनकी मोमबत्तियां पकड़ रखी हैं। उनका एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। बड़ी मांग ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जो है इस्तीफा दे, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी हो।
4: देश के संविधान के हत्यारे हैं, देश के 13 करोड़ भारतीय जिनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू वोट, वो छीना है ज्ञानेश ने, ताकि उसके मालिक जिनका टट्टू ये बना हुआ है मोदी और शाह वो सरकार में रहे। इससे बड़ा अपराध देशद्रोह कोई नहीं हो सकता। और हमारी डिमांड है जब तक ज्ञानेश जेल में नहीं जाता इस्तीफा देकर, तब तक देश के युवा यूथ कांग्रेस साथी पूरे देश की सड़कें गर्म करते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे इस अपराधी के खिलाफ।
2: कल दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक और प्रदर्शन आयसा ने किया। तस्वीरें देखिए किस तरह पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटा रही है। आयसा कार्यकर्ता आंध्र भवन से जंतर मंत्र की तरफ मार्च कर रहे थे, जिसे बीच में ही पुलिस ने रोक दिया।
5: सवाल ये नहीं है पुलिस आगे जाने दे रही है, नहीं, सवाल ये है कि पुलिस महिला आंदोलनकारियों के साथ किस तरह से व्यवहार कर रही है। आप देखिए ये बहादुर महिलाएं हैं जिन्होंने हिम्मत के साथ दिल्ली पुलिस के जो बदमाशी है उसको एक्सपोज किया है।
6: ये है पुलिस चोर को बचाने में, पुलिस चोर को बचाने में इतनी मशरूफ हो गई है, दिल्ली में पुलिस चोरों को बचा रही है, ये रियलिटी है।
2: प्रदर्शन का एक और मोर्चा दिल्ली के संसद मार्ग थाने पर भी देखा गया। यहाँ मुद्दा था 3 अक्टूबर के प्रदर्शन के दौरान 3 महिला पत्रकारों से बदसलूकी करने वाले पुलिस अफसर पर कार्रवाई की मांग का।
7: ये है कि ये पुलिस थाना का केवल एक ही काम है, एक सेक्सुअल हैरेसर को बचाने का आज ये थाना बना है। ये सेक्सुअल हैरेसर को बचा रहे हैं। हम लोग सालों से संघर्ष करके कानून बनवाए हैं कि किसी भी लड़की की कंप्लेंट पर एफआईआर करना अनिवार्य है। ये पूरे कानून को बदल रहे हैं इस केस में और एसीपी को बचाने का काम कर रहे हैं।
2: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर विपक्ष की तरफ से चौतरफा घेराबंदी जारी है। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।
0: हमारे सहयोगी मौसमी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौसमी, आज दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारियों की एक बैठक भी होने वाली है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए आंदोलन की रणनीति पर विचार करने के लिए इस बैठक में क्या रणनीति होगी?
8: देखिए, लगातार राहुल गांधी की तेवर बेहद आक्रामक है रही है। कल उन्होंने लगातार गृह मंत्री अमित शाह से लेके दिल्ली पुलिस को आड़े हाथ लिया और 6 अक्टूबर को विपक्षी सांसदों का एक बड़ा मार्च होने वाला है, ईसी का घेराव करने का कार्यक्रम है। उसी के मद्देनजर आगे की रणनीति और खाका को लेके ये बैठक हो रही है, जिसमें सभी राज्य इकाइयों के इंचार्ज और अध्यक्ष शामिल होंगे। तो जाहिर तौर पे नजरें इस बैठक पर भी होंगी, क्योंकि एक तरफ जहां लेफ्ट और तमाम प्रदर्शनकारी सड़कों पर है, जंतर मंतर में महाराष्ट्र में भी आंदोलन चल रहा है और इसी को कैसे पूरे देश में ये आंदोलन चलाया जाए इसको लेकर कांग्रेस जो है अपनी प्लानिंग करेगी।
0: चलिए ठीक है, शुक्रिया मौसमी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले एसआईआर विवाद पर जस्टिस उज्जवल भुइया का बड़ा बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा है कि ऐसी कोई भी प्रक्रिया मनमानी है जो कि लाखों भारतीयों को वोटिंग के अधिकार से रोकती है, इसे कोई भी बहाना सही नहीं ठहरा सकता। ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने, वोटिंग से रोकने वाली प्रक्रिया मनमानी है और ऐसे में कोई भी बहाना सही नहीं ठहरा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइया का एक अहम बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी प्रक्रिया मनमानी है जो लाखों भारतीयों को वोटिंग के अधिकार से रोकती है, इसे कोई भी बहाना सही से ठहराया नहीं जा सकता है।
9: The Indian Constitution does not provide for two classes of citizens, one class of citizens with voting rights and the other class of citizens without voting rights. Any process which leads to wholesale disenfranchisement of Indian citizens, making them citizens without voting rights, in my view, would be outrightly violative of Articles 326 and 14 of the Constitution of India.
0: तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तरफ से ये बयान सामने आया है और इसके कई मायने भी सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस भुइया ने कहा है कि ऐसी कोई भी प्रक्रिया मनमानी है जो लाखों भारतीयों को वोटिंग के अधिकार से रोकती है। और संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। संजय जी, जस्टिस उज्जवल भुइया के इस भाषण को किस संदर्भ में देखा जाए, इसके क्या मायने समझ आ रहे हैं? विपक्ष को तो एक तरीके से हथियार मिल गया है।
10: मुझे तो सीधा सीधा ये समझ में आ रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के कई जजों के स्प्लिट जजमेंट होते हैं, ये उस तरह का ही है। क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि जिस समय इस मामले की सुनवाई चल रही थी और 33 लाख से ज्यादा लोगों का SIR में उनकी अपील पेंडिंग थी, तो उसी समय जस्टिस बागची ने यह कहा था कि 33 लाख लोग अगर अभी वोट नहीं दे पाएंगे तो क्या हुआ, वो बाद में वोट दे देंगे। जिस समय ये याचिकाकर्ताओं की तरफ से मांग की गई थी कि उन लोगों को फिलहाल जब तक निर्णय नहीं हो जाता है तब तक इस चुनाव में वोट देने दिया जाए, बाद में जब फैसला होगा तब देखा जाएगा, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहा था और चीफ जस्टिस उस बेंच को हेड कर रहे थे, उस समय कहा था कि 33 लाख वोट नहीं देंगे इस बार तो क्या होगा, आप अगली बार वोट दे दीजिएगा। लेकिन जस्टिस उज्जवल भुइया ने बिल्कुल स्प्लिट करते हुए ये कहा है कि किसी भी एक भी नागरिक को अगर मताधिकार से वंचित रखा जाता है तो ये शरीर से आत्मा निकाल लेने की तरह है और ये एक तरह का मनमानी है, अनुच्छेद 326 का सरासर उल्लंघन है।
0: चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी तमाम जानकारी के लिए। वही आगे बढ़ते हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों की मोर्चाबंदी तो तेज है। कल मुंबई में ठाकरे बंधुओं की गर्जना रैली हुई और शिवसेना UBTU प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला करते हुए हिटलर की याद दिलाई है।

0: म्हणजे इतिहासामध्ये घडलेलं एक उदाहरण आहे हिटलरच. हिटलर कोणालाही घाबरत नव्हता, पण हिटलर वरती अशी वेळ आली की त्याला स्वतः स्वतःवरती गोळी झाडून आत्महत्या करावी.
1: मुंबई में गर्जना मार्च में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए उद्धव हिटलर को लेकर.
0: पण हिटलर गेला आणि हिटलर गेल्यानंतर त्याला एक न्यूरेमबर्ग ट्रायल म्हणून तो एक शब्द आहे. जे अधिकारी त्या हिटलरच्या पापामध्ये सहभागी होते त्यांना शोधून शोधून काढलं, त्यांच्यावरती खटले भरले गेले, काही जणांना फासावर लटकवलं, काही जणांना तुरुंगात चढून टाकलं, तोच क्षण आपल्या देशात उद्या आल्याशिवाय राहणार नाही. एवढं भाजप आणि या सगळ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवावं.
1: चुनाव आयोग के खिलाफ मुंबई में शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे और एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे एक साथ एक मंच पर थे. इस विरोध प्रदर्शन में उद्धव और राज ठाकरे के अलावा शरद पवार वाली एनसीपी भी शामिल रही.
2: म्हणून माझे सर्व राजकीय पक्षांना विनंती आहे, ज्यावेळेला तुम्ही सगळेजण दिल्लीत ज्यावेळेला हा बोलाल त्यावेळेला एक तर एसआयआर हा रद्द झाला पाहिजे कोणत्याही परिस्थितीत, आणि दुसरं म्हणजे या देशातलं वोटिंग मशीन बंद होऊन बॅलेट पेपर वरती याच्या पुढे मतदान झालं पाहिजे.
1: एसआयआर और मुख्य चुनाव आयुक्त पर ठाकरे बंधुओं के हमले पर निशाना साधते हुए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव और राज को गजनी बता दिया.
3: कारण हे गजनी झाले आहेत, त्यामुळे या गजनींना मी आठवण करून देऊ इच्छितो की ज्ञानेश कुमार मुख्य निवडणूक आयुक्त हे 2025 मध्ये झाले, महाराष्ट्राच्या निवडणुका 2024 मध्ये झाल्या, एसआयआर 2026 मध्ये झाला.
1: ठाकरे बंधुओं का वार फडणवीस का पलटवार, चुनाव आयोग पर घमासान जारी है. ओंकार बाबले के साथ राहुल गायकवाड़, मुंबई आज तक.
4: तो वही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इसको लेकर एक बयान सामने आया है. दरअसल इसी के साथ आपको ये बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान की संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने खड़गे के अवैध चुनाव वाले बयान पर जवाब दिया है. रिजिजू ने पूछा कि क्या आप अवैध सांसद है खड़गे जी, क्या राहुल गांधी जी अवैध सांसद है, क्या तमिलनाडु कर्नाटक केरल पंजाब जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और झारखंड के मुख्यमंत्री अवैध हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भारत के संविधान का अपमान करना बंद करें. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को भंग करने की मांग की और आरोप लगाया कि ये सभी चुनाव अवैध थे. उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का पद पर बने रहना भी अवैध है. उन्होंने कहा कि नए चुनाव मतपत्रों के जरिए कराए जाने चाहिए. इसके बाद खड़गे को रिजिजू का भी जवाब है.
5: आज देश जो चल रहा है वो इलीगल इलेक्शन पे चल रहा है. मोदी इलीगल प्राइम मिनिस्टर, शाह इलीगल मिनिस्टर, और जितने भी अब चीफ मिनिस्टर्स बने कहां के भी वो सब इलीगल. सबको डिसॉल्व करना, इलेक्शन कराना और बैलेट पे इलेक्शन कराना, क्योंकि ईवीएम का मिसयूज हो रहा है.
4: यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों दल साथ चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं. दोनों गठबंधन करना चाहते हैं लेकिन सीटों को लेकर खींचतान कुछ अलग ही शक्ल दे रहा है. दरअसल गठबंधन को लेकर दोनों पार्टी के नेताओं के हाल के दिनों में कई बयान सामने आए और फिर अखिलेश ने दिल्ली में इंडिया गठबंधन से दूर रहकर एक नई खलबली पैदा कर दी. इसके बाद अखिलेश ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से कांग्रेस को स्पष्ट संदेश देने की कोशिश भी की है लेकिन कांग्रेस ने संदेश का जो जवाब दिया है उसे लग रहा है कि सीटों के बंटवारे का रास्ता इतना सीधा नहीं है.

0: अभी गठबंधन पर मुहर लगी नहीं है, सीट शेयरिंग पर तलखी साफ दिख रही है। इस बीच यूपी में सीटों को लेकर कांग्रेस की दावेदारी बढ़ती ही जा रही है। अब बात 150 से बढ़कर 200 सीटों की मांग तक पहुंच गई है।
1: किसने किया 150 का? मैंने तो 200 की बात की थी। मैं शुरू से कह रहा हूं, बराबर का सम्मान और बराबर की इज्जत, बराबर का हिस्सा।
0: बड़ी बात यह है कि राजेंद्र पाल गौतम का ये बयान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की उस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद आया है, जिसे सीट बंटवारे पर जारी खींचतान के बीच कांग्रेस के लिए सीधा संदेश माना जा रहा था। अपनी पोस्ट में अखिलेश ने लिखा, मकसद जब साफ हो तो हाथ में हाथ होता है, निगाह मंजिल पर हो तो सफर आसान होता है। बात बड़ी ये नहीं कि गठबंधन में कितनी सीटें या कौन सी सीट किसके पास जा रही है, बात बड़ी ये है कि हम सबको ये सुनिश्चित करना है कि जीत गठबंधन की हो। फिर दोहराते हैं, बात सीट की नहीं जीत की है। यानी अखिलेश बार बार बीजेपी के खिलाफ यूपी में जीत की तैयारी की बात कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस साझेदारी के पहले सीटों पर बातचीत साफ चाहती है।
2: समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, जीत ही आधार है, जीत ही सीट का आधार है।
0: यानी जब यूपी में विधानसभा चुनाव चंद महीने दूर हैं, समीकरण साधे जा रहे हैं, पाला बदलने का दौर शुरू हो चुका है, तब विपक्षी लड़ाई में एक बड़ा पेच फंसा हुआ है। सवाल बना हुआ है कि आखिर कब कांग्रेस एसपी के बीच गठबंधन का ऐलान होगा, कितनी सीटों पर दोनों पार्टियों में बात बनेगी, बीजेपी को हराने के लिए किस रणनीति पर दोनों के बीच सहमति बनेगी।
1: जिनके साथ हमारा गठबंधन है इंडिया ब्लॉक में, यूपी में तो हम दो पार्टी हैं, मैं बेसिकली तो कांग्रेस और सपा है, दोनों जिम्मेदार हैं, एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं और एक दूसरे को साथ के लेके भी चलना है, तो निश्चित तौर पर सीट शेयरिंग का मामला हमें अक्टूबर में निपटा लेना चाहिए ताकि हम अपने कैंडिडेट्स को टाइम दे पाएं और हिस्सेदारी सम्मान बराबर होना चाहिए। मैं शुरू से कह रहा हूं,
0: कांग्रेस और एसपी में सीटों पर लड़ाई बढ़ती दिख रही है और दोनों पार्टियों की इस खींचतान पर बीजेपी तंज कस रही है।
3: अखिलेश यादव लगातार अपने एक एक कदम से कांग्रेस पार्टी को उसकी हैसियत बताने का काम कर रहे हैं। पहले रायबरेली से यात्रा की शुरुआत करते हैं, फिर राज्यसभा के सदस्य घोषित करते समय कांग्रेस पार्टी को हैसियत दिखाने का काम करते हैं, और अब सोशल मीडिया से हमला बोल रहे हैं, हैसियत बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में हैसियत सीट जीतने की जितनी है उतनी ही डिमांड करे, और कांग्रेस लगातार 150 सीट 200 सीट की डिमांड कर रही है। पता चल रहा है कि इस गठबंधन में कितना अहंकार है, कोई वैचारिक साम्यता नहीं है।
0: गठबंधन वाली ये जंग सिर्फ कांग्रेस और एसपी के बीच नहीं, साझेदारी के लिए 2 अक्टूबर को डेडलाइन खत्म होने के बाद अखिलेश पर ओवैसी के हमले भी तेज हो गए हैं। ओवैसी की नजर खास तौर पर उन मुस्लिम नेताओं पर है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश की पार्टी से उन्हें टिकट नहीं मिल रहा।
4: हम कहते हैं हम दरी नहीं बिछाएंगे, हम ये कहते हैं कि हम वोट बैंक नहीं है, हमको हमारा हक मिलना चाहिए। हम ये कहते हैं कि मुसलमानों की एक पॉलिटिकल एजेंसी होनी चाहिए। तो अब जाहिर है कि जो लोग सच्चाई को का इनकार करते हैं और जो राइट है, जो जस्टिस होना चाहिए, उससे इनकार करते हैं, तो ज्यादा तकलीफ होती होगी।
0: यूपी में हर विपक्षी दल बीजेपी का विजय रथ रोकने का दावा कर रहा है, रणनीति पर मंथन कर रहा है, लेकिन चुनावी जंग से पहले गठबंधन और सीट बंटवारे का फार्मूला फांस बना हुआ है। आज तक ब्यूरो।
5: और समर्थ हमारे साथ जुड़ के ज्यादा जानकारी के लिए। समर्थ, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बात सीट की नहीं जीत की है, लेकिन जिस तरीके से क्लैश चल रहा है सीटों को लेकर, जीत तो बहुत दूर की बात, सीटों पर तो खींचतान अभी भी बना हुआ है।
6: मुझे देखिए, राजेंद्र पाल गौतम का ये जो बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने 150 की बात कब की, गलत चल रहा है, मैंने तो 200 तक का कहा है कि बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए, इस बयान ने कहीं ना कहीं सियासी सरगर्मी प्रदेश में बढ़ा दी एक बार फिर से। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव ने एक दिन पहले ही एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि भाई जीत की बात नहीं है, मतलब बात जीत की है, सीट की नहीं है, सीट कोई भी ले, जीत हमें हमारी होनी चाहिए और उस बिना पर ही सीट बंटवारा होना चाहिए। पहले भी कई दफा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में अखिलेश इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जो कैंडिडेट जिस विधानसभा में मजबूत होगा उसको उतारा जाएगा, फिर सिंबल चाहे कांग्रेस पार्टी का हो और चाहे समाजवादी पार्टी का। देखिए अखिलेश भी इस बात को जानते हैं कि अगर आप विधानसभा की बात करें तो समाजवादी पार्टी का पक्ष ज्यादा मजबूत होता है, तो ऐसे में जो सीट बंटवारे की पॉलिटिक्स है उसमें समाजवादी पार्टी एक बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी जल्दबाजी इसलिए चाहती है कि सीट बंटवारा उनको मालूम है कि जितना देर हो रही है उतना कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसान है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को 403 पे अगर लड़ने को कहा जाएगा तो उनका नंबर पिछले दफा 2 आया है, यानी कि 2 विधायक है उनके, तो उनको तैयारी करनी पड़ेगी पहले से। और जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, समाजवादी पार्टी दिवाली के बाद सीट बंटवारा चाहती है, जबकि कांग्रेस पार्टी जो है वो पहले चाहती है। अब देखना ये है, ये जो बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं, फिर चाहे वो इमरान मसूद के जरिए हो और समाजवादी पार्टी की तरफ से एसपी पटेल के जरिए हो, ये कहां आकर रुकते हैं, क्योंकि देखिए बंटवारा अखिलेश और राहुल मल्लिकार्जुन खड़गे जब बड़े नेता बैठेंगे तभी होगा। लेकिन जिस तरीके के बयान आ रहे हैं उनसे एक बात तो साफ है, सियासी पारा प्रदेश का लगातार बढ़ रहा है। एक बयान सामने से आता है तो दूसरा बयान
5: उसके बाद सामने आ जाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया समर्थ, आप नजर बनाए रखेगा। बात बिहार की सियासत की कर लेते हैं। बिहार में विधान परिषद का चुनाव हो रहा है। जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के बागी तेवर के बीच कल बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार खुलकर पार्टी प्रत्याशी नीरज कुमार के समर्थन में आए हैं।

0: विधान परिषद चुनाव में जनसुराज के प्रत्याशी के रोड शो में जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की मौजूदगी से जेडीयू में अंदरूनी घमासान की अटकलें तेज हो गई। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और नीतीश कुमार के बेटे निशांत खुद पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार और सीनियर नेता नीरज कुमार के समर्थन में आ गए।
1: हमारे नीरज जी आज जिसके उपलक्ष्य में आज बैठक हुई युवाओं के साथ, नीरज जी पार्टी से समता काल से ही जुड़े हुए हैं, समाजवादी हैं, पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, पार्टी के विचारधारक के प्रति हमेशा उनकी प्रतिबद्धता रही है। तो आप जो भी है, नीरज जी को आप भारी वोट से जीता है।
0: हालांकि जब निशांत कुमार से नीरज कुमार और अनंत सिंह के बीच चल रहे विवाद को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि नीरज कुमार ने इसका जवाब देते हुए कहा कि पार्टी बड़ी है।
2: मैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि नई पीढ़ी के हाथ में कमान हमने दिया, तो जय निशान तय निशान, जय निशान तीर, ये नारा गुंजायमान हुआ और कार्यकर्ताओं ने भरोसा दिया कि आप हमारे भविष्य हैं, आप हमारे नेता हैं, आपका जो भी फैसला होगा। उन्होंने अपील किया है कि 8 सीट पर हमको समर्थन दीजिए और मेरी उम्मीदवारी के संदर्भ में भी बोला, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि उन्होंने कहा कि राज्य हित में जो माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है, सम्राट चौधरी जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब जय निशान तय निशान तय है तो विरोधी सब अशांत रहे। तो पार्टी के विधायक ही तो, अरे भाई पार्टी बड़ी।
0: नीरज कुमार पटना स्नातक सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं। इसी सीट पर अनुज सिंह जन सुराज के उम्मीदवार हैं, जिसका समर्थन कर रहे हैं अनंत सिंह। चुनाव 23 अक्टूबर को होगा। शुभम लाल, पटना आज तक।
3: और अब खबर पंजाब की। एक और पुलिसकर्मी पर वहां हमला हुआ। अमृतसर के अजनाला एएसआई पर गोलियां चली हैं। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए पूरी खबर।
4: अमृतसर के अजनाला नहर के पास फायरिंग की इस वारदात से हड़कंप मच गया। बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने जीआरपी जवान सुखचैन सिंह पर गोलियां चला दी। गोली लगने से जवान घायल हो गए। वारदात के तुरंत बाद घायल जवान को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। हमलावर कौन थे और फायरिंग की वजह क्या थी, इसका पता लगाया जा रहा है।
5: यहां एक नहर पड़ती है अजनाला, और वहां तीन जो अननोन पर्सन है मोटरसाइकिल सवार, उन्होंने एक फायर किया है और फॉर्चुनेटली जो इसका पूरी तरह बचाव हो गया और सिविल हॉस्पिटल एडमिट है। कार्रवाई शुरू कर दी है, हर एंगल जो देखा जा रहा है।
4: अजनाला में हुई इस फायरिंग के बाद पुलिस ने सुरक्षा और जांच दोनों बढ़ा दी है। अब हमलावरों तक पहुंचना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
3: इस वक्त की एक बड़ी खबर फ्लाई दुबई विमान से जुड़ी हुई। दरअसल इस पूरे मामले में आरोपी को पायलट से पूछताछ के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ। सामने आया है कि को पायलट इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश करना चाहता था। रिपोर्ट के मुताबिक ओमान के को पायलट हमाम अल हमामी ने फ्लाई दुबई की फ्लाइट पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय पायलट स्मित मचार ने नाकाम कर दिया था। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि आरोपी को पायलट ने जुलाई में भी हमले की साजिश रची थी, लेकिन तब उसने अपनी साजिश को आखिरी समय पर रद्द कर दिया था। चैनल 12 और वाईनेट की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि को पायलट हमामी ने यूएई में जांच अधिकारियों को इस प्लान के बारे में बताया और इस बार कैप्टन पर हमला कर कॉकपिट को कंट्रोल लेने और फ्लाइट को सामान्य रूप से जारी रखने की साजिश उसकी थी, जो कि नाकाम हो गई। फिर उसे आखिरी समय में एयरपोर्ट पर किसी बिल्डिंग या फिर दूसरे प्लेन से टकराने की भी साजिश थी। खुलासा यह भी हुआ है कि आरोपी को पायलट ने हाल के महीनों में कई बार बेन गुरियन एयरपोर्ट का दौरा भी किया था और जून के दौरे का इस्तेमाल जानकारी इकट्ठा करने और हमले की योजना बनाने के लिए किया गया था। 30 सितंबर को आरोपी हमामी ने कैप्टन स्मित मचार पर हमला किया और चाकू मारा, लेकिन कैप्टन कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहे। इसके बाद कई यात्रियों ने हमामी का सामना किया और उसे काबू में किया। बिना ब्रेक के इस बुलेटिन में खबरें जारी हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से। इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,

0: सीसी और एसआईआर के विरुद्ध कल होने वाले इंडिया अलायंस के सामूहिक हल्ला बोल से पहले आज कांग्रेस की बड़ी बैठक, राज्यों के पार्टी प्रमुखों के साथ मेगा प्लान पर होगी चर्चा। सीसी को सस्पेंड करने और बिना अधिकार के लिए गए फैसलों को रद्द करने वाली अर्जी पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। केरल सरकार ने खोली ज्ञानेश कुमार की कथित करप्शन वाली पुरानी फाइल। राज्यसभा चुनाव के लिए आज सामने आ सकती है यूपी से बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट। समाजवादी पार्टी के तीसरे कैंडिडेट पर सस्पेंस से भी उठ सकता है पर्दा। 16 अक्टूबर को होना है मतदान। पंजाब में नहीं रुक रहे हैं पुलिस वालों पर हमले। अमृतसर में फिर से जीएफपी के एएसआई पर हुई फायरिंग, जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। घर लौटते वक्त 3 लोगों ने किया था अटैक। बिल्कुल 9:11 की तर्ज पर प्लेन को इजरायल एयरपोर्ट की इमारत से टकराकर क्रैश कराना चाहता था आरोपी को पायलट। पूछताछ में हुआ खुलासा, पहले भी कर चुका है हाईजैकिंग की नाकाम कोशिश।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से।
0: दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर यूट्यूबर्स का धरना, पुलिस ने बस में बैठाकर किया डिटेन। एफआईआर की मांग को लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर धरना, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। देशभर में वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ गरमाई सियासत, चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्लान, आज दिल्ली में अपने राज्य प्रमुखों के साथ करेगी अहम बैठक। एसआईआर के खिलाफ देशभर में आंदोलन जारी, आज एनएसयूआई भी सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर वोट की चोरी के खिलाफ करेगी विरोध प्रदर्शन। सीसी ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बिना मंजूरी के लिए गए फैसलों को रद्द करने की याचिकाओं पर भी सुनवाई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला, बोले चुनाव आयोग को बदनाम कर रही है कांग्रेस, जनादेश का अपमान करना कांग्रेस की आदत। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक साथ आए उद्धव और राज ठाकरे, मुंबई में विरोध मार्च में हुए शाम। मुंबई में उद्धव ठाकरे ने ज्ञानेश कुमार को बताया बीजेपी का हथियार, कहा हम तानाशाह को उखाड़ फेंकने आए। राज ठाकरे के बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग की, कहा वोट चोरी के खिलाफ कदम उठाना जरूरी। संजय राउत की बड़ी चेतावनी, युवाओं का गुस्सा नहीं थमा तो देश में आग लगा देगी युवा पीढ़ी। दिल्ली में सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडियन यूथ कांग्रेस का कैंडल मार्च, सीसी के इस्तीफे की मांग तेज। दिल्ली पुलिस के खिलाफ इंडिया गेट से जंतर मंतर तक मार्च, सीसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिसियाई कार्रवाई से खफा। दिल्ली पुलिस का 3 अक्टूबर को किए गए ऐसा और दूसरे संगठन के प्रदर्शन का बयान, बदसलूकी पर कहा अगर किसी के पास कोई भी वीडियो हो तो क्राइम ब्रांच को दे। 3 महिला पत्रकारों से बदसलूकी के आरोप पर सियासत तेज, कांग्रेस ने मोदी शाह पर निशाना साधा। दिल्ली पुलिस ने वायरल वीडियो को बताया फर्जी, कहा महिला पत्रकारों से बदसलूकी का वीडियो दिल्ली पुलिस का नहीं है। दिल्ली में जंतर मंतर पर हुए रविवार के प्रदर्शन में 15 पुलिसकर्मी घायल, करीब 110 प्रदर्शनकारी हिरासत में। ओवैसी का बीजेपी आरएसएस पर बड़ा आरोप, फॉर्म 7 के जरिए वोटर लिस्ट से नाम हटाने की साजिश का दावा किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष के मोदी को गैरकानूनी पीएम बताने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार, पूछा क्या आप गैरकानूनी है खड़गे जी, क्या राहुल गांधी भी गैरकानूनी सांसद। पटना में बीजेपी के शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी खड़गे का पलटवार करते हुए कहा उनका बयान 140 करोड़ भारतीयों का अपमान। राहुल गांधी के डिजिटल सत्याग्रह पर बोले चिराग पासवान, कहा सत्याग्रह नाम अच्छा लेकिन विपक्ष को झूठ और भ्रम फैलाने छोड़ सच बोलना चाहिए। यूपी में कांग्रेस एसपी में सीट बंटवारे को लेकर जुबानी जंग के बीच बोले अखिलेश यादव, बात सीट की नहीं जीत की है। अखिलेश ने योगी सरकार से लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा डबल इंजन अब बन गया है ट्रबल इंजन, जनता बीजेपी से मुक्ति का ले चुकी है संकल्प। यूपी में सीट बंटवारे पर कांग्रेस का बयान, यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र गौतम बोले मैंने 200 सीटों की बात की थी, सीटें मिलेंगी तभी जीत संभव। भदोही में सीएम योगी ने अखिलेश राज पर साधा निशाना, बोले 2017 से पहले राज्य का खजाना था खाली, यूपी अब देश का ग्रोथ इंजन। भदोही का नाम बदलकर अब होगा संत रविदास नगर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा फैसला। समाजवादी पार्टी के स्थापना के 34 साल होने पर बीजेपी का हमला, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के 34 साल का हिसाब गुंडा राज और माफिया राज के नाम से जारी किया 4 पेज का प्रोशर। उत्तराखंड की खटीमा में उत्तराखंड आदि रंगोत्सव का सीएम धामी ने किया शुभारंभ, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सम्मान और सशक्तिकरण को मिली नई गति। खटीमा में सीएम धामी ने निकाला रोड शो, केंद्रीय मंत्री रिजिजू और ज्वेल उरांव भी शामिल हुए। 15 दिनों तक चलेगा उत्तराखंड आदि रंगोत्सव। उत्तराखंड गुजरात के बाद यूसीसी को लेकर बंगाल में भी बड़ा ऐलान, सीएम शुभेंदु अधिकारी बोले 6 महीने के भीतर लागू होगा यूसीसी। बीजेपी का कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना, पूरी दुनिया स्मिथ मचार की तारीफ कर रही है लेकिन गांधी परिवार ने मचार के लिए एक शब्द नहीं बोला, गाजा पर आंसू बहाने वाले मचार पर चुप क्यों। अनंत सिंह नीरज कुमार विवाद के बीच निशांत कुमार का बयान आया सामने, कहा पटन स्नातक सीट पर नीरज कुमार को जिताई। करनाल में मार्केट कमेटी के सामने किसानों का प्रदर्शन। सीएम नायब सिंह सैनी का पुतला फूंका गया, कहा जल्द सरकार ने धान खरीद को सुचारू रूप से नहीं किया तो सड़कों पर उतरे। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट, उत्तराखंड से दिनेश आर्य को बनाया गया उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल से बीजेपी ने रुक्मणी मलिक उर्फ कोयल मलिक को राज्यसभा के लिए बनाया प्रत्याशी। टीएमसी राज्यसभा सांसद से 16 जुलाई को इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुई थी रुक्मणी। कोलकाता में सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के बाहर हिंदू जागरण मंच का प्रदर्शन, संस्थान के छात्रों पर भारत माता की तस्वीर फाड़ने, स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर पैर रखने का आरोप। कैप्टन स्मिथ मजार के जल्द स्वस्थ होने की कामना में आसनसोल में महामृत्युंजय जाप और हवन यज्ञ, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। दिल्ली में आर्टिस्ट इवेंट क्रिकेट लीग के समापन समारोह में शामिल हुए आशीष सूद, दिल्ली में 5 स्टेडियम को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का ऐलान। ओडिशा के भुवनेश्वर में जीवन जिंदाबाद 2.0 अभियान की शुरुआत, राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया कार्यक्रम। कार्यक्रम में कई नाट्य प्रस्तुतियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए पेश, सीएम मोहन चरण माजवी इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के तौर पर शामिल। दुबई में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर यस अवार्ड्स 2026 का आयोजन, शिक्षा नेतृत्व नवाचार और सामाजिक सेवा में योगदान देने वालों को किया गया सम्मान। बिहार के छपरा में बांध टूटने से गुस्साए ग्रामीणों ने इंजीनियर और एसडीओ को बाढ़ के पानी में फेंकने की कोशिश की, किसी तरह से दोनों की बची जान। बिहार के बगहा में बाढ़ से प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, करीब 1000 परिवारों को पहुंचाई गई राहत सामग्री। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ के पानी में डूबी किताबें दिखाकर छात्र ने शिक्षा मंत्री से पूछे सवाल, वीडियो वायरल। बिहार के सारण में गंडक नदी का कहर, ड्रोन कैमरे में कैद जलप्रलय का खौफनाक मंजर आया सामने, कई गांव जलमग्न, घर खेत रास्ते सब पानी में डूबे। लखनऊ में गोमती नदी का रौद्र रूप, खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर, बाढ़ का संकट गहराया, कई इलाके जलमग्न। तमिलनाडु में भारी बारिश, जलप्रलय के बाद सड़कों पर भरा पानी, ट्रैफिक पर पड़ा असर। शिमला में अंकित बालियान हत्याकांड में 3 इनामी आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा, सोनीपत करनाल में घरों की कुर्की। पंजाब पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का किया पर्दाफाश, सीमा पार ड्रोन से भेजी गई AK-47 और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद। गुजरात के जूनागढ़ में तेज रफ्तार बाइक का बिगड़ा संतुलन, रिक्शा को ओवरटेक करते समय युवक को मारी गई टक्कर, मौके पर हुई मौत। हैदराबाद के सिकंदराबाद में देरी से फूड डिलीवरी पर बवाल, दंपति ने डिलीवरी एजेंट को जमकर पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया केस। जयपुर में पिटाई के विरोध में सड़क पर उतरे छात्र, पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा। पंजाब के अजनाला में तैनात एएसआई सुखचैन सिंह पर चली गोलियां, सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। भटिंडा के जस्सी चौक में शराब के ठेके के बाहर कुल्हाड़ी से हमला, एक शख्स की हत्या। बिहार के सहरसा में कारू बाबा स्थान न्यास विवाद में कई राउंड की गोलियां चली, एक शख्स को गोली मारी गई और गुस्साए लोगों ने महंत की गाड़ी को भी आग के हवाले किया। बिहार के जमुई में 2 गर्भवती महिलाओं की मौत मामले में प्राइवेट क्लिनिक पर छापेमारी, जिला प्रशासन ने क्लिनिक को किया सील। उत्तराखंड के विकासनगर में खौफनाक सड़क हादसे का लाइव वीडियो आया सामने, एक शख्स की मौत, 2 घायल। लुधियाना में चचेरे भाई निकला पूर्व सरपंच का कातिल, जमीनी विवाद में कार्रवाई। बिहार के बांका में नाबालिग लड़की से छेड़खानी और जबरन मांग में सिंदूर डालने का मामला सामने आया, 6 युवकों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के औरैया में बेटे ने ही मां को मौत के घाट उतारा, आरोपी बेटा गिरफ्तार। इंदौर में गोलीकांड का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 नाबालिग भी हिरासत में लिया गया। अहमदाबाद में आरोपियों की कार के दरवाजे पलटक कर इंस्पेक्टर ने कार रोकी, खेड़ा रेलवे स्टेशन के 4.25 करोड़ रुपए के सोने की लूट करने वाले आरोपियों को वहां से गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के वसई में परिवहन बस की बाइक को टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। अलवर में सेक्सटॉर्शन के नाम पर साइबर ठगी करने वाले बदमाश गिरफ्तार, एआई की मदद से लड़की बनकर बनाता था अश्लील वीडियो। अलीगढ़ में 45 किलो चरस के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 करोड़ बताई जा रही है 45 किलो चरस की कीमत। चंदौली में 1.5 करोड़ की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त, हरियाणा से बिहार ले जाते समय कार्रवाई। करनाल में 20 साल के बच्चे की हत्या मामले में 3 गिरफ्तार, कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। ग्रेटर नोएडा में दुकान का लेंटर गिरने की वजह से मजदूर की मौत, 1 घायल। बिहार के रोहतास में पारिवारिक विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या की, आरोपी गिरफ्तार। आगरमालवा के नलखेड़ा में व्यापारी से लूट के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करीब 14 किलो चांदी के साथ 8 आरोपी गिरफ्तार। असम के जोरहाट में नाव पलटने की वजह से 3 बच्चों की मौत हुई, छोटी नाव में थे सवार। बिहार के बेगूसराय में सोशल मीडिया पर पत्नी की तस्वीर लगाने से मना करने पर पड़ोसी ने पति पत्नी को मारी गोली, दोनों घायल। यूपी के इटावा में महादेव गेम के नाम पर करोड़ों का खेल, 15 लाख कैश के साथ 3 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सीआईएसएफ जवान की गर्लफ्रेंड की संदिग्ध मौत, साथ में रह रही थी मृतका। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में 6 लोगों पर तेंदुए का हमला, 3 की हालत नाजुक, घर में घुसकर किया वार। हल्द्वानी में घर के बाहर खड़ी स्कूटी से निकला सांप, 8 फीट लंबे सांप को स्नेक कैचर ने पकड़ा। हिमाचल के सोलन में सैलानियों का सैलाब, दिल्ली शिमला हाईवे पर लगा लंबा जाम। लॉन्ग वीकेंड पर मसूरी में उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़, 80% से ज्यादा होटल रहे बुक। सुहाने मौसम का सैलानी आनंद लेते दिखे, मॉल रोड पर दिखी सैलानियों की भारी भीड़, कारोबारियों के खिले चेहरे। बागेश्वर धाम में आने वाले महिला भक्तों से बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अपील, महिलाएं अकेली न आए धाम। धर्मशाला में पर्यटकों की भारी भीड़, बदले मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। एशियन गेम्स में देश के लिए मेडल जीतकर वतन लौटे पदकवीर, एयरपोर्ट पर एथलीट्स का भव्य तरीके से हुआ स्वागत। एशियन गेम्स में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद स्वदेश लौटे क्रिकेटर संजू सैमसन, ईशान किशन और अर्षदीप सिंह। मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे, परिवार ने किया वेलकम, घर रवाना। गोल्फ इवेंट में देश को सिल्वर मेडल दिलाने वाली जज्जर की बेटी दीक्षा डागर का शानदार स्वागत, देश के लिए पदक हासिल करने को बताया ऐतिहासिक पद। सिल्वर मेडलिस्ट पहलवान अंतिम पंगाल का भी वतन वापसी पर जोरदार स्वागत हुआ, बोले भविष्य में सिल्वर मेडल को गोल्ड में बदलने की करेंगे कोशिश। परिणीति चोपड़ा की नई फिल्म रिपोर्टिंग लाइव का ट्रेलर रिलीज, पत्रकार के किरदार में नजर आएंगी परिणीति। सलमान खान की फिल्म मातृभूमि को लेकर बड़ी खबर, सेंसर बोर्ड और मेकर्स की तरफ से मिली मंजूरी। आयुष्मान खुराना की आने वाली कॉमेडी ड्रामा फिल्म उड़ता तीर की रिलीज डेट को आगे बढ़ाया गया। फिल्म तू है मेरी किरण के प्रमोशन में जुटी सोनाक्षी सिन्हा, मुंबई की सोफिया कॉलेज में छात्राओं से की मुलाकात। एक्ट्रेस कृतिका कामरा अपने पति गौरव कपूर के साथ ग्रीस में आई नजर, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। रूसी सेना का यूक्रेन की राजधानी कीव पर भीषण हमला, जर्मन चांसलर के कीव पहुंचते ही रूस ने यूक्रेनी पुल को उड़ाया, इससे पहले रूस में सुमी इलाके में भी की गई थी बमबारी। जंग के बीच यूक्रेन दौरे पर जर्मन के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, राजधानी कीव में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते समय बजे रेड सायरन। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची का अमेरिका को चेतावनी, कहा अगर दुश्मन ने हमला किया तो देंगे मजबूती से जवाब। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ का बड़ा बयान, कहा समझौते की 7 शर्तें पूरी होने के बाद ही खुलेगा हुर्मुज, बात को टालने और एक तरफा मांगे थोपने का दौर अब खत्म हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ओहायो की रैली में एआई के लिए जरूरी डेटा सेंटर्स का किया बचाव, कहा यदि इन्हें बंद किया गया तो ये तकनीक और सारा पैसा चीन के पास चला जाएगा। अब खबर यूक्रेन की राजधानी कीव में हुई रूसी ड्रोन हमले की। दरअसल एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें कीव के नॉर्थ ब्रिज पर ड्रोन हमले की तस्वीर कैद हुई है। यह हमला रविवार 4 अक्टूबर को उस वक्त हुआ जब जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज राष्ट्रपति जेलेंस्की के समर्थन में कीव

तस्वीरों के आधार पर हमले की जगह की पुष्टि की गई है। रूस पिछले एक हफ्ते से कीव के पुलों को निशाना बना रहा है। बताया जा रहा है कि इसका मकसद राजधानी के दोनों हिस्सों के बीच संपर्क और यूक्रेन के अहम लॉजिस्टिक्स मार्गों को बाधित करना है। जर्मन चांसलर के कीव दौरे के बीच यह हमला हुआ है और ये तस्वीरें आप देखें, कीव के ब्रिज पर वार किया। और अब खबर यमन के हूती विद्रोहियों की, जिन्होंने दावा किया है कि रविवार को उन्होंने रियाद और खुरैस इलाके में सऊदी अरामको कंपनी की साइट्स पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। उनके दावों के मुताबिक इन हमलों से वहां पर भीषण आग लग गई। ये कार्रवाई यमन पर सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के 50 हवाई और मिसाइल हमलों के जवाब में की गई है। हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल दागे, ड्रोन से भी हमला किया गया है और ये कार्रवाई मिसाइल हमलों के जवाब में की गई है, ऐसा दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। 50 हवाई और मिसाइल हमलों के जवाब में अटैक किया गया। चलिए यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार। सर एक बार दो तो ठुमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
4: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
3: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
5: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
4: कौन सी बनानी है?
6: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
9: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
8: असली शहद, असली स्वाद।
10: यार लोन भूल गया। मैरी
11: सजेस्ट अ गुड बैंक ना।
12: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
10: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
12: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
13: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
14: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
15: सर कैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
16: कैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
17: गड़बड़ है।
18: गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
19: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
5: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
13: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं, पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
4: इट्स अ माय वे।
8: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।
15: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
12: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
15: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
2: भर्ती बोर्ड और आयोग जब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं और वहां से पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं, जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। और यह पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है, कल भी है, 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
3: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
5: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
6: कौन सी बनानी है?
7: गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
8: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
9: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
10: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
9: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
11: एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों के बीच सीईसी ज्ञानेश कुमार पर संग्राम बढ़ता जा रहा है। मांग इस्तीफे की हो रही है, शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा तेज होता जा रहा है, दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार जंग छिड़ी है, मुंबई में भी विरोध की आग धधक रही है। इस बीच सीईसी के बहाने केंद्र सरकार पर सियासी हमले भी तेज होते जा रहे हैं। अब विवाद के बीच बड़ा हमला हुआ है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो हाल के सालों में हुए सभी चुनाव को गैर कानूनी बता रहे हैं, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
12: देश जो चल रहा है वो इलीगल इलेक्शन पे चल रहा है, मोदी इलीगल प्राइम मिनिस्टर, शाह इलीगल मिनिस्टर, और जितने भी अब चीफ मिनिस्टर्स बने कहां के भी, वो सब इलीगल, सबको डिसॉल्व करना, इलेक्शन कराना और बैलेट पे इलेक्शन कराना, क्योंकि ईवीएम का मिसयूज हो रहा है, ये खुद ही उनके लोग कर रहे हैं।
11: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेताओं के हमले तेज हैं। तमाम संगठनों ने भी सड़क पर मोर्चा खोल रखा है। इस बीच सरकार और विपक्ष में वार पलटवार का दौर चल रहा है। विपक्ष से इसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। चर्चा ये भी है कि विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर भी विचार कर रहा है। इस सब के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
12: जो चल रहा है वो इलीगल इलेक्शन पे चल रहा है, मोदी इलीगल प्राइम मिनिस्टर, शाह इलीगल मिनिस्टर, और जितने भी अब चीफ मिनिस्टर्स बने कहां के भी, वो सब इलीगल, सबको डिसॉल्व करना, इलेक्शन कराना और बैलेट पे इलेक्शन कराना, क्योंकि ईवीएम का मिसयूज हो रहा है।
13: मल्लिकार्जुन भले गांधी परिवार के दास हो सकते हैं, देश का लोकतंत्र मजबूत है। कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रहा, ये मुस्लिम लीग कांग्रेस है, जो सोची समझी रणनीति के तहत देश के संवैधानिक संस्थान के ऊपर आरोप लगाना, देश में भ्रम फैलाना, ये काम हो गया है राहुल गांधी एंड कंपनी का। या तो वो सत्ता भोगेंगे, नहीं तो देश को जलाने की योजना बनाएंगे।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सी और एसआईआर के विरुद्ध कल होने वाले इंडिया अलायंस के सामूहिक हल्ला बोल से पहले आज कांग्रेस की बड़ी बैठक, राज्यों के पार्टी प्रमुखों के साथ मेगा प्लान पर होगी चर्चा। सीईसी को सस्पेंड करने और बिना अधिकार के लिए गए फैसलों को रद्द करने वाली अर्जी पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। केरल सरकार ने खोली ज्ञानेश कुमार की कथित करप्शन वाली पुरानी फाइल। राज्यसभा चुनाव के लिए आज सामने आ सकती है यूपी से बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट। समाजवादी पार्टी के तीसरे कैंडिडेट पर सस्पेंस से भी उठ सकता है पर्दा। 16 अक्टूबर को होना है मतदान। पंजाब में नहीं रुक रहे हैं पुलिस वालों पर हमले। अमृतसर में फिर जीआरपी के एएसआई पर हुई फायरिंग। जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती, घर लौटते वक्त 3 लोगों ने किया था अटैक। नाइन इलेवन की तर्ज पर प्लेन को इजराइल एयरपोर्ट की इमारत से टकराकर क्रैश कराना चाहता था आरोपी को पायलट। पूछताछ में हुआ खुलासा, पहले भी कर चुका है हाईजैकिंग की नाकाम कोशिश।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि सवाल। सुबह 10 बजे के बुलेटिन में बाद दो अहम सियासी खबरों की। पहली खबर सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ घेराबंदी से जुड़ी हुई है। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर सियासी मोर्चाबंदी तेज होती जा रही है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक विरोध प्रदर्शन का दौर है। विपक्षी दलों के साथ कई संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं। इस बीच 6 अक्टूबर को होने वाले इंडिया गठबंधन के मार्च से पहले कांग्रेस ने आज विरोध की रणनीति पर मंथन के लिए प्रदेश प्रमुखों की एक बैठक बुलाई है। बुलेटिन में बात उत्तर प्रदेश की सियासत की भी करेंगे, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। एक दिन पहले सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को संदेश दिया था, तो जवाब में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने 200 सीटों वाला राग छेड़ दिया है। एसपी और कांग्रेस दोनों ओर से तल्ख बयानों का दौर जारी है, जिसे लेकर बीजेपी का हमला भी अब शुरू हो चुका है। लेकिन बात करते हैं पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की। एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर संग्राम बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। लगातार जारी विरोध प्रदर्शन के बीच आज दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने एक अहम बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में सीईसी ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की रणनीति पर मंथन होगा। वहीं चुनावी गड़बड़ियों के मुद्दे पर आज जंतर मंतर एनएसयूआई के कार्यकर्ता विरोध का मोर्चा संभालेंगे। और विवाद के बीच बड़ी खबर यह भी है कि आज ही मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसलों को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। इस सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुयान ने बड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस भुयान ने कहा है कि कोई भी दलील मताधिकार छीनने वाली प्रक्रिया को सही नहीं ठहरा सकती है। तो इसके क्या मायने होंगे ये भी आपको समझाएंगे। चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का विरोध अब और तेज होता दिख रहा है। आज कांग्रेस नई दिल्ली में एआईसीसी प्रभारियों, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और वरिष्ठ संगठन पदाधिकारियों की अहम बैठक करने जा रही है। इस बैठक में चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के विरोध में प्रस्तावित आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। हमारे सहयोगी राहुल गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, आइए सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राहुल, रणनीति पर मंथन बेहद जरूरी है। सभी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन क्या बातें हैं जिन पर खास फोकस रहेगा, क्योंकि कुछ मांगे हैं जिनसे बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है कांग्रेस।
1: देखिए, मुख्य तौर पर आप कह सकते हैं कि तीन ऐसी मुख्य मांगे हैं कांग्रेस पार्टी जिससे पीछे हटने को कतई तैयार नहीं है, जिसमें सबसे पहले है इस्तीफा होना चाहिए ज्ञानेश कुमार का, इसके अलावा उनके खिलाफ जांच बैठनी चाहिए और जो मौजूदा एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है देश भर में उसको भी रोकने की मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी। और इसी को लेकर आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें तमाम जो लोग हैं वो शामिल होंगे, जिसमें तमाम जनरल सेक्रेटरी, इंचार्जेस, जो राज्यों के अध्यक्ष हैं वो, और आप जानते हैं कि 8 तारीख को भी कॉल दिया है कांग्रेस पार्टी ने देश भर में जिलेवार प्रदर्शन करने का। तो कुल मिलाकर सड़क पर अपनी जो ताकत है वो कितनी मजबूत है, कैसे लोगों को मोबिलाइज करना है, कैसे लोगों को इस मामले के बारे में अवेयर करना है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी। आप एक्सपेक्ट करिए इस बैठक के अंदर, क्योंकि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम बड़े बड़े नेता शामिल होंगे, तो वहां से भी एक नई, आप कह सकते हैं, नई स्ट्रैटेजी का गठन होगा। क्योंकि जिस प्रकार से आप जानते हैं कि सरकार लगातार ये बात कह रही है कि वो एक संवैधानिक पद पर हैं ज्ञानेश कुमार, और जिस तरीके का माहौल उनके खिलाफ बनाया जा रहा है वो बिल्कुल मिथ्या है, तमाम चीजों को झूठ बोला जा रहा है। इन तमाम चीजों को किस प्रकार से काउंटर करना है कल के मार्च में, आने वाले दिनों के अंदर उन तमाम चीजों को लेकर गहन चर्चा होगी।
0: शुक्रिया राहुल इस जानकारी के लिए। तो कांग्रेस नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ रणनीति पर मंथन करेंगे। वहीं कांग्रेस का छात्र संगठन यानी कि एनएसयूआई सड़कों पर मोर्चाबंदी की तैयारी में है। जंतर मंतर पर आज एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए जुट रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार जंतर मंतर, इंडिया गेट, इधर के इलाकों में प्रदर्शन मार्च जारी है और आज एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन के लिए जुट रहे हैं। जंतर मंतर के पास ही वो भी जाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में पुलिस वहां पर तैनात है, सुरक्षा चाक चौबंद है, तो कितनी उनको सफलता मिलती है इस पर हमारी नजर रहेगी। उधर सीईसी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। आज सुबह दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर कुछ प्रदर्शनकारी धरने पर बैठ गए, जिन्हें पुलिस वालों ने हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि महिला पत्रकारों से जो बदसुलूकी हुई है उस मामले में फौरन FIR दर्ज की जाए। हालांकि पुलिस का कहना है कि शिकायत क्राइम ब्रांच को भेज दी गई है, क्राइम ब्रांच की ही अब इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन जो लोग वहां जुटे थे वो ये कह रहे थे कि कुछ भी हो सबसे पहले FIR तो दर्ज होनी ही चाहिए। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ाई तेज होती जा रही है, लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, हर रोज सड़कों पर संग्राम छिड़ता हुआ दिख रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें एक दिन पहले दिल्ली से भी सामने आई, जहां प्रदर्शन को लेकर भारी बवाल भी मचा।
2: दिल्ली के जंतर मंतर पर कल देर शाम यूथ कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध की मशाल जलाई।
3: देख सकते हैं कि हाथ में संविधान की कॉपी लेकर और मोमबत्ती लेकर यहां पर IYC के जो कार्यकर्ता हैं भारी संख्या में रायसीना रोड अपने जो मुख्यालय के बाहर से जंतर मंतर की ओर कूच कर रहे हैं। हाथ में उनकी मोमबत्तियां पकड़ रखी हैं, उनका एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। बड़ी मांग ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जो है इस्तीफा दे, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी हो।
4: देश के संविधान के हत्यारे हैं, देश के 13 करोड़ भारतीय जिनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू वोट, वो छीना है ज्ञानेश ने, ताकि उसके मालिक जिनका टट्टू ये बना हुआ है मोदी और शाह वो सरकार में रहें। इससे बड़ा अपराध देशद्रोह कोई नहीं हो सकता। और हमारी डिमांड है जब तक ज्ञानेश जेल में नहीं जाता इस्तीफा देकर, तब तक देश के युवा यूथ कांग्रेस साथी पूरे देश की सड़कें गर्म करते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे इस अपराधी के खिलाफ।
2: कल दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक और प्रदर्शन आयसा ने किया। तस्वीरें देखिए किस तरह पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटा रही है। आयसा कार्यकर्ता आंध्र भवन से जंतर मंतर की तरफ मार्च कर रहे थे, जिसे बीच में ही पुलिस ने रोक दिया।
5: सवाल ये नहीं है पुलिस आगे जाने दे रही है, नहीं, सवाल ये है कि पुलिस महिला आंदोलनकारियों के साथ किस तरह से व्यवहार कर रही है। आप देखिए ये बहादुर महिलाएं हैं जिन्होंने हिम्मत के साथ दिल्ली पुलिस के जो बदमाशी है उसको एक्सपोज किया है।
6: ये है पुलिस चोर को बचाने में इतनी मशरूफ हो गई है, दिल्ली में पुलिस चोरों को बचा रही है, ये रियलिटी है।
2: प्रदर्शन का एक और मोर्चा दिल्ली के संसद मार्ग थाने पर भी देखा गया। यहाँ मुद्दा था 3 अक्टूबर के प्रदर्शन के दौरान 3 महिला पत्रकारों से बदसलूकी करने वाले पुलिस अफसर पर कार्रवाई की मांग का।
7: ये है कि ये पुलिस थाना का केवल एक ही काम है, एक सेक्सुअल हैरेसर को बचाने का आज ये थाना बना है। ये सेक्सुअल हैरेसर को बचा रहे हैं। हम लोग सालों से संघर्ष करके कानून बनवाए हैं कि किसी भी लड़की की कंप्लेंट पर FIR करना अनिवार्य है। ये पूरे कानून को बदल रहे हैं इस केस में और ACP को बचाने का काम कर रहे हैं।
2: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर विपक्ष की तरफ से चौतरफा घेराबंदी जारी है। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा का, जो इस वक्त मौजूद है NSUI के हेडक्वार्टर पे, सीधा वहीं चलते हैं। पीयूष, कल हमने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टियां सामने आई और आज NSUI तैयारी कर रही है, क्या देख रहे हैं अपने आसपास, कब तक प्रदर्शन शुरू होने की उम्मीद है?
8: जी बिल्कुल अंजलि, 12 बजे का समय दिया गया है NSUI के द्वारा अपने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का। इस वक्त मेरी मौजूदगी NSUI के दफ्तर के ठीक बाहर है, मैं एक बार आपको तस्वीर दिखाऊं। फिलहाल यहां पर वैसी तैयारी जो अमूमन हम धरना प्रदर्शन जब होता है तब देखते हैं वैसी नहीं है। कुछ चुनिंदा पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं और ये NSUI मुख्यालय का मेन गेट है। अभी कार्यकर्ता भी इतनी भारी संख्या में नहीं आए, लेकिन उम्मीद यही है कि कुछ देर में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचेगा। लेकिन कुछ तैयारी जो है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा की भी गई है। आप देख सकते हैं कैसे बैरिकेड का एक पूरा बैरिकेडिंग है, पूरा एक लेयर यहाँ पर क्रिएट किया गया और कुछ देर में यानी 11:30-12 के आसपास हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा क्योंकि एनएसयूआई के कार्यकर्ता भारी संख्या में यहाँ से निकलकर ये जो सामने गेट है यहाँ से निकलकर वो आगे की तरफ मार्च करेंगे। यानी कि ये जो एनएसयूआई के दफ्तर से अमूमन मार्च होता है आगे जो जंतर मंतर की तरफ जाता है, जंतर मंतर महज यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन उससे पहले जो है ये तैयारी जरूर की गई है एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा कि भारी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हो
0: और जब ये मार्च शुरू होगा तब हम जरूर इसकी टो लेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि एक और पूरा विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ मोर्चेबंदी में जुटा हुआ है, रणनीति पर मंथन हो रहा है, लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर संग्राम भी बढ़ता जा रहा है। चुनाव आयोग को लेकर विवाद के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला और कहा कि दोनों गैर कानूनी चुनाव से पद पर हैं, जिसके बाद बीजेपी का जवाबी हमला शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सवाल किया है कि क्या राहुल गांधी भी गैर कानूनी सांसद हैं।
9: आज देश जो चल रहा है वो इलीगल इलेक्शन पे चल रहा है। मोदी इलीगल प्राइम मिनिस्टर, शाह इलीगल मिनिस्टर और जितने भी अब चीफ मिनिस्टर्स बने कहाँ के भी वो सब इलीगल, सबको डिसॉल्व करना, इलेक्शन कराना और बैलेट पे इलेक्शन कराना, क्योंकि ईवीएम का मिसयूज हो रहा है ये खुद ही उनके लोग कर रहे हैं।
10: दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है और दुनिया उदाहरण देती है भारत के लोकतंत्र के, लेकिन लोकतंत्र का अपमान करना, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना, चुनाव हारने पर चुनाव आयोग को बदनाम करना, जनता के जनादेश का अपमान करना, ये कांग्रेस के डीएनए में है। राहुल गांधी जी के इशारे पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को अवैध कहा, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये जनादेश का अपमान है, ये संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना है, ये लोकतंत्र के प्रति अनास्था पैदा करना है, ये देश में अराजकता फैलाने का प्रयास है।
9: मल्लिकार्जुन भले गांधी परिवार के दास हो सकते हैं, देश का लोकतंत्र मजबूत है। कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रहा, ये मुस्लिम लीग कांग्रेस है जो सोची समझी रणनीति के तहत देश के संवैधानिक संस्थान के ऊपर आरोप लगाना, देश में भ्रम फैलाना, ये काम हो गया है राहुल गांधी एंड कंपनी का।
0: और इस बीच सीईसी को निलंबित करने और उनके फैसलों को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। याचिका में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयोग के दो आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी की सहमति के बिना कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। याचिका में मांग की गई है कि अगर ये फैसले चुनाव आयोग की सामूहिक सहमति के बिना लिए गए हैं तो उन्हें असंवैधानिक और शून्य घोषित किया जाए। साथ ही अंतिम सुनवाई तक सीईसी को उनके पद और उनके कार्यों से निलंबित किया जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले एसआईआर विवाद पर जस्टिस उज्जवल भुयान का बड़ा बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुयान ने कहा है कि ऐसी कोई भी प्रक्रिया मनमानी है जो लाखों भारतीयों को वोटिंग के अधिकार से रोकती है, इसे कोई भी बहाना सही नहीं ठहराया जा सकता इस प्रक्रिया को सामने लाने के लिए।
11: द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर टू क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, वन क्लास ऑफ सिटीजन्स विद वोटिंग राइट्स and the other class of citizens without voting rights. Any process which leads to wholesale disenfranchisement of Indian citizens, making them citizens without voting rights, in my view, would be outrightly violative of Articles 326 and 14 of the Constitution of India.
0: चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों की मोर्चाबंदी तेज हो गई है. इस बीच मुंबई में चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली और मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर कल विपक्ष ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है. शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की अगुवाई में मुंबई में गर्जना मार्च निकाला गया. इस मार्च में कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट के नेता भी शामिल हुए. मार्च के बाद जनसभा में उद्धव और राज ठाकरे ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर ताबड़तोड़ हमला बोला. उधर मुंबई में विपक्ष के गर्जना मार्च में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर हमला बोल दिया है. साथ ही उद्धव ने बीजेपी को भी निशाने पर किया है. चुनाव आयोग पर हमला बोला और कहा अब देश में इंडिया अगेंस्ट वोट चोरी का नारा उद्धव ठाकरे ने वहां पर दिया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने करोड़ों मतदाताओं का वोट चुरा लिया है.
12: इतिहासामध्ये घडलेलं एक उदाहरण आहे हिटलरचं. हिटलर कोणालाही घाबरत नव्हता, पण हिटलर वरती अशी वेळ आली की त्याला स्वतः स्वतःवरती गोळी झाडून आत्महत्या करावी लागली. पण हिटलर गेला आणि हिटलर गेल्यानंतर त्याला एक न्यूरेमबर्ग ट्रायल म्हणून तो एक शब्द आहे. जे अधिकारी त्या हिटलरच्या पापामध्ये सहभागी होते त्यांना शोधून शोधून काढलं, त्यांच्यावरती खटले भरले गेले, काही जणांना फासावर लटकवलं, काही जणांना तुरुंगात चढून टाकलं, तोच क्षण आपल्या देशात उद्या आल्याशिवाय राहणार नाही एवढं भाजप आणि या सगळ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवावं.
13: कारण हे गजनी झाले आहेत, त्यामुळे या गजनींना मी आठवण करून देऊ इच्छितो की ज्ञानेश कुमार मुख्य निवडणूक आयुक्त हे 2025 मध्ये झाले, महाराष्ट्राच्या निवडणुका 2024 मध्ये झाल्या, एसआयआर 2026 मध्ये झाला.
0: आगे बढ़ते हैं अब बात यूपी की सियासत की. यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों दल साथ चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं. दोनों गठबंधन भी करना चाहते हैं लेकिन सीटों को लेकर खींचतान कुछ अलग ही शक्ल ले रहा है. अब गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियों के नेताओं के हाल के दिनों में कई बयान सामने आए हैं. फिर अखिलेश ने दिल्ली में इंडिया गठबंधन से दूर रहकर जो उनकी बैठक हुई थी उसे एक नई खलबली पैदा कर दी. इसके बाद अखिलेश ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से कांग्रेस को स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है लेकिन कांग्रेस ने इस संदेश का जो जवाब दिया है उससे लग रहा है कि सीटों के बंटवारे का रास्ता इतना सीधा और आसान नहीं रहेगा.
14: 150 सीटों की कथित तौर पर मांग की गई थी आप ही की तरफ.
15: किसने किया 150 का? मैंने तो 200 की बात की थी जिनके साथ हमारा गठबंधन है इंडिया ब्लॉक में. यूपी में तो हम दो पार्टी हैं बेसिकली, तो कांग्रेस और सपा है. दोनों जिम्मेदार हैं, एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं और एक दूसरे को साथ के लेके भी चलना है. तो निश्चित तौर पर सीट शेयरिंग का मामला हमें अक्टूबर में निपटा लेना चाहिए ताकि हम अपने कैंडिडेट्स को टाइम दे पाए. हिस्सेदारी सम्मान बराबर होना चाहिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ. और साथ में ये भी कह रहा हूँ हम लोग लचीले हैं भारत के संविधान की तरह. सम्मान की बात आए तो भारत के संविधान की तरह रिजिड है. सीट शेयरिंग की बात आएगी तो भारत के संविधान की तरह लचीले भी हैं, फ्लेक्सिबल भी हैं. थोड़ा बहुत झुकना पड़ेगा, झुकेंगे क्योंकि जीतना जरूरी है. तो जीतने के लिए तो लड़ रहे हैं हम.
14: बट वो कह रहे हैं कि बात जीत की की जाए
15: सीट. हाँ तो हम भी तो जीत की कर रहे हैं.
14: आप सीट की बात कर रहे हैं.
15: सीट मिलेगी तभी तो जीतेंगे, चुनाव लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे. बिना लड़े कोई जीतता है क्या?
0: तो कांग्रेस के 200 सीट वाले दावों पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है. समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा है कि जिस पार्टी का प्रदेश में संगठन ही मजबूत नहीं उसके लिए 200 सीटें मांगनी जायज नहीं है.
16: जिस दल का उत्तर प्रदेश में मजबूत संगठन नहीं है ये बात कांग्रेस जानती है. पूरे राज्य में शायद उनका संगठन भी नहीं है फिर भी उनको 150-200 सीटें चाहिए. समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसलिए पहले ही कहा कि सवाल सीट का नहीं सवाल जीत का है और कांग्रेस को यह तय करना पड़ेगा कि उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से है या भारतीय जनता पार्टी से।
0: और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव। समर्थ, अखिलेश यादव एक तरफ पोस्ट करके कहते हैं कि जीतना जरूरी है ऐसा गठबंधन हो, वहीं दूसरी तरफ बार बार कांग्रेस की तरफ से सीट का आंकड़ा बढ़ा दिया जाता है और छोटी पार्टियों से भी मुलाकातें जारी रहती हैं। आखिर क्या मायने हैं इस सबके?
17: देखिए, कुल मिलाकर ये प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर चल रहा है दोनों ही दलों के बीच में, चाहे बात आप समाजवादी पार्टी की कर लें या कांग्रेस पार्टी की कर लें। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इमरान मसूद जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, राजेंद्र पाल गौतम जिनकी तरफ से लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम प्रवक्ताओं के बयान आते दिखाई पड़ते हैं, एसपी सिंह के बयान आते दिखाई पड़ते हैं। कहानी ये है कि समाजवादी पार्टी एक बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहती है इस पूरे गठबंधन में और दावा यह करती है कि कांग्रेस ने अपने दम पर जब लोकसभा में चुनाव लड़ा मध्य प्रदेश में तो कितनी सीटें जीती, ये सवाल समाजवादी पार्टी कर रही है। प्रदेश में संगठन कितना मजबूत है कांग्रेस का, ये सवाल भी समाजवादी पार्टी कर रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि भाई हम जो है राष्ट्रीय पार्टी है, नंबर दो पार्टी है और हमें बराबर का हिस्सेदारी चाहिए। राजेंद्र पाल गौतम तो ये कहते हैं मैंने 150 तो कभी कहा ही नहीं, मैं तो 200 सीट्स की बात कर रहा हूं। तो एक दौर में जब ये चर्चा चल रही है कि क्या समाजवादी पार्टी 50-70 कितनी सीटें समाजवादी पार्टी को देगी, कांग्रेस को देगी, तो उस दौर में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो प्रभारी है प्रदेश के वो इस तरह का बयान देते हैं कि 200 सीटों की बात होगी। तो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार जारी है और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जब टेबल पर चर्चा सीट शेयरिंग हो तो कहीं ना कहीं ये ना हो कि समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी हो और लोकसभा चुनाव की तरह 15-20 सीटों में उनको निपटा दिया जाए। तो समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि दिवाली के बाद सीट शेयरिंग हो जिससे कि उनका दावा जो है सीट शेयरिंग को लेकर और मजबूत हो, जिससे कांग्रेस को कम से कम सीटें दी जा सके। जी
0: जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: और वही कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
8: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट,
9: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Max Paints. JK Max Paints. खुशियों के रंग।
10: आगे आगे।
11: अरे उधर
10: उधर किधर?
11: करेक्ट करेक्ट।
12: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
14: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
13: स्मॉल बैंक?
14: स्मॉल Privilege Savings Account, Garima Savings Account, Maxima Business, Edge Current Account, Business Maxima Business Privilege, RDF. There's nothing small about them.
13: Okay.
14: Ujjivan, nothing small about us.
15: Sir, GasoFast ki growth to check kijiye. GasoFast 27%, Eno 9.2%.
16: Gadbad hai.
17: Aha, GasoFast wale jeere ka jadoo chala rahe. इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसोफा, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
18: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार धोती थमका लगाने बस।
19: मेरे पास एक आइडिया है।
18: क्या?
19: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
20: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाती पर स्टेज नहीं हिलता,
21: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
22: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
20: कौन सी बनानी है?
23: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
24: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
25: इन एसोसिएशन विद
26: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
6: जेके वॉल मैक्स।
4: बेस्ट पेंट
7: जेके मैक्स।
4: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
8: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
9: मेरे पास एक आइडिया है।
8: क्या?
9: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
10: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
11: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
12: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
9: कौन सी बनानी है?
13: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
14: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं, पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
15: इट्स द माय वे।
16: लव एंड केयर, द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट रेंज ऑफ रबर पेट टॉयज।
17: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है,
18: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
17: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायबिटीज जूस।
19: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
20: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन के गीत सुना।

0: in association with Signature Finest Cardamom Seeds.
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल.
3: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह. फिट तक सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस. लाइफ अपग्रेड करो इजी वे. वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: सीईसी और एसआईआर के विरुद्ध कल होने वाले इंडिया अलायंस के सामूहिक हल्ला बोल से पहले आज कांग्रेस की बड़ी बैठक, राज्यों के पार्टी प्रमुखों के साथ मेगा प्लान पर होगी चर्चा। सीईसी को सस्पेंड करने और बिना अधिकार के लिए गए फैसलों को रद्द करने वाली अर्जी पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। केरल सरकार ने खोली ज्ञानेश कुमार की कथित करप्शन वाली पुरानी फाइल। राज्यसभा चुनाव के लिए आज सामने आ सकती है यूपी से बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट। समाजवादी पार्टी के तीसरे कैंडिडेट पर सस्पेंड से भी उठ सकता है पर्दा। 16 अक्टूबर को होना है मतदान। पंजाब में नहीं रुक रहे हैं पुलिस वालों पर हमले। अमृतसर में फिर जीआरपी के एएसआई पर हुई फायरिंग, जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। घर लौटते वक्त 3 लोगों ने किया था अटैक। नाइन इलेवन की तर्ज पर प्लेन को इजरायल एयरपोर्ट की इमारत से टकरा कर क्रैश कराना चाहता था आरोपी को पायलट। पूछताछ में हुआ खुलासा, पहले भी कर चुका है हाईजैकिंग की नाकाम कोशिश।

0: कहते इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। पंजाब में मान सरकार को बड़ा झटका लगा है। पंजाब मुख्यमंत्री यानी कि सीएम ऑफिस और प्राइवेट लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीबीआई जांच के आदेश पंजाब हाईकोर्ट की तरफ से आ गए। आपको बता दें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें ईडी ने पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखकर पंजाब सीएम ऑफिस और प्राइवेट लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। ईडी ने डीजीपी को 3 पत्र लिखकर कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और आरोप लगाया था कि पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग सीएलयू और अन्य कामों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी असीम बसी का। असीम, क्या कहा है कोर्ट ने इस मामले में?
1: जी, मैं आपको बता दूं कि काफी दिन से सुनवाई चल रही थी और ऑर्डर जो है रिजर्व रखा हुआ था, लेकिन एक बड़ा सेटबैक है पंजाब गवर्नमेंट के लिए। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज यहां पर ऑर्डर सुनाया। उन्होंने कहा कि ये मामला जो है वो सीबीआई को ट्रांसफर हो, फ्रेश केस जो है, क्योंकि जब सीबीआई को मामला जाता है तो फ्रेश केस रजिस्टर किया जाएगा उसमें। और बड़ी बात यह है कि 2 महीने में स्टेटस रिपोर्ट जो है सीबीआई फाइल करेगी। प्लस इसमें बड़ी बात यह कही कि पंजाब पुलिस जो है सीबीआई को इस केस में पूरे में असिस्ट करेगी, मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन या कोई चीज चाहिए होगी तो वो प्रोवाइड करेगी। सो बड़ा सेटबैक है, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने तीन चिट्ठियां लिखी थी पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को, और उसमें एलिगेशन लगाए गए थे कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस, चीफ मिनिस्टर के ओएसडी और जो प्राइवेट पर्सन है वो मिलकर जो है पोस्टिंग, पॉलिसी मेकिंग, आर्म्स लाइसेंस और सीएलयूज और अलग अलग कामों के लिए इसमें पैसे के लेन देन के एलिगेशन थे। ईडी ने डायरेक्टली किया था, ईडी ने बोला था पंजाब डीजीपी को इसमें एफआईआर रजिस्टर किया जाए, लेकिन तीन चिट्ठियां लिखने के बाद भी पंजाब पुलिस ने कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं किया। उसके बाद एडवोकेट निखिल सराफ ने एक पीआईएल डाली पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में और उसकी लंबी सुनवाई हुई। काफी दिनों से ऑर्डर रिजर्व था, लेकिन आज जो इसमें ऑर्डर आया है कि सीबीआई को यह जांच ट्रांसफर हुई है। सो एक बड़ा जोल्ट है, क्योंकि करप्शन के एलिगेशन है और मैटर जो है सीबीआई को ट्रांसफर हुआ है। जी हाँ
0: जी, चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में पहले ही नशा मुक्त करने की बात को लेकर बीजेपी ने वहां मुद्दा बनाया हुआ है। अब ये करप्शन का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा विपक्षी पार्टियों के हाथ लग जाएगा?
1: नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली ऑपोजिशन को बहुत ज्यादा एम्यूनिशन मिलेगा, क्योंकि नशे का मुद्दा ऑलरेडी है। लॉ एंड ऑर्डर हमने देखा है कि हर दूसरे दिन जो है पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं, कल भी अजनाला में हुआ, और अब करप्शन के जो एलिगेशन लग रहे हैं, किस तरह चीफ मिनिस्टर के ओएसडी का भी नाम ईडी ने लिखा था, इसके अलावा प्राइवेट पर्सन का भी लिखा था कि धांधली हो रही है, पोस्टिंग्स के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, जो ईडी ने अपनी एलिगेशन में अपनी चिट्ठी में लिखा पंजाब डीजीपी को। लेकिन उसके बाद पुलिस ने कुछ नहीं किया, लेकिन हाईकोर्ट ने सीबीआई को जो जांच दी है उसके बाद से डेफिनेटली ऑपोजिशन जो है हावी हो जाएगा, अटैक भी करेगा सरकार के ऊपर। लेकिन एक बड़ा जोल्ट है पंजाब सरकार को और इलेक्शन 2027 में है। सो लॉ एंड ऑर्डर, ड्रग के साथ अब करप्शन भी एक बड़ा इशू बन गया है। जी हाँ
0: जी, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और अब खबर फ्लाई दुबई की कॉकपिट में हुए हड़कंप की। फ्लाई दुबई कांड में एक के बाद एक विस्फोटक खुलासा हो रहा है। आरोपी को पायलट से यूएई में लगातार पूछताछ चल रही है। इजरायली मीडिया के मुताबिक को पायलट कॉकपिट पर कंट्रोल के बाद विमान को एयरपोर्ट की बिल्डिंग से टक्कर मारना चाहता था, यानी वो प्लेन क्रैश कराने की पूरी तैयारी कर रहा था। उधर यूएई में आरोपी को पायलट को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि फ्लाई दुबई विमान जो है उससे जुड़ी हुई इस मामले में आरोपी को पायलट से पूछताछ के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। सामने आया है कि को पायलट इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर प्लेन को क्रैश करना चाहता था। रिपोर्ट के मुताबिक ओमान के को पायलट हमाम अल हमामी ने फ्लाई दुबई की फ्लाइट पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय पायलट स्मिथ मछार ने नाकाम कर दिया था। रिपोर्ट ये भी है कि आरोपी को पायलट ने जुलाई में भी हमले की साजिश रची थी, लेकिन तब उसने अपनी साजिश को आखिरी वक्त पर रद्द कर दिया था।
2: एक तरफ दुनिया भारत के उस जाबाज पायलट स्मिथ मच्छार की बहादुरी को सलाम कर रही है जिसने आसमान में बढ़ रहे खतरे के बीच भी हिम्मत नहीं छोड़ी। दूसरी तरफ स्मिथ पर हमला करने वाले को पायलट हमम अल हम्मामी से पूछताछ का सिलसिला जारी है। जांच एजेंसियां को पायलट की जिंदगी के उन पहलुओं को खंगाल रही है जो इस सनसनीखेज हमले से पहले तक पर्दे के पीछे थे। हवा में उड़ने के उसके जुनून से लेकर उसी आसमान में किए गए कथित हमले तक उसकी पूरी कहानी की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और अब इस जांच में एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक को पायलट हमम अल हम्मामी इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमले की योजना बनाई थी। इसके लिए वो सबसे पहले कॉकपिट कंट्रोल करना चाहता था ताकि हमले को आसानी से अंजाम दिया जा सके। अल हम्मामी लैंडिंग के वक्त हमला करना चाहता था। उसकी योजना थी कि वो एयरपोर्ट के किसी बिल्डिंग या खड़े विमान में टक्कर मारे। इसराइली मीडिया ने ये भी दावा किया कि को पायलट ने पूछताछ में ये भी बताया कि वो कई बार बेन गुरियन एयरपोर्ट का दौरा कर चुका है। जून के महीने में दौरे के बाद उसने हमले की फाइनल प्लानिंग की थी। जुलाई में वो हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था लेकिन आखिरी वक्त पर किसी कारण से उसने प्लान बदल दिया। बता दें कि यूएई के अधिकारी को पायलट को सऊदी अरब से यूएई ले आए हैं। को पायलट से ये भी जानने की कोशिश हो रही है हमम अल हम्मामी ने कट्टरपंथी रास्ता क्यों अपनाया, वो 170 नागरिकों की जान क्यों लेना चाहता था। ये समझने की भी कोशिश हो रही है कि ओमान के नागरिक की सोच इतनी कट्टर कैसे हो गई। उसे दुबई और तेल अवीव के बीच एक संवेदनशील रूट पर उड़ान भरने के लिए क्यों रखा गया था। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जांच कर रहे अधिकारी जानना चाहते हैं कि उसे फ्लाई दुबई में नौकरी कैसे मिली। उसके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि उसकी पहली एविएशन कंपनी सरकारी ओमान एयर ने उसे फ्लाइंग से रोक दिया था क्योंकि अधिकारियों को पता चला था कि वो चरमपंथी वेबसाइटें देखता था। खबर है कि हम्मामी को डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम से गुजरना पड़ा और उसे डेस्क जॉब दी गई लेकिन बाद में उसे संयुक्त अरब अमीरात में एक नई नौकरी मिल गई। सऊदी अधिकारी के अनुसार 29 साल के हम्मामी का जन्म ओमान के पिता और सीरियाई माँ के घर हुआ था। उसने सीरिया में लंबे समय तक चले गृह युद्ध के दौरान अपना बचपन बिताया। जांच करने वालों को शक है कि हो सकता है कि उसी युद्धग्रस्त देश में उसकी सोच कट्टरपंथी हो गई हो, जहां इस्लामी विद्रोही वहां की सत्ताधारी असद सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। जांच में मालूम चला कि हम्मामी को पसंद नहीं था कि महिलाएं नौकरी करें, वो नकाब पहनने वाली महिलाओं को प्राथमिकता देता था। अरबी भाषा में दिसंबर 2021 की एक पोस्ट में उसने लिखा था कि मैंने सीरियाई या लेबनानी बनकर एक फेक अकाउंट बनाया और सऊदी महिलाओं से संपर्क किया। मुझे हैरानी हुई कि उनमें से कुछ महिलाएं अपनी तस्वीरें भेजकर खुद को कितना सस्ता बना लेती हैं। एक पोस्ट में मक्का, मदीना और यरूशलेम जैसे पवित्र मुस्लिम स्थलों को जोड़ने वाली रोशनी की एक लकीर दिखाई गई थी। हम्मामी ने एक कविता भी लिखी थी कि मेरा दिल लटक है और मेरी आत्मा आजाद है, ये अपमान को स्वीकार नहीं करती और मेरी तलवार तेज है। तो फिर एक इंसान को अपनी आत्मा के अलग होने से क्यों डरना चाहिए, आखिरकार जीवन का अंत अलगाव ही तो है। मतलब कि उसके दिमाग में मरने माने का ख्याल हवा में नहीं आया था, वो उसकी तैयारी पहले से कर रहा था और इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। आज तक ब्यूरो।
0: और इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर, फ्लाई दुबई फ्लाइट मामले में सुरक्षा चूक को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान ने सह पायलट हमम अल हम्मामी की कट्टरपंथी विचारधारा में रुचि को लेकर पहले ही चिंता जता दी थी और उसे उड़ान से हटा दिया गया था। वो पायलट नहीं रह गया था ओमान में। इसके बावजूद ये जानकारी ओमान ने दूसरे देशों के साथ साझा नहीं की थी। फरवरी 2026 में फ्लाई दुबई ने उसे नौकरी दे दी और बाद में दुबई तेलवीव रूट पर उसे तैनात कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के पास भी पायलट की राष्ट्रीयता की जांच का प्रावधान था लेकिन इसके बावजूद ओमान का पायलट इस रूट पर लगातार उड़ान भरता रहा। तो क्या खुलासा है इस पायलट को लेकर, ये हम आपको बताते हैं। आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस को पायलट के बारे

0: ओमान में। कट्टरपंथी विचारधारा थी इसकी, जिसकी वजह से इसके विमान उड़ाने पर रोक लगा दी गई थी। यानी कहीं ना कहीं चिंता थी। ओमान ने डी रेडिकलाइजेशन कार्यक्रम के लिए भी भेजा था, कोशिश ये की थी कि किसी न किसी तरीके से इस पायलट को समझाया जाए और डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम में उसे भेजा गया। उड़ान से हटाकर हमाम को उस वक्त डेस्क जॉब दे दी गई थी कि ताकि उसे ऐसे सेंसिटिव कामों में ना इन्वॉल्व किया जाए जिससे खतरा हो सकता है किसी को। ओमान ने ये बातें दूसरे देशों के साथ साझा नहीं की थी। यहां चूक हुई ओमान के साथ, क्योंकि उसके बाद ये जो शख्स था इसने दूसरी जगह नौकरी कर ली। फरवरी 2026 में फ्लाई दुबई में उसे नौकरी मिली और फ्लाई दुबई ने पुराना रिकॉर्ड जांचा नहीं, क्योंकि उनके पास ये जानकारी आई ही नहीं थी, इसलिए उन्हें पता नहीं था कि क्या खतरे हैं इस शख्स के साथ। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से जब बात भारतीय कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की आई, जिनकी हिम्मत और सूझबूझ से ये बड़ी घटना टल सकी, हजारों फीट की ऊंचाई पर उस वक्त क्या हुआ था, कैसे एक पायलट पर कॉकपिट के अंदर हमला हुआ था और कैसे यात्रियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना हमलावर को काबू किया था। विमान के अंदर सवाल महिला यात्री की आंखों देखी, ये रिपोर्ट देखिए।
1: फ्लाई दुबई की फ्लाइट FZ1073, तारीख 30 सितंबर, दुबई से तेल अवीव की उड़ान। विमान में 174 यात्री और क्रू सवार, लेकिन अचानक हजारों फीट की ऊंचाई पर जो हुआ उसके बाद भारतीय पायलट कैप्टन मक्षार की वीरता की कहानी मिसाल बन गई। आधे घंटे तक हवा में हड़कंप कैसे मचा, कैसे भारतीय पायलट ने विमान के सभी यात्रियों की जान बचाई, इस रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा में विमान में सवार महिला यात्री ने जो बातें बताई वो किसी चमत्कार जैसा ही है।
2: हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ते हुन लोक जगर रामदूर।
1: ये ताली बेरकोविच है जो जापान से छुट्टियां बिताकर अपने परिवार के साथ इसी विमान से लौट रही थी। ताली के मुताबिक अपनी 6 साल की बेटी नीना के साथ जब वो विमान के टॉयलेट के बाहर खड़ी थी, तभी उन्हें कॉकपिट की तरफ से कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी जिसके बाद वो सदमे में आ गई। कुछ ही देर बाद जब कैप्टन ने किसी तरह से कॉकपिट का दरवाजा खोला तो उन्होंने को पायलट की ओर से पायलट पर हमला करते देखा।
3: בואו לעזור, בצרחות, אנשים לא הבינו, לא הבינו, אנשים, אני זוכרת את הפרצופים שלהם, יישובים.
1: ताली के मुताबिक भारतीय मूल के कप्तान स्मिथ मच्छार ने हमले के दौरान कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। उसके बाद ही यात्रियों और क्रू को अंदर की स्थिति का पता चला और लोग मदद करने पहुंच सके। ताली ने यह भी बताया कि विमान के अचानक नीचे जाने और झटकों के बाद वो डर गए। विमान में करीब आधे घंटे तक हड़कंप मचा रहा, को पायलट को काबू में करने की कोशिश हो रही थी और वो इसका विरोध करता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन फिर किसी तरह से उसे काबू में किया गया। विमान में सवार ताली पायलट कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की जमकर तारीफ की। ये उसे चमत्कार बताती है, क्योंकि कैप्टन अगर कॉकपिट का दरवाजा ना खोले होते तो शायद विमान क्रैश हो जाता और सभी यात्रियों की जान जा सकती थी।
3: הדלת נפתחה. זה משהו שעד עכשיו אני לא מצליחה להבין, וזה זה, זה בטוח הגבורה של הטייס, של קפטן סמית. זה בזכותו באמת, זאת תחילת שרשרת הניסים שהייתה פה. אם הוא לא היה פותח את התא מבפנים, כנראה לא היינו מדברות פה היום. והדלת פשוט נפתחה. זה מה שראיתי. ראיתי את הכל והבנתי ופשוט צעקתי... רוצחים את הטייס, בואו לעזור. בואו לעזור, בצרחות. אנשים לא הבינו, לא הבינו. אנשים, אני זוכרת את הפרצופים שלהם, יישובים. אבל כי זה מרגיש כמו... זה גניה של שניות. ואז המטוס ממש צלה למטה ועפתי.
1: הזרו פיט כי אוצ'אי פר וימן בי סבר יעדנו כדיה, יה ספר זנדקי אור מות כפיץ' כאב אנובה בן גיה. एक सामान्य यात्रा कुछ ही मिनटों में खौफनाक संघर्ष में बदल गई, लेकिन भारतीय कैप्टन की जाबाजी की वजह से यात्रियों की जान बची और बड़ा हासिल

0: हादसा टल गया। आज तक ब्यूरो।
1: हाँ, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है,
8: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
7: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायफ्री जूस।
9: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगे, परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत सुनो।

0: in association with
1: Signature Finest Cardamom Seeds.
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
3: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल.
4: जीत तो महत्वपूर्ण ही है, गठबंधन पाने की तरीके से एक है, सीटों की संख्या पर कोई झगड़ा नहीं. 403 की 403 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा. सिंबल जिस क्षेत्र में जो जीत सकता होगा उस पार्टी का सिंबल होगा. कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तय करेंगे. इसमें तो ये तो एक अच्छा बयान है श्री अखिलेश यादव जी.
5: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तो तय है. जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, ये ना अनुराग भदौरिया तय करेंगे, ना हमारे सांसद एसपी सिंह पटेल साहब तय करेंगे, ना ही कांग्रेस का कोई नेता सांसद तय करेगा. ये समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा. लेकिन ये तय है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगी.

0: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत सुनो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: जो गठबंधन पहले से था, जिसने बीजेपी को हराया, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीती, समाजवादी पार्टी का वही गठबंधन उसी गठबंधन को आगे बढ़ाने का काम करेगी।
1: अखिलेश यादव के इस बयान के 24 घंटे के अंदर दिल्ली से एक तस्वीर सामने आई, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी से मुलाकात की और इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऐलान कर दिया।
2: इंडिया अलायंस की हिस्सा बनेगी अपनी जनता पार्टी, और आगे क्या कितनी सीट कहां कैसे होगा इस पर वार्ता बाद में होगी।
1: अब सवाल ये कि जो अखिलेश यादव यूपी में 2024 वाले गठबंधन के साथ 2027 का चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, उसमें अब स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी की एंट्री कैसे होगी। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य एक और राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बता रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं।
2: देश में हम चाहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी हों, इसके लिए समान विचारधारा के लोगों को एक साथ खड़ा करने की कवायद में भी मैं लगातार लगा। क्यों अलायंस में तो एक दर्जन पार्टियां रह सकती, तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों नहीं रह सकते, उनकी पार्टी क्यों नहीं रह सकती। क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं, किसको भेजें किसको नहीं भेजें उनका फैसला है, लेकिन हाँ कहीं न कहीं समाजवाद दागदार हुआ है।
1: स्वामी प्रसाद मौर्य और राहुल गांधी की मुलाकात इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि जिस कांग्रेस के गढ़ रायबरेली से अखिलेश यादव ने अपने PDA यात्रा की शुरुआत करके कांग्रेस में खलबली मचा दी थी, वहीं की एक विधानसभा क्षेत्र से स्वामी प्रसाद मौर्य BSP से विधायक रह चुके हैं, जहां मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी का कब्जा है। ऐसे में सवाल ये भी कि स्वामी प्रसाद मौर्य को इंडिया गठबंधन कहां फिट करेगा, क्योंकि सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। सीटों की इस खींचतान ने विरोधियों को एक बार फिर गठबंधन को घेरने का मौका दे दिया।
3: अब स्थिति साफ है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटना लगभग तय हो गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कांग्रेस को उसकी हैसियत बताने का काम किया है, कहा है दो विधायक वाली पार्टी अपनी हैसियत में रहे, और अगर कांग्रेस का गठबंधन ना होता 2024 में तो 6 सीटें जो जीत के आई है, जो 6 सांसद बने हैं, वो भी ना बनते और शून्य पे आ जाते।
1: उधर गोरखपुर से बीजेपी नेता संजयन त्रिपाठी ने बीजेपी का दामन छोड़ने के बाद समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। संजयन को बीजेपी से MLC का टिकट नहीं मिला था, जिसके बाद वो पार्टी का झंडा हटाते हुए भावुक हो गए थे।
4: बहुत भारी मन से और बहुत दुखी भाव से आज हमने इस झंडे का त्याग किया, क्योंकि अब इस झंडे के इस्तेमाल का हमारा कोई अधिकार नहीं रह गया।
1: बहरहाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल जारी है, लेकिन ये प्रेशर पॉलिटिक्स कहां तक जाती है और इसमें बाजी कौन मारता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आज तक ब्यूरो।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: चुनाव से पहले भगवंत मान सरकार को बड़ा झटका। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी सीएम ऑफिस से जुड़े करप्शन के आरोपों की जांच। ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली और घूसखोरी के लगे थे गंभीर आरोप।
1: सीएसी और एसआईआर के विरुद्ध कल होने वाले इंडिया अलायंस के सामूहिक हल्ला बोल से पहले आज कांग्रेस की बड़ी बैठक। राज्यों के पार्टी प्रमुखों के साथ मेगा प्लान पर होगी चर्चा।
0: सीसी को सस्पेंड करने और बिना अधिकार के लिए गए फैसलों को रद्द करने वाली अर्जी पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। केरल सरकार ने खोली ज्ञानेश कुमार के कथित करप्शन वाली पुरानी फाइल।
1: राज्यसभा चुनाव के लिए आज सामने आ सकती है यूपी से बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट। समाजवादी पार्टी के तीसरे कैंडिडेट पर सस्पेंस से भी उठ सकता है पर्दा। 16 अक्टूबर को होना है मतदान।
0: बिल्कुल 9/11 की तर्ज पर प्लेन को इसराइली एयरपोर्ट की इमारत से टकराकर क्रैश कराना चाहता था आरोपी को पायलट। पूछताछ में खुलासा, पहले भी कर चुका है हाईजैकिंग की नाकाम कोशिश।

0: नमस्कार, खबरों के डबल डोज एक और 11 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राजीव ढोंडियाल।
1: नमस्कार, मैं हूँ अंशली इस्टवाल। शुरुआत करते हैं शतक आज तक के साथ।

0: पंजाब में कथित भ्रष्टाचार मामले की सीबीआई जांच के आदेश, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सीएमओ में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों पर हाईकोर्ट सख्त, ईडी की चिट्ठियों से जुड़े मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। ट्रांसफर पोस्टिंग और सीएलयू में कथित भ्रष्टाचार के आरोप, हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच के दिए निर्देश। ईडी की शिकायत पर पंजाब पुलिस की कार्रवाई न होने का मामला, हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी जांच। दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर यूट्यूबर्स का धरना, पुलिस ने बस में बैठाकर किया डिटेन। एफआईआर की मांग को लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर धरना, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। देशभर में वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ गरमाई सियासत, चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्लान, आज दिल्ली में अपने राज्य प्रमुखों के साथ करेगी अहम बैठक। एसआईआर के खिलाफ देशभर में आंदोलन जारी, आज एनएसयूआई की जंतर मंतर पर वोट की चोरी के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी। सीसी ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बिना मंजूरी के लिए गए फैसलों को रद्द करने की याचिकाओं पर भी सुनवाई।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला, बोले कि चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं कांग्रेस, जनादेश का अपमान करना कांग्रेस की आदत। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक साथ आए उद्धव और राज ठाकरे मुंबई में विरोध मार्च में हुए शामिल। मुंबई में उद्धव ठाकरे ने ज्ञानेश कुमार को बताया बीजेपी का हथियार, कहा कि हम तानाशाह को उखाड़ फेंकने आए हैं। राज ठाकरे ने बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग की, कहा कि वोट चोरी के खिलाफ तो कदम उठाना जरूरी है। संजय राउत की बड़ी चेतावनी, युवाओं को गुस्सा उनका थमा नहीं, नहीं तो देश में आग लगा देगी युवा पीढ़ी। दिल्ली में सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडियन यूथ कांग्रेस का कैंडल मार्च, सीसी के इस्तीफे की सीधमा। दिल्ली पुलिस के खिलाफ इंडिया गेट से जंतर मंतर तक मार्च, सीसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिसिया कार्रवाई से खफा। दिल्ली पुलिस के 3 अक्टूबर को किए गए आईएसआई और दूसरे संगठन के प्रदर्शन पर बयान, बदसलूकी पर कहा कि अगर किसी के पास कोई वीडियो तो क्राइम ब्रांच को दें। 3 महिला पत्रकारों से बदसलूकी के आरोप पर सियासत तेज, कांग्रेस ने मोदी और शाह पर साधा निशाना। दिल्ली पुलिस का वायरल वीडियो को फर्जी, उन्होंने कहा कि महिला पत्रकारों से बदसलूकी का वीडियो दिल्ली पुलिस का नहीं है।
0: दिल्ली में जंतर मंतर पर हुए रविवार के प्रदर्शन में 15 पुलिसकर्मी घायल, करीब 110 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। ओवैसी का बीजेपी आरएसएस पर बड़ा आरोप, फॉर्म 7 के जरिए वोटर लिस्ट से नाम हटाने की साजिश का दावा किया। कांग्रेस अध्यक्ष के मोदी को गैर कानूनी प्राइम मिनिस्टर बताने के पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार, पूछा क्या आप गैर कानूनी हैं खड़गे जी, क्या राहुल गांधी भी गैर कानूनी सांसद। पटना में बीजेपी के शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी खड़गे का पलटवार करते हुए कहा, उनका बयान 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। राहुल गांधी के डिजिटल सत्याग्रह पर बोले चिराग पासवान, कहा सत्याग्रह नाम अच्छा लेकिन विपक्ष को झूठ और भ्रम फैलाना छोड़ सच बोलना चाहिए। यूपी में कांग्रेस एसपी में सीट बंटवारे को लेकर जुबानी जंग के बीच बोले अखिलेश यादव, बात सीट की नहीं जीत की है। अखिलेश ने योगी सरकार से लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा डबल इंजन अब बन गया है ट्रबल इंजन, जनता बीजेपी से मुक्ति का ले चुकी है संकल्प। यूपी में सीट बंटवारे पर कांग्रेस का बयान, यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र गौतम बोले, मैंने 200 सीट की बात कही थी, सीटें मिलेंगी तभी जीत संभव। भदोही में सीएम योगी ने अखिलेश राज पर साधा निशाना, बोले 2017 से पहले राज्य का खजाना था खाली, यूपी अब देश का ग्रोथ इंजन। भदोही का नाम बदलकर अब होगा संत रविदास नगर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान।
1: अब्दुल तरी नहीं बिछाएगा फिर सियासी घमासान, ओवैसी के बैन पर यूपी की सियासत गरमाई। कौन है अब्दुल के सवाल पर छिड़ी बहस, ओवैसी बोले मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएगा। अब्दुल वाले बैन पर ओवैसी ने साधा निशाना, कहा कि मुसलमान को उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। रामपुर में आजम खान की पत्नी से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, तंजीम फातिमा बोले कि अभी चुनाव नहीं, आजम को बाहर निकालना मकसद है। तंजीम फातिमा ने मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि संकट में मैं साथ हूं। लखनऊ में भारी बारिश से प्रभावित परिवारों के लिए राहत कार्य थे और फैजुलगंज में प्रशासन की टीमें सक्रिय हैं। फैजुल्लागंज में बारिश प्रभावित इलाकों में राहत और प्रशासन और नगर निगम की टीमें लगातार राशन किट पहुंचा रही हैं। लखनऊ में बारिश के बाद राहत अभियान तेज, डीएम नगर आयुक्त ने प्रभावित परिवारों को मदद भी दी और संवाद किया। लखनऊ में बाढ़ पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान, बोले 15 दिन में साल की 25% बारिश हुई है। गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से लखनऊ में बाढ़ की स्थिति, मंत्री बोले 2008 के बाद पहली बार ऐसा हाल।
0: समाजवादी पार्टी के स्थापना के 34 साल होने पर बीजेपी का हमला, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के 34 साल का हिसाब गुंडा राज और माफिया राज के नाम से जारी किया 4 पेज का ब्रोशर। उत्तराखंड के खटीमा में उत्तराखंड आदि रंगोत्सव का सीएम धामी ने किया शुभारंभ, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सम्मान और सशक्तिकरण को मिली नई गति। खटीमा में सीएम धामी ने निकाला रोड शो, केंद्रीय मंत्री रिजिजू और जुएल उरांव भी हुए शामिल। 15 दिनों तक चलेगा उत्तराखंड आदि रंगोत्सव। उत्तराखंड गुजरात के बाद यूसीसी को लेकर बंगाल में भी बड़ा ऐलान, सीएम शुभेंदु अधिकारी बोले 6 महीने के भीतर लागू होगा यूसीसी। बीजेपी का कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना, पूरी दुनिया स्मिथ मछार की तारीफ कर रही है लेकिन गांधी परिवार ने मछार के लिए एक शब्द नहीं बोला। गाजा पर आंसू बहाने वाले मछार पर चुप। आंध्र प्रदेश के तेनाली में शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी और सीएम नायडू की साझेदारी की तारीफ की, विकास को लेकर गिनाए फायदे। तेनाली में शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, बोले पीएम मोदी और सीएम की जोड़ी 1+1=11। चेन्नई में एशियन गेम्स पदक विजेता का सम्मान, खेल मंत्री आदव अर्जुन ने किया सम्मानित। झांसी में नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर, किले के आसपास गरबा अभ्यास में दिखा उत्साह। दिल्ली में स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति गाय पार्मेलियन का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत।
1: कैप्टन स्मिथ मछार के जल्द स्वस्थ होने की कामना में आसनसोल में महामृत्युंजय जाप और हवन यज्ञ, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। दिल्ली में आर्टिस्ट इवेंट क्रिकेट लीग के समापन समारोह में शामिल हुए आशीष सूद, दिल्ली में 5 स्टेडियमों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का ऐलान किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में जीवन जिंदाबाद 2.0 अभियान की शुरुआत, राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया कार्यक्रम। कार्यक्रम में कई नाट्य प्रस्तुतियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए मुख्यमंत्री मोहन चरण माचिस का। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वे बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। बिहार के छपरा में बांध टूटने से गुस्साए ग्रामीणों ने इंजीनियर और एसडीओ को बाढ़ के पानी में फेंकने की कोशिश की, दोनों किसी तरह से जान बचा पाए। बगहा में बाढ़ से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे और लगभग 1000 परिवारों को राहत सामग्री पहुंचाई। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ के पानी में डूबी किताबें दिखाकर छात्र ने शिक्षा मंत्री से पूछे सवाल, अब वीडियो वायरल। बिहार के सारण में गंडक नदी का गैर ड्रोन कैमरे में कैद जल प्रलय का खौफनाक मंजर, कई गांव जलमग्न, घर खेत रास्ते सब पानी में डूबे। लखनऊ में गोमती नदी का रौद्र रूप खतरे के निशान के बेहद नजदीक, जलस्तर और बाढ़ का संकट गहराया, कई इलाके जलमग्न भी।
0: तमिलनाडु में भारी बारिश, वल प्रलय में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी और ट्रैफिक पर पड़ा असर। शामली में अंकित बालियान हत्याकांड में 3 इनामी आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा, सोनीपत करनाल में घरों की कुड़की। पंजाब पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का किया पर्दाफाश, सीमा पार ड्रोन से भेजी गई AK-47 और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद। गुजरात के जूनागढ़ में तेज रफ्तार बाइक का बिगड़ा संतुलन, रिक्शा को ओवरटेक करते समय युवक को मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। हैदराबाद के सिकंदराबाद में देरी से फूड डिलीवरी पर बवाल, दंपति ने डिलीवरी एजेंट को जमकर पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट। जयपुर में पिटाई के विरोध में सड़क पर उतरे छात्र, पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा। पंजाब के अजनाला में तैनात ASI सुखचैन सिंह पर चली गोलियां, सिविल अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बठिंडा के जस्सी चौक में शराब के ठेके के बाहर कुल्हाड़ी से हमला, एक शख्स की हत्या। बिहार के सहरसा में कारू बाबा स्थान न्यास विवाद में चली कई राउंड गोली, एक शख्स को लगी गोली, गुस्साए लोगों ने महंत की गाड़ी को किया आग के हवाले। बिहार के जमुई में दो गर्भवती महिलाओं की मौत के मामले में प्राइवेट क्लिनिक पर छापेमारी, जिला प्रशासन ने क्लिनिक को किया सील।
1: बिहार के बेगूसराय में सोशल मीडिया पर पत्नी की तस्वीर लगाने से मना करने पर पड़ोसी ने पति पत्नी को गोली मार दी, दोनों घायल। यूपी के डावम में महादेव गेम के नाम पर करोड़ों का खेल, 15 लाख कैश के साथ तीन गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सीआईएसएफ जवान की गर्लफ्रेंड की संदिग्ध अवस्था में मौत, साथ में रह रही थी मृतका। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में 6 लोगों पर तेंदुए ने हमला कर दिया, 3 की हालत इसमें नाजुक, घर में घुस कर किया हमला। हल्द्वानी में घर के बाहर खड़ी स्कूटी से निकला सांप, 8 फीट लंबे सांप को देखकर सब हैरान, स्नेक कैचर ने पकड़ा। हिमाचल के सोलन में सैलानियों का सैलाब, दिल्ली शिमला हाईवे पर लंबा जाम। लॉन्ग वीकेंड पर मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी, 80% से ज्यादा होटल बुक रहे। सुहाने मौसम का सैलानी लुत्फ उठाते दिखे, मॉल रोड पर सैलानियों की भारी भीड़ दिखी, कारोबारियों के चेहरे खिले। बागेश्वर धाम आने वाली महिला भक्तों से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की अपील की, महिलाएं अकेले धाम में न आए। धर्मशाला में पर्यटकों की भारी भीड़, बदले मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी।
0: एशियन गेम्स में देश के लिए मेडल जीतकर वतन लौटे पदक वीर, एयरपोर्ट पर एथलीट्स का हुआ भव्य स्वागत। एशियन गेम्स में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद स्वदेश लौटे क्रिकेटर संजू सैमसन, ईशान किशन और अर्शदीप सिंह। मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे, परिवार ने किया वेलकम, घर रवाना। गोल्फ टीम इवेंट में देश को सिल्वर मेडल दिलाने वाली झज्जर की बेटी दीक्षा डागर का शानदार स्वागत, देश के लिए पदक हासिल करने को बताया ऐतिहासिक पहल। सिल्वर मेडलिस्ट पहलवान अंतिम बंगाल का भी वतन वापसी पर हुआ जोरदार स्वागत, बोले भविष्य में सिल्वर मेडल को गोल्ड में बदलने की करेंगे कोशिश। परिणीति चोपड़ा की नई फिल्म रिपोर्टिंग लाइव का ट्रेलर रिलीज, पत्रकार के किरदार में नजर आएंगी परिणीति। सलमान खान की फिल्म मातृभूमि को लेकर बड़ी खबर, सेंसर बोर्ड और मेकर्स की तरफ से मिली मंजूरी। आयुष्मान खुराना की आने वाली कॉमेडी ड्रामा फिल्म उड़ता तीर की रिलीज डेट को आगे बढ़ाया गया। फिल्म तू है मेरी किरण के प्रमोशन में जुटी सोनाक्षी सिन्हा, मुंबई की सोफिया कॉलेज में छात्राओं से की मुलाकात। एक्ट्रेस कृतिका कामरा अपने पति गौरव कपूर के साथ ग्रीस में आई नजर, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो।
1: रूस की सेना का यूक्रेनी राजधानी की ऊपर भीषण हमला, जर्मन चांसलर के कीव में पहुंचते ही रूस ने यूक्रेनी पुल को उड़ाया, इससे पहले रूस ने सुमी इलाके में बमबारी की। जंग के बीच यूक्रेन दौरे पर जर्मनी चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, राजधानी कीव में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते समय रेड सायरन बजाए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची का अमेरिका को सीधी चेतावनी, कहा कि अगर दुश्मन ने हमला किया तो मजबूती से देंगे जवाब, अमेरिका युद्ध और कूटनीति दोनों में हार चुका। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ का बड़ा बयान, कहा कि समझौते के साथ शर्तें पूरी होने के बाद ही खुलेगा होर्मुज, बात टालने और एक तरफा मांगे थोपने का दौर अब समाप्त। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ओहायो की रैली में एआई के लिए जरूरी डेटा सेंटर्स का किया बचाव, कहा कि यदि इन्हें बंद किया गया तो ये तकनीक और सारा पैसा चीन चला जाएगा।

0: और अब रुक करते हैं पंजाब से आ रही बड़ी खबर का। पंजाब में मान सरकार को बड़ा झटका लगा है। पंजाब सीएम ऑफिस और प्राइवेट लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप पर अब सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के ये आदेश दिए हैं।
1: अब इसमें ईडी ने पंजाब में डीजीपी को पत्र लिखकर पंजाब सीएम ऑफिस और प्राइवेट लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। ईडी ने डीजीपी को 3 पत्र लिखे और कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और आरोप लगाया था कि पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग सीएलयू और अन्य कामों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है।
0: ईडी ने अपने पत्रों में पंजाब के मुख्यमंत्री के ओएसडी यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी राजवीर घुमन का नाम भी लिया है।
1: हमारे साथ संवाददाता असीम बस्सी जुड़ गए हैं। असीम, एक बार फिर से पंजाब की सरकार सवालों में, क्योंकि वो तो लगातार दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, लेकिन यहाँ तो सीबीआई जांच के आदेश है।
2: नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि बड़ा झटका है, बड़ा जोल्ट है। 2027 में इलेक्शन है, लेकिन अब क्योंकि करप्शन को लेकर एलिगेशन थे ईडी के, और ईडी ने लगातार 3 चिट्ठियां जो हैं पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को लिखी थी कि उन्होंने कहा कि प्राइवेट पर्सन और ओएसडी टू चीफ मिनिस्टर जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट है ट्रांसफर पोस्टिंग में, सीएलयू में, आर्म्स लाइसेंस में, पॉलिसी डिसीजन में, सो उनकी इन्वॉल्वमेंट है। और उसमें कैश भी जो है लेन देन जो है एलिगेशन था कि उसमें कैश का लेन देन भी हुआ है। हालांकि 3 पत्र लिखने के बाद भी पंजाब पुलिस ने कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं की थी उसमें। और उसके बाद एडवोकेट निखिल सराफ ने एक पीआईएल दायर की पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने, कुछ सुनवाइयां हुई और काफी देर से जो है वो यहां पर पेंडिंग था, लेकिन आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच जो है ऑर्डर कर दी। हमारे साथ ईडी के सीनियर एडवोकेट हैं धीरज जैन जी। जैन साहब, जल्दी बताइए कि आप ईडी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या अप्रीहेंशन थी आपकी और ऑर्डर क्या है?
3: देखिए जी, कानून के हिसाब से कोई भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जब भी कोई इंक्वायरी करती है अपनी इन्वेस्टिगेशन में, अगर कोई उनके पास ऐसे तथ्य उनके सामने आते हैं जिससे कोई और ऑफेंस होने का अंदेशा होता है, तो उनका कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। इस केस में भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बकायदा सारी इन्फॉर्मेशन स्टेट अथॉरिटीज को प्रोवाइड की थी, और एक बार नहीं कई बार उसमें हमने रिप्रेजेंटेशन दी उनको, बट इस मामले में स्टेट अथॉरिटीज ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये जो पीआईएल फाइल हुई थी, पीआईएल में बेसिक प्रेयर ये थी कि जो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर जो इसमें होनी चाहिए वो हो। तो आज हाईकोर्ट ने अपना इस मामले में फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मूलतः ये कहा कि जो इस ये बहुत गंभीर मामला है और इसमें इन्वेस्टिगेशन होने जरूरी है, और जो पंजाब पुलिस ने जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया है तो वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है।
1: असीम बस्सी, हम आपके पास लौटेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इधर यूपी का रुख करते हैं, जहां पर ग्रेटर नोएडा में दरोगा से बसलूकी का मामला सामने आया और घटना ग्रेटर नोएडा के यूफेरिया मॉल के पास के, जहां पर पार्किंग में खड़ी गाड़ी को निकालने को लेकर विवाद शुरू हुआ और फिर कुछ लोगों ने दरोगा के साथ बदसलूकी की।
0: इसका वीडियो भी अब सामने आ गया है। जिस पुलिसकर्मी से बदसलूकी की गई वो दूसरे जिले का दरोगा है और नोएडा के एक निजी अस्पताल में उसकी पत्नी एडमिट है, जिसको देखने के लिए वो आया था, लेकिन कुछ युवकों ने वहां उसके साथ बदसलूकी की, जिसका वीडियो अब सामने आ गया है।
1: तो पार्किंग से गाड़ी निकालने को लेकर विवाद हुआ,
0: और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। हिमांशु, जरा बताएं हुआ क्या, विवाद क्या हुआ?
4: दोनों लोगों की गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी और गाड़ी पार्किंग से निकालना था, और इसी बात पे, छोटी सी बात थी जिसपे विवाद शुरू हुआ। और आप देखिए वीडियो में दिख रहा है एग्रेशन किस लेवल तक पहुंच गया है, कितना मतलब जो बातें हैं धक्का मुक्की तक पहुंच गई, तो गनीमत रही कि और भी लोग हैं और इस वजह से बात ज्यादा नहीं बढ़ी। लेकिन पूरी तरीके से धमकी देना, किसी भी लेवल पर जा करके किसी तरीके की कार्रवाई की धमकी देना, ये तमाम बातें हुई कि तुम्हें पैर पकड़ना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा, हम बहुत बड़े लोग हैं, ये कई सारी चीजें इस वीडियो में आ रही है, जो तरह तरह के दावे किए गए। जो सब इंस्पेक्टर है वो अपनी वाइफ को देखने आए थे, उनकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है, और
1: इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और छोटे से ब्रेक के लिए आप देख रहे हैं आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं चैन की नींद सो पाता। कपीवा डायफ्री जूस।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यार लोन भूल गया मैरी।
3: इट्स
2: जस्ट अ गुड बैंक ना।
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
2: स्मॉल फाइनेंस बैंक।
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
4: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
5: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
6: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
7: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
8: गैसो फास्ट 27%,
7: इनो 9.2%।
9: गड़बड़ है।
10: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सोल्यूशन।
11: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
12: AU, सोच बदलो और बैंक भी।
13: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
14: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।

अक्टूबर का महीना, मौसम सुहाना और पहाड़ों पर सैलानियों का जमावड़ा। जी हां, अभी तो ठंड का शुभारंभ होना बाकी है और पहाड़ सैलानियों से भर गए हैं। डलहौजी में इन दिनों हर तरफ टूरिस्ट ही टूरिस्ट नजर आ रहे हैं। होटल से लेकर टैक्सी और रेस्तरां कारोबार तक, हर जगह हलचल बढ़ गई है और आने वाले दिनों में कारोबार और बेहतर होने की उम्मीद है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के डलहौजी की हैं। कोई पहाड़ों की ठंडी हवा का मजा ले रहा है, कोई देवदार के जंगलों के बीच तस्वीरें खिंचा रहा है और कोई बाजार में जमकर खरीदारी कर रहा है। कारोबारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भीड़ और बढ़ेगी। अब रुक करते हैं मनाली का, जहां लॉन्ग वीकेंड पर सैलानियों की भीड़ ने शहर की रफ्तार बढ़ा दी है। हाल ही में ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद पर्यटकों का उत्साह और बढ़ गया है। सड़क पर बढ़ती गाड़ियों की कतारें बता रही हैं कि मनाली में टूरिस्ट सीजन जोर पकड़ चुका है। उत्तराखंड में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लिहाजा ट्रैफिक संभालने के लिए पुलिस को भी मोर्चा संभालना पड़ा है। नैनीताल में भी मौसम बदलते ही पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। कैंची धाम में दिन भर भक्तों की लंबी कतारें और चारों तरफ श्रद्धालुओं का हुजूम नजर आ रहा है। वहीं नैनीताल के नैनी झील में पर्यटकों को बोटिंग का आनंद उठाते हुए देखा जा सकता है। यानी एक तरफ बाबा नीब करौली की भक्ति देश भर के लोगों को उत्तराखंड के कुमाऊं की ओर खींच रही है, तो दूसरी ओर पर्यटन कारोबार को नई ऊर्जा मिल रही है। हिमाचल हो या उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर, पहाड़ों पर टूरिस्ट सीजन की शुरुआत धमाकेदार नजर आ रही है। मतलब साफ है, सर्दी आने से पहले ही पहाड़ों पर सैलानियों की गर्मी बढ़ गई है। अभी त्योहारों और सर्दियों की छुट्टियां भी बाकी है। ऐसे में कारोबारियों को उम्मीद है कि 2026 का टूरिस्ट सीजन कारोबार के लिहाज से बेमिसाल रहने वाला है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी। सो
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
5: एयू, सोच बदलो और बैंक भी।
6: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
7: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
6: अब मैं चैन की नींद सो पाता कपीवा डायबिटीज जूस।
1: इन एसोसिएशन विद
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
8: मोबाइल पर वीडियो देखते देखते अचानक कोई प्रोडक्ट दिख जाए और कुछ ही मिनट में उसकी खरीदारी भी हो जाए। भारत में विज्ञापन की दुनिया तेजी से इसी दिशा में बढ़ रही है। कंपनियां टीवी, अखबार और होर्डिंग्स के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्यादा दांव लगा रही हैं। इसकी वजह ग्राहकों की बदलती आदतें हैं। खासकर युवा पीढ़ी खरीदारी का फैसला लेने से पहले सोशल मीडिया, वीडियो प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन रिव्यू का सहारा ले रही है। यही वजह है कि विज्ञापन की रणनीति भी तेजी से बदल रही है। आंकड़ों के मुताबिक कुल विज्ञापन बाजार में डिजिटल की हिस्सेदारी 60% से ज्यादा है। डिजिटल विज्ञापन राजस्व में 2025 में करीब 26% बढ़ोतरी हुई थी। कनेक्टेड टीवी और सोशल मीडिया पर फोकस बढ़ने का ये असर है। इस बदलाव के पीछे देश की बड़ी युवा आबादी भी है। BCG और स्नैप के एक अध्ययन के मुताबिक भारत में जेंसी की आबादी करीब 37.7 करोड़ है और देश के कंजम्पशन पर इसका बड़ा प्रभाव है। दरअसल भारत में जेंजी की आबादी करीब 37.7 करोड़ है, वहीं देश के कंजम्पशन खर्च का 43% हिस्सा जेंजी से प्रभावित है, यानी जेंजी से प्रभावित कंजम्पशन करीब $860 अरब है। युवा ग्राहक पहले सोशल मीडिया पर प्रोडक्ट खोजते हैं, फिर उसके रिव्यू देखते हैं और उसके बाद खरीदारी का फैसला लेते हैं। ऐसे में कंपनियों का मकसद केवल विज्ञापन दिखाना नहीं, ग्राहक को प्रोडक्ट की खोज से खरीदारी तक के पूरे सफर में साथ रखना है। यही वजह है कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी D2C मॉडल भी तेजी से बढ़ा है। कई ब्रांड पारंपरिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनलों की जगह सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं। इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक इस बाजार का आकार 2020 में $5 अरब से कम था, जो 2025 में बढ़कर $12 अरब तक पहुँच गया। इसमें सोशल मीडिया D2C ब्रांड्स की खोज और खरीदारी का अहम जरिया बन गया है। साफ है कि विज्ञापन की दुनिया में केवल ज्यादा दिखाई देना काफी नहीं है, कंपनियों के लिए जरूरी है कि वो वही मौजूद रहे जहां ग्राहक अपना सबसे ज्यादा समय बिताता है। मोबाइल स्क्रीन पर बढ़ती मौजूदगी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ताकत बता रही है कि आने वाले वर्षों में विज्ञापन की ये दौड़ और तेज हो सकती है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: चुनाव से पहले भगवंत मान सरकार को बड़ा झटका। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपे सीएम ऑफिस से जुड़े करप्शन के आरोपों की जांच। ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली और घुसखोरी के गंभीर आरोप।
4: सीसी और एसआईआर के विरुद्ध कल होने वाले इंडिया अलायंस के सामूहिक हल्ला बोल से पहले आज कांग्रेस की बड़ी बैठक। प्रदेश अध्यक्षों के साथ मेगा प्लान पर चर्चा। 6 अक्टूबर को गठबंधन का मार्च।
3: सीसी को सस्पेंड करने और बिना अधिकार के लिए गए फैसलों को रद्द करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। केरल सरकार ने खोली ज्ञानेश कुमार के कथित करप्शन वाली पुरानी फाइल।
4: राज्यसभा चुनाव के लिए आज सामने आ सकती है यूपी से बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट। समाजवादी पार्टी के तीसरे कैंडिडेट पर सस्पेंड से भी उठ सकता है पर्दा। 16 अक्टूबर को होना है मतदान।
3: बिल को 9/11 की तर्ज पर प्लेन को इसराइली एयरपोर्ट की इमारत से टकराकर क्रैश कराना चाहता था आरोपी को पायलट। पूछताछ में खुलासा, पहले भी कर चुका है हाईजैकिंग की एक नाकाम कोशिश।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त पर एक्शन पर इस वक्त बड़ी खबर आपको देते हैं। ये सबसे बड़ा राजनीतिक एजेंडा ओपोजिशन का बना हुआ है। कांग्रेस इस मुहिम को बढ़ चढ़कर धार देने की तैयारियों में दिख रहे हैं और दिल्ली में आज कांग्रेस एक्शन में भी दिखाई दे रही है।
1: एक तरफ कांग्रेस ने अपने स्टूडेंट्स विंग यानी कि NSUI को सड़कों पर उतार दिया है, तो दूसरी तरफ प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि CEC ज्ञानेश कुमार की घेराबंदी के प्लान पर बड़ा मंथन होना है।
2: हिटलर कोणालाही घाबरत नव्हता, पण हिटलर वरती अशी वेळ आली की त्याला स्वतः स्वतःवरती गोळी झाडून आत्महत्या करावी।
3: चल रहा है वो इलीगल इलेक्शन पे चल रहा है।
4: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष पूरी ताकत से हल्ला बोल रहा है। कांग्रेस इस मुहिम में आगे दिख रही है। आज जंतर मंतर पर NSUI की मोर्चाबंदी है। हर रोज कांग्रेस इस मुद्दे पर कोई न कोई कार्यक्रम कर रही है।
5: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों में लगातार धरना प्रदर्शन जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में हो रहे हैं और आज NSUI के कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया है कि वो लगभग 12 बजे के आसपास अपने मुख्यालय पर पहुंचकर धरना देंगे और मांग करेंगे कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो। उनके धरने से पहले यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये NSUI का दफ्तर है। फिलहाल जो कार्यकर्ता हैं वो ज्यादा संख्या में यहाँ नहीं पहुंचे, लेकिन 12 बजे के आसपास यहाँ पर बहुत भीड़ देखने को मिल सकती है और उनके आने से पहले दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है। आप देख सकते हैं कैसे दिल्ली पुलिस के जवान, पार्लियामेंट्री के जो जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है।
4: कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी में है। इसी सिलसिले में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में AICC के प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है। मकसद ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की रणनीति को धारदार बनाने की है।
5: जब भी NSUI प्रदर्शन का कॉल देता है तो उनके दफ्तर से जंतर मंतर की तरफ जो कार्यकर्ता हैं वो मार्च करते हैं। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है, बल्कि जो बैरिकेड्स हैं वो भी यहाँ पर भारी संख्या में लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न ना हो। ये हाईली सिक्योर्ड एरिया है, हाईली सेंसिटिव एरिया है और NSUI के दफ्तर से जंतर मंतर की दूरी महज 1 से 1.5 किलोमीटर की होती है। और फिलहाल NSUI ने मार्च का आह्वान किया है। एक तरफ जहां कार्यकर्ता NSUI के दफ्तर पहुंचने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस के जवान भी मुस्तैद हैं।
4: कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग पर लगातार हमले भी हो रहे हैं। खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा हमला किया है जिस पर बवाल मचा है।
3: अब पूरा आज देश जो चल रहा है वो इलीगल इलेक्शन पे चल रहा है। मोदी इलीगल प्राइम मिनिस्टर, शाह इलीगल मिनिस्टर और जितने भी अब चीफ मिनिस्टर्स बने कहां के भी वो सब इलीगल। सबको डिसॉल्व करना, इलेक्शन कराना और बैलेट पे इलेक्शन कराना, क्योंकि EVM का मिसयूज हो रहा है।
4: खड़गे के इस हमले का केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब दिया। रिजिजू ने खड़गे के हमले के जवाब में पूछा, क्या आप अवैध सांसद हैं खड़गे जी? क्या राहुल गांधी जी अवैध सांसद हैं? क्या तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड के मुख्यमंत्री अवैध हैं? भारत के संविधान का अपमान करना बंद करें। विपक्ष और सरकार के बीच वार और पलटवार का ये खेल अभी आगे भी जारी रहने वाला है, क्योंकि आगे इंडिया गठबंधन का चुनाव आयोग पर मार्च होने वाला है। प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर प्रदर्शन होना है और दिल्ली समेत कई राज्यों में रैलियां होने वाली हैं। आज तक ब्यूरो।
1: तो खड़गे के इस बयान से जाहिर तौर पर BJP के नेता परेशान हैं और उन्होंने हल्ला बोल दिया है खड़गे पर।
6: दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है और दुनिया उदाहरण देती है भारत के लोकतंत्र के, लेकिन लोकतंत्र का अपमान करना, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना, चुनाव हारने पर चुनाव आयोग को बदनाम करना, जनता के जनादेश का अपमान करना, ये कांग्रेस के DNA में है। राहुल गांधी जी के इशारे पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को अवैध कहा, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये जनादेश का अपमान है, ये संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना है, ये लोकतंत्र के प्रति अनास्था पैदा करना है, ये देश में अराजकता फैलाने का प्रयास है।
7: मल्लिकार्जुन भले गांधी परिवार के दास हो सकते हैं, देश का लोकतंत्र मजबूत है। कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रहा, ये मुस्लिम लीग कांग्रेस है जो सोची समझी रणनीति के तहत देश के संवैधानिक संस्थान के ऊपर आरोप लगाना, देश में भ्रम फैलाना, ये काम हो गया है राहुल गांधी एंड कंपनी का।
0: हमारे संवाददाता पीयूष इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, एक लाइन विपक्ष टो कर रहा है, कह रहा है कि ये गैर कानूनी है, अवैध, और अब ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष की भी एक लाइन है कि अगर अवैध है, गैर कानूनी है, तो फिर आपको भी एक तरीके से इस्तीफा दे देना चाहिए, आप भी गैर कानूनी हुए।
5: जी बिल्कुल, ये लाइन जरूर यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने ली है और ये साफ कह रहे हैं कि अगर आप कहते हैं कि सब कुछ गैर कानूनी है तो आपका चुनाव राहुल गांधी का एलओपी बनना, मल्लिकार्जुन खड़गे का राज्यसभा सांसद बनना, ये सब गैर कानूनी है। तो ये कहीं ना कहीं एक पलटवार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई दोहराई ही नहीं है कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है। इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई थी और उसमें ये तय कर लिया गया था कि लगभग एक हफ्ते तक लगातार विपक्ष इस मांग को उठाता रहेगा और उसी के मद्देनजर पिछले कुछ दिनों में, यानी 2 अक्टूबर से ही हम लगातार धरना प्रदर्शन देख रहे हैं जंतर मंतर के आसपास के इलाकों में, और जंतर मंतर पर भी काफी कार्यकर्ता अलग अलग दलों के पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और आज एनएसयूआई ने आह्वान किया है कि लगभग 12 बजे के आसपास उनके कार्यकर्ता यहां पर पहुंचेंगे। मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखा दूं, मेरे सहयोगी मनीष बिजोड़ी एक बार कैमरा पैन करके अगर आपको दिखाया, तो फिलहाल यहाँ पर वैसी गैदरिंग नहीं हुई है जो अमूमन हम एनएसयूआई का जब धरना प्रदर्शन होता है तब देखते हैं। कुछ कार्यकर्ता धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, कुछ अंदर ऑलरेडी आ भी गए, लेकिन होता क्या है राजीव कि जब इस तरह के कॉल दिए जाते हैं तो ज्यादा दिक्कत लोगों को होती है। चारों तरफ जो मुस्तैदी
1: हमारी नजर रहेगी इस प्रदर्शन पर, आपके पास लौटते रहेंगे। फिलहाल बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों दल साथ चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, दोनों गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन सीटों को लेकर खींचतान कुछ अलग ही शक्ल ले रही है।
0: अब गठबंधन को लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों के नेताओं के हाल के दिनों के बयान सामने आए। फिर अखिलेश यादव ने दिल्ली में गठबंधन इंडिया की बैठक से दूर रहकर एक नई खलबली पैदा की, और इसके बाद अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से कांग्रेस को एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस ने संदेश का जो जवाब दिया है उससे लग रहा है कि सीटों के बंटवारे का रास्ता इतना सीधा नहीं है।

0: अभी गठबंधन पर मुहर लगी नहीं है, सीट शेयरिंग पर तलखी साफ दिख रही है। इस बीच यूपी में सीटों को लेकर कांग्रेस की दावेदारी बढ़ती ही जा रही है। अब बात 150 से बढ़कर 200 सीटों की मांग तक पहुंच गई है।
1: किसने किया 150 का? मैंने तो 200 की बात की थी। मैं शुरू से कह रहा हूं, बराबर का सम्मान और बराबर की इज्जत, बराबर का हिस्सा।
0: बड़ी बात यह है कि राजेंद्र पाल गौतम का ये बयान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की उस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद आया है, जिसे सीट बंटवारे पर जारी खींचतान के बीच कांग्रेस के लिए सीधा संदेश माना जा रहा था। अपनी पोस्ट में अखिलेश ने लिखा, मकसद जब साफ हो तो हाथ में हाथ होता है, निगाह मंजिल पर हो तो सफर आसान होता है। बात बड़ी ये नहीं कि गठबंधन में कितनी सीटें या कौन सी सीट किसके पास जा रही है, बात बड़ी ये है कि हम सबको ये सुनिश्चित करना है कि जीत गठबंधन की हो। फिर दोहराते हैं, बात सीट की नहीं जीत की है। यानी अखिलेश बार बार बीजेपी के खिलाफ यूपी में जीत की तैयारी की बात कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस साझेदारी के पहले सीटों पर बातचीत साफ चाहती है।
2: समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, जीत ही आधार है, जीत ही सीट का आधार है।
0: यानी जब यूपी में विधानसभा चुनाव चंद महीने दूर हैं, समीकरण साधे जा रहे हैं, पाला बदलने का दौर शुरू हो चुका है, तब विपक्षी लड़ाई में एक बड़ा पेच फंसा हुआ है। सवाल बना हुआ है कि आखिर कब कांग्रेस एसपी के बीच गठबंधन का ऐलान होगा, कितनी सीटों पर दोनों पार्टियों में बात बनेगी, बीजेपी को हराने के लिए किस रणनीति पर दोनों के बीच सहमति बनेगी।
1: जिनके साथ हमारा गठबंधन है इंडिया ब्लॉक में, यूपी में तो हम दो पार्टी हैं, मैं बेसिकली तो कांग्रेस और सपा है, दोनों जिम्मेदार हैं, एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं और एक दूसरे को साथ के लेके भी चलना है, तो निश्चित तौर पर सीट शेयरिंग का मामला हमें अक्टूबर में निपटा लेना चाहिए ताकि हम अपने कैंडिडेट्स को टाइम दे पाएं और हिस्सेदारी सम्मान बराबर होना चाहिए। मैं शुरू से कह रहा हूं,
0: कांग्रेस और उसमें सीटों पर लड़ाई बढ़ती दिख रही है और दोनों

0: यात्रा की शुरुआत करते हैं, फिर राज्यसभा के सदस्य घोषित करते समय कांग्रेस पार्टी को हैसियत दिखाने का काम करते हैं, और अब सोशल मीडिया से हमला बोल रहे हैं।
1: अब्दुल दरी नहीं बिछाया गया, ये नारा इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में खूब उछाले जा रहे हैं, और ये नारा असदुद्दीन ओवैसी भी उछाल रहे हैं, तो बीजेपी के नेता भी। तो आखिर कौन है अब्दुल और क्या है अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा वाले नारे का मतलब, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
2: आप नाम रख लीजिए अब्दुल, अब्दुल क्या होता है? आप किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं अब्दुल कहकर के?
3: अब्दुल के वोटों से बने आप सांसद, अब्दुल के नाम भड़कते हैं आप, अब्दुल के नाम पे गुस्सा आता है आपको?
4: सच्चाई को इनकार करते हैं और जो राइट है, जो जस्टिस होना चाहिए, उससे इनकार करते हैं तो ज्यादा तकलीफ होती होगी।
2: आप अब्दुल अब्दुल कहकर के आप खड़ाने की कोशिश करते हैं।
5: रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद पूछ रहे हैं कौन है अब्दुल, ये पूछते हुए वो गुस्से से लाल हो जाते हैं, बुरी तरह आग बबूला हो जाते हैं। एक बार फिर सुनिए जब नदवी से अब्दुल को लेकर सवाल हुआ तो कैसे वो आपे से बाहर हो गए।
6: हर पार्टी जो है 27 के चुनाव में अब्दुल को याद करती, इस वक्त अब्दुल का
2: क्या मतलब? आप नाम मत लीजिए अब्दुल, अब्दुल क्या होता है? आप किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं अब्दुल कहकर के?
6: नहीं, हर पार्टी
2: आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। अब्दुल मीन्स क्या होता है?
6: हर पार्टी
2: किसे कहते हैं? मैं नहीं समझ पा रहा आपकी बात को। अब्दुल अब्दुल लगाया क्या होता है अब्दुल
6: बताइए?
2: देख, मुसलमान इस देश के सबसे मोहतर शहरी है, जिन्होंने देश की कुर्बानी हजारों साल सैकड़ों साल से देश में कुर्बानियां दी हैं। कांग्रेस पार्टी के आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी पे देख लीजिए, सब लोग हैं। आप अब्दुल अब्दुल कहकर के आप खड़ाने की कोशिश करते हैं।
5: तो बड़ा सवाल है कि कौन है अब्दुल, जिसकी यूपी की राजनीति में दिनों जबरदस्त चर्चा है, जिसका जिक्र होते ही रामपुर के सांसद नदवी नाराज हो जाते हैं, और जिसको लेकर ओवैसी भी अक्सर कहते रहते हैं कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा।
4: हम कहते हैं हम दरी नहीं बिछाएंगे, हम ये कहते हैं कि हम वोट बैंक नहीं है, हमको हमारा हक मिलना चाहिए। हम ये कहते हैं कि मुसलमानों की एक पॉलिटिकल एजेंसी होनी चाहिए। तो अब जाहिर है कि जो लोग सच्चाई को इनकार करते हैं और जो राइट है, जो जस्टिस होना चाहिए, उससे इनकार करते हैं तो ज्यादा तकलीफ होती होगी।
7: और हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अभिषेक का सवाल यह है कि ये अब्दुल शब्द का जो इस्तेमाल किया जाता है उसको लेकर अक्सर आपत्तियां जताई जाती हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं ओवैसी की तरफ से इसको ओन अप करने की भी कोशिश, क्या है ये पूरा मामला?
8: देखिए अंजलि, अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया था फसाहत अली सानू ने, जो कि आजम खान के बिल्कुल राइट हैंड थे, और आजम खान को अखिलेश यादव को जो मैसेज भेजना था उस दौरान तकरीबन 4 से 5 साल पहले अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा इसका इस्तेमाल इसी रामपुर में हुआ था, और इसी रामपुर के सांसद मोहिबुल्ला नदवी भड़के हैं। लेकिन पिछले 5 सालों से ये लगातार एक नैरेटिव के तौर पर सेट हो रहा है कि मुसलमान एक वोट बैंक बन गया है, मुसलमान सिर्फ वोट करता है, मुसलमान को राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, और इसी को आधार बनाकर लगातार समाजवादी पार्टी को टारगेट करते हैं, चाहे ओवैसी हो चाहे दूसरी पार्टियां हों। अब यह मामला पूरी तरीके से आप कह लें कि चूंकि चुनाव आने हैं, 2027 का चुनाव है, तो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन टिकट को लेकर के ये एक बार फिर से ये नैरेटिव सामने आया है, और ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को परेशान कर रहा है, और यही वजह है कि आप देखें तो रामपुर के सांसद जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो बिल्कुल भड़क गए, और उन्होंने कौन है अब्दुल ऐसी बातें कहीं। तो ये एक ऐसा नैरेटिव है जिसे ओवैसी लगातार पिच कर रहे हैं, और आने वाले समय में आपको और बड़ा
1: अखिलेश की भी नजर होगी कि कैसे इसे टैकल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और 1:11 में आप रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू,
12: सोच बदलो और बैंक भी।
13: एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों के बीच सीईसी

0: ज्ञानेश कुमार पर संग्राम बढ़ता जा रहा है। मांग इस्तीफे की हो रही है, शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा तेज होता जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार जंग छिड़ी है। मुंबई में भी विरोध की आग धधक रही है। इस बीच इसी के बहाने केंद्र सरकार पर सियासी हमले भी तेज होते जा रहे हैं। अब विवाद के बीच बड़ा हमला हुआ है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो हाल के सालों में हुए सभी चुनाव को गैर कानूनी बता रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
1: देश जो चल रहा है वो इलीगल इलेक्शन पे चल रहा है। मोदी इलीगल प्राइम मिनिस्टर, शाह इलीगल मिनिस्टर, और जितने भी अब चीफ मिनिस्टर्स बने कहां के भी, वो सब इलीगल। सबको डिसॉल्व करना, इलेक्शन कराना और बैलेट पे इलेक्शन कराना, क्योंकि ईवीएम का मिसयूज हो रहा है, ये खुद ही उनके लोग कर रहे हैं।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेताओं के हमले तेज हैं। तमाम संगठनों ने भी सड़क पर मोर्चा खोल रखा है। इस बीच सरकार और विपक्ष में वार पलटवार का दौर चल रहा है। विपक्ष से इसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। चर्चा ये भी है कि विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर भी विचार कर रहा है। इस सब के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
1: जो चल रहा है वो इलीगल इलेक्शन पे चल रहा है। मोदी इलीगल प्राइम मिनिस्टर, शाह इलीगल मिनिस्टर, और जितने भी अब चीफ मिनिस्टर्स बने कहां के भी, वो सब इलीगल। सबको डिसॉल्व करना, इलेक्शन कराना और बैलेट पे इलेक्शन कराना, क्योंकि ईवीएम का मिसयूज हो रहा है।
2: मल्लिकार्जुन भले गांधी परिवार के दास हो सकते हैं, देश का लोकतंत्र मजबूत है। कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रहा, ये मुस्लिम लीग कांग्रेस है, जो सोची समझी रणनीति के तहत देश के संवैधानिक संस्थान के ऊपर आरोप लगाना, देश में भ्रम फैलाना, ये काम हो गया है राहुल गांधी एंड कंपनी का। या तो वो सत्ता भोगेंगे, नहीं तो देश को जलाने की योजना बनाएंगे।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

निवेशकों के लिए चालू कारोबारी साल की पहली छमाही में रिटर्न का समीकरण बदलता नजर आ रहा है। अप्रैल से सितंबर के बीच छोटी कंपनियों के शेयरों ने बड़े शेयरों और मझोली कंपनियों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं सोने और चांदी जैसे पारंपरिक निवेश विकल्पों का प्रदर्शन इस दौरान कमजोर रहा। डेटा के मुताबिक स्मॉल कैप शेयरों में करीब 23% की उछाल देखी गई। वहीं मिड कैप इंडेक्स करीब 13% ऊपर रहा, जबकि निफ्टी 50 में महज 2% की बढ़त देखी गई और सोना चांदी जैसी कीमती धातुओं में इस दौरान दबाव बना रहा। यानी इस कारोबारी साल की पहली छमाही में निवेशकों की नजर ज्यादा रिटर्न देने वाले इक्विटी सेगमेंट पर रही। खास बात है कि ये बदलाव शेयर बाजार के इंडेक्स के साथ म्यूचुअल फंड निवेश में भी दिख रहा है। अगस्त में स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में बड़ी रकम पहुंची। AMFI के आंकड़ों के मुताबिक स्मॉल कैप फंड्स में करीब 7,973 करोड़ रुपए और मिड कैप फंड्स में करीब 6,989 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो आया। वहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगस्त का कुल नेट इनफ्लो 29,328 करोड़ रुपए रहा। इसका मतलब है कि इक्विटी फंड्स में आने वाले नए पैसों का बड़ा हिस्सा उन कैटेगरी में गया जहां निवेशकों को ज्यादा रिटर्न की उम्मीद होती है। लेकिन कहानी सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप तक सीमित नहीं है, क्योंकि SIP निवेश में भी इस दौरान तेजी देखी गई है। यानी बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद हर महीने तय रकम लगाने वाले निवेशकों की भागीदारी बनी हुई है। इक्विटी में लगातार बढ़ते निवेश का एक बड़ा संकेत म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का बढ़ता आकार भी है। AMFI के आंकड़ों के मुताबिक 5 साल में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का आकार करीब 3 गुना हो गया है। निवेश में एक बड़ा बदलाव ये भी है कि अब बाजार में पैसा सिर्फ सीधे शेयर खरीदने के जरिए नहीं आ रहा। SIP और म्यूचुअल फंड के जरिए भी घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप में बेहतर रिटर्न के साथ जोखिम भी ज्यादा होता है। छोटी कंपनियों के शेयरों में तेजी के बाद उतार चढ़ाव बड़े शेयरों के मुकाबले ज्यादा हो सकता है, इसलिए केवल पिछले 6 महीने के रिटर्न को देखकर निवेश का फैसला करना जोखिम भरा हो सकता है। चालू कारोबारी साल की पहली छमाही ने इतना जरूर दिखाया है कि निवेशकों के बीच इक्विटी खासकर स्मॉल और मिड कैप सेगमेंट की डिमांड मजबूत बनी हुई है। दूसरी तरफ सोना चांदी का प्रदर्शन पिछले कारोबारी साल की पहली छमाही के मुकाबले बिल्कुल उलट रहा, यानी निवेश की तस्वीर में बड़ा बदलाव आया है। लेकिन निवेशकों के लिए असली सवाल सिर्फ ये नहीं कि किस एसेट ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, बल्कि ये भी है कि आगे जोखिम कितना है और निवेशक की जरूरत के मुताबिक कौन सा विकल्प फिट बैठता है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

चुनाव से पहले भगवंत मान सरकार को बड़ा झटका। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी सीएम ऑफिस से जुड़े करप्शन के आरोपों की जांच। ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली और घूसखोरी के लगे थे आरोप। सीसी और एसआईआर के विरुद्ध कल होने वाले इंडिया अलायंस के सामूहिक हल्ला बोल से पहले आज कांग्रेस की बड़ी बैठक। प्रदेश अध्यक्षों के साथ मेगा प्लान पर चर्चा। 6 अक्टूबर को गठबंधन का मार्च। सीसी को सस्पेंड करने और बिना अधिकार के लिए गए फैसलों को रद्द करने वाली अर्जी पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। केरल सरकार ने खोली ज्ञानेश कुमार की कथित करप्शन वाली पुरानी फाइल। राज्यसभा चुनावों के लिए आज सामने आ सकती है यूपी से बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची। समाजवादी पार्टी के तीसरे कैंडिडेट पर सस्पेंस से भी उठ सकता है पर्दा। 16 अक्टूबर को होना है मतदान। बिल्कुल 9/11 की तर्ज पर प्लेन को इजरायली एयरपोर्ट की इमारत से टकराकर क्रैश कराना चाहता था आरोपी को पायलट। पूछताछ में खुलासा, पहले भी कर चुका है हाईजैकिंग की नाकाम कोशिश।

0: नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं राजीव ढौंडियाल। 12 बजे 12 रिपोर्टर की शुरुआत आज चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी मोर्चेबंदी की खबर से। कल गठबंधन इंडिया का संसद से चुनाव आयोग तक का मार्च है, और इससे पहले आज कांग्रेस नई दिल्ली में AICC प्रभारियों, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और वरिष्ठ संगठन पदाधिकारियों के अहम बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के विरोध में प्रस्तावित आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। हमारे संवाददाता मौसमी सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। मौसमी, क्या क्या एजेंडा रहेगा, कौन कौन जुड़ रहा है, आ रहा है?
1: देखिए, किस तरीके से इस आंदोलन को आक्रामक किया जाए, कैसे इंडिया गठबंधन को साथ में लिया जाए, कैसे जनता को साथ में लिया जाए। 6 अक्टूबर को तमाम सांसद इंडिया ब्लॉक के चुनाव आयोग का घेराव करने वाले हैं, पार्लियामेंट से चलने वाले हैं, तो वो कैसे उसको अंजाम दिया जाए। और राज्य इकाइयां किस तरीके से 8 अक्टूबर को जो मार्च हो रही है उसको जो है सक्सेसफुल बनाए, उसको कामयाब बनाए, इसको लेकर इंचार्ज और अध्यक्षों को बुलाया गया है। मंथन चिंतन होगा और आगे का खाका तैयार होगा।
0: जी बहुत शुक्रिया मौसमी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट मुंबई से, जहां चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली से मुंबई तक मोर्चाबंदी जारी है। कल मुंबई में उद्धव और राज ठाकरे की गर्जना रैली हुई, जिसमें उद्धव ठाकरे ने हिटलर का उदाहरण दिया, BJP और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हिटलर के जाने के बाद उसके साथ पाप करने वालों को ढूंढ ढूंढ कर सजा दी गई। बीजेपी और उसके साथ के अधिकारियों को यह याद रखना चाहिए। उधर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव और राज ठाकरे की गर्जना रैली को गजनी बताकर उस पर पलटवार किया। आइए अब आपको दिखाते हैं उद्धव ठाकरे ने क्या कहा और फिर देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार कैसे किया।
2: म्हणजे इतिहासामध्ये घडलेलं एक उदाहरण आहे हिटलरचं। हिटलर कोणालाही घाबरत नव्हता, पण हिटलर वरती अशी वेळ आली की त्याला स्वतः स्वतःवरती गोळी झाडून आत्महत्या करावी लागली। पण हिटलर गेला, आणि हिटलर गेल्यानंतर त्याला एक न्यूरेंबर्ग ट्रायल म्हणून तो एक शब्द आहे। जे अधिकारी त्या हिटलरच्या पापामध्ये सहभागी होते त्यांना शोधून शोधून काढलं, त्यांच्यावरती खटले भरले गेले, काही जणांना फासावर लटकवलं, काही जणांना तुरुंगात चढून टाकलं, तोच क्षण आपल्या देशात उद्या आल्याशिवाय राहणार नाही, एवढं भाजप आणि या सगळ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवावं।
3: कारण हे गजनी झाले आहेत, त्यामुळे या गजनींना मी आठवण करून देऊ इच्छितो की ज्ञानेश कुमार मुख्य निवडणूक आयुक्त हे 2025 मध्ये झाले, महाराष्ट्राच्या निवडणुका 2024 मध्ये झाल्या, SIR 2026 मध्ये झाला।
0: उद्धव राज ठाकरे ने रैली में और क्या कुछ कहा बता रहे हैं आज तक संवाददाता मुस्तफा शेख।
4: मुंबई में CJP का आंदोलन हुआ ज्ञानेश्वर कुमार के खिलाफ, उसके बाद मुंबई में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का एक आंदोलन देखने के लिए मिला, जिसमें मुख्य मांग तो कहीं ना कहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रेजिग्नेशन की थी, लेकिन उसी के साथ आप ये बात कह सकते हैं कि पॉलिटिकल बातें भी वहां पर की गई, जिसका पॉलिटिकल रिस्पॉन्स फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया। प्रमुख बात यह है कि सभी इंडिया अलायंस के लोग जो हैं वो उस वक्त उस स्टेज पर मौजूद थे, लेकिन फिर भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग ना होते हुए तिरंगा एक तरह से जो है वो वहां पर दिख रहा था। और ये एक आप कह सकते हैं CJP ने शुरू किया हुआ एक तरह से मोड है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा ना लाते हुए CJP प्रोटेस्ट में ट्राई कलर दिखता है। उसी तरह से अब पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में भी एक तरह से ट्राई कलर देखा जा रहा है, जिसका संदेश ये दिया जा रहा है कि ये जो रैलीज हो रही है पॉलिटिकल महत्व से नहीं हो रही है, बल्कि देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हो रही है। अब इस चीज़ का रिस्पॉन्स कैसा होता है, ये जब पूरे देश में आंदोलन CJP का फैलता है तब देखना जरूरी रहेगा। लेकिन फिलहाल जो हम देख रहे हैं केंद्र में विपक्ष के जो दल हैं या फिर जो राज्य में दल हैं, उन सभी का इस पूरे मूवमेंट को या मुहिम को सपोर्ट मिल रहा है।
0: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले SIR विवाद पर जस्टिस उज्जवल भुइया का एक बड़ा बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइया ने कहा कि ऐसी कोई भी प्रक्रिया मनमानी है जो लाखों भारतीयों को वोटिंग के अधिकार से रोकती है, इसे कोई भी बहाना सही नहीं ठहरा सकता।

0: फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुइयां का बयान चर्चा में है। लोग इस पर काफी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जस्टिस भुइयां ने मतदाताओं के लिए ये अपने भाषण में जो नालसर हैदराबाद में उन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पर दिया, उसमें उन्होंने साफ कहा कि किसी भी नागरिक के वोट का अधिकार छीना नहीं जा सकता, ऐसी कोई भी कवायद हो वो असंवैधानिक और गैरकानूनी ही मानी जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र में वोट का अधिकार ही नागरिक को राजा बनाता है। किसी ईश्वर के आदेश से या किसी राजा के आदेश से संसद को अधिकार नहीं मिलता है कानून बनाने का, ये अधिकार आम जनता देती है। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी ने ये अधिकार नहीं दिया है कि अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को सिर्फ दस्तावेजों के अभाव में दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाए, लिहाजा ये ऐसा ही है ऐसा करना। उन्होंने पूरी SIR प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों को वोटिंग के अधिकार से वंचित किया गया, ये ऐसा ही है जैसे शरीर में से आत्मा निकाल लेना। कुल मिलाकर ये जो 5 चीजें हैं उनके भाषण की, उन पर काफी चर्चा हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में कई याचिकाओं पर सुनवाई करने जा रहा है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। अभी देखना दिलचस्प होगा कि चर्चा तो सड़क पर और लोगों के बीच जबान पर हो रही है, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट में क्या दिशा, किस दिशा में केस आगे बढ़ता है।
1: जस्टिस उज्जवल भुइया ने क्या कहा और उनके बयान पर पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने क्या प्रतिक्रिया दी, आपको दिखाते हैं।
2: The Indian Constitution does not provide for 2 classes of citizens, 1 class of citizens with voting rights and the other class of citizens without voting rights. Any process which leads to wholesale disenfranchisement of Indian citizens, making them citizens without voting rights, in my view, would be outrightly violative of Articles 326 and 14 of the Constitution of India.
3: Justice Bhuiya ka ye bayan bahut sarthik hai aur uchit hai aur desh ki bhavnaon ko represent karta hai. Mera ye manna hai, jaise aur deshvasiyon ka manna hai aur sabhi political dalon ka manna hai ki kyunki chunavi prakriya aur uske processes par ek prashn chinh lag chuka hai, इसलिए ये अनिवार्य है कि उस प्रश्न चिन्ह को दूर किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी वोटर का वोट का अधिकार गैर कानूनी तरीके से न छीना जाए।
1: अब अगली खबर दिल्ली से, जहां पर आज सुबह दिल्ली में संसद मार्ग थाने पर पुलिस एक्शन देखने को मिला। संसद मार्ग थाने पर कल से धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि महिला पत्रकारों से बदसलूकी के मामले में फौरन FIR दर्ज की जाए। हालांकि पुलिस का कहना है कि शिकायत क्राइम ब्रांच को भेज दी गई है, क्राइम ब्रांच ही इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी।
4: पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर तमाम यूट्यूबर बैठे हुए थे धरने पर पूरी रात कि उनकी शिकायत, जो जर्नलिस्ट यहां पर मौजूद थे जिन्होंने छेड़खानी की कंप्लेन दी है कि उनके साथ गलत हरकत की गई, वो यहां पर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे और अब पुलिस ने उनको यहां से हटाने के लिए उनको लगातार कहा कि हटे, लेकिन जब वो नहीं हटे तो ये देखिए ये बस के अंदर सभी को यहां पर डाला गया है और इस बस के शीशे को अंदर से तोड़ दिया गया। आप देखिए जो बस का शीशा है वो तोड़ दिया गया और यहां पर ये तमाम जो यूट्यूब में काम करते हैं या जर्नलिस्ट हैं उन सबको जो यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उन सभी को यहां पर डिटेन किया गया है और अब यहां से उन्हें हटाया जा रहा है। आप देखिए जिस बस में इनको रखा गया उस बस का शीशा यहीं अंदर से तोड़ दिया गया, ये तमाम शीशा थाने के बाहर यहाँ सड़क पर बिखरा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने इनको यहाँ से पहले हटने के लिए कहा था कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये मेन रोड है, अब पूरी रात प्रोटेस्ट किया, सुबह का वक्त है, ट्रैफिक का वक्त है, लेकिन जब ये लोग यहाँ से नहीं हटे तो फिर पुलिस ने इन्हें डिटेन किया है।
1: अब अगली रिपोर्ट लखनऊ से, जहां पर यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सीटों के बंटवारे पर घमासान जारी। अब ताजा खबर क्या बता रहे संवाददाता कुमार अभिषेक।
5: अखिलेश यादव, राहुल गांधी
6: जिंदाबाद जिंदाबाद।
7: छोटे सियासी दल या फिर वो राजनीतिक दल जो कि एक इलाके में और एक जाति पर अपना प्रभाव रखते हैं 2027 चुनाव में कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। दरअसल 2017 में अमित शाह ने ऐसे कई छोटे दलों को अपने साथ जोड़ा था जिसमें तब के राजभर, संजय निषाद, ऐसी पार्टियां थी, यहां तक कि अनुप्रिया पटेल तक को जोड़ा था। यह फॉर्मूला 2022 में अखिलेश यादव ने इस्तेमाल किया जब उन्होंने ओम प्रकाश राजभर और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य सरीखे नेताओं को और उनकी पार्टियों को जोड़ा। इस बार ये काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी पर जिताऊ कैंडिडेट लाने का दबाव बना रही है समाजवादी पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अब उन पार्टियों को अपने साथ जोड़ने में लगी है जो समाजवादी पार्टी के साथ पिछले चुनाव में थे। मसलन भागीदारी मोर्चा के ज्यादातर नेता और पार्टियां, संजय चौहान से राहुल गांधी की मुलाकात हुई है, पंकज निरंजन जो कि अपना दल कमेरावादी के हैं उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई है और स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई है। अब इन छोटे दलों को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अगर बड़ी संख्या में सीटें ली तो उनके और उनके समर्थकों के लिए पर्याप्त सीटें विधानसभा में मिल जाएंगी। यही वजह है कि छोटे दल कांग्रेस का रुख कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उन्हें अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है।
1: कांग्रेस के 200 सीट वाले दावे पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन शान ने कहा कि जिस पार्टी का प्रदेश में संगठन ही मजबूत नहीं उसके लिए 200 सीटें मांगना जायज नहीं है।

0: तो कांग्रेस प्रभारी ने बयान दिया, पहले 150 प्लस की बात की थी और उसके बाद अखिलेश के पोस्ट के बाद 200 सीटों की बात कर अब सपा का पलटवारा है।
1: 150 सीटों की कथित तौर पर मांग की गई थी आप ही की तरफ।
2: किसने किया 150 का? मैंने तो 200 की बात की थी, जिनके साथ हमारा गठबंधन है इंडिया ब्लॉक में। यूपी में तो हम दो पार्टी हैं, मैं बेसिकली तो कांग्रेस और सपा है, दोनों जिम्मेदार हैं, एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं और एक दूसरे को साथ के लेके भी चलना है। तो निश्चित तौर पर सीट शेयरिंग का मामला हमें अक्टूबर में निपटा लेना चाहिए ताकि हम अपने कैंडिडेट्स को टाइम दे पाएं और हिस्सेदारी सम्मान बराबर होना चाहिए। मैं शुरू से कह रहा हूं और साथ में ये भी कह रहा हूं, हम लोग लचीले हैं भारत के संविधान की तरह।
3: जिस दल का उत्तर प्रदेश में मजबूत संगठन नहीं है ये बात कांग्रेस जानती है, पूरे राज्य में शायद उनका संगठन भी नहीं है, फिर भी उनको 150 सीटें चाहिए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसलिए पहले ही कहा कि सवाल सीट का नहीं, सवाल जीत का है और कांग्रेस को यह तय करना पड़ेगा कि उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से है या भारतीय जनता पार्टी से।
0: और अब एक बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर महिला सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त होता हुआ दिखाई दिया है। दिल्ली पुलिस से एमसीडी से जवाब मांगा गया और 4 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा गया है। दिल्ली में बढ़ते महिलाओं के खिलाफ अपराध, यौन शोषण के मामले, तमाम तरह की चीजें, और अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इस बाबत जवाब मांगा है। गृह मंत्रालय और एमसीडी से कोर्ट ने इस पर जवाब मांगा है। ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आपको दे रहे हैं और रेप यौन उत्पीड़न पर 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। दिल्ली में बीते कुछ समय में अलग अलग जगहों पर अलग अलग घटनाएं हुई हैं महिला अपराधों पर, दिल्ली पुलिस लगातार सवालों में थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से सीधा जवाब मांगा है, गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है। संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। संजय, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और क्या क्या जवाब देने के लिए कहा है, विस्तार से बताएं कि हुआ क्या था।
4: सुप्रीम कोर्ट ने लंबे चौड़े निर्देश दिए हैं, साथ ही दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर की क्लास लगाई है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि आपके यहाँ गश्त करने वाली गाड़ियां तो हैं लेकिन वो एक जगह खड़ी होती हैं, वो गाड़ियां गश्त करने के लिए हैं या खड़ी होने के लिए हैं? आपके पास कोई वॉर रूम टाइप की चीज है या नहीं, जहां आप, जैसे हमारे सारे हाई कोर्ट्स में वॉर रूम है जिसमें ये पता होता है कि कौन से कोर्ट में क्या काम हो रहा है, गतिविधियां क्या है। आपके पास क्विक रिस्पांस फोर्स है जो किसी भी इमरजेंसी के समय तुरंत रिस्पांस कर सकती है? तो ये महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोर्ट ने खरी खरी सुनाई है और ये भी कहा है कि 4 हफ्तों में रिपोर्ट दाखिल की जाए, जिस रिपोर्ट में ये पता चले कि आपने, आपके पास व्यवस्थाएं क्या हैं, कागजों पर आदेश देते हैं वो जमीन पर क्यों नहीं उतरते, जमीन पर क्यों नहीं दिखाई देते। बेंगलोर में जैसे अमाइकस क्यूरी ने कहा कि बेंगलोर में QR कोड की व्यवस्था है, जो भी पुलिस बीट अधिकारी गश्त करता है वो जगह जगह QR कोड स्कैन करता है ताकि ये पता चल सके कि वो कहाँ कहाँ पहुंचा है और उसकी रिपोर्ट पहुंचती है। लेकिन आपके यहाँ ऐसा नहीं है, ये जगह जगह आपने कभी देखा है? क्योंकि जहां इस तरह की घटनाएं हुई हैं उन लोगों ने बताया कि वो कई वर्षों महीनों से आपको इस बात की शिकायत कर रहे थे कि यहां पर गुंडे रहते हैं और गुंडों के अंदर
0: ये सवाल तो पूछे ही जाने चाहिए थे दिल्ली पुलिस से और सुप्रीम कोर्ट ने ही अब पूछ लिया। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब रिपोर्ट बिहार से आपको देते हैं। बिहार में विधान परिषद का चुनाव हो रहा है। जेडीयू के बाहुबली विधायक आनंद सिंह के बागी तेवर के बीच में कल बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार खुलकर पार्टी प्रत्याशी नीरज कुमार के समर्थन में आ गए।
5: बिहार में होने वाले MLC चुनाव के लिए लगातार जनता दल यूनाइटेड के आधिकारिक प्रत्याशी नीरज कुमार के खिलाफ पार्टी के ही बाहुबली विधायक अनंत सिंह प्रचार प्रसार कर रहे हैं और नीरज कुमार को हराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच जो अदावत देखने को मिल रही थी, इसके बीच अब निशांत कुमार की एंट्री हो गई है। निशांत कुमार ने अब खुलकर नीरज कुमार का समर्थन किया है क्योंकि वो पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी भी हैं और उनके पक्ष में वोट करने की अपील भी की है। अब ऐसे में बिहार में होने वाला MLC चुनाव जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो समीकरण देखने को मिल रहा है उसको लेकर अब बहुत ज़्यादा अहम हो गया है।
0: नीरज कुमार के समर्थन में निशांत कुमार ने क्या कहा, अब आपको सुनाते हैं।
6: हमारे नीरज जी, आज जिसके उपलक्ष्य में आज बैठक हुई युवाओं के साथ, नीरज जी पार्टी से समता काल से जुड़े हुए हैं, समाजवादी हैं, पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, पार्टी के विचारधारा के प्रति हमेशा उनकी प्रतिबद्धता रही है। तो आप जो भी है, नीरज जी को आप भारी वोट से जीता है।
0: 12:12 रिपोर्टर में अब खबर भोपाल से, जहां पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान पर विवाद छिड़ गया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है, बीजेपी और आरएसएस सनातन धर्म को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बयान पर साधु संतों ने आपत्ति जताई है। वहीं बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
7: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा बयान दिया है जिसने मध्य प्रदेश की सियासत को फिर से गर्मा दिया है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर चंदा विवाद पर बयान देते हुए कहा है कि जो चंदा राम मंदिर के लिए दिया गया था, बीजेपी और आरएसएस ने उस चंदे का इस्तेमाल देश भर में अपनी इमारतों को बनवाने के लिए किया है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाए कि जिस तरीके से आरएसएस हिंदुत्व पे काम कर रहा है, उसके चलते देश में एक तरीके से हिंदू और अल्पसंख्यकों के बीच में खाई पैदा हो गई है और इसके लिए दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को ही जिम्मेदार ठहराया। लेकिन दिग्विजय सिंह के इन आरोपों पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह हमेशा से ही तुष्टिकरण की राजनीति करते आए हैं और एक बार फिर से उन्होंने राम मंदिर के नाम पर हिंदुओं और सनातन धर्म पर हमला किया है। विश्वास सारंग ने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह जानबूझ करके समाज में वैमनस्यता बढ़ाने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं और इसके साथ ही ये भी कहा कि दिग्विजय सिंह के पास अगर किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार के सबूत हैं तो उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए, नहीं तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए।
0: और अब आपको दिखाते हैं दिग्विजय सिंह ने क्या कहा और उनके बयान पर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार कैसे किया।
8: इस देश में जिस प्रकार सनातन धर्म को हिंदू हिंदू करते रहे, ये आरएसएस विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुत्व और सावरकर जी ने उसको हिंदुत्व नाम दे दिया, उसकी वजह से पूरे देश में हिंदू मुसलमानों के अंदर, हिंदू और सिखों के बीच में, हिंदू ईसाइयों के बीच में आपने खाई पैदा कर दी। ये चंपत राय जो कि आरएसएस के एक्टिविस्ट हैं, इनका कोई धर्म से लेना देना नहीं है, सनातनी परंपराओं के ये अनुकूल नहीं है, ये व्यक्ति शुद्ध रूप से आरएसएस का एजेंट है और विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से जो चढ़ोतरी आ रही है वो पूरे तरीके से भाजपा के चुनावी चंदे में जा रही है। भाजपा के बड़े बड़े जो भवन बन रहे हैं, आरएसएस के बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, उसमें पैसे जा रहे हैं।
9: मुझे आश्चर्य होता है इस तरह की अनर्गल बातें करना, इस तरह से अनर्गल बयानबाजी करना बिना तथ्यों के, यह आपत्तिजनक भी है और खेदपूर्ण भी है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह के इस तरह के तथ्यहीन बयान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो किन तथ्यों के आधार पर इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो राम को बदनाम कर रहे हैं।
0: अब रिपोर्ट जयपुर से। जयपुर विकास प्राधिकरण ने आज जयपुर के न्यू सांगानेर मार्ग पर अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत 250 से ज्यादा घरों और दुकानों से अवैध निर्माण हटाए जाने, इस दौरान स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने जबरदस्त विरोध भी किया है। तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान स्थानीय निवासियों और व्यापारियों के एक गुट ने प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि त्योहारों के मौसम से ठीक पहले की गई इस कार्रवाई से उनके कारोबार, उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। पूरी खबर बता रहे संवाददाता शरद कुमार।
10: जयपुर में त्योहारी सीजन से पहले बुलडोजर का खौफ लोगों को सता रहा है। जयपुर में सोडाला से लेकर गुजर की थड़ी तक व्यस्तम बाजार में शामिल न्यू संगाने रोड पर 3 किलोमीटर में 260 मकान और दुकान हटाए जाने हैं, जिसे लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की एक कार्रवाई हो रही है। आज करीब 50 दुकानों के सीढ़ियां और छज्जे तोड़े गए हैं। पालना रिपोर्ट कल हाईकोर्ट में पेश की जाएगी और उसके बाद पूरी कार्रवाई की जाएगी। लोगों का कहना है कि जब दुकान सजाकर बैठे थे तब उजाड़ने की कार्रवाई क्यों की जा रही है। त्योहारी सीजन के बाद अतिक्रमण हटाने का ये काम किया जा सकता था।
0: बाद में पंजाब के जामरसर के अजनाला में जेआरपी के एएसआई पर फायरिंग मामले में नेटविस्ट आ गया है और पुलिस के मुताबिक हमले के पीछे कोई आतंकी आपराधिक साजिश नहीं बल्कि यह विशुद्ध पारिवारिक विवाद है। पुलिस ने जीआरपी अमृतसर में तैनात एएसआई सुखचैन सिंह के बयान के आधार पर एएसआई की भाभी और 3 अज्ञात हमलावरों पर केस दर्ज कर लिया है। सुखचैन सिंह कल जब ड्यूटी के बाद अपने घर लौट रहे थे तभी जगदेव खुर्द के पास में तीन युवकों ने उन पर गोली चला दी। गोली एसआई के बाजू को चीरते हुए आर पार निकल गए, जिसके बाद उन्हें अजनाला के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया।
11: पंजाब में पुलिस कर्मियों के ऊपर हमले जो है लगातार जारी हैं। अब एएसआई सुखचैन सिंह जो कि अमृतसर में पोस्टेड हैं और अमृतसर देहाती के रहने वाले हैं, कल अजनाला अपने घर जा रहे थे, अजनाला के पास एक गांव में, तब उनके ऊपर कुछ लोगों ने गोली चलाई और जो बुलेट इंजरी है उनकी बाजू में हुई, उनको इंजरी हुई और वो बाल बाल उस पूरे अटैक में बच गए। ये लगातार जो है हमले हो रहे हैं पंजाब में। पिछले दिनों हमने देखा था एएसआई हरजीत सिंह की भी हत्या कर दी गई थी अमृतसर में, और अब एएसआई सुखचैन सिंह के ऊपर भी जो है अटैक हुआ है, इंजरी हुई। हालांकि क्योंकि एएसआई सुखचैन सिंह जो थे वो सिविल वर्दी में थे, वर्दी में नहीं थे, और पुलिस ने इसको एक पर्सनल एनमिटी का केस बताया है, क्योंकि पिछले साल जो एएसआई सुखचैन सिंह है उनके भाई का भी मर्डर हुआ था और इसमें पर्सनल एनमिटी का एंगल है, और रिश्तेदारों ने ही, पुलिस का कहना है कि रिश्तेदारों को इसमें बुक किया गया है, उनकी यह हरकत जो है लगती है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह गोली लगातार चलती है, यह पंजाब सरकार डेफिनेटली इसके ऊपर जवाब देना होगा।
0: अब कॉकपिट में कुल्हाड़ी कांड पर एक नई रिपोर्ट आई है। आरोपी को पायलट ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वो इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर प्लेन को क्रैश कराना चाहता था। रिपोर्ट के मुताबिक ये ओमान के को पायलट हमाम अल हमामी ने फ्लाई दुबई की फ्लाइट पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय पायलट स्मित मछार ने नाकाम कर दिया था।
12: दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को लेकर एक नया सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। सूत्रों का कहना है कि जो को पायलट ओमान का था वो उस जहाज को तेल अवीव के भीतर किसी इमारत से टकराना चाहता था, यानी 9/11 की तर्ज पर वो काफी तबाही इसराइल के भीतर मचाना चाहता था। लेकिन उससे पहले ही जो है उस पायलट की इस साजिश को भारतीय मूल के पायलट ने, कैप्टन ने जो है वो विफल बना दिया है। लेकिन यहाँ इस बीच बड़े सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि इसराइल जाने वाली हर फ्लाइट में, हर एक फ्लाइट को इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है परख लेती हैं और उनकी सभी जानकारियां उनके पास होती हैं। उस बीच अगर ओमानी को पायलट ओमान में पहले ही बैन हो चुका था और वो एक रेडिकल था, तो उस बीच इसराइल की फ्लाइट को लेकर वो क्यों जहाज में बैठा हुआ था, जिसको लेकर बेंजामिन नेतन्याहू से और इजरायली सरकार से वहां का विपक्ष सवाल पूछ रहा है।
0: तो गया छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
15: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन के गीत सुन,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
4: आगे आगे,
5: अरे उधर उधर,
4: करेक्ट करेक्ट,
6: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार, सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
8: मेरे पास एक आइडिया है।
7: क्या?
8: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
9: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
10: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
11: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
12: कौन सी बनानी है?
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार रोटी ठुमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
4: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: कौन सी बनानी है?
8: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
9: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
10: गड़बड़ है।
11: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सोल्यूशन।
12: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
13: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
14: सोच बदलो और बैंक भी।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से।
16: यूपी में कांग्रेस सपा में सीट बंटवारे को लेकर जुबानी जंग के बीच में बोले अखिलेश यादव, बात सीट की नहीं जीत की है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को लेकर केंद्र पर भी साधा निशाना, कहा कि डबल इंजन अब ट्रबल इंजन बन गया, जनता बीजेपी से मुक्ति का ले चुकी है संकल्प। यूपी में सीट बंटवारे पर कांग्रेस का बयान, यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र गौतम बोले, मैंने 200 सीट की कही थी बात, सीटें मिलेंगी तभी तो जीत संभव। भदोही में सीएम योगी ने अखिलेश राज पर साधा निशाना, बोले 2017 से पहले राज्य का खजाना खाली था, यूपी अब देश का ग्रोथ इंजन बना। भदोही का नाम बदलकर अब होगा संत रविदास नगर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान। अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा पर फिर से सियासी घमासान, ओवैसी के बयान से यूपी की सियासत गरमाई। कौन है अब्दुल के सवाल पर छिड़ी बहस, ओवैसी बोले कि मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा। अब्दुल वाले बयान पर ओवैसी ने साधा निशाना, कहा कि मुसलमान को उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। रामपुर में आजम खान की पत्नी से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, तंजीम फातिमा बोली अभी चुनाव नहीं, आजम को बाहर निकालना मकसद है। तंजीम फातिमा से मुलाकात के बाद बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, कहा कि संकट में मैं साथ। लखनऊ में भारी बारिश से प्रभावित परिवारों के लिए राहत कार्य तेज, फैजुल्लागंज में प्रशासन की टीमें सक्रिय। फैजुल्लागंज में बारिश प्रभावित लोगों को राहत, प्रशासन और नगर निगम की टीमें लगातार राशन पहुंचाने में जुटी। लखनऊ में बारिश के बाद अब राहत अभियान तेज, डीएम नगर आयुक्त ने प्रभावित परिवारों से संवाद किया। लखनऊ में बाढ़ पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान, किया 15 दिनों में ही साल की 25% बारिश हुई। गोमती का जलस्तर बढ़ने के बाद लखनऊ में बाढ़ की स्थिति है, बोले 2008 के बाद ऐसा पहली बार देखा मंत्री का बयान। ग्रेटर नोएडा में पार्किंग को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिसकर्मी और कार सवारों में धक्का मुक्की का वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में गाड़ी निकालने को लेकर विवाद, दरोगा से अभद्रता और महिला से बदसलूकी का आरोप, दोनों पक्षों में समझौता। ललितपुर में घरेलू विवाद के बाद से सोते समय पत्नी की हत्या, पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। कानपुर में 40 साल से फरार चोर गिरफ्तार, बरेली में साधु बनकर पागल बाबा के नाम से मशहूर हो गया। बिजनौर में पत्नी को प्रेमी के साथ होटल से निकलते देख भड़का पति, सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा।

उत्तर प्रदेश की चुनावी खबरों में दो बड़ी सुर्खियां चर्चा में हैं। एक तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन को लेकर फिर से बयानों के जरिए दबाव की सियासत तेज हो रही है। दूसरी खबर राज्यसभा चुनावों की है, जिसमें कल नामांकन का अंतिम दिन है और बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। संभव है कि आज ही अखिलेश यादव तीसरे उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान कर सकते हैं। इन दोनों खबरों में बयानबाजी का सिलसिला समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में बिगड़ता जा रहा है।

0: विधानसभा में मिली 2 सीट, लड़ ली थी 399 सीट। लोकसभा में मिली 6 सीट, मांग ली थी 37 सीट। उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं को अंदाजा ही नहीं है कि प्रदेश में कांग्रेस की जमीनी ताकत कितनी है। नतीजा यह है कि पहले मांगी सम्मानजनक सीट, फिर मांगी 100 सीट, फिर मांगी 150 सीट और अब कह रहे हैं 200 सीट।
1: मैंने किया 150 का, मैंने तो 200 की बात की थी।
2: मैं ये कहता हूँ उनको 50 सीट देना भी बहुत बड़ी बात होगी,
1: क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी सबसे बड़ी पार्टी।
3: 2024 में कांग्रेस मध्य प्रदेश में अकेले लड़ी, कितनी सीटें जीती। कांग्रेस राजस्थान में अकेले लड़ी, कितनी सीटें जीती। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, कितनी सीटें जीती।
4: जीत ही आधार है, जीती सीट का आधार है।
0: अखिलेश यादव साफ कह चुके हैं कि यूपी में जीत ही सीट का आधार है और जीत बोले तो आखिरी चुनाव यानी 2024 लोकसभा में मिली जीत, और वो जीत कुछ ऐसी थी कि 80 में से 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती और 6 कांग्रेस को मिली थी। इसे विधानसभा के अनुपात में बांटा जाए तो 37 लोकसभा के हिसाब से अखिलेश के हिस्से 347 सीटें बनती हैं और कांग्रेस के हिस्से 56।
5: क्या भी चाहते हो किसी पे चुनूंगा तो कोई आवाज।
0: लेकिन कांग्रेस की हसरतें 56 से 200 तक पहुँच चुकी है और हौसला बढ़ता ही जा रहा है।
1: थोड़ा बहुत झुकना पड़ेगा, झुकेंगे, क्योंकि जीतना जरूरी है, तो जीतने के लिए तो लड़ रहे हम।
6: बट वो कह रहे हैं कि बात जीत की जाए।
1: हाँ तो हम भी तो जीत की कर रहे हैं।
6: आप सीट की बात कर रहे हैं,
1: सीट मिलेगी तभी तो जीतेंगे।
0: कांग्रेस लगातार दबाव की सियासत कर रही है। पहले सीटों की तादाद को लेकर दावे पर दावे किए तो अखिलेश इंडिया की बैठक तक में नहीं गए।
7: समाजवादी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि लोकसभा के चुनाव के बाद बीजेपी को रोकने का मादा केवल समाजवादी पार्टी में है और कांग्रेस का साथ जरूर है लेकिन छोटे भाई की भूमिका में।
0: अब कांग्रेस ने उसी इमरान मसूद को कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है जो लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे थे और 403 सीटों पर लड़ने की चेतावनी देते रहते हैं। अब बारी समाजवादी पार्टी की ओर से फैसला लेने की है कि वो कांग्रेस की सीटों वाली शर्तों के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन करना चाहती है या बीजेपी को हराने के मिशन के साथ।
7: ये रस्सोकसी अगर लगातार दोनों ही दलों के बीच में जारी रहती है और बयानों के तीर छोड़े जाते हैं तो वोटर असमंजस में पड़ सकता है और दोनों ही दलों को नुकसान हो सकता है, जिसका सीधा फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को। फिर वो वोटर चाहे वोट विपक्ष को करे या ना करे, फायदा बीजेपी का। अब सोचना दोनों दलों को यह है कि सियासी तीरों के जरिए सीट शेयरिंग का दबाव बनाएंगे या अपने वोट को बचाएंगे, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
8: दरअसल कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के पीछे 2024 की जीत का आधार है। दोनों दल मानते हैं कि जीत उनकी वजह से मिली है और जिस तरह पिछले 2 साल में देश के विपक्षी सियासत राहुल गांधी के छत्र छाया तले आगे बढ़ रहे हैं उसमें कांग्रेस का हौसला बढ़ना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती यह है कि कांग्रेस लगातार दबाव की जो राजनीति है वो कर रहे हैं। अब चर्चा है कि कांग्रेस छोटे छोटे दलों के संपर्क में भी है।

0: क्या यूपी में कांग्रेस प्लान बी पर बढ़ेगी? क्या छोटे दलों में विकल्प ढूंढ रही कांग्रेस? क्या यूपी में है राहुल अखिलेश का कुछ सीक्रेट प्लान? उत्तर प्रदेश की कांग्रेसी सियासत के चेहरों ने अब तक जो रुख जाहिर किया है उसी से ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 403 सीटों वाली विधानसभा में 200 सीट मांग कर रही है तो अखिलेश लगातार जीत के आधार पर ही सीट की बात कर रहे हैं। ऊपर से छोटे छोटे दलों के नेता राहुल की परिक्रमा करना शुरू कर चुके हैं, चाहे वो अपनी जनता पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य से राहुल गांधी की मुलाकात हो या यूपी में चौहान लोनिया ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले महान दल के अध्यक्ष संजय चौहान की राहुल से मुलाकात या फिर अपना दल कमेरावादी पार्टी के नेता पंकज निरंजन से राहुल की भेंट। 2022 के पहले बने भागीदारी मोर्चा के ज्यादातर दल कांग्रेस के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी छोटे दलों के नेता बारी बारी से राहुल गांधी से मिल चुके हैं। दरअसल यूपी में जिस तरह समाजवादी गठबंधन में शर्तों की बात सामने आई है उसमें राहुल अखिलेश के सियासत के सीक्रेट मायने कुछ और भी हो सकते हैं।
1: राहुल गांधी जी से गठबंधन के बारे में, सीटों के बारे में, क्योंकि बाकी के बारे में ही कह रहे हैं, उसके बारे में
2: हमारी रणनीति यही है जो दिखाई दे रही है आपको। कभी कभी विरोधी लोगों से भी सीखना चाहिए, विपक्ष के लोगों से भी सीखना चाहिए। वो लगता है झगड़ा कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर मिले रहते हैं। समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, जीत ही आधार है, जीत ही सीट का आधार है।
0: दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इन छोटे छोटे दलों को जोड़कर 2017 के पहले के बीजेपी के फार्मूले को अपना रही है, जब अमित शाह ने इन्हीं छोटी पार्टियों और नेताओं को अपने साथ जोड़कर समाजवादी पार्टी को मात दी थी।
3: ये फॉर्मूला 2022 में अखिलेश यादव ने इस्तेमाल किया जब उन्होंने ओम प्रकाश राजभर और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य सरीखे नेताओं को और उनकी पार्टियों को जोड़ा। इस बार ये काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी पर जिताऊ कैंडिडेट लाने का दबाव बना रही है समाजवादी पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अब उन पार्टियों को अपने साथ जोड़ने में लगी है जो समाजवादी पार्टी के साथ पिछले चुनाव में थे। कांग्रेस पार्टी ने अगर बड़ी संख्या में सीटें ली तो उनके और उनके समर्थकों के लिए पर्याप्त सीटें विधानसभा में मिल जाएंगी। यही वजह है कि छोटे दल कांग्रेस का रुख कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उन्हें अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है।
0: वैसे छोटे दलों से कांग्रेस की मुलाकातों का एक मायने और है जिसमें राहुल यूपी में समाजवादी वर्चस्व के मुकाबले विकल्प की तलाश कर सकते हैं।
4: राहुल गांधी जी इसमें SC ST ओबीसी तथा माइनॉरिटीज के तथा देश हित से जुड़े सभी मुद्दों पर देश स्तर पर उठा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। वही काम इन्हीं मुद्दों को लेकर के मैं उत्तर प्रदेश कर रहा हूं। समान विचारधारा है, समान लड़ाई है। इस देश में हम चाहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी हों। इसके लिए समान विचारधारा के लोगों को एक साथ खड़ा करने की कवायद में भी मैं लगातार लगा।
5: आप तो मजे हुए राजनीतिक हैं, सीटों पर क्या बात बनी? बिना सीट लिए तो आप मानेंगे नहीं, ठीक
4: है? पहली बैठक में ही सब कुछ नहीं तय हो जाता है। आज तो बैठक की शुरुआत हुई है, आगे क्या होता है उसका भी समय समय पर खुलासा होता रहे।
0: खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ने की मांग की है और लगभग दर्जन पर सीटों की मांग रखी है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कहा है कि सिंबल तो कांग्रेस का ही होगा। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी चेतावनी देती है कि यूपी में कांग्रेस के सामने सिर्फ समाजवादी ही विकल्प है, वरना यूपी में का नाम लेवा प्रतिनिधित्व भी नहीं होता।
6: अगर हमारे साथ गठबंधन न होता तो उनके जो 6 सांसद जीते हैं एको न जीते। और मैं आप फिर बता रहा हूं, मुझे अच्छे से पता है कि राहुल गांधी भी यहाँ चुनाव लड़ने से डर रहे थे। अमेठी तो छोड़ ही दिया था। रायबरेली जब अखिलेश यादव के समझाने पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समझाने पर गए हैं, तब उन्होंने पर्चा भरा। जब उन्होंने कह दिया अगर आप नहीं करेंगे तो मैं अपना कैंडिडेट घोषित करता हूँ।
0: दरअसल समाजवादी पार्टी बार बार संकेत दे रही है कि यूपी में कांग्रेस का बड़ा भाई समाजवादी है, और अखिलेश ने जो जिताऊ कैंडिडेट की शर्त कांग्रेस के सामने रखी है उसमें कांग्रेस छोटे दलों के अंदर जातिगत बुनियाद पर जिताऊ चेहरे तलाश रही है। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
7: यूपी में गठबंधन की राजनीति में एक और रेड लाइन पर डेडलाइन गुजर रही है। गठबंधन की राह में असदुद्दीन ओवैसी की आंखें थकी जा रहे हैं। 2 अक्टूबर की डेडलाइन थी, पार कर गए, किसी दल ने गठबंधन का हाथ नहीं बढ़ाया, तो अब असदुद्दीन ओवैसी ने अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया है।
0: उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार शुरू करने के दिन से ही ओवैसी यूपी के राजनीतिक दलों के सामने ऑफर पर ऑफर दे रहे हैं। हर चुनावी रैली के बाद ओवैसी समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस और दलितों की सियासत करने वालों तक खुद के साथ गठबंधन की पेशकश करते हैं। पिछली रैली में 2 अक्टूबर की डेडलाइन तय कर चुके ओवैसी ने अब निराश होकर समाजवादी पार्टी पर नए सिरे से हमला बोलना शुरू कर दिया है।
8: और सपा वालों और तुम्हारे साथ जो इंडिया अलायंस के सियासी पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो या भारत का 1900 मुसलमान हो, ये मुसलमान तुम्हारी बपूटी नहीं है, याद रखो।
9: जो लोग सत्ता की आलोचना नहीं करते, जो लोग सत्ता पे सवाल नहीं पूछते, वो समाजवादी की आलोचना करते, इससे साफ जाहिर होता है कि वो लोग किसके सहयोगी हैं, वो किसकी मदद कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता भलीभांत जानती है।
0: ओवैसी की पार्टी यूपी में कम से कम 11 सीटों पर जीत के दावे कर रही है और अपने नंबर के दम पर शर्तों के साथ चुनाव से पहले सियासी गठबंधन करना चाहती है।
10: हम कहते हैं हम दरी नहीं बिछाएंगे, हम ये कहते हैं कि हम वोट बैंक नहीं है, हमको हमारा हक मिलना चाहिए। हम ये कहते हैं कि

0: वो सभी वर्गों को अपना साथी, सहयोगी और समाजवादी पार्टी के परिवार का हिस्सा समझती है। जो लोग सत्ता की आलोचना नहीं करते, जो लोग सत्ता पे सवाल नहीं पूछते, वो समाजवादी की आलोचना करते। इससे साफ जाहिर होता है कि वो लोग किसके सहयोगी हैं, वो किसकी मदद कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता भलीभांति जानती है।
1: दरअसल यूपी में दलित वोट का गणित कुछ ऐसा है। दलित आबादी करीब 21 से 22%, 85 आरक्षित सीटें, 140 प्लस सामान्य सीटों पर असर, जाटव, पासी, कोरी, धोबी और वाल्मीकि प्रमुख दलित समुदाय। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव के बाद दलित वोट 2027 की सियासत का बड़ा फैक्टर बन चुका है। समाजवादी पार्टी PDA के जरिए दलित पिछड़ा मुस्लिम समीकरण मजबूत करने में जुटी है। कांग्रेस ने भी दलित चेहरे राजेंद्र पाल गौतम को यूपी की जिम्मेदारी देकर अपना दाम चला है। वहीं BJP और RSS एक कुआं, एक श्मशान जैसे सामाजिक समरसता के संदेश के जरिए दलित समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: और अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
6: और वही कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
9: जेके वॉल मैक्स।
7: बेस्ट पेंट
10: जेके मैक्स।
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स, जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
12: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
3: In association with Signature Finest Cardamom Seeds, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
13: जीत तो महत्वपूर्ण है ही है, गठबंधन पानी की तरीके से एक है, सीटों की संख्या पर कोई झगड़ा नहीं, 403 की 403 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। सिंबल जिस क्षेत्र में जो जीत सकता होगा उस पार्टी का सिंबल होगा। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तय करेंगे। इसमें तो ये तो एक अच्छा बयान है श्री अखिलेश यादव जी।
0: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तो तय है, जहां तक सीट शेयरिंग की बात है ये ना अनुराग भदौरिया तय करेंगे, ना हमारे सांसद SP सिंह पटेल साहब तय करेंगे, ना ही कांग्रेस का कोई नेता सांसद तय करेगा। ये समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। लेकिन ये तय है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगी।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,

0: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
1: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
3: जेके वॉल मैक्स
1: बेस्ट पेंट,
4: जेके मैक्स।
1: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
5: 150 सीटों की कथित तौर पर मांग की गई थी आप ही की तरफ।
6: किसने किया 150 का? मैंने तो 200 की बात की थी, जिनके साथ हमारा गठबंधन है इंडिया ब्लॉक में। यूपी में तो हम दो पार्टी हैं, मैं बेसिकली तो कांग्रेस और सपा है, दोनों जिम्मेदार हैं, एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं और एक दूसरे को साथ के लेके भी चलना है। तो निश्चित तौर पर सीट शेयरिंग का मामला हमें अक्टूबर में निपटा लेना चाहिए ताकि हम अपने कैंडिडेट्स को टाइम दे पाएं। और हिस्सेदारी सम्मान बराबर होना चाहिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ, और साथ में ये भी कह रहा हूँ हम लोग लचीले हैं भारत के संविधान की तरह। सम्मान की बात आए तो भारत के संविधान की तरह रिजिड है, सीट शेयरिंग की बात आएगी तो भारत के संविधान की तरह लचीले भी हैं, फ्लेक्सिबल भी हैं। थोड़ा बहुत झुकना पड़ेगा, झुकेंगे, क्योंकि जीतना जरूरी है, तो जीतने के लिए तो लड़ रहे हैं हम।
5: बट वो कह रहे हैं कि बात जीत की की जाए सीट।
6: हाँ, तो हम भी तो जीत की कर रहे हैं।
5: आप सीट की बात कर रहे हैं,
6: सीट मिलेगी तभी तो जीतेंगे, चुनाव लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे, बिना लड़े कोई जीतता है क्या?

0: राजनीति सीट का आधार है।
1: अखिलेश यादव का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों पर मतभेद खुलकर सामने आ गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया का ये बयान यूपी में 2027 की सियासी पटकथा का पहला अध्याय माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए गुंजाइश का कोना भी छोड़ रखा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मकसद जब साफ हो तो हाथ में हाथ होता है, निगाह मंजिल पर हो तो सफर आसान होता है। बात बड़ी ये नहीं कि गठबंधन में कितनी सीटें या कौन सी सीटें किसके पास जा रही हैं। बात बड़ी है कि हम सबको ये सुनिश्चित करना है कि जीत गठबंधन की हो। फिर दोहराते हैं, बात सीट की नहीं जीत की है। यूपी की राजनीति में सीट सिर्फ एक नंबर नहीं होती। एक सीट मतलब संगठन, एक सीट मतलब उम्मीदवार, एक सीट मतलब वोट बैंक और सबसे बढ़कर एक सीट मतलब गठबंधन के भीतर राजनीतिक हैसियत। इसलिए जब बात यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तलखी पर आई तो बीजेपी टूट पड़ी।
2: ऐसे बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में हैसियत सीट जीतने की जितनी है उतनी ही डिमांड करे, और कांग्रेस लगातार 150 सीट 200 सीट की डिमांड कर रही है।
1: जब बीजेपी ने इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तलखी पर हाथ रख दिया तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के एनडीए के बीच बड़े कील कांटे को उभार कर बीजेपी पर पलटवार किया।
3: ये श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तय करेंगे। इसमें तो ये तो एक अच्छा बयान है श्री अखिलेश यादव जी।
4: भारतीय जनता पार्टी में सब गड़बड़ चल रहा है, एनडीए गठबंधन में सीट को लेकर सरफुटवल है, इसलिए वो अपना ध्यान भटकाने के लिए इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। इंडिया गठबंधन का गठबंधन मजबूत है।
1: 2017 में यूपी के दो लड़के अखिलेश और राहुल साथ आए, गठबंधन हुआ लेकिन नतीजा सिफर रहा। समाजवादी पार्टी 311 सीटों पर लड़ी लेकिन जीती 47 सीटें। वहीं कांग्रेस ने 114 सीट पर चुनाव लड़ा लेकिन जीते सिर्फ 7 सीट, यानी यूपी विधानसभा की 403 सीटों में से 54 सीटें सिर्फ जीत सके। फिर आया 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव। इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग मैदान में थे। समाजवादी पार्टी ने 347 सीटों पर चुनाव लड़ा और 111 जीती। कांग्रेस ने भी लगभग पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ा लेकिन उसके खाते में आई सिर्फ 2 सीटें, यानी आंकड़े सवाल छोड़ गए। इन आंकड़ों में नया मोड़ 2024 लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला। 2024 लोकसभा में समाजवादी पार्टी 80 में से 37 सीटें जीती, वही कांग्रेस को 6 सीटों पर कामयाबी मिली। सीटों के इसी खेल के जरिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। ऐसा नहीं है कि सीटों की ये लड़ाई इंडिया गठबंधन के बीच में ही है। यूपी में एनडीए में भी सीटों की दावेदारी शुरू हो चुकी है। आरएलडी, निषाद पार्टी, अपना दल और एसबीएसपी जैसे सहयोगी अपनी अपनी राजनीतिक जमीन के हिसाब से हिस्सेदारी चाहते हैं। यानी यूपी में दोनों गठबंधनों के सामने एक ही सवाल है कि साथी कितने मजबूत हैं और उनकी कीमत कितनी है। फिलहाल तो बीजेपी एनडीए से लड़ने से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की आपसी खींचतान सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। क्या अखिलेश का ताजा बयान इस विवाद को खत्म कर पाएगा? आज तक ब्यूरो।

चुनाव से पहले भगवंत मान सरकार को बड़ा झटका। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से सीबीआई को सौंपी सीएम ऑफिस से जुड़े करप्शन के आरोपों की जांच। ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली और घूसखोरी के लगे थे आरोप। महिला सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। दिल्ली में हुई घटनाओं पर मांगा पुलिस, गृह मंत्रालय और एमसीडी से जवाब। पूछा निर्भया फंड के इस्तेमाल की डिटेल बताएं, 4 हफ्ते में देनी होगी रिपोर्ट। सीसी और एसआईआर के विरुद्ध कल होने वाले इंडिया अलायंस के सामूहिक हल्लाबोल से पहले आज कांग्रेस की बड़ी बैठक। प्रदेश अध्यक्षों के साथ मेगा प्लान पर चर्चा। 6 अक्टूबर को गठबंधन का मार्च। राज्यसभा चुनाव के लिए आज सामने आ सकती है यूपी से बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट। समाजवादी पार्टी के तीसरे कैंडिडेट पर सस्पेंस से भी उठ सकता है पर्दा। 16 अक्टूबर को होना है मतदान। गोमती नदी के रौद्र रूप से लखनऊ के आसपास के इलाकों में हाहाकार। खतरे का निशान तोड़ रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। सीएम योगी करेंगे पूरे इलाके का हवाई सर्वेक्षण।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। आज तक में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सीईसी को निलंबित करने और उनके फैसलों को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। दरअसल ये सुनवाई आज हुई है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन को और उनसे जवाब मांगा गया है, क्योंकि जो याचिका दायर की गई थी उसमें ये सवाल किए गए थे कि दरअसल जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो ज्ञानेश कुमार द्वारा अकेले लिए जा रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहा है नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के लिए।
1: अंजलि, याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि हमारी याचना ये है कि जिस तरह से कानून में सरकार ने बदलाव किया है उसके मुताबिक ज्ञानेश कुमार और जिस तरह से ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली रही है सीईसी की, तो उन्हें निलंबित करने की हमारी मांग है कि उन्हें अविलंब निलंबित किया जाए और साथ ही जो दो चुनाव आयोग थे वो चुनाव आयोग का कामकाज संभालें। लेकिन कोर्ट ने फिलहाल नोटिस जारी किया है और जिसमें इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार से जवाब मांगा गया है। लेकिन याचिकाकर्ताओं की जो मुख्य मांग थी कि सीईसी को निलंबित किया जाए, उससे कोर्ट ने दरकिनार कर दिया है।
0: जी, सवाल ये भी है संजय कि ये जो पूरा मामला है इस पे सबकी नजरें गड़ी हुई हैं, क्योंकि बाहर इसको लेकर राजनीति हो रही है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। वहां जो दलीलें दी गई याचिकाकर्ता वकील की तरफ से, उन्होंने कई बड़े बड़े आरोप भी लगाए।
1: जी हाँ, उन्होंने आरोप लगाए। उनका ये कहना है कि जो मूल कानून है वो ये कहता है कि सर्वसम्मत फैसले लिए जाएं या बहुमत से फैसले लिए जाएं, लेकिन अब तक जो रिपोर्ट सामने आई है उससे यही लगता है कि मनमाना ढंग से काम किया जा रहा है और इसलिए उनको फिलहाल निलंबित कर दिया जाए।
0: जी जी संजय, इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो निलंबन की मांग थी उसे कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त के मुद्दे पर जो सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें निलंबन की मांग को, यानी कि ज्ञानेश कुमार के निलंबन की मांग को खारिज कर दिया गया है। और इस वक्त जो खबर है उसके मुताबिक उनको नोटिस जारी किया गया है चुनाव आयुक्त को और चुनाव आयोग को, और उनसे जवाब मांगा गया है। और एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त नॉन स्टॉप 100 पर।

0: दिल्ली एनसीआर में रेप मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पुलिस को बीट पेट्रोलिंग बढ़ाने और अपराध रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश। पेट्रोलिंग वैन एक जगह खड़ी रहने पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल, कहा पुलिस लगातार इलाकों में गश्त क्यों नहीं करती। अंधेरे इलाकों और अवैध शराब दुकानों पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता, पुलिस से पूछा लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट की पुलिस को दो टूक, सिर्फ अपराधी को गिरफ्तार करना समाधान नहीं, अपराध होने से पहले उसे रोकना जरूरी। दुर्गा पूजा और दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट का पुलिस को अलर्ट, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और पार्कों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा बढ़ाने को कहा। पंजाब में कथित भ्रष्टाचार मामले की सीबीआई जांच के आदेश, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों पर हाईकोर्ट सख्त, ईडी की चिट्ठियों से जुड़े मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गई। ट्रांसफर पोस्टिंग और सीएलयू में कथित भ्रष्टाचार के आरोप, हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच के दिए निर्देश। ईडी की शिकायत पर पंजाब पुलिस की कार्रवाई न होने का मामला, हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी जांच। बिहार दारोगा भर्ती परीक्षा रद्द होने के विरोध में पटना में 11,000 सफल अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, भर्ती प्रक्रिया बहाल करने की मांग। दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर यूट्यूबर्स का धरना, पुलिस ने बस में बिठाकर किया डिटेन। एफआईआर की मांग को लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर धरना, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। देश भर में वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ गरमाई सियासत, चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्लान, आज दिल्ली में अपने राज्य प्रमुखों के साथ अहम बैठक। सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर दो याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ कर रही है सुनवाई। याचिकाकर्ता की ओर से जनप्रतिनिधित्व कानून के मूल स्वरूप और धाराओं में बदलाव का दिया गया हवाला, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला, बोले चुनाव आयोग को बदनाम कर रही है कांग्रेस, जनादेश का अपमान करना कांग्रेस की आदत। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक साथ आए उद्धव और राज ठाकरे मुंबई में विरोध मार्च में शामिल हुए। मुंबई में उद्धव ठाकरे ने ज्ञानेश कुमार को बताया बीजेपी का हथियार, कहा हम तानाशाह को खाड़ फेंकने आए हैं। राज ठाकरे ने बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग की, कहा वोट चोरी के खिलाफ कदम उठाना जरूरी है। संजय राउत की बड़ी चेतावनी, युवाओं का गुस्सा नहीं थमा तो देश में आग लगा देगी युवा पीढ़ी। दिल्ली में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडियन यूथ कांग्रेस का कैंडल मार्च, सीईसी के इस्तीफे की मार्च तेज। दिल्ली पुलिस के खिलाफ इंडिया गेट से जंतर मंतर तक मार्च, सीईसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिसिया कार्रवाई से खफा। दिल्ली पुलिस का 3 अक्टूबर को किए गए आईसा और दूसरे संगठन के प्रदर्शन पर बयान, बदसलूकी पर कहा अगर किसी के पास कोई वीडियो हो तो क्राइम ब्रांच को भेजें। 3 महिला पत्रकारों से बदसलूकी के आरोप पर सियासत तेज, कांग्रेस ने मोदी शाह पर साधा निशाना। दिल्ली पुलिस ने वायरल वीडियो को बताया फर्जी, कहा महिला पत्रकारों से बदसलूकी का वीडियो दिल्ली पुलिस का नहीं। दिल्ली में जंतर मंतर पर हुए रविवार के प्रदर्शन में 15 पुलिसकर्मी घायल, करीब 110 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। ओवैसी का बीजेपी आरएसएस पर बड़ा आरोप, फॉर्म 7 के जरिए वोटर लिस्ट से नाम हटाने की साजिश का दावा। कांग्रेस अध्यक्ष के मोदी को गैर कानूनी प्रधानमंत्री बताने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार, पूछा क्या आप गैर कानूनी है खड़गे जी, क्या राहुल गांधी भी हैं गैर कानूनी सांसद। पटना में बीजेपी ने शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी खड़गे का पलटवार करते हुए कहा उनका बयान 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। राहुल गांधी के डिजिटल सत्याग्रह पर बोले चिराग पासवान, कहा सत्याग्रह नाम अच्छा लेकिन विपक्ष को झूठा और भ्रम फैलाना छोड़कर सच बोलना चाहिए। यूपी में कांग्रेस एसपी में सीट बंटवारे को लेकर जुबानी जंग के बीच बोले अखिलेश यादव, बात सीट की नहीं जीत की है। अखिलेश ने योगी सरकार से लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा डबल इंजन अब बन गया है ट्रबल इंजन, जनता बीजेपी से मुक्ति का ले चुकी है संकल्प। यूपी में सीट बंटवारे पर कांग्रेस का बयान, यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र गौतम बोले मैंने 200 सीट की बात की थी, सीटें मिलेंगी तभी जीत संभव। भदोही में सीएम योगी ने अखिलेश राज पर साधा निशाना, बोले 2017 से पहले राज्य का खजाना था खाली, यूपी अब देश का ग्रोथ इंजन। भदोही का नाम बदलकर अब होगा संत रविदास नगर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ये बड़ा ऐलान। अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा पर फिर सियासी घमासान, ओवैसी के बयान से गरमाई यूपी की सियासत। कौन है अब्दुल के सवाल पर छिड़ी बहस, ओवैसी बोले मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएगा। अब्दुल वाले बयान पर ओवैसी ने साधा निशाना, कहा मुसलमान को उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। रामपुर में आजम खान की पत्नी से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, तंजीम फातिमा बोली अभी चुनाव नहीं, आजम को बाहर निकालना मकसद। तंजीम फातिमा से मुलाकात के बाद बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, कहा संकट में साथ। लखनऊ में भारी बारिश से प्रभावित परिवारों के लिए राहत कार्य तेज, फैजुल्लागंज में प्रशासन की टीमें सक्रिय। फैजुल्लागंज में बारिश प्रभावित लोगों को राहत, प्रशासन और नगर निगम की टीमें राशन किट पहुंचाने में जुटी। लखनऊ में बारिश के बाद राहत अभियान तेज, डीएम नगर आयुक्त ने प्रभावित परिवारों से किया संवाद। लखनऊ में बाढ़ पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान, बोले 15 दिन में साल की 25% बारिश हुई। गोमती का जल स्तर बढ़ने से लखनऊ में बाढ़ की स्थिति, मंत्री बोले 2008 के बाद पहली बार ऐसा हाल। आंध्र प्रदेश के तेनाली में शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी और सीएम नायडू की साझेदारी की तारीफ की, विकास को लेकर गिनाए फायदे। तेनाली में शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, बोले पीएम मोदी और सीएम नायडू की जोड़ी 1 और 11। चेन्नई में एशियन गेम्स पदक विजेताओं का सम्मान, खेल मंत्री यादव अर्जुना ने किया सम्मानित। झांसी में नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर, किले के आसपास गरबा अभ्यास में दिखा उत्साह। दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलियन का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत। कैप्टन स्मिथ मछार के जल्द स्वस्थ होने की कामना में आसनसोल में महामृत्युंजय जाप और हवन यज्ञ, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैप्टन स्मिथ के लिए दुबई के बाप्स मंदिर में की गई दुआएं, यूएई के से संपर्क में है भारत की एम्बेसी भी। दिल्ली में आर्टिस्ट इवेंट क्रिकेट लीग में समापन समारोह में शामिल हुए आशीष सूद, दिल्ली में 5 स्टेडियम के को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का किया गया ऐलान। और भारत और स्विट्जरलैंड की द्विपक्षीय मुलाकात के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधा वहीं चलते हैं।
1: फेडरेशन टू गिव हिज रिमार्क्स टू द मीडिया।
2: मर्सी मिस्टर प्रीमियर मिनिस्टर, एक्सेलेंस, चेयर्स इनविटेड, मर्सी फॉर वोटर इनविटेशन एंड वोर मोट शालरेउ मिस्टर प्रीमियर मिनिस्टर, जे सुई ट्रेस हेउरेउ डेत्र अजोर्दुई आ न्यू देल्ही। सेट ला दुजिएम फोआ सेट अने के जे मे रान एन इंड एट सेट ला त्रोजिएम फोआ que j'ai pu m'entretenir avec vous, Monsieur le Premier ministre. En février, j'étais en Inde pour le sommet sur l'IA et AI Summit. Puis nous nous.
3: मैं इस समिट में भाग लेने वाले सभी बिजनेस लीडर्स को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। Your Excellency, इस वर्ष फरवरी में भारत ने विश्व की सबसे बड़ी AI समिट का आयोजन किया। अगले वर्ष स्विट्जरलैंड जिनेवा एआई समिट के माध्यम से इस यात्रा को आगे बढ़ाएगा। जिनेवा एआई समिट की सफलता के लिए मैं स्विट्जरलैंड को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि हम साथ मिलकर एआई को रिस्पॉन्सिबल, इंक्लूसिव और ह्यूमन सेंट्रिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार फिर भारत के इस यात्रा के लिए और भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के प्रबल समर्थक रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
1: थैंक यू सर। मे आई नाउ रिक्वेस्ट हिज एक्सीलेंसी मिस्टर गी पामेला, प्रेसिडेंट ऑफ द स्विस कॉन्फेडरेशन, टू गिव हिज रिमार्क्स टू द मीडिया।
0: और रुक करते हैं इस वक्त आ रही एक और बड़ी खबर का, बात मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के निलंबन की मांग को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा न्यूज रिपोर्ट के आधार पर वो आदेश नहीं दे सकते हैं। इस वक्त उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया और इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है। मामला दरअसल उस याचिका का था जिसमें ये आरोप लगाए थे कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो उन्होंने अकेले लिए और उसमें सहमति नहीं बनाई गई थी। ऐसे में ये मांग की गई थी कि उनको निलंबित किया जाए उनके पद से। हमारे सहयोगी संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। संजय, आज जो अदालत में हुआ है उसकी जानकारी हमें दें और नोटिस जारी कर क्या पूछा गया है।
4: नोटिस जब भी जारी होता है तो अदालत याचिका में उठाए गए सवालों पर जवाब चाहती है, जिसमें केंद्र सरकार और मुख्य निर्वाचन आयोग सहित सात पिटिशन रेस्पोंडेंट्स हैं जिनसे जवाब मांगा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने जो सवाल उठाए थे, उन्होंने ये कहा था कि जो मूल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है जिसके तहत ये सारी चीज़ें संचालित होती हैं, उसमें संशोधन करके सरकार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ऐसा कवच प्रदान किया है जो प्रधानमंत्री और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेज को भी नहीं है। रिटायरमेंट के बाद भी उनके खिलाफ आपराधिक मामलों पर उनके द्वारा किए गए अपने पद के समय किए गए फैसलों पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो ये कहा गया कि ये बहुत ऐसा सर्वशक्तिशाली देश में बना दिया गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो ये कतई उचित नहीं है। और इनके नियुक्ति को लेकर भी, निर्वाचन आयुक्तों के नियुक्ति को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में निर्णय दिया था वो बिल्कुल सही था और वो बैलेंसिंग था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री के साथ वो बैलेंसिंग पावर थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन भारत सरकार ने उस आदेश में बदलाव करके जो कानून में संशोधन किया है उसमें उन्होंने सीजेआई को बाहर कर दिया है और प्रधानमंत्री की ओर से नियुक्त एक मंत्री को उसमें जगह दी है चयन समिति में। ये कतई उचित नहीं है, ये शक्तियों का दुरुपयोग है। और जिस तरह से कानून कहता है कि यूनैनिमस यानी सर्वसम्मत फैसले लिए जाने चाहिए निर्वाचन आयोग में, लेकिन फिलहाल अभी के न्यूज़ रिपोर्ट्स में देखा गया है, जो न्यूज़ रिपोर्ट से खुलासा हुआ है उसमें ये बताया गया है कि मेजॉरिटी के बावजूद दोनों निर्वाचन आयुक्तों को की उपेक्षा की गई और ऐसे फैसले लिए गए जो सर्वसम्मत नहीं थे। इसलिए उन्होंने ये कहा कि वो कानून में बदलाव की मांग नहीं, वो ये कह रहे हैं कानून को चैलेंज नहीं कर रहे हैं जो सरकार ने बनाया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी चैलेंज है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ वो अभी हमारे पास विचाराधीन है, लेकिन कोर्ट ने उनकी जो मुख्य मांग थी कि फिलहाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने का आदेश कोर्ट दे, कोर्ट ने वो आदेश नहीं दिया है। कोर्ट ने फिलहाल नोटिस जारी किया है और जब नोटिस पर सभी पक्षकारों का जवाब आएगा उसके बाद कोर्ट आगे की दशा और दिशा तय करेगी।
0: जी बिल्कुल, इसमें अहम ये भी हो जाता है संजय कि अब जब इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग को ये जवाब देना पड़ेगा कि अब तक जो फैसले लिए गए वो क्या सर्वसम्मति से हुए या नहीं हुए, ऐसे में सार्वजनिक तौर पर अब ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी जब अदालत के सामने रखी जाएगी तो इसका एक्सेस सबको मिल जाएगा।
4: ऐसा नहीं है कि एक्सेस सबको मिल जाएगा, अदालत चाहे तो गोपनीय फाइलें मंगा सकती है, मंगाकर देखकर अपनी संतुष्टि कर सकती है। और अदालत को अगर लगता है कि गोपनीय फाइलों से भी ये खुलासा होता है जो मीडिया रिपोर्ट्स में आया है, तो फिर अदालत उस पर आदेश भी पारित कर सकती है। अदालत ने कहा कि एक बार अगर गलती खामी मिलती है तो अदालत किसी भी आदेश को पूर्णता के उसमें रद्द भी कर सकती है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक वाक्य है, बहुत सारी चीज़ें बताता है। बिटवीन द लाइन्स पढ़ें तो उसमें यह है कि अब तक के सारे फैसले भी पलटे जा सकते हैं। तो ये बहुत गूढ़ वाक्य है और इस ये निर्भर करेगा कि जब पक्षकार यानी जिनको नोटिस जारी नोटिस हुआ है वो अपने जवाब में क्या क्या चीज़ें कहते हैं। और मुमकिन है कि कोर्ट चाहे तो गोपनीय फाइलें मंगा सकती है, जैसे जस्टिस अरुण गोयल के, ये अरुण गोयल जब निर्वाचन आयुक्त थे तो उनकी नियुक्ति को जब चुनौती दी गई, जिस समय मुख्य न्यायाधीश महोदय को वहां से बाहर किया, उसके बाद उससे पहले जो नियुक्ति हुई वो गोपनीय फाइलें कोर्ट ने मंगाई थी उनकी नियुक्ति की। जब ये कहा गया कि एक रात में ही वो उनके रिटायर होने के बाद तुरंत तुरंत उनका नाम भी आया, उसी समय नाम फाइनल हो गया और दो दिन के अंदर उन्हें शपथ भी मतलब उनका ज्वाइनिंग भी करा दी गई, तो इस पर कोर्ट ने कहा था कि बिजली की तेजी से सरकार को चलने की जरूरत क्या थी, क्या आपके पास कोई प्रक्रिया है निर्वाचन आयुक्तों को तय करने के लिए, चुनने के लिए? सरकार ने कहा नहीं, हम तो पूल में से तय करते हैं। इस पर कोर्ट ने व्यवस्था दी कि एक व्यवस्था अंतरिम व्यवस्था होगी जब तक उस पर कानून नहीं बनता है, और कानून बना तो उसे फिर चैलेंज कर दिया गया, वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
0: जी, शुक्रिया संजय इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आपको लिए चलते हैं पटना। पटना में आज 11,000 सफल दरोगा अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अभ्यर्थी बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वही अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मुख्य लिखित परीक्षा पास कर फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा पास करने के बाद वे शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मुख्य परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले से पूरी भर्ती प्रक्रिया फिर से अटक गई है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने का फैसला वापस लेने और भर्ती प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
5: राजधानी पटना में आज एक बार फिर से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और आज दरअसल 1800 सीट के लिए जो दरोगा बहाली की परीक्षा पिछले दिनों हुई थी, और फिर परीक्षा में जो तकरीबन 11,000 अभ्यर्थी पास हुए थे, और उसके बाद जो लोग इस परीक्षा में पास नहीं हुए थे उन लोगों ने अनियमितता का आरोप लगाया था परीक्षा में, जिसके बाद सरकार ने पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी थी। और अब हम लोग देख सकते हैं कि आज वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया है वो आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। तकरीबन 11,000 ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या है जिन्होंने परीक्षा पास कर ली थी, और इनका फिजिकल टेस्ट जो है अब होना था, लेकिन क्योंकि पिछले दिनों पूरी की पूरी परीक्षा को ही रद्द कर दिया गया, इसलिए अब ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने मेहनत के दम पर, जिनका दावा है कि इन्होंने परीक्षा पास की थी, वो आज सड़कों पर उतरे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षा को रद्द किया गया है उसको सरकार वो फैसला वापस ले। और इसलिए आप देख सकते हैं पटना में यहाँ पर जेपी गोलंबर के पास यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी हाथों में तख्तियाँ लेकर पहुँचे हुए हैं और दरोगा मेंस कैंसिलेशन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पुलिस ने भी जो है वो ज़बरदस्त बंदोबस्त आज किया हुआ है। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार देखा जा रहा है कि छात्रों का प्रदर्शन रह रहकर राजधानी पटना में हो रहा है, और पुलिस को भी जो है काफ़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। और इसी कड़ी में आज तैयारियाँ ज़बरदस्त है पुलिस प्रशासन की तरफ से। हालाँकि फिलहाल अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर संख्या उन अभ्यर्थियों की बहुत ज़्यादा नहीं है जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया था, और लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि जिस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है उसको वो फैसला सरकार वापस ले। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।
0: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से पर। इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
9: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
2: अब मैं चैन की नींद सो पाता कपीवा डायबिटीज जूस।
4: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार गलती ठुमका लगाने पर
5: मेरे पास एक आइडिया।
4: क्या?
5: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
6: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
7: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
8: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
9: कौन सी बनानी है?
10: यार लोन भूल गया। मैरी
11: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना।
12: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
10: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
12: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
13: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
10: उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
14: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
15: गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
16: गड़बड़ है।
17: गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
18: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
19: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
4: EU सोच बदलो और बैंक भी।
5: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो ठुमका लगाने पर
6: मेरे पास एक आइडिया है।
5: क्या?
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
7: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
8: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
9: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
10: कौन सी बनानी है?

0: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: इन एसोसिएशन विद
3: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
4: क्या कहती है आपकी राशि, कैसा बीतेगा आपका दिन, किस दिन क्या करें क्या ना करें, क्या है आपके लिए शुभ रंग, कौन सा उपाय आपके दिन को बनाएगा बेहतर, देखिए राशि चक्र सिर्फ एस्ट्रो तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के निलंबन की मांग को किया खारिज, कहा न्यूज रिपोर्ट के आधार पर नहीं ले सकते यह फैसला। बिना सहमति के फॉर्म 6 में बदलाव की याचिका पर मांगा चुनाव आयोग से जवाब। चुनाव से पहले भगवंत मान सरकार को बड़ा झटका, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी सीएम ऑफिस से जुड़े करप्शन के आरोपों की जांच, ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली और घूसखोरी के लगे थे आरोप। महिला सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली में हुई घटनाओं पर मांगा पुलिस, गृह मंत्रालय और एमसीडी से जवाब, पूछा निर्भया फंड के इस्तेमाल की डिटेल बताएं, 4 हफ्ते में देनी होगी रिपोर्ट। सीईसी और एसआईआर के विरुद्ध कल होने वाले इंडिया अलायंस के सामूहिक हल्ला बोल से पहले आज कांग्रेस की बड़ी बैठक, प्रदेश अध्यक्षों के साथ मेगा प्लान पर चर्चा, 6 अक्टूबर को गठबंधन का मार्च। गोमती नदी के रौद्र रूप से लखनऊ के आसपास के इलाकों में हाहाकार, खतरे का निशान तोड़, रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, सीएम योगी करेंगे पूरे इलाके का हवाई सर्वेक्षण।

दुबई विमान में को पायलट वाली साजिश ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। कट्टरपंथी सोच रखने वाले को पायलट ने कैसे तबाही का मंसूबा पाला था, कैसे उसने 9/11 जैसी खौफनाक वारदात दोहराने की साजिश भी रची थी, कैसे वो अपने मंसूबों को अंजाम देने में जुटा था, तमाम सवालों के जवाब एक एक कर आते जा रहे हैं। सबसे नया खुलासा ये हुआ है कि वो विमान को हाईजैक कर क्रैश करना चाहता था। ये भी पता चला है कि आरोपी को पायलट को लेकर तीन देशों में लापरवाही बरती गई। अगर लापरवाही नहीं हुई होती तो 34,000 फीट ऊपर उड़ान के दौरान ये वारदात नहीं हुई रहती। इस मामले में एक तरफ हमलावर को पायलट की सच्चाई सामने आ रही है तो दूसरी ओर उस जाबाज भारतीय पायलट की दुनिया मुरीद हो गई है जिसने जख्मी होकर भी प्लेन को क्रैश होने से बचा लिया और 174 यात्रियों की जिंदगी बच गई। दिलेर पायलट स्मित मछार ने बताया कि कैसे नमाज पढ़ने के बहाने को पायलट ने कुल्हाड़ी से उन पर हमला किया। तो आरोपी को पायलट से यूएई में लगातार पूछताछ जारी है। इसी दौरान सामने आया कि को पायलट इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश करना चाहता था। रिपोर्ट के मुताबिक ओमान के को पायलट हमाम अल हमामी ने फ्लाई दुबई की फ्लाइट पर कब्जा करने की कोशिश की थी जिसे भारतीय पायलट स्मित मछा ने नाकाम कर दिया। रिपोर्ट ये भी है कि आरोपी को पायलट ने जुलाई में भी हमले की साजिश रची थी। कैसे विमान क्रैश करना चाहता था आरोपी को पायलट और क्या थी उसकी जुलाई वाली साजिश, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में।

0: 11 सितंबर 2001 की वो तारीख जब दुनिया कांप गई थी। ये अमेरिका पर आतंकी संगठन अलकायदा का सबसे बड़ा हमला था। न्यूयॉर्क के ट्विन टावर से विमान टकराए थे और सब कुछ तबाह हो गया था। कुछ ऐसा ही बड़ा धमाका करने के फिराक में था ओमान का वो कोपायलट जो 30 सितंबर को फ्लाइट दुबई की फ्लाइट में मौजूद था। उसके दिमाग में आतंकी साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार था। वो बेहद शातिर तरीके से सिस्टम का हिस्सा बनकर 9/11 की घटना को दोहराना चाहता था। उसकी साजिशों का कच्चा चिट्ठा धीरे धीरे सामने आ रहा है और अब तक जो खुलासे हुए हैं उसे सुनकर हर कोई सहम गया है। इस बार की साजिश अमेरिका के दोस्त इजराइल के खिलाफ हुई थी। 9/11 जैसी घटना को इजराइल में दोहराने की साजिश थी और उस साजिश को अंजाम देने के बेहद करीब था ओमानी कोपायलट हमामी। जानकारी आई है कि कोपायलट हमामी अपनी साजिशों को लेकर बेहद गंभीर था। उसी साजिश का हिस्सा था 30 सितंबर का फ्लाई दुबई वाला उसका वो सफर। पायलट की सीट संभाल रहे थे स्मित मच्छार जबकि कोपायलट की कुर्सी पर था ओमानी हमामी। यूएई में आरोपी हमामी से अलग अलग एजेंसियां पूछताछ कर रही है। उसी पूछताछ के दौरान 9/11 जैसी साजिश को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। को पायलट हमामी इसराइल को बड़ा सदमा देना चाहता था। इसके लिए उसने इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमले की साजिश रची थी। उस साजिश के तहत को पायलट सबसे पहले कॉकपिट कंट्रोल करना चाहता था ताकि हमले को आसानी से अंजाम दिया जा सके। अल हमामी लैंडिंग के वक्त हमला करना चाहता था। खुलासे के मुताबिक हमामी फ्लाई दुबई के उस विमान को बेन गुरियन एयरपोर्ट की किसी बिल्डिंग से या फिर किसी अन्य विमान से टकराना चाहता था। वो इस फिराक में था कि इजराइल में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचे।
1: योजना केवल कॉकपिट पर कब्जा करने की नहीं थी बल्कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि कैप्टन स्मित मच्छार पर हमला करने वाले ओमानी को पायलट की योजना विमान को इसराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर किसी इमारत से टकराने की भी थी। इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी और प्लान था कि विमान जैसे ही जॉर्डन की सीमा के अंदर दाखिल होगा उसके बाद कॉकपिट पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए और विमान को सामान्य तरीके से उड़ाया जाए और तब तक किसी को हवा न लगने दी जाए जब तक कि विमान बेन गुरियन हवाई अड्डे पर न पहुंच जाए और फिर अचानक इस तरीके से विमान को मोड़ा जाए कि वो टकरा जाए और सैकड़ों लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाएं।
0: ओमानी को पायलट की साजिश खौफनाक थी। इसके लिए उसने जो तैयारी की थी वो भी हैरान करने वाला है। इसका खुलासा इसराइल के मीडिया हाउस चैनल 12 और वाईनेट की रिपोर्ट में हुआ है। अपनी दहशतगर्दी वाली साजिश को अंजाम देने के लिए ही उसने 30 सितंबर को प्लेन को हाईजैक करना चाहा। उसके लिए आरोपी ने पायलट स्मित मच्छार पर कुल्हाड़ी से हमला किया। स्थिति ऐसी हो गई कि प्लेन महज 29 सेकंड में करीब 16,000 फीट नीचे गिर गया। उस वक्त विमान में 174 यात्री सवार थे। पल भर में कोई बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन दिलेर पायलट स्मित मच्छार के साहस और यात्रियों की सूझबूझ से 9/11 जैसी घटना टल गई।
2: Now you have the possibility of having another 9/11 and an Israeli passenger, a civilian. I met this guy. He's an incredible hero. Look at what he did under impossible circumstances. I spoke earlier today with President Trump, who really was appreciative of this, and he said, you know, when a plane is nosediving, the passengers, including 30 children, are already saying their prayers. They know they're gone from this world. And this young man just acts with incredible heroism and saves the day, along with the Indian pilot who was there and the others who came to help.
0: अब उस ओमानी को पायलट की एक और साजिश जान लीजिए। इजरायली मीडिया ने यह भी दावा किया है कि को पायलट ने इस साल जुलाई में भी हमले की तैयारी की थी। उसके लिए उसने कई बार बेन गुरियन एयरपोर्ट के दौरे किए। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उसका आखिरी दौरा जून महीने में था। उसके बाद हमामी ने हमले की फाइनल प्लानिंग की थी। जुलाई में वो हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था लेकिन आखिरी वक्त पर उसने प्लान बदल दिया क्योंकि वो क्रू के सदस्यों में से एक का दोस्त था।
1: कैप्टन स्मित मच्छार पर हमला करने वाले ओमानी पायलट हमाम अल हमामी ने इस हमले को अंजाम देने की योजना जुलाई 2026 में बनाई थी। कोशिश थी कि जुलाई में ही इस हमले को अंजाम भी दे दिया जाए लेकिन जिस फ्लाइट के सहारे इस हमले को अंजाम दिया जाना था उसके क्रू मेंबर में अल हमामी का एक दोस्त भी शामिल था और यही वजह थी कि इस प्लान को रद्द कर दिया गया। हालांकि इस दौरान अल हमामी ने उस पूरी यात्रा के दौरान कई बार बेन गुरियन हवाई अड्डे का सर्वे भी किया और कई जानकारियां जुटाई जिसका इस्तेमाल वो 30 सितंबर की फ्लाइट में करना चाह रहा था।
0: इस मामले में यूएई ओमानी को पायलट की जांच कर रहा है। इजरायली जांचकर्ताओं ने कथित तौर पर हमामी से सीधे पूछताछ नहीं की है। इजरायल के चैनल की माने तो आरोपी हमामी ने जांचकर्ताओं को बताया है कि उसे खास तौर पर तेल अवीव जाने वाली एयरलाइंस की तलाश थी और इसी वजह से फ्लाइट दुबई को चुना था। आज तक ब्यूरो।
3: ये भारतीय पायलट स्मिथ मचार की दिलेरी और जाबाजी थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। विमान के यात्रियों को बचाने के लिए उन्होंने क्रैश की साजिश रचने और उसे अंजाम देने की फिराक में लगे को पायलट को पस्त कर दिया, नहीं तो कोई भी बड़ी दुखदायी घटना हो सकती थी। अब उसी को पायलट की साजिशें सामने आई हैं, तो साथ ही साथ इस बात के भी संकेत मिले हैं कि उसे लेकर तीन तीन देशों ने लापरवाही बरती। देखिए आखिर कैसे और कहां हुई थी चूक।

0: आतंकी दिमाग वाले को पायलट की साजिशों के निशाने पर था ये एयरपोर्ट। इसराइल का यही वो बेन गुरियन एयरपोर्ट है जहां प्लेन क्रैश का संकट टलने के बाद उस विमान के सभी 174 इजरायली नागरिक अपने वतन लौटे थे। इसी बेन गुरियन एयरपोर्ट से आरोपी विमान को क्रैश कराना चाहता था। आखिर उसने इसी एयरपोर्ट को क्यों चुना? इस साजिश से पर्दा नहीं हटा है। लेकिन आपको बता दें कि बेन गुरियन एयरपोर्ट इसराइल का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। इसे इसराइल का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार भी माना जाता है। इसकी पहचान दुनिया के सबसे सुरक्षित हवाई अड्डे के रूप में भी है। लेकिन इसराइल की अभेद्य सुरक्षा को भी को पायलट भेदना चाहता था। वो बेन गुरियन एयरपोर्ट से विमान को टकराना चाहता था। अब उसकी नापाक साजिशों के खुलासे के बाद कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उसकी जांच को लेकर है, सवाल उसके इसराइल तक पहुंचने पर है। अब तक की जांच में जो खुलासे हुए हैं उसके आधार पर उठे तमाम सवालों के पीछे वजह के रूप में कई चूक सामने आई है। पहली चूक ओमान से हुई। को पायलट अल हमामी ओमानी नागरिक था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खुलासा हुआ है कि ओमान ने हमामी की ऑनलाइन गतिविधियों की जांच की थी। इस दौरान पाया था कि वो कट्टरपंथी विचारधारा में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था, इसलिए उसे ओमान एयर के अधिकारियों ने उसे उड़ान भरने से रोक दिया। साथ ही उसे डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम में भेज दिया और डेस्क जॉब पर लगा दिया। लेकिन बताया जाता है कि ओमान ने इस मामले को बड़े स्तर पर हाईलाइट नहीं किया। ये ओमान की तरफ से चूक थी। अब बात दूसरी चूक की। इस बार चूक यूएई की तरफ से हुई। जब फ्लाई दुबई ने फरवरी 2026 में हमामी को नौकरी पर रखा तो एयरलाइंस ने को पायलट के बैकग्राउंड की जांच के लिए ओमान से संपर्क ही नहीं किया। बाद में हमामी को दुबई तेल अवीव रूट पर तैनात कर दिया गया।
1: और अब सीधा रुख करते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां संबित पात्रा इस वक्त बोल रहे हैं।
2: किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाया जाए, किस प्रकार से बिजनेस इंटरेस्ट के बीच में इंटरमीडिएरी का काम करते हैं, बिचौलिए का काम करते हैं, इन सब विषय को लेकर निखिल शराफ जी जो एक एडवोकेट है उन्होंने पीआईएल दाखिल किया था पंजाब के उच्च न्यायालय में और आज न्यायालय ने सीबीआई जांच के लिए कहा है। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को और भगवंत मान जी को इस पर सफाई देनी चाहिए कि आखिर कितना का घोटाला हुआ है और उनके खुद के सचिव इसमें कितने लिप्त हैं और खुद के सचिव अर्थात वो खुद किस प्रकार के भ्रष्टाचार और किस प्रकार के घोटाले कर रहे हैं। जहां तक कानून व्यवस्था का विषय है, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है पंजाब में किस प्रकार की कानून व्यवस्था है यह हमें पता है। मैं बहुत एलेबोरेटिव वे में नहीं जाता हूं, मगर विगत 48 आवर्स के अंदर पंजाब में किस प्रकार की कानून व्यवस्था रही है, चार चार मर्डर केवल 48 आवर्स में हुए हैं, उसका मैं उल्लेख करता हूं। आपको पता है कल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो पंजाब में काफी जाने माने थे और एक मेकअप आर्टिस्ट, वही मेकअप आर्टिस्ट थे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थे, जिनका नाम मैड संधू था,

0: जाने माने व्यक्ति की हत्या हुई। तीन मर्डर हुए 48 आवर्स के अंदर पंजाब के लुधियाना में, जिसमें एक पूर्व सरपंच की हत्या भी शामिल थी। नवतेज सिंह ये सरपंच थे मालेवाल गांव के, और शनिवार के दिन शाम को उनकी हत्या की गई। दूसरी हत्या 29 साल के लाड्डी खान का था, जो मुलानपुर ढाका गांव के थे, उनकी भी गोली मार के हत्या की गई। और ठीक उसी प्रकार तीसरी हत्या, तीसरा मर्डर जो था, वो सहनेवाल में 35 वर्षीय दिनेश कुमार, जो अनंत विहार कॉलोनी लुधियाना के थे, उनको चाकू से घोप करके उनकी हत्या की गई। तो कुल मिलाकर के 48 आवर्स के अंदर पंजाब में चार हत्याएं हुई हैं। अगर बीजेपी शासित किसी राज्य में इस प्रकार की परिस्थिति होती तो अरविंद केजरीवाल जी अभी रैली कर रहे होते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते, सरकार की बर्खास्तगी की मांग कर रहे होते। तो स्वाभाविक रूप से अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जब पुलिस की खुद की हत्या हो रही है, जब पुलिस के कांस्टेबल, पुलिस के अधिकारी खुद मारे जा रहे हैं, किस प्रकार से पंजाब की सरकार एक कॉमन मैन और एक आम आदमी की रक्षा कर सकती है, वो अभी सोचने का विषय है। 22 फरवरी 2026 को आंधिया पुलिस चौकी जिला गुरदासपुर में एएसआई गुरनाम सिंह मृत्यु को प्राप्त हुए। ड्यूटी के दौरान नजदीक से हमलावरों ने गोली चलाई और वो शहीद हुए। 22 फरवरी 2026 को उसी दिन होमगार्ड अशोक कुमार जी को भी मार गिराया गया। 24 मई 2026 को हमजा गांव फतेहगढ़ चूड़िया मजीठा रोड जिला अमृतसर में एएसआई जोगा सिंह, उनको ड्यूटी के दौरान स्कूटी पर से अटैक करके उनको भी मार गिराया गया। 18 सितंबर 2026 एआई हरजीत सिंह की हत्या हुई। 23 सितंबर 2026 को एएसआई जसवंत सिंह, उनको हत्या करने की कोशिश की गई मगर वो बाल बाल बच गए। और 4 अक्टूबर 2026 को एएसआई सुखचैन जी पर भी गोली चलाई गई मगर वो बच गए। तो आप सोच के देखिए, 48 आवर्स में चार हत्याएं और कल एक पुलिस वाले के ऊपर भी गोली चलाने का वारदात, और कितने ही पुलिस कर्मियों को मैंने गिनाया जिनकी हत्या हुई है, उसके साथ कितने पुलिस स्टेशन पे गोली चली है उसका भी आंकड़ा है। बट मुझे लगता है कि यह जो सारा विषय हाईकोर्ट में करप्शन का केस और बिगड़ता हुआ कानूनी व्यवस्था पंजाब का, इस पर आम आदमी पार्टी को जवाब देना चाहिए। जनता तो चुनाव के समय जवाब देगी ही। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे।
1: पिछले एक सप्ताह से पूरे देश में चुनाव
2: चला। अब फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू,
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: हम लोग चाहते हैं कि ये गठबंधन में रहें और अपनी हैसियत के हिसाब से टिकट मांगे कि कितने सीटें उनकी अपनी सांसद और विधायक हैं उनकी संख्या को देखते हुए, या कितने उनके कार्यकर्ता हैं उनको देखते हुए सीट मांगे, तो मैं समझता हूं कि उनके लिए भी अच्छा रहेगा और गठबंधन के लिए भी अच्छा।
8: सर वो तो ये कह रहे हैं कि हम 150 से कम पे तो मानेंगे ही नहीं।
7: मैं ये कहता हूँ उनको 50 सीट देना भी बहुत बड़ी बात होगी, उनको देखना चाहिए। दो तुम्हारे विधायक हैं, पिछली बार तुमने लड़के देख लिए, क्या इससे तुम्हें सबक नहीं मिलता है? अगर हमारे साथ गठबंधन न होता तो उनके

0: जो 6 सांसद जीते हैं एको न जीते।
1: मेरा मानना है कि जब अलायंस से चुनाव लड़ना है तो एक दूसरे पर इस तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी तो नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, तो वो अमेठी में क्या डरेंगे। अगर इस देश के अंदर सबसे ज्यादा लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी लड़ रहे हैं।

0: एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों के बीच सीईसी ज्ञानेश कुमार पर संग्राम बढ़ता जा रहा है। मांग इस्तीफे की हो रही है, शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा तेज होता जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार जंग छिड़ी है। मुंबई में भी विरोध की आग भड़क रही है। इस बीच सीईसी के बहाने केंद्र सरकार पर सियासी हमले भी तेज होते जा रहे हैं। अब विवाद के बीच बड़ा हमला हुआ है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो हाल के सालों में हुए सभी चुनाव को गैर कानूनी बता रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
1: देश जो चल रहा है वो इलीगल इलेक्शन पे चल रहा है। मोदी इलीगल प्राइम मिनिस्टर, शाह इलीगल मिनिस्टर, और जितने भी अब चीफ मिनिस्टर्स बने कहां के भी, वो सब इलीगल। सबको डिसॉल्व करना, इलेक्शन कराना और बैलेट पे इलेक्शन कराना, क्योंकि ईवीएम का मिसयूज हो रहा है, ये खुद ही उनके लोग कर रहे हैं।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेताओं के हमले तेज हैं। तमाम संगठनों ने भी सड़क पर मोर्चा खोल रखा है। इस बीच सरकार और विपक्ष में वार पलटवार का दौर चल रहा है। विपक्ष सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। चर्चा ये भी है कि विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर भी विचार कर रहा है। इस सब के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

किया खारिज, कहा न्यूज रिपोर्ट के आधार पर नहीं ले सकते फैसला, बिना सहमति के फॉर्म 6 के बदलाव की याचिका पर मांगा चुनाव आयोग से जवाब। चुनाव से पहले मान सरकार को बड़ा झटका, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी सीएम ऑफिस से जुड़े करप्शन के आरोपों की जांच, बीजेपी बोली ट्रांसफर पोस्टिंग में घुसखोरी पर सफाई दे मान और केजरीवाल। महिला सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली में हुई घटनाओं पर मांगा पुलिस, गृह मंत्रालय और एमसीडी से जवाब, पूछा निर्भया कांड के इस निर्भया फंड के इस्तेमाल पर बताएं डिटेल, 4 हफ्तों में देनी होगी रिपोर्ट। जीसी और एसआईआर के विरोध में कल होने वाले इंडिया अलायंस के सामूहिक हल्ला बोल से पहले आज कांग्रेस की बड़ी बैठक, प्रदेश अध्यक्षों के साथ मेगा प्लान पर होगी चर्चा, 6 अक्टूबर को गठबंधन का है मार्च। गोमती नदी के रौद्र रूप से लखनऊ के आसपास के इलाकों में हाहाकार, खतरे के निशान तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, सीएम योगी करेंगे पूरे इलाके का हवाई सर्वेक्षण।

0: लाइव में तमाम दोपहर तक की बड़ी खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन तीन मुख्य खबरें जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे वो आपको सबसे पहले बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीसी ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है, कल उसको लेकर एक बड़ा मार्च निकाला जाएगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के पदाधिकारियों, कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्षों और कई पदाधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक आज कांग्रेस की हो रही है। इसके अलावा हम दूसरी खबर का भी जिक्र करेंगे जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर है। दरअसल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में अभी सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है और एक दूसरे पर बयानों की बौछार भी की जा रही है। तीसरी बड़ी खबर पंजाब को लेकर है। पंजाब के अंदर आपको बताएंगे कि भगवंत मान सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक बार फिर करप्शन के चार्जेस को लेकर हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया, यानी भगवंत मान सरकार की अब मुश्किलें बढ़ती जा रही है। तीन बड़ी खबरों पर हम जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सीसी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी उसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ किया गया है कि मीडिया रिपोर्ट के हवाले से वो आदेश नहीं दे सकते हैं। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं कि सीसी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सीसी ज्ञानेश कुमार के निलंबन की मांग को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि वो न्यूज रिपोर्ट के आधार पर आदेश नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने इस मामले में चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया है। दरअसल ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एसआईआर को लेकर फैसले को लेकर दाखिल की गई थी याचिका, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एसआईआर से जुड़े करीब 14 फैसलों को दो अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना ही पास कर दिया गया।
1: सर, हमें बताइए कि आज आपकी प्रेयर क्या थी कोर्ट में?
2: हमारी मुख्य प्रेयर थी, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जो डिसीजन लिए थे वो डिसीजन बहुमत से नहीं थे, इसलिए वो कहीं भी लॉ की एम्बिट में फिट नहीं बैठते हैं, इसलिए उनके द्वारा लिए गए सारे डिसीजन को एब इनिशियो वॉइड डिक्लेयर किया जाए। ये मेरी पहली प्रेयर थी। दूसरी हमारी प्रेयर ये थी कि 16 लाख अपील्स जो पेंडिंग हैं उनके लिए दो चुनाव आयुक्तों ने अपना कंसेंट नहीं दिया था, इसलिए डिसीजन उनकी तरफ से नहीं था, मतलब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं था। वो फाइल कैसे हुआ, किसके बिहाफ पर हुआ, इन सब की जांच करके जो लाइबल हैं उनकी क्रिमिनल लाइबिलिटी फिक्स की जाए। और मेरी और महत्वपूर्ण डिमांड ये थी कि अगर कानून के एम्बिट में जाकर कोई बाहर काम किया है तो उनको किसी भी लॉ की इम्यूनिटी नहीं मिलनी चाहिए। स्पेशली मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, डिप्टी चुनाव आयुक्त सीमा खन्ना, डिप्टी चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग, इन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया जाए।
0: और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। संजय, देखिए एक बात बताइए, भले ही ज्ञानेश कुमार को लेकर एक बड़ी खबर हो, एक उनके लिए रिलीफ हो, लेकिन कोर्ट ने अभी चुनाव आयोग से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ये जवाब मांगा गया है।
3: जी हाँ, बिल्कुल, निर्वाचन आयोग से मुख्य निर्वाचन आयुक्त और केंद्र सरकार सहित 7 पक्षकार बनाए गए हैं इन याचिकाओं में, जिनसे कोर्ट ने जवाब मांगा है। और साथ ही जो बहस हुई वो कई सारी चीज़ों को, एक तो इम्यूनिटी को लेकर बहस हुई। सीनियर एडवोकेट विकास सिंह, जिन्होंने याचिकाकर्ता राकेश सिंह की तरफ से पैरवी करते हुए ये कहा कि उनको ऐसी इम्यूनिटी सरकार ने दे दी है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी ऐसी इम्यूनिटी नहीं है, ऐसी छूट मिली है कि पद पर रहते हुए जो भी फैसले करेंगे उनके प्रति अगर उसमें कुछ गलत पाया जाएगा तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। और ये कहा गया कि वो कानून में बदलाव को लेकर, जो उनकी नियुक्ति का कानून है उसके बदलाव को लेकर फिलहाल उनकी याचिका नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो याचिका तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जब तक इस पर कोर्ट कोई निर्णय दे तब तक अंतरिम तौर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सस्पेंड रखा जाए, निलंबित किया जाए। कोर्ट ने हालांकि ये कहा कि वो इतना बड़ा फैसला सिर्फ मीडिया रिपोर्ट के आधार पर नहीं ले सकता है, लिहाजा उन्होंने नोटिस किया है कि नोटिस का जवाब आने पर देखते हैं कि जवाब कैसा है और उस पर क्या किया जा सकता है। तो ये अब आगे जवाब आएगा, जवाब के बाद फिर तय होगा कि कोर्ट में इस मामले की दिशा क्या होती है और दशा क्या होती
0: है। बिल्कुल, यानी अभी आप टेम्प्रेरी तौर पर इसको रिलीफ के तौर पर देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े के। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कानूनी तौर पर रिलीफ मिला हो, लेकिन अब भी राजनीतिक तौर पर ज्ञानेश कुमार के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस या फिर आप कह सकते हैं विपक्षी दल मोर्चेबंदी लगातार तैयार कर रहे हैं। कल इसको लेकर एक इंडिया अलायंस का एक मार्च भी होना है जो संसद से लेकर चुनाव आयोग तक जाएगा। खास बात यह कि इससे पहले कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी मीटिंगों का की गई है, जिसमें अपने सभी पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की एक मीटिंग की गई है, और इसको लेकर माना जा रहा है कि रणनीति तय की जाएगी कि कैसे इस पूरे मुद्दे पर चुनाव आयोग के साथ साथ सीसी को घेरा जाए और सरकार पर भी सवाल खड़े किए जाए। और देखिए, इन तमाम चीजों के बीच में एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीसी का इस्तीफा मांगा। उन्होंने तीन मांगे आज मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर रखी। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ इस्तीफा दे, बल्कि उन्होंने कहा कि दूसरी एसआईआर, खासतौर पर जो दूसरी मांग उनकी थी वो था कि एसआईआर को रद्द करना होगा, और तीसरा उन्होंने ये मांग रखी कि बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना होगा। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया जिसमें उन्होंने देशभर में कांग्रेस कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के साथ ही इन तीन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे, ये भी कहा, जो कि सिविल सोसाइटी के सदस्य, युवा संगठन और इन मुद्दों को देश में जगह जगह पहुंचाएं और इस पर संघर्ष जारी रखें। और देखिए, ये कहा जा रहा है कि कल जब मार्च होगा उससे पहले भी लगातार कांग्रेस की तरफ से और कई विपक्षी दलों की तरफ से ज्ञानेश कुमार को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया गया। किस तरीके से उन्हें उनकी मोर्चाबंदी या फिर एकजुट हो रहा है विपक्ष, इसको लेकर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं।
4: हिटलर कोणालाही घाबरत नव्हता, पण हिटलर वरती अशी वेळ आली की त्याला स्वतः स्वतःवरती गोळी झाडून आत्महत्या करावी।
5: चल रहा है वो इलीगल इलेक्शन पे चल रहा है।
6: मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष पूरी ताकत से हल्ला बोल रहा है। कांग्रेस इस मुहिम में आगे दिख रही है। आज जंतर मंतर पर एनएसयूआई की मोर्चाबंदी है। हर रोज कांग्रेस इस मुद्दे पर कोई न कोई कार्यक्रम कर रही है।
7: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों में लगातार धरना प्रदर्शन जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में हो रहे हैं, और आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया है कि वो लगभग 12 बजे के आसपास अपने मुख्यालय पर पहुंचकर धरना देंगे और मांग करेंगे कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो। उनके धरने से पहले यहां पर दिल्ली पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये एनएसयूआई का दफ्तर है। फिलहाल जो कार्यकर्ता है वो ज्यादा संख्या में यहाँ नहीं पहुंचे, लेकिन 12 बजे के आसपास यहाँ पर बहुत भीड़ देखने को मिल सकती है, और उनके आने से पहले दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है। आप देख सकते हैं कैसे दिल्ली पुलिस के जवान, पार्लियामेंट्री के जो जवान हैं, उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है।
6: कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी में है। इसी सिलसिले में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में AICC के प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है। मकसद ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की रणनीति को धारदार बनाने की है।
7: जब भी एनएसयूआई प्रदर्शन का कॉल देता है तो उनके दफ्तर से जंतर मंतर की तरफ जो कार्यकर्ता हैं वो मार्च करते हैं। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है, बल्कि जो बैरिकेड्स हैं वो भी यहाँ पर भारी संख्या में लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न ना हो। ये हाईली सिक्योर्ड एरिया है, हाईली सेंसिटिव एरिया है, और एनएसयूआई के दफ्तर से जंतर मंतर की दूरी महज 1 से 1.5 किलोमीटर की होती है। और फिलहाल एनएसयूआई ने मार्च का आह्वान किया है। एक तरफ जहां कार्यकर्ता एनएसयूआई के दफ्तर पहुंचने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस के जवान भी मुस्तैद हैं।
6: कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग पर लगातार हमले भी हो रहे हैं। खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा हमला किया है जिस पर बवाल मचा है।
5: अब पूरा आज देश जो चल रहा है वो इलीगल इलेक्शन पे चल रहा है। मोदी इलीगल प्राइम मिनिस्टर, शाह इलीगल मिनिस्टर, और जितने भी अब चीफ मिनिस्टर्स बने कहां के भी, वो सब इलीगल। सबको डिसॉल्व करना, इलेक्शन कराना और बैलेट पे इलेक्शन कराना, क्योंकि ईवीएम का मिसयूज हो रहा है।
6: खड़गे के इस हमले का केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब दिया। रिजिजू ने खड़गे के हमले के जवाब में पूछा, क्या आप अवैध सांसद हैं खड़गे जी?
8: क्या राहुल गांधी जी अवैध सांसद हैं? क्या तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड के मुख्यमंत्री अवैध हैं? भारत के संविधान का अपमान करना बंद करें। विपक्ष और सरकार के बीच वार और पलटवार का ये खेल अभी आगे भी जारी रहने वाला है, क्योंकि आगे इंडिया गठबंधन का चुनाव आयोग पर मार्च होने वाला है। प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर प्रदर्शन होना है और दिल्ली समेत कई राज्यों में रैलियां होने वाली हैं। आज तक ब्यूरो।
0: और हमारे साथ हमारी सहयोगी मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़े। मौसमी, देखिए लगातार हम मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे, वो ना सिर्फ ज्ञानेश कुमार के मुद्दे को उठा रहे थे बल्कि सरकार को घेर रहे थे, यानी मुद्दा भले ही ज्ञानेश कुमार हो लेकिन टारगेट सीधे तौर पर सरकार ही है।
9: देखिए बहुत बड़ी बात है कि अगर जो नेता विपक्ष है राज्यसभा के, वो ये मांग कर रहे हैं कि पूरी सरकार ही भंग कर देनी चाहिए, चुनाव फिर से होना चाहिए और बैलेट पर चुनाव होना चाहिए, तो एक तरीके से ज्ञानेश कुमार से अब बात बहुत आगे बढ़ गई है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने के तर्कश से जो निकला हुआ तीर है उसी को दोहराते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं। और एक तरीके से जो इंडिया ब्लॉक का कल धरना होना है, बताया जा रहा है संसद से चुनाव आयोग तक घेराव करना है चुनाव आयोग को, तो देखना होगा कि किस तरीके से ये पूरा क्लाइमैक्स करता है, क्योंकि बात यही नहीं रुकेगी। अक्टूबर 8 को राज्य इकाइये जो है इंडिया ब्लॉक की अलग अलग जगह धरना प्रदर्शन करेंगी और लगातार इसको लेकर लोकतंत्र खतरे में है, इसको लेके विपक्ष लामबंद नजर आ रहा है।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौसमी सिंह, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन अब बात करते हैं पंजाब की सियासत को लेकर भी। दरअसल पंजाब की सियासत में एक नया भूचाल पैदा हो गया। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार में खासकर मुख्यमंत्री की ओएसडी पर करप्शन के चार्जेस को लेकर जो जांच थी वो सीबीआई को सौंप दी है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया और आपको बता दें कि ओएसडी पर ना सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग बल्कि सीएलयू चेंज कराने को लेकर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसकी मांग एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी और हाईकोर्ट ने उसको फैसला सुनाते हुए इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। और अब इसके बाद लगातार भगवत मान सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है।
10: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है कि जो एलिगेशन ईडी ने लगाए थे, कहा था अभी करप्शन जो है वो चल रही है ट्रांसफर पोस्टिंग में, डीजीपी को 3 पत्र भी लिखे थे लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ था, उसमें हाईकोर्ट ने आज सीबीआई प्रोब जो है ऑर्डर कर दी है। हमारे साथ हैं ईडी के सीनियर एडवोकेट धीरज जैन। जैन साहब, आज कोर्ट में क्या प्रोनाउंसमेंट किया है एग्जैक्टली, पहले वो बता दीजिए।
11: कोर्ट ने जी निखिल सराफ जी द्वारा फाइल की गई पीआईएल में आज अपना फैसला सुनाया, तो कोर्ट ने मुख्यतः 3 बिंदुओं पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने पहले कहा कि जो ये बहुत गंभीर मामला है और इसमें इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो पंजाब पुलिस ने जिस तरीके से इस सारे मामले को हैंडल किया है तो वो संतोषजनक नहीं है, इस कारण हाईकोर्ट ने ये सारा मामला अब सीबीआई के हवाले कर दिया है। सीबीआई को हिदायत दी है कि वो इस केस में एफआईआर लॉन्च करे और जो उन्होंने टाइम फ्रेम दिया है उसके बीच में अपनी इन्वेस्टिगेशन की स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें। कोर्ट ने पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार को भी हिदायत दी है कि आप जो भी इसके रिलेटेड कागजात हैं सब सीबीआई को दे दीजिए और कोई भी और भी जो भी असिस्टेंस सीबीआई को चाहिए वो असिस्टेंस दीजिए उन्हें।
0: और देखिए पूरा मामला हम आपको बता दें कि आखिरकार ये मामला क्या है। दरअसल ईडी ने 3 पत्र लगातार डीजीपी को लिखे थे जिसमें उन पत्रों के अंदर जिक्र किया गया था कि करप्शन हुआ है खासतौर पर ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ साथ सीएलयू चेंज कराने को लेकर, और इसमें ना सिर्फ कई प्राइवेट लोगों के नाम शामिल थे बल्कि जो सीएमओ के ऑफिस के अंदर मौजूद उनके ओएसडी और कई उनके अधिकारियों के नाम भी इसमें शामिल किए गए थे। आपको बता दें कि ये पूरा मामला क्या है, आपको बताएं कि सीएम दफ्तर में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ भ्रष्टाचार के ये आरोप लगाए गए थे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी असीम बस्सी भी हमारे साथ जुड़े। असीम, देखिए इसमें सिर्फ ओएसडी का नाम नहीं है, कहा जा रहा है कि सीएमओ ऑफिस से कई और लोग थे जिनका इन्वॉल्वमेंट था जो ईडी के पत्र में, क्या कुछ और नाम भी इसमें शामिल हुए हैं, क्या कुछ और नाम भी इसमें उजागर हो पाए?
10: देखिए प्रमुख नाम जो है वो चीफ मिनिस्टर के ओएसडी जो राजवीर घुमन है उनका नाम है जो ईडी ने लिखा था। इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, नितिन गोहाल है, बी दुविंदर है, जो अलग नाम है वो प्राइवेट है। हालांकि कुछ अफसरों के नाम भी अंडर स्कैनर हैं, लेकिन प्रमुख तौर से जो नाम पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के ओएसडी राजवीर घुमन का आया था और ये कहा गया था कि राजवीर घुमन और कुछ प्राइवेट लोग जो मिलकर वो ट्रांसफर पोस्टिंग, सीएलयू और आर्म्स लाइसेंस और पॉलिसी डिसीजन इनको इन्फ्लुएंस करते हैं और इसमें पैसे का लेन देन भी होता है। सो इसको लेकर जब ईडी के पास कुछ चीजें आई तो ईडी ने तीन चिट्ठियां लिखी, एक चिट्ठी लिखी, दो रिमाइंडर लिखे डीजीपी पंजाब गौरव यादव को कि इसमें केस रजिस्टर कीजिए, ये करप्शन हो रहा है यहाँ पर, एलिगेशन है। लेकिन पंजाब पुलिस ने कुछ नहीं किया। उसके बाद एडवोकेट निखिल सराफ जो है वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पीआईएल डालते हैं और लंबी सुनवाई के बाद आज जो है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच जो है वो ऑर्डर की है। हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही है, आम आदमी पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं बलतेज सिंह, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो है वो नहीं चाहती कि पंजाब के लोगों को वेलफेयर स्कीम्स मिले, इसलिए हमारे चीफ मिनिस्टर भगवंत मान की टीम को टारगेट किया जा रहा है, ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। लेकिन ये जो ऑर्डर आया है ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से आया है, ना कि किसी पॉलिटिकल ओपोनेंट की तरफ से आया है।
0: असीम आपका रुख करेंगे हमारे साथ, असीम आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, माफ कीजिएगा, लेकिन हमारे साथ प्रताप सिंह बाजवा जो कांग्रेस के नेता है वो हमारे साथ जुड़ गए। प्रताप सिंह बाजवा साहब, एक बात बताइए, लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये सवाल पहले भी भगवंत मान सरकार पे खड़े होते रहे, लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया है, किस तरीके से ये दिक्कत है मान सरकार की बढ़ने वाली है?
12: ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं था, ये जो सीएमओ में करप्शन का मुद्दा है जी। सबसे बड़ा ये है कि हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो तो कहते हैं मैं सबसे ऑनेस्ट आदमी हूँ, ऑनेस्ट पॉलिटिशियन हूँ, सारे पंजाब में उनकी बहुत बड़ी बड़ी लगी हुई हैं, बिल बोर्ड्स पर मशहूरियां लगी हुई हैं, मगर आज के फैसले ने ये स्वीकार करवा दी है कि इनका तो कंट्रोल ही कोई नहीं, एंड डायरेक्टली द सीएम एंड द सीएमओ इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन मेजर इश्यूज ऑफ करप्शन
0: जी,
12: जो इश्यूज ऑफ जो है ये सारे करप्शन के इश्यूज इनके पर्सनल जो स्टाफ है उन पर लगे हुए हैं, ट्रांसफर्स के इश्यूज हैं, कैश लिया हुआ है, ये प्रॉपर्टीज के इश्यूज हैं, तो लॉट ऑफ मनी हैज चेंज्ड हैंड्स एंड आई फील दिस इज अ ग्रेट कंडेमनेशन ऑफ दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड द चीफ मिनिस्टर मस्ट स्टेप डाउन, इट इज हाई टाइम ही स्टेप डाउन ऑन दिस इश्यू।
0: बिल्कुल सर, इसको लेकर क्योंकि आप नेता विपक्ष भी है विधानसभा में, इसको लेकर विपक्ष का क्या मुहिम रहेगी या विपक्ष इस मुद्दे को कैसे उठाने की कोशिश करेगा?
12: देखो हम तो ऑलरेडी, आप देखिए जितनी ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो तो ऑलरेडी इस इश्यू को बड़े पैमाने पर उठा रहे हैं
0: जी,
12: ये तो मजदूरियों की सरकार है इसलिए इनका पर्दाफाश हो चुका है, और हाईकोर्ट ने ये बात सीबीआई को कही है कि आप रजिस्टर कीजिए, पहले एफआईआर रजिस्टर करवाइए और दो महीने में इसकी सारी जो एक्शन है वो ले लीजिए। तो मेरा ख्याल दो महीने तक तो एक एक पाए जो इन्होंने ली है, लैंड के बहुत बड़े स्कैम्स हुए हैं, माइनिंग स्कैम्स हैं, गैंगस्टर्स, ये जो गवर्नमेंट है जो फरौतियों का सबसे ज्यादा दौर है वो यही गवर्नमेंट चलवा रही है जी, एंड मोस्ट ऑफ दीज गैंगस्टर्स आर हैविंग कंप्लीट रन इन द स्टेट बिकॉज ऑफ डायरेक्ट ब्लेसिंग्स ऑफ द सीएमओ
0: जी।
12: ये जिस सीएमओ का आज नाम आया इसमें तो ये पंजाब के जितने फरौतियों को केस है ज्यादा इसी की देखरेख में होता था सारा काम।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह बाजवा, हमारे साथ जो नेता विपक्ष से विधानसभा के वो हमारे साथ जुड़े थे पंजाब से, और खास तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि पूरा का पूरा एक सिंडिकेट काम कर रहा था। अब चलिए आपको बताते हैं कि बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर आक्रामक हो गई, संबित पात्रा जो कह सकते हैं स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, उनकी तरफ से भी ये आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पर आरोप लगाए कि वो बिचौलिए की तरह काम कर रही है।
13: जो पंजाब में आज सरकार में है उनको लेकर कोर्ट में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने उसमें दो जजेस के खंडपीठ ने जस्टिस चीफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा एंड जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने एक पीआईएल पे ये निर्णय दिया है कि भगवंत मान जी के जो ओएसडी हैं और उनके जो करीबी लोग हैं भ्रष्टाचार का आरोप जो ईडी के कारण उन पर लगा है उस विषय पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच करे कि भगवंत मान जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और अरविंद केजरीवाल जी के खास हैं, उनके ओएसडी और भगवंत मान जी के खास लोगों द्वारा जिस प्रकार का घोटाला किया जा रहा था आज पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने उस पर सीबीआई जांच को प्रोसीड करने के लिए कहा है, और यह भी कहा है कि दो महीनों के अंदर लगभग 60 दिनों में सीबीआई इसे कंप्लीट करे और इसका रिपोर्ट सबमिट करे।
0: और देखिए हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद से लगातार जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं वो मान सरकार पर आक्रामक हो गई। इसी तरीके की प्रतिक्रिया और आइए आपको सुनाते हैं।
14: FIR OSD घुमन के खिलाफ और आहिस्ता आहिस्ता ये सब पकड़े जाएंगे तो इनका जो ईमानदारी का ढोंग था वो खत्म हो चुका है और सिर्फ बोर्ड लगाते रहेंगे क्योंकि पंजाब के लोगों को पता लग चुका है कि आम आदमी पार्टी और इनके लीडर जो हैं वो बहुत बहुत करप्ट हैं।
15: आप पर भी मामला दर्ज कर लिया गया है, कहते हैं कि सोशल मीडिया पर आप नेता के बारे में आपने जो पोस्ट
14: गाली गलौज की गायत्री बिश्नोई ने, मेरे को कुत्ता साला बोला एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को और हमारे पंजाब के मंत्रियों के घरों के ऊपर उसने अपना कब्जा कबूला हेल्थ मिनिस्टर के घर के ऊपर, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय ADGP साइबर क्राइम ने एक चिट्ठी लिखी है सोशल मीडिया हैंडल्स को, जैसे एक्स है और फेसबुक, और मेरी वीडियोस रिमूव करवाई हैं और एक FIR दर्ज करके उसका हवाला दे रहे हैं कि इन्होंने हम एक औरत की हरासमेंट की है। देखिए आप कितनी हनेरगर्दी है पंजाब में, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो लोग पंजाब के हित की बात करते हैं, जो लोग इनके जो सरकारी 12 मकानों के ऊपर मिनिस्टर हाउसेस के ऊपर कब्जा कर रखा था गायत्री बिश्नोई जैसो ने, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन खेरा के खिलाफ एक और मामला दर्ज कर दिया। लेकिन इस तरह के मामलों से ना तो हम पहले डरे हैं और ना आगे डरेंगे।
0: और विपक्ष के इन हमलों के बाद और लगातार हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार की तरफ से भी पहली प्रतिक्रिया आई है। दरअसल कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह ने भी सरकार को इस फैसले को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
16: देखो जो भी मानयोग अदालत का हुक्म है वो देते, जो साढ़े को लीगल रेमडीज है वो सारी पंजाब सरकार जी है वो लीगल प्रोसेस जी लीगल टीम है मुख्यमंत्री साहब वो फैसला करेंगे, वो जो भी असं लीगल कार्रवाई होगी जो करेगा ठीक है जी। जो
0: और अब बात करते हैं अगली खबर की जो यूपी की सियासत से जुड़ी हुई है। दरअसल अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में खींचतान जारी है, बयानबाजी की जा रही है। दरअसल कांग्रेस जो सीटों की मांग कर रही है 200 के करीब, उसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से कई बयान दिए गए हैं जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि समाजवादी पार्टी इतनी सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस के साथ तैयार नहीं है। और देखिए हम आपको दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सीट शेयरिंग को लेकर इससे पहले भी जब कहा गया था एक बड़ी मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर इंडिया अलायंस की, तब भी अखिलेश यादव उस मीटिंग से नदारद रहे थे और अब भी उसको लेकर कई खींचतान या फिर कई बयानबाजी दोनों ही पार्टियों के बीच चल रही है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन न्यूज रूम लाइव में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, पर इन एसोसिएशन विद
18: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
2: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
1: स्मॉल बैंक?
2: स्मॉल privilege savings account, garima savings account, maxima business, edge current account, business maxima business privilege, rdf, there's nothing small about them.
1: Okay.
2: Ujjivan, nothing small about us.
3: Sir, Gaso Fast ki growth to check kijiye.
4: Gaso Fast 27%, Eno 9.2%.
5: Gadbad hai.
6: Aha, Gaso Fast wale jeere ka jadoo chala rahe. Isiliye inke chahne wale दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसोफा, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
1: आगे आगे,
7: अरे उधर
1: उधर यार, करेक्ट करेक्ट।
8: मिल गया, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार। सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस।
10: मेरे पास एक आइडिया है।
9: क्या?
10: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
11: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
12: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
13: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
11: कौन सी बनानी है?
14: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है।
15: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
14: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायफ्री जूस।
16: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbar Group.
17: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर, तरक्की का ऑलराउंडर।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
19: इन एसोसिएशन विद
18: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है,
2: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
1: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायफ्री जूस।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन के गीत सुनो।

0: आधार पर नहीं ले सकते फैसला, बिना सहमति के फॉर्म 6 में बदलाव की याचिका पर मांगा चुनाव आयोग से जवाब। चुनाव से पहले मान सरकार को बड़ा झटका, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी सीएम ऑफिस से जुड़े करप्शन के आरोपों की जांच। बीजेपी बोली ट्रांसफर पोस्टिंग में घुसखोरी पर सफाई दे मान और केजरीवाल। महिला सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली में हुई घटनाओं पर मांगा पुलिस, गृह मंत्रालय और एमसीडी से जवाब, पूछा निर्भया फंड के इस्तेमाल की डिटेल बताएं, 4 हफ्तों में देनी होगी रिपोर्ट। सीईसी और एसआईआर के विरोध, कल होने वाले इंडिया अलायंस के सामूहिक हल्ला बोल से पहले आज कांग्रेस की बड़ी बैठक, प्रदेश अध्यक्षों के साथ मेगा प्लान पर हुई चर्चा, 6 अक्टूबर को गठबंधन का होगा मार्च। गोमती नदी के रौद्र रूप से लखनऊ के आसपास के इलाकों में हाहाकार, खतरे का निशान तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, सीएम योगी करेंगे पूरे इलाके का सर्वेक्षण।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से

चलिए सबसे पहले बात करते हैं गोमती नदी के लगातार जलस्तर बढ़ने के बाद लखनऊ में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। और खास बात यह कि गोमती नगर के साथ साथ जो रिवर फ्रंट का इलाका है वहां पर भी ये पानी का जलस्तर बढ़ा है, जिसके बाद वहां के लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही। आइए सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।

0: लखनऊ के गोमती नगर में कई सालों बाद इस तरह की बाढ़ दिखी। पूरे इलाके में कई फीट तक पानी भरा है। घर, मकान, दुकान सब पानी में समा गए हैं। गोमती नदी का जल स्तर बढ़ने से रिवर फ्रंट पूरी तरह से डूब गया है।
1: बाढ़ अगर बनारस की या प्रयागराज की होती तो शायद आम कही जाती, लेकिन राजधानी लखनऊ में अगर बाढ़ आ जाए और रिवर फ्रंट तक पानी चढ़ता हुआ आ जाए, प्रेरणा स्थल तक पानी चढ़ता हुआ आ जाए, तो यह बाढ़ आम तो नहीं है। दो दशक बाद राजधानी लखनऊ में गोमती का जल स्तर बढ़ चला है, बाढ़ आ गई है। ग्रामीण इलाके क्या शहरी इलाकों की वो जगहें जहां दीदार के लिए लोग बाहर से आया करते थे, वहां सन्नाटा है, तारे लग गए हैं क्योंकि जल स्तर बढ़ गया है। मेरी मौजूदगी इस वक्त गोमती नगर रिवर फ्रंट पे है और आप अगर तस्वीरों के जरिए समझें तो आप देखें वो जगहें जहां शायद आप भी कभी अपने दोस्तों और परिवारों के साथ आए होंगे, यहां पर बैठकर चाय की चुस्की ली होगी, गोमती का नजारा, ढलती हुई शाम, ढलता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज देखा होगा, वैसा कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। रिवर फ्रंट जरूर दिखेगा लेकिन जो बैठने के स्थान हैं, जो सीट्स हैं, जो चेयर्स हैं, वो सब अब जलमग्न हो चुके हैं। जिस तरीके से लगातार पानी का जल स्तर बढ़ रहा है, थोड़ा भारी बारिश की वजह से और थोड़ा बाढ़ की वजह से साई नदी का प्रकोप गोमती नदी पर छाया और गोमती नदी का जलस्तर लगातार वृद्धि की ओर है। सामने वो जगहें हैं जहां पर आप अक्सर बैठा करते होंगे, लेकिन वो स्थान सब कुछ आज जलमग्न हो चुका है। बड़ी बात यह है कि फिलहाल ऐसा अंदेशा नहीं लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में जलस्तर कम होगा, बल्कि बढ़ने के चांसेस हैं। इसी वजह से रिवर फ्रंट के पास बनी फूड वैली, जो लखनऊ का एक नया फेवरेट पॉइंट बना हुआ है, वो भी बंद कर दिया गया है।
0: पानी का फैलाव इस कदर बढ़ गया है कि हनुमत धाम मंदिर परिसर, प्राचीन शनि देव मंदिर और लक्ष्मण मेला मैदान के आसपास भारी जलभराव हो गया है। प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान मंदिर परिसर में भी नदी का पानी प्रवेश कर चुका है। जानकार बताते हैं कि 2006 के बाद ये स्थिति आई है जब गोमती नदी का जल स्तर इतना बढ़ा है।
2: मंदिर में पानी आ चुका है, माँ गोमती माँ श्री हनुमान जी के चरणों तक पहुंच चुकी हैं और शीघ्र स्नान कराने वाली हैं। स्थिति तो वैसे देखा जाए तो भयावह है, 2006-07 के बाद ये स्थिति आई है जब इतना जल स्तर बढ़ा है, परंतु मानवीय दृष्टिकोण से ये बड़ा दुखद है क्योंकि लखनऊ का 20-25% आबादी प्रभावित हो गई है जो डाउन स्ट्रीम में रह रही है।
0: उधर ग्रामीण इलाकों में भी बाढ़ का संकट गहराया हुआ है। बख्शी का तालाब, तहसील के लासा, बहादुरपुर, सुल्तानपुर और अकड़िया मऊ जैसे गांवों में पानी का स्तर कम जरूर हुआ है, लेकिन लोगों की मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों की आवाजाही और मदद के लिए 30 नावें तैनात की हैं। 7 राहत शिविरों में हर इंतजाम की बात कही जा रही है।
3: लगभग साल भर का जो हिस्सा होता है वो 15 दिन के अंदर 25% बारिश हुआ, जो साल भर बरसा, तो उस बरसाती के जो बरसात का पानी हुआ, ये सभी नदियां गोमती में मिलती हैं, लेकिन रास्ते में पानी मिलने के कारण ये भराव हो गया और गोमती में ज्यादा पानी आने के कारण इस क्षेत्र में 2008 में बाढ़ आया था, उसके बाद अब स्थिति यहाँ निर्मित हुई है। लेकिन तुरंत सरकार ने संज्ञान लिया, सभी घरों में राहत सामग्री, राशन में कुछ लोग मना कर रहे हैं कि मेरे घर में कल राशन मिल गया था इसलिए बगल वाले के घर में राशन दे दीजिए, बोतल के पानी भी 10-10 बोतल, 12-12 बोतल जिनको आ सकता है जो रही मानी विधायक की बांट रहे हैं।
0: लखनऊ में बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, कई लोग पलायन भी कर चुके हैं। गोमती का जल स्तर सामान्य से करीब 8 फीट ऊपर चढ़कर 108.14 मीटर के खतरनाक निशान तक पहुंच गया है। अब देखना है पानी कब तक कम होता है और लोगों को राहत कब तक मिल पाती है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ अंकित मिश्रा, लखनऊ आज तक।
4: लखनऊ में बाढ़ का पानी अब हनुमान धाम तक भी पहुंच चुका है, हनुमान धाम भी पानी में डूब चुका है और उसको लेकर हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव ने एक रिपोर्ट देखी, आइए आपको दिखाते हैं।
1: दो दशक पुरानी बात है जब राजधानी लखनऊ में बाढ़ आई थी, वो कहर ऐसा था जब शहर तक, घरों तक पानी आ पहुंचा था। दो दशक बाद इतिहास एक बार खुद को दोहरा रहा है। साल भले ये 2026 है लेकिन बाढ़ फिर आ गई है, गोमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। क्या धार्मिक स्थल, क्या शहर, क्या गांव, किसी को गोमती नदी के पानी ने अछूता नहीं छोड़ा है। इस वक्त हम हनुमंत धाम में मौजूद हैं, यहां पर भी गोमती नदी का पानी आ चुका है और जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। फिलहाल ये छोर जो गोमती हनुमंत धाम का है, इसे जो श्रद्धालु हैं उनके लिए कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि जलस्तर बढ़ा है। सामने देखिए गाड़ी खड़ी है जो कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा पानी में डूब चुकी है। ये पिलर्स आप देखिए, ये गोमती नदी के पानी में डूब चुके हैं। जहां इस वक्त मैं खुद मौजूद हूं, आप मेरे देखें तो घुटने के ऊपर तक, यहां मेरे घुटने के ऊपर तक पानी आ पहुंचा है। और आपको बता दूं, मैं इस वक्त जहां से रिपोर्ट कर रहा हूं काफी आगे तक, सामने देखिए एक झूला भी दिखाई पड़ेगा, अगर कैमरामैन गौरव दिखा पाइए, वो झूला जो है वहां लोग आकर झूलते थे वो झूला तक खत्म हो चुका है। उसके काफी आगे तक हनुमंत धाम की सीढ़ियां हैं। यहां पर अगर आप देखें मेरे बगल में तो ये एक पिलर है, ये एक जगह है, यहां पर यूजुअली लोग आकर बैठते थे। मैं बैठ जरूर सकता हूं लेकिन मेरे पैर पूरी तरीके से पानी में। ये इस तरीके के पिलर जो है ये सब के सब डूब चुके हैं और जितना मैं आगे जाऊंगा उतना पानी यहां से गहरा होता जाएगा। यहां पर संत महंत देखेंगे तो मौजूद है जो लगातार पूजा प्रक्रिया में रहते हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह की तस्वीरें यहां से देखी जा रही हैं। कुछ लोग आपको जरूर आते दिखाई पड़ेंगे, एक दो यहां पर जो यहां के कुछ वर्कर्स भी हैं उनको भी दिखा दें किस तरीके से घुटने के ऊपर तक पानी यहां पर आ पहुंचा है और इससे पानी से निकलते हुए यहां के लेबर्स हैं, यहां से निकलते हुए आ पहुंचे हैं। ये दरवाजा देखें, ये दरवाजा खुलने की हालात इसके नहीं है, ये भी डूब चुका है। तो कुल मिलाकर पेड़ पौधे सब कुछ इस वक्त पानी में समा गया है।
4: हनुमंत धाम से आपने हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखी, लेकिन लखनऊ के अंदर गोमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ना सिर्फ हनुमंत धाम पे बल्कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर भी ये पानी, बाढ़ का पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। समर श्रीवास्तव की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: लखनऊ में बाढ़ का कहर इस कदर है कि जो ऐतिहासिक धरोहरें बनाई गई उनसे भी कहीं ना कहीं बाढ़ अछूती नहीं है। फिर चाहे वो गोमती रिवर फ्रंट हो, हनुमंत धाम हो और चाहे नया बना प्रेरणा स्थल हो, हमारी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ के प्रेरणा स्थल में है, जहां पर आप अगर देखेंगे जिसे फिलहाल आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। नतीजा यहां पर पहुंच चुका है गोमती नदी का पानी। यहां पर आप देखेंगे तो तीन महापुरुषों की आपको बड़े बड़े तीन जो स्टैचूज हैं वो नजर आएंगे, लेकिन जो नीचे का हिस्सा है जो कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल का हिस्सा है या म्यूजियम का हिस्सा है, वहां पर आधे से ज्यादा जहां पर देखें तो आपको यहां पर पानी नजर आएगा, जो गोमती नदी का पानी है जो बाढ़ के चलते यहां पहुंच गया है। ये वो सारी धरोहरें हैं, ये सब सारी जगहें हैं जो गोमती किनारे बनी है, चाहे वो रिवर फ्रंट हो, चाहे वो प्रेरणा स्थल हो और चाहे वो हनुमंत धाम हो, जिसकी वजह से यहां तक ये पानी पहुंच गया है। और ये भयावह तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त लखनऊ में बाढ़ के चलते हालात किस तरीके के उत्पन्न हुए हैं और इस बाढ़ की वजह से कहीं ना कहीं जीवन भी अस्त व्यस्त है। ये
4: लखनऊ के बाद अब बात करते हैं बिहार में बाढ़ के खतरे को लेकर। दरअसल बिहार के कई जिलों में स्तर में पानी बढ़ गया है, खासतौर पर छपरा के अंदर जलस्तर गंडक नदी का तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं गोपालगंज में भी बांध टूटने के बाद से स्कूल और घरों के अंदर पानी भर गया है और वहां पर सरकार और विपक्ष राहत कार्यों को लेकर आमने सामने। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
0: अक्टूबर के महीने में बिहार में बाढ़ की यह तस्वीर छपरा की, जहां गंडक का पानी तबाही मचा रहा है। ड्रोन कैमरे में कैद ये तस्वीरें बाढ़ के कहर को दिखा रही है, जहाँ दूर दूर तक चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर टापू बन गए हैं, खेत खलिहान डूब चुके हैं और सड़कें पानी में गुम हो गई हैं। गंडक के पानी से कई बांध टूटने के बाद 200 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। अब गोपालगंज में बाढ़ के कहर की इस तस्वीर को देखिए। गोपालगंज के शीतलपुर बांध के टूटने के बाद बाढ़ का पानी घरों के साथ साथ स्कूलों में भी घुस गया। किताबें पानी में डूब गईं, स्कूलों में पढ़ाई ठप हो गई है और इसी बीच एक छोटे से बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पानी में डूबी किताबें हाथ में लेकर ये बच्चा शिक्षा मंत्री से सवाल कर रहा है, बाढ़ में किताबें और स्कूल डूब गए, अब पढ़ाई कैसे होगी?
5: स्कूल डूब गया है, घर डूब गया है, इधर की साइड पूरा पानी भर गया है, तो लोग कहाँ जाएंगे, लोग कहाँ पढ़ेंगे, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तो इसीलिए मेरा आपसे ये विनती है कि स्कूल जो है डूबे है, जितना भी घर डूबा है, पानी घुसा है, तो इसका कुछ ना कुछ उपाय करे, और ना ऐसे ही रहेगा तो कब तक चलेगा। अभी गंडक नदी का बहाव बहुत तेजी से है, जल स्तर बढ़ रहा है, नेपाल का डैम का पानी होल हो गया है, तो होल से और इतना पानी आ रहा है, तो 5 लाख लीटर पानी अभी यहाँ पे आया है, छोड़ा गया है डैम से। तो आप जो शिक्षा मंत्री हैं, तो यहाँ पे क्यों कोई सुविधा नहीं है? आप तो शायद यहाँ के MLA भी थे, शिक्षा मंत्री हैं आप, तो देख सकते हैं स्कूल डूब गया है, किताबें भीग गई है, घरों में पानी चला गया है।
0: बिहार में बाढ़ के बीच अब सियासत भी तेज हो गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने। विपक्ष जहां सरकार से राहत कार्यों में तेजी लाने और प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने की मांग कर रहा है, वहीं सरकार की ओर से राहत और बचाव के लिए लगातार कदम उठाने का दावा किया जा रहा है।
6: बीच में जो वर्षा हुई थी उससे काफी फसल जो है किसानों का जो है क्षति पहुंची है, अब तक उसका भी मुआवजा जो है किसानों को नहीं मिला। हमने कई बार जो है मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक चिट्ठी लिखा, बात भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चुनाव है तो भाजपा को बिहार के लोग याद आते हैं, चुनाव खत्म होते ही भूल जाते हैं।
7: सरकार की जो भी नजर है आपदा से पीड़ित लोगों को हर सहयोग के लिए सुविधा प्रदान की जा रही है, फसल की हुए नुकसान का हमने जिला के पदाधिकारी के लिए आदेश दिया है, उसका भी सही मूल्यांकन करे और जो भी नुकसान हुआ है सरकार उसकी समीक्षा करे, लोगों को राहत और सुविधा प्रदान करे।
0: बिहार में बाढ़ सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। एक तरफ बाढ़ पीड़ित राहत के इंतजार में हैं, तो दूसरी तरफ अभिज्ञान जैसे बच्चे अपनी डूबी हुई किताबों के साथ अपने भविष्य को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
4: और अगली खबर पंजाब से। पंजाब के अंदर अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में फायरिंग और हत्या की कई वारदातें सामने आई है। खासतौर पर अमृतसर के अंदर एक ASI पे फायरिंग की गई। अमृतसर के अंदर ही एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं लुधियाना के अंदर भी एक सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पंजाब में पंजाब सरकार और पुलिस पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
0: क्या पंजाब में कानून का डर अपराधियों में नहीं? क्या पंजाब में पुलिसकर्मी भी अब सुरक्षित नहीं है?

0: गाड़ी के पीछे कौन है। पंजाब में बढ़ती गोलीबारी और हत्याओं पर लगाम कब, ये सारे सवाल पंजाब में बेखौफ अपराधियों के खूनी खेल को लेकर हैं, क्योंकि पिछले तीन दिन में पंजाब में हत्या और गोलीबारी के ये वारदात कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। अमृतसर में ड्यूटी खत्म करके घर लौट रहे पंजाब पुलिस के ASI सुखचैन सिंह पर अचानक गोलियां चलती हैं। जगदेव खुर्द पुल के पास बाइक सवार तीन हमलावर पीछे से आते हैं, फायरिंग करते हैं और फरार हो जाते हैं। एक गोली ASI सुखचैन सिंह की बाजू में लगती है और फिर घायल हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन शुरुआती जांच में मामला किसी आतंकी हमले का नहीं बल्कि पारिवारिक रंजिश का बताया जा रहा है। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
1: ये रात जड़ी वारदात तो हुई है, साढ़े ASI सुखचैन सिंह जो GRP के तैनात सी, ये ड्यूटी करने तो बाद अपने घर जा रहा है। रस्ते जो कुछ अननोन बंद ने गोलियां चला के हमला किया। एक गोली जी ए बांह ते लगी है, ते जेदा कोई आउट ऑफ डेंजर है।
0: इसी बीच लुधियाना से भी गोलीबारी की एक घटना सामने आई। मनेवाल गांव के पूर्व सरपंच नवतेज सिंह को बाइक सवार हमलावरों ने गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक शाम करीब 6:30 बजे नवतेज सिंह अपने गांव से लुधियाना शहर स्थित अपने घर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार दो युवकों ने उन्हें निशाना बनाया। घायल हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सरपंच की हत्या से एक दिन पहले अमृतसर में दिन दहाड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट की हत्या कर दी गई। मैड संधू पर गोली चलाई गई, जिसके बाद वो सड़क पर गिर पड़े। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है। एक तरफ ड्यूटी से घर लौट रहे पुलिसकर्मी पर गोली चलती है, दूसरी तरफ पूर्व सरपंच की हत्या हो जाती है और तीसरी घटना अमृतसर में होती है, जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या के बाद गैंगस्टर कनेक्शन के दावे सामने आते हैं। इन घटनाओं की वजह और आरोपियों को लेकर पुलिस की जांच अलग अलग दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन लगातार सामने आ रही वारदातों के बीच पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
2: चलिए न्यूज रूम लाइव में खबरों का सिलसिला यहीं तक, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: जीत तो महत्वपूर्ण ही है, गठबंधन पाने की तरीके से एक है, सीटों की संख्या पर कोई झगड़ा नहीं, 403 की 403 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। सिंबल जिस क्षेत्र में जो जीत सकता होगा उस पार्टी का सिंबल होगा, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तय करेंगे। इसमें तो ये तो एक अच्छा बयान है श्री अखिलेश यादव जी।
1: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तो तय है, जहां तक सीट शेयरिंग की बात है ये ना अनुराग भदौरिया तय करेंगे, ना हमारे सांसद एसपी सिंह पटेल साहब तय करेंगे, ना ही कांग्रेस का कोई नेता सांसद तय करेगा। ये समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। लेकिन ये तय है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगी।

0: पतंजलि दंत कांति टूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: फ्राई दुबई मामले को लेकर कई साजिशों से पर्दा हटना शुरू हो गया। इसराइल की मीडिया द्वारा कई रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया है कि को पायलट चाहता था कि वो इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट से इस फ्लाइट को टकरा दे ताकि ज्यादातर लोगों की मौत हो जाए। हालांकि अभी कई साजिशों से पर्दा हटना बाकी है, लेकिन अभी भी इस साजिश के कई तार जो है दुबई की जांच एजेंसियां उसके बारे में तफ्तीश कर रही है।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: सपा वालों और तुम्हारे साथ जो इंडिया अलायंस के सियासी पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो या भारत का 1900 मुसलमान हो, ये मुसलमान तुम्हारी बपूती नहीं है, याद रखो, ये तुम्हारे बाप की बपूती नहीं है, हम इंसान हैं, वोटर नहीं है। तुम अगर हमको बपूती समझते हो तो तुमको पता चल जाएगा आने वाले विधानसभा में तुमने वोट हासिल किया, तुमने हमारे ख्वाबों को चुकना चूर करके अपने इख्तदार के महलों को तामीर किया।
3: समाजवादी पार्टी समाज में न किसी वर्ग को अपनी जागीर न वोट बैंक समझती है, वो सभी वर्गों को अपना साथी, सहयोगी और समाजवादी पार्टी के परिवार का हिस्सा समझती है। जो लोग सत्ता की आलोचना नहीं करते, जो लोग सत्ता पे सवाल नहीं पूछते, वो समाजवादी की आलोचना करते। इससे साफ जाहिर होता है कि वो लोग किसके सहयोगी हैं, वो किसकी मदद कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है।

0: जो गठबंधन पहले से था, जिसने बीजेपी को हराया, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीती, समाजवादी पार्टी का वही गठबंधन उसी गठबंधन को आगे बढ़ाने का काम करे।
1: अखिलेश यादव के इस बयान के 24 घंटे के अंदर दिल्ली से एक तस्वीर सामने आई, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी से मुलाकात की और इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऐलान कर दिया।
2: इंडिया अलायंस की हिस्सा बनेगी अपनी जनता पार्टी, और आगे क्या कितनी सीट कहां कैसे होगा इस पर वार्ता बाद में होगी।
1: अब सवाल ये कि जो अखिलेश यादव यूपी में 2024 वाले गठबंधन के साथ 2027 का चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, उसमें अब स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी की एंट्री कैसे होगी। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य एक और राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बता रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं।
2: देश में हम चाहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी हों, इसके लिए समान विचारधारा के लोगों को एक साथ खड़ा करने की कवायद में भी मैं लगातार लगा हूं। क्यों अलायंस में तो एक दर्जन पार्टियां रह सकती, तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों नहीं रह सकते, उनकी पार्टी क्यों नहीं रह सकती, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं, किसको भेजें किसको नहीं भेजें उनका फैसला है, लेकिन हाँ कहीं न कहीं समाजवाद दागदार हुआ है।
1: स्वामी प्रसाद मौर्य और राहुल गांधी की मुलाकात इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि जिस कांग्रेस के गढ़ रायबरेली से अखिलेश यादव ने अपने पीडीए यात्रा की शुरुआत करके कांग्रेस में खलबली मचा दी थी, वहीं की एक विधानसभा क्षेत्र से स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी से विधायक रह चुके हैं, जहां मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी का कब्जा है। ऐसे में सवाल ये भी कि स्वामी प्रसाद मौर्य को इंडिया गठबंधन कहां फिट करेगा, क्योंकि सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। सीटों की इस खींचतान ने विरोधियों को एक बार फिर गठबंधन को घेरने का मौका दे दिया।
3: अब स्थिति साफ है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटना लगभग तय हो गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कांग्रेस को उसकी हैसियत बताने का काम किया है, कहा है दो विधायक वाली पार्टी अपनी हैसियत में रहे, और अगर कांग्रेस का गठबंधन ना होता 2024 में तो 6 सीटें जो जीत के आई है, जो 6 सांसद बने हैं, वो भी ना बनते और शून्य पे आ जाते।
1: उधर गोरखपुर से बीजेपी नेता संजयन त्रिपाठी ने बीजेपी का दामन छोड़ने के बाद समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। संजयन को बीजेपी से एमएलसी का टिकट नहीं मिला था, जिसके बाद वो पार्टी का झंडा हटाते हुए भावुक हो गए थे।
4: बहुत भारी मन से और बहुत दुखी भाव से आज हमने इस झंडे का त्याग किया, क्योंकि अब इस झंडे के इस्तेमाल का हमारा कोई अधिकार नहीं रह गया।
1: बहरहाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल जारी है, लेकिन ये प्रेशर पॉलिटिक्स कहां तक जाती है और इसमें बाजी कौन मारता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आज तक ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट ने सीसी ज्ञानेश कुमार के निलंबन की मांग को किया खारिज, कहा न्यूज रिपोर्ट के आधार पर नहीं ले सकते फैसला, बिना सहमति के फॉर्म 6 में बदलाव की याचिका पर चुनाव आयोग से मांगा जवाब। सीसी और एसआईआर के विरुद्ध कल होने वाले इंडिया अलायंस के सामूहिक हल्ला बोल से पहले कांग्रेस की बड़ी बैठक, प्रदेश अध्यक्षों के साथ मेगा प्लान पर चर्चा, 6 अक्टूबर को गठबंधन का मार्च। दो मोर्चों पर घिरी पंजाब सरकार, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी सीएम ऑफिस से जुड़े करप्शन की जांच, बीजेपी बोली ट्रांसफर पोस्टिंग में घुसखोरी पर सफाई दें, 3 दिन में 3 वारदात पर भी घेरा। पटना में दरोगा की मुख्य परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में सफल अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा, सीएम आवास तक प्रदर्शन की कोशिश में पुलिस ने रोका, करीब 1700 पदों के लिए निकली थी भर्ती। गोमती नदी के रौद्र रूप से लखनऊ के आसपास के इलाकों में हाहाकार, खतरे के निशान तोड़ रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, सीएम योगी करेंगे पूरे इलाके का सर्वेक्षण।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और अब वक्त हो गया है 100 शहर 100 खबर का।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: सीसी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कानून का उल्लंघन साबित हुआ तो नियुक्ति और उससे जुड़े हुए फैसले निरस्त किए जा सकते हैं। सीजेआई सूर्यकांत बोले कि पहले चुनाव आयोग का जवाब आने दीजिए, सिर्फ मीडिया में आई खबरों के आधार पर आदेश नहीं दे सकते। सीसी को निलंबित करने की मांग पर सीजेआई की टिप्पणी की खबर सही भी हो सकती है और गलत भी, पहले तथ्य सामने आने दीजिए तब। चुनाव आयोग को नोटिस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में खामी मिली तो परिणाम भी रद्द किया जा सकता है। पटना में 11,000 एसआई अभ्यर्थियों का मार्च, दरोगा भर्ती परीक्षा रद्द करने के खिलाफ सीएम आवास की ओर कूच। एसआई अभ्यर्थियों का गांधी मैदान से सीएम आवास तक मार्च, दरोगा भर्ती के फिजिकल एग्जाम की तारीख घोषित करने की मांग। रोहिणी आचार्य पहुंचे मामा साधु यादव के घर पर, लिया आशीर्वाद, छपरा से चुनाव लड़ने का दावा भी। रोहिणी आचार्य की साधु यादव से मुलाकात के बाद सियासी चर्चा तेज, मामा बोले कि छपरा से लड़ेंगे चुनाव। ये मोदी और स्विस राष्ट्रपति गायन पमेलिन की मौजूदगी में भारत स्विस जेलन के बीच में एमओयू का आदान प्रदान। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और स्विस राष्ट्रपति की प्रतिनिधिमंडल स्तर पर बैठक, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। पीएम मोदी बोले भारत स्विस जेलन संबंधों के प्रति राष्ट्रपति गाय पमेलिन की प्रतिबद्धता सराहनीय है। भारत एफटीए व्यापार समझौते का पीएम मोदी ने किया जिक्र, बोले कि यूरोप के आर्थिक समूह के साथ भारत का पहला एफटीए। भारत स्विट्जरलैंड व्यापार और निवेश बढ़ाने पर जोर, कृषि फार्मा समेत कई क्षेत्रों में निर्यात और निवेश बढ़ने की उम्मीद। पंजाब में कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच के आदेश, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सीएमओ में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों पर हाईकोर्ट सख्त, ईडी की चिट्ठियों से जुड़े मामले के सीबीआई जांच सौंपे। ट्रांसफर पोस्टिंग और सीएलयू में कथित भ्रष्टाचार के आरोप हैं, हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच के निर्देश दिए। ईडी की शिकायत पर पंजाब पुलिस की कार्रवाई न होने का मामला हाईकोर्ट में सीबीआई को जांच सौंप दी है। दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर यूट्यूबर्स का धरना, पुलिस ने बल बस में बिठाकर उसके बाद डिटेन भी यूट्यूबर्स को किया। एफआईआर की मांग को लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर धरना, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटा। देशभर में वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ गरमाई सियासत, चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्लान, आज दिल्ली में अपने राज्य प्रमुखों के साथ करेंगे अहम बैठक। सीसी गणेश कुमार के खिलाफ दायर 2 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ कर रही है सुनवाई। याचिकाकर्ता की ओर से प्रतिनिधित्व कानून के मूल स्वरूप और धाराओं में बदलाव का हवाला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। दिल्ली में सीसी गणेश कुमार के खिलाफ इंडियन यूथ कांग्रेस का कैंडल मार्च, सीसी के इस्तीफे की मांग तेज। दिल्ली पुलिस के खिलाफ इंडिया गेट से लेकर जंतर मंतर तक मार्च, सीसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिसिया कार्रवाई से खफा। दिल्ली पुलिस का 3 अक्टूबर को किए गए आईएसआई और दूसरे संगठनों के प्रदर्शन पर बैन, बदसलूकी पर कहा कि अगर किसी के पास कोई वीडियो हो तो क्राइम ब्रांच को दे दें। 3 महिला पत्रकारों के साथ बदसलूकी के आरोप पर सियासत तेज, कांग्रेस ने मोदी और शाह पर साधा निशाना। दिल्ली पुलिस ने वायरल वीडियो को फर्जी बताया, कहा कि महिला पत्रकारों से बदसलूकी का वीडियो दिल्ली पुलिस का है ही नहीं। दिल्ली में जंतर मंतर पर हुए रविवार के प्रदर्शन में 15 पुलिसकर्मी घायल हैं, लगभग 110 प्रदर्शनकारी हिरासत में। ओवैसी का बीजेपी आरएसएस पर बड़ा आरोप, फॉर्म 7 के जरिए वोटर लिस्ट से नाम हटाने की साजिश का दावा किया। कांग्रेस अध्यक्ष के प्रधानमंत्री मोदी को गैर कानूनी पीएम बताने पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का पलटवार, पूछा कि आप गैर कानूनी हैं खड़गे जी क्या, और क्या राहुल गांधी भी गैर कानूनी ही सांसद हैं? पटना में बीजेपी के शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी खड़गे पर पलटवार करते हुए कहा कि उनका बयान 140 करोड़ भारतीयों का सीधा अपमान। राहुल गांधी के डिजिटल सत्याग्रह पर बोले चिराग पासवान, कहा कि सत्याग्रह नाम अच्छा लेकिन विपक्ष को झूठ और भ्रम फैलाना छोड़ सच बोलना चाहिए। यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी में सीट बंटवारे को लेकर जुबान नहीं जंग, अखिलेश यादव ने कहा सीट नहीं जीत जरूरी। अखिलेश ने योगी सरकार से लेकर केंद्र सरकार को घेरा, कहा कि डबल इंजन ट्रबल इंजन बन गया, इतनी लड़ाई चल रही है। यूपी में सीट बंटवारे पर कांग्रेस का बयान, यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र गौतम बोले कि हमने 150 नहीं 200 सीटों की मांग की। भदोही में सीएम योगी ने अखिलेश राज पर साधा निशाना, बोले 2017 से पहले खजाना खाली था राज्य का, अब ग्रोथ इंजन बना यूपी। भदोही का नाम बदलकर अब होगा संत रविदास नगर, मुख्यमंत्री योगी का ऐलान। अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा पर सियासी घमासान ओवैसी के बयान से यूपी की सियासत गरमाई। कौन है अब्दुल के सवाल पर छिड़ी बहस, ओवैसी बोले कि मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा। अब्दुल वाले बयान पर ओवैसी का निशाना, कहा कि मुसलमान को उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। रामपुर में आजम खान की पत्नी से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, तंजीम फातिमा बोली अभी चुनाव नहीं, आजम को बाहर निकालना मकसद। तंजीम फातिमा से मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि संकट की घड़ी में मैं उनके साथ। लखनऊ में भारी बारिश से प्रभावित परिवारों के लिए राहत कार्य तेज, फैजुल्लागंज में प्रशासन की टीमें सक्रिय। फैजुल्लागंज में बारिश प्रभावित लोगों को राहत, प्रशासन और नगर निगम की टीमें राशन किट पहुंचाने में जुटे। लखनऊ में बारिश के बाद राहत अभियान तेज, डीएम नगर आयुक्त ने प्रभावित परिवारों के साथ संवाद किया। लखनऊ में बाढ़ पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान, बोले 15 दिन में साल की 25% बारिश हो गए। गोमती का जलस्तर बढ़ने के बाद लखनऊ में बाढ़ की स्थिति, मंत्री बोले 2008 के बाद पहली बार ऐसा देखा। आंध्र प्रदेश के तेनाली में शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी और सीएम नायडू की साझेदारी की तारीफ की, विकास को लेकर तमाम बातें की। तेनाली में शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, बोले कि पीएम मोदी और सीएम नायडू की जोड़ी 1 और 1 11। चेन्नई में एशियन गेम्स पदक विजेताओं का सम्मान खेल मंत्री आधव अर्जुन ने सम्मानित किया। झांसी में नवरात्र की तैयारियां जोरों पर, किले के आसपास गरबा अभ्यास में उत्साह दिखा। कैप्टन स्मित मछार के जल्द स्वस्थ होने की कामना में आसनसोल में महामृत्युंजय का जाप और हवन यज्ञ, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। कैप्टन स्मित के लिए दुबई के बॉब्स मंदिर में भी दुआओं का दौर और यूएई से संपर्क में भारत की एम्बेसी। दिल्ली में आर्टिस्ट इवन क्रिकेट लीग के समापन समारोह में शामिल हुए आशीष सूद, दिल्ली में 5 स्टेडियमों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का ऐलान। ओडिशा के भुवनेश्वर में जीवन जिंदाबाद 2.0 अभियान की शुरुआत, राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया कार्यक्रम। कार्यक्रम में कई नाट्य प्रस्तुतियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए पेश, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के तौर पर शामिल। बिहार के छपरा में बांध टूटने से गुस्साए ग्रामीणों ने इंजीनियर और एसडीओ को बाढ़ के पानी में फेंकने की कोशिश की, किसी तरह बची जान। बिहार के बगहा में बाढ़ से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचा केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, लगभग 1000 परिवारों को राहत सामग्री पहुंचाई। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ के पानी में डूबी किताबें दिखाकर छात्र ने शिक्षा मंत्री से पूछे सवाल, वीडियो वायरल। बिहार में सारण में गंडक नदी का कहर, ड्रोन कैमरे में जल प्रलय का खौफनाक मंजर कैद, गांव घर खेत सब जलमग्न। लखनऊ में गोमती नदी का रौद्र रूप, खतरे के निशान के पार जलस्तर और बाढ़ का संकट गहरा। तमिलनाडु में भारी बारिश और वलपराय में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भारी पानी भरा हुआ दिखाई दिया, ट्रैफिक पर असर। शामली में अंकित बालियान हत्याकांड में 3 इनामी आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा, सोनीपत करनाल में घरों पर एक्शन कुर्की हुई। पंजाब पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का किया पर्दाफाश, सीमा पार ड्रोन से भेजी गई के 47 और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद। गुजरात में जूनागढ़ में तेज रफ्तार बाइक का बिगड़ा संतुलन, रिक्शा को ओवरटेक करते समय युवक को मारी टक्कर, मौके पर मौत। हैदराबाद के सिकंदराबाद में देरी से फूड डिलीवरी पर बवाल, दंपति ने डिलीवरी एजेंट को जमकर पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया केस। जयपुर में पिटाई के विरोध में सड़क पर उतरे छात्र, पुलिस ने लाठीचार्ज करके खदेड़ा। पंजाब के अजनाला में तैनाती एसआई सुखचैन सिंह पर गोलियां चली, सिविल हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। बठिंडा के जसी चौक में शराब के ठेके के बाहर कुल्हाड़ी से हमला, एक शख्स की हत्या। बिहार के सहरसा में कारू बाबा स्थान न्यास विवाद में चली गई राउंड फायरिंग, एक शख्स को लगी गोली, गुस्साए लोगों ने मेहंत की गाड़ी को आग के हवाले किया। बिहार के जमुई में 2 गर्भवती महिलाओं की मौत, मामले में प्राइवेट क्लिनिक पर छापे मारे, क्लिनिक को किया गया सील। ग्रेटर नोएडा में पार्किंग को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिसकर्मी और कार सवारों के बीच में धक्का मुक्की का वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में गाड़ी निकालने के लिए का विवाद, दरोगा से अभद्रता और महिला से बदसलूकी का आरोप, दोनों पक्षों में समझौता। ललितपुर में घरेलू विवाद के बाद सोते समय पत्नी की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। कानपुर में 40 साल से फरार चोर गिरफ्तार, बरेली में साधु बनकर रह रहा था पागल बाबा। बिजनौर में पत्नी को प्रेमी के साथ होटल से निकलते देख पति भड़क गया, सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। बिहार के बेगूसराय में सोशल मीडिया पर पत्नी की तस्वीर लगाने से मना करने पर पड़ोसी ने पति पत्नी को मारी गोली, दोनों घायल। इस बीच में एक बहुत बड़ी खबर आपको देते हैं। राज्यसभा के लिए बीजेपी ने सूची जारी कर दी है, जिसका इंतजार था और अनुमान लगाया जा रहा था कि आज ऐलान हो जाएगा, क्योंकि कल अंतिम तारीख है नामांकन दाखिल करने की और राज्यसभा कौन बीजेपी से जाएगा इसका ऐलान हो गया है। ये बड़ी खबर इस समय आपको दे दें और बीजेपी की जो लिस्ट है वो सामने आ गई है और इसमें जो नाम है वो भी सामने आ गए हैं। इसमें धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो ये अभी नाम सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ऐलान हुआ है, समाजवादी पार्टी ने दो ही अपने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया है, तीसरे को लेकर अभी सिर्फ अटकलें लग रही हैं। बीजेपी की जो सूची है वो भी आ गई है, जो नाम है वो भी हम आपको इस समय बता रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए ये जो दो नाम है वो दिखाई दे रहे हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, कौन कौन से नाम है और दो ही नाम है या तीन है?
2: देखिए, बिल्कुल आठ नामों की सूचना जो है वो आई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। धर्मपाल सिंह है, पूर्व में मंत्री रहे हैं, इनका नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी था। राधाकांत ओझा हैं, इनको दिया गया है। प्रकाश पाल हैं, विद्यासागर सोनकर हैं, गोपी कृष्णा पांडे हैं, प्रियंका सिंह रावत हैं। प्रियंका सिंह रावत जो है 2014 से 19 जो है भारतीय जनता पार्टी की बाराबंकी से सांसद रही हैं, और राम प्रताप सिंह चौहान हैं, श्रुति गंगवार हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय समीकरणों के साथ इन आठ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो राज्यसभा के लिए की है। और ये चेहरे बहुत अगर आप देखें तो पीछे से जो काम करने वाले लोग रहे हैं वो रहे हैं, या पार्टी में इनके पास कोई बड़ी जिम्मेदारियां जो है संगठनात्मक दृष्टि से रही है, चाहे वो पूर्व में सांसद रहे हों। इन आठों नामों को अगर आप देखा जाए तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सभी समीकरणों को साधने की कोशिश की है।
0: बिल्कुल हिमांशु, आप बने रहे, समय हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं इस समय जिनके नामों का ऐलान हुआ है और इस सूची में आपको तमाम नाम दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी ने आठ उम्मीदवारों की सूची जारी की है, समाजवादी पार्टी ने दो कैंडिडेट के नामों का ऐलान किया है। तो हरदीप पुरी, बीएल वर्मा का इसमें नाम नहीं है। इंटरेस्टिंग है, हरदीप पुरी का नाम नहीं है, श्रुति गंगवार है, प्रियंका रावत है, जिनके नाम का ऐलान किया गया है। तो ये सबसे पहले धर्मपाल सिंह आपको दिखाई दे रहा है, राधाकांत का नाम इसमें दिखाई दे रहा है। तो कुल ये आठ नाम है जिनका ऐलान हुआ है। हिमांशु, थोड़ा इस लिस्ट के बारे में थोड़ा सा और बताएं कि किस किस का पत्ता कटा है, किस किस को नया ऐड किया गया है, उसके पीछे के समीकरण बताएं। और नंबर गेम आठ के साथ है और एक सीट को लेकर जो पेच फंसा हुआ है उस पर दावेदारी नहीं की?
2: देखिए, बिल्कुल आठ सीट, सात सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में और भारतीय जनता पार्टी ने आठ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि आठवीं सीट उन्हीं के खाते में आए। दूसरी तरफ अब देखना यह है समाजवादी पार्टी की तरफ से तीसरा कैंडिडेट कौन है। लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम मंत्री थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा नहीं दिया है, तो ये एक बड़ी देखने को मिला है। और उनके साथ साथ बीएल वर्मा जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनको भी जो है वो इन आठों उनको राज्यसभा के लिए पार्टी ने दोबारा जो है नामित नहीं किया है। तो दो केंद्रीय मंत्रियों को जो है नामित ना करना ये बताता है कि पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल अलग है। और उत्तर प्रदेश से जुड़े ही लोगों को जो है इससे जगह दी गई है। हरदीप सिंह पुरी क्योंकि एक चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, बड़ा चेहरा है, सरकार में बड़े मंत्री है, पेट्रोलियम विभाग उनके पास है, तो कहीं ना कहीं अब अगर देखा जाए तो हरदीप सिंह पुरी केंद्र सरकार में जो है वो बिना दोनों ही सदनों के सदस्य के तौर पर जो है वो मंत्री हैं। और इससे पहले भी अगर आप देखें तो रवनीत सिंह बिट्टू जो है उनको भी राज्यसभा में नहीं भेजा गया था जब अप्रैल के अंदर चुनाव हुए थे, तो उनको भी इस्तीफा हुआ मंत्रिमंडल से। और उसके साथ साथ जो है के थॉमस जो केरला से थे वो भी केंद्र सरकार में मंत्री थे, सरकार भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी राज्यसभा में सदस्य नहीं बनाया था, तो उनका भी इस्तीफा होता। अब देखा यह है कि हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा
0: तो फिर हिमांशु अभी और सवाल तो हैं, लेकिन पहले हरदीप पुरी पर ही बात कर लेते हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या दिखाई दे रहा है।
2: देखिए, राजनीतिक भविष्य क्योंकि अभी तो पार्टी ने उनको अगर नामित नहीं किया राज्यसभा के लिए तो एक बड़ा सवाल जरूर है। लेकिन छह महीने वो बिना किसी सदन में यानी दोनों लोकसभा और राज्यसभा सदन में सदस्य के बिना रह सकते हैं, ये जो है वो संविधान के अंदर संरचना है, उसमें नामित है कि कोई भी सदस्य मंत्री बिना मंत्री रह सकता है, बिना संसद सदस्य रहे वो तो है, लेकिन कितने लंबे समय तक रहेंगे या पार्टी ने उनका कुछ अलग जो है उनके बारे में सोचा है भविष्य के लिए, चाहे वो गवर्नर हो या अगले किसी पोस्ट पे उनको लाया जाए।
0: डीएल हिमांशु, क्या जो उनके पास मिनिस्ट्री है उसका भी जाना अब एक संकेत है कि उससे अंदाजा लगाएं कि क्या होगा?
2: देखिए बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि आने वाले जो समय है उसमें कहीं अभी राज्यसभा का चुनाव जो है जो 2027 में नहीं है, 2028 में राज्यसभा के चुनाव है, एक दो राज्यों में जो 27 के चुनाव है तब तक बहुत समय हो जाएगा। तो अगर हरदीप पुरी या बीएल वर्मा को लाना होता तो अभी उनको राज्यसभा में यहाँ से लाया गया होता, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, या जो पश्चिम बंगाल के कल बाय इलेक्शन के लिए नाम घोषणा की गई है, तो ऐसा नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं पार्टी की एक रणनीति रही होगी कि बीएल वर्मा और हरदीप सिंह पुरी की जगह पार्टी जो है अन्य लोगों को मौका दे, और जातिगत समीकरणों के साथ जो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी है, इसको बहुत भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सीरियसली तरीके से लिया, और इसलिए देखें तो आप, मैंने पहले भी बताया, चाहे वो धर्मपाल सिंह हो, जातिगत समीकरणों के हिसाब से पश्चिम के नेता हैं और उन वो फिट बैठते हैं। राधाकांत ओझा है, दामन समाज से हैं, उनको लाया गया है। प्रकाश पाल हैं, विद्या सागर सोनकर हैं, इसी कम्युनिटी से हैं, सोनकर हैं, और गोपी कृष्ण पांडे हैं, ये भी ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं। प्रियंका सिंह रावत ये जो है दलित समाज से आती हैं, बाराबंकी से पहले लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं। राम प्रताप सिंह चौहान हैं, ये नया एक सरप्राइजिंग नाम है। श्रुति गंगवार, तो क्योंकि श्रुति गंगवार जो है उनको भी जो है उम्मीदवार बनाएगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सभी एक तरीके से देखा जाए तो समीकरणों को साधा है, क्योंकि गंगवार जो कम्युनिटी है वो रोहिलखंड जो उत्तर प्रदेश का एरिया है वहाँ उसका इम्पैक्ट है। आप देखिए संतोष गंगवार जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और वर्तमान में चूंकि वो राज्यपाल हैं और वो 8 बार से ज्यादा सांसद जो है वो बरेली से रहे हैं, तो उनकी कम्युनिटी को भी साधने की कोशिश की गई है, और कहीं ऐसा ना लगे कि किसी कम्युनिटी को छोड़ा गया है, और ओबीसी को ज्यादा साधने की कोशिश जो है इन 8 कामों में किया गया है। अब देखा यह है क्रमवार कौन 8वें नंबर का उम्मीदवार होगा।
0: लेकिन हिमांशु, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई जिससे थोड़ी चर्चा इस तरफ भी घूमेगी कि क्या संकेत भी दे रही है कि मोदी कैबिनेट में रिशफल हो सकता है, जिसकी चर्चाएं बहुत पहले थी लेकिन फिर एकाएक वो खबर काफी समय तक दब गई। एक बार फिर से क्या ये माने कि अब वो रिशफल बहुत नजदीक है जब नाम नहीं दिख रहा हरदीप पुरी का लिस्ट में?
2: देखिए बिल्कुल, अगर नाम नहीं दिख रहा है तो अभी हरदीप सिंह पुरी का क्या रेजिग्नेशन होगा या उन्हें कुछ समय के लिए अभी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो तब उनको जो है मंत्रिमंडल से उनका इस्तीफा होगा, या रवनीत सिंह बिट्टू, या मैंने बताया कि जो केज जोसेफ है कुरियन, उनके जब उनको राज्यसभा में नहीं लाया गया तो उनके जो है इस्तीफे ले लिए गए थे। और देखना यह है कि क्या हरदीप सिंह पुरी का पोर्टफोलियो, अगर उनका रेजिग्नेशन होता है तो उनका पोर्टफोलियो किसको दिया जाएगा, ये तमाम चीजें जो है अभी इनके ऊपर संशय है, और भारतीय जनता पार्टी और सरकार की क्या रणनीति है वो आने वाले समय में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का एक जो मिशन है वो ये है, क्योंकि संसद अभी प्रमुख नहीं हुई और भारतीय जनता पार्टी ये जरूर चाहेगी कि कैबिनेट विस्तार से पहले जो है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो है उसको पहले पास कराया जाए।
0: जी, अब उस कॉन्फिडेंस पर बात कर लेते हैं जो इसमें झलक रहा है, वो ऐसे है कि 7 के तो आपके पास पर्याप्त नंबर है लेकिन आपने 8वें पर भी दाव खेल दिया इस कॉन्फिडेंस के साथ कि आप जीत जाएंगे, तो उसके लिए नंबर कैसे जुटाएंगे आप, हालांकि सपा उतनी कॉन्फिडेंट नहीं दिख रही है? हाँ
2: देखिए, अगर सपा का तीसरा कैंडिडेट आता है तो कहीं ना कहीं ये एक लड़ाई होगी, अगर सपा अपना तीसरा कैंडिडेट नहीं उतारती है तो ये चुनाव जो है वो निर्विरोध रूप से जो है वो सपा के दोनों उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी के 8 उम्मीदवार ये निर्विरोध रूप से जो है वो चुन लिए जाएंगे। अगर सपा तीसरा कैंडिडेट उतारेगी तो फिर वोटिंग का प्रोविजन होगा, और देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन जो है 8वें नंबर का कैंडिडेट होगा और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है वो कौन तीसरे नंबर का कैंडिडेट होगा, अगर तीसरा कैंडिडेट समाजवादी पार्टी उतारती है, क्योंकि वो क्रमवार जो है वो पार्टी डिसाइड करती है कौन उनका फर्स्ट प्रेफरेंस का कैंडिडेट है, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस में अगर समाजवादी पार्टी का देखा जाए तो वो रामगोपाल यादव होंगे, और उनके अलावा जो है परिमल नाटवानी के जो बेटे हैं वो दूसरे पे होंगी या जो तीसरा कैंडिडेट उतारेंगे, तो कहीं ना कहीं समीकरणों को ध्यान रखना है। अगर समाजवादी पार्टी दो उम्मीदवारों के साथ जाएगी तो निर्विरोध रूप से भारतीय जनता पार्टी के 8 उम्मीदवार और समाजवादी पार्टी के दोनों उम्मीदवार जो है चुनाव जीत जाएंगे।
0: जी ठीक है हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौटते हैं। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, 8 लोगों के नामों का ऐलान किया गया है और जिनका नाम हटा है उनकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन पहले इन 8 नामों का विश्लेषण करिए, क्या इसके पीछे लगता है?
3: देखिए, जो 8 नाम आए हैं उसमें अगर आप देखें तो धर्मपाल सिंह, ये अभी कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में, लोधी बिरादरी से आते हैं। इसका मतलब है बीएल वर्मा को जगह नहीं मिली क्योंकि उनका खत्म हो रहा था, तो लोधी बिरादरी को जगह दी गई है। बहुत सीनियर मंत्री हैं और उनके बारे में पहले से चर्चा थी कि ये प्रदेश अध्यक्ष होंगे। खैर, पहले नंबर पर उनका नाम है। प्रकाश पाल जो है क्षेत्रीय मंत्री रह चुके हैं, संगठन में लंबा अनुभव है, उनके नाम की उम्मीद की गई थी और वो पाल बिरादरी से आते हैं, यानी कि जो पाल गड़ेरिया समुदाय है उससे वो आते हैं, तो ओबीसी बिरादरी से हैं। विद्यासागर सोनकर, वो मछली शहर से इस बार चुनाव मैदान में थे, पूर्व एमएलसी हैं। इसके अलावा प्रदेश के महामंत्री रह चुके हैं विद्यासागर सोनकर, दलित बिरादरी से आते हैं, सोनकर बिरादरी से आते हैं। प्रियंका सिंह रावत, ये भी दलित बिरादरी से आती हैं और ये पासी समाज समुदाय से हैं। ये बाराबंकी से सांसद रह चुकी हैं और इस बार उनको राज्यसभा भेजा गया है। तो बीजेपी को जिन जिन इलाकों में झटझटके लगे थे उस इलाके से नाम चुने गए हैं। रामप्रताप सिंह चौहान ठाकुर बिरादरी से हैं और श्रुति गंगवार, माना जा रहा है संतोष गंगवार की बेटी हैं। पिछली बार इनके बारे में कहा यह गया कि ये चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उनका नाम भी शामिल है। इसके अलावा दो नाम और हैं, राधाकांत ओझा और गोपी कृष्ण पांडे, ये दोनों ब्राह्मण चेहरे हैं जिनको की जगह मिली है। तो एक जिसे कह सकते हैं एक बैलेंस दिखाई दे रहा है, जिसमें दो ब्राह्मण, आपको 3 ओबीसी हैं और इसमें 2 दलित और 1 ठाकुर बिरादरी से हैं। तो एक जो जो कहा जा रहा था उस हिसाब से ये लिस्ट इस वक्त दिखाई दी है।
0: बिल्कुल कुमार अभिषेक, ये तो कहा ही जा रहा है कि थोड़ा ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं और दो ब्राह्मणों को, जिसमें राधाकांत ओझा हैं और गोपी कृष्ण पांडे हैं, इन दोनों को तवज्जो दी गई है। मैं अभिषेक, कुमार अभिषेक आपके पास लौटता हूं, हिमांशु भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अब ये जो पूरी की पूरी सूची सामने आई है, 8 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अब इस बात की हो रही कि जो कैबिनेट में आपके सदस्य हैं जिनके पास इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, तो इथेनॉल जो चर्चा का बड़ा विषय बना, जिसने बहुत ज्यादा एक तरीके से सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया, एक नेगेटिव इमेज भी बड़ी ज्यादा बिल्ड हुई और वो इश्यू अभी भी हटा नहीं है, क्या एक बहुत बड़ा कारण रहा है वो सूची में नहीं है?
4: देखिए बिल्कुल, ये क्योंकि हरदीप सिंह पुरी को अगर इस 8 नामों की सूची में नहीं रखा गया तो कहीं ना कहीं पार्टी की एक स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन एक चीज जरूर है, अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की 2012-14 से जो सरकार है उसमें एक सिख चेहरा रहा है और अब सिख चेहरा अगर नहीं है तो इसके पीछे पार्टी की क्या रणनीति है, क्योंकि 2027 के अंदर जो है वो पंजाब के विधानसभा चुनाव भी है। रवनीत सिंह बिट्टू को भी राज्यसभा में नहीं लाया गया, उनको ये कहा गया है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब हरदीप सिंह पुरी का भविष्य क्या होगा ये आने वाले समय में तय हो जाएगा। क्या उनको कैबिनेट विस्तार के समय इस्तीफा होगा या जिस तरीके से रवनीत सिंह बिट्टू और पीजे कुरियन उनके इस्तीफे हुए थे जब उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया, उस तरीके से होगा, क्योंकि 6 महीने तक आप लोकसभा या राज्यसभा के बिना सदस्य रहे जो है।
0: ठीक है हिमांशु, आप बने रहे हमारे साथ, कुमार अभिषेक आप भी बने रहे, अपने इस बड़ी खबर पर नजर हमारी लगातार बने हुए। फिलहाल रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार गुड़ थमका लगाने पर
3: मेरे पास एक आइडिया।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
4: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: कौन सी बनानी है?
8: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
9: और वही कहाँ गए थे घूमने?
10: जीके मैक्स।
11: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
10: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
11: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट
11: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Max Paints, खुशियों के रंग।
12: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
13: गड़बड़ है।
14: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसो फास्ट इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सोल्यूशन।
15: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
16: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
17: सोच बदलो और बैंक भी।
18: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
19: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।

0: कि डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
0: अब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
1: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जेके वॉल मैक्स।
1: बेस्ट पेंट
4: जेके मैक्स।
1: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: इन एसोसिएशन विद
9: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
8: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
10: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
11: चाचा, भाषा बहुत खराब हो गया नहीं जिंदगी सबका।
12: कौन कह रहा है?
11: सब कह रहे हैं एकदम घिनास्टिक घिनास्टिक गाली दिए ये लोग।
12: बैठ, झूठ बोलता है सब एकदम। भाषा जो है वो भाव से होता है, शब्द से नहीं होता है। अब देखो वही अम्मा तुमको क्या कहती हैं?
11: कुकुर कहती हैं कभी कभी।
12: हाँ, तो क्या तुम भौंकने लगे?
11: नहीं।
12: लेकिन अगर कोई तुमको कह दे कीड़ा, कोई तुमको कह दे कीड़ा, तो फिर क्या हो जाएगा?
11: आंदोलन हो जाएगा। चाचा खेल गए फिर से।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

यूपी से बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, बीएल वर्मा का नाम नहीं। 3 ओबीसी, 2 एससी, 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय को मौका। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सीईसी ज्ञानेश कुमार के निलंबन की मांग खारिज। कहा, न्यूज रिपोर्ट के भरोसे नहीं हो सकता निर्णय। फॉर्म 6 में बदलाव के मामले पर चुनाव आयोग को नोटिस। कल चुनाव आयोग घेरेगा इंडिया गठबंधन। सीईसी और एसआईआर के खिलाफ हल्ला बोल से पहले कांग्रेस की मेगा बैठक। प्रदेश अध्यक्षों के साथ रणनीति तैयार। दो मोर्चों पर घिरी पंजाब सरकार। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी सीएम ऑफिस से जुड़े करप्शन की जांच। बीजेपी बोली, ट्रांसफर पोस्टिंग में घूसखोरी पर सफाई दें। 3 दिन में मर्डर की वारदात पर भी घेरा। मेडिसिन का नोबेल 3 वैज्ञानिकों को मिला। रोशनी से दिमाग की नसों को नियंत्रित करने का तरीका खोजा।

0: आज तक भारतीय जनता पार्टी ने यूपी से राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। यूपी से राज्यसभा के लिए बीजेपी ने 8 उम्मीदवार के नामों को सामने रखा है। यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह को भी राज्यसभा टिकट मिला है। इसके अलावा राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर को टिकट मिला है। गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया है। जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो एक उम्मीदवार लोध जाति से हैं, पाल गड़ेरिया समाज से एक और एक कुर्मी समाज से। दलित वर्ग से 2 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं, 3 सवर्ण है, 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय को टिकट मिला है। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक इस समय जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बारीकी से विश्लेषण अगर इस एक सूची का किया जाए तो सबसे प्रमुख बिंदु इनमें क्या क्या है?
1: श्वेता, देखिए, जितने लोगों ने जिनके भी अनुमान लगाए सारे अनुमान इस वक्त गलत हुए। धर्मपाल सिंह का नाम कोई नहीं बता रहा था। धर्मपाल सिंह कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में, लोधी बिरादरी से आते हैं, ओबीसी बिरादरी है और इनको पहले नंबर पर रखा गया है। यानी कि जो लोधी वो वोट बैंक जो हमेशा से बीजेपी के साथ जुड़ा रहा ओबीसी का, उससे धर्मपाल सिंह को भेजा जा रहा है। आंवला से आते हैं, बरेली के पास की ये जगह है। उसके बाद अगर आप देखें तो राधाकांत ओझा, ये बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं प्रयागराज के, बीजेपी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, वकील हैं और बीजेपी के आइडियोलॉग जैसे जाने जाते हैं। इनको ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बीजेपी ने दिया है। देखा जाए तो तीसरा नाम प्रकाश पाल का है। प्रकाश पाल जो है क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, लंबे समय से संगठन से जुड़े हुए हैं, पाल बिरादरी से आते हैं, ये ओबीसी समुदाय है और इस वक्त वो ओबीसी मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। तो देखा जाए तो ये इस बार जो नाम आए हैं वो बिल्कुल जिसे कहते हैं जातीय समीकरण साधने वाले हैं। चौथा नाम अगर आप देखें तो विद्यासागर सोनकर का नाम है। विद्यासागर सोनकर पिछली बार मछली शहर से चुनाव हार गए थे रागनी सोनकर से, लेकिन पार्टी के महामंत्री रहे हैं, पूर्व एमएलसी रहे हैं। सोनकर दलित बिरादरी से आते हैं और पूर्वांचल से आते हैं, तो मछली शहर जौनपुर के पास की सीट है, पूर्वांचल को भी एक तरीके से साधने की यह कोशिश दिखाई देती है। गोपी कृष्ण पांडे पुराने भाजपाई हैं, कानपुर से आते हैं, आइडियोलॉग हैं, बहुत बड़े पद पर नहीं रहे लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं माने जाते रहे हैं, बड़े चेहरे माने जाते रहे हैं कानपुर में, तो उनको इस बार बनाया गया है। तो एक कानपुर से और एक प्रयागराज से, 2 जगहों से 2 ब्राह्मण चेहरे बीजेपी ने ढूंढ कर निकाले हैं और ऐसे जिन पर कि कोई विवाद भी नहीं और इन दोनों का नाम का कहीं जिक्र भी नहीं, तो 2 ब्राह्मण चेहरों को बीजेपी ने दिया है। उसके बाद देखें प्रियंका सिंह रावत, ये बाराबंकी से सांसद रह चुकी हैं, पासी बिरादरी से आती हैं और ये अवध का इलाका जहां पासियों ने बीजेपी का साथ छोड़ा था, उस जगह से प्रियंका सिंह रावत को बीजेपी ने भेजा है, महिला भी हैं। और राम प्रताप चौहान हैं, ये भी पश्चिम क्षेत्र से क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के और संगठन से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उन्हें भेजा है। और श्रुति गंगवार इम्पॉर्टेंट नाम है, ये संतोष गंगवार की बेटी हैं और वहाँ जो बैंक्स के वो होते हैं उससे जुड़ी हुई रही हैं। तो संतोष गंगवार की बेटी को बीजेपी ने भेजा है जो कि इस वक्त झारखंड के राज्यपाल हैं। तो बरेली इलाके से देखें तो 2 लोग हैं, आंवला और बरेली बिल्कुल सटी हुई जगह है, यहां से संतोष गंगवार और अगर देखें तो धर्मपाल सिंह आते हैं, प्रयागराज से और कानपुर से ब्राह्मण हैं, इसी तरीके से देखा जाए तो प्रियंका सिंह रावत बाराबंकी अवध से हैं, और अगर आप देखें तो
0: क्षेत्रवार हम करेंगे इसका विश्लेषण आपके साथ अभिषेक, लेकिन हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, हरदीप पुरी, बीएल वर्मा, इनका न होना, इसमें सीधे तौर पर हम समझें कि जो मंत्रिमंडल में जिम्मेदारियां रही वो अब इस राज्यसभा कार्यकाल के साथ ही समाप्त?
2: देखिए, कह सकते हैं कि एक चीज जरूर है श्वेता जी, वो सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी सदन के सदस्य ना हो, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, तो 6 महीने मंत्री रह सकते हैं। लेकिन पूर्वोत्तर में हमने देखा कि रवनीत सिंह बिट्टू हो या फिर जो है जे पीजे कुरियन हो, उनको जब राज्यसभा में पार्टी ने नहीं भेजा उनके इस्तीफे हुए थे। अब क्या हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा दोनों के इस्तीफे होंगे या उन्हें कुछ लंबे समय के लिए जो है पार्टी रखेगी, क्योंकि अगर आप देखें तो बीएल वर्मा भी एक बड़ा लोधी चेहरा है उत्तर प्रदेश की राजनीति के हिसाब से सामाजिक समीकरणों पे, और हरदीप सिंह पुरी सरकार और पार्टी का एक बड़ा चेहरा जो है वो सिख समुदाय की तरफ से है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि पंजाब के अंदर विधानसभा चुनाव हो और ऐसी स्थिति में हरदीप सिंह पुरी भी क्या वो उनको मंत्री पार्टी रखने वाली है या फिर उनका भी इस्तीफा होगा, क्या पार्टी ने उनके किसी और चीज को लेकर भविष्य
0: पर ऐसा तो नहीं कि पंजाब के लिए कोई भूमिका तय कर रहे हो उस हिसाब से? फिर
2: देखिए बिल्कुल हो सकता है क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू भी जो है वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और हरदीप सिंह पुरी के लिए क्या पार्टी ने डिसाइड किया है क्या वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले वो 2019 में लोकसभा चुनाव जो है अमृतसर से लड़ चुके हैं, और ऐसी स्थिति में पार्टी की रणनीति क्या रहेगी ये तो आने वाले समय में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा दोनों को पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया है और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय समीकरणों को जो है ध्यान में रखते हुए अपने आठों उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी क्या तीसरा उम्मीदवार उतारेगी, अगर समाजवादी पार्टी तीसरा उम्मीदवार उतारेगी तो फिर राज्यसभा की इन 10 सीटों के लिए जो है वो मतदान होगा, अगर ऐसा नहीं होता है कि समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारती है तो ये 10 उम्मीदवार जो है वो ये कह सकते हैं कि निर्विरोध रूप से जो है वो चुन लिए जाएंगे राज्यसभा के लिए।
0: एक बड़ी चीज ये भी है कि ये सब नए नाम है राज्यसभा के लिए, यानी केंद्र की राजनीति के लिए नए नाम होंगे जो ये नामों का ऐलान जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है जो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। सभी 8 उम्मीदवार पहली बार राज्यसभा पहुंचेंगे और ऐसे में अगर हम चाहे हम धर्मपाल सिंह का मामला देखें या फिर ये बाकी सभी नाम अभिषेक, उसमें दरअसल राज्यसभा के लिए उम्मीदवारी है लेकिन सीधा आपका जो ग्रेजुएशन होता है वो हो जाता है केंद्र की राजनीति में। अभिषेक
1: देखिए श्वेता, निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो 8वें उम्मीदवार के तौर पर श्रुति गंगवार को उतारा गया है, यानी कि बीजेपी के पास जो जो अगर विधायक कम है 5-4 तो ये श्रुति गंगवार के जिम्मे होगा या बीजेपी के जिम्मे होगा, उनको जिताने की जिम्मेदारी होगी। ऐसी स्थिति में अब अखिलेश यादव अपना जो तीसरा उम्मीदवार उतारेंगे तो एक जिसे कहते हैं कुर्मी बिरादरी के सामने वो किसे उतारते हैं ये बड़ा अहम होगा। अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा था कि सलीम शेरवानी तैयार नहीं हुए, तो अब देखना है कि तीसरा उम्मीदवार अखिलेश यादव किसे उतारते हैं, लेकिन उतारेंगे ये लगभग तय माना जा रहा है। अगर आप जाति समीकरण की बात कर लें तो बीजेपी ने सचमुच इस बार इन 8 उम्मीदवारों के जरिए 2027 का चुनाव साधा है, सबके सब पहली बार राज्यसभा जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें तो ओबीसी पर ज्यादा फोकस दिखाई देता है, ब्राह्मण नाराज ब्राह्मणों को मनाने की कोशिश दिखाई देती है, दलितों में भी आप देखें तो इस बार जाटव नहीं है, और दोनों एक सोनकर और एक पासी बिरादरी जो लंबे समय से बीजेपी का कोर वोटर रहा है उसको दोबारा से जोड़ने की कोशिश, क्योंकि 2024 के पार्लियामेंट में ये जातियां बीजेपी से छिटकी थी, तो चाहे वो कुर्मी बिरादरी हो चाहे पासी बिरादरी हो ये जातियां बीजेपी से छिटक कर सपा के साथ दिखाई दी थी। तो अब ये जो आज 8 लोग नए नाम आए हैं इसमें महिलाओं का भी है, महिलाएं दो दो महिलाएं दिखाई दे रही हैं, प्रियंका सिंह रावत, श्रुति गंगवार, और दूसरी तरफ दो ब्राह्मण भी दिखाई दे रहे हैं, दो दलित भी दिखाई दे रहे हैं, और चारों जो पूरे इलाके हैं बीजेपी का वो सबका सब पूर्वांचल है, पश्चिम है, प्रयागराज है, कानपुर है, बरेली है, अवध है, तो आप देखेंगे तो एक इलाके का भी एक बैलेंस है, जातियों का बैलेंस है। और अब अखिलेश यादव के सामने ये समस्या होगी श्वेता कि 8वें कैंडिडेट एक महिला और एक ओबीसी के सामने वो क्या कोई अपना तीसरा उम्मीदवार किसी महिला को या किसी ओबीसी को उतारते हैं या नहीं, ये बड़ा चैलेंज होगा। अब देखना है कि समाजवादी पार्टी कौन सा चेहरा लाती है, क्योंकि लगभग तय है कि समाजवादी पार्टी भी अपना तीसरा कैंडिडेट बीजेपी के 8वें कैंडिडेट के खिलाफ उतारेगी श्वेता।
0: क्योंकि हिमांशु, अखिलेश यादव भले ही घोषित करके पीडीए वाले फॉर्मूले पर आगे बढ़े और अब तक दो और कहते हैं कि तीसरा भी सामने आएगा नाम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बिना कहे उन वर्गों को साधा है।
2: देखिए बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की अगर आप देखें तो चुनावी स्ट्रेटेजी बहुत कामयाब रहती है। क्योंकि वो हमेशा कोशिश करते हैं कि जातिगत समीकरणों को, क्षेत्रीय समीकरणों को साधा जाए, उन लोगों को ज्यादा मौका दिया जाए जो पीछे रहकर काम करते हैं, उनके बड़े चेहरे नहीं होते हैं, जैसा कि क्षेत्रीय अध्यक्ष जो है उनको उन्होंने जो है वो राज्यसभा के अंदर भेजने की कोई भेजा है। या आप देखें प्रियंका सिंह रावत जो पासी समाज से आती है, बाराबंकी से 2014 से 19 तक जो है लोकसभा की उम्मीदवार, लोकसभा सांसद रही हैं, 19 के अंदर उनकी टिकट काटी गई, फिर जो है 24 में उनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया। तो तमाम तरीके से अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जो एक स्ट्रेटेजी है समीकरणों को साधने की, नाम बड़े नहीं होते हैं लेकिन उसके पीछे की जो रणनीति होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जातिगत समीकरणों को साधने का काम भारतीय जनता पार्टी जो है वो 2014 से पहले से कर रही है उत्तर प्रदेश में, और उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादातर देखने को मिला है। एक 2019 का अगर आप लोकसभा चुनाव छोड़ दें तो उसके अलावा जितने भी चुनाव रहे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साधते हुए राजनीतिक जो है उनको वो फायदा मिला, और ये हमेशा उनकी कोशिश रहती है।
0: तो 10 जो राज्यसभा से यूपी से आएंगे राज्यसभा में इस बार, जिनमें से 8 का नाम बीजेपी ने घोषित किया है, अगर हम वहां पर अंकगणित को देखें तो उसके हिसाब से बीजेपी की तरफ से 8 और समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी की तरफ से एक और नाम घोषित किया जाएगा वहां पर एक मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। अभिषेक, इसमें जातियों और क्षेत्र से परे यह भी महत्वपूर्ण हो गया है देखना कि 2 महिलाएं इस सूची में शामिल हैं और उन महिलाओं के नामों के साथ भी वो समूचे यूपी को एक संदेश हो जाता है।
1: नहीं बिल्कुल श्वेता, देखें तो अब अखिलेश यादव को भी किसी महिला को ओबीसी महिला के सामने खड़ा करना पड़ सकता है। अभी तक कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अपना तीसरा जो उम्मीदवार है उसको तय कर लिया है, वो उनके मन में है, उन्होंने बताया नहीं है, बाकायदा तीसरे उम्मीदवार के लिए तैयारी है, लेकिन बीजेपी ने 2 महिलाओं को दिया है और संतोष गंगवार उस इलाके के सबसे बड़े नेता रहे हैं। इस वक्त झारखंड के राज्यपाल हैं, श्रुति गंगवार के बारे में था कि वो पिछली बार उनको लोकसभा के टिकट के लिए उनकी बहुत नाम की चर्चा थी, नहीं मिला, लेकिन इस बार 8वें सीट के लिए वो चुनाव में मैदान में होंगी। और बीजेपी ने अगर अपने पूरे एनडीए के विधायकों को एकजुट रख लिया तो फिर बीजेपी 8वीं सीट निकाल ले जाएगी। समाजवादी पार्टी को बीजेपी से भी तोड़ना पड़ेगा और सहयोगियों से भी तोड़ना पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि ओम प्रकाश राजभर की दो जो विधायक हैं वो आज भी अखिलेश यादव के टच में, और पिछली बार उनमें से एक ने तो वोट भी किया था। तो इस बार का जो डायनेमिक्स है ये वोटिंग का, वो थोड़ा पैटर्न अब अलग होने जा रहा है, क्योंकि ये 8 सीटें आसान नहीं होंगी बीजेपी से 8वीं सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए लड़ाई लड़ना, क्योंकि उनको बीजेपी के भीतर से भी वोटों का इंतजाम करना है। और बीजेपी अगर अपने एनडीए के वोट्स जितने हैं अगर वो बचाने में कामयाब रहती है तो वो 8 सीट जीत सकती है। और ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि बीजेपी ने 8 कैंडिडेट उतारे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कि बहुत ऐसा धनी व्यक्ति हो जिस तरीके से वो सब सारे तरीके से सक्षम हो और सब कुछ मैनेज कर सके, तो ये बीजेपी की जिम्मेदारी होगी 8वीं सीट जिताना। नजर अब अखिलेश यादव पर है कि वो कौन सा उम्मीदवार तीसरा कैंडिडेट उतारते हैं, क्योंकि उनके सामने महिला भी होगी, कुर्मी बिरादरी से होगी, ओबीसी, तो ये एक चैलेंज होगा अखिलेश यादव का तीसरा उम्मीदवार देखना, जबकि माना जा रहा है कि तीसरा उम्मीदवार उनका तैयार है। लेकिन एक बात श्वेता जरूर है कि बीजेपी ने जो 8 चेहरे उतारे हैं नए हैं, यंग हैं, अगर इनमें से देखा जाए तो 50 साल से ज्यादा के आसपास का एवरेज नहीं आएगा इन उम्मीदवारों में, थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश है 2027 के लिए, और वो इन कैंडिडेट्स के माध्यम से दिया जा रहा है। श्वेता,
0: महिला और क्या एक मुस्लिम महिला, अभी देखना होगा कि अखिलेश यादव के मन में जो है वो क्या उस कंपटीशन में सही दांव साबित हो सकता है। पीयूष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी मुख्यालय पर इस समय मौजूद हैं। पीयूष, न केवल इनमें 2 नाम जो कि मंत्रियों के

0: उनका नाम इसमें नजर नहीं आ रहा है पीयूष
1: जी। बिल्कुल, सभी के सभी चौंकाने वाले नाम है। और श्वेता, आप भी जानती हैं, आप भी कई बार बीजेपी मुख्यालय आई हैं और कई बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी चौंकाने वाले नाम, नए नाम एकदम से लेके आती है और सरप्राइजिंग फैक्टर इस बार भी देखने को मिला है। और आठों के आठों सिटिंग जो राज्यसभा एमपीज हैं उन सभी को टिकट नहीं दिया गया है और आठों के आठों नए उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, जो कहीं ना कहीं एक रणनीति का हिस्सा है। और ये सीधा सीधा मैसेज है कि जो संगठन से जुड़े लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो काफी लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते नहीं, अब उनको मौका देने की बात आ चुकी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हरदीप सिंह पुरी, जिनके पास भारी भरकम मंत्रालय काफी लंबे समय तक रहे और लंबे समय तक वो मंत्री रहे, अगर वो अब राज्यसभा नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब उनकी जगह कोई नया चेहरा जरूर पेट्रोलियम जैसा बड़ा मंत्रालय संभालेगा। बीएल वर्मा जो एमओएस है और एक बड़ा विभाग उनके पास भी, अगर वो राज्यसभा नहीं जाते हैं तो जरूर उनको इस्तीफा देना होगा और कोई नया चेहरा उनकी जगह आएगा। इसी के साथ साथ ब्रिजलाल, गीता शाक्या, नीरज शेखर और कई ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चाएं चल रही थी कि इनको टिकट मिल सकती है, उनको टिकट नहीं मिली है। स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी जो बड़े चेहरे हैं, संगठन महामंत्री हैं, उनको लेकर भी चर्चाएं काफी ज्यादा चल रही थी कि इनको टिकट पार्टी दे सकती है, राज्यसभा भेज सकती है, लेकिन फिलहाल अभी पार्टी इस मूड में नहीं है। और आठों के आठों नए नाम जिन पर कहीं से कोई भी चर्चा नहीं चल रही थी, उन सभी के आठों नए उम्मीदवारों को बीजेपी ने टिकट दी है। अब इसमें सबसे बड़ी बात एक और है कि पीडीए का जवाब कहीं ना कहीं पार्टी देने की कोशिश कर रही है। पिछड़ा दलित आदिवासी जो एक फैक्टर है अखिलेश यादव का, उसकी जगह ओबीसी को वेटेज दिया गया। अगर हम इस सूची की बात करें तो तीन उम्मीदवार जो है वो ओबीसी समाज से आते हैं, दो ब्राह्मण समाज से, दो एससी कम्युनिटी से, और इनमें से जो एससी कम्युनिटी से उनमें से एक महिला है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे वेटेज पूरा का पूरा ओबीसी को दिया गया और तीन उम्मीदवार जो ओबीसी समाज से इसमें आते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा अनाउंसमेंट पार्टी की तरफ से किया गया है और सूत्रों का यह भी दावा है कि बीएल वर्मा जो केंद्रीय मंत्री हैं, हो सकता है जो बदायूं से आते हैं वो विधानसभा चुनाव भी लड़ लें, इसकी भी चर्चा पार्टी के कुछ लोगों के बीच में रही है। तो हो सकता है कि वो जल्द सक्रिय आपको दिखाई देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। अब इन सब अनाउंसमेंट्स के बाद श्वेता, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो छह मंत्री इससे पहले मोदी मंत्रिमंडल में थे उनमें से रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन ने तो इस्तीफा दे दिया है। हर्ष मल्होत्रा तो दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष हैं, पंकज चौधरी यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष हैं और हरदीप पुरी बीएल वर्मा, यानी छह मंत्री। अब कहीं ना कहीं उम्मीद यही जताई जा रही है कि इन छह के छह मंत्रियों में से दो जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, बाकी जो चार बचे हैं इनको अगला अगर कैबिनेट का रीशफल होता है तो उनको जगह ना मिले, संभवतः जगह ना मिले। ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जिनको जगह
0: कयास अभी बहुत सारे हैं। अभी एक जो सूची बीजेपी की सामने आई है कि यूपी से कौन राज्यसभा का उम्मीदवार होगा, उसमें हिमांशु ये भी समझाइए कि ये जिस एक विस्तार, जिस रीशफल की बात हम इतने दिनों से कर रहे हैं, आखिरकार क्या अब वो होगा, अब जब हम इतने सारे मंत्रियों को हटते हुए देख रहे हैं।
2: देखिए, दो चीजें आप समझिए, जो बात पीयूष कह रहे थे, रवनीत सिंह बिट्टू और पीजे कुरियन, उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया, उनका इस्तीफा हो गया। हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा, इनको राज्यसभा नहीं भेजा गया है तो इनका क्या भविष्य होगा ये पार्टी तय करेगी। हाँ, ये छह महीने तक जो है बिना किसी सदन में सदस्य रहे, यानी लोकसभा राज्यसभा में सदस्य रहे, छह महीने तक मंत्री रह सकते हैं। क्या सरकार ये स्ट्रेटेजी में है, क्योंकि पंजाब के चुनाव में मैंने पहले भी बताया सिख चेहरा है पार्टी का हरदीप सिंह पुरी, लोध समाज से आते हैं बीएल वर्मा, इनको क्या विधानसभा, दोनों ही मंत्रियों को विधानसभा चुनाव लड़वाया जाएगा, ये पार्टी की स्ट्रेटेजी है या अन्य कोई स्ट्रेटेजी है। हाँ, कैबिनेट रीशफल ड्यू है, लेकिन कैबिनेट रीशफल से पहले मैंने पहले भी बताया कि अभी तक लोकसभा यानी संसद जो है वो प्रवोक नहीं की गई है, जो अमूमन संसद का सत्र जब समाप्त होता है प्रवोक कर दी जाती है। तो उससे पहले सरकार की ये स्ट्रेटेजी है कि नारी शक्ति अधिनियम बिल जो है उसको पास कराया जाए और उसके बाद जो है कैबिनेट रीशफल हो, क्योंकि अगर कैबिनेट रीशफल होगा तो उसमें जो सहयोगी दल है उनकी मांगे ज्यादा रहेंगी, जैसे एकनाथ शिंदे ग्रुप के जो शिवसेना है उनके छह सांसदों की संख्या बढ़ी है, जेडीयू जरूर चाहेगी कि उनके एक सदस्य को और जगह मिले। इसके साथ साथ जो टीएमसी का एक बागी गुट टूट कर आया है, जिसको अभी तक पूरी तरीके से लोकसभा के अंदर मान्यता नहीं मिली है, अगर उस पर मान्यता मिलती है और चुनाव आयोग का फैसला बागी गुट के की तरफ आता है तो उस गुट में से भी क्या किसी को मंत्री पद दिया जाएगा, ये तमाम बड़े ऐसे

0: चीजें हैं जिसको सरकार अभी कुछ लंबे समय तक तो नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए टालना चाहेगी,
1: जी
0: क्योंकि ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की पहली प्रायोरिटी ये है कि नारी शक्ति अधिनियम बिल उसको पास करा लिया जाए, क्योंकि अगर
1: और
0: वो
1: उसके
0: पास
1: बाद
0: होता है।
1: गुंजाइश है कि शायद कैबिनेट में बदलाव देखने के लिए मिले। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है और उसमें तमाम समीकरणों के साथ साथ अहम यह है कि दो मंत्री जो राज्यसभा यूपी से पहुंचे थे उन दो का नाम यहां पर नहीं है, बीएल वर्मा और हरदीप पुरी। अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
2: इन एसोसिएशन विद
3: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
7: का चचा का अखबार पढ़ रहे हैं?
8: अरे पढ़ रहा था भैया, ये कुछ स्कूल स्कूल की खबर है, इसमें देश दुनिया के वही जान लेते हैं। और बताओ
7: का देश दुनिया खबर जानी है? पूरा सिस्टम डिसमिस आया हुआ है स्कूल सब का।
8: स्कूल डिसमिस आया हुआ?
7: हाँ।
8: अरे तुमको क्या लग रहा है, कोई कमी है देश का
7: है?
8: ये कमी नहीं है,
7: क्या है,
8: योजना है, स्कीम है, पॉलिसी है।
7: कैसी स्कीम?
8: अरे ये सब पॉलिसी है। कैसे, जब सब पढ़ लिख जाता है आदमी तो चला जाता है कहाँ, कॉर्पोरेट में चला जाता है, वहां मजदूरी करने लगता है, बड़ी बड़ी अमेरिका चला जाता है। जब नहीं पढ़े लिखेगा तो क्या करेगा, झक मार के नेतागिरी करेगा मोहल्ले में, इलाके में, और बनेगा MP MLA। समझा? तो जो राजनीति में युवा शक्ति को लाने का जो स्कीम था, उसकी वजह से हमारा डिसमिस आया हुआ है सारा स्कूल का व्यवस्था। समझा?
7: अच्छा, इसकी मतलब, और हम भविष्य में ईश्वर चंद विद्यासागर, APJ अब्दुल कलाम जी से बने थे, लालटेन के नीचे, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ के, वो वाला सिस्टम चल रहा है मतलब।
8: बिल्कुल ऐसा ही तो बनेगा देश, विश्व गुरु।
7: आई चचा खे

0: एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों के बीच सीईसी ज्ञानेश कुमार पर संग्राम बढ़ता जा रहा है। मांग इस्तीफे की हो रही है, शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा तेज होता जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार जंग छिड़ी है। मुंबई में भी विरोध की आग धधक रही है। इस बीच सीईसी के बहाने केंद्र सरकार पर सियासी हमले भी तेज होते जा रहे हैं। अब विवाद के बीच बड़ा हमला हुआ है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो हाल के सालों में हुए सभी चुनाव को गैर कानूनी बता रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
1: देश जो चल रहा है वो इलीगल इलेक्शन पे चल रहा है। मोदी इलीगल प्राइम मिनिस्टर, शाह इलीगल मिनिस्टर, और जितने भी अब चीफ मिनिस्टर्स बने कहां के भी, वो सब इलीगल। सबको डिसॉल्व करना, इलेक्शन कराना और बैलेट पे इलेक्शन कराना, क्योंकि ईवीएम का मिसयूज हो रहा है, ये खुद ही उनके लोग कर रहे हैं।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेताओं के हमले तेज हैं। तमाम संगठनों ने भी सड़क पर मोर्चा खोल रखा है। इस बीच सरकार और विपक्ष में वार पलटवार का दौर चल रहा है। विपक्ष सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। चर्चा ये भी है कि विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर भी विचार कर रहा है। इस सब के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

क्या यूपी में कांग्रेस प्लान बी पर बढ़ेगी? क्या छोटे दलों में विकल्प ढूंढ रही कांग्रेस? क्या यूपी में है राहुल अखिलेश का कुछ सीक्रेट प्लान? उत्तर प्रदेश की कांग्रेसी सियासत के चेहरों ने अब तक जो रुख जाहिर किया है उसी से ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 403 सीटों वाली विधानसभा में 200 सीट मांग कर रही है तो अखिलेश लगातार जीत के आधार पर ही सीट की बात कर रहे हैं। ऊपर से छोटे छोटे दलों के नेता राहुल की परिक्रमा करना शुरू कर चुके हैं, चाहे वो अपनी जनता पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य से राहुल गांधी की मुलाकात हो या यूपी में चौहान लोनिया ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले महान दल के अध्यक्ष संजय चौहान की राहुल से मुलाकात या फिर अपना दल कमेरावादी पार्टी के नेता पंकज निरंजन से राहुल की भेंट। 2022 के पहले बने भागीदारी मोर्चा के ज्यादातर दल कांग्रेस के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी छोटे दलों के नेता बारी बारी से राहुल गांधी से मिल चुके हैं। दरअसल यूपी में जिस तरह समाजवादी गठबंधन में शर्तों की बात सामने आई है उसमें राहुल अखिलेश के सियासत के सीक्रेट मायने कुछ और भी हो सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इन छोटे छोटे दलों को जोड़कर 2017 के पहले के बीजेपी के फार्मूले को अपना रही है, जब अमित शाह ने इन्हीं छोटी पार्टियों और नेताओं को अपने साथ जोड़कर समाजवादी पार्टी को मात दी थी। वैसे छोटे दलों से कांग्रेस की मुलाकातों का एक मायने और है, जिसमें राहुल यूपी में समाजवादी वर्चस्व के मुकाबले विकल्प की तलाश कर सकते हैं। खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ने की मांग की है और लगभग दर्जन पर सीटों की मांग रखी है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कहा है कि सिंबल तो कांग्रेस का ही होगा। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी चेतावनी देती है कि यूपी में कांग्रेस के सामने सिर्फ समाजवादी ही विकल्प है, वरना यूपी में का नाम लेवा प्रतिनिधित्व भी नहीं होता। दरअसल समाजवादी पार्टी बार बार संकेत दे रही है कि यूपी में कांग्रेस का बड़ा भाई समाजवादी है और अखिलेश ने जो जिताऊ कैंडिडेट की शर्त कांग्रेस के सामने रखी है उसमें कांग्रेस छोटे दलों के अंदर जातिगत बुनियाद पर जिताऊ चेहरे तलाश रही है। कुमार अभिषेक लखनऊ आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा का नाम नहीं, 3 ओबीसी, 2 एससी, 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय को मौका। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सीईसी ज्ञानेश कुमार के निलंबन की मांग वाली याचिका खारिज, कहा न्यूज रिपोर्ट के भरोसे नहीं हो सकता निर्णय। फॉर्म 6 में बदलाव के मामले पर चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया। कल चुनाव आयोग घेरेगा इंडिया गठबंधन, सीसी और एसआईआर के खिलाफ हल्ले बोल से पहले कांग्रेस की मेगा बैठक, प्रदेश अध्यक्षों के साथ रणनीति तैयार की।

ने सीबीआई को सौंपी। बीजेपी बोली ट्रांसफर पोस्टिंग में घुसखोरी, परदेश सफाई, तीन दिन में मर्डर की वारदातों पर भी घेरा। मेडिसिन का नोबल, तीन वैज्ञानिकों को मिला रोशनी से दिमाग की नसों को नियंत्रित करने का तरीका खोजा।

0: फ्लाई दुबई घटना के पीछे कितने देशों की लापरवाही, कट्टरपंथी ओमानी पायलट को इजराइल में एंट्री की कैसे मिली छूट, जुलाई में हमामी ने बेन गुरियन पर हमला क्यों टाला, अमेरिकी अखबार के खुलासे से क्यों घिर गए नेतन्याहू, क्या था कट्टरपंथी ओमानी को पायलट का असली इरादा, आतंकी सोच वाले पायलट पर इसराइल में कैसे पा गई फूंक, क्या है हमामी का सीरिया से ऑस्ट्रेलिया तक का कनेक्शन, अब तक कितने देशों तक फैला फ्लाइट कांड की जांच का जाल, इसराइल ने 180 जानों को खतरे में क्यों डाला, कैसे हुई इतनी बड़ी चूक,
1: नमस्कार, रणभूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। फ्लाई दुबई की घटना में हर पल नए खुलासे हो रहे हैं, अगले आधे घंटे में हम आपको उन तमाम खुलासों के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की जो चार तस्वीरें हैं, अलग अलग रणभूमि से जो खबरें मिल रही है वो आपको दिखा देते हैं। रूस के साइबेरिया की एक लैब में आखिरी क्या हुआ है कि उसे वुहान पार्ट 2 कहा जाने लगा, प्लेग जैसी महामारी पर रिसर्च करने वाली लैब टेक्नीशियन की मौत कैसे हुई और क्यों रूस ने चीन की तरह इस घटना की जानकारी पर चुप्पी साध रखी है, फिर ईरान पर बड़े हमलों की तैयारी कर रहा है अमेरिका के सारे बमवर्षक विमान ब्रिटेन के एयरबेस से क्यों खाली कर दिए गए, आखिर ये सारे बमवर्षक विमान कहां गए, तीसरी खबर तीसरी तस्वीर ईरान से ही आ रही है जहां पर महिला को काशनिकोव यानी AK-47 जैसी राइफल की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या ईरान को अमेरिका के जमीनी हमलों का डर सता रहा है या फिर वो अंदरूनी विद्रोहियों से निपटने की तैयारियां कर रहा है, चौथी तस्वीर यूक्रेन के रूस पर हमले की है, लेकिन सवाल यह है कि नाटो देश पोलैंड में अलर्ट क्यों जारी किया गया, क्या रूस और नाटो की टक्कर अब ज्यादा दूर नहीं दिखती और शायद इसी वजह से नाटो मुल्क अब ये तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लाई दुबई की, यहाँ फ्लाई दुबई की फ्लाइट 1073 के ओमानी को पायलट हमाम अल हमामी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इजरायली न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि आतंकी को पायलट विमान को तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर क्रैश करना चाहता था, उसने इसकी पहले भी कोशिश की थी और इसी साल जुलाई में उसने ही कोशिश की थी, लेकिन आखिरी समय में उसने इस प्लान को टाल दिया क्योंकि क्रू का एक सदस्य उसका बहुत अच्छा दोस्त था। इसराइल के चैनल 12 और वाईनेट ने रिपोर्ट में बताया है कि हमामी ने यूएई के जांचकर्ताओं को अपने प्लान के बारे में भी जानकारी दिया, उसने बताया कि वो कैप्टन स्मिथ का को हमला करने के बाद कॉकपिट में अपने कंट्रोल में लेकर उड़ान को सामान्य तरीके से जारी रखना चाहता था, उसका आगे का प्लान था कि लैंडिंग के सारी मंजूरी ले ली जाए और आखिरी पलों के अंदर विमान को किसी इमारत या किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से टकरा दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की कैजुअल्टीज हो, इसी रिपोर्ट में उसने जुलाई प्लेन की बात भी कबूल किया जिसमें उसने आखिरी पलों में इसे टालने की बात खुद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को बताए, वो जून में ही इसराइल जाकर रेकी भी कर चुका है और हाल ही के महीनों में तो वो कई बार बेन गुरियन एयरपोर्ट जा चुका है, इस बार उसने कैप्टन स्मिथ को पीछे से कई बार कुल्हाड़ियों मारी जिससे वो गिर गए, इस दौरान हमामी ने विमान का कंट्रोल लेकर उसे गिराने की कोशिश की लेकिन कैप्टन स्मिथ ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब हो गए और यात्रियों से हमामी को कब्जे में ले लिया और उसे ये करने से रोक दिया। चैनल 13 के मुताबिक हमामी ने जांचकर्ताओं को यह भी बताया है कि उसने ओमान एयर से निकलने के बाद जानबूझकर फ्लाई दुबई को चुना क्योंकि उसके विमान तेल अवीव की उड़ान भरते रहते हैं, यानी ये सारी तैयारियां ये सारे तरीके पहले से ही उसने तय कर रखे थे। अब अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी इसको लेकर कई खुलासे किए, दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक फ्लाई दुबई की फ्लाइट 1073 के को पायलट को लेकर कई बड़े जानकारियां सामने आई है, अखबार के मुताबिक कई सुरक्षा खामियों के चलते आतंकी इरादों वाला ये को पायलट हमामी कॉकपिट तक पहुंच गया, यही नहीं वो कई बार इसराइल की यात्रा भी कर चुका है इससे पहले कि वो कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ को कुल्हाड़ी चलाता ओमान यूएई और इसराइल के अधिकारियों के पास अल हमामी कोल कॉकपिट तक पहुंचाने से रोकने के लिए कई मौके थे, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं किया गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान ने हमामी की ऑनलाइन गतिविधियों की जांच की थी और पाया था कि वो कट्टरपंथी विचारधारा से बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता है, इसलिए उसे ओमान एयरवेज की उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी गई थी। ये साल 2024 की बात है। इसके बाद अधिकारियों ने उसे उड़ान भरने से रोक दिया। उसे डी रेडिकलाइज प्रोग्राम यानी कट्टरपंथ से दूर करने वाले कार्यक्रम में भेज दिया गया था। डेस्क जॉब पर भी लगा दिया गया था। हालांकि इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि ओमान ने इस चिंताओं के बारे में बड़े स्तर पर जानकारी नहीं दी थी। जब फ्लाई दुबई ने फरवरी 2026 में हमामी को नौकरी पर रखा तो एयरलाइंस ने उसके पिछले अनुभव, उसके बैकग्राउंड की जांच के लिए ओमान से संपर्क करना जरूरी नहीं समझा। फ्लाई दुबई की प्रक्रिया की जानकारी रखने वाले लोग ये बताते हैं कि एयरलाइंस ने उसके आपराधिक बैकग्राउंड की जांच की थी, लेकिन उसकी कट्टरपंथी सोच का ये अंदाजा उन्हें भी नहीं था। बाद में हमामी को दुबई तेल अवीव रूट पर तैनात कर दिया गया और मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि उसने कई बार इस रूट पर उड़ान भी भरी। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी फ्लाई दुबई के उन कर्मचारियों की जांच कर रहे हैं जो भर्ती प्रक्रिया में शामिल होते हैं। दूसरी तरफ फ्लाई दुबई ने जांच जारी रखने के दौरान कोई भी टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है। यानी अब भी इस मामले पर कई ऐसे बड़े खुलासे होने हैं जिसको लेकर संक्षेप या फिर आप कह सकते हैं कि अभी और चीजें आनी बाकी है। अब आपको बताते हैं कि किसने कहा और कहां और कैसे चूक हुई। सबसे पहले इजराइल की चूक को लेकर बात करते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि हमामी को रोकने का आखिरी मौका इजराइल को मिला था। जी हाँ, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सारी जानकारी अब सामने आने लगी है। ओमान जैसे देशों के पायलटों को इसराइल में उड़ान भरने की मनाही है क्योंकि ओमान का इसराइल के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं है। इसलिए सैद्धांतिक रूप से हमामी को सिर्फ उसके ओमानी होने के आधार पर ही रोक दिया जाना चाहिए था। विदेशी एयरलाइंस को इसराइल पहुंचने से पहले यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सूची जमा करनी होती है। इसराइल के टैक्स अथॉरिटी जो यात्रियों की जानकारी का डेटाबेस रखती है उसके अनुसार फ्लाई दुबई ने फ्लाइट 1073 के लिए यात्रियों और क्रू की सूची जमा की थी। टैक्स अथॉरिटी के मुताबिक उसका ये कहना है उसका कि काम यहीं तक था, आगे का काम इसराइल के ट्रांसपोर्ट को करना था, इसराइल के अधिकारियों को करना था, यानी उसे चेक करना इसराइल की जिम्मेदारी थी। और एक ओमानी को पायलट इसराइल के लिए उड़ान कैसे भर सकता है। इसराइल के लिए सुरक्षा कैबिनेट ने 2021 और 2025 में यह तय किया था कि विदेशी उड़ानों की सुरक्षा और उनकी निगरानी का जिम्मा घरेलू सुरक्षा एजेंसी यानी शिनबेट के हटाकर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को पूरी तरीके से सौंप दिया जाए। विपक्ष का आरोप है कि विभाग की मंत्री मीरी रेगेव ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार तो किया है लेकिन उनके मंत्रालय ने विदेशी उड़ानों के पायलटों की ठीक से जांच नहीं की। दूसरी तरफ इसराइल के परिवहन मंत्रालय का कहना है कि उसे नहीं लगता कि उसे विदेश एयरलाइंस के पायलट क्रू की जांच करने का अधिकार है या वो इसमें एक्सपर्ट्स हैं। लापरवाही की हद तो यह हो गई है कि इजरायली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के 2023 के डेटाबेस बनाने के बाद कभी भी यात्रियों या फिर क्रू की सूची नहीं मांगी गई। मंत्रालय के अनुसार उसे पता ही नहीं था कि वो डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकता है। इसके बजाय मंत्रालय ने कहा कि फ्लाई दुबई अपने पायलट के बैकग्राउंड और नागरिकता की जांच करने के लिए लिखित रूप से सहमति हो गया था, यानी इजराइल अपनी ओर से अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर यूएई के भरोसे थे। इसके अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह भी बताती है कि 2024 की एक गोपनीय रिपोर्ट में पहले ही एयरलाइंस इसराइल आने वाली विदेशी एयरलाइंस की उड़ानों की सुरक्षा में कमी के बारे में चेतावनी दी गई थी, इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। यानी ये लैप्सेस पहले से चलते आ रहे थे जिसका फायदा हमामी जैसे शख्स ने उठाया और वो लगातार बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। हमामी के कट्टरपंथी होने का सबूत उसने सोशल मीडिया अकाउंट से भी मिला है। उसकी ओर से जारी वीडियो में ओसामा बिन लादेन के उत्तराधिकारी ऐवान अल जवहरी को श्रद्धांजलि दी गई। यही नहीं, आत्मघाती हमलावर की तस्वीर भी मिली है जो अफगानिस्तान में अमेरिकी बेस पर हुए हमले का जिम्मेदार था। इससे पहले खुद ओमान ने उसे अपनी एयरलाइंस के कट्टरपंथी होने के चलते हटा दिया था। इन सब के बावजूद उसे इसराइल जाने वाले विमान के क्रू के तौर पर कई बार जाने की इजाजत दी गई। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि ओमान के को पायलट हमाम अल हमामी की कट्टरपंथी कुंडली कैसे खुल गई है।

0: फ्लाई दुबई 1073 के को पायलट हमाम अल हमामी का ये लिंक्डइन पेज है। ओमान एयर ने इसे कट्टरपंथी सोच के चलते नौकरी से निकाल दिया था। इसे कट्टरपंथ से बुक कराने वाले रिहैब सेंटर भेजा गया था, लेकिन फ्लाई दुबई ने बिना इतिहास खंगाले इसे नौकरी पर रख लिया। हमामी के लिंक्डइन पेज पर दो वीडियो पोस्ट किए गए थे। पहला वीडियो एक कंपाइलेशन वीडियो है जिसमें इजराइल की राष्ट्रीय विमान कंपनी अल एल के विमानों को दिखाया गया है। ये विमान टारमैक पर खड़े दिख रहे हैं और आसमान में भी उड़ान भर रहे हैं। जब इस वीडियो की जियो लोकेशन पता की गई, तो ये दुबई के निकले। ये वीडियो 11 अक्टूबर 2023 को शूट किया गया था, यानी इजराइल पर हमले के ठीक चार दिन बाद। उस समय हमामी ओमान एयर में था और उसने दुबई से ओमान के मस्कट जाने वाले विमान के कॉकपिट से ये वीडियो बनाया था। सबसे चौंकाने वाली बात वीडियो के आखिर में दिखाई देती है। हमामी वीडियो के आखिर में एमन अल जवाहिरी को श्रद्धांजलि देता है, वो जवाहिरी जिसने ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अलकायदा की कमान संभाली थी। जवाहिरी के नीचे अलकायदा के एक सुसाइड बॉम्बर की तस्वीर है, जिसने 2009 में अफगानिस्तान में CIA के पोस्ट पर खुद को उड़ाकर 9 लोगों को मार डाला था। हमामी ने जो दूसरा वीडियो पोस्ट किया है वो AI से बनाया हुआ था। इसमें वो इसराइल की यरूशलम में अल अक्सा के अलावा सऊदी अरब के मदीना और मक्का को दिखा रहा है। ये इस्लाम के तीन सबसे पवित्र स्थल हैं। चौंकाने वाली बात ये भी है कि ये वीडियो फ्लाई दुबई के विमान को हाईजैक करने की कोशिश के 9 घंटे बाद इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर पोस्ट किए गए। तब तक हमामी को हिरासत में लिया जा चुका था। अब तक ये साफ नहीं कि ये पोस्ट पहले से शेड्यूल किए गए थे या किसी और ने हमामी के अकाउंट से उन्हें पोस्ट किया है। मेटा और लिंक्डइन से जानकारी मांगी जा रही है। लिंक्डइन का ये अकाउंट डिलीट किया जा चुका है और उसे रिकवर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस आतंकी सोच वाले को पायलट को फ्लाई दुबई ने कैसे नौकरी पर रखा और कैसे इसराइल के बेहद संवेदनशील रूट पर तैनात कर दिया। वहीं इसराइल ने एक ओमानी पायलट को अपने देश में आने की इजाजत कैसे दी, जबकि उसका ओमान से राजनयिक संबंध नहीं है। आज तक ब्यूरो।
1: जानिए आपने देखा कि कैसे एक चूक का, एक गलती का फायदा लगातार ये को पायलट हमामी उठाता रहा। आइए आपको बड़ी स्क्रीन पर ले चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार तीन देशों के कहां कहां पर लापरवाही की और कैसे तीनों देशों की गलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओमान की। हमामी के कट्टरपंथी रिकॉर्ड की जानकारी थी, लेकिन उसको उस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया। अब बात करते हैं UAE की। पायलट के ओमानी रिकॉर्ड जांच नहीं की गई, उसके कट्टरपंथी या फिर उसकी रेडिकलाइजेशन को लेकर बहुत प्रमुखता से जांच नहीं की गई। अब इसराइल की गलती है, पाबंदियों के बावजूद ओमानी पायलट को आने दिया गया, यानी ये पाबंदी जो इसराइल के लिए एक सुरक्षा चूक के तौर पर है ये किया गया। अब आप बात कर सकते हैं ओमान की एक और, सुरक्षा कारणों से उड़ान भरने की से हटाया गया। जब किसी पायलट को, किसी को पायलट को हटा दिया गया तो आखिरकार उसके बारे में फ्लाई दुबई ने जांच क्यों नहीं की? सुरक्षा जांच के बिना ही नौकरी पर रख लिया गया और उसके बाद मोसाद, शिनबेट जैसे एजेंसियां नाकाम रही। उनको ये इनपुट ही नहीं था कि उनके देश में आने वाला एक शख्स लगातार इस रेडिकलाइज तरीके से इतनी हद तक निकल सकता कि कभी भी उनके देश पर भी बड़ा अटैक कर सकता। अब ओमान, गंभीर जानकारी दूसरे देशों को नहीं बताई गई। UAE संवेदनशील तेल अवीव रूट पर तैनात किया गया, यानी जो ऑलरेडी वॉर जोन में तब्दील एक देश है, लगातार रूट है, उसी रूट के ऊपर उसी जगह पर इस पायलट को भेजा गया। एक ही पायलट बार बार इसराइल आता रहा, उसके वेरिफिकेशन एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स उसके वेरिफिकेशन को लीक किया गया या फिर उसके बारे में जानकारी हासिल नहीं की गई। यानी हमने आपको तीनों देशों के बारे में बताया कि हर स्टेज वाइज तरीके से कैसे इन देशों से गलतियां हुई और शायद इसी वजह का फायदा लगातार ये कोपायलट हमामी उठाता रहा। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार फ्लाई दुबई के कोपायलट हमाम अल हमामी के ऑस्ट्रेलिया और सीरिया कनेक्शन की जानकारियां भी सामने आ रही है। जहां सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया कनेक्शन को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर ऑस्ट्रेलियाई पुलिस अब ये पता लगाने में लग रही है कि हमामी का ऑस्ट्रेलिया से क्या संबंध है। रिपोर्ट के मुताबिक उसे 2014 में ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीजा मिला था। 2015 से 17 के बीच उसने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की थी। बाद में 2019 में उसका स्टूडेंट वीजा रद्द कर दिया गया। वजह थी कि वो जिस कोर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था उसमें अब दाखिला नहीं था। उसके अलावा उसका सीरिया कनेक्शन भी सामने आया। हमामी के जो पिता है वो ओमानी है, लेकिन माँ जो है वो सीरियाई मूल की है। हमामी ने बचपन का कुछ समय सीरिया में भी बताया और उस वक्त सीरिया महायुद्ध की चपेट में था। अब जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने में लगी हैं, ये कोशिश कर रही हैं कि सीरिया में रहने के दौरान क्या उसने हमामी के विचारों में कट्टरपंथ का असर पड़ा, यानी एक तरफ ऑस्ट्रेलिया में उसकी पढ़ाई, करीब 2 साल का ठिकाना, तो दूसरी तरफ सीरिया में बचपन और गृह युद्ध के दौरान उसका अनुभव। जांच एजेंसियां हमामी में इस पुराने बैकग्राउंड को भी खंगाल रही है ताकि ये समझा जा सके कि कट्टरपंथी बनने की शुरुआत आखिर उसकी कहां से हुई और उसको रेडिकलाइज किसने किया, किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया, ये भी जांच परख की जा रही है। चलिए, हमामी को लेकर हमने आपको तमाम जानकारियां दी जो इस समय इन्वेस्टिगेशन रडार पर है। लेकिन अब रुक करते हैं ईरान अमेरिकी तनाव के बीच आई एक बड़ी खबर को लेकर, जहां पर ईरान युद्ध के बीच ब्रिटेन से अमेरिका ने अपने बम वर्षक विमान हटा लिए और इसके पीछे की वजह एक संदिग्ध आतंकी साजिश बताया जा रहा है। ब्रिटेन के आरएएफ फेयरफुट एयरबेस पर अमेरिका ने अपने सभी B-52 B-1 बम वर्षकों को वापस अमेरिका भेज दिया है। यही वो एयरबेस है जहां से ईरान पर हमलों के लिए अमेरिकी बम वर्षक लगातार उड़ान भर रहे थे। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने एक अधिकारी के मुताबिक इन विमानों को अमेरिका में उसके घरेलू ठिकानों पर वापस भेज दिया गया। हालांकि संवेदनशील सैन्य गतिविधियों की वजह से अधिकारियों ने अपनी पहचान नहीं बताई है और बताया जा रहा है कि सितंबर के आखिरी में आरएएफ फेयरफुट में एक सुरक्षा घटना सामने आई थी। कई संदिग्ध लोग को 3 सफेद वैन के साथ पकड़ा गया था। इसके बाद ब्रिटिश एजेंसियों ने आतंकवादी हमलों की साजिश के जांच शुरू कर दी। पिछले हफ्ते मध्य लंदन में एक ब्रिटिश ईरानी नागरिकों को गिरफ्तार भी किया गया और इसी मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा चुकी है। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर भी छोड़ दिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने इस साजिश के तार ईरान से जुड़े होने की बात कही है। ईरान ने किसी भी भूमिका से इंकार किया है, लेकिन तेहरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि जो भी सैन्य अड्डा ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल होगा वो उसके लिए वैध निशाना माना जाएगा। अमेरिका का ये कदम ऐसे वक्त मर आया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ आगे की कार्रवाई का फैसला ले चुके हैं और लगातार ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान के सामने अब आखिरी या आसान रास्ता या मुश्किल रास्ता है, यानी ईरान पर दबाव बनाने के साथ अमेरिका अब अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा को लेकर भी सतर्क हो गया और इसी वजह से इन एयरक्राफ्ट को इस ब्रिटिश एयरबेस से हटा दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि अगली खबर, जहां पर अमेरिका और इसराइल के साथ तनाव के बीच ईरान ने अब अपने आम लोगों को भी युद्ध की तैयारी और युद्ध के लिए तैयार रहने की शुरुआत कर दी और इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। तेहरान में महिलाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इमाम हुसैन स्क्वायर पर बने ट्रेनिंग सेंटर में महिलाओं ने सैन्य अधिकारियों और जो ट्रेनर्स थे उन्होंने ये ट्रेनिंग दी। उन्हें हैंड ग्रेनेड समेत दूसरे हथियार चलाने की प्रैक्टिस कराई गई। ईरान में शनिवार को हफ्ते तीर स्क्वायर पर भी ऐसा ही नया ट्रेनिंग सेंटर किया स्थापित किया गया था, जहां पर आम नागरिकों को संभावित जर्मनी हमले अब जमीनी हमले के से निपटने की तैयारियों के लिए कहा गया। ट्रेनिंग में शामिल 45 साल की राहिले ने बताया कि युद्ध की स्थिति में अपने परिवार और अपने इलाके की सुरक्षा करना सीखने में उनका डर कम होगा और ये ईरान ने अब सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी संभावित जमीनी ट्रेनिंग देने की तैयारियां की जा रही। और देखिए, अब बात करते हैं यूक्रेन में रूस के ड्रोन हमलों के बीच, जहां पर रूस और नाटो के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहां बड़ी खबर ये आ रही है कि रूसी ड्रोन हमले को देखते हुए पोलैंड ने अपने जो ल्यूबलिन इलाके में आपातकाली अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को मोबाइल पर और RCB अलर्ट भेजकर तत्काल खतरे से लेकर सतर्क रहने की बात की गई है और इलाके में यूक्रेन की सीमा में करीब है और इसलिए रूस के ड्रोन हमलों के बीच पोलैंड ने भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी। इसी बीच जर्मनी की खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने रूस के खतरे को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बाल्टिक देशों के खिलाफ रूस की तरफ से छोटे स्तर पर सैन्य कार्रवाई की आशंका है और हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल नाटो के इलाकों में रूस के बड़े हमलों की उम्मीद नहीं है। लेकिन जर्मन खुफिया विभाग के मुताबिक उनकी चेतावनी के मुताबिक जर्मनी में ठिकानों को निशाना बनाकर हमले का खतरा अब भी बना हुआ है, यानी यूक्रेन में जारी जंग का असर नाटो के आसपास के इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। पोलैंड अलर्ट पर है, जर्मनी खतरे को लेकर चेतावनी दे रहा है और रूस नाटो के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। और देखिए, अब वो खबर जो पूरी दुनिया को वैसे ही डरा रही है जैसे कि खौफ कोरोना के टाइम पूरी दुनिया में था। रूसी शहर इरकुत्स्क में एंटी प्लेग रिसर्च लैब में 28 साल की लैब टेक्नीशियन दारिया शिपिलोवा की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद फिर से प्रयोगशालाओं की सुरक्षा, जैविक संक्रमण के फैलाव को लेकर दुनिया भर में गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। रशियन मीडिया के और स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार 5 सितंबर को दारिया लैब में सैंपल कलेक्ट करने का काम कर रही थी। इसी दौरान उनके हाथ से एक छोटा ट्यूब छूटकर नीचे गिर गया। वो टूट गया और ट्यूब में जीवित या फिर आप कह सकते हैं यर्सिनिया पेस्टिस यानी प्लेग का बैक्टीरिया था। कांच टूटने की वजह से बैक्टीरिया हवा में फैल गया और सांस के जरिए उनके शरीर में प्रवेश कर गया। घटना के कुछ दिन बाद उन्होंने निमोनिया जैसे गंभीर लक्षण महसूस किए और शेलखोव में अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया और 1 और 2 अक्टूबर को दरमियानी रात को उनकी मौत हो गई। यानी इस खबर के बाद पूरी दुनिया के अंदर एक बार फिर से कोरोना वाला ही डर पैदा हो गया। रूस की उपभोक्ता सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर प्लेग शब्द का सीधा उपयोग करने से परहेज किया है। उन्होंने कहा है कि लैब कर्मचारियों की मौत अज्ञात कारण से हुई है, यानी निमोनिया की वजह से हुई है। शुरुआती जांच में किसी संदिग्ध माइक्रो संक्रमण की पुष्टि न होने की बात भी कही गई है। यानी अब तक जो चीन करता आया है वो ये रूस की तरफ से भी किया जा रहा है। इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही। रणभूमि में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: आगे आगे
5: उधर
4: करेक्ट करेक्ट
6: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
3: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार गोटी थमका लगाने पर
4: मेरे पास एक आइडिया है।
3: क्या?
4: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
5: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया है पर स्टेज नहीं हिलता
6: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
7: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
8: कौन सी बनानी है?
9: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसो फास्ट 27% इनो 9.2%
10: गड़बड़ है।
11: आहा गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
12: मैडी आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
13: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
12: स्मॉल बैंक
13: स्मॉल Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RDF, there's nothing small about them.
12: Okay.
13: Ujjivan, nothing small about us.
14: Maa ke pairon ki dhool, maathe par hai, main parinda khule aasman, jahan jeet roon sara.

0: in association with Signature Finest Cardamom Seeds.
1: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
2: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal anmol.
3: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

लखनऊ के गोमती नगर में कई सालों बाद इस तरह की बाढ़ दिखी। पूरे इलाके में कई फीट तक पानी भरा है। घर, मकान, दुकान सब पानी में समा गए हैं। गोमती नदी का जल स्तर बढ़ने से रिवर फ्रंट पूरी तरह से डूब गया है। पानी का फैलाव इस कदर बढ़ गया है कि हनुमत धाम मंदिर परिसर, प्राचीन शनि देव मंदिर और लक्ष्मण मेला मैदान के आसपास भारी जलभराव हो गया है। प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान मंदिर परिसर में भी नदी का पानी प्रवेश कर चुका है। जानकार बताते हैं कि 2006 के बाद ये स्थिति आई है जब गोमती नदी का जल स्तर इतना बढ़ा है। उधर ग्रामीण इलाकों में भी बाढ़ का संकट गहराया हुआ है। बख्शी का तालाब, तहसील के लासा, बहादुरपुर, सुल्तानपुर और अकड़िया मऊ जैसे गांवों में पानी का स्तर कम जरूर हुआ है, लेकिन लोगों की मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों की आवाजाही और मदद के लिए 30 नावें तैनात की हैं। 7 राहत शिविरों में हर इंतजाम की बात कही जा रही है। लखनऊ में बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, कई लोग पलायन भी कर चुके हैं। गोमती का जल स्तर सामान्य से करीब 8 फीट ऊपर चढ़कर 108.14 मीटर के खतरनाक निशान तक पहुंच गया है। अब देखना है पानी कब तक कम होता है और लोगों को राहत कब तक मिल पाती है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ अंकित मिश्रा, लखनऊ आज तक।

उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा का नाम नहीं। 3 ओबीसी, 2 एससी, 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय को मौका। सुप्रीम कोर्ट से सीसी ज्ञानेश कुमार को बड़ी राहत, निलंबन की याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा न्यूज रिपोर्ट के आधार पर फैसला नहीं ले सकते, लेकिन फॉर्म 6 पर बदलाव पर थमाया नोटिस।

राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार को फिर घेरा, कहा सीईसी ने बीजेपी की मदद के लिए गैर कानूनी ढंग से बदले फॉर्म 6। कल चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी में जुटा है इंडिया गठबंधन। पंजाब की मान सरकार पर चौतरफा वार, सीएमओ भ्रष्टाचार केस की जांच हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी। बीजेपी ने ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वतखोरी को लगातार हो रही हत्याओं पर मांगा जवाब। मेडिकल साइंस में क्रांति के लिए 3 वैज्ञानिकों को मिला मेडिसिन का नोबेल। रोशनी से दिमाग की नसें ऑन ऑफ करने वाली ऑब्जर्वेटिक्स तकनीक खोजी।

सरकार के साथ बातचीत फिर नाकाम। इमरान खान को लेकर सड़क से संसद तक संग्राम। अब मुश्किलों में फंसेंगे पाकिस्तान के हुक्मरान। इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है हजारों का हुजूम। पीटीआई के मार्च को लेकर बढ़ी मुनीर की टेंशन। इस्लामाबाद पहुंचने से पहले होगा बड़ा एक्शन। हजारों कार्यकर्ता गिरफ्तार, रास्ते सील, मचेगा हाहाकार। अफगानिस्तान ने पाक को चढ़ाया, सीधे चीन तक रास्ता बनाया। एक के बाद एक अपने ही खोदे गड्ढों में गिरता जा रहा है पाकिस्तान। कूटनीति के मोर्चे पर भी, सैन्य मोर्चे पर भी और घरेलू मोर्चे पर भी।

0: रणभूमि में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और रणभूमि में बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, उस मुल्क की जो कई मोर्चों पर इस वक्त घिरा हुआ है। और पहले वो अमेरिका और ईरान के युद्ध में मध्यस्थता की पूरी तरीके से नाकाम रहा और दूसरी तरफ अपने ही घर में कई मोर्चों पर घिरता जा रहा है। बलूचिस्तान से लेकर पीओके और खैबर में मुनीर की फौज के खिलाफ बगावत की खबरें लगातार ये बता रही हैं कि उसकी फौज के साथ साथ उसके हुक्मरान कैसे गिरते जा रहे हैं। और अब पाकिस्तान में एक बार फिर से बवाल मचना शुरू हो गया है। पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई के साथ कई दिनों से हो रही सरकार की बात अब नाकाम साबित हुई है, जिसके बाद हजारों कार्यकर्ता इस समय सड़कों पर उतर आए और इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च में कूच कर रहे हैं। जगह जगह रोकने के लिए उन्हें बैरिकेडिंग की जा रही है, सीमाएं सील की गई है, पुलिस धरपकड़ में जुटी हुई है। और दूसरी तरफ खैबर के सीएम सोहेल आफरीदी, जो इस वक्त पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उसकी अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि किसी भी सूरत में प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद पहुंच कर ही रहेंगे। इस ऐलान के बाद ये बवाल और ज्यादा बढ़ता जा रहा है और शरीफ मुनीर की रातों की नींदें तक उड़ गई। इसी बीच एक मोर्चे पर पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। पड़ोसी देश अफगानिस्तान बार बार एयर स्ट्राइक्स कर बेकसूरों को मारने वाले पाकिस्तान को अब अफगानिस्तान ने भी सामरिक और कारोबारी मोर्चे पर बड़ी मात बड़ा सबक सिखाने का काम शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान एक ऐसा रास्ता बना लिया है जो उसे सीधे चीन से जोड़ देगा। इस बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में मच रहे बवाल को लेकर। जी हाँ, उसको लेकर आपको अपडेट देते हैं। इमरान खान की पार्टी के इस्लामाबाद मार्च को लेकर कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में बड़ी झड़पें हुई हैं। इस बीच पंजाब सरकार ने सीमा को सील कर दिया है, डेरा इस्माइल खान से जुड़ी सीमा सील कर दी गई ताकि प्रदर्शनकारी घुस ना सके। उधर खैबर के सीएम सोहेल आफरीदी ने भी दावा किया है कि वो हर हाल में इस्लामाबाद पहुंच कर ही लेंगे। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय की, मौजूदा हालात ऐसे हैं कि हजारों की संख्या में लोग इस समय सड़कों पर है, कई टोल नाकों पर, कई बड़ी सड़कों पर, कई हाईवेज को इस तरीके से बैरिकेड कर रोक दिया गया है ताकि पीटीआई के कार्यकर्ता आगे ना बढ़ सके। कुल मिलाकर इमरान खान की सेहत और रिहाई को लेकर की जा रही मांगों को लेकर बहुत बड़ा बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। उनकी पार्टी पीटीआई अब निर्णायक लड़ाई के लड़ने के मूड में। वैसे आपको याद होगा कि इसकी तैयारी पिछले कई महीनों से इमरान खान के करीबी और खैबर के सीएम सोहेल आफरीदी कर रहे थे। सिंध से लेकर पंजाब तक इस बारे में वो कई दौरा भी कर चुके हैं और रैलियां भी निकाल चुके हैं। अब खैबर के अलग अलग इलाकों में हजारों लोग जुटने शुरू हो गए हैं और इस्लामाबाद कूच करने की अपील की जा रही है। उधर सेना और पुलिस भी इस हर हाल में इसे रोकने की कोशिश में जुटी हुई है और इसके लिए सख्त रवैया भी अपनाया जा रहा है। पाकिस्तान में इस नए बवाल पर सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा भी करेंगे।
1: सड़कों पर इकट्ठा हजारों की भीड़, ढोल नगाड़ों पर नाचते लोग, हाथों में पार्टी के झंडे और जगह जगह लगी इमरान खान की तस्वीरें। धीरे धीरे पाकिस्तान की सड़कों पर लोगों का सैलाब इकट्ठा हो रहा है। हल्के फुल्के अंदाज में आगे बढ़ते ये लोग जैसे जैसे इस्लामाबाद के करीब जाएंगे, मुनीर का असली रंग दिखना शुरू हो जाएगा। दरअसल इमरान खान की पार्टी का ये लॉन्ग मार्च सितंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होना था। इस बीच सरकार के साथ बातचीत का दौर शुरू हुआ और कुछ दिनों के लिए मार्च को टाल दिया गया, लेकिन सरकार के साथ बात अब नाकाम हो गई है और पीटीआई ने ये मार्च शुरू कर दिया है। रविवार को खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की ओर शुरू हुए इस मार्च से रास्ते में पड़ने वाले हर इलाके से लोग जुड़ते जा रहे हैं।
2: जब हमारा वजीर आला जो ही लाया अमल तय करेगा, उस पे अमल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब वो या इस्लामाबाद की तरफ हो जाएंगे, इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। ये लॉन्ग मार्च उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक या हमारे वायदे नहीं माने जाएंगे, यानी हमारे जो डिमांड है, हमारे जो खान के साथ जो नाजायज जुल्म हो रहा है, तकरीबन एक साल से बेगुनाह, तीन साल से बेगुनाह कैद में बंद हैं।
3: तो जाने नहीं देंगे इंशाल्लाह।
1: इस पूरे मार्च का नेतृत्व खैबर के सीएम सोहेल आफरीदी कर रहे हैं। पार्टी चाहती है कि इमरान खान से जुड़ी उनकी मांगे मानी जाएं, वरना इस्लामाबाद में संसद तक मार्च किया जाएगा।
3: मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा,
4: आपने जोर से चीख कर जवाब देना है, आपको यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन मंजूर है? जिन चीज को मंजूर नहीं है वो हाथ खड़ा करे। आपको ड्रोन अटैक मंजूर है? आपको यहाँ इमरजेंसी मंजूर है? आपको यहाँ गवर्नर राज मंजूर है? तो सुन लो, यहाँ पर एक ही राज चलता है, वो है अवामी राज, इमरान खान का राज।
1: पार्टी की प्रमुख मांगों में जेल में बंद इमरान खान से तत्काल मुलाकात और उन्हें ऐसे अस्पताल ले जाने का फैसला शामिल है जहां उनके निजी डॉक्टर उनकी जांच कर सकें। इमरान पिछले करीब 3 साल से रावलपिंडी की हाई सिक्योरिटी अदियाला जेल में बंद हैं। उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उनकी पार्टी लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रही है। इस मार्च के शुरू होते ही पाकिस्तान की शरीफ सरकार और मुनीर की सेना एक्शन मोड में आ गए हैं। जगह जगह रास्तों को बंद किया जा रहा है। इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं की धरपकड़ तेज कर दी गई है और इस्लामाबाद को सील किया जा रहा है। कोशिश ये है कि एक भी प्रदर्शनकारी राजधानी में घुस न पाए। पुलिस ने अब तक 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। करीब हफ्ते भर में इस मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है। खैबर की अफरीदी सरकार और मुनीर की सेना के बीच वैसे ही 36 का आंकड़ा है। सोहेल अफरीदी जहां अपने इलाकों में सेना के जुल्म के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे हैं, वहीं शरीफ सरकार और मुनीर की सेना इन इलाकों में अलगाववादियों को बढ़ावा मिलने के आरोप लगाती रही है। खैबर में आत्मघाती हमलों में पुलिस और सेना को हाल के दिनों में काफी नुकसान भी हुआ है। इमरान खान की पार्टी का कहना है कि सरकार के जुल्म के खिलाफ वो इस्लामाबाद मार्च को कामयाब बनाकर ही दम लेगी। हर इलाके से लोग इसमें जुट रहे हैं और अपने चहेते नेता की रिहाई के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
5: कोई इस बात से मुझे डराता है कि वो यहाँ पर गवर्नर राज लगा देगा, इमरजेंसी लगा देगा, तो मैं लानत भेजता हूँ उस कुर्सी पर जो मुझे अपने नजरिए से हटाए। मुझे कोई फिक्र नहीं है इस कुर्सी की। जो मेरा मौकफ पहले दिन था, जो इमरान खान साहब का है, जो इमरान खान साहब का नजरिया है, वो आज भी है, वो इसके बाद भी होगा।
1: इस वक्त पाकिस्तान कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो ईरान और सऊदी अरब के बीच धर्म संकट में फंस चुका है, तो घरेलू स्तर पर कई राज्यों में बगावत पाकिस्तान के हुक्मरानों को चुनौती दे रही है। बलूचिस्तान और खैबर से लेकर पीओके में फौज और पुलिस के जुल्म के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। फिलहाल जो हालात हैं, ये हफ्ता शहबाज शरीफ और मुनीर की रातों की नींद उड़ाने वाला हो सकता है। पीटीआई के समर्थक इस्लामाबाद पहुंच पाए तो भी और ना पहुंच पाए तो भी, क्योंकि जब जब जुल्म हुए हैं, लोगों की बगावत ने सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाई ही है। आज तक ब्यूरो।
0: आपने सड़कों पर हजारों लोगों का हुजूम देख लिया कि लगातार लोग अपने पीटीआई के, आप कह सकते हैं, लीडर इमरान खान के लिए कैसे सड़कों पर उतर आए और लड़ने के लिए भी तैयार है। चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि खैबर के किन किन इलाकों से होकर ये मार्च इस्लामाबाद पहुंचने वाला, कौन कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं। 4 तारीख यानी जब से शुरू हुआ है तब से लेकर 8 तारीख तक क्या क्या प्लान है, चलिए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आपको बता दूं, मुनीर की मुश्किलें क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये कर्क से यानी खैबर से लगातार बढ़कर ये 8 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचेगा। और सबसे पहले अगर आप देखिए, 4 अक्टूबर को करक से ये शुरुआत हुई है, यहीं से लोग निकलकर लगातार आगे बढ़े। उसके बाद 4 तारीख के बाद लगातार फिर आगे 5 अक्टूबर को कोहाट पहुंचेंगे। 5 तारीख को कोहाट पहुंचने के बाद फिर इनका अगला टारगेट, अगला इनका जो डेस्टिनेशन होगा वो होगा 6 अक्टूबर को होंग कुर्म और कजाई के वो इलाके यानी मत्तानी के इलाके, और उसके बाद पेशावर से चसरद्दा, और उसके बाद सीधा फिर ये लोग इस्लामाबाद की तरफ कूच करेंगे। और कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद तक यानी करीबन ये 300 किलोमीटर का ये पूरा जो मार्च है, लॉन्ग मार्च, इसका मुख्य मोटिव है लगातार लोगों को अपने साथ जोड़ना और फिर सीधा इस्लामाबाद की तरफ कूच करना। और कहा जा रहा है कि खैर जो इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही नेक्स्ट फेज के मार्च का या फिर नेक्स्ट स्टेप का पीटीआई का कि आंदोलन कैसा रहेगा उसका भी ऐलान किया जाएगा। यानी ये तकलीफ जो है वो आसिफ मुनीर या फिर जो हुक्मरान है शरीफ, उनकी ये तकलीफ सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रहेगी, दरअसल ये तकलीफ आगे भी बढ़ेगी क्योंकि इसके बाद भी वो अपने नेक्स्ट फेज का ऐलान कर सकते हैं। इस मामले में जुड़ी एक बड़ी खबर आपको और बता देते हैं। दरअसल मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनवा के राज्यपाल से मुलाकात की है। खैबर में बढ़ती बगावत और अब इस्लामाबाद मार्च से निपटने को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। बताया जा रहा है कि राज्य में इमरजेंसी लागू करने या फिर राज्यपाल शासन लागू करने के बारे में भी चर्चा की गई है। और देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लेकिन आपको बता रहे हैं कि कैसे लगातार ये दिक्कत सिर्फ इस्लामाबाद के लिए नहीं है बल्कि ये दिक्कत पाकिस्तान के अलग अलग शहरों, अलग अलग आपके जिलों के अंदर पहुंचती जा रही है। और यहां तक कि कहा जा रहा है कि सिर्फ इस्लामाबाद को कॉर्डन करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए 38,000 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाया गया है। यहां तक कि सिंध और पंजाब के कई इलाकों से एडिशनल फोर्सेस भी मांगी गई है। अब इस पूरे बवाल को लेकर 5 बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आइए आपको बड़ी स्क्रीन पर एक बार फिर से लिए चलते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो 5 सवाल कौन से है, क्या आने वाले वक्त में एक हफ्ते में इनका जवाब मिल पाएगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर ये मार्च, ये लगातार विरोध मार्च कितना ज्यादा बढ़ता जाएगा। पहला, क्या इस्लामाबाद तक पहुंचेगा इमरान खान की पार्टी का मार्च, क्योंकि अभी मैंने आपको जैसा बताया 38,000 से ज्यादा डिप्लॉयमेंट किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस का, एडिशनल फोर्सेस 18,000 के करीब वो सिंध और पंजाब के इलाकों से भी मांगी गई है ताकि ये मार्च इस्लामाबाद या उससे पहले ही रोक दिया जाए। अब क्या इमरान खान से परिवार और कार्यकर्ता मिल पाएंगे, उनके परिवार के लोग या कार्यकर्ता उनसे मिल पाएंगे, क्योंकि इमरान खान 2023 से ही जेल में बंद है लेकिन अब तक वो अपने परिवार को मिल नहीं पाए। कोर्ट में भी जब भी उनकी हियरिंग होती है उन्हें ऐसे लाया जाता है ताकि वो कम से कम दिखे, उनकी तस्वीरें सामने ना पाए। और क्या पूर्व पीएम इमरान खान रिहा भी होंगे? चलिए, रिहाई तो बहुत आगे की बात है, क्या उनके परिवार वाले लोगों के साथ उनके कार्यकर्ताओं से उन्हें मिलने दिया जाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है और शायद इसी की वजह से पीटीआई का लॉन्ग मार्च निकाला जा रहा है। पीटीआई के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पाकिस्तान के कई लोग इस बातों से, सरकार के रवैये से, सिक्योरिटी फोर्सेस के रवैये से बहुत ज्यादा नाखुश है। अब क्या खैबर के सीएम सोहेल अफरीदी गिरफ्तार होंगे, क्योंकि अब जिस पूरी मुहिम को चलाने वाले, इस मुहिम को आगे बढ़ने वाले, इमरान खान की रिहाई की मांग करने वाले वो है सोहेल अफरीदी, जिनको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि अब उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब अगला सवाल, क्या खैबर पख्तूनवा में भी आपातकाल या राज्यपाल शासन लागू कर दिया जाएगा? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से ये चीजें बढ़ रही हैं, जिस तरीके से लगातार सरकार इस मोर्चे पर घिरती जा रही है, ऐसा ही लग रहा है कि खैबर पख्तूनवा के इन इलाकों में इमरजेंसी लागू कर दी जाएगी या फिर राज्यपाल शासन लगा दिया जाएगा। यानी इन तमाम सवालों के बीच में तो ऐसा ही लगता है कि देखिए कैसे अब ये दिक्कत सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई। अब अफगानिस्तान का रुख करते हैं। जी, अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुसीबत वाली खबर आ रही है। खबर यह है कि अफगानिस्तान के हौसले बढ़ाने वाली खबर यह है कि पाकिस्तान की परेशानियां बढ़ सकती है। दरअसल अफगानिस्तान ने रविवार को उत्तर पूर्वी बदखशां प्रांत में वाखान कॉरिडोर के माध्यम से देश को चीन से जोड़ने वाली एक सड़क आधिकारिक तौर पर खोल

0: सकेगा। करीब 121 किलोमीटर कच्ची सड़क का निर्माण 2 साल पहले ही शुरू हो गया था और यह सड़क अब अफगानिस्तान को चीन के शिनजियांग क्षेत्र से सीधा जोड़ेगी। ये देखिए 121 किलोमीटर की वो सड़क है जिसे पिछले 2 सालों से अफगानिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा था। अब चलिए आपको एक बार फिर से बड़ी स्क्रीन पर समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सड़क अफगानिस्तान के कौन से प्रांत से जुड़ती है और कैसे, जिसने शरीफ और मुनीर की नींदें उड़ा दी है, क्योंकि अफगानिस्तान अब इसका बदला लेने की तैयारी कर। सबसे पहले अगर आप ऊपर देख रहे हो वो है भारत यानी हिंदुस्तान का नक्शा, और उसके ऊपर अगर आप देखें ये अफगानिस्तान के बीच एक बहुत छोटा सा कॉरिडोर है, 121 किलोमीटर का कॉरिडोर इसे आप कह सकते हैं, और इसी से जोड़ा जा रहा है। अब गिलगित बाल्टिस्तान को छूते हुए ये रोड आगे जाएगी अफगानिस्तान और चीन के बीच, अब ये सीधा कारोबार का एक मार्ग होगा। इसके बाद 2 साल पहले शुरू हुआ था इसकी सड़क का निर्माण, कच्ची सड़क थी, अब इसको पूरा कर लिया गया धीरे धीरे, क्योंकि इसके बीच में पहाड़ी इलाके थे, कई जगहों से पहाड़ी और दुर्गम इलाकों को हटाना पड़ा। पूरा कॉरिडोर करीबन 350 किलोमीटर का और फिलहाल 120 किलोमीटर लंबी सड़क इस पर बना दी गई है, यानी फेज वाइज तरीकों से इस पर काम किया जा रहा है। अब ये पूरा इलाका ऐतिहासिक सिल्क रूट का हिस्सा हो गया होगा, और जहां से आप मानिए कि जिसमें ना तो अफगानिस्तान को ना ही चीन को पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई। अब एक बार फिर से आपको नक्शे में समझाता हूं, यह है वो, यह है अफगानिस्तान का इलाका, अफगानिस्तान के इस इलाके से यह है वाखान कॉरिडोर दरअसल अब तक, और यह है भारत का इलाका। अगर ये ऐसा मिल जाता है तो फिर निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए दिक्कत बढ़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान अब तक क्या करता था, पाकिस्तान अपने जो गेटवेज हैं अफगानिस्तान के वहीं से अफगानिस्तान साजो सामान जाने दिया जाता था, और वो सामान चाहे वो चीन से हो या भारत की तरफ से भी जो राहत सामग्री जाती थी, पाकिस्तान अक्सर उनको वहां रोक दिया करता था और जाने नहीं देता था। शायद इसी वजह से ये दिक्कत अफगानिस्तान के लिए बड़ी दिक्कत पैदा हो रही थी, और इसके बाद अब अफगानिस्तान ने अपना सीधा रूट खोल दिया। ये जानना भी आपके लिए जरूरी होगा कि कार खास तौर पर जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसने भी पाकिस्तान की नींदें कैसे हराम कर रखी। पाकिस्तानी सेना पर हमले का एक और वीडियो बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से जारी किया गया, हालांकि ये ताजा हमले नहीं है। दावा किया जा रहा है कि BLA ने 4 अगस्त और 16 सितंबर को के बीच कई हमले किए थे और पुलिस और सेना की पोस्टों पर कब्जा भी कर लिया, और पाकिस्तान की पुलिस या उनके सिक्योरिटी फोर्सेस को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा। चलिए रणभूमि में आज इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: जो पंजाब में आज सरकार में है उनको लेकर कोर्ट में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने उसमें दो जजेस के खंडपीठ ने जस्टिस चीफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा एंड जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने एक पीआईएल पे यह निर्णय दिया है कि भगवंत मान जी के जो ओएसडी हैं और उनके जो करीबी लोग हैं, भ्रष्टाचार का आरोप जो ईडी के कारण उन पर लगा है उस विषय पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच करे कि भगवंत मान जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और अरविंद केजरीवाल जी के खास हैं, उनके ओएसडी और भगवंत मान जी के खास लोगों द्वारा जिस प्रकार का घोटाला किया जा रहा था, आज पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने उस पर सीबीआई जांच को प्रोसीड करने के लिए कहा है और यह भी कहा है कि 2 महीनों के अंदर, लगभग 60 दिनों में सीबीआई इसे कंप्लीट करे और इसका रिपोर्ट सबमिट करे।
1: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है कि जो एलिगेशन ईडी ने लगाए थे, कहा था अभी करप्शन जो है वो चल रही है ट्रांसफर पोस्टिंग में, डीजीपी को 3 पत्र भी लिखे थे लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ था, उसमें हाईकोर्ट ने आज सीबीआई प्रोब जो है ऑर्डर कर दी है। हमारे साथ हैं ईडी के सीनियर एडवोकेट धीरज जैन। जैन साहब, आज कोर्ट में क्या प्रोनाउंसमेंट किया है एग्जैक्टली, पहले वो बता
2: दीजिए। कोर्ट ने जी निखिल सराफ जी द्वारा फाइल की गई पीआईएल में आज अपना फैसला सुनाया, तो कोर्ट ने मुख्यतः 3 बिंदुओं पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने पहले कहा कि जो ये बहुत गंभीर मामला है और इसमें इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो पंजाब पुलिस ने जिस तरीके से इस सारे मामले को हैंडल किया है तो वो संतोषजनक नहीं है।

कारण हाईकोर्ट ने ये सारा मामला अब सीबीआई के हवाले कर दिया है। सीबीआई को हिदायत दी है कि वो इस केस में एफआईआर लॉन्च करे और जो उन्होंने टाइम फ्रेम दिया है उसके बीच में अपनी इन्वेस्टिगेशन की स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें। उन्होंने कोर्ट ने पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार को भी हिदायत दी है कि आप जो भी इसके रिलेटेड कागजात हैं सब सीबीआई को दे दीजिए और कोई भी और भी जो भी असिस्टेंस सीबीआई को चाहिए वो असिस्टेंस दीजिए।

0: कांटों का ताज है, बहुत देर है दुरुस्त है या बहुत देर होगी हुजूर आते आते?
1: देखिए समय कभी जब जो चीज होनी होती है वो समय पर ही होती है, ये इसी समय के लिए निर्धारित था। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी, धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे इस वक्त ये जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारी के साथ चुनौतियां भी आती हैं और मैं चुनौतियों से कभी डरी नहीं हूं, चुनौतियां स्वीकार भी की हैं और उन्हें परास्त भी किया। जो राहुल गांधी जी का मिशन 27 है उसको मुझे पूरा करना है। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता में मुझे विश्वास जगाना है कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ, एक परिवार की तरह उनके साथ खड़ी है। हर कार्यकर्ता के मान सम्मान और उसके विश्वास को मुझे और सशक्त करना है, यही मेरा कर्तव्य है और मैं इस जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगी।
0: देखिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि नया पद मिलता है और अभी आज पहला दिन है इनका, देश की राजधानी दिल्ली आई है तो पहले अवध और उस तरफ पूर्वांचल की लेग की बधाइयां कंप्लीट हुई। अभी यहाँ पे काफी आप देखिए कि कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा है और काफी गुलदस्ते और फूल भी आ रहे हैं, लेकिन इस बीच कांटों का सवाल हम लोग की तरफ से आता रहेगा। और सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो रायबरेली से भी लड़ने को तैयार नहीं थे, अखिलेश यादव ने हिम्मत दी तब कहीं लड़ पाए वो, तो ऐसे में सीट शेयरिंग की बात कहाँ चली आती है 200 सीटों की?
1: देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या गांधी परिवार, रायबरेली अमेठी उनके लिए घर है, उनका परिवार है। आज से नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पीढ़ियों से, उनकी दादी वहां से का प्रतिनिधित्व किया, उनके बाबा ने प्रतिनिधित्व किया, तो अमेठी रायबरेली उनके लिए घर है, वहां पे उनको किसी की पहचान कराने की किसी को भी आवश्यकता नहीं।

में सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस, ज्ञानेश कुमार के तुरंत निलंबन से किया इनकार, फॉर्म 6 विवाद पर जताई नाराजगी, कहां बदलाव को हमने नहीं दी थी मंजूरी। राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार को फिर घेरा, कहा सीसी ने बीजेपी की मदद के लिए गैरकानूनी ढंग से बदले फॉर्म 6। कल चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी में जुटा इंडिया गठबंधन। यूपी से बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 8 उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, बीएल वर्मा का नाम नहीं, 3 ओबीसी, 2 एससी, 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय को मौका।

और मेडिकल साइंस में क्रांति के लिए 3 वैज्ञानिकों को मिला मेडिसिन का नोबेल। रोशनी से दिमाग की नसें ऑन ऑफ करने वाली ऑप्टोजेनेटिक्स तकनीक खोजी।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर। देश भर में विपक्षी दल आंदोलन चला रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए असंवैधानिक और एक तरफा फैसले लिए हैं और इसीलिए उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसी अर्जी आई, उस पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस देकर जवाब मांग लिया। हालांकि अर्जी में ज्ञानेश कुमार के अंतरिम निलंबन की मांग भी की गई थी, लेकिन अदालत ने सिर्फ अखबारी रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित करने से मना कर दिया। अदालत के अंदर ज्ञानेश कुमार पर जो बड़े आरोप लगाए गए हैं उसमें कथित तौर पर 14 फैसले अपनी मर्जी से करने के आरोप भी लगाए गए। उसमें सबसे बड़ा फैसला फॉर्म 6 के साथ लगे एनेक्स्टर डी वाले हलफनामे को लेकर था। दरअसल बिहार एसआईआर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 27 मई को कहा था कि चुनाव आयोग फॉर्म 6 के अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगने का तार्किक प्रावधान कर सकता है। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स और हलफनामे पर बिहार, बंगाल और यूपी समेत 13 राज्यों में एसआईआर भी हो गया। लेकिन इसी बीच 12 जुलाई को चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 के साथ लगे एनेक्स्टर डी के हलफनामे में तकनीकी बदलाव कर डाले। यह बदलाव ईसीआई नेट पर किए गए और इसका कहीं भी कोई भी गैजेट नोटिफिकेशन नहीं निकला। बदलाव यह था कि पहले वाले हलफनामे में माता पिता के पुराने एसआईआर से जुड़े सवाल हां या ना करने का विकल्प रखा गया था। 12 जुलाई को उसके बाद माता पिता या दादा दादी के वोटर नंबर, क्षेत्र, बूथ नंबर, पार्ट नंबर सब मांगा जाने लगा और बिना उसे भरे वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन में फॉर्म जमा नहीं हो पा रहा था। ऐसे में नए वोटर जो फॉर्म नंबर 6 भरते हैं उन्हें दिक्कत होने लगी। इसी बीच इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया कि फॉर्म 6 के साथ जुड़े एनेक्सर डी के हलफनामे में जो तकनीकी बदलाव किया गया है वो असंवैधानिक और अवैध था। और ये बात सुखविंदर संधू, जो चुनाव आयोग के कमिश्नर है, उन्होंने भी ये बात उठाई थी। चुनाव आयोग ने इस तकनीकी बदलाव की सफाई नहीं दी और 27 जून वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दे दिया। अब सवाल यही उठाया जा रहा है कि अदालत ने हालिया बदलाव को मंजूरी नहीं दी थी तो आयोग ने ऐसा दावा क्यों किया, और अगर आयोग ने अपनी शक्तियों के तहत ऐसा किया है तो उससे संवैधानिक और कानूनी पहलुओं का ध्यान क्या रखा गया था, और इसी पर हम दंगल में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।
1: अक्टूबर से दिल्ली में हंगामा मचा है। 6 अक्टूबर को विपक्ष सबसे बड़ा धावा बोलने वाला है। 8 अक्टूबर को राष्ट्रपति तक शिकायत पहुंचने वाली है। कांग्रेस से लेकर समूचा विपक्षी इंडिया गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। सियासी आरोप बेहिसाब है, लेकिन अदालत की चौखट तक जब आरोपों की फेहरिस्त पहुंची तो उसमें यही कहा गया कि ज्ञानेश कुमार असंवैधानिक काम कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार ने 14 एकतरफा फैसले लिए हैं। ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म 6 में अवैध तकनीकी बदलाव कर दिया। 14 करोड़ योग्य मतदाताओं का नाम हटा दिया। बंगाल में आयोग के नाम से 16 करोड़ 10 लाख अवैध अपीलें दाखिल कराई, इसीलिए उन्हें फौरन निलंबित कर दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश की अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनी, लेकिन ज्ञानेश कुमार के अंतरिम निलंबन पर कुछ नहीं कहा। याचिकाकर्ता ने कहा कि सीईसी संवैधानिक प्रावधान के विपरीत काम कर रहे हैं, एक तरफा फैसले ले रहे हैं। कोर्ट ने कहा, आप ये अखबार की रिपोर्ट के आधार पर कह रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा, चुनाव आयोग ने खबर का खंडन नहीं किया। कोर्ट ने कहा, खबर सही या गलत हो सकती है, लेकिन हम उस आधार पर आदेश पारित नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता ने कहा, इतने ऊंचे पद पर बैठा शख्स कानून का उल्लंघन कर रहा है। कोर्ट ने कहा, जब रिकॉर्ड पेश होगा तो देखेंगे फॉर्म 6 में तकनीकी बदलाव किसने किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि फॉर्म 6 में जो जुलाई 2026 में बदलाव किए गए हैं उसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई मंजूरी नहीं दी है। अदालत ने चुनाव आयोग को नोटिस देकर जवाब मांगा है, लेकिन जवाब की मियाद तय नहीं की है। 6 इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देश भर में आंदोलन एक अखबार के खुलासे के बाद से हो रहा है, जिसमें पता चला कि आयोग के कई फैसले सर्वसम्मति से नहीं हुए और आरोपों की धुंध छटी तो सबसे बड़ा मुद्दा फॉर्म 6 में अवैध बदलाव का सामने आया। विवाद फॉर्म 6 के साथ अनिवार्य किए गए इस घोषणा पत्र को लेकर है, जिसमें 12 जुलाई को सिर्फ डिजिटली बदलाव कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा है कि चुनाव आयोग ने ये असंवैधानिक बदलाव किए क्योंकि अखबार ने चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू के हवाले से ऐसा खुलासा किया। सफाई में चुनाव आयोग ने कहा कि फॉर्म 6 के साथ अटैच किए गए डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है और एसआईआर के बाद फिर वही पुराना सिर्फ फॉर्म 6 इस्तेमाल होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कहा है कि कोर्ट ने ऐसे किसी बदलाव को मंजूरी नहीं दी। दरअसल मामला 2 साल पहले बिहार SIR के समय का है, तब आयोग ने एनेक्सर डी जोड़ा और उसे जरूरी बताया। उसमें गलत जानकारी पर 1 साल की सजा तक का प्रावधान था। इसके बाद 11 दस्तावेजों की अनिवार्यता पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वहां सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई 2026 को साफ कहा कि SIR के दौरान चुनाव आयोग सिर्फ फॉर्म 6 तक ही सीमित नहीं है, उसके पास SIR के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन के तरीके में बदलाव का अधिकार है, लेकिन आयोग को नियम कानून का ध्यान रखना होगा और बदलाव का तार्किक संबंध भी होना चाहिए। इसी आदेश को चुनाव आयोग फॉर्म 6 के साथ एनेक्सर डी को जोड़ने को वाजिब ठहरा रहा है, जबकि इस बीच एनेक्सर डी में एक ऐसा बदलाव हुआ जिस पर सवाल उठे। 12 जुलाई को चुनाव आयोग की वेबसाइट ECI नेट पर डिक्लेरेशन एनेक्सर में बदलाव हुआ। माता पिता या दादा दादी के पिछले SIR के ब्यौरे मांगे गए, वोटर कार्ड नंबर से लेकर क्षेत्र का नाम, बूथ नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर तक मांगे गए। दावा है कि इसी बदलाव पर चुनाव आयुक्त SS संधू ने आपत्ति जताई थी और इसे असंवैधानिक करार दिया था। दरअसल फॉर्म 6 यानी नए वोटर को दिक्कत ऑनलाइन फॉर्म भरने में हुई, क्योंकि नया एनेक्सर भरे बिना फॉर्म जमा नहीं हो सकता था। ऑफलाइन फॉर्म फिर भी जमा हो रहे थे। फॉर्म 6 के अंदर ये बदलाव जुलाई में हुए, जब देश के 13 राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में पुराने डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ SIR भी हो चुका था और फॉर्म 6 जमा भी हो चुके थे, यानी इन राज्यों के लिए चुनाव आयोग ने दूसरा पैमाना रखा और बाकी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, इन 19 प्रदेशों में नए डिक्लेरेशन के साथ फॉर्म 6 के तहत नए वोटर का रजिस्ट्रेशन नियम फॉलो किया। SIR की एक प्रक्रिया में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पैमाना अपनाने को लेकर सवाल उठे और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसले पर उठ रहा है। अब आयोग को बताना होगा कि मौजूदा SIR के फॉर्म 6 में डिक्लेरेशन में दादा दादी के ब्योरे जोड़ने की अनिवार्यता किस तार्किक संबंध की कसौटी को कैसे पूरा करता है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।
0: फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मांग उनके सामने रखी गई थी कि ज्ञानेश कुमार को निलंबित किया जाए, वो मांगने से इनकार कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ चुनाव आयोग को नोटिस थमा दिया है। सारे चुनाव आयुक्त तो और उसके साथ साथ जो उनकी IT डिपार्टमेंट की हेड है, उनको भी नोटिस थमा दिया गया और उनको इसका जवाब देना है। इससे कई सवाल खड़े होते हैं और उस पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगे। सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस पार्टी की तरफ से चर्चा में जुड़ रहे हैं। मोहम्मद अमीन, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर है इलेक्शन कमीशन के, उनसे भी राय पूछेंगे। और आशुतोष श्रीवास्तव, ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, जस्टिस उज्जवल भुइया, उन्होंने जो बयान दिया है उसको लेकर भी चर्चा होना जरूरी है। और आशुतोष, हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल इस पैनल के सामने। पहला सवाल, जुलाई में ECI नेट पर फॉर्म 6 वाले हलफनामे में हुआ तकनीकी बदलाव क्या संवैधानिक है? क्योंकि इसी बदलाव को लेकर सुखविंदर संधू उस न्यूज रिपोर्ट के आधार से अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि ये असंवैधानिक है, अवैध है, गलत तरीके से है और उसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी। दूसरा सवाल, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ एक तरफा फैसलों के आरोपों के दस्तावेजी के आधार है, क्योंकि अगर अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब देना है तो ये सारे आधार भी उसके सामने रखने पड़ेंगे। तीसरा सवाल, SIR प्रक्रिया के दौरान देश के वाजिब मतदाताओं के साथ हुए अन्याय का जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा? 13.5 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे हैं, उसमें से 71% मतदाता जिनके नाम कटे हैं वो चुनाव आयोग के मुताबिक या तो अपना पता बदल चुके हैं, या तो उस पते पर नहीं मिल पाए, या तो कोई और कारण की वजह से उनका नाम कटा है। कोई स्पेसिफिक कारण उसके साथ नहीं दिया गया है और इसी को लेकर यह सवाल कायम रहता है। शुरुआत करते हैं अजय आलोक जी, आज सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेयर्स काफी रखी गई थी, इंटरिम रिलीफ भी मांगा गया था। इंटरिम रिलीफ में जाहिर सी बात है उन्हें सस्पेंड करने की मांग की गई थी, यूनैनिमिटी मैंडेटरी की जाए वो मांग की गई थी, और उसके आगे कोई भी फैसला करना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज उस कमिटी में होने चाहिए वो भी मांग रखी गई थी, और उसके साथ साथ बाकी जांच और बाकी वगैरह वगैरह बाकी सभी मांगे रखी गई थी। इंटरिम रिलीफ तो नहीं दिया गया है, कोई सस्पेंशन नहीं किया गया है, लेकिन नोटिस थमा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस ने यह क्लैरिफाई कर दिया कि फॉर्म नंबर 6 में अगर कोई बदलाव किए गए तो उसकी इजाजत सुप्रीम कोर्ट के तरफ से नहीं दी गई थी। क्या आपको लगता है कि आज की स्थिति में इलेक्शन कमीशन के इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए हैं इस नोटिस भेजने की वजह से?
2: बिल्कुल नहीं, इलेक्शन कमीशन के इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी पे कोई सवाल नहीं खड़े हुए। सबसे पहली बात, जब फॉर्म 6 में कोई बदलाव किया ही नहीं गया तो सुप्रीम कोर्ट परमिशन किस बात की देगा? आयोग ने बड़ा स्पेसिफिकली उनका, जस्टिस सूर्यकांत जी का ऑर्डर दिखाया है जुलाई का, जिसमें लिखा है कि इलेक्शन कमीशन रिटेन्स द अथॉरिटी ऑफ रिटेन्स द रेजिडुअल अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट SIR, और उसी के तहत ये डिक्लेरेशन फॉर्म जोड़ा गया और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मना भी नहीं किया। जब फॉर्म 6 में बदलाव होता तब तो बदलाव की अनुमति मांगते, बदलाव हुआ ही नहीं तो अनुमति किस बात की मांगे? मैं साहिल के पास आया नहीं हूं, मैं आने की अनुमति मांगू? मुझे आना ही नहीं है, जबरदस्ती मैं अनुमति मांगू? ये कुछ नहीं, एक भ्रम फैलाया जा रहा साहिल। अब बहुत अच्छी बात है, मैं तो आज बड़ा प्रसन्न हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास गया है। सुप्रीम पहले ही इलेक्शन कमीशन बिंदुवार तरीके से एक एक चीज पे स्थिति स्पष्ट कर चुका है, जो कि तमाम टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर मीडिया में चल रहे हैं। यही जवाब जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, यही जवाब जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा फिर इनके मुंह पे तमाचा लगेगा। लेकिन ये तो है थेथर, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लाइन से देखिए, जब से ये सरकार बनी है 2014 से, नोटबंदी सुप्रीम कोर्ट में गया, वैलिडेट हुआ, नोटबंदी का सेबी का मामला, सेबी के बाद सेंट्रल विस्टा का मामला, सेंट्रल विस्टा का, तमाम ऐसे मामले लगातार बनते गए जो सुप्रीम कोर्ट में जाके दूध का दूध पानी का पानी हुआ और ये शांत हो जाते हैं। कई कई जगह राहुल गांधी जी को तो माफी भी मांगनी पड़ी। ये आदत है, ये भ्रम जाल फैलाने की आदत है कि देश को अराजकता में कहीं से धकेला जा सके। और आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भाई तीनों आयुक्त, उन्होंने बहुत, जस्टिस भुइयां ने बहुत कड़ा स्टेटमेंट भी दिया कि अगर सहमति से फैसले नहीं हुए SIR पे तो हमें SIR पे रोक भी संभव है, ये भी उन्होंने कहा। तो भाई अब तो आएगा ना, जब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करेगी इलेक्शन कमीशन, तो उसमें कहेगी कि डिसेंट नोट नहीं था, सारे मामले सहमति से हुए, फिर क्या बोलेंगे ये लोग? माफी मांगेंगे आके, जो ये पूरे देश में भ्रम फैलाने की कोशिश की गई? क्योंकि चुनाव आयोग तो जवाब बोल रहे
0: हैं, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने
2: जवाब देगा
0: नहीं। अजय आलोक जी, आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर इस बात को रखा गया कि जुलाई महीने से अचानक ये तकनीकी बदलाव कहां से किए गए, डिक्लेरेशन जो उसके साथ में अटैच किया गया था, और विदाउट डिक्लेरेशन फॉर्म नंबर 6 एक्सेप्ट नहीं हो सकता, ये बात ECI नेट पर क्लियर हो गई थी कि आपको पहले डिक्लेरेशन भरना होगा उसके बाद ही फॉर्म नंबर 6 एक्सेप्ट होगा। अब उसमें जुलाई महीने तक वो बदलाव नहीं दिख रहे, जुलाई महीने के बाद वो बदलाव किए गए, जो परमिशन चुनाव आयोग बार बार ये कह रहा है वो मई महीने की है, जब बिहार के भीतर SIR की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हो गई थी। 13 राज्यों में SIR की प्रक्रिया उसी डिक्लेरेशन के तहत करने के बाद जुलाई महीने के भीतर अचानक उसमें 2 एडिशनल कॉलम्स लगा दिए जाते हैं और ECINET पर वो डाल दिया जाता है। ये बदलाव किसके कहने पर किया गया, यही तो सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि ये बदलाव किया गया है किसके कहने पर किया गया? हमने तो कोई परमिशन नहीं दिया बदलाव करने की, बात बदलाव की है।
2: सुप्रीम कोर्ट से बात बदलाव की है ही नहीं, डिक्लेरेशन फॉर्म पे एडिशनल 2 कॉलम जोड़ने की बात है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही मई में जुलाई में हर जगह कहा इलेक्शन कमीशन रिटेन्स द पावर, रिटेन्स द पावर ऑफ रेजिडुअल अथॉरिटी, ओनली दैट दे कैनॉट डू इट देयर वे, मनमानी नहीं कर सकते आप। अगर सहमति बना के, तीनों आयुक्तों की सहमति से अगर कोई चीज ऐड किया गया तो ये इलेक्शन कमीशन के संवैधानिक पावर्स में है, जिस पर कहते वो SIR करवा रहा है, इसी का तो ये फायदा उठा के कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेने की जरूरत ही नहीं,
0: नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रहा है कि हमने ये मंजूरी नहीं दी, ये क्लेरिफाई क्यों कर रहा है?
2: जवाब सबमिट करेगा भैया इसे, क्योंकि याचिकाकर्ता कह रहा है कि आपने मंजूरी दी, सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी क्यों दी? सुप्रीम कोर्ट से कोई मंजूरी मांगी नहीं गई थी तो सुप्रीम कोर्ट मंजूरी देगा क्यों? ये इलेक्शन कमीशन के संवैधानिक अधिकारों में है। जिसको अब हिंदी और अंग्रेजी समझने में दिक्कत हो, कृपया करके किसी के साथ बैठे, मैं जानता हूं ग्रे मैटर्स की कमी हो रही है आजकल कंफ्यूजन क्रिएट करने के चक्कर में, लेकिन आप ये बताइए ना कि लगातार हर मामला जो
0: इलेक्शन कमीशन
2: 2016 से जो जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, चाहे
0: ठीक है
2: ये सुप्रीम कोर्ट में जाके
0: इलेक्शन कमीशन
2: सामने आएगा तब भी ये नहीं मानेंगे, तब ये सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाएंगे। जैसे आज कॉकरोच जनता पार्टी के दिपके ने सवाल उठा दिया, रंका ने सवाल उठा दिया, उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते हैं चीफ जस्टिस सूर्यकांत को इससे दूर रहना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। क्यों दूर रहना चाहिए? इनको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस
0: क्या कारण है? आज की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के सामने जब
2: ये कॉकरोच
0: जब मामला जाता है तब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब यह मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला जाने के पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया जाता है। उस प्रेस रिलीज के भीतर यह कहा जाता है कि इसकी इजाजत तो हमने पिछले साल मई महीने में ही ली थी जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उसके बावजूद आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जब यह मामला जाता है तब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई उसमें बदलाव की परमिशन तो हमने दी नहीं है। अजय आलोक कह रहे हैं कि भाई बदलाव तो किया ही नहीं गया, अभी भी उसी बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, अगर सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को खारिज करता है तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बात को मानेगी, जो सवाल अजय आलोक उठा रहे हैं, पहले फॉर्म नंबर सिक्स और उसके बाद जो सवाल उठाया गया है।
3: दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं, आपसे बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी बेशर्मी से ज्ञानादेश का यानी ज्ञानेश कुमार के असंवैधानिक आदेशों का बचाव कर रही है, और इससे ही स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश को अराजकता में ज्ञानेश कुमार के साथ मिलकर के धकेलना चाहती है। कल तक ये लोग क्या कह रहे थे, कल तक कह रहे थे कि नहीं साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज को अप्रूव किया है, जो फार्म सिक्स में बदलावों को अप्रूव किया है, वो बदलाव हुए थे। इनके क्या नाम, ये खुद भी कह रहे थे, और इनके यहां के बैठे वो कुछ क्या नाम, जो चुनाव आयोग के कुछ रिटायर्ड जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो चाटुकारिता करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो लोग भी कह रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से इन सारे के सारे थेथरों को, इनकी थेथरई को करारा तमाचा पड़ा है नोटिस के नाम पर। कल तक ये लोग ये कह रहे थे इसी पर कि साहब अभी तो याचिका आई है, याचिका खारिज हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि साहब अभी नोटिस दिया है। आप इस चीज को, तीन चार चीजों को साफ देखिए कि आज के नोटिस से दो चीजें स्पष्ट हो गई। पहली बात, उन्होंने कहा कि हमने किसी फार्म छह में बदलाव को, किसी एनेक्चर को हमने मंजूरी नहीं दी। वहां पर जिस टाइम मंजूरी थी, उस वक्त जिस वक्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अगर उस वक्त की टाइमलाइन देखें तब यह काम हो चुका था बिहार में, वो रिवर्स नहीं कर सकते थे। एक बात, आने वाले समय में सारे के सारे कागज सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे, और अजय आलोक जैसे जो विद्वान प्रवक्ता हैं, जिनके दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, आज की डेट में दिल से तो ये हमारे साथ कहना चाहते हैं क्योंकि लोकतंत्र में कभी इनका भरोसा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बेशर्मी से बचाव करने के लिए अभिशप्त हैं ये लोग। अब ज्ञानेश कुमार की वोट चोरी पकड़ी गई, बहुत स्पष्ट है, ज्ञानेश कुमार की वोट चोरी पकड़ी गई, आपके सामने है। और ज्ञानेश कुमार ने जो वोट चोरी करने के एसआईआर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया, उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की, चाहे बिहार की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, चाहे वो क्या नाम बंगाल की सरकार हो, ये सारी की सारी सरकारें असंवैधानिक हैं। ऐसे में हमारे कुछ मांगे हैं कि ज्ञानेश कुमार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए अगर लोकतंत्र की रक्षा करनी है, नंबर एक। नंबर दो, ज्ञानेश कुमार के इन फैसलों से जी सर बताइए, कुछ पूछ रहे थे आप।
0: देखिए, सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं यहां पर क्योंकि आज यही बात अदालत के सामने रखने की कोशिश हुई। अदालत का यह कहना था कि भाई उनको सुनने का मौका तो मिलना चाहिए, और सिर्फ न्यूज़पेपर के रिपोर्ट के आधार पे वो सीधे चुनाव आयुक्त को इस तरीके से बर्खास्त नहीं करेंगे जो इंटरिम रिलीफ इस पे मांगा गया था। तो कम से कम जब तक चुनाव आयोग के बारे में सुप्रीम कोर्ट के भीतर तीन जजेस का बेंच है उनके सामने, और जिसमें सीजेआई खुद है, उसके सामने जब तक इसका फैसला नहीं होता है तब तक तो कम से कम आप मानेंगे कि तब तक तो आप रुकने के लिए तैयार है कांग्रेस पार्टी, या उसके तब तक आप यही कहते रहेंगे कि भाई उनको निकाल देना चाहिए, या साबित हो गया आपके
3: हम बर्खास्तगी, हम बर्खास्तगी की मांग सुप्रीम कोर्ट से नहीं कर रहे। हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट बर्खास्त नहीं कर सकता उन्हें, बहुत साफ बात है। हम बर्खास्तगी की मांग हमने तो नहीं की सुप्रीम कोर्ट से। सच बात यह है, जो याचिकाकर्ता है, कल तक तो उस याचिकाकर्ता के लिए कह रहे थे कि बात ही गलत कर रहे हैं। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है, हम सरकार से कह रहे हैं, हम राष्ट्रपति जी से कह रहे हैं कि लोकतंत्र को अगर बचाना है तो लोकतंत्र को बचाने के लिए आपको कुछ असाधारण कदम उठाने पड़ेंगे। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन दिए हैं, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि ज्ञानेश कुमार जी ने किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटों की चोरी की है। तो अब हमारा मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह क्या नाम फार्म में बदलाव नहीं किया था, तो
0: आप स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन कोट करिए ना, कि जिसके वजह देखिए दो अलग अलग आरोप है। पहला आरोप तो यह है कि भाई वो जिस तरीके से चुनाव आयोग चला रहे हैं वो एक तरफा चुनाव आयोग चला रहे हैं, उसमें जो बदलाव कर रहे हैं वो असंवैधानिक है, ये उन पर आरोप है। ऐसा कौन सा ऑब्जर्वेशन है कि जिसके वजह से आप सीधा उसको बीजेपी से जुड़ रहे हैं कि बीजेपी के वजह से चुनाव आयोग मतलब बीजेपी चुनाव जीत रही है तो इन बदलावों की वजह से, ऑब्जर्वेशन के आधार पर जरा स्पेसिफिक बताइएगा।
3: ये ऑब्जर्वेशन उनका, उन्होंने स्पष्ट कह दिया ना कि लेट इट बी क्लियर कि साहब हमने फॉर्म 6 में किसी बदलाव की मंजूरी नहीं दी, और उसी फार्म 6 के बदलाव होने की वजह से या उसमें एनेक्सर जमा करने की वजह से या उसमें एक एडिशनल फॉर्म लगाने की वजह से लाखों मतदाता मतदान करने में वंचित रह गए, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने जो नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई 16 लाख मतदाताओं को डिलीट करने का आदेश और उस कोर्ट में जो अपील करने की बात है वो किसके कहने से की है, इसका भी आप बात कीजिए। उसके बाद जो 14 पॉइंट्स इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में निकले जिसमें उन्होंने 9 पॉइंट सही करने की कोशिश की है, वो सारी की सारी फाइलें मंगवाई गई हैं। आज तक कोई जो प्रेस रिलीज सुप्रीम कोर्ट के सॉरी चुनाव आयोग की थी 26 तारीख की, आप उसी में
0: तो,
3: देखें उन्होंने
0: स्पष्ट माना था। अभी तो दूध का दूध पानी का पानी होना पड़ेगा ना, कम से कम चुनाव आयुक्तों को जाके, क्योंकि नोटिस तो सभी को दिया गया है। ज्ञानेश कुमार के पास भी नोटिस गया है, सुखविंदर संधु को भी नोटिस गया है, विवेक जोशी के पास भी नोटिस गया है। उन सभी को आके इस बात का क्लियर क्लैरिफिकेशन देना होगा कि कब कब उन्होंने सवाल उठाए, कौन से ऐसे 14 फैसले हैं कि जिस पर सवाल उठाए लेकिन उसके बावजूद भी ज्ञानेश कुमार ने डायरेक्टली सीधे सीधे वो फैसले लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद अजय आलोक सवाल अभी भी कायम रहता है। क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम अदालत के भीतर, अदालत को जब लगने लगा है कि अगर ऐसी बात है तो हमने उसकी इजाजत नहीं दी थी, मई महीने तक कोई फॉर्म नंबर 6 के साथ जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं या डिक्लेरेशन उसके साथ जाता है उसमें 2-4 लाइनें गायब रहती है, अब फॉर्म 6 तब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते जब तक आप डिक्लेरेशन भर के नहीं दे दे, यानी कम एक तरीके से वो एनेक्चर हो गया जो उसका पार्ट हो गया है। ये भी तो कहीं ना कहीं तार्किक बात रखने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो स्टैट्यूटरी उसकी सिचुएशन है उसको कहीं ना कहीं भी धक्का नहीं लगना चाहिए, वो प्रावधानों को धक्का नहीं लगना चाहिए, यह बात भी उन्होंने कही थी उसमें। अगर उसके अलावा आप बदलाव करेंगे तो हमसे आके पूछिएगा, उसके बिना बदलाव नहीं होगा।
2: सुप्रीम कोर्ट ने यह कभी नहीं कहा था कि आप कोई बदलाव कीजिएगा तो आके पूछिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा यह कहा था कि रेजिडुअल पावर ऑफ अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन के पास है और उसको, लेकिन वो मनमाने तरीके से लागू नहीं कर सकती है, ये कंसल्टेटिव और अफर्मेटिव की तरह लागू होना चाहिए जिसमें स्टैट्यूटरी प्रावधानों का बिल्कुल।
0: मैं आपको पढ़ के बताता हूं
2: संविधान से,
0: मैं कोट करता हूं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सर, आपको मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कोट करता हूं। द फॉर्मुलेशन ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन रिजीम मस्ट दस रिफ्लेक्ट अ कैलिब्रेटेड बैलेंस इन ड्रॉइंग फ्रॉम स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क, मतलब स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क को धक्का नहीं लगना चाहिए, नंबर एक। व्हाइल अडॉप्टिंग इट वेयर नेसेसरी टू इफेक्टिवली सर्व द पर्पज ऑफ इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल रोल, एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल रोल, यह बात उसमें साफ लिखी गई है। यानी आप स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क को धक्का नहीं लगा सकते, यह बात भी उसमें लिखी गई है कहीं ना कहीं।
2: एकदम स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क को कोई धक्का नहीं लगाया गया है, यही बात तो इलेक्शन कमीशन अब जवाब के जरिए सुप्रीम कोर्ट में देगा। आपने शुरू में बड़ा छोटा सा एक प्रश्न पूछा था लेकिन बड़ा सटीक प्रश्न था, एकदम देखन में चोट लगे गाँव करत गंभीर वाला प्रश्न था जिसको खा गए सुरेंद्र भाई बैठे बैठे। आपने पूछा अगर चुनाव अगर सुप्रीम कोर्ट चुनाव ये खारिज कर देता है ये अर्जी जवाब आने के बाद तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, माफी मांगेगी देश से?
3: मैं जवाब देता हूं,
2: एक महीना से ड्रामाबाजी कर रहे हैं और चुनाव आयोग को विश्वसनीयता
0: को प्रभावित करने की कोशिश। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए,
2: वो तो उस पे तो भाग गए, एक लाइन नहीं बोला उस पे, नहीं नहीं उस पे भाग गए, एक लाइन नहीं बोला, मैं खत्म कर लूं उसके बाद जवाब देंगे।
3: सुने
2: मैं दो बात और कह के बात खत्म
3: कर,
2: मुझे बस ये जवाब दीजिए, आप दीजिएगा जवाब, अभी बहुत सारे जवाब तो आपको अभी देश को देना ही पड़ेगा। जो ड्रामेबाजी चल रही है पिछले एक महीने से, नौटंकी कर रहे हैं आप लोग, देश का माहौल खराब करने की कोशिश, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़े करने की कोशिश, आज कॉकरोच जनता पार्टी जो आप ही का टूल किट है उसका रंका कहता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दूर रहना चाहिए, वो इनकी मिली भगत है। पर ऐसा तो इनका हाल है, इनके हिसाब से नहीं आएगा तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पहले भी प्रश्न उठा चुके
3: हैं।
2: राफेल में क्या हुआ, राफेल में क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट जब गए तो, गुजरात दंगे में क्या हुआ जब सुप्रीम कोर्ट गए तो, ये इनकी आदत है, ये इनकी फितरत।
3: थोड़ी देर बाद अर्जेंटीना पहुंच जाओगे
2: सुप्रीम कोर्ट को,
3: थोड़ी देर बाद चिली पहुंच जाओगे, घाना पहुंच जाओगे।
2: आपने सवाल पूछा ये भाग गए,
3: मैंने कहा
2: सवाल पूछा भाग गए,
3: घाना पहुंच जाओगे,
2: सवाल
0: जवाब सुन लीजिए ना
2: साहिल जी, आप ही का सवाल,
0: सुरेंद्र जी बोलिए जवाब दीजिए,
3: मैंने कहा
2: जी आप ही का सवाल था,
3: हम
0: जवाब दीजिए।
3: सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा 3 जजेस की बेंच से खारिज हो गई तो कांग्रेस पार्टी को अरे सुन तो लीजिए महाराज महाबली, सुन लो अभी, जहां जहां पहुंच के आए हो मंगल ग्रह तक सब जवाब दे रहा हूं, एक लाइन में जवाब दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, आज तक हमने सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को माना है और हम हाथ जोड़ करके ससम्मान इस फैसले को भी मानेंगे। लेकिन आप इस चीज को बता दीजिए, अगर आपके फैसला खिलाफ आया तो नरेंद्र मोदी को क्या आप कान पकड़ करके देश के प्रधानमंत्री के पद से बर्खास्त करवाएंगे, हमारी मदद करेंगे? भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि चोरी से किए हुए जनादेश से नरेंद्र मोदी चुन करके आया है, इसको बर्खास्त करो। हम तो मानेंगे, अगर आप में हिम्मत हो तो कहो अमित शाह को नरेंद्र मोदी को बर्खास्त करेंगे, कहो आप।
4: आपका जो चैनल है,
5: जरा फॉर्म नंबर 6 का ये मामला सुलझा लो पहले, मोहम्मद अमीन जी
4: सुन लीजिए,
5: फॉर्म नंबर 6 का मामला सुलझा लीजिए पहले। फॉर्म नंबर 6 के साथ जो एनेक्शन डी वाला हलफनामा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 27 मई को कहा था कि चुनाव आयोग फॉर्म 6 के अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगने का तार्किक प्रावधान कर सकता है, ठीक है, और इसी पर 13 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया हो गई। लेकिन 13 जुलाई को इस फॉर्म नंबर 6 के साथ जो एनेक्स्टर लगा है, जिसके अलावा फॉर्म नंबर 6 एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है, इसी आईनेट में बदल किया गया उसके लिए, उसका कोई गैजेट नोटिफिकेशन नहीं है और बदलाव में एडिशनल कॉलम्स उसके साथ जोड़े गए। अब बताइएगा कि मई महीने तक एक डिस्क्लोजर के साथ में, डिक्लेरेशन के साथ में आप एसआईआर की प्रक्रिया कर रहे हैं फॉर्म नंबर 6 के साथ में, और 12 जुलाई के साथ डिक्लेरेशन में एक बदलाव करके आप उसी प्रक्रिया को कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिना डिक्लेरेशन के फॉर्म नंबर 6 एक्सेप्ट नहीं होगा, क्या यह संवैधानिक है या नहीं है?
4: मैं साहिल जी एक बात कहना चाहूंगा कि आपका प्रेस्टीजियस चैनल है, दुनिया देखती है, कम से कम कुछ लोग अपने नशे में उल्टी करते हैं, जैसे हमारे लिए कहा गया या और लोगों के लिए कहा जाता है उल्टी सीधी बातें। चाटुकार तो खुद हैं वो लोग जो दूसरों को दूसरे चाटुकार बताते हैं। नंबर एक मैं आपको बताऊंगा कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस बात के लिए कि सीसी को, पहली बात तो आपने खुद ही बताया कि सस्पेंशन वाला खत्म हो गया, अब वो आदेश नहीं दे सकते। उसके बाद ईसीआई को और आयुक्तों को जो है नोटिस जारी करके वही जवाब पूछे गए हैं जो आप बता रहे थे। जो अभी आपने फॉर्म 6 की बात की, फॉर्म 6 में पहले ही मैं कहता रहा हूँ कि फॉर्म 6 में कोई चेंजेस नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज पर रूल, क्योंकि वो पार्लियामेंट में जब तक नहीं जाएगा तब तक नहीं होगा। लेकिन सवाल किस बात का था कि उन्होंने एसआईआर के बारे में जो ऑब्जेक्शन की थे सबने, उसमें ही कहा था इलेक्शन कमीशन के लिए भाई 3, 20, 4, 5 और 6 इन तीनों के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन को संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी प्रक्रिया को पूरा करें, पालन करें, जिसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी वेरिफिकेशन लिस्ट कर सकते हैं, अपने अपने देख रहे हैं कानूनी तौर पे उनके जो वोटर्स हैं वो रजिस्टर हुए नहीं हुए, ये सब बातें थी। यहाँ पे फॉर्म नंबर 6 चेंजेस का नहीं था और ना ही उन्होंने जिक्र किया इस बात को। फॉर्म नंबर 6 का जो डी लगाया गया था वही अब जांच का विषय है, जहां तक साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि देखिए ये जो प्रेस नोट है इस प्रेस नोट पे हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, और उन्होंने वहां के मिनट टू मिनट हर चीज की रिपोर्ट मांगी है। आपको याद होगा इसी तरीके से जब गोयल का अपॉइंटमेंट हुआ था तब भी ये कहा गया था कि उनका जल्दी में अपॉइंटमेंट किया गया, जिसमें सीजीआई इंटरवीन करके खुद आ गए थे।
5: मोहम्मद अमीन जी, मैं स्पेसिफिक सवाल एक बार फिर रिपीट करता हूँ। मोहम्मद अमीन जी एक मिनट, मैं स्पेसिफिक सवाल आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। मैं स्पेसिफिक सवाल रिपीट कर रहा हूँ। डिक्लेरेशन फॉर्म आप ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क को धक्का मत लगाइएगा, आप डिक्लेरेशन मांग सकते हैं एसआईआर के समय पे, ठीक है, मान लिया इस बात को। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि जिस डिक्लेरेशन फॉर्म के आधार पे 13 राज्यों में आप एसआईआर की प्रक्रिया करते हो और 13 जुलाई को, जुलाई महीने में आकर इसी साल में अचानक उस डिक्लेरेशन फॉर्म में दो पॉइंट्स और ऐड कर देते हो, दो कॉलम्स उसमें और ऐड हो जाते हैं, ठीक है, वो ऐड होने के बाद अब इसी आईनेट में आप बदलाव कर देते हो। इसी आईनेट में आप क्या बदलाव करते हो, फॉर्म नंबर 6 तब तक एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक आप डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरोगे, तो एक तरीके से वो पार्ट ऑफ द डिक्लेरेशन फॉर्म नंबर 6 हो गया डिक्लेरेशन फॉर्म, वो साथ में ही एक्सेप्ट होगा, उसके बिना एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। क्या यह संविधान को पकड़ के है या नहीं है, यह संविधान सम्मत है या नहीं है?
4: नहीं है,
5: अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूल्स क्यों है? 13 नहीं है,
4: इसी को मांगा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सारी चीजें, उसके बाद देखने के बाद उसका जो है फैसला आएगा। जो अभी तक अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। उसी के आने के बाद ही सब चीजें विस्तृत रूप से सामने आएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसी पावर है जहां हमारी सारी फाइलें जाएंगी, इलेक्शन कमीशन की एक एक प्रोसीडिंग की, एक एक मिनट की, सर मीटिंग की, और सारे कमिश्नर के क्या पहुंचेगा उसके बाद देखने के बाद मैं समझता हूं कि सही निर्णय आएगा।
5: देखिए अजय आलोक, यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूं। देखिए अभी मोहम्मद अमीन भी कह रहे हैं कि 13 राज्यों में अलग डिक्लेरेशन फॉर्म, 13 राज्य उसके बाद अलग डिक्लेरेशन फॉर्म, वही तो वो कह रहे हैं मोहम्मद अमीन कि ये सही नहीं है।
2: देखिए क्या सही है क्या सही नहीं है इसका निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। चुनाव आयोग अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत तीनों चुनाव आयोग की सहमति से अपने रेजुअल पावर ऑफ अथॉरिटी से कुछ एडिशन या कुछ सब्सट्रैक्शन हमेशा कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है, किसी और ने नहीं कहा है, ये भी ऑर्डर का पार्ट है। तो अब बेहतर है, मैं तो यही कह रहा हूं कि अब सारी फाइल्स और सारी माइन्यूट मिनट्स ऑफ द मीटिंग टोटल चीज सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, और याचिका अगर खारिज होगी तो राहुल गांधी जी को इटली भेज देगी कांग्रेस पार्टी, हम माफी मांगेगी एक महीने से जो ड्रामा कर रही है कि देश के संवैधानिक संस्थाओं का मजाक बना कर दिया यहाँ पे।
6: करोगे नरेंद्र मोदी को, फेंकू को और तड़ी पार को
2: अभी तक के, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है ना, ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है उनका। गुजरात दंगे सुप्रीम कोर्ट में गया शांति, सुप्रीम कोर्ट में गया उसके बाद शांति, रफेल के बाद हर चीज
5: दोनों को शांत,
2: सुप्रीम कोर्ट में गया था।
5: डाउन करिएगा, हम टेम्परेचर्स इलेक्शन कमीशन पे रखते हैं, एक दूसरे पर नहीं करेंगे। और एक दूसरे के नेता के बारे में मैं कई बार कह चुका हूं कि जरा भाई उनको इस तरीके से बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो दोनों पार्टियों से मेरी गुजारिश है कि हम मुद्दे पर रहे और उसी मुद्दे पर हम बात करें। मोहम्मद अमीन जी, आशुतोष श्रीवास्तव और आशुतोष जी के पास जाने से पहले जल्दी से आपसे एक प्रतिक्रिया और एक चाहिए, क्योंकि अब चुनाव आयोग यह कह रहा है कि हम एक स्पेशल ड्राइव करवाएंगे, ठीक है, और उन सारी जगह पर जाएंगे जिन वोटर्स को बाहर निकाला गया है, जिनको डिलीट किया गया है। अब यहां पर SY कुरेशी कह रहे हैं कि भाई जो डिलीटेड वोटर्स है उनसे आप फॉर्म नंबर 6 भरवा ही नहीं सकते, क्योंकि वो डिलीटेड वोटर्स है, फॉर्म नंबर 6 होता है नए वोटर के लिए। तो यह कौन सी नई प्रक्रिया है, क्या यह सही है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद एक और एक स्पेशल ड्राइव?
4: नहीं, फॉर्म नंबर 6 जो है वो फॉर्म नंबर 6 भरा जाएगा उन फ्रेश वोटर्स के लिए होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें लिखा जाता है कि मैं भारत का नागरिक और मेरा कहीं भी भारत के किसी भी निर्वाचन नियमावली में कहीं हमारा अंकित नहीं है, यह डिक्लेरेशन होता है। और जहां तक सवाल है रिवीजन का, वो देखा जाएगा कि किसकी गलती से हुआ है, ये कंप्यूटर की गलती से हुआ है या हमारे BLOC की गलती से हुआ है या नीचे,
5: मतलब पहले आप डिलीट करोगे
4: और वहां पर करके
5: पहले आप डिलीट करोगे और उसके बाद आप कहोगे कि हम दोबारा उनको ऐड करना चाहते हैं, क्या इसीलिए आशुतोष श्रीवास्तव जी, क्या इसीलिए जब उज्जवल भुइयां ये बयान देते हैं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जस्टिस कि लाखों नागरिकों को वोट का अधिकार छीनने वाली कोई भी प्रक्रिया अनुचित है और कोई भी अदालत इसे सही नहीं ठहरा सकती, ये बयान भी बड़ा दिलचस्प है।
7: वो इस बेंच में नहीं है, जो बेंच ये पूरे मामले की सुनवाई कर रही है, ये किसी का भी
5: वो तो ठीक है, वो नहीं है इस बेंच पे, सिटिंग जस्टिस है।
7: अब देखिए जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, जो आज जो हुआ है उस पे अगर हम बात करें तो जैसे कहा जा रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया और जो मांगा गया था कि उनको जो है इलेक्शन कमीशन को जो है डिसमिस किया जाए, रिमूव किया जाए, तो मैं ये बता दूं पहले तो कि ऐसा कोई पावर कोर्ट के पास नहीं है कोई भी, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का रिमूवल जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं, और वो भी जो पार्लियामेंट्री जो प्रोसेस है जो इंपीचमेंट का, जैसे इस मामले में हम देखें तो आर्टिकल 324 उसका जो 5 है उसमें जो है पूरे प्रोविजंस दिए गए हैं कि क्या बेसिस पे जो है आप इंपीच कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और उसके लिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज का इंपीचमेंट का प्रोसेस है सेम प्रोसेस जो है वहां पे भी अप्लाई करेगा। तो ये जो मानना कि रिमूव करेगा सुप्रीम कोर्ट, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब रहा बात कि सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाला है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है एग्जामिन करने वाला है कि जो पावर्स दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि देखिए सेपरेशन ऑफ पावर है इंडिया में या कोई भी डेमोक्रेसी में, तो सेपरेशन ऑफ पावर में क्या होता है कि जुडिशियरी को अपना पावर है, लेजिस्लेचर को अपना पावर है, एग्जीक्यूटिव को अपना पावर है। तो इलेक्शन कमीशन को ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से रखा गया है कि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह वो काम करेगा और वो देश के हित में डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सही उचित डिसीजन हो सकता है जो आर्टिकल 324 उसको देता है सारा।
5: यही तो बात है ना
7: कि आप
5: अगर अगर कल सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात पर चर्चा होगी कि अगर एक तरफा फैसले लिए गए हैं, फॉर्म नंबर 6 के डिक्लेरेशन में 12 जुलाई से अचानक बदलाव किया गया है, जो लाखों करोड़ों मतदाता निकाले गए, जस्टिस भुइया यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो फैसला कभी सही नहीं हो सकता, सिटिंग जस्टिस कह रहे हैं उस बात को लेकर,
7: मैं उसी पे आ रहा हूं। अब ये जो फैसले 324 में जो दिए गए हैं जो पावर्स, अब ये सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये देखना है कि क्या इस पावर का सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है, या इसको एक्सीड किया गया है इस पावर को। अब देखिए, जो साथ में अगर हम इलेक्टोरल रूल्स देखें 1960 का, तो अब सुप्रीम कोर्ट को एग्जामिन करना है कि क्या इसका वायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि 324 सर्टेन पावर्स देता है, लेकिन जो फॉर्म 6 में जो अमेंडमेंट के लिए जो इलेक्टोरल रूल्स है हमारा 1960, उस समय ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। अब सवाल है कि अगर कोई रूल इलेक्शन कमीशन बनाता है तो उसके लिए जो हमारा कानून जो अभी नया बना था उसमें जो अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एक्ट है जो 2023 में, उसमें सेक्शन 18 में यह कहा गया था कि जो एक चीफ इलेक्शन कमीशन होगा और दूसरे दो इलेक्शन कमीशन होंगे, और ये दोनों, ये जो कोई भी अगर फैसला किया जाएगा तो कम से कम दो की सहमति होनी चाहिए, यानी मेजोरिटी से फैसला दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो
5: भी बात उसकी नहीं है, ये तो प्रक्रिया सबको पता है अभी।
7: नहीं,
5: आशुतोष जी, सवाल उस बात का नहीं है, सवाल ये है कि उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर पूछने की कोशिश कर रहा है भाई कैसे आपने फैसला लिया, हमने तो इसकी इजाजत नहीं दी थी। इलेक्शन कमीशन प्रेस रिलीज निकाल के कहता है कि हम ये इसमें बदलाव करना चाह रहे हैं,
7: इसीलिए
5: कुछ ना कुछ तो छुप रहा है ना इसमें, इसीलिए तो चुनाव सुप्रीम कोर्ट के सामने गए लोग।
7: इसीलिए अपॉर्चुनिटी दिया गया इलेक्शन कमीशन को नोटिस द्वारा कि आप बताइए कि आपने ये फैसले जो हैं यूनिलैटरल लिए हैं या यूनानिमस लिए हैं, आपने सहमति से लिए।
5: सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब देगा अफिडेविट के तौर पर, क्योंकि तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स के पास, आशुतोष जी, तीनों आशुतोष जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक है, तीनों इलेक्शन कमिश्नर के पास ये नोटिस गई है, उसके साथ साथ जो उनकी टेक्नोलॉजी और ये सारी जो हेड है उनके पास भी ये नोटिस भेजी गई है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि चुनाव आयोग ने अचानक प्रेस रिलीज निकालकर कहा कि अब इसके आगे हम मीटिंग्स, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स रखेंगे, एजेंडा शेयर करेंगे, ईसीआई नेट की जो प्रक्रिया है उसकी जांच करेंगे, उसका रिव्यू किया जाएगा, वो सारे बदलाव उन्होंने करना बोलना शुरू कर दिया उसमें। ये बदलाव देखते हुए आपको क्या लगता है? एक मिनट
8: देखिए साहिल,
5: आशुतोष जी जो हमारे तो,
8: साहिल मैं तथ्यों के आधार में बात करता हूं, मैं तो रेटरिक्स में बात करता रही हूं। 26 तारीख को, पिछले महीने 26 तारीख को चुनाव आयोग का एक प्रेस रिलीज है, उसमें पहले पैराग्राफ का साफ तौर पर लिखा हुआ, डिक्लेरेशन अटैच टू फॉर्म 6 फॉर एसआईआर हैज बीन अपहेल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अपहेल्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी फॉर्म 6 में जो बदलाव किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। अब इसी चीज को आप आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो कह रहा है लेट्स बी वेरी क्लियर, एनी मॉडिफाइड फॉर्म 6 हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय अस, लेट अस आल्सो बी क्लियर दैट व्हेन द रिपोर्ट विल बी प्रोड्यूस वी विल लाइक टू सी हु हैज मॉडिफाइड दैट। यानी सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान रहा है कि एसआईआर फॉर्म 6 में बदलाव किए गए, इसलिए वो कह रहे किसने बदलाव किया मुझे ये बताइए, और इसके साथ साथ तो कह रहे हैं हमने इस बारे में कोई मंजूरी नहीं दी। अगर उसके बावजूद भी अगर कोई इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है तो फिर उसका भगवान ही मालिक है। अब मैं आपको बता दूं, चलिए आप जो एसएस संधु ने, जो विवेक जोशी ने 16 मई को जो अपना लिखा हुआ है, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है प्रिस्क्राइब दैट दे आर प्रिस्क्राइब्ड स्टेट्यूटरी एंड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड विदाउट मेकिंग अमेंडमेंट्स इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल 1960। फिर वो आगे लिखते हैं कि इसके लिए अगर कोई बदलाव करना है तो फिर इसे हमें सरकार के पास भेजना पड़ेगा। 13 अगस्त को एसएस संधु साफ तौर पर कहते हैं कि हमने और जोशी जी ने जो फॉर्म 6 को लेकर बदलाव के बारे में अपनी टिप्पणियां ऑब्जेक्शंस किए थे उसमें अभी तक बदलाव नहीं हुआ है। अब मुख्य चुनाव आयोग के दो चुनाव आयुक्त, यानी वो गलत बात कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी गलत बात कह रहे हैं, प्रेस रिलीज जो निकाली गई वो बिल्कुल सही है,
5: नोटिस भेजा है ना,
8: गलत बोल रहे हैं।
5: जो रिपोर्ट में, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में जो जो बातें आई हुई है, या तो उन्हें एफिडेविट पर वो एक्सेप्ट करनी होगी, क्योंकि अब तक तो चुनाव आयोग ने इस पर कुछ नहीं कहा है, या तो उन्हें कहना पड़ेगा कि जो रिपोर्ट आई है वो गलत है, हमने तो किसी भी चीज पर सवाल ही नहीं उठाए थे, क्योंकि स्पेसिफिक उनको कोट किया गया।
8: चूंकि दोनों चुनाव आयुक्तों की राय बिल्कुल अलग है, इसलिए चुनाव आयोग का फैसला तो है ही नहीं, स्पष्ट है ये इलीगल फैसला अपने आप में। दो भाई तीन लोग हैं, दो कह रहे हैं हम इससे सहमत नहीं है, तो इलीगल फैसला है और आर्बिट्रेरी तरीके से ज्ञानेश कुमार जी ने इसको किया है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के आज इस टिप्पणी के बाद से बिल्कुल स्पष्ट है कि यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। आपने सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है। अगर इसके बाद भी कोई थिथरा ही करता तो मुझे कुछ नहीं कहना इस बारे में। अगर इसके बाद भी जस्टिफाई कर रहा है तो फिर सवाल खड़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ज्ञानेश कुमार जी का इतनी मजबूती के
5: इलेक्शन कमीशन के तरफ से इस बात का क्लेरिफिकेशन देना होगा कि उनके प्रेस रिलीज में यह बात क्यों लिखी गई थी और अपहेल किया गया था तो किस बात को अपहेल किया गया था। 12 जुलाई को जो बदलाव किए गए वो आखिरकार क्यों बदलाव किए गए थे, और जो 14 बार जो कहा गया है इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट में कि इन दो चुनाव आयुक्तों ने कई सवाल उठाए थे कई फैसलों पर, क्या वो सचमुच में सवाल उठाए गए थे? जो फैसले लिए गए उसके लिए क्या मीटिंग हुई? मिनट्स ऑफ द मीटिंग कहां है? क्योंकि उस दिन के प्रेस रिलीज में चुनाव आयोग खुद ही कहता है कि इसके आगे एजेंडा भी शेयर किया जाएगा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी किया जाएंगे। अजय आलोक जी, अंतिम में 20 सेकंड है आपके पास, अब सही सही जवाब देना पड़ेगा कम से कम।
9: मैं कह रहा हूं जी थेथरा ही उसको कहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, जवाब तो चुनाव आयोग देगा ही, पूरी देगा, लेकिन आशुतोष जी थेथरा ही उसको कहते हैं कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी सुप्रीम कोर्ट पे मांग मांग के लोग थेथराई करते हैं, उसके बावजूद भी यही सब काम करते हैं कि बाद में फिर से अपॉलॉजी मांगने पड़े। थेथराई उसको कहते हैं। आप जो बात कह रहे हैं डिसेंट नोट, आपने डिसेंट नोट देखा क्या चुनाव आयोग का? आपको कैसे पता कि दोनों ने डिसेंट नोट दिया था, यूनिलैटरल फैसले लिए गए? इसको कहते हैं नेगेटिव बनाना, जो आप कर रहे हैं इसको कहते हैं थेथराई से गलत नेगेटिव बनाना, थेथराई से गलत नेगेटिव बनाना इसी को कहते हैं। आप तो डिसेंट नोट जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट में, फिर थेथराई करते रहिएगा आप लोग। थेथर थेथर कौन है ये सबको पता है लाइन से, आप लोग हैबिचुअल थेथर हो गए।
5: कई सारे सवाल है चुनाव आयोग पर, कई सारे सवाल है जिसके जवाब चुनाव आयोग को अब सुप्रीम कोर्ट के सामने देने हैं। अगर दोनों चुनाव आयुक्तों ने कई मुद्दों पर सवाल उठाए थे तो दोनों चुनाव आयुक्तों को जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहना होगा कि किन मुद्दों पर उनके सवाल थे, ऐसे कौन से फैसले थे जो उनको पूछे बिना लिए गए, जो जिस तरीके से रिपोर्ट में कहा गया है। और उसके साथ साथ ज्ञानेश कुमार को भी इस बारे में जानकारी रखनी होगी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आखिरकार फॉर्म नंबर 6 में अगर बदलाव किए गए हैं तो वो क्यों किए गए हैं, क्या डिक्लेरेशन फॉर्म में बदलाव की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दी थी या उनका रवैया उस तरीके से था कि उन्हें लगा कि जो पहले आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया उसके आधार पर वो इसका फैसला ले सकते हैं। ईसीआई नेट में बदलाव को लेकर जो अब रिव्यू किया जाने वाला है वो आखिरकार क्यों किया जाने वाला है, और सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस के पहले चुनाव आयोग आकर ये क्यों कहता है कि इसके आगे जो भी मीटिंग्स चुनाव आयुक्तों की होगी उसका मिनट्स ऑफ द मीटिंग में रखा जाएगा और उसके साथ साथ एजेंडा भी शेयर किया जाएगा, लोगों के सामने ये बात आना जरूरी है। चलिए फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
2: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
1: स्मॉल बैंक,
2: स्मॉल privilege savings account, garima savings account, maxima business, edge current account, business maxima business privilege, rdf, there's nothing small about them.
1: Okay.
2: Ujjivan, nothing small about us.
3: tera pyar pyar pyar unta baat sir ek baar do thumka lagane bas
4: mere paas ek idea hai.
3: kya
4: ek don ke ghar ko 12 mulkon ki police ne charo taraf se gher liya hai lekin wo ghar ko tod nahi paaye.
5: runta tmt bar se jo bana hai
6: ek rockstar hota hai. अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
7: क्योंकि वो मजबूत रूंगटा टीएमटी से बना है.
8: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है. लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है.
6: कौन सी बनानी है?
9: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए. गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%.
10: गड़बड़ है.
11: गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं. गैसोफा, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन.
12: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर. मेंटर, तरक्की का ऑलराउंडर.
13: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इन एसोसिएशन विद
3: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते।
4: My dad was actually very rich and he became so poor that factory नीलाम हो गई, घर नीलाम हो गए, किराए देने के पैसे नहीं, घर के बाहर नहीं निकल सकते थे। इतना अनाड़ी था। पहले दो साल की मेरी मिस्टेक है, सुन जाओगे ना रजत सर, मुझे यहाँ पॉडकास्ट पे बिठाओगे। उड़ने के लिए आपको ग्लास सीलिंग तोड़नी पड़ती है। बहुत पॉपुलर मिस्टेक है। जो अच्छा चलेगा, आपका दिमाग ये कहता है कि वो अच्छा चलता जाएगा। जो बुरा चल रहा है वो बुरा चलता जाएगा। दिस इज कॉल्ड रीसेंसी बायस।
5: एक ऐसी चीज जो पैसा खरीद नहीं सकती।
4: वक्त आपके पेरेंट्स के साथ है। So this is what money will not be able to buy. You might become a billionaire, but you will regret this eternally till your last breath.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: इन एसोसिएशन विद
3: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: विमल बोलो जुबा केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते।
4: माय डैड वाज एक्चुअली वेरी रिच एंड ही बिकेम सो पुअर दैट फैक्ट्री नीलाम हो गई, घर नीलाम हो गए, किराए देने के पैसे नहीं, घर के बाहर नहीं निकल सकते थे। इतना अनाड़ी था। पहले दो साल की मेरी मिस्टेक है, सुन जाओगे ना रजत सर, मुझे यहाँ पॉडकास्ट पे बिठाओगे। उड़ने के लिए आपको ग्लास सीलिंग तोड़नी पड़ती है। बहुत पॉपुलर मिस्टेक है। जो अच्छा चलेगा, आपका दिमाग ये कहता है कि वो अच्छा चलता जाएगा। जो बुरा चल रहा है वो बुरा चलता जाएगा। दिस इज कॉल्ड रीसेंसी बायस।
5: एक ऐसी चीज जो पैसा खरीद नहीं सकती।
4: वक्त आपके पेरेंट्स के साथ। So this is what money will not be able to buy. You might become a billionaire, but you will regret this eternally till your last breath.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सियासी आरोप बेहिसाब है, लेकिन अदालत की चौखट तक जब आरोपों की फेहरिस्त पहुंची, तो उसमें यही कहा गया कि ज्ञानेश कुमार असंवैधानिक काम कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार ने 14 एकतरफा फैसले लिए हैं। ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म 6 में अवैध तकनीकी बदलाव कर दिया, 14 करोड़ योग्य मतदाताओं का नाम हटा दिया, बंगाल में आयोग के नाम से 16 करोड़ 10 लाख अवैध अपीलें दाखिल कराई, इसीलिए उन्हें फौरन निलंबित कर दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश की अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनी, लेकिन ज्ञानेश कुमार के अंतरिम निलंबन पर कुछ नहीं कहा। याचिकाकर्ता ने कहा कि सीईसी संवैधानिक प्रावधान के विपरीत काम कर रहे हैं, एक तरफा फैसले ले रहे हैं। कोर्ट ने कहा, आप ये अखबार की रिपोर्ट के आधार पर कह रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा, चुनाव आयोग ने खबर का खंडन नहीं किया। कोर्ट ने कहा, खबर सही या गलत हो सकती है, लेकिन हम उस आधार पर आदेश पारित नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता ने कहा, इतने ऊंचे पद पर बैठा शख्स कानून का उल्लंघन कर रहा है। कोर्ट ने कहा, जब रिकॉर्ड पेश होगा तो देखेंगे फॉर्म 6 में तकनीकी बदलाव किसने किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि फॉर्म 6 में जो जुलाई 2026 में बदलाव किए गए हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई मंजूरी नहीं दी है। अदालत ने चुनाव आयोग को नोटिस देकर जवाब मांगा है, लेकिन जवाब की मियाद तय नहीं की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देश भर में आंदोलन एक अखबार के खुलासे के बाद से हो रहा है, जिसमें पता चला कि आयोग के कई फैसले सर्वसम्मति से नहीं हुए और आरोपों की धुंध छटी, तो सबसे बड़ा मुद्दा फॉर्म 6 में अवैध बदलाव का सामने आया। विवाद फॉर्म 6 के साथ अनिवार्य किए गए इस घोषणा पत्र को लेकर है, जिसमें 12 जुलाई को सिर्फ डिजिटली बदलाव कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा है कि चुनाव आयोग ने ये असंवैधानिक बदलाव किए, क्योंकि अखबार ने चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु के हवाले से ऐसा खुलासा किया। सफाई में चुनाव आयोग ने कहा कि फॉर्म 6 के साथ अटैच किए गए डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है और एसआईआर के बाद फिर वही पुराना सिर्फ फॉर्म 6 इस्तेमाल होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कहा है कि कोर्ट ने ऐसे किसी बदलाव को मंजूरी नहीं दी। दरअसल मामला 2 साल पहले बिहार एसआईआर के समय का है, तब आयोग ने एनेक्सर डी जोड़ा और उसे जरूरी बताया। उसमें गलत जानकारी पर 1 साल की सजा तक का प्रावधान था। इसके बाद 11 दस्तावेजों की अनिवार्यता पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वहां सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई 2026 को साफ कहा कि एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग सिर्फ फॉर्म 6 तक ही सीमित नहीं है, उसके पास एसआईआर के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन के तरीके में बदलाव का अधिकार है, लेकिन आयोग को नियम कानून का ध्यान रखना होगा और बदलाव का तार्किक संबंध भी होना चाहिए। इसी आदेश को चुनाव आयोग फॉर्म 6 के साथ एनेक्सर डी को जोड़ने को वाजिब ठहरा रहा है, जबकि इस बीच एनेक्सर डी में एक ऐसा बदलाव हुआ जिस पर सवाल उठे। 12 जुलाई को चुनाव आयोग की वेबसाइट ईसीआई नेट पर डिक्लेरेशन एनेक्सर में बदलाव हुआ। माता पिता या दादा दादी के पिछले एसआईआर के ब्यौरे मांगे गए, वोटर कार्ड नंबर से लेकर क्षेत्र का नाम, बूथ नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर तक मांगे गए। दावा है कि इसी बदलाव पर चुनाव आयुक्त एसएस संधू ने आपत्ति जताई और इसे असंवैधानिक करार दिया था। दरअसल फॉर्म 6 यानी नए वोटर को दिक्कत ऑनलाइन फॉर्म भरने में हुई, क्योंकि नया एनेक्सर भरे बिना फॉर्म जमा नहीं हो सकता था। ऑफलाइन फॉर्म फिर भी जमा हो रहे थे। फॉर्म 6 के अंदर ये बदलाव जुलाई में हुए, जब देश के 13 राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में पुराने डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ एसआईआर भी हो चुका था और फॉर्म 6 जमा भी हो चुके थे, यानी इन राज्यों के लिए चुनाव आयोग ने दूसरा पैमाना रखा और बाकी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, इन 19 प्रदेशों में नए डिक्लेरेशन के साथ फॉर्म 6 के तहत नए वोटर का रजिस्ट्रेशन नियम फॉलो किया। एसआईआर की एक प्रक्रिया में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पैमाना अपनाने को लेकर सवाल उठे और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसले पर उठ रहा है। अब आयोग को बताना होगा कि मौजूदा एसआईआर के फॉर्म 6 में डिक्लेरेशन में दादा दादी के ब्यौरे जोड़ने की अनिवार्यता किस तार्किक संबंध की कसौटी को कैसे पूरा करता है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। दिल्ली के जंतर मंत्र पर कल देर शाम यूथ कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध की मशाल जलाई। कल दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक और प्रदर्शन आयशा ने किया। तस्वीरें देखिए किस तरह पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटा रही है। आयशा कार्यकर्ता आंध्र भवन से जंतर मंत्र की तरफ मार्च कर रहे थे, जिसे बीच में ही पुलिस ने रोक दिया।
1: सवाल ये नहीं है पुलिस आगे जाने दे रही है, नहीं, सवाल ये है कि पुलिस महिला आंदोलनकारियों के साथ किस तरह से व्यवहार कर रही है। आप देखिए, ये बहादुर महिलाएं हैं जिन्होंने हिम्मत के साथ दिल्ली पुलिस के जो बदमाशी है उसको एक्सपोज किया है।
2: ये है पुलिस चोर को बचाने में, पुलिस चोर को बचाने में इतनी मशरूफ हो गई है, दिल्ली में पुलिस चोरों को बचा रही है, ये रियलिटी है।
0: प्रदर्शन का एक और मोर्चा दिल्ली के संसद मार्ग थाने पर भी देखा गया। यह मुद्दा था 3 अक्टूबर के प्रदर्शन के दौरान 3 महिला पत्रकारों से बदसलूकी करने वाले पुलिस अफसर पर कार्रवाई की मांग का।
3: ये है कि ये पुलिस थाना का केवल एक ही काम है, एक सेक्सुअल हैरेसर को बचाने का आज ये थाना बना है। ये सेक्सुअल हैरेसर को बचा रहे हैं। हम लोग सालों से संघर्ष करके कानून बनवाए हैं कि किसी भी लड़की की कंप्लेंट पर एफआईआर करना अनिवार्य है। ये पूरे कानून को बदल रहे हैं इस केस में और एसीपी को बचाने का काम कर रहे हैं।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर विपक्ष की तरफ से चौतरफा घेराबंदी जारी है। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: एसआईआर के तहत फॉर्म 6 में बदलाव पर फंसा चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट की 2-2 हमने चेंज को नहीं दी थी मंजूरी। इलेक्शन कमीशन और केंद्र को थमाया नोटिस। ज्ञानेश कुमार के तुरंत निलंबन से इनकार। ज्ञानेश कुमार पर राहुल गांधी के संगीन आरोप। कहा बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए फॉर्म 6 के लिए में किए गैर कानूनी और एक तरफा बदलाव। मकर द्वार से मुख्य चुनाव आयोग ऑफिस तक कल विपक्षी मार्च। चुनाव से पहले राज्यसभा सीट से जातीय समीकरण साधने में जुटी बीजेपी। लिस्ट में 3 ओबीसी, 2 दलित, 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय का नाम। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, बीएल वर्मा आउट। बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर से वापस भेजे गए 150 लोग। बागडोगरा से बीएसएफ इन्हें भेजेगी सीमा पार। 7 अक्टूबर को एक और कार्रवाई की तैयारी। मेडिकल साइंस में क्रांति के लिए 3 वैज्ञानिकों को मिला नोबेल। रोशनी से दिमाग की नसें ऑन ऑफ करने वाली ऑप्टोजेनेटिक्स तकनीक खोजने के लिए सम्मान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: दायित्वों का लगातार निर्वाह कर रहा था, आज मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। मैं अपने प्रांतीय और राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता
1: हूं। पार्टी ने जो हम पर भरोसा किया है, हमेशा काम लिया है, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूं।
2: जिम्मेदारी, जो विश्वास पार्टी ने मुझ पर दिखाया है, महिला शक्ति पर दिखाया है, उसको पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास करूंगा।
3: जनता की आवाज उठाने का काम करूंगा और पार्टी को मजबूती प्रदान करूंगा।

0: हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के 8 उम्मीदवारों की घोषणा की। बीजेपी ने उम्मीदवारों का चयन जिस तरह से किया है उसने यूपी से लेकर देश की सियासत के लिए दिलचस्प समीकरण अब बना दिए हैं, क्योंकि ये बड़ा दाव लग रहा है सीधा चुनाव के लिए। बीजेपी ने खाली हो रही सीटों के अपने एक भी मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं उनको रिपीट नहीं किया है। इसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और बीएल वर्मा के नाम शामिल हैं। तो ये तो हो गए संभावित, मतलब जो उम्मीदवारों के नाम है वो हैं, लेकिन बात हरदीप पुरी की हो रही है तो उनकी भी तस्वीर चला दीजिए, क्योंकि हरदीप पुरी और बीएल वर्मा के नाम शामिल हैं कटने में। इसका मतलब समझिए, यानी इसका अर्थ यह है कि जल्द ही मोदी सरकार में फेरबदल की संभावनाएं बड़ी हो गई हैं, क्योंकि 6 महीने तक आप किसी भी, मतलब अगर आप लोकसभा राज्यसभा में नहीं है तो 6 महीने तक तो आप मंत्री कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपका मंत्री पद चला जाएगा अगर आपको राज्यसभा से कहीं से नामांकित नहीं किया जाता है, आप राज्यसभा सांसद नहीं बनते। और वो भी सोचिए, अभी राज्यसभा, अगला राज्यसभा उत्तर प्रदेश के बाद 2028 में है, तो ये जो पीरियड था बीच का वो तो अब निकल रहा है इन दोनों के लिए, चाहे वो बीएल वर्मा हो या फिर हरदीप पुरी हो। तो संकेत साफ है कि मंत्रिमंडल में भी अब नया फेरबदल हो सकता है, बड़ा हो सकता है। उधर जो 8 नाम चुने गए हैं अब उस पर आते हैं। उसके जरिए अखिलेश यादव का जो पीडीए है उसके दावों को काउंटर करने की कोशिश माना जा सकता है सीधे, क्योंकि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों, सभी लगभग सामाजिक समीकरणों का ख्याल रखने की कोशिश की है। इसलिए आज हम सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यूपी में हो रहा ये राज्यसभा का चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर बनकर आया है। 8 लोगों के नाम वो सामने कर देते हैं। उधर समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव और दूसरे हैं नाथवानी जी, जो कि गुजरात के हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज से हैं। तो उनका कितना पैठ उत्तर प्रदेश की राजनीति में होगा या वो फैसला कितना काम आएगा चुनाव में, इन सब पर चर्चा करेंगे। क्या अखिलेश के पीडीए को इधर बीजेपी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवारों से चुनौती दी है? राज्यसभा का चुनाव 2027 का दाव, यही है आज का हल्ला बोल का विषय। एक एक जो नाम आज बीजेपी की तरफ से आए आपको बताएंगे भी कि आखिर इन लोगों की पहचान क्या है, क्यों ये अब राज्यसभा के लिए नामांकित किए। पहले ये रिपोर्ट देंगे। उत्तर प्रदेश की खाली हुई राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी ने अपने 8 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। ये नाम है धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्णा पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार। इन 8 नामों में 2 अनुसूचित जाति है। अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 उम्मीदवारों में 1 लोधी, 1 पाल और 1 कुर्मी जाति के हैं। सवर्ण जातियों में 2 ब्राह्मण और 1 राजपूत है। इन 8 उम्मीदवारों में 2 महिलाएं भी हैं।
1: ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पार्टी ने जो हम पर भरोसा किया है, हमेशा काम लिया है, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूं और पार्टी का काम और आगे बढ़ा सकूं सेवा के भाव से।
2: जिन्होंने मुझ जैसे सामान्य पृष्ठभूमि वाले कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया है, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
3: और जो जिम्मेदारी, जो विश्वास पार्टी ने मुझ पर दिखाया है, महिला शक्ति पर दिखाया है, उसको पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास करेंगे।
0: बीजेपी ने मौजूदा राज्यसभा सांसद रहे किसी को फिर मौका नहीं दिया है। टिकट नहीं पाने वाले जो सबसे खास नाम है वो है केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राज्य मंत्री बीएल वर्मा। यानी मोदी मंत्री परिषद में जल्द फेरबदल की संभावनाएं और बढ़ गई हैं। इससे पहले रवनीत सिंह बिट्टू का राज्यसभा टिकट कटने के बाद उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। उधर इन 8 नामों के जरिए 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव के समीकरणों को मजबूत करने की बीजेपी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के इन 8 उम्मीदवारों की घोषणा से पहले समाजवादी पार्टी 2 उम्मीदवारों का नामांकन करा चुकी है। फिर एसपी के उम्मीदवार बने रामगोपाल यादव का नाम तो पहले से तय था, लेकिन धनराज नाथवानी के नाम पर बहस जारी है। एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बड़े अधिकारी परिमल नाथवानी के बेटे धनराज की उम्मीदवारी के बाद बीजेपी अखिलेश यादव के पीडीए पर सवाल उठा चुकी है।
4: ये एक नई पीढ़ी, नई सोच के व्यक्ति को मैं भेजने का समाजवादी पार्टी को मौका मिला है और समाजवादी पार्टी इस बदलते हुए दौर में जहां पर कई दलों का बहुत दबदबा है कॉरपोरेट वर्ल्ड में और कई उद्योगपति न केवल उद्योग का कारोबार कर रहे हैं या उद्योग चला रहे हैं, अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, बल्कि समाज में भी वो समय समय पर काम करते हैं, उनकी सेवाएं भी हैं।
5: इस पीडीए में केवल पी काम आया। पी का मतलब परिवार और पी का मतलब पूंजीवाद। ये समाजवाद तो बहुत दूर हो गया। पूंजी के आधार पर, परिवार के आधार पर उन्होंने अपने उम्मीदवार तय कर दिए और बाकी डीए तो केवल नारा लगाने का काम करेगा। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक केवल नारा लगाएगा और कुर्सी पर केवल परिवार और पूंजीवाद जाएगा।
0: उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों में 7 पर बीजेपी और 2 पर समाजवादी पार्टी आसानी से अपने अपने उम्मीदवार जिता सकती है। 1 सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी है। ऐसे में अगर विपक्ष की ओर से कोई तगड़ा दावेदार मैदान में उतरता है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। आज तक ब्यूरो। सबसे पहले आपको जल्दी से बता देते हैं कौन कौन मेहमान आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, मनोज काका प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम लोग चर्चा की शुरुआत करें, जो ये सामाजिक या फिर जैसा भी देखिए इसको, क्योंकि बीजेपी जो समीकरण साधने की कोशिश कर रही है उसमें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं फुल स्क्रीन, इसको दिखाइए क्योंकि बड़ा छोटा लिखा हुआ है, देखना मुश्किल है। ये देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन से क्षेत्रों को साधने की कोशिश है। तो धर्मपाल सिंह 73 साल के हैं, आंवला बरेली से ये हैं और जो लोधी आबादी है उनको साधने की कोशिश है। तो ये पूरा इलाका जो है, देखिए बघेलखंड का इलाका जिसको साधने की कोशिश है। इधर जब आप श्रुति गंगवार को देखते हैं तो वो भी बघेलखंड का, बरेली का इलाका। प्रियंका सिंह रावत से बाराबंकी का इलाका, राम प्रताप सिंह चौहान से आगरा का जो ब्रज का इलाका है वो है, विद्यासागर सोनकर से जौनपुर यानी पूर्वांचल को भी साधने की कोशिश है। वहीं जब आप राधाकांत ओझा को देखें तो प्रयागराज पूर्वांचल को साधने की कोशिश है, तो पूर्वांचल में काफी दाव खेलती हुई दिख रही है। इधर बुंदेलखंड कानपुर में देखिए प्रकाश पाल, गोपी कृष्णा पांडे भी कानपुर। तो ये पूरा पैन उत्तर प्रदेश जो है ना उसको साधने की कोशिश बीजेपी इसके जरिए ही कर रही है। और इसी के साथ साथ हम आपको जो जाति जिससे वो आते हैं वो दिखा देते हैं, क्योंकि अगर 2 अनुसूचित जाति के हैं तो 3 ओबीसी से हैं, 3 ओबीसी से हैं, जिसे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की नजर कहां कहां पर है। 3 ओबीसी जो है इसमें लोधी, पाल और कुर्मी तीनों समुदाय से हैं। 3 सवर्ण है कुल, जिसमें 2 ब्राह्मण 1 राजपूत। और ये अपने आप में बता रहा है कि ब्राह्मणों को, क्योंकि हमेशा विपक्ष आरोप लगाता है कि ब्राह्मण नाराज है, 2 महिलाएं भी इसमें शामिल की गई हैं। अब जो अगला है वो एक एक करके सबका दिखाते रहिए, क्योंकि जो लोधी समाज है उसकी आबादी लगभग 3% है जिसको साधने की कोशिश है। उसके बाद से जब आप देखते हैं पासी समाज, तो लगभग 3.5% उनकी आबादी है, जो तीसरे नंबर का ग्राफिक से एक एक करके सबका दिखाएंगे तो क्लैरिटी आएगी, 3.5%। उसके बाद से क्षत्रिय जो है वो लगभग 7% उनकी आबादी है, 1% खटिक समाज की, जिनमें से विद्यासागर सोनकर को चुना गया है। इसी के साथ प्रकाश पाल जो कि पाल गडेरिया ओबीसी समाज से आते हैं, 1% आबादी है, 5% कुर्मी आबादी, श्रुति गंगवार चुनी गई है। गोपी कृष्ण पांडे ब्राह्मण, लगभग 7% आबादी है। वहीं जब आप राधाकांत ओझा को देखें प्रयागराज के, तो वो भी ब्राह्मण को रिप्रेजेंट करते हैं, 7% आबादी है। तो क्या इसी के जरिए सीधा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की गोटी खेल रही है बीजेपी? और गौरव जी, इसमें एक और प्रश्न जोड़ देती हूँ, अभी आप पी लोग, उस दिन भी जब आपसे बहस हो रही थी आप लोग पी से परिवार, पी से पूंजीपति कह रहे थे, तो श्रुति गंगवार भी तो संतोष गंगवार की बेटी ही है, तो परिवार के लिए जगह बनानी ही पड़ती है आप लोगों को भी।
6: धन्यवाद अंजना जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, जब आज हमने 8 नाम घोषित किए हैं तो इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास सब है। और हम ये बड़े गर्व से कह सकते हैं कि अगर हम महिला आरक्षण की बात करते हैं तो उसको चरितार्थ करते हैं संसद में कानून पारित करके। और आज भी जो सूची आई है, मैं शुरू करूंगा महिला सशक्तिकरण से ही, उसमें 2 नाम महिलाओं के हैं, 25% 8 में महिलाओं की ही भागीदारी है। ओबीसी 3 नाम है, करीब 38% हुई। जो जनरल कैटेगरी है उसके भी 3 नाम हैं, जो 38% हुई। और जो पिछड़े एससी जाति के हैं वो भी 3 नाम है, 2 नाम हैं, जो 25% हुई। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है एक दूरदर्शिता है और नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग चाहते हैं हर वर्ग से, हर समाज से व्यक्ति आगे आए और वो संसद में अपनी बात रख सके, प्रतिनिधित्व कर सके अपने समुदाय का। जब मैं ये कहता हूं, दूसरी तरफ देखिए समाजवादी पार्टी की भी मैंने सूची देखी, दो स्थान थे, एक उन्होंने दिया यादव परिवार को, रामगोपाल यादव जी को। अब ये वो यादव परिवार है कि जब लोकसभा में टिकट बांटने की बात आई थी ना, अंजना जी 5 टिकट दिए थे, मान लीजिए 50 सदस्य राजनीति में है यादव परिवार के, तो 5 सदस्य जो है वो उनके परिवार के थे, और मुसलमानों को कहते हैं ना PDA, तो मैं पूछना चाहता हूं कि पिछड़ा कौन है? दूसरा नाम जो आया है वो पूंजीपति का नाम है, तो डी से डायनेस्टी, पी से पूंजीपति, इसके अलावा अल्पसंख्यक हमें दिखाई नहीं दिया, पिछड़ा हमें दिखाई नहीं दिया, दलित हमें दिखाई नहीं दिया, महिला हमें दिखाई नहीं दी। ये दिखाता है इनकी संकुचित सोच, जिसमें केवल और केवल यादव परिवार और पूंजीपति इनका ही नाम होगा, और इसीलिए हमें डंके की चोट पे मैं कह सकता हूं यकीन है कि 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तीसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, आज ही राजेंद्र पाल गौतम जी का बयान आ रहा था, एक पत्रकार ने पूछा 150 सीटें मांग रहे हैं आप, कहते 150 नहीं मांग रहे हैं, 200 सीटें, इससे कम कुछ नहीं, और सीटें हैं 2 इनकी, ये किसी का नाम क्या देंगे? परिवारवाद की
0: खबर आ रही है, इसी महीने मोदी मंत्री परिषद में जो मंत्रिमंडल है उसमें बदलाव संभव है, फेरबदल से पहले संसद सत्र संभव, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। 33% महिला आरक्षण लागू करने की कोशिश संभव है, विशेष संसद सत्र के बाद मंत्रिपरिषद में फेरबदल, और इसी महीने मोदी मंत्रिपरिषद में फेरबदल की उम्मीद। अब जाहिर तौर पर क्योंकि हरदीप पुरी का नाम तो एक तरह से कट ही गया, बीएल वर्मा का नाम कट गया, तो हरदीप पुरी अब तो 28 में अगला राज्यसभा है, तो ऐसे में वो राज्यसभा नहीं पहुंचेंगे तो मंत्री रहेंगे नहीं, तो ये एक तरफ हरदीप पुरी की अगर छुट्टी है तो दूसरी तरफ किसी की जगह बन सकती है। इस पर भी जरा आते हैं भाटिया जी, जल्दी जल्दी से आपने श्रुति गंगवार जी के परिवार वाले पी क्वेश्चन पे कुछ नहीं बोला, और इस पर भी एक प्रतिक्रिया आपसे जल्दी से।
6: मैं उसी का उत्तर दे रहा था। देखिए श्रुति गंगवार जी की आप बात कर रही हैं, वो सार्वजनिक जीवन में रही हैं, भाजपा से जुड़ी रही हैं, और उनकी एक अपनी पहचान है। ये प्रियंका गांधी वाड्रा वाला केस नहीं है कि सीधा आए राज्यसभा भेज दिया, उत्तर प्रदेश की प्रभारी रही थी, सारी सीटें कांग्रेस हार गई, इसलिए तुलना नहीं कर सकते। दूसरी बात, प्रधानमंत्री भाजपा को 2 मौके मिले, एक परिवार से तो नहीं थे, हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी एक परिवार से नहीं बना है। तो मैं ये कहूंगा कि परिवारवाद का मतलब ये नहीं होता कि कोई परिवार में सदस्य अगर मेहनत करे तो भी वो आगे नहीं बढ़ सकता, पार्टी में उसे टिकट नहीं मिल सकता। और एक और बात जो आपने कही, हरदीप पुरी जी का नाम लेके कहा, हरदीप पुरी जी ने पार्टी की, देश की सेवा करी है, स्मृति ईरानी जी का उदाहरण है, वो भी मंत्री रही, आज उनकी भूमिका अलग है, वो हमारी पार्टी की महासचिव हैं, बड़ी कर्मठता से मेहनत कर रही हैं, इसलिए हमारी पार्टी में केवल मंत्री पद पे बने रहना ये उद्देश्य नहीं होता, जो बड़ा संकल्प होता है वो देश की सेवा करना, जनता की सेवा करना होता है।
0: ठीक है, अब आलोक शर्मा जी आप एक जवाब दीजिए, फिर मैं मनोज काका जी के पास जाऊंगी, क्योंकि बीजेपी कोई लगता है सुन रहा है बाद में टीवी पे या मोबाइल पे, उसको थोड़ा बंद कर दीजिए। जो इनकी पहल है, मतलब जिन 8 लोगों को इन्होंने सामने किया है उसके जरिए साथ रहे तमाम जातीय समीकरण भी, और इसी के साथ साथ जो उनकी ये है कि भाई आप लोग के यहाँ पक्षपात होता है, परिवार वालों को ही पुश किया जाता है, उस पर काउंटर
6: की सेवा करना होता
0: है। ठीक है, अब आलोक शर्मा जी आप एक जवाब दीजिए, फिर मैं मनोज। कौन सुन रहा है, अब जरा हाथ उठा दीजिए आप चारों में से, जो भी सुन के मोबाइल पे या टीवी पे फिर जवाब दे रहा है। आलोक जी,
7: जो इनकी पहल है,
0: आलोक जी ईपी नहीं लगाए हैं क्या?
7: परिवार वालों को ही पुश किया जाता है, उस पर।
8: देखिए मुझे लगता है कि जो आज की लिस्ट आई है अंजना जी, इसमें पूरी तरह से परिवारवाद भी है। अंजना जी मुझे आवाज आने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा वॉल्यूम इसका किया था,
0: ठीक है
8: मोबाइल का, लेकिन मेरे फोन में आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल फोन कटा हुआ है, कनेक्शन कटा हुआ है।
0: ठीक, फोन कनेक्ट कीजिए। ठीक है, बोलिए बोलिए।
8: अंजना जी मुझे आवाज आने में दिक्कत हो रही है,
0: ठीक है
8: मोबाइल का, लेकिन
0: आलोक जी बोलिए, मुझे लगता है आप उनको फोन से कनेक्ट कीजिए, फिर हम उनके पास चलेंगे। मनोज काका जी से तब तक जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। मनोज काका जी अच्छा,
9: जी,
0: कान में आवाज नहीं आ रहा है, तो आपको मौका पहले मिल गया, लेकिन आप बड़ी पार्टी भी हैं भाई वहाँ पे उत्तर प्रदेश में, तो आप ही जवाब दीजिए आजकल।
9: आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के बड़े होने का आपने स्वीकारा बड़े मन से, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद।
0: इसे स्वीकारना क्या है, नंबर बता रहे हैं कि आप लोकसभा में बड़े हैं लेकिन विधानसभा में अभी भी पीछे हैं, और ये चुनाव आपके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है।
9: सबसे बड़े होंगे, देखिए आपका सकारात्मक सहयोग रहा है।
0: मीडिया का सहयोग नहीं मिलता है सर, मीडिया की तरफ से सवाल पूछा जाता है।
9: सवाल ही
0: ठीक है, तो सवाल ही
9: पूछे सवाल।
0: अरे गुरु जी पूछे था भाई। हाँ मनोज जी, और सवाल ये है कि भाई आपको दो का मौका मिला, आप किसको करते हैं, राम गोपाल यादव जी को और गुजरात वाले, हर चुनाव में तो गुजरात वालों को आप लोग विलिफाई करते हैं, ये देखो पश्चिम बंगाल में दो गुजराती आ गए, बिहार में देखो गुजरात वाले आ गए, नाथवानी जी को, और वो भी धनराज नाथवानी जी को तो आप ही लेकर आए, समाजवाद आई बबुआ, हाथी पाई घोड़ा पाई।
9: जी जी, गोरखनाथ पांडे जी की कविता है।
0: जी जी,
9: अच्छी है कविता, अच्छी है, उन्होंने कई सारे चीजों पर कविता लिखी, और समाजवाद की संपूर्ण परिभाषा डॉक्टर लोहिया ने यही दिया था कि समता और प्लस संपन्नता, वही समाजवाद है। धनराज जी पर अगर उनके परिवार का एक व्यक्ति एनडीए से गया तब कोई समस्या नहीं थी, लोगों को समस्या यह है जो भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं उनको समस्या यह है कि कोई उद्योगपति जिसमें जिसकी उद्योग में व्यापार में दक्षता हो वो समाजवादी पार्टी से कैसे जुड़ सकता है, चूंकि पूरे व्यापार जगत पर भी ये ईडी सीबीआई लगा करके अपना ही कब्जा चाहते हैं। हमें किसी के व्यापारी होने पर हमें कोई ऐतराज नहीं है, चाहे वो फिल्म जगत में व्यापार करता हो चाहे मीडिया जगत का करता हो, अगर वो समाजवादी पार्टी को अपने विचारों से और अपने दक्षता से अगर उसको विकसित करना चाह रहा है तो उसका स्वागत है। परिवारवाद की बात की, परिवारवाद फिर से शुरू करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के इस समय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनके पिताजी नवीन प्रसाद, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या सब्जी की दुकान खोले थे कि वो भी विधायक थे, इनका इनसे पूछना चाहूंगा। माननीय राजनाथ सिंह के दोनों बेटे जो भारतीय जनता पार्टी में है वो क्या सब्जी की दुकान चलाते हैं, ठेला चलाते हैं कि वो भी परिवारवाद है। पीयूष के पिताजी क्या थे, हरिशंग, और अभी सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी शकुनी चौधरी क्या थे। ये सब तो मैं इनने इसलिए कहा कि ये आपके अपने राज्य की कहानियां हैं। तो देखिए ये जो बात है कि आप तुम का मैं करूं तो रासलीला और आप करो तो कैरेक्टर ढीला, इस तरह का दोहरा, और दूसरा जो शब्द है बहुत घटिया, मैं उसका प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, ये चरित्र सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है। हमारे पास दो सीटें हैं, जो दो सीटें जो हमारे पास हैं, दो में एक ने हमने पिछड़े तबके के व्यक्ति को भेजा, एक हमने उद्योगपति को भेजा, ये सही बात है। हमने इसलिए भेजा कि हम चाहते हैं कि देश के जो उद्योगपति हैं जो व्यापारी हैं, हमको किसी से कोई ऐतराज नहीं है, वो अगर हमारी पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं, हमारी पार्टी से कोई पत्रकार जुड़ना चाह रहा है तो हम सबका स्वागत कर रहे हैं। जो लोग ये चाहते हैं कि देश के 90% तबका का, जिसकी वो बात होती है कि 100 से कम 1000 से ज्यादा सोशलिस्टों का यही।
0: मनोज जी एक सवाल है, आपको बीच में रोक रही हूँ, ये आपकी पार्टी से जो भी आजकल प्रतिनिधि बैठ रहा है, प्रवक्ता बैठ रहा है, वो हर दिन शो में ये कहता है कि कोई पत्रकार हमसे जुड़ना चाहे, तो ये क्या बताया गया है पार्टी की तरफ से रोज जाल भेज फेंकने के लिए?
9: नहीं, ये बताइए पार्टी, ये तो सही बात है कि हर पार्टी हर राजनीतिक दलों की ट्रेनिंग होती होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने हमेशा सबका, कोई समाजवादी पार्टी के वो बताइए ना, अभी तो उत्तर प्रदेश में आपके भी संस्थान ने लगातार खबरें की है, वो मिर्जापुर में नमक रोटी खिला देने पर, अभी सीतापुर का खबर दिखा देने पर पत्रकारों पर लगातार जेल हो रही, वही दिल्ली में क्या हुआ एक बेटी के साथ, रोजी के साथ, कि एक पुलिस अफसर ने एक बेटी को जो पत्रकारिता कर रही है उसको किस तरह से उसके प्राइवेट पार्ट्स तक को छुआ गया, अपमानित किया गया, कितना घटिया कृत्य कर रहे हैं। जो पत्रकार सच लिख दे उनसे इनको बहुत बुराई है। इनको हरदीप पुरी का कौन देश सेवा किया, भगत सिंह थे, हरदीप पुरी का वही सेवा है कि एब्सटीन फाइल में उनका 300 से ज्यादा बार नाम है, एक्जॉटिक उस पर जाते थे, आइलैंड पे जाते थे, वही देश सेवा है इनकी। और इनके यहाँ परिवारवाद नहीं है। आपने सही सवाल पूछा अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कि गंगवार साहब की, संतोष गंगवार साहब की, वो गवर्नर हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई बार सांसद रहे, उनकी बेटी हैं श्रुति गंगवार, वो ये करें तो भाई कुछ नहीं, ये करें नहीं, नहीं वो तो संघर्ष का है, इनका संघर्ष का है और दूसरे का संघर्ष का नहीं है वो।
0: अरे सुनिए ना, तो ना सुनिए ना काका जी, मनोज काका जी, उस दिन भी जब मैंने सवाल पूछा था तो मैंने कहा था कि पिता को, नाथवानी जी को समर्थन से बीजेपी ने पहुंचाया, लेकिन अभी यूपी का चुनाव है, कुछ महीने पहले राज्यसभा के लिए आप नामांकन करते हैं और आप धनराज नाथवानी को करते हैं, उस पर आपने कुछ नहीं बोला है?
9: मैंने बोला,
0: छोड़िए ना, क्या हुई कि ये कोई बात है, क्या बात है, क्या क्या बात कह रहे हैं?
9: हम कह रहे हैं क्यों नहीं इस देश में ये सवाल, अगर कोई उद्योगपति, अगर कोई व्यापारी, किसी भी विधाता, अगर एक्सपर्ट आदमी समाजवादी पार्टी से दूर रहा तो उसमें बुराई क्या? जो जो जो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश से लिया पीएम केयर फंड में पैसा चाहिए लेकिन हिसाब नहीं देंगे, वो सवाल नहीं है। पूरे 700 करोड़ रुपया की भारतीय जनता पार्टी थी, आज 12,000 करोड़ रुपए की हो गई, कहां से पैसा चला आया?
0: ठीक है समाजवाद और धनराज नाथवानी का डायरेक्ट कोरिलेशन बताने के लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। आलोक शर्मा जी बोल रहे हैं, उसके बाद गौरव भाटिया जी आपसे जवाब लूंगी। आलोक शर्मा जी आपके पास आ रही हूं, जो तमाम बातें बीजेपी की तरफ से कही गई, कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं पर आरोप भी उन्होंने लगाया, लेकिन ये जो 8 लोग हैं उनके साथ वो कह रहे हैं कि हम सामाजिक समीकरण और इसी के साथ राज्यसभा में ऐसे लोगों को पहुंचा रहे हैं जो जमीन पर जुड़े हुए हैं, काम करने वाले लोग हैं। आलोक जी
8: देखिए, मुझे लगता है कि आज तक की स्क्रीन ही अपने आप में बता रही है कि बीजेपी 13 साल शासन करने के बाद राज्यसभा के कैंडिडेट की उम्मीदवारी के लिए क्या योग्यता का पैमाना मानती है। इस पूरी लिस्ट के अंदर परिवारवाद भी है, इस लिस्ट के अंदर जातिवाद भी है, और वो बीजेपी और आज तक के स्क्रीन पर पूरा जस्टिफाई हो रहा है कि जातिवाद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपर हाउस में, ऊपरी हाउस में इनकी किसी की क्वालिफिकेशन क्या है, किस पे क्या है, किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो नगण्य है। केवल किस तरह से 2027 का चुनाव साधा जाए वो पूरी तरह से काम कर रहा है। इसमें तीन मैं निष्कर्ष निकालता हूं इनकी लिस्ट में। पहला निष्कर्ष तो यह है कि पंजाब से इनकी उम्मीद समाप्त हो चुकी है, इसीलिए रवनीत बिट्टू को पहले मंत्रिमंडल से बाहर किया और आज हरदीप पुरी को। दूसरी बात, दूसरा जो है कि माइनॉरिटी के लिए इनके मन में किसी तरह की कोई जगह नहीं है, माइनॉरिटी कहीं से भी नहीं इनको भाता है, ये केवल और केवल अपने धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आ रही है कि मोदी जी अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सरकार की छवि को बचाने के लिए एप्स्टीन फाइल वाले हरदीप पुरी को धीरे से यूज एंड थ्रो करके साइड में कर दिया है। आज तक उनके क्या कंट्रीब्यूशन है किसी को नहीं पता चला, उन्हीं के कार्यकाल में 100 के ऊपर पेट्रोल गया और उनके तमाम तरह के बयान हैं, वो व्यक्ति आज तक पे बैठ के डिस्कस करने लायक भी नहीं है। किस तरह का उनका आचरण और चरित्र रहा है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वो पूरे देश ने देखा है, उनकी बेटी का, एनजीओ का, और तमाम चीजें पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात इन्होंने कही, गौरव भाटिया जी ने, कि संसद में जो है वो एक तिहाई आरक्षण के लिए हम कटिबद्ध हैं। तो भाई लागू तो सबने कर दिया था, आरक्षण का बिल तो सबने पास किया था, आपने कौन से अकेले किया था संसद में? बात तो ये आती है कि उसको लागू करने से किसने रोका? लागू करने से मोदी सरकार ने रोका, लागू करने से मोदी सरकार ने उसके अंदर डिलिमिटेशन का पेच फंसा के उसको रोक दिया। और अंतिम निष्कर्ष यह है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश ये बुरी तरह से हार रहे हैं, इसीलिए जातिवाद की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं ये लोग।
0: पंजाब में आप ही ने कहा, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू साहब की चिंता आपकी पार्टी को हमेशा रहती है आलोक जी। हाँ, मैं सोच ही रही थी कि आप पंजाब से उनका नाम जरूर।
8: चिंता हमें भाजपा नहीं, हमें अंजना जी, हमें पंजाब की चिंता है और पंजाब की जरूर चिंता है, हर तरह से चिंता है। हमें रणदीप बिट्टू की चिंता नहीं है, हमें चिंता इस बात की है कि बीजेपी के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के।
0: ठीक है, यहीं से गौरव भाटिया जी आप जवाब
8: बैठ के माइनॉरिटी की बात करेंगे और पिछले 6 महीने में दोनों माइनॉरिटी के लोगों को बाहर कर देंगे। पंजाब में वैसे इनका कुछ नहीं है, इनका खाता भी नहीं खुले, शायद ऐसी सिचुएशन है।
0: चलिए ठीक है, देखते हैं एक बार, और नतीजे के दिन भी आलोक जी उम्मीद रहेगी कि आप चर्चा के लिए आएंगे, क्या होता है नहीं होता है, गठबंधन करते हैं किसके साथ करते हैं, एक बार जल्दी से वो नाम दिखा दीजिए, क्योंकि जो पहुंचते हैं राज्यसभा, पहुंचने वाले होते हैं, उनकी चर्चा खूब होती है, लेकिन जिस जिसका पत्ता कटा है जरा वो भी आपको दिखा दें। तो सबसे पहले देखिए, हरदीप पुरी का पत्ता तो कट ही गया है, बीएल वर्मा का भी पत्ता कट गया है भाई। अब इसी के साथ साथ अन्य लोग जिनका पत्ता कटा है, चेहरे दिखा दीजिए एक एक करके। दिनेश शर्मा ब्रिजलाल, फॉर्मर डीजीपी आपको याद होगा, नीरज शेखर, हालांकि वो दिनेश शर्मा को देखिए तो वो अंडमान निकोबार के एलजी बन चुके हैं, तो उनके लिए एक उधर ये भी एक वजह है, तो वो इस लिस्ट में नहीं है। ब्रिजलाल, नीरज शेखर, अरुण सिंह, सीमा द्विवेदी, गीता शाक्य, इन लोगों का नाम कटा है। सीधा जवाब दीजिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये आरोप आलोक जी लगा रहे हैं। और उनका कहना है, गौरव भाटिया जी, कि सबका साथ सबका विकास में आपका मुस्लिम कहीं नहीं आता, ना टिकट के लिए, ना लोकसभा के लिए, ना राज्यसभा के लिए।
6: देखिए ऐसा है, सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी की बात करूंगा क्योंकि बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, और कांग्रेस पार्टी अभी बोल रही थी कि पंजाब में कितनी सीटें हमारी आएंगी, शून्य आएंगी, पंजाब में तो हम सरकार बना लेंगे लेकिन उत्तर प्रदेश में आपकी जरूर शून्य सीटें आएंगी, अंडा जैसे दिल्ली में आई हैं। अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले सपा की बात। देखिए सपा को पिछड़े समाज से कोई लेना देना नहीं है, इनके लिए केवल वंशवाद वंशवाद वंशवाद, ये इंडिया टुडे का एक कवर है। देखिए क्या लिखा है इसमें, भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार। अब इसमें चेहरे गिनिए, अगर आप चेहरे गिनेंगे तो 15-17 चेहरे मिल जाएंगे। शायद ही भारतीय राजनीति में कोई ऐसा परिवार हो जिसके इतने सदस्य राजनीति में आए हो, सांसद, विधायक, राज्यसभा, विधान परिषद दिया गया हो। अब ये लोग क्या वंशवाद की बात करेंगे? दूसरी बात, देखिए 34 साल इस पार्टी को बने हुए हो गए, समाजवादी पार्टी को। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा, पीडीए पीडीए पीडीए करते हो, यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं दे पाए, आप क्या बात करोगे बाकी लोगों की? अरे योगी आदित्यनाथ जी ने विकास की धारा बहाई है उत्तर प्रदेश में, और तभी हर वर्ग का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। तीसरी बात, झूठ देखिए, आप चेक कराइएगा, फैक्ट चेक करिएगा अंजना जी, ये जो कह रहे हैं धनराज परिमल पिछड़ी जाति के हैं, मैंने भी चेक किया, ये पिछड़ी जाति के नहीं है, जनरल कैटेगरी है, लोहाना ये जाति है और ये पिछड़ी नहीं है। तो ये झूठ बोलते हैं, कृपया करके आज तक की टीम से कहिएगा कि फैक्ट चेक करें। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का नाम लिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के तीन आदर्श थे, परिवारवाद के वो खिलाफ थे, योग्यता के पक्षधर थे, तो उसको तो समाजवादी पार्टी
0: ने उनके पिता को तो गौरव भाटिया जी आप ही लोगों ने झारखंड, सुनिए ना, अरे गौरव जी लेकिन पुत्र को इन्होंने पहुंचाया, पिताजी तो आपके समर्थन से झारखंड से पहुंचे हैं ना राज्यसभा।
6: नहीं मतलब मैंने अगर कहा कि इन्होंने पिछड़े समाज का बताया वो गलत है,
10: दोनों ही बाप बेटे
6: वादी हैं, तो आपका सवाल मुझसे ये है कि आपने धनराज जी के पिताजी को भेजा इसलिए समाजवादी पार्टी ने भेजा?
0: अच्छा, नहीं ये सवाल नहीं, आप ही समझ रहे हैं सवाल क्या है।
6: भाजपा करेगी उसी रास्ते पे,
0: अरे यहाँ तो धनवान लोगों की बात हो रही है ना, चलिए ठीक है, बोलिए बोलिए,
6: आप
0: समझ रहे हैं सवाल क्या है,
6: मैं अपनी बात तो पूरी कर लेता अंजना जी, मेरे पास कुछ तथ्य और थे,
0: बोलिए बोलिए जल्दी से।
6: अच्छा था, अच्छा प्रश्न था। दूसरी बात, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था परिवारवाद खत्म हो जाना चाहिए, योग्यता पे देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा था महिला सशक्तिकरण तभी हो सकता है जब महिलाएं हिजाब ना पहने, हिजाब का विरोध करते थे और ये लोग कहते हैं हिजाब बुरका पहनाओ और मुस्लिम महिलाओं को पढ़ाओ भी मत, ट्रिपल तलाक का इन्होंने विरोध किया और पूंजीपतियों के खिलाफ थे। अब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का कौन सा आदर्श समाजवादी पार्टी में बचा है? ये जो समाजवाद नाम है ये अपने आप में एक ढोंग है, फरेब है। और मैं कांग्रेस पार्टी पे आता हूं, कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी की बात करती है, अरे आप तो गांधी परिवार, वो भी नकली गांधी परिवार के बाहर ही नहीं निकल पाए, अगर इतना प्यार था आपको मुसलमानों से तो बना देते उनको प्रधानमंत्री, क्यों नहीं बनाया? दूसरी बात, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 8 साल ठंडे बस्ते में रखी रही, क्यों नहीं लागू करी सच्चर कमेटी की जो सिफारिशें थी? और तीसरी बात, आप योग्यता की बात ना करा करिए, राहुल गांधी वंशवाद के प्रतीक 99 चुनाव हरा चुके कांग्रेस पार्टी को, प्रियंका गांधी वाड्रा आधे उत्तर प्रदेश की इंचार्ज बनी थी और उत्तर प्रदेश में सीट एक नहीं आई थी लोकसभा में उस वक्त, जिस हिस्से की वो जो है इंचार्ज थी। ये क्या दिखाता है? इनके लिए महिला सशक्तिकरण, भारत मजबूत हो रहा है, ये केवल गांधी परिवार की मजबूती से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के लिए मैं नहीं कहता हूं, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे, औकात और हैसियत देख के सीटें मांगा करो, औकात और हैसियत देख के मुंह खोला करो, तुम्हारी औकात क्या है जो तुम हमसे मांग रहे हो, ये समाजवादी पार्टी कह रही है इनके लिए।
0: आपसी लड़ाई में हाथ सेकने का मौका तो उनको मिल ही रहा है शांतनु जी, इसके बाद तुरंत आऊंगी, एक आलोक जी का एक रिबटल है। आलोक जी
8: देखिए, मैं समझता हूं सच्चर कमेटी की 214 रिकमेंडेशन थी, 174 हमने लागू की थी, लेकिन 175वीं लागू इस सरकार ने नहीं की। 75 सीटें योगी जी के टाइम पे कम हुई 2022 में, 2017 से, और 2024 में उन्हीं के नेतृत्व में लोकसभा में तो सुपड़ा ही साफ होता हुआ नजर आया। दुर्भाग्य यह है कि ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून सुप्रीम कोर्ट के कहने से बना, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बनाने के लिए संसद में कहा उसके प्रावधानों पे कुछ विपक्षी दलों ने विरोध जताया, किसी ने ट्रिपल तलाक के बिल का विरोध नहीं किया, उसके कुछ प्रावधानों का किया। लेकिन मैं सोच ही रहा था अभी तक हिंदू मुस्लिम इन्होंने किया नहीं। प्रियंका जी ने 20 साल तक जमीन पर काम करने के बाद, वो पहली बार जनरल सेक्रेटरी बनी थी, वो कब से अमेठी रायबरेली में और तमाम जगह पर काम कर रही थी। दुर्भाग्य ये है कि 10,000 रुपए देकर बिहार में पूरा हिंदुस्तान का मीडिया भी और मोदी साहब भी और बीजेपी भी सब सशक्त कर रहे थे बिहार की महिलाओं को, कितनी सशक्त हो गई, और वो दूसरी किस्त कब जाएगी 10-20 हजार करोड़ रुपया फिर लोन लेकर, वो 10-10 हजार रुपए बिहार की महिलाओं को कब मिलेंगे। वोट चोरी की सरकार है आपकी, वोट चोरी की सरकार ज्ञानेश कुमार बनवा रहे हैं, अब मौका नहीं मिलेगा। आज तो सुप्रीम कोर्ट का भी जो निर्णय आया है पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मोदी जी भी बनारस से हारे थे, और ध्यान रखिएगा ये वोट चोरी करने वाला ज्ञानेश गुप्ता ये पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है और जेल जाएगा। ये हिंदू मुसलमान करते हो और वोट चोरी से सरकार बनाते हो, राम मंदिर के लूट करते हो, डकैती करते हो, और दूसरों के ऊपर
0: एक डायरेक्ट जवाब इस पर गौरव भाटिया जी, क्या सरकार बैकफुट पर आई है फॉर्म 6 को लेकर सुप्रीम कोर्ट से जो आज कहा गया है, क्या बैकफुट पर नहीं डालता है आपको?
6: अंजना जी देखिए, तकलीफ क्या होती है आपको मालूम है, कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं, उनको जजमेंट और ऑर्डर का फर्क भी नहीं पता है, उनको यह भी नहीं पता है कि आज वकील ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को तुरंत बर्खास्त किया जाए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं हम ये आदेश पारित नहीं कर सकते। उनको यह भी नहीं पता है कि आज कोई जीत हार की बात ही नहीं हुई, आज नोटिस हुआ है, सबसे जवाब मांगा गया है और जवाब दिया जाएगा। और एक झूठ आपके कार्यक्रम में और बोला गया, इन्होंने कहा ट्रिपल तलाक को अपराध सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। अब आप बताइए, ऐसे प्रवक्ता अगर कांग्रेस पार्टी के आएंगे जिनको यह भी नहीं पता कि ट्रिपल तलाक को गैर संवैधानिक बताया था सुप्रीम कोर्ट
9: ने कहा था।
6: शांत,
9: अरे भाई क्या बोलते हो यार आप,
6: शांत गलत कह रहे हैं,
9: कुछ भी बोल रहे हो, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे सरकार ने कानून बनाया और
0: सब कर ले पूरा कर ले।
6: मैं आपको बार बार कहूंगा यही दिक्कत है कांग्रेस के प्रवक्ता
9: की, चल रहा था एक महिला का उसके आदेश में हुआ,
6: यही दिक्कत है कांग्रेस के प्रवक्ता महामूर्ख और सीखना भी नहीं चाहते। अब मैं अंजना जी अपनी बात रखना चाहता हूँ, मुझे समय दे दीजिए,
0: आलोक जी
6: कांग्रेस के प्रवक्ता बीच में आके बोले जा रहा है, धन्यवाद। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, बता रहा हूं आपको, चुनौती है आलोक जी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखिएगा, आपको तो नाम भी नहीं पता होगा, शायरा बानो का जजमेंट है, वहां कहां लिखा है कि यह कानून बनेगा? सुप्रीम कोर्ट ने केवल कहा गैर संवैधानिक है ट्रिपल तलाक, और कानून लाके अपराध बनाने का काम किसी ने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया, मुस्लिम महिलाओं के भाई बन गए। अब अगर आपको फर्क नहीं पता तो कभी कपिल सिब्बल के साथ चाय पीजिए, कभी अभिषेक मनु सिंघवी जी के साथ चाय पीजिए, कभी विवेक तनखा के पास जाइए, वो आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या, और कोई ना चाय पिलाए तो आपका दोस्त गौरव भाटिया है, यहाँ आइएगा आपको अदरक वाली चाय पिलाएंगे, चाय पे चर्चा करेंगे, चाय पे चर्चा करेंगे, अरे चाय पे वाइन छोड़ो,
9: बेटे
6: अब छोड़ो वाइन, अब वाइन और रंग छोड़ो, अब चाय पे चर्चा होगी। अंजना जी धन्यवाद, मैंने अपनी बात कह ली,
9: परिवारवाद नहीं था सपा के अंदर,
6: चिल्लाइए मत प्लीज।
0: चलिए शांतनु जी, शांतनु जी, हालांकि अब ये हमारे डिबेट के विषय से अलग है, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा तो आज यही है ना भाई, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा है कि हमने जो फॉर्म सिक्स में बदलाव है उसको मंजूरी नहीं दी है, जो इलेक्शन लगाया गया उसको हमने चेंज को मंजूरी नहीं दी थी, और उन्होंने सीधा नोटिस भेजा है केंद्र को और साथ ही चुनाव आयोग को सबसे बड़ा नोटिस भेजा है। लेकिन कुल मिलाकर वापस लौटते हैं क्योंकि ये इशू भी आने वाले विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगा। राज्यसभा में जो ये नॉमिनेशन है आज बीजेपी की तरफ से, उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं?
10: देखिए, दो तीन चीजें। एक तो सूची में सब नए लोग हैं, तो दिखता है कि जो भी भाजपा का कार्यकर्ता है उसको आशा दिखती है कि भाई मेरे लिए कोई सीलिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं इस परिवार से नहीं हूँ, मेरी कास्ट नहीं है, तो मैं राज्यसभा नहीं पहुंच सकता, मैं मंत्री नहीं बन सकता। तो एक ये दिखता है। हर हर हर वर्ग के लोग, हर समुदाय के लोग दिखते हैं, और आपने जैसा दिखाया हर ज्योग्राफी के, हर क्षेत्र के लोग दिखते हैं, नए लोग दिखते हैं। तो लोग एकदम से समाजवादी पार्टी और भाजपा की लिस्ट को कंपेयर करते हैं कि पीडीए सुनने को वहां मिलता है, लेकिन पीडीए का जो काम होता है वो भाजपा में होता है, वो सामने सामने दिख रहा है। क्योंकि जो अखिलेश जी सोच रहे हैं कि मैं टोपी इस कलर की लगा लूंगा, कपड़े इस कलर के नीले पहना लूंगा और बस भगवा कर लूंगा, वो चलेगा कि आपको रिप्रेजेंटेशन सच में देना पड़ेगा? तो मेरे ख्याल से वो कंपैरिजन सामने सामने से होता दिखेगा। और उत्तर प्रदेश में आप चैनल में काका जी डिफेंड करेंगे, उसको बोलेंगे, लेकिन जनता जब लिस्ट देखेगी, दोनों इधर की लिस्ट देखेगी, उधर की लिस्ट देखेगी, तो वो देखेगी वहां पे एक रामगोपाल यादव जी, जो पता नहीं मतलब भूल भी गया हूं, कितने बरसों से वो राज्यसभा में, वो फिर से राज्यसभा चले जाते हैं, और एक व्यक्ति जिनको एक गाली दिया करते थे गुजराती लॉबी बोल के, उसको वो रख लेते हैं। बिल्कुल उद्योगपतियों में कुछ नहीं, उद्योगपति तो बहुत देश का नाम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके स्टैंड से बहुत अलग है, जिस तरह से आपकी राजनीति है उससे बहुत अलग है, इसलिए उन सूचियों को लोग कंपेयर करेंगे। लेकिन और इंटरेस्टिंग बात है कि भाजपा ने पहले से आठवां नाम दे दिया, और आठवें नाम पे क्या होगा, कल किसे, मेरे ख्याल से कल लास्ट डेट है, इसको नॉमिनेट करती है समाजवादी पार्टी, कौन क्रॉस वोट करेगा वो मेरे ख्याल से रुचिकर रहेगा, उसको ऑब्जर्व करना।
0: चलिए ये देखते हैं इस पर कुछ, हालांकि मनोज काका जी आपको भी पता नहीं होगा। अच्छा ये बात बताइए, सुनिए ना, हमने सुना था कि धनराज नाथवानी जी को जब नॉमिनेट किया गया था तो आप मतलब किसी को कानों कान खबर नहीं हुई थी, उसी दिन जाके पता चला था?
9: ये ये ये ये तो आप कह सकती हैं, आपको पत्रकारिता,
0: अरे हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, कह थोड़ी रहे हैं आप लोगों को सवाल, और उसमें फर्क नहीं।
9: लेट मी कंप्लीट, मुझे जवाब दो।
0: डोंट मनोज जी, डोंट डू दिस। नंबर वन, डोंट एट्रीब्यूट इंटेंशन। मैंने किसी वजह से ये नहीं बोला है, जो खबर आई है वो खबर पर मैं सवाल पूछ रही हूँ, मैं कह भी नहीं रही हूँ कि यही बात है, हमने साथ सुना था, क्या ये सही है? अब जवाब दीजिए।
9: मैं आपके इंटेंशन को बिल्कुल पवित्र मान रहा हूँ, और आपको सब सवाल करने का हक है। मैंने बार बार कहा कि समाजवादी पार्टी सवाल पूछने पर जेल नहीं भेजती है, वो बीजेपी और योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। जो सवाल है आपका, बहुत सारी खबरें होती है, भारतीय जनता पार्टी में भी आप देखती हैं कि शाम को प्रधानमंत्री जी एक जगह कह के आते हैं कि 1,000 करोड़ रुपए का वो फला घोटालेबाज, और सुबह के 5 बजे जाकर के उप मुख्यमंत्री की उसको शपथ दिलाई गई, हालांकि वो हमारे बीच में नहीं है। और जो साथी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर लोहिया का समाजवाद कहां, हमारे डॉक्टर लोहिया का समाजवाद था तो, और जिस समाजवादी पार्टी के 34 साल पर आपको एतराज है उसी समाजवादी पार्टी की कीर्तन गाते तो थे, आप भी थे, डबल एजी थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, हमारे नेता हैं, हमारे लिए आदरणीय थे वीरेंद्र भाटिया जी, वो राज्यसभा सदस्य थे, एक साधारण परिवार से निकले थे, उनमें वकालत का उनमें खूबी दिखी गई कि उनमें कम से कम वैधानिक दक्षता थी, तो समाजवादी पार्टी ने उनको भी राज्यसभा भेजा था। ये समाजवादी पार्टी ही कर सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी अगर कोई बेहतर काम कर रही है, समाजवादी पार्टी तो पूछ रही है कि उत्तर प्रदेश में आप अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग में, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आपने क्यों रिजर्व, आपने ओवरलैपिंग क्यों खत्म कर दिया है? आप ओवरलैपिंग जब खत्म कर दिया है तो उत्तर प्रदेश में लगातार दलितों पिछड़ों के आरक्षण का 11,562 पदों पर लूट हुई, 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुई, 68,500 के अभ्यर्थी आज तक ने भी दिखाया था अभी शिक्षा मंत्री के दरवाजे पर है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी बांदा यूनिवर्सिटी में एक भर्ती होती है, तो मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तो 13 के 13 स्वजातियों को रख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से यह सवाल है कि सारी दक्षता उनको अपने स्वजातियों में ही क्यों दिखती है? ये सवाल है ना, आप उनको भागीदारी दीजिए समाजवादी पार्टी में। आप अभी बात कर रही थी, अभी लोधी समाज के हमारे गणेश लोधी विधायक को कितना अपमानित किया भारतीय जनता पार्टी ने, वहीं पासी समाज के श्याम प्रसाद पासी जी को उनके घर गए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाय पीने, आप चाय पीने गए 5 लाख लोग चले गए, अब आपके पीआर करने पर भी आपको खोजे लोग नहीं मिल रहे उत्तर प्रदेश में, तो आपकी बेचैनी को हम लोग कैसे, वो आपकी बेचैनी समझी जा सकती है? और किसमें कहां कितना समाजवाद है नहीं है, आपका भी हमने परिवारवाद बताया ही, अगर आपका परिवारवाद पवित्र है और दूसरे राजनीतिक दलों का परिवारवाद पवित्र नहीं है तो आपको मानसिक इलाज की जरूरत है, उस पर तो कोई समाजवादी पार्टी कहने, आज पूरा देश का लोकतंत्र, और जो सुप्रीम कोर्ट वाली आपने बात करा, मैं खत्म कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने आज देश के निर्वाचन आयुक्त को
0: धनराज जी की बात को गुप्त रखा गया था या नहीं सुबह तक?
9: बस खत्म, वो भी
0: बताया ना।
9: तो आज देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फार्म सिक्स का बदलाव जो आपने किया हमने कभी उसको वैलिड नहीं माना। तो अवैधानिक तरीके से पूरे देश का लोकतंत्र ज्ञानेश कुमार लूट रहे हैं और उसके वो जिम्मेदार है। और धनराज जी की सबको जानकारी थी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ सोर्सेस आपको जानकारी इसकी नहीं दिया, हम सबको जानकारी थी। अच्छा। समाजवादी पार्टी में जो निर्णय होते हैं बहुत सारी जानकारियां रखी जाती है, ये तो राजनीतिक दलों को आपके भी बहुत सारी जानकारी होती है, वो हमें थोड़ी बताई जाती है। अच्छा। आपके भी बहुत सारे थंबनेल और जो हेडलाइन होती है हमें थोड़ी बताई जाती है, आपने भी क्या कभी सवाल करेंगे हमें थोड़ी बताया जाता। समाजवादी पार्टी में एक कार्यकर्ता और एक
0: कार्यकर्ता, दोनों अब जवाब दीजिए। देखिए फॉर्म सिक्स को लेकर सेंटर और चुनाव आयोग दोनों को नोटिस दिया गया है, ये इस बात पर दोनों ही उठा रहे हैं, आलोक जी भी और मनोज काका जी भी। बड़ा गंभीर मुद्दा ये हो गया है ना, और वो भी देखिए अब वापस ले रहे हैं कि जहां जहां SIR हो गया उन स्टेट्स में हम वापस ले रहे हैं। तो जिन लोगों को इससे परेशानी हुई उनका क्या?
6: अंजना जी आप भी मेरी बात से सहमत होंगी और मुझे लगता है कि विपक्षी दल भी सहमत होंगे। फॉर्म सिक्स के बारे में अंतिम फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा, और अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी एक बयान आ रहा था और आपका चैनल भी दिखा रहा था, उसमें स्पष्टता से कहा इलेक्शन कमीशन ने कि फॉर्म सिक्स को संशोधित नहीं किया गया, सप्लीमेंट्री एक इंफॉर्मेशन मांगी गई, और ये बात सर्वोच्च न्यायालय के सामने इलेक्शन कमीशन रखेगा। मैं तो उनका प्रवक्ता हूं नहीं, मैं केवल इतना कहूंगा कि राहुल गांधी और खड़गे जी को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि इसी इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराए और राहुल गांधी चुनाव जीते, खड़गे जी चुनाव जीते, सोनिया गांधी चुनाव जीती, प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव।
0: आपको बीच में रोक रही हूँ, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कल के सांसदों के मार्च पर कांग्रेस की बैठक चल रही है और कल चुनाव आयोग तक कांग्रेस पार्टी का मार्च है। बैठक में राहुल गांधी ने कहा है कि नेता अलर्ट रहे, ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। शांतिपूर्ण मार्च करेंगे, पुलिस न रोके, ये कांग्रेस पार्टी का पक्ष है। और 10 से 20 अक्टूबर के बीच ब्लॉक लेवल पर भी विरोध कांग्रेस पार्टी की तरफ से होगा। आज की बहस के लिए इतना ही समय हमें मिल रहा, आप सभी का धन्यवाद। आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आपको बताएंगे कि फ्लाई दुबई के विमान के क्रू मेंबर्स, प्लेन क्रैश की कोशिश करने वाले ओमानी पायलट के साथ के जो हाथ पैर बांधे गए थे जब उन्होंने हमला किया था, उसके बाद उसको क्रू मेंबर्स आखिर क्यों खुलवाना चाहते थे। इसके बाद आपको बताएंगे कि यूपी की सियासत में अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा पर बहस क्यों छिड़ी है। और इसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे एशियन गेम्स में भारत की बेटियां बेटों से ज्यादा सोना लेकर आई हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे कैची धाम आस्था के सैलाब से जाम हो चुका है। देखते रहिए आज तक।

0: जितने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
1: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
2: इट्स द माय वे।

0: टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
1: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
0: असली शहद, असली स्वाद।
2: यार लोन भूल गया। मैरी,
3: इट्स
2: जस्ट अ गुड बैंक ना।
4: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
2: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
4: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन। There's nothing small about
5: us. Ujjivan, nothing small about us.
6: आगे आगे, अरे उधर उधर यार, करेक्ट करेक्ट।
7: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार, सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
9: मेरे पास एक आइडिया।
8: क्या?
9: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
10: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
11: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
12: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
13: कौन सी बनानी है?
14: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
15: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
16: सोच बदलो और बैंक भी।
17: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
18: गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
19: गड़बड़ है।
20: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसोफा, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
21: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
22: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
23: जीके मैक्स।
24: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
23: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
24: जेके वॉल मैक्स
23: बेस्ट पेंट,
24: जेके मैक्स।
23: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
25: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
26: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
25: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायफ्री जूस।
27: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
28: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।

0: in association with Signature Finest Cardamom Seeds.
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल.
3: एक सौ पचास सीटों की कथित तौर पर मांग की गई थी आप ही की तरफ.
4: किसने किया 150 का? मैंने तो 200 की बात की थी, जिनके साथ हमारा गठबंधन है इंडिया ब्लॉक में. यूपी में तो हम दो पार्टी हैं, मैं बेसिकली तो कांग्रेस और सपा है. दोनों जिम्मेदार हैं, एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं और एक दूसरे को साथ के लेके भी चलना है. तो निश्चित तौर पर सीट शेयरिंग का मामला हमें अक्टूबर में निपटा लेना चाहिए ताकि हम अपने कैंडिडेट्स को टाइम दे पाए. और हिस्सेदारी सम्मान बराबर होना चाहिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ. और साथ में ये भी कह रहा हूँ, हम लोग लचीले हैं भारत के संविधान की तरह. सम्मान की बात आए तो भारत के संविधान की तरह रिजिड है. सीट शेयरिंग की बात आएगी तो भारत के संविधान की तरह लचीले भी हैं, फ्लेक्सिबल भी हैं. थोड़ा बहुत झुकना पड़ेगा, झुकेंगे, क्योंकि जीतना जरूरी है. तो जीतने के लिए तो लड़ रहे हैं हम.
3: बट वो कह रहे हैं कि बात जीत की की जाए सीट.
4: हाँ, तो हम भी तो जीत की कर रहे हैं.
3: आप सीट की बात कर रहे हैं.
4: सीट मिलेगी तभी तो जीतेंगे, चुनाव लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे. बिना लड़े कोई जीतता है क्या?

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार। सर एक बार दो तुम ठुमका लगाने बस।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
3: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
5: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
3: कौन सी बनानी है?
6: और वही कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
9: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट,
9: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
10: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
11: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
10: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
12: उत्तर प्रदेश की खाली हुई राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी ने अपने 8 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। ये नाम हैं धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्णा पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार। इन 8 नामों में 2 अनुसूचित जाति हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 उम्मीदवारों में एक लोधी, एक पाल और एक कुर्मी जाति के हैं। सवर्ण जातियों में 2 ब्राह्मण और 1 राजपूत है। इन 8 उम्मीदवारों में 2 महिलाएं भी हैं। बीजेपी ने मौजूदा राज्यसभा सांसद रहे किसी को फिर मौका नहीं दिया है। टिकट नहीं पाने वाले जो सबसे खास नाम हैं, वो हैं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राज्य मंत्री बीएल वर्मा। यानी मोदी मंत्री परिषद में जल्द फेरबदल की संभावनाएं और बढ़ गई हैं। इससे पहले रवनीत सिंह बिट्टू का राज्यसभा टिकट कटने के बाद उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। उधर इन 8 नामों के जरिए 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव के समीकरणों को मजबूत करने की बीजेपी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के इन 8 उम्मीदवारों की घोषणा से पहले समाजवादी पार्टी 2 उम्मीदवारों का नामांकन करा चुकी है। फिर एसपी के उम्मीदवार बने रामगोपाल यादव का नाम तो पहले से तय था, लेकिन धनराज नाथवानी के नाम पर बहस जारी है। एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बड़े अधिकारी परिमल नाथवानी के बेटे धनराज की उम्मीदवारी के बाद बीजेपी अखिलेश यादव के पीडीए पर सवाल उठा चुकी है
13: कि एक नई पीढ़ी नई सोच के व्यक्ति को मैं भेजने का समाजवादी पार्टी को मौका मिला है, और समाजवादी पार्टी इस बदलते हुए दौर में जहां पर कई दलों का बहुत दबदबा है कॉरपोरेट वर्ल्ड में, और कई उद्योगपति न केवल उद्योग का कारोबार कर रहे हैं या उद्योग चला रहे हैं, अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, बल्कि समाज में भी वो समय समय पर काम करते हैं, उनकी सेवाएं भी हैं।
12: उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों में 7 पर बीजेपी और 2 पर समाजवादी पार्टी आसानी से अपने अपने उम्मीदवार जिता सकती है। 1 सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी है। ऐसे में अगर विपक्ष की ओर से कोई तगड़ा दावेदार मैदान में उतरता है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। आज तक ब्यूरो।
14: जीत तो महत्वपूर्ण ही है, गठबंधन पानी की तरीके से एक है, सीटों की संख्या पर कोई झगड़ा नहीं। 403 की 403 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। सिंबल जिस क्षेत्र में जो जीत सकता होगा उस पार्टी का सिंबल होगा। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तय करेंगे। इसमें तो ये तो एक अच्छा बयान है श्री अखिलेश यादव जी।
15: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तो तय है, जहां तक सीट शेयरिंग की बात है ये ना अनुराग भदौरिया तय करेंगे, ना हमारे सांसद एसपी सिंह पटेल साहब तय करेंगे, ना ही कांग्रेस का कोई नेता सांसद तय करेगा। ये समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। लेकिन ये तय है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगी।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: In association with
2: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
3: राज्यसभा का चुनाव 2027 का दाव. उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए बीजेपी ने आज अपने 8 जो उम्मीदवार हैं उनके नाम सामने रखे. इसी पर आप चर्चा देख रहे थे. हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं. अब देखिए 7 तक मारिया के साथ.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.

0: नमस्कार, मैं हूं मारिया शकील। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। फॉर्म 6 में बदलाव पर फंसा इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, चेंज को कोर्ट ने नहीं दी थी मंजूरी। इलेक्शन कमीशन और केंद्र को नोटिस, ज्ञानेश को तुरंत सस्पेंड करने से इनकार। ज्ञानेश कुमार पर राहुल गांधी के आरोप, कहा बीजेपी के लिए फॉर्म 6 में किए गए गैर कानूनी बदलाव, संसद से ईसी ऑफिस तक कल इंडिया अलायंस का मार्च। यूपी से राज्यसभा के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी, 3 ओबीसी, 2 एससी, 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय का नाम, हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा को टिकट नहीं। मायावती ने फिर भतीजे पर दिखाई दया, फिर से बनाया बीएसपी का नेशनल कन्वीनर, कहा सुधर गए हैं आकाश आनंद। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन, जम्मू कश्मीर से वापस भेजे गए 150 लोग, 7 अक्टूबर को एक और कार्रवाई की तैयारी। शो की शुरुआत यूपी में राज्यसभा के रण से करते हैं। आज बीजेपी ने यूपी में 8 सीटों के लिए उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी ने उम्मीदवार चुनने में जातिगत समीकरण का खास ख्याल रखा है, साथ ही 27 के चुनाव ध्यान में रखते हुए 2 महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया गया है। सभी प्रत्याशी यूपी से ही आते हैं।
1: यूपी में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों की जिस लिस्ट का इंतजार था वो खत्म हुआ। बीजेपी ने आज अपने सभी 8 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया। खास बात ये रही कि इस बार सभी 8 उम्मीदवार नए हैं, मतलब किसी भी पुराने चेहरे को रिपीट नहीं किया गया। नए उम्मीदवारों में 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय चेहरा है। इनमें 3 ओबीसी उम्मीदवार हैं, 2 एससी उम्मीदवार हैं। ओबीसी में लोधी, पाल, कुर्मी समुदाय के उम्मीदवार हैं। महिला प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया है, 2 महिलाओं को टिकट मिला है।
2: ये सिर्फ मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है, पूरे महिलाओं को, पूरी नारी शक्ति को एक जिम्मेदारी मिली है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना इस बात को सिद्ध करता है कि हमारी पार्टी, हमारे आदरणीय नेतागण, हमारे आदरणीय मोदी जी जो कहते हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात, महिला नेतृत्व की बात, आज उन्होंने इस लिस्ट में 2 महिलाओं के नाम से सिद्ध किया है कि महिलाएं देश की प्रगति में, राष्ट्र को आगे ले जाने में कितनी अहम भूमिका है।
3: मुझ जैसे एक सामान्य पृष्ठभूमि के कार्यकर्ता को जो अविचल 36 साल से अधिक समय से पार्टी का आहार निष्काम कर रहा था, उसको आज मौका दिया है और प्रदेश में संदेश देने का काम किया है कि कोई भी कार्यकर्ता अगर निष्ठापूर्वक लगे रहेगा तो पार्टी के नेतृत्व का ध्यान उस पर अवश्य है और ये आज मुझे उम्मीदवार बनाने से पार्टी में संदेश जाएगा।
1: मतलब बीजेपी ने अपना संदेश स्पष्ट कर दिया है। एक तो जातिगत समीकरण को साधा गया है, दूसरा महिलाओं को मौका मिला है, तीसरा सवर्ण मतदाताओं के लिए भी मैसेज है। 27 में यूपी में चुनाव है और राज्यसभा टिकट बांटने में इसका खासा ख्याल रखा गया है, तभी तो सभी 8 उम्मीदवार यूपी के हैं। इसके अलावा पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल बीएल वर्मा और हरदीप सिंह पुरी का टिकट काट दिया गया है। बता दें कि यूपी में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, इनमें 10 सीटों पर 16 अक्टूबर को चुनाव होना है, 6 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी की राजनीति में अगली बड़ी खबर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर। अब कांग्रेस की ओर से एक नई डिमांड आई है। कांग्रेस कह रही है कि यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस कम से कम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के लिए 50 सीट भी ज्यादा है।
1: यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर गदर मची है। कहा जा रहा था कि कांग्रेस 150 सीटें चाहती है, लेकिन कांग्रेस अब इससे आगे की बात कर रही है।
4: इसने किया 150 का, मैंने तो 200 की बात की थी। मैं शुरू से कह रहा हूँ, बराबर का सम्मान और बराबर की इज्जत, बराबर का हिस्सा।
1: लेकिन राजेंद्र पाल गौतम को समाजवादी पार्टी के नेता दो टूक जवाब देते हैं।
5: मैं ये कहता हूं उनको 50 सीट देना भी बहुत बड़ी बात होगी, उनको देखना चाहिए। दो तुम्हारे विधायक हैं, पिछली बार तुमने लड़के देख लिए, क्या इससे तुम्हें सबक नहीं मिलता?
1: अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि जीत ही सीट का आधार है।
6: जीत ही आधार है, जीत ही सीट का आधार है।
1: और जीत बोले तो आखिरी चुनाव यानी 2024 लोकसभा में मिली जीत, और वो जीत कुछ ऐसी थी कि 80 में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती और 6 कांग्रेस को मिली थी। इसे विधानसभा के अनुपात में बांटा जाए तो 37 लोकसभा के हिसाब से अखिलेश के हिस्से 347 सीटें बनती हैं और कांग्रेस के हिस्से 56। लेकिन कांग्रेस की हसरतें 56 से 200 तक पहुंच चुकी हैं और हौसला बढ़ता ही जा रहा है। अब कांग्रेस ने उन्हीं इमरान मसूद को कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, जो लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं और 403 सीटों पर लड़ने की चेतावनी देते रहते हैं। पॉलिटिकल मैसेजिंग के तौर पर कांग्रेस ने अपने पत्ते सामने रख दिए हैं। अब बारी समाजवादी पार्टी की ओर से फैसला लेने की है, और वो कांग्रेस की सीटों वाली शर्तों के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन करना चाहती है या बीजेपी को हराने के मिशन के साथ। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: यूपी में 2027 की सियासी जंग से पहले दलित वोट बैंक पर भी सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोई का नाम अब संत रविदास नगर भदोई करने का ऐलान किया है। तो योगी सरकार के इस फैसले के पीछे क्या है सम्मान, कल्याण और विकास का सियासी फॉर्मूला, आगे देखते हैं।
7: यूपी के चुनावी मौसम में दलित वोटों के लिए हर दल के तर्कश में अलग लगती है, और इसी में से एक तीर बीजेपी ने अब यूपी में आजमाया है, जो दलित सियासत में प्रतीकों के तौर पर इस्तेमाल होते आ रहे हैं। सीएम योगी ने ऐसा ही एक ऐलान यूपी में किया, जहां भदोही का नाम संत रविदास के नाम पर किया गया है।
8: कालीन उद्योग के लिए जाना जाने वाला भदोही जनपद आने वाले समय में मध्यकालीन संत जिन्होंने अपनी साधना के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम किया था, ऐसे सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर भदोही जाना जाएगा।
7: भदोही नहीं, नामकरण की बात हो तो कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बहाल किया गया है। वहीं अनुपूरक बजट में डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए 407 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत अंबेडकर, संत रविदास, संत कबीर, ज्योतिबा फुले और महर्षि वाल्मीकि के प्रतिमाओं के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा पर काम होगा। बीजेपी कहती है कि अखिलेश यादव की सरकार ने दलित विरोधी सोच के कारण जिन महापुरुषों के नाम पर रखे गए जिलों, संस्थानों के नाम बदल डाले थे, उनका पुनर्नामकरण करके बीजेपी सम्मान दे रही है।
9: पूर्व में भी भदोही का नाम संत रविदास नगर था, किंतु अखिलेश यादव की दलित विरोधी सोच के नाते से उन्होंने संत रविदास नगर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों के नाम बदले थे, आज उसको सही किया गया है।
10: समाजवादी पार्टी समाज में न किसी वर्ग को अपनी जागीर न वोट बैंक समझती है, वो सभी वर्गों को अपना साथी, सहयोगी और समाजवादी पार्टी के परिवार का हिस्सा समझती है।
7: मतलब ये कि दलितों को रिझाने के लिए दाव चलाए जाने लगे हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: आज सीईसी के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के तुरंत निलंबन करने की मांग से इनकार कर दिया। साथ ही चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है।
11: दो अक्टूबर से दिल्ली में हंगामा मचा है। 6 अक्टूबर को विपक्ष सबसे बड़ा धावा बोलने वाला है। 8 अक्टूबर को राष्ट्रपति तक शिकायत पहुंचने वाली है। कांग्रेस से लेकर समूचा विपक्षी इंडिया गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। सियासी आरोप बेहिसाब है, लेकिन अदालत की चौखट तक जब आरोपियों की फेहरिस्त पहुंची, तो उसमें यही कहा गया कि ज्ञानेश कुमार असंवैधानिक काम कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार ने 14 एकतरफा फैसले लिए हैं। ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म 6 में अवैध तकनीकी बदलाव किया है, 13 करोड़ योग्य मतदाताओं का नाम हटा दिया, बंगाल में आयोग के नाम से 16,10,000 अवैध अपीलें दाखिल करवाई, इसीलिए उन्हें फौरन निलंबित किया जाए। मुख्य न्यायाधीश की अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनी लेकिन ज्ञानेश कुमार के तुरंत निलंबन से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि फॉर्म 6 में जो जुलाई 2026 में बदलाव किए गए हैं उसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई मंजूरी नहीं दी। अदालत ने चुनाव आयोग को नोटिस देकर जवाब मांगा है लेकिन जवाब की मियाद तय नहीं की है। अब आयोग को बताना होगा कि मौजूदा एसआईआर के फॉर्म 6 में डिक्लेरेशन में दादा दादी के ब्यौरे को जोड़ने की अनिवार्यता किस तार्किक संबंध की कसौटी को कैसे पूरा करता है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।
0: इस बीच बड़ी खबर कांग्रेस सूत्रों से आ रही है। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं से कहा है कि हमें सतर्क और सावधान रहना होगा, एकदम बोल्ड और आक्रामक तरीके से अपनी बात रखनी होगी। दरअसल सुबह कांग्रेस पार्टी कल चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली में मार्च करने वाली है और उससे पहले एक बैठक हुई जहां पर राहुल गांधी ने ये बात कही है। सूत्रों से हमें ये भी जानकारी मिली है कि कल के विरोध मार्च के लिए डीएमके और आम आदमी पार्टी दोनों को आमंत्रण किया गया है।
12: गांव पंचायत बूथ तक जाके लोगों को ये जानकारी देंगे कि जिस प्रकार से गैर कानूनी तरीके से एसआईआर को किया गया और इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए और वो तो खुलेआम जो है संविधान के धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है।
13: राहुल जी का क्या मैसेज था?
12: राहुल जी ने कहा जनता के बीच जाएं, उनका विश्वास जीतें और हकीकत उनको बयान करें जनता के बीच।
14: राहुल जी का ये मैसेज था कि ये पूरा देश जान चुका है कि वोट चोरी ज्ञानेश कुमार ने की है या बीजेपी ने की है, पर हमें किस तरह से नुक्कड़ सभाएं, चौपाल, इन सब चीजों से संदेश देना है, वो एक अलग सा संदेश जो हमने देना है वो हमें करना पड़ेगा।
0: कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान पर विवाद छिड़ गया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है, बीजेपी और आरएसएस सनातन धर्म को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रही है।
11: एक बार फिर से हिंदुत्व पर सियासत सुलग रही है, एक बार फिर हिंदुत्व पर राजनीति तेज हो रही है और ये हो रहा है कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व वाले इस बयान में।
15: इस देश में जिस प्रकार सनातन धर्म को हिंदू हिंदू करते रहे, ये आरएसएस विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुत्व और सावरकर जी ने उसको हिंदुत्व नाम दे दिया, उसकी वजह से पूरे देश में हिंदू मुसलमानों के अंदर, हिंदू और सिखों के बीच में, हिंदू ईसाइयों के बीच में आपने खाई पैदा कर दी।
11: दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार मध्य प्रदेश से हुआ। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय पर निशाना साधा।
16: इस तरह से अनर्गल बयानबाजी करना बिना तथ्यों के यह आपत्तिजनक भी है और खेदपूर्ण भी है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह के इस तरह के तथ्यहीन बयान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो किन तथ्यों के आधार पर इस तरह की बातें कर रहे हैं? वो राम को बदनाम कर रहे हैं?
11: उधर महाराष्ट्र में भी दिग्विजय सिंह के बयान की गूंज सुनाई दी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भड़क उठे।
17: आरएसएस हो, ये सारी जो संगठनाएं हैं, ये महाराष्ट्र, ये देश में, देश को, जो हमारा देश हिंदू राष्ट्र है उसको और ताकतवर बनाने के लिए, हिंदुओं को संगठित रखने के लिए दिन रात काम करते हैं। वो सभी की सभी चीजें हिंदुओं के बारे में बोलना और वहां कभी भी इस्लाम और कुरान पे बोलने की हिम्मत ये कांग्रेस वाले कभी करते नहीं है, इसलिए तो हम लोग कांग्रेस को मुस्लिम लीग के बी लीग बी टीम बुलाते हैं ना।
11: अब चारों ओर से दिग्विजय पर पलटवार हो रहे हैं और हिंदुत्व पर अब सियासत तेज हो रही है। आज तक भी
0: अगली खबर पंजाब से। विधानसभा चुनाव करीब है और भगवंत मान सरकार की मुसीबतें कम हो नहीं रही हैं। आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से मान को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उस मामले को सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं जिसमें ईडी ने पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखकर पंजाब सीएम ऑफिस और कुछ लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।
18: मान न मान, मुश्किल में है भगवंत मान और उनकी मुश्किलें अदालत ने बढ़ा दी हैं। भगवंत मान को करारा झटका लगा है। दरअसल यह मामला प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पंजाब के डीजीपी को लिखे गए 3 पत्रों से जुड़ा है जिसमें सीएम कार्यालय से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। पत्र में कहा गया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, साथ ही कई सरकारी कामों में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। बड़ी बात यह है कि ईडी ने कुछ निजी व्यक्तियों के साथ साथ पंजाब मुख्यमंत्री के ओएसडी राजबीर घुमन का नाम भी विशेष रूप से दर्ज किया था। ईडी की ओर से भेजे गए इन तीन पत्रों में सीएमओ से जुड़े कुछ लोगों की भ्रष्टाचार में भूमिका बताई गई थी और पंजाब के डीजीपी से इन आरोपों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी। आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह मामला सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई को 2 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।
19: सीबीआई को हिदायत दी है कि वो इस केस में एफआईआर लॉन्च करे और जो उन्होंने टाइम फ्रेम दिया है उसके बीच में अपनी इन्वेस्टिगेशन की स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें। उन्होंने कोर्ट ने पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार को भी हिदायत दी है कि आप जो भी इसके रिलेटेड कागजात हैं सब सीबीआई को दे दीजिए और कोई भी और भी जो भी असिस्टेंस सीबीआई को चाहिए वो असिस्टेंस दीजिए।
18: हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी पंजाब की भगवंत मान सरकार पर हमलावर हो गई है।
20: चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और अरविंद केजरीवाल जी के खास हैं, उनके ओएसडी और भगवंत मान जी के खास लोगों द्वारा जिस प्रकार का घोटाला किया जा रहा था, आज पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने उस पर सीबीआई जांच को प्रोसीड करने के लिए कहा है।
18: कांग्रेस को भी मौका मिला है निशाना साधने का, तो कैसे छोड़ दे।
21: एफआईआर ओएसडी घुमन के खिलाफ और आहिस्ता आहिस्ता ये सब पकड़े जाएंगे तो इनका जो ईमानदारी का ढोंग था वो खत्म हो चुका है और सिर्फ बोर्ड लगाते रहेंगे, क्योंकि पंजाब के लोगों को पता लग चुका है कि आम आदमी पार्टी और इनके लीडर जो हैं वो बहुत बहुत करप्ट हैं।
18: अब सरकार को सूझ नहीं रहा कि क्या जवाब दें, इसीलिए पंजाब के मंत्री कह रहे हैं कि आगे का फैसला भगवंत मान लेंगे।
22: जो साडे कोले लीगल रेमेडीज है वो सारी पंजाब सरकार जिहड़ी हैगी आ, वो लीगल प्रोसेस जिहड़ी लीगल टीम है मुख्यमंत्री साहब उहदे ते फैसला करनगे, उहदे ते जो भी असीं लीगल कार्रवाई बण होएगी जो करेगा ठीक है जी।
18: अब सरकार चाहे जो कहे मगर इतना जरूर है कि चुनाव से ठीक पहले भगवंत मान को यह तगड़ा झटका लगा है। चंडीगढ़ से असीम बस्सी के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब आपको लिए चलते हैं पटना। पटना में आज 11,000 सफल दारोगा अभ्यर्थी प्रदर्शन पर कर रहे हैं। ये अभ्यर्थी बिहार दारोगा भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वही अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मुख्य लिखित परीक्षा पास कर फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा पास करने के बाद वे शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मुख्य परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले से पूरी भर्ती प्रक्रिया फिर से अटक गई है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने का फैसला वापस लेने और भर्ती प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
23: राजधानी पटना में आज एक बार फिर से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और आज दरअसल 1800 सीट के लिए जो दरोगा बहाली की परीक्षा पिछले दिनों हुई थी, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया है वो आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। तकरीबन 11,000 ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या है जिन्होंने परीक्षा पास कर ली थी और इनका फिजिकल टेस्ट जो है अब होना था, लेकिन क्योंकि पिछले दिनों पूरी की पूरी परीक्षा को ही रद्द कर दिया गया, इसलिए अब ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने मेहनत के दम पर, जिनका दावा है कि इन्होंने परीक्षा पास की थी, वो आज सड़कों पर उतरे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षा को रद्द किया गया है उसको सरकार वो फैसला वापस ले। और इसलिए आप देख सकते हैं पटना में यहाँ पर जेपी गोलंबर के पास यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी हाथों में तख्तियाँ लेकर पहुँचे हुए हैं और दरोगा मेंस कैंसिलेशन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पुलिस ने भी जो है वो ज़बरदस्त बंदोबस्त आज किया हुआ है। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार देखा जा रहा है कि छात्रों का प्रदर्शन रह रहकर राजधानी पटना में हो रहा है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।
0: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नदी उफान पर है। कई इलाके ऐसे हैं जो पानी में डूबे हुए हैं, जहां 40,000 से ज्यादा घरों में 5 फीट तक पानी घुस चुका है। लखनऊ में बाढ़ के क्या हालात हैं, देखिए इस रिपोर्ट में।
24: इस वक्त हम हनुमंत धाम में मौजूद हैं। यहां पर भी गोमती नदी का पानी आ चुका है और जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। फिलहाल ये छोर जो गोमती हनुमान धाम का है, इसे जो श्रद्धालु हैं उनके लिए कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि जलस्तर बढ़ा है। सामने देखिए गाड़ी खड़ी है जो कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा पानी में डूब चुकी है। ये पिलर्स आप देखिए, ये गोमती नदी के पानी में डूब चुके हैं। जहां इस वक्त मैं खुद मौजूद हूं, आप मेरे देखें तो घुटने के ऊपर तक, यहां मेरे घुटने के ऊपर तक पानी आ पहुंचा है। और आपको बता दूं, मैं इस वक्त जहां से रिपोर्ट कर रहा हूं काफी आगे तक, सामने देखिए एक झूला भी दिखाई पड़ेगा, अगर कैमरामैन गौरव दिखा पाइए, वो झूला जो है वहां लोग आकर झूलते थे वो झूला तक खत्म हो चुका है। कुछ लोग आपको जरूर आते दिखाई पड़ेंगे, एक दो यहाँ पर जो यहाँ के कुछ वर्कर्स भी हैं, उनको भी दिखा दें किस तरीके से घुटने के ऊपर तक पानी यहाँ पर आ पहुंचा है। और इससे पानी से निकलते हुए यहाँ के लेबर्स हैं, यहाँ से निकलते हुए आ पहुंचे हैं। ये दरवाजा देखें, ये दरवाजा खुलने की हालात इसके नहीं है, ये भी डूब चुका है। तो कुल मिलाकर पेड़ पौधे सब कुछ इस वक्त पानी में समा गया है। और मैं जब यहाँ थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करता हूँ तो जलस्तर काफी ज्यादा है।
0: अब देखते हैं कैसा रहा बाजार का हाल और कहां पहुंचा सोने चांदी का भाव।
2: कारोबार के दौरान घरेलू शेयर बाजार आज तेजी के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 473 अंक बढ़कर 72,382 और निफ्टी 134 अंक की बढ़त के साथ 22,556 पर बंद हुआ। कमजोर अमेरिकी जॉब्स डेटा से अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से आक्रामक ब्याज दर बढ़ाने की आशंका कम हुई, इससे ग्लोबल बाजारों में रिस्क एपेटाइट बढ़ी। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में हाल की ऊंचाई से कुछ नरमी और आईटी समेत कई बड़े शेयरों में खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिला। शेयर बाजार में तेजी के बावजूद रुपया कमजोर हुआ और डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे कमजोर होकर 96.30 रुपए पर बंद हुआ। महंगा कच्चा तेल और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली से रुपए पर दबाव बना रहा। हालांकि बाजार में रिस्क ऑन सेंटिमेंट से रुपए की गिरावट कुछ सीमित रही, वहीं सराफा बाजार में सोने में गिरावट और चांदी में तेजी रही और सोना 353 रुपए गिरकर 1,47,785 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 2,105 रुपए बढ़कर 2,22,934 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। कमजोर अमेरिकी जॉब्स डेटा से फेड की ब्याज दर बढ़ाने की उम्मीद कम होने से ग्लोबल बुलियन को सपोर्ट मिला। हालांकि घरेलू बाजार में सोने में कुछ नरमी देखने को मिली। आज तक ब्यूरो।
0: ये थी खबरें 7 तक, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
6: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
5: असली शहद, असली स्वाद।
25: आगे आगे,
26: अरे उधर
25: उधर गया। करेक्ट करेक्ट,
27: मिल गया।
28: आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
29: सर कैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। कैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
30: गड़बड़ है।
31: आहा, कैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
32: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
33: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
32: स्मॉल बैंक,
33: स्मॉल Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RD, everything. There's nothing small about them.
32: Okay.
33: Ujjivan, nothing small about us.
34: Tera pyar pyar pyar unka baar, sir, ek baar do tum thumka lagane bas.
33: Mere paas ek idea.
34: Kya?
33: Ek Don ke ghar ko 12 mulkon ki police ne charo taraf se gher liya hai, lekin wo ghar ko tod nahi paaye. Rungta TMT bar se jo bana hai.
34: Ek rockstar hota hai. अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता
33: क्योंकि वो मजबूत रूंगटा टीएमटी से बना है।
32: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है।
34: कौन सी बनानी है?
35: इतने पेमेंट एप्स पर सेफ कौन सा?
34: तो स्विच टू भीम।
1: एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
7: इट्स अ माय वे।
8: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर। दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
9: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
10: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
11: सोच बदलो और बैंक भी।
12: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
13: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
12: अब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
14: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
15: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
16: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
17: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत सुना।
26: एक दो एक श्राम

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इन एसोसिएशन विद
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
1: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते।
3: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।
4: जो पंजाब में आज सरकार में है उनको लेकर कोर्ट में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने, उसमें दो जजेस के खंडपीठ ने, जस्टिस चीफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा एंड जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने एक पीआईएल पे यह निर्णय दिया है कि भगवंत मान जी के जो ओएसडी हैं और उनके जो करीबी लोग हैं, भ्रष्टाचार का आरोप जो ईडी के कारण उन पर लगा है, उस विषय पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच करे कि भगवंत मान जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और अरविंद केजरीवाल जी के खास हैं, उनके ओएसडी और भगवंत मान जी के खास लोगों द्वारा जिस प्रकार का घोटाला किया जा रहा था, आज पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने उस पर सीबीआई जांच को प्रोसीड करने के लिए कहा है और यह भी कहा है कि 2 महीनों के अंदर, लगभग 60 दिनों में सीबीआई इसे कंप्लीट करे और इसका रिपोर्ट सबमिट करे।
5: अक्टूबर का महीना, मौसम सुहाना और पहाड़ों पर सैलानियों का जमावड़ा। जी हां, अभी तो ठंड का शुभारंभ होना बाकी है और पहाड़ सैलानियों से भर गए हैं। डलहौजी में इन दिनों हर तरफ टूरिस्ट ही टूरिस्ट नजर आ रहे हैं। होटल से लेकर टैक्सी और रेस्तरां कारोबार तक, हर जगह हलचल बढ़ गई है और आने वाले दिनों में कारोबार और बेहतर होने की उम्मीद है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के डलहौजी की है। कोई पहाड़ों की ठंडी हवा का मजा ले रहा है, कोई देवदार के जंगलों के बीच तस्वीरें खिंचा रहा है और कोई बाजार में जमकर खरीदारी कर रहा है। कारोबारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भीड़ और बढ़ेगी। अब रुक करते हैं मनाली का, जहां लॉन्ग वीकेंड पर सैलानियों की भीड़ ने शहर की रफ्तार बढ़ा दी है। हाल ही में ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद पर्यटकों का उत्साह और बढ़ गया है। सड़क पर बढ़ती गाड़ियों की कतारें बता रही हैं कि मनाली में टूरिस्ट सीजन जोर पकड़ चुका है। उत्तराखंड में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लिहाजा ट्रैफिक संभालने के लिए पुलिस को भी मोर्चा संभालना पड़ा है। नैनीताल में भी मौसम बदलते ही पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। कैंची धाम में दिन भर भक्तों की लंबी कतारें और चारों तरफ श्रद्धालुओं का हुजूम नजर आ रहा है। वहीं नैनीताल के नैनी झील में पर्यटकों को बोटिंग का आनंद उठाते हुए देखा जा सकता है। यानी एक तरफ बाबा नीप करौली की भक्ति देश भर के लोगों को उत्तराखंड के कुमाऊं की ओर खींच रही है, तो दूसरी ओर पर्यटन कारोबार को नई ऊर्जा मिल रही है। हिमाचल हो या उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर, पहाड़ों पर टूरिस्ट सीजन की शुरुआत धमाकेदार नजर आ रही है। मतलब साफ है, सर्दी आने से पहले ही पहाड़ों पर सैलानियों की गर्मी बढ़ गई है। अभी त्योहारों और सर्दियों की छुट्टियां भी बाकी हैं। ऐसे में कारोबारियों को उम्मीद है कि 2026 का टूरिस्ट सीजन कारोबार के लिहाज से बेमिसाल रहने वाला है। आज तक ब्यूरो,

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: फॉर्म 6 में बदलाव पर फंसा इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, चेंज को कोर्ट ने नहीं दी थी मंजूरी। इलेक्शन कमीशन और केंद्र को नोटिस, ज्ञानेश को तुरंत सस्पेंड करने से इनकार। ज्ञानेश पर राहुल गांधी के आरोप, कहा बीजेपी के लिए फॉर्म 6 में किए गए गैर कानूनी बदलाव, संसद से इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक, कल इंडिया अलायंस का मार्च। राज्यसभा के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी, 3 ओबीसी, 2 एससी, 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय का नाम, हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा को टिकट नहीं मिला। मायावती ने फिर भतीजे पर दिखाई दया, फिर से बनाया बीएसपी का नेशनल कन्वेनर, कहा सुधर गए हैं आकाश आनंद। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन, जम्मू कश्मीर से वापस भेजे गए 150 लोग, 7 अक्टूबर को एक और कार्रवाई की तैयारी।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। बात करेंगे यूपी में अब्दुल कौन, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। लंदन के हीथरो एयरपोर्ट से अमेरिका के शिकागो जा रही ब्रिटिश एयरवेज की ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट BA-295 में उड़ान के दौरान एक बड़ा तकनीकी संकट आ गया है। आयरलैंड के हवाई क्षेत्र के ऊपर से गुजरते समय विमान में अचानक आई तकनीकी खराबी के बाद उसने इमरजेंसी घोषित कर दिया, हवा में ही इमरजेंसी घोषित हुआ है।

0: आज विशेष में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां अब्दुल पर घमासान मचा हुआ है। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर यूपी में ये अब्दुल कौन है। अब्दुल का मतलब हुआ उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोटर, जिसको लेकर असादुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अब्दुल अब किसी की दरी नहीं उठाएगा, यानी अब्दुल के वोट पर अब कोई भी पार्टी राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। समस्या यह है कि ओवैसी के इन सवालों से समाजवादी पार्टी बहुत नाराज है। इसकी क्या वजह है, हमारी रिपोर्ट देखिए।
1: अब्दुल दरी नहीं दिखाएगा, सज्जन दरी नहीं दिखाएगा, शौकत दरी नहीं दिखाएगा।
2: आप नाम लीजिए अब्दुल, अब्दुल क्या होता है? आप किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं अब्दुल कह करके।
3: क्यों मौलाना साहब, क्यों लग रहा है आपको इतना बुरा अब्दुल का नाम पर? गाली है अब्दुल।
4: चुनाव से पहले अब्दुल पर घमासान, किसकी तरफ है यूपी का मुसलमान? अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, इस बार किस तरफ जाएगा? यूपी में मुस्लिम वोटों पर हंगामा मचा है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी और ओवैसी के बीच घमासान मचा है कि कौन लेकर जाएगा मुस्लिम वोट, यूपी का मुसलमान किसकी तरफ जाएगा।
5: ओवैसी बोलता है कि एम जिंदा कौम है, दरी नहीं बिछाएंगे बाबा और भैया, अब तुमको दरी बिछाना पड़ेगा हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला।
4: यहाँ पर उत्तर प्रदेश अपनी रैलियों में ओवैसी अक्सर कहते हैं कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा और इसी अब्दुल पर हंगामा छिड़ गया है। मुस्लिम पॉलिटिक्स में अब्दुल शब्द मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है, खुद ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता इस शब्द यानी अब्दुल का इस्तेमाल करते हैं। अब्दुल का राजनीतिक मतलब निकाला जाता है उस मुसलमान से जिसे राजनीतिक पार्टियां अपना वोट बैंक समझती हैं। इसीलिए ओवैसी कहते हैं कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, यानी अब्दुल अब उन पार्टियों के लिए वोट बैंक नहीं बनेगा जिनके वोटों पर जीत कर ये पार्टियां उन्हें भूल जाती हैं।
1: अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, सज्जन दरी नहीं बिछाएगा, शौकत दरी नहीं बिछाएगा, अब सज्जन टेबल लगाएगा, कुर्सी पर बैठ कर कहेगा बोल इंसाफ करता है या नहीं करता है। इस मिजाज को आपको पैदा करना है नौजवानों, आने वाला मुस्तकबिल आपका है, आने वाला मुस्तकबिल आपका है। बुजुर्गों, आपने बरसों इन जालिमों का साथ दिया, इन्होंने झूठ बोलकर आपके ख्वाबों को मिसमार कर दिया, चिकना चूर कर दिया। एक बार मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को आप अपना वोट देकर यहां से मजलिस के विधायक को कामयाब करिए।
4: ऐसा नहीं है कि ओवैसी ने मुसलमानों के लिए अब्दुल शब्द पहली बार कहा हो, वो पहले भी कहते रहे हैं।
2: अब्दुल अब्दुल क्या होता है?
4: लेकिन इस बार विवाद हुआ है रामपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी से पूछे गए सवाल पर। असल में रामपुर में मोहिबुल्ला नदवी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसी में एक पत्रकार ने उनसे अब्दुल के नाम पर ये सवाल पूछ लिया तो नदवी बुरी तरह से भड़क गए।
2: मुसलमान इस देश के सबसे मोहतर शहरी है
6: जी, इसके चुनाव की क्या तैयारी है?
7: और हर पार्टी जो है 27 के चुनाव में अब्दुल को याद करती, इस वक्त अब्दुल का
2: क्या मतलब? आप नाम लीजिए अब्दुल, अब्दुल क्या होता है? आप किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं अब्दुल कह करके।
7: नहीं, हर पार्टी नहीं,
2: आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। अब्दुल प्रिंस क्या होता है?
7: हर पार्टी
2: किसे कहते हैं आप? अब्दुल का नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा आपकी बात को। अब्दुल अब्दुल लगाया क्या होता है? अब्दुल
7: बताइए,
2: मुसलमान इस देश के सबसे मोहतर शहरी हैं, जिन्होंने देश की कुर्बानी हजारों साल सैकड़ों साल से देश में कुर्बानियां दी हैं। कांग्रेस पार्टी के आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी में देख लीजिए, सब लोग हैं। आप अब्दुल अब्दुल कहकर के आप घटाने की कोशिश करते हैं।
4: रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद को लग रहा है कि ऐसे अब्दुल का नाम लेकर मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है, उन्हें आपत्ति है कि मुसलमानों को अब्दुल कहा जा रहा है। ये करीब 5 साल पहले का रामपुर का ही बयान है और जो ये अब्दुल कह रहे हैं ये कभी आजम खान के करीबी हुआ करते थे और उन्हीं की सभा में इन्होंने ये अब्दुल वाला बयान दिया था। इनका नाम है फसाहत अली शानू, अब ये बीजेपी में है और अब्दुल के नाम पर जब मौजूदा रामपुर के सांसद को आपत्ति हुई तो इन्होंने उन्हें बताया कि अब्दुल कौन है।
3: क्यों मौलाना साहब, क्यों लग रहा है आपको इतना बुरा? अब्दुल के नाम पर गली है अब्दुल? आपकी घर की दीवारों की रंग पॉलिश करता है वो है अब्दुल, आपकी मोटरों के पंचा जोड़ता है वो है अब्दुल, जिसके नाम के आपकी आपने और आपकी पार्टी ने रोटियां सेकी है वो है अब्दुल, देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई उसके वोटों से वो है अब्दुल, जमाने से आज भी थाने में पिटता आ रहा है वो है अब्दुल। आपने तो इमामत की कीमत कबूल ली, आप तो मस्जिद में नमाज पढ़ाते पढ़ाते सांसद बन गए, अब्दुल के वोटों से बने आप सांसद, अब्दुल के नाम पे भड़कते हैं आप, अब्दुल के नाम पे गुस्सा आता है आपको? आपकी पार्टी ने राज्यसभा में किसको भेजा है? नथवानी को भेजा है, और जो राज्यसभा में नथवानी को भेजा है वो भी अब्दुल की वजह से भेजा है। अब्दुल ने आपकी पार्टी की यह हैसियत बनाई कि आपकी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी।
4: यूपी के मुसलमानों के मन में यह भी सवाल है, जिसका जिक्र फसाहत अली शानू भी कर रहे हैं, कि जब राज्यसभा देने की बारी आई तो समाजवादी पार्टी ने धनराज परिमल नाथवानी को राज्यसभा भेजा, ना कि किसी मुसलमान नेता को। यहीं से यह नैरेटिव बनता है कि अब्दुल इन पार्टियों के लिए कब तक दरी बिछाएगा।
5: पूछेंगे समाजवादी थी तो क्या था? समाजवादी थी तो वाई था, वाई का फायदा था, अब बाबा बन गए तो टी का फायदा है, टी का फायदा है, ना वो एम बोलते ना ये एम बोलते, कोई एम नहीं बोलता, ओवैसी बोलता है कि एम जिंदा कौम है। दरी नहीं बिछाएंगे बाबा और भैया, अब तुमको दरी बिछाना पड़ेगा हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला।
4: कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।
0: असल में ओवैसी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर्स को अखिलेश के पाले से अपनी तरफ लाना आसान नहीं होगा। उन्होंने पिछली बार भी कोशिश की थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन ओवैसी को बिहार के एक्सपेरिमेंट से बूस्ट मिल रहा है, जहां उन्होंने सीमांचल में 5 सीटें जीती थी। वो यही कोशिश इस बार यूपी में कर रहे हैं, लेकिन क्या यूपी के मुसलमान ओवैसी के पास जाएंगे, इस पर सवालिया निशान है।

0: असल में यूपी में ओवैसी भी जानते हैं कि मुसलमानों का एक तरफा वोट अब समाजवादी पार्टी को मिलता है और इसी वोट के दम पर समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं और 20% वोट के भरोसे अखिलेश यादव दूसरी बार यूपी का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। यूपी में कुल 19.26% मुस्लिम जनसंख्या है। सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो रामपुर में करीब 51%, मुरादाबाद में 47, बिजनौर में 43, सहारनपुर में 42, मुजफ्फरनगर में 41, अमरोहा में 41, बलरामपुर में 37, बरेली में 35, मेरठ में 34 और बहराइच में करीब 33.5% मुस्लिम पॉपुलेशन है। ये माना जाता है कि यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 120 पर सीधे मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव है। इसी मुस्लिम वोट के लिए हर कोई हाथ पांव मार रहा है। मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करेगा ये तो साफ है, लेकिन 20% के इस वोट बैंक से अगर किसी पार्टी की गिनती शुरू होगी तो उसके लिए मैदान मारना साफ हो जाए और इसमें समाजवादी पार्टी अभी तक सबसे आगे, इसीलिए ओवैसी के निशाने पर अखिलेश यादव ज्यादा रहते हैं।
1: उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो या भारत का 1900 मुसलमान हो, ये मुसलमान तुम्हारी बपूती नहीं है, याद रखो, ये तुम्हारे बाप की बपूती नहीं है। हम इंसान है, वोटर नहीं है। तुम अगर हमको बपूती समझते हो तो तुमको पता चल जाएगा आने वाले विधानसभा में तुमने वोट हासिल किया, तुमने हमारे ख्वाबों को चूना चूर करके अपने इख्तदार के महलों को तामीर किया, तुमने हमारे मदरसों में जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात दी जा रही थी उसको बंद कर दिया जा रहा था तो तुमने अपनी आंखों को बंद कर दिया, अपने कान को बंद कर दिया, अपनी जबानों को गूंगा कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि आप आने वाले चुनाव में अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए।
0: पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से मायावती यूपी की राजनीति से गायब है उससे मुसलमान वोटरों को अपने पाले में करने में समाजवादी पार्टी कामयाब रही है। यूपी में मुसलमान अब एक तरफा अखिलेश यादव के लिए वोट करते हैं। 2017 में जिस समाजवादी पार्टी को यूपी में मुसलमानों के 46% वोट मिले थे 2022 में ये वोट बढ़कर 79% हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही दिखा जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को यूपी में 92% मुसलमानों का वोट मिला। यही वजह है कि विधानसभा में अखिलेश यादव मुसलमानों को भरपूर टिकट भी देते हैं और उनके प्रत्याशी जीतते भी हैं। 2022 में अखिलेश ने कुल 64 मुस्लिम उम्मीदवारों को समाजवादी पार्टी का टिकट दिया जिनमें से 31 विधायक बने।
2: हम कहते हैं हम दरी नहीं बिछाएंगे, हम ये कहते हैं कि हम वोट बैंक नहीं है, हमको हमारा हक मिलना चाहिए। हम ये कहते हैं कि मुसलमानों की एक पॉलिटिकल एजेंसी होनी चाहिए। तो अब जाहिर है कि जो लोग सच्चाई को का इनकार करते हैं और जो राइट है, जो जस्टिस होना चाहिए उससे इनकार करते हैं तो ज्यादा तकलीफ होती होगी।
3: समाज में हर वर्ग का सम्मान करती है। हम कहते हैं कि कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो समाजवादी पार्टी जिसका सम्मान नहीं करती हो। समाजवादी पार्टी हर वर्ग को अपना परिवार का सदस्य मानती है, समाजवादी परिवार का सदस्य मानती है, उनका सहयोगी और साथी मानती है। ये हम हमारी वो सहयोगी साथी और हमारे समाजवादी पार्टी परिवार के हिस्सा हैं और उन्हें पता है कि जो समाजवादी हमेशा सामाजिक न्याय की बात करती है, समाज को आगे ले जाने की बात करती है, विकास की बात करती है, जो लोग हम इस तरह की बात करते हो वो समाज में एक समाज को तोड़ने की और समाज को भटकाने की बात करते हैं।
0: जो सियासी सवाल असदुद्दीन ओवैसी पूछ रहे हैं जाहिर तौर पर वो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल भरे हैं। ओवैसी ने जो सवाल छोड़े हैं अगर वही सवाल मुस्लिम मतदाता ने पूछने शुरू कर दिए तो अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट ओवैसी और अखिलेश के बीच बंटा तो अखिलेश का सपना चकनाचूर हो जाएगा।
4: हम अपने घर को बर्बाद करके कभी भैया को तो कभी भैया के पिता को तो कभी जीपी पंत को तो कभी नेहरू को, हमने सबको ओहदा दिया। बताओ तुमको क्या मिला, बताओ तुमको क्या मिला? जो कुछ तुमको मिला वो अल्लाह की तरफ से मिला, तुम्हारी मेहनतों का सिला है जो तुमको मिला, मगर किसी

0: सर गैसोफास की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
1: गैसोफास 27%,
0: इनो 9.2%।
2: गड़बड़ है।
3: आहा, गैसोफास वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसोफास इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
4: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
5: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
4: स्मॉल बैंक?
5: स्मॉल Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RD, everything. There's nothing small about them.
4: Okay.
5: Ujjivan, nothing small about us.
6: Tera pyar pyar pyar unka baat. Sir, ek do thumka lagane bas.
7: Mere paas ek idea hai.
6: Kya?
7: Ek Don ke ghar ko 12 mulkon ki police ne charon taraf se gher liya hai, lekin wo ghar ko tod nahi paaye. Rungta TMT bar se jo bana hai.
8: Ek rockstar hota hai. अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
9: क्योंकि वो मजबूत रूंगटा टीएमटी से बना है।
10: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है।
8: कौन सी बनानी है?
11: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
12: AU savings account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest, वो भी हर महीने।
13: Money, money, money, money, every month.
14: सोच बदलो और बैंक भी।
15: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
16: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
15: अब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ। कपिवा डायट्री जूस।
17: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत सुनो।
18: एक दो, एक श्राम।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक दो तुम ठुमका लगाने बस।
1: मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
1: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
2: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता
3: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
4: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
2: कौन सी बनानी है?
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन के गीत सुना।

क्या यूपी में कांग्रेस प्लान बी पर बढ़ेगी? क्या छोटे दलों में विकल्प ढूंढ रही कांग्रेस? क्या यूपी में है राहुल अखिलेश का कुछ सीक्रेट प्लान? उत्तर प्रदेश की कांग्रेसी सियासत के चेहरों ने अब तक जो रुख जाहिर किया है उसी से ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 403 सीटों वाली विधानसभा में 200 सीट मांग कर रही है तो अखिलेश लगातार जीत के आधार पर ही सीट की बात कर रहे हैं। ऊपर से छोटे छोटे दलों के नेता राहुल की परिक्रमा करना शुरू कर चुके हैं, चाहे वो अपनी जनता पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य से राहुल गांधी की मुलाकात हो या यूपी में चौहान लोनिया ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले महान दल के अध्यक्ष संजय चौहान की राहुल से मुलाकात या फिर अपना दल कमेरावादी पार्टी के नेता पंकज निरंजन से राहुल की भेंट। 2022 के पहले बने भागीदारी मोर्चा के ज्यादातर दल कांग्रेस के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी छोटे दलों के नेता बारी बारी से राहुल गांधी से मिल चुके हैं। दरअसल यूपी में जिस तरह समाजवादी गठबंधन में शर्तों की बात सामने आई है उसमें राहुल अखिलेश के सियासत के सीक्रेट मायने कुछ और भी हो सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इन छोटे छोटे दलों को जोड़कर 2017 के पहले के बीजेपी के फार्मूले को अपना रही है, जब अमित शाह ने इन्हीं छोटी पार्टियों और नेताओं को अपने साथ जोड़कर समाजवादी पार्टी को मात दी थी। वैसे छोटे दलों से कांग्रेस की मुलाकातों का एक मायने और है, जिसमें राहुल यूपी में समाजवादी वर्चस्व के मुकाबले विकल्प की तलाश कर सकते हैं। खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ने की मांग की है और लगभग दर्जन पर सीटों की मांग रखी है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कहा है कि सिंबल तो कांग्रेस का ही होगा। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी चेतावनी देती है कि यूपी में कांग्रेस के सामने सिर्फ समाजवादी ही विकल्प है, वरना यूपी में का नाम लेवा प्रतिनिधित्व भी नहीं होता। दरअसल समाजवादी पार्टी बार बार संकेत दे रही है कि यूपी में कांग्रेस का बड़ा भाई समाजवादी है और अखिलेश ने जो जिताऊ कैंडिडेट की शर्त कांग्रेस के सामने रखी है उसमें कांग्रेस छोटे दलों के अंदर जातिगत बुनियाद पर जिताऊ चेहरे तलाश रही है, कुमार अभिषेक लखनऊ आज तक

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: विशेष में मेरे साथ आज इतना ही, आगे देखिए खबरदार श्वेता सिंह के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: एफआईआर के तहत फॉर्म 6 में बदलाव पर फंसा चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, हमने चेंज को नहीं दी थी मंजूरी, ईसी और केंद्र को थमाया नोटिस, लेकिन ज्ञानेश कुमार के तुरंत निलंबन से इनकार। ज्ञानेश कुमार पर राहुल गांधी के गंभीर आरोप, कहा बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए फॉर्म 6 में किए गैर कानूनी और एक तरफा बदलाव, मकर द्वार से ईसी ऑफिस तक कल विपक्षी मार्च। चुनाव से पहले राज्यसभा सीट से जातीय समीकरण साधने में जुटी बीजेपी, लिस्ट में 3 ओबीसी, 2 एससी, 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय के नाम, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, बीएल वर्मा आउट। मायावती ने फिर भतीजे पर दिखाई दया, कहा सियासत से ससुर के संन्यास के बाद सुधर गए हैं आकाश, वापस किया राष्ट्रीय संयोजक का पद। लंदन से शिकागो जा रही ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट में इमरजेंसी, उड़ान भरने के करीब 1 घंटे बाद 9000 फीट पर आया विमान, हीथ्रो एयरपोर्ट की तरफ लौटा।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सियासी घमासान कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। कल विपक्ष का दिल्ली में चुनाव आयोग को लेकर मार्च है। उससे पहले ज्ञानेश कुमार का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। अदालत ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। क्या होगा ज्ञानेश कुमार का? दूसरी बड़ी खबर कागज पर चलते फावड़ों की है, जिससे बड़े घोटाले का शक है। भ्रष्टाचार से खबरदार करती रिपोर्ट आपके लिए आगे है। वहीं आज तक की खबर का असर भी आपको दिखाएंगे, जिसने स्कूल की बेंच के सहारे खड़ी स्कूल की इमारत में पढ़ने वाले बच्चों को सुरक्षित स्कूल मिल गया है। हमारी खबर दिखाने के कुछ ही घंटों में बिहार में ये इम्पैक्ट हुआ है। पर सबसे पहले बात चुनाव आयोग की, जिसे घेरने के लिए विपक्ष अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है।
1: कमिश्नर एक अंपायर का रोल अदा करता है और दोनों पार्टीज का, विपक्ष और पक्ष दोनों का भरोसा होना चाहिए। आज हम इलेक्शन कमीशन पे कोई सवाल करते हैं तो उसका जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं देता है, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं।
2: क्योंकि अब देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता जी के ऊपर पूरे देश के लोगों का विश्वास हो चुका है और भी सब लोग मिलके जो लोग लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, जो विश्वास करते हैं कि लोकतंत्र के अंदर ही असली ताकत है, वो ऐसे लोग ज्ञानेश गुप्ता का इस्तीफा करा के छोड़ेंगे।
3: जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में भी चुनाव इतना साफ सुथरे से हो रहा है, अब चाहे नेपाल है, इसलिए बिना मुद्दा का मुद्दा खड़े कर लोगों को गुमराह करने तो जरूर लोग बहुत समझदार है।
2: देश की हर संवैधानिक संस्था का अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है, कोई कठपुतली बनाने का प्रयास कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का।
4: 6 तारीख को भी जितने पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो सभी प्रदर्शन करेंगे।
5: चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन की छवि को खराब किया है, बीजेपी की बी टीम के रूप में तब्दील कर दिया है।
6: कांग्रेस हारी अपने कारणों से, अब हार का ठीकरा वो चुनाव आयोग को फेंकना चाहते हैं, तो वो पूरे इलेक्शन सिस्टम को बदनाम कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण।
0: सुप्रीम कोर्ट ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने उन्हें निलंबित करने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया, लेकिन चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि अगर फैसले बिना सहमति के लिए पाए गए तो उन्हें वापस लिया जा सकता है।
7: ज्ञानेश कुमार को लेकर मामला जब अदालत की चौखट पर पहुंचा तो याचिकाकर्ता की तरफ से आरोपों की फेहरिस्त पेश की गई। ज्ञानेश कुमार असंवैधानिक काम कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार ने 14 एकतरफा फैसले लिए हैं। ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म 6 में अवैध तकनीकी बदलाव कर दिया, 13 करोड़ योग्य मतदाताओं का नाम हटा दिया, बंगाल में आयोग के नाम से 16,10,000 अवैध अपीलें दाखिल कराई, इसलिए उन्हें फौरन निलंबित कर दिया जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तत्काल एक तरफा अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि सीसी संवैधानिक प्रावधान के विपरीत काम कर रहे हैं, एक तरफा फैसले ले रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि आप ये अखबार की रिपोर्ट के आधार पर कह रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा चुनाव आयोग ने खबर का खंडन नहीं किया। कोर्ट ने कहा खबर सही या गलत हो सकती है, लेकिन हम उस आधार पर आदेश पारित नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता ने कहा इतने ऊंचे पद पर बैठा शख्स कानून का उल्लंघन कर रहा है। कोर्ट ने कहा जब रिकॉर्ड पेश होगा तो देखेंगे फॉर्म 6 में तकनीकी बदलाव किसने किया है। कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि फॉर्म 6 में जो जुलाई 2026 में बदलाव किए गए हैं उसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई मंजूरी नहीं दी। अदालत ने चुनाव आयोग को नोटिस देकर जवाब मांगा है, लेकिन जवाब की मियाद तय नहीं की है।
8: कोर्ट ने नोटिस जारी किया है जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस बी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार को, निर्वाचन आयुक्त को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को और बाकी जो 7 पक्षकार बनाए गए हैं उन सबको नोटिस जारी किया है। फिलहाल कोर्ट ने तारीख तय नहीं की है कि कितने हफ्ते में कितने दिनों में नोटिस रिटर्नेबल है यानी जवाब देना है, लेकिन अब आगे की कार्रवाई तभी आगे बढ़ेगी जब नोटिस का जवाब आ जाएगा और कोर्ट तय करेगा कि कोर्ट ने जो सवाल पूछे थे उनके जवाब संतोषजनक हैं या फिर आगे एक्शन लेने की जरूरत है।
7: याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि स्थिति गंभीर है, अगर अभी अंतरिम आदेश नहीं दिया गया तो स्थिति बिगड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि यदि सीईसी को निलंबित किया जाता है तो चुनाव आयोग का कामकाज प्रभावित होगा और चुनाव कौन कराएगा। विकास सिंह ने कहा कि बाकी दोनों चुनाव आयुक्त आयोग का काम संभाल सकते हैं। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अदालत आयोग को निर्देश दे कि सभी फैसले केवल सर्वसम्मति या बहुमत से लिए जाएं। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, एक अनिवार्य कानून है और हम उम्मीद करते हैं कि वो उसका पालन करेंगे, अगर कोई उल्लंघन हुआ है तो हम उसे रद्द कर देंगे।
9: माननीय मुख्य न्यायाधीश ने इस चीज को कहा कि ठीक है, हम इस चीज को नोटिस करके देख लेते हैं और अगली बार जो है इस चीज पर हम जो आपने वो दायर किया है जितने भी वो टेम्पर ना हो सके कागजात या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो भी उसके जो ये हैं वो चीज को मंगवा के देख लेते हैं और उसके बाद फिर अगले सप्ताह इसकी सुनवाई करेंगे, उसके बाद जो भी आगे संभव हो पाएगा वो देख लेते हैं।
7: सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमालिया बागची ने कहा कि अदालत की तय किए बिना कि वास्तव में कोई उल्लंघन हुआ है सभी पक्षों को सुने बिना आदेश कैसे पारित कर सकती है। उन्होंने कहा कि यदि रिकॉर्ड से पता चलता है कि कोई फैसला सर्वसम्मति या बहुमत से नहीं लिया गया तो कोर्ट उस फैसले पर रोक लगा सकता है और उसे अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित कर सकता है, लेकिन सभी फैसलों को एक तरफा मानकर पहले ही निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
0: अदालत ने दोनों याचिकाओं पर चुनाव आयोग समेत संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार ने एक तरफा फैसले लिए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से चुनाव आयोग और केंद्र को नोटिस दिया जाना इस बात का सबूत है कि देश की संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं।
10: हिंदुस्तान का जो लोकतांत्रिक सिस्टम है उस पर बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार जी ने आक्रमण किया है एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन। वी आर गोइंग टू इंश्योर, दिस इज पर्सनल कमिटमेंट ऑफ ऑल इंडिया लीडर्स, वी आर गोइंग टू इंश्योर दैट द पीपल हु हैव डिस्ट्रॉयड इंडियन डेमोक्रेसी आर पनिश्ड।
11: चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देश भर में आंदोलन एक अखबार के खुलासे के बाद से हो रहा है जिसमें पता चला कि आयोग के कई फैसले सर्वसम्मति से नहीं हुए और आरोपों की धुंध छटी तो सबसे बड़ा मुद्दा फॉर्म 6 में अवैध बदलाव का सामने आया।
12: फॉर्म 6 को लेके हमारी जो प्रमुख मांग थी वो ये कि फॉर्म 6 में जो रद्दो बदल किए गए हैं उसके लिए लॉ और लेजिस्लेशन की जरूरत थी, बिना उसके चुनाव आयोग ने ये काम किया और वो डिसीजन जो लिया गया था वो चुनाव आयोग के बहुमत से नहीं था, तो जिसने ये डिसीजन लिया गया, जिसके द्वारा लिया गया, उनकी लायबिलिटी फिक्स की जाए, उसमें ज्ञानेश कुमार की लायबिलिटी फिक्स होनी जरूरी है।
11: सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा है कि चुनाव आयोग ने ये असंवैधानिक बदलाव किए क्योंकि अखबार ने चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु के हवाले से ऐसा खुलासा किया। सफाई में चुनाव आयोग ने कहा कि फॉर्म 6 के साथ अटैच किए गए डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है और एसआईआर के बाद फिर वही पुराना फॉर्म 6 इस्तेमाल होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कहा है कि कोर्ट ने ऐसे किसी बदलाव को मंजूरी नहीं दी। दरअसल मामला 2 साल पहले बिहार एसआईआर के समय का है, तब आयोग ने अनेक्षर डी जोड़ा और उसे जरूरी बताया, उसमें गलत जानकारी पर 1 साल की सजा तक का प्रावधान था। इसके बाद 11 दस्तावेजों की अनिवार्यता पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वहां सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 को साफ कहा कि एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग सिर्फ फॉर्म 6 तक ही सीमित नहीं है, उसके पास एसआईआर के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन के तरीके में बदलाव करने का अधिकार है, लेकिन आयोग को नियम कानून का ध्यान रखना होगा और बदलाव का तार्किक संबंध भी होना चाहिए। इसी आदेश के चलते चुनाव आयोग फॉर्म 6 के साथ अनेक्षर डी को जोड़ने को वाजिब ठहरा रहा है, जबकि इस बीच अनेक्षर डी में एक ऐसा बदलाव हुआ जिस पर सवाल उठे। 12 जुलाई को चुनाव आयोग की वेबसाइट ECINET पर डिक्लेरेशन अनेक्षर में बदलाव हुआ। माता पिता या दादा दादी के पिछले SIR के ब्यौरे मांगे गए। वोटर कार्ड नंबर से लेकर क्षेत्र का नाम, बूथ नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर तक मांगे गए। दावा है कि इसी बदलाव पर चुनाव आयुक्त SS संधू ने आपत्ति जताई थी और इसे असंवैधानिक करार दे दिया था। दरअसल फॉर्म 6 यानी नए वोटर को दिक्कत ऑनलाइन फॉर्म भरने में हुई, क्योंकि नया अनेक्षर भरे बिना फॉर्म जमा नहीं हो सकता था, ऑनलाइन फॉर्म फिर भी जमा हो रहे थे। फॉर्म 6 के अंदर ये बदलाव जुलाई में हुए, जब देश के 13 राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में पुराने डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ SIR भी हो चुका था और फॉर्म 6 जमा भी हो चुके थे, यानी इन राज्यों के लिए चुनाव आयोग ने दूसरा पैमाना रखा और बाकी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, इन 19 प्रदेशों में नए डिक्लेरेशन के साथ फॉर्म 6 के तहत नए वोटर का रजिस्ट्रेशन नियम फॉलो किया। SIR की एक प्रक्रिया में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पैमाना अपनाने को लेकर सवाल उठे और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसले पर उठ रहा है। तब आयोग को बताना होगा कि मौजूदा SIR के फॉर्म 6 में डिक्लेरेशन में दादा दादी का ब्योरा जोड़ने की अनिवार्यता किस तार्किक संबंध की कसौटी को पूरा करती है।
8: कोर्ट ने फिलहाल तो नोटिस जारी किया है और जो मुख्य मांग थी याचिकाकर्ता की कि जब तक इस मामले में कोर्ट का निर्णय ना आ जाए तब तक CEC ज्ञानेश कुमार को निलंबित किया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे फिलहाल अनसुना कर दिया है। यानी अब अगली बार जब नोटिस का जवाब आएगा उसके बाद सरकार क्या कहती है उसमें और निर्वाचन आयोग और बाकी अन्य पक्षकार क्या कहते हैं, कोर्ट इस पर आगे की सुनवाई को आगे बढ़ाएगा। कैमरामैन कुंज बिहारी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।
0: इस बीच बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। राहुल गांधी ने फॉर्म 6 को लेकर एक पेपर शेयर किया था, दावा किया था कि चुनाव आयोग में ज्ञानेश कुमार मनमानी कर रहे हैं और अब चुनाव आयोग ने उस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए जवाब दिया है कि राहुल गांधी का दावा भ्रामक और तथ्यहीन है। तो SIR में फॉर्म 6 में बदलाव के आरोपों से निर्वाचन आयोग इनकार करता है, वो उसमें घोषणा पत्र का अतिरिक्त पन्ना जोड़ने को की बात करता है, लेकिन कानून के जानकारों की निगाह में ऐसा करने से पहले भी सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच अनिवार्य सलाह प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए।
13: ये स्टैचू में कोई मॉडिफिकेशन जैसा शब्द आमतौर पर नहीं होता है, कोई भी स्टैचू या तो अमेंड किया जाता है या उसको रिपीट किया जाता है। और एक स्टैंडर्ड जो लीगल प्रिंसिपल है वो कहा कहता है कि अगर पार्लियामेंट में लॉ कोई पास करा है तो उसमें आप कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदल सकते। इनिशियल लगाना तो बहुत दूर की बात है, अगर आप इनिशियल लगाते हैं और उससे ओरिजिनल स्टैचू के कुछ कैरेक्टर पे बदलाव आ जाता है वो भी परमिसेबल नहीं है। तो आपने जो इनिशियल्स लगाए हैं उससे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फ्लो किए थे, वो कॉन्सिक्वेंसेस को पार्लियामेंट ने भी इन्वर्साइज नहीं किया था। अब आप जब वो हल्ला होता है और चीजें बाहर आती हैं तो फिर आप कहते हैं कि हमने उसको विथड्रॉ कर लिया। तो ये जो चेरी पिकिंग है वो आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से तो कर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में तो कर सकते हैं लेकिन स्टैचू के साथ नहीं कर सकते। इट मींस यू आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व द पावर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ जो SIR को लेकर दो चीजों के बारे में बड़ी गलतफहमी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको कैटर बैंका दे दिया, मतलब आप जो आपको दिल करता है वही कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ऐसा अपने जजमेंट में नहीं कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई का जो जजमेंट है उसमें ये बात चीज को इवैल्यूएट किया कि SIR कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है।
0: कल इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन चुनाव आयोग को लेकर दिल्ली में होना है। कांग्रेस की तरफ से बताया गया है कि इस मार्च में इंडिया गठबंधन के सभी सांसद शामिल होंगे। ये मार्च शांतिपूर्ण होगा, सुबह 11 बजे इसकी शुरुआत हो जाएगी।
14: कल 11 बजे सभी विपक्ष पार्टियों के सांसद पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक शांतिपूर्वक मार्च करेंगे। सभी को 10:30 बजे का टाइम दिया गया है, मकर द्वार पर इकट्ठा होने के लिए। 11 बजे को मार्च हम शुरू करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से ये मार्च निकाला जाएगा निर्वाचन सदन तक। ये कल का प्रोग्राम है।
0: तो जिस दिन से एक न्यूज रिपोर्ट के जरिए ये पूरा मामला सामने आया है, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को जाने नहीं दिया है। और अब ये जो सबसे बड़ा प्रदर्शन है जिसकी बात की जा रही है, मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। मौसमी, अब तक हमने देखा कि जब अभी पेपर लीक वाला मुद्दा था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था, राहुल गांधी ने सीधे तौर पर एकदम जो फ्लैश प्रोटेस्ट होता है वो किया, यानी चौंका दिया सामने प्रशासन को, सरकार को। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार पूरा पूरी व्यवस्था है, तैयारी है और कह रहे हैं सबसे बड़ा प्रदर्शन।
15: बिल्कुल, देखिए ये बार बार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो आक्रामक, अग्रेसिव ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि एक तरीके से एड़ी चोटी का जोर कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है कि इसमें कोई भी कोर कसर या कोताही नहीं छोड़ी जाए। पिछले एक हफ्ते 10 दिन में 2-3 बारी ये बैठकें हो चुकी हैं, चाबी भरी जा चुकी है सारी राज्य इकाइयों को, सारे फ्रंटल आउटफिट्स को कांग्रेस के, कि कहीं भी आप अगर सड़क पर नजर नहीं आए तो आपकी खैर नहीं, आपको सड़क पर जनता को साथ में लेके आगे चलना पड़ेगा। उसमें राहुल गांधी ने ये भी नसीहत दी है कि कुछ अलग कीजिए, कुछ आक्रामक तो करिए ही, जेन जी से सीख के अपना अंदाज अलग रखिए और आउट ऑफ द बॉक्स सोच के आप आंदोलन कीजिए। तो कुल मिला के उनको लगता है ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया ब्लॉक का पूरा खाका हमने तैयार कर लिया है अगले 2 महीने का, और ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा करा के रहेंगे। इसी मंशा से कांग्रेस आगे बढ़ रही है।
0: बहुत शुक्रिया मौसमी सिंह हमारी संवाददाता। देखिए कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रदर्शन है उसका मकसद एक कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो, मुद्दा देश के अलग अलग राज्यों में पार्टी लेकर जाना चाहती है। और इस सब के बीच यूथ कांग्रेस ने भी आज प्रदर्शन किया है जिसमें पुलिस से आमना सामना भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुआ।
16: पहली डिमांड है कि ज्ञानेश कुमार पर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए, एक इंक्वायरी उनके ऊपर बैठनी चाहिए।
7: वोट चोरी पर मुंबई में कांग्रेस जनता पार्टी के शक्ति प्रदर्शन के बाद अब बारी दिल्ली की है, जहां पर इंडिया गठबंधन मंगलवार को सबसे बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है, जिसका ट्रेलर कांग्रेस की छात्र विंग ने दिया।

0: जंतर मंतर से कुछ दूरी पर रायसीना रोड पर कांग्रेस के छात्र विंग ने अपने विरोध पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कई तरीके अपनाए, अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता और नेता शव की तरह सड़क पर ही लेट गए। जो प्रदर्शनकारी अर्थी बनकर लेटा है, उस पर रखे पोस्टर में लिखा है, जिंदा है हम फिर भी वोटर लिस्ट में मुर्दे क्यों।
1: मैं भौतिक रूप से तो जिंदा हूँ, परंतु ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन ने SIR में मुझे मृत घोषित कर दिया है। और हमारी लड़ाई यही है कि जो लाखों लोगों का वोट इस SIR में लाखों लोगों को मृत घोषित किया गया है, उनके न्याय की लड़ाई है। क्योंकि लोग फोन चला रहे, लोग घूम रहे, लोग खाना खा रहे, लोग पानी पी रहे हैं, परंतु उनको मृत घोषित कर दिया गया है। सोचिए, मैं भी बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मेरा नाम भी SIR से कट गया है, सच्चाई है।
2: जंतर मंतर से जाने से रोका जा रहा है, हमारे साथियों को डिटेन किया जा रहा है, लाठी चार्ज किए जा रहे हैं, FIR दर्ज की जा रही है। लेकिन हम कहेंगे दिल्ली पुलिस से कि आपकी लाठियां हमारा जिस्म तोड़ सकती हैं, आवाज नहीं, हमारा हौसला नहीं टूटेगा। और ये जो आप लाशें देख रहे हैं, ये लोकतंत्र की लाशें हैं, ये उनकी जिंदा लाशें हैं जिनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। ये चीख चीख के सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी शरीर जिंदा है, हमारी आत्मा जिंदा है, लेकिन वोटर लिस्ट में ज्ञानेश कुमार ने हमें मार दिया है। और इनकी लाशों पे ही, लोकतंत्र की लाशों पे जो है इस देश की सरकार बनी हुई है। जो सरकार लाशों पे बनी हुई हो, वो इस देश की तरक्की नहीं कर सकती है। तभी इस देश के अंदर पेपर चोरी हो रहे हैं, इस देश में वोट चोरी हो रहे हैं, इस देश में जो है चंदा चोरी हो रहा है, इस देश में पेट्रोल चोरी हो रहा है, टैक्स चोरी हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जो इस देश में चोरी नहीं हो रहा हो।
0: जिंदा लाश बनकर अपना संदेश देकर जैसे ही NSUI के कार्यकर्ता और नेता जंतर मंतर की तरफ बढ़े, रास्ते में ही उन्हें रोकने की कोशिश हुई। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों से उनका सामना हुआ। CISF और दिल्ली पुलिस की महिला ब्रिगेड ने प्रदर्शनकारियों को उठाकर बस में भर दिया। ये भी देखिए कैसे एक प्रदर्शनकारी को 2 CISF और 1 दिल्ली पुलिस का जवान उठाकर ले जा रहे हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की छात्र विंग के प्रदर्शनकारियों को बस में भरकर हिरासत में ले लिया।
3: आप जो है अपनी वर्दी उतार दो और संघ का कच्छा पहन लो। दिल्ली पुलिस, संघ का कच्छा पहन लो, शर्म करो। पुलिस को आप जो है

सरकार के खिलाफ विपक्ष नए नए तरीके से अपनी बात रखने के लिए अनोखे अंदाज में प्रदर्शन करता है। माना जा रहा है कि मंगलवार को भी इंडिया गठबंधन के नेता इसी तरह से अपनी बात रख सकते हैं। पूरी संभावना है कि पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ उनका इसी तरह से आमना सामना हो। क्योंकि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पिछले चार दिनों में जितना भी विरोध प्रदर्शन हुआ है वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है। और अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इंडिया गठबंधन के 19 दल 6 अक्टूबर से सड़कों पर उतरने जा रहे हैं, जिसमें सभी विपक्षी पार्टियों के सभी सांसद चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे।

0: दिल्ली में आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टियों और उसकी छात्र विंग 2 से 4 अक्टूबर के बीच इंडिया गेट से जंतर मंतर तक सिटीजंस मार्च निकाल चुकी है। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से रोका, माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के विरोध को लेकर भी दिल्ली पुलिस का यही रवैया रह सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: और राहुल गांधी के आरोपों का जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संबित पात्रा इस समय दे रहे हैं, सीधे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं।
2: 2026 को कुछ पैराग्राफ्स में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से लेके आया हूं, पेज नंबर समेत और पैराग्राफ भी मैं पढ़ता हूं। मैं ये सारे चीज इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि बीजेपी का नाम घसीटने की कोशिश की गई। 124 पेज का यह पूरा का पूरा जजमेंट था। इस जजमेंट के 106 नंबर पेज पे आइए, पेज नंबर 106, 152nd पैराग्राफ मैं पढ़ता हूं। सुप्रीम कोर्ट कहती है, इट इज ट्रू दैट फॉर्म 6 एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 सेट्स आउट अ फ्रेमवर्क ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। हाउएवर द सेम इज टेलर्ड टू द प्रोसेस ऑफ रिवीजन contemplated under section 21(2) of the RP Act and may not in all situations be capable of literal application to an exercise of the present nature. The Commission therefore retains a degree of residual authority to formulate an appropriate documentation framework suited to the exigencies of a special intensive revision, that is SIR. Such authority, however, is not unbounded. In devising such a framework, the Commission must remain cognizant of the existing statutory scheme and any departure therefrom must be informed by a rational nexus to the object sought to be achieved. इसमें बड़े स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 के अटैचमेंट के विषय में कहा है। साथ ही आप आइए पेज नंबर 110।
1: सुप्रीम कोर्ट में आज सिर्फ चुनाव आयोग को लेकर ही सुनवाई नहीं हुई। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली पुलिस को कई निर्देश दिए। सबसे बड़ी बात जो अदालत ने कही वो थी कि अपराधी पकड़ने से ज्यादा इस बात पर जोर दिया जाए कि अपराध को होने से पहले ही कैसे रोका जा सकता है।
3: दिल्ली पुलिस बताए, पेट्रोलिंग के दौरान वैन एक ही जगह खड़ी क्यों रहती है? अंधेरी जगहों पर रोशनी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्या सीसीटीवी फुटेज की कोई निगरानी होती है? 4 अगस्त चलती बस में गैंगरेप, 12 सितंबर गैंगरेप के बाद हत्या, 21 सितंबर आस्था कुंज पार्क में गैंगरेप। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में नाबालिगों से गैंगरेप की 3 घटनाओं पर बेहद सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में गैंगरेप की इन 3 घटनाओं पर खुद नोटिस लिया और बेहद सख्त लहजे में दिल्ली पुलिस को खबरदार करते हुए कहा कि जब तक अपराधी के मन में मौत का डर नहीं होगा तब तक ऐसे अपराध नहीं रुकेंगे। इन लोगों में ये डर पैदा करें कि अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उनका बुरा हाल होगा। अपराधी को पकड़ने से ज्यादा जरूरी है अपराध को रोकना। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि ये सुनिश्चित करना होगा कि दिल्ली में हर महिला खुद को सुरक्षित महसूस करे, चाहे वो रात के 10 बजे पैदल चल रही हो, मेट्रो सड़क से यात्रा कर रही हो। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि केवल चीजों को कागज पर लिखना पर्याप्त नहीं है, सख्त कार्रवाई करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जिन बातों पर चिंता जताई वो दिल्ली की हकीकत है। आज तक ने इसी को लेकर पड़ताल की। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी को पकड़ने से ज्यादा अहम अपराध क्यों होता है, उसे कैसे रोका जा सकता है पर जोर दिया, आज तक की पड़ताल भी इसी के इर्द गिर्द रही। आज तक की 4 रिपोर्टर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गए। बेटियों की सुरक्षा पर आज तक ने की बड़ी पड़ताल, जहां आज तक की रिपोर्टरों का पीछा किया। आज तक के कैमरे में कई लोग महिलाओं को घूरते दिखे। सड़क पर खड़ी आज तक की रिपोर्टरों को ड्रॉप करने के ऑफर अजनबियों की तरफ से दिए गए। सबसे बड़ी बात, इस दौरान दिल्ली पुलिस गायब रही। कई इलाकों में सड़कों पर अंधेरा भी दिखा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली पुलिस को संवेदनशील इलाकों की पहचान करने, ऐसे इलाकों का मैप तैयार करने, गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया। कालका जी के जिस पार्क में नाबालिग से गैंगरेप हुआ, वहाँ वारदात के बाद जिस तरह पुलिस गश्त के लिए पहुँची उससे भी सवाल उठे।
0: आज तक नहीं अपनी पड़ताल में दिखाया कि शाम के वक्त ये पार्क अंधेरे में डूब जाता है, क्योंकि वहाँ लाइट की कोई व्यवस्था नहीं। जब वारदात हुई तब पुलिस और नगर निगम इसे लेकर जागा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि पार्कों और संवेदनशील जगहों पर खराब स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी की पहचान कर उन्हें ठीक किया जाए। कालका जी के जिस आस्था कुंज पार्क में गैंगरेप हुआ, उसने डीडीए के पार्कों की पोल खोल कर रख दी है, क्योंकि 736 में से सिर्फ 16 डीडीए पार्कों में सीसीटीवी है। सभी 736 डीडीए पार्कों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद सुरक्षा और जोखिम के आधार पर पार्कों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। 190 पार्क हाई रिस्क, 298 को मीडियम रिस्क और 288 पार्कों को लो रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। 520 पार्कों में अतिरिक्त रोशनी की जरूरत सामने आई और इनमें से भी 231 पार्कों में तत्काल लाइट लगाए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पुलिस को अपना कर्तव्य निभाना होगा। इसके बाद दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। आज तक ब्यूरो।
1: विधानसभा चुनाव करीब है और भगवंत मान सरकार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब सीएम ऑफिस से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की जांच सीबीआई से करवाने के आदेश दिए।
4: आज 75 साल हो गए आजादी के, किसी भी दफ्तर में अपना काम कराने के लिए जाता है उससे पैसे मांगे जाते हैं, बिना पैसे के काम नहीं किया जाता, उसकी बेइज्जती की जाती है। क्यों? क्योंकि इन सारी पार्टियों की सरकारों ने मिलकर करप्शन किया है। आप क्या सोचते हैं कि जब आप राशन कार्ड बनवाने जाते हैं किसी दफ्तर में और आपसे पैसे मांगे जाते हैं, उस पैसे का एक छोटा सा हिस्सा वो क्लर्क रखता है, बाकी ऊपर तक जाता है सारा पैसा।
5: खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट और विरोधियों पर बेईमानी का ठप्पा लगाने वाली आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार भ्रष्टाचार के मामले पर बुरी तरह से घिर गई है।
4: केवल और केवल आम आदमी पार्टी की सरकार है। भारत के इतिहास में आजादी के बाद केवल पहली ईमानदार सरकारें बनी है दिल्ली और पंजाब में, आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसमें हिम्मत है कि अगर कोई रिश्वत मांगे रिकॉर्डिंग कर देना, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। क्यों? क्योंकि केजरीवाल पैसा नहीं खाता, मेरे मंत्री पैसा नहीं खाते, भगवंत मान पैसा नहीं खाता, भगवंत मान के मंत्री पैसा नहीं खाते। इस सिस्टम को खत्म करने के लिए आए हैं। जैसे दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म हुआ, पंजाब से भी अब भ्रष्टाचार खत्म होगा।
5: पंजाब में भ्रष्टाचार का खात्मा करने के दावे के साथ सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री के ऑफिस में ही भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के आदेश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दिए। चुनाव से पहले अदालत के इस आदेश से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिर सकती है। ये मामला प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पंजाब के डीजीपी को लिखे गए 3 पत्रों से जुड़ा है, जिसमें सीएम कार्यालय से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। पत्र में कहा गया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, साथ ही कई सरकारी कामों में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। बड़ी बात यह है कि ईडी ने कुछ निजी व्यक्तियों के साथ साथ पंजाब मुख्यमंत्री के ओएसडी राजबीर घुमन का नाम भी विशेष रूप से दर्ज किया था। ईडी की ओर से भेजे गए इन 3 पत्रों में सीएमओ से जुड़े कुछ लोगों की भ्रष्टाचार में भूमिका बताई गई थी और पंजाब के डीजीपी से इन आरोपों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी। आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह मामला सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई को 2 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया है।
6: सीबीआई को हिदायत दी है कि वो इस केस में एफआईआर लॉन्च करे और जो उन्होंने टाइम फ्रेम दिया है उसके बीच में अपनी इन्वेस्टिगेशन की स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें। कोर्ट ने पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार को भी हिदायत दी है कि आप जो भी इसके रिलेटेड कागजात हैं सब सीबीआई को दे दीजिए और कोई भी और भी जो भी असिस्टेंस सीबीआई को चाहिए वो असिस्टेंस दीजिए।
5: हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी पंजाब की भगवंत मान सरकार पर हमलावर हो गई है।
7: चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और अरविंद केजरीवाल जी के खास हैं, उनके ओएसडी और भगवंत मान जी के खास लोगों द्वारा जिस प्रकार का घोटाला किया जा रहा था, आज पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने उस पर सीबीआई जांच को प्रोसीड करने के लिए कहा है।
5: कांग्रेस को भी मौका मिला है निशाना साधने का, तो कैसे छोड़ दें?
8: एफआईआर ओएसडी घुमन के खिलाफ और आहिस्ता आहिस्ता ये सब पकड़े जाएंगे तो इनका जो ईमानदारी का ढोंग था वो खत्म हो चुका है और सिर्फ बोर्ड लगाते रहेंगे, क्योंकि पंजाब के लोगों को पता लग चुका है कि आम आदमी पार्टी और इनके लीडर जो हैं वो बहुत बहुत करप्ट हैं।
1: अब बात बारिश के बीच लबालब सड़कों पर कागजी फावड़ा चलाने के दावों की। उत्तर प्रदेश में 25 से 27 के बीच ज्यादातर जिलों में खूब बारिश हुई। कई जगह तो बाहर निकलना तक मुश्किल था, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि तब देवरिया, अयोध्या, महाराजगंज में मजदूर कागजों पर फावड़ा चला रहे थे। वीवी जीराम जी के तहत हो रहे इस काम में बड़े घोटाले का शक।
3: उत्तर प्रदेश का देवरिया, जहां वीवी जीराम जी योजना में फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। देवरिया जनपद में 25, 26 और 27 सितंबर को 16.6, 20.6 और 75.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन दावा है कि इन तीन दिनों में 6,367, 2,564 और 4,823 यानी कुल 13,754 मजदूर पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के अनुसार रास्तों पर मिट्टी पाटने और पौधारोपण जैसे काम कर रहे हैं। आरोप है कि फर्जी मस्टरोल तैयार किया गया, यानी बारिश के दिन मजदूर जमीन पर नहीं कागजों में फावड़ा चला रहे थे। जब आज तक की टीम ने भागलपुर ब्लॉक के कुंडावाल हरिग्राम में रियलिटी चेक किया तो पाया कि जिस रास्ते पर 10 मजदूरों से मिट्टी पाटने का काम पोर्टल पर दिखाया गया है, उस रास्ते पर कई जगह हरी घास है। अगल बगल में कुछ दूरी तक धान की फसलें खड़ी हैं। यहीं रहने वाले हरिशंकर यादव ने बताया कि यहाँ मजदूरों से कोई काम नहीं हुआ। वहीं एक और गांव वाले आदित्य कुशवाहा ने बताया कि जब पूरे प्रदेश में बारिश थी, तूफान था, तब कोई कैसे काम कर सकता है।
9: बारिश तो उस समय पूरे प्रदेश में थी, अर्बन का चक्र चल रहा था, तो बरसात में किस हिसाब से काम हुआ, अगर काम हुआ तो फिर मिट्टी आखिर में आजू बाजू के खेत की मिट्टी तो उठना चाहिए ना।
10: कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। वो चोर है, उसको बुलाइए हमारे सामने।
11: कब का बना है, क्या बताया जाए?
10: ये शेषनाथ की जमाने का बना हुआ है।
11: मजदूरों से काम नहीं हुआ है?
10: मजदूरों से काम नहीं हुआ।
3: दिलचस्प बात यह है कि जिस मजदूर गेनू प्रसाद का नाम पोर्टल पर दर्ज है, वही बता रहा है कि मैं गया तो था लेकिन काम नहीं किया क्योंकि बारिश हो रही थी।
12: 27 तारीख को दिखाया गया है मनरेगा में कि 27 तारीख को गांव के चौकड़ों पर काम किए हैं, क्या सच्चाई है?
13: मैं गया था लेकिन काम नहीं किया, सच्चाई यही है। बारिश हो रहा था तो काम नहीं हुआ।
3: इस मामले में CDO राजेश कुमार ने जांच की, वीवी जीराम जी के DC आलोक कुमार को मौके पर भेजा, जिन्होंने बताया कि 26 को कोई मस्टरोल जारी नहीं किया गया, 27 को जनपद में धूप खिली थी, पूरे जनपद में काम हुआ है।
14: 26 को कोई भी मस्टर रोल वहां पर जारी नहीं किया गया, मस्टर रोल शून्य है। 27 को पूरे जनपद में धूप खिली हुई थी और 27 को जनपद में काम हुआ है। जिन दो महिलाओं का नाम, तो वो लोग कहीं पे भी उनकी हाजिरी नहीं भरी गई है। तीनों नाम का जो एक व्यक्ति है उसका उन्होंने वीडियो भी बनाया है और उसने कहा है कि हमने काम किया है।
11: सर, लेकिन जो गेंदू नाम का आदमी है उत्तराखंड में काम नहीं किया है,
14: तो ऐसा अगर आप लोगों ने कोई ऐसा देखा होगा तो गेंदू की भी जांच करा ली जाएगी कि उसने काम किया है कि नहीं किया है।
3: देवरिया की तरह अयोध्या जिले में भी बारिश के बीच वीवी जीराम जी के कार्यों में दर्ज मजदूरों की ऑनलाइन हाजिरी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सितंबर में बारिश के बीच 11 ब्लॉकों में कुल 1,124 मजदूरों की उपस्थिति NMMS पोर्टल पर दर्ज की गई और करीब 3,37,000 रुपए मजदूरी का भुगतान भी दिखा दिया गया, लेकिन गांव वालों का कहना है कि जब बारिश हो रही थी तब कोई काम नहीं हुआ।
15: हम खड़े हैं अयोध्या के मसौदा ब्लॉक पर, जहां पे मनरेगा का कार्य चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये वो सड़क है, वो रोड है जहां पे मनरेगा द्वारा कार्य कराया जा रहा है, और लेकिन अभी तक ये सड़कें वैसे ही हैं, बीच में क्योंकि काम चल रहा था और कहीं रुक गया, लेकिन कागजों में भी दर्शाया गया है कि ये कार्य जो है बारिशों के समय भी चल रहा था। यहाँ पे लोग, यहाँ पे मजदूर आ रहे थे, लेबर आ रहे थे, वो काम करते नजर आ रहे थे, ये कागजों में मनरेगा के दर्शाया गया है। और यहाँ गांव के लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये काम भैया देख रहे थे कब से चल रहा है?
16: भैया बारिश के पहले चला था, ये बारिश में तो बंद था,
15: बारिश में बंद हो गया था जी।
16: दो तीन रोज बंद रहा है, दो तीन का जब तक बारिश हुई तब तक बंद रहा है,
17: बारिश में दो दिन बंद रहा बस।
15: अच्छा, बारिश में बंद था काम?
17: हाँ, दिखाने नहीं मने तो फिर वही।
15: अच्छा, तीनों दिन कोई कोई नहीं आया था, कोई लेबर नहीं आया था, कोई?
17: हाँ, नहीं देखा होगा। हाँ,
15: ये बीच में बारिश हुई, तीन दिन लगातार बारिश थी, उस वक्त कैसा काम?
17: नहीं तो बारिश में कौन यहाँ काम करता है?
15: बारिश में काम चल रहा था कि नहीं?
17: बारिश में
15: नहीं चल रहा था, बारिश में तीन दिन लगातार बारिश में काफी देखे हमें तो सड़कें ऐसी पड़ी थी।
3: इस खुलासे के बाद अब प्रशासन भुगतान से पहले पूरे रिकॉर्ड की जाँच कर रहा है, ये भी कह रहा है कि काम हुआ है कि नहीं ये भी पता लगाएगा।
18: लगभग 1100 के आसपास श्रमिकों का मानदेय का हाजिरी लगाने की रिपोर्ट मिली है हमें, ये संज्ञान में लिया गया है, इसके ऊपर कार्रवाई करी जा रही है। किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो बारिश के वक्त उस वक्त कार्य कर रहे थे, इस पे शो कॉज लिया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि यदि उस टाइम पे कार्य नहीं हो रहा था तो भुगतान भी ना हो।
19: सर कोई कार्रवाई की जा रही है, इस पे कोई जांच कराई गई?
18: इसके अंदर सभी वीडियोस को शो कॉज किया गया और इसके साथ ये इंश्योर किया जा रहा है कि वास्तविकता की स्थिति का सही आकलन कर लिया जाए और उसके बाद अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।
19: सर क्या कोई संख्या भी है कितने लेबर की, कितने मजदूरों यहाँ पे आकलन किया
18: गया? देखिये अभी जो हमें संख्या मिली है वो रिपोर्ट्स के आधार पे ही मिली है, जब तक वास्तविक जांच नहीं हो जाती है तब तक हम इसे वेरीफाई करने के बाद ही एग्जैक्ट नंबर बता पाएंगे।
0: प्रशासन भले ही जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहा हो लेकिन इन आरोपों ने बता दिया है कि वीबीजी रामजी में भ्रष्टाचार को लेकर चिंता बरकरार है। देवरिया से राम प्रताप सिंह और अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो।
1: देवरिया और अयोध्या की रिपोर्ट हमने आपको अब दिखाई, अब हम आपको महाराजगंज से हमारे रिपोर्टर की ये रिपोर्ट दिखाते हैं।

0: उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला, जहां वीबी राम जी की हकीकत वेबसाइट पर कुछ और, जमीन पर कुछ और। आज तक ने उन जगह की लिस्ट निकाली जहां मजदूरों की ऑनलाइन हाजिरी लगाकर काम करवाता दिखाया जा रहा है। महाराजगंज जिले के निचलौल ब्लॉक के करमहिया गांव के सीवान में 58 मजदूर काम करते बताए गए, लेकिन हमारी टीम जब रियलिटी चेक करने पहुंची तो यहां एक भी मजदूर काम करता नहीं मिला। आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों और मजदूरों ने हमें बताया, एक दिन घास छीलने लोग आए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहां कोई काम नहीं हुआ।
1: यहां जब हम ग्राउंड पे आए हैं तो एक भी मजदूर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिखाया गया है कि यहां चकबंद का काम कराया जा रहा है। अगर यहां चकबंद होता तो बगल से मिट्टी निकाली गई होती और इस पे डाली गई होती और बगल में जो है वो गड्ढा हो गया होता, लेकिन आप साफ देख सकते हैं कि यहां कोई गड्ढा नहीं है, कोई मिट्टी नहीं निकाली गई है, बल्कि एक बार जो है ट्रैक्टर से इसको साफ कर दिया गया है, जो घास भूस थे उसको कलम कर दिया गया है, लेकिन कोई मिट्टी भराई का काम यहां पे नहीं चल रहा है।
0: इसके बाद हम इसी गांव में दूसरी जगह पहुंचे जहां वीबी राम जी के तहत वेबसाइट पर 60 मजदूरों की ऑनलाइन हाजिरी दिखाई गई थी, लेकिन यहां भी हमें एक भी मजदूर जमीन पर काम करता नहीं मिला। यहीं पर काम कर रहे किसान रिंकू ने बताया कि आज ही नहीं पिछले दो दिनों से यहां कोई भी मजदूर काम करने नहीं आया।
1: आज घास छिल रहे थे?
2: नहीं,
1: कल
2: भी नहीं,
1: परसों
2: काम हुआ था।
1: कहां हो रहा था?
2: काम हो रहा था उधर भी, काम उधर हो रहा था, इस पे नहीं।
1: 60 मजदूर काम कर रहे?
2: 60 नहीं थे।
1: आज 60 मजदूर काम कर रहे?
2: नहीं, आज भी नहीं।
1: लेकिन कागजों में तो दिखाया गया 60 मजदूर यहाँ पे काम कर रहे?
2: नहीं, 60 नहीं थे।
1: आज काम हुआ इस पे?
3: नहीं,
1: आज काम नहीं हुआ। कल कोई काम?
3: कल ही देख ली हम।
1: अच्छा, लेकिन कागजों में तो दिखाया गया कि 58 मजदूर यहाँ पे काम कर रहे?
3: अरे मनो प्रधान देख ली करी है भाई, होकर अब प्रधान है जनी है।
1: कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे?
4: अब हमारे गांव को मना ही करवा नहीं के हम पक्का जाना था।
0: रिंकू के बाद हमारी मुलाकात इसी गांव में रहने वाले किसान मनोज कुशवाहा से हुई, जिन्होंने दावा किया कि यहां कोई मिट्टी भराई का काम नहीं चल रहा है।
1: आज जो 60 मजदूर दिखाया गया है, कोई काम यहां पे नहीं कर रहे थे?
5: आज तो नहीं देखे हैं मनो।
1: आज नहीं देखे।
0: महाराजगंज में दो जगह एक ही दावे सुनने के बाद हम जिले के जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल के पास गए, बताया कि एक तरफ मस्ट्रोल जारी कर काम दिखाया जा रहा है जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। इस पर जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि जांच में अगर आरोप सही पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी।
6: अभी कुछ जब हमारे यहाँ जनपद में महाराजगंज में बारिश थी तो उस समय पे हमें कुछ संज्ञान में आया था कि कुछ जगहों पर मजदूर मस्ट्रोल निकले हुए थे, लेकिन मौके पर मजदूर नहीं लगे थे। तो ऐसे तथ्य संज्ञान में आते ही हमने डीसी मनरेगा को निर्देशित किया गया है। चूंकि जी राम जी एक फ्लैगशिप स्कीम है और भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है और इसमें कई सारे ऐसे टूल दिए गए हैं जिससे पारदर्शिता को बढ़ाया जाए, ऐसे अगर तथ्य संज्ञान में आते हैं तो उस पर तत्काल उस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है कि उसकी जाँच करके अगर तथ्य सही है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध उसमें कार्रवाई की जाए, उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।
0: मनरेगा के नाम में बदलाव के पीछे सरकार ने इसमें सुधार की दलील दी, काम के दिन 100 से 125 और भुगतान 15 दिन से घटाकर हफ्ते भर के अंदर कर दिया ताकि मजदूरों को समय पर पैसा मिले, लेकिन महाराजगंज में हमारी पड़ताल बता रही है कि इस योजना का सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं चलेगा बल्कि काम की निगरानी और जवाबदेही को और बेहतर बनाने की जरूरत है। अमितेश त्रिपाठी, महाराजगंज आज तक।
7: अब बात आज तक की खबर की असर की। शुक्रवार को हमने आपको बिहार के जर्जर स्कूल से जुड़ी रिपोर्ट दिखाई थी, दरभंगा के स्कूल की इमारत को इसी शो में आपने स्कूल की बेंच के सहारे खड़ा देखा। हमारे रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद वहां क्या एक्शन हुआ है देखिए।
8: अब ये हिस्सा देखिए स्कूल का, ये आप देख के समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या है। यहाँ खड़ा होना भी कितना आप कह सकते हैं ये यहाँ पर खतरनाक है, क्योंकि जिस जगह पर आप ये देख रहे होंगे, ये पूरा ये ढांचा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक टेम्पोररी व्यवस्था की गई है पिलर का रूप देने के लिए।
0: बिहार के दरभंगा के इस स्कूल की हालत जिसने भी देखी वो गुस्से से भर गया। आक्रोशित होने वाली बात ये तो थी ही कि कैसे एक स्कूल की इमारत बेंच के भरोसे खड़ी है। उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात बिहार के शिक्षा विभाग की अनदेखी थी, जो बार बार स्कूल प्रिंसिपल की गुहार लगाने के बावजूद सोता रहा। इसकी वजह से सालों से जान जोखिम में डालकर सैकड़ों बच्चे इस खतरनाक स्कूल में पढ़ने को मजबूर थे। जब कुछ नहीं हुआ तो आज तक ने इस स्कूल को लेकर बिहार सरकार को खबरदार किया। आखिरकार बिहार सरकार हरकत में आई। सालों से सोया बिहार का शिक्षा विभाग भी एकाएक जागा और कीरतपुर प्राथमिक विद्यालय को गोसवा मध्य विद्यालय में शिफ्ट कर दिया। आज तक पर यह खबर दिखाए जाने के बाद ही बिहार के शिक्षा विभाग ने स्कूल शिफ्ट करने का आदेश जारी कर दिया। ये देखिए, शुक्रवार को यह आदेश जारी हुआ और रविवार को बच्चे दूसरे स्कूल में जाने लगे।
9: ये झर झर के गिर रहा है, बहुत डर है।
10: हाँ, तो कभी किसी को बच्चे को चोट भी लगा था, इससे गिरा था इसके पहले?
9: गिरता था लेकिन सर बचा लो।
10: हाँ, जब बरसात होता था
9: तो पानी टपकता था।
10: हाँ, तो मन में डर भी लगा रहता था।
9: हाँ,
10: आप जा रही हो दूसरे स्कूल तो वहाँ ठीक है ना सर?
9: हाँ।
0: 2 अक्टूबर को आज तक संवाददाता रोहित सिंह दरभंगा के इस स्कूल में गए थे। उन्होंने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे बच्चों की जान जोखिम में डालकर स्कूल चल रहा है। आज तक पर यह रिपोर्ट चलने के बाद अगले ही दिन बिहार के शिक्षा विभाग ने अपने अफसरों को स्कूल के निरीक्षण के लिए दौड़ाया और मौत के साए में पड़ते बच्चों को राहत मिल गई।
11: इसी खबर को जब आज तक ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया तो बिहार सरकार ने इसको संज्ञान में लिया और आदेश निकाला गया कि जिला प्रशासन को आदेश दिया गया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। इस जर्जर भवन पर पठन पाठन का काम जो है वो नहीं हो और आनंद फानंद में एक आदेश प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा स्कूल के प्रिंसिपल को भेजा गया, जिसमें यह बताया गया कि स्कूल में पठन पाठन का काम अब अगले दिनों से जब भी स्कूल खुलेगा तो नहीं होगा। इन बच्चों को टीचर यहां से लेके जो है वो गोसवा मध्य विद्यालय लेके जाएंगे जहां स्कूल को शिफ्ट किया गया है, क्योंकि बच्चे को अभी ये पूरी जानकारी नहीं हो पाई है। और जो यहां प्रिंसिपल है वो भी हम लोग के साथ है, टीचर लोग भी, अब ये लोग प्रस्थान कर रहे हैं। हम खुद प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे, वो अपने कार्यालय में कुछ कागजी खाना पूर्ति करके निकल रहे हैं और वो दूसरे स्कूल की तरफ जाएंगे। सर ये बताइए कि क्या कहेंगे, खबर आज तक ने दिखाई तो क्या हुआ और आप अभी क्या आदेश आया आप लोग को?
12: मुझे आदेश आया है कि विभागीय पत्र के अनुसार मेरा विद्यालय दूसरे जगह शिफ्ट किया गया, मध्य विद्यालय गोसवा में जी।
10: फिर
12: हम लोग तो सभी बच्चे और शिक्षक वहाँ पहुँच जाएंगे जी, जा रहे हैं अभी तुरंत लेकर के।
10: तो क्या यहाँ वाकई क्या स्थिति का खतरा था?
12: हाँ, यहाँ तो खतरा था।
0: आज तक के खबरदार करने के बाद स्कूल की मरम्मत के लिए बजरी भी स्कूल पहुँच चुकी है। बच्चे पासी के दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब बच्चे सुरक्षित होकर पढ़ेंगे। रोहित सिंह के साथ प्रहलाद कुमार, दरभंगा आज तक।
7: रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: आपके पास दो ऑप्शन।

0: Dilbaag hai mera signature. Signature finest silver elaichi, a premium product from Dilbaag Group.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: ओए, जाके से खड़ी की।
3: पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है।
2: और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी?
3: क्या?
4: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
2: तेरी बागी यार कहीं भी लगा ले।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यार लोन भूल गया मैरी।
3: सजेस्ट अ गुड बैंक ना।
4: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
2: स्मॉल फाइनेंस बैंक
4: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
5: There's nothing small about
6: us. Ujjivan, nothing small about us.
7: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
8: मेरे पास एक आइडिया है।
7: क्या?
8: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
9: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
10: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
11: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
12: कौन सी बनानी है?
13: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
14: गड़बड़ है।
15: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
16: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
17: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
18: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
17: असली शहद, असली स्वाद।
19: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
20: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
21: इट्स अ माय वे।
22: आगे आगे।
23: अरे उधर
22: उधर किधर?
23: करेक्ट करेक्ट।
24: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
25: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
26: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
27: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
26: अब मैं चैन की नींद सो पाता। कपीवा डायबिटीज जूस।

0: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है। जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल टू इन वन बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
1: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो थमका लगाने पर
2: मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
3: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
5: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
6: कौन सी बनानी है?
7: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है, जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल टू इन वन बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
3: In association with Signature Finest Cardamom Seeds,
4: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
6: एक सौ पचास सीटों की कथित तौर पर मांग की गई थी आप ही की तरफ।
7: किसने किया 150 का? मैंने तो 200 की बात की थी, जिनके साथ हमारा गठबंधन है इंडिया ब्लॉक में। यूपी में तो हम दो पार्टी हैं, मैं बेसिकली तो कांग्रेस और सपा है, दोनों जिम्मेदार हैं, एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं और एक दूसरे को साथ के लेके भी चलना है। तो निश्चित तौर पर सीट शेयरिंग का मामला हमें अक्टूबर में निपटा लेना चाहिए ताकि हम अपने कैंडिडेट्स को टाइम दे पाएं और हिस्सेदारी सम्मान बराबर होना चाहिए। मैं शुरू से कह रहा हूं और साथ में ये भी कह रहा हूं, हम लोग लचीले हैं भारत के संविधान की तरह। सम्मान की बात आए तो भारत के संविधान की तरह रिजिड है, सीट शेयरिंग की बात आएगी तो भारत के संविधान की तरह लचीले भी हैं, फ्लेक्सिबल भी हैं। थोड़ा बहुत झुकना पड़ेगा, झुकेंगे, क्योंकि जीतना जरूरी है, तो जीतने के लिए तो लड़ रहे हैं हम।
6: बट वो कह रहे हैं कि बात जीत की जाए।
7: हाँ, तो हम भी तो जीत की कर रहे हैं।
6: आप सीट की बात कर रहे हैं,
7: सीट मिलेगी तभी तो जीतेंगे, चुनाव लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे, बिना लड़े कोई जीतता है क्या?
8: जीत तो महत्वपूर्ण ही है, गठबंधन पानी की तरीके से एक है, सीटों की संख्या पर कोई झगड़ा नहीं, 403 की 403 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। सिंबल, जिस क्षेत्र में जो जीत सकता होगा उस पार्टी का सिंबल होगा। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तय करेंगे। इसमें तो ये तो एक अच्छा बयान है श्री अखिलेश यादव जी।
9: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तो तय है, जहां तक सीट शेयरिंग की बात है ये ना अनुराग भदौरिया तय करेंगे, ना हमारे सांसद एसपी सिंह पटेल साहब तय करेंगे, ना ही कांग्रेस का कोई नेता सांसद तय करेगा। ये समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। लेकिन ये तय है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: खबरदार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ और हरदम रहिए खबरदार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्लाई दुबई के विमान में हुई घटना को लेकर नए नए खुलासे और दावे हो रहे हैं। जिस वक्त हजारों फीट की ऊंचाई पर कॉकपिट में खून से लथपथ कैप्टन स्मिथ 174 लोगों को बचाने के लिए जंग लड़ रहे थे, तब यात्रियों ने ओमानी को पायलट को अपनी जान पर खेलकर काबू में किया। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि जब यात्री उस आतंकी को, क्योंकि उन्होंने देखा कि कैसे वो हमलावर पायलट इंडियन कैप्टन पर हमले कर चुका था, खून बह रहा था, खून से वो लथपथ थे, ऐसे में यात्री तो अपनी तरफ से पहल कर रहे थे। हमलावर पायलट को वो धर दबोचने में कामयाब भी हुए, लेकिन ऐसे वक्त पर फ्लाई दुबई के क्रू मेंबर्स उस हमलावर पायलट को छुड़ाने पर क्यों अड़े थे? क्या ये सिर्फ पुराना एयरलाइन प्रोटोकॉल था या फिर इस खौफनाक साजिश में क्रू मेंबर्स की भी कोई भूमिका थी? अब इसकी जांच होने वाली है। आज इसे लेकर न्यूयॉर्क पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल के सनसनीखेज दावों की पड़ताल भी हम करेंगे। और अगली खबर पाकिस्तान से, जहां एक बार फिर बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और इस्लामाबाद की ओर कूच कर रहे हैं। सरकार और इमरान समर्थकों के बीच बातचीत पूरी तरह बेनतीजा रहने के बाद खैबर पख्तूनख्वा से निकला ये भारी काफिला अब इस्लामाबाद की दहलीज पर खड़ा है। उधर इमरान समर्थकों के इस हुजूम को रोकने के लिए इस्लामाबाद को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। देखिए,

और इसके बाद आपको बताएंगे कि फ्रांस में दंगों की आग क्यों भड़क रही है। एक के बाद एक पेरिस से उठी विरोध की चिंगारी अब पूरे फ्रांस को सुलगा रही है। सड़कों पर उठता धुआं, पत्थरों की बौछार, ताले में कैद करीब 500 हाई स्कूल। ये गुस्सा फ्रांस के कई प्रमुख शहरों में दंगे का रूप ले चुका है। सवाल है, आखिर फ्रांस में ये आग क्यों भड़की? प्रदर्शनों के दौरान फिलिस्तीन और अल्जीरिया के झंडे देखे जाने के बाद कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या यह सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को लेकर आक्रोश है या कोई बड़ी साजिश? क्या रशिया के लैब से कोरोना जैसे किसी नए घातक वायरस की शुरुआत हो चुकी है? साइबेरिया के रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक 28 साल की महिला रिसर्चर की संदिग्ध मौत ने पूरी दुनिया में आखिर क्यों हड़कंप मचा दिया है? दावा है कि लैब में बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस वाले टेस्ट ट्यूब टूटने से यह संक्रमण फैला, जिसके बाद 200 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। और रशिया की एजेंसियां जहां इन दावों से इनकार कर रही हैं, वहीं अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसियां इस पर नजर बनाए रखने का दावा कर रही हैं। इस पूरी कहानी के दो पहलू हैं, क्योंकि आरोप लगता है कि वेस्टर्न मीडिया हमेशा रशिया के खिलाफ प्रोपोगंडा फैलाता है। क्या यह प्रोपोगंडा का हिस्सा है या कि वाकई ये बड़ी घटना है और पूरे विश्व को इस वक्त सावधानी बरतने की जरूरत है? अगली खबर, अमेरिका और इसराइल के साथ एक और बड़े युद्ध की आशंका के बीच ईरान ने अपनी रक्षा रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। तेहरान के चौराहों पर लगे मिलिट्री कैंप्स में अब सिर्फ पुरुष जवान ही नहीं बल्कि आम ईरानी महिलाएं भी हैंडगन और भारी हथियारों से निशाना साधती नजर आ रही है। हमने कुछ ही देर पहले आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया था कि कैसे महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही थी हथियार चलाने की, लेकिन इधर दुश्मन के खात्मे के मकसद के साथ तेहरान में महिलाओं का एक खास दस्ता तैयार किया जा रहा है।

अगली खबर एआई से जुड़े खतरों के को लेकर दुनिया में बहस और तेज हो चुकी है। अब ओपन एआई के सेफ्टी लीडर रहे डेविड रॉबिन्सन के इस्तीफे ने एआई की दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। रॉबिन्सन ने बड़ा खुलासा किया, चेताया है कि एआई कंपनियां ट्रायल एंड एरर के खतरनाक रास्ते पर हैं। उन्होंने कई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अब संभलने का वक्त आ चुका है। सवाल यह है कि आखिर क्यों डेविड रॉबिन्सन ने कहा कि एआई से नहीं बल्कि इसकी बेकाबू रफ्तार से डरने की जरूरत है। और अगली खबर, बड़ी खबर देश के अंदर की, सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सस्पेंड करने या उनके कामकाज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो सिर्फ खबरों के आधार पर फैसला नहीं ले सकते हैं। हालांकि फॉर्म 6 में हुए बदलावों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग दोनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इधर राहुल गांधी ने दावा किया कि ज्ञानेश कुमार का फैसला अवैध साबित हो चुका है, जिसे चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक करते हुए पूरी तरह खारिज किया। चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी की पोस्ट में दिया गया बयान गुमराह करने वाला है। बिहार में एसआईआर के लिए 24 जून 2025 को जारी किया गया आदेश चुनाव आयोग में सबकी मंजूरी से जारी किया गया था। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 के अपने फैसले में सही ठहराया था, चुनाव आयोग ये कह रहा है। लेकिन वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि फॉर्म 6 में जो बदलाव किए गए हैं उसको सुप्रीम कोर्ट की मुहर नहीं लगी थी। अगली खबर, इलाज के नाम पर अस्पतालों की फार्मेसी में लूट का कितना बड़ा खेल चल रहा है, इसका सनसनीखेज खुलासा लखनऊ एफएसडीए की रिपोर्ट में हुआ है। फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जब उत्तर प्रदेश की 214 अस्पताल फार्मेसीज की जांच की तो होश उड़ गए। जो पॉलीमाइक्सिन बी इंजेक्शन अस्पताल सिर्फ 74 रुपए में खरीदता है, 74 रुपीज, उस पर एमआरपी ठोकी गई है 4,980 रुपए, यानी सीधे 6,600% से ज्यादा का मुनाफा। सिर्फ यही नहीं, 6 रुपए का सर्जिकल डिवाइस 163 रुपए में बेचा जा रहा है, यानी 2,600% से ज्यादा का मुनाफा। आईसीयू और गंभीर संक्रमण से जूझते मरीजों की लाचारी पर छपे इस मनमाने रेट कार्ड ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। और अगली खबर, आपकी रसोई में रखा जीरा पाउडर स्वाद का तड़का बढ़ा रहा है या सेहत बिगाड़ रहा है? FSSAI ने मशहूर ब्रांड एवरेस्ट के पैकेट बंद जीरा पाउडर को बाजार से तुरंत वापस मंगवाने के निर्देश दिए हैं। लैब जांच में इसके एक सैंपल में खतरनाक पेस्टिसाइड पाया गया, जिसके बाद इसे इंसानी स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया गया। अगर आपके घर में भी एवरेस्ट का जीरा पाउडर है तो बैच नंबर चेक कीजिए। FSSAI ने बैच नंबर E08066871 को वापस लेने का आदेश दिया है। फिलहाल उस पर कंपनी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन FSSAI का ऑर्डर था, बड़ा है, इसलिए हमने आपको बताया कंपनी इस बैच को वापस लेने की प्रक्रिया अब शुरू करेगी। और अब हम आपको कैची धाम की वो हुजूम दिखाएंगे जिस पर काफी बहस हो रही है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। इस बार 3 दिनों के लॉन्ग वीकेंड पर बाबा नीप करौरी महाराज के आश्रम कैची धाम में आस्था और पर्यटन का ऐसा जनसैलाब उमड़ा है कि पूरे नैनीताल भवाली रूट का ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। नैनीताल भवाली भीमताल अल्मोड़ा हाईवे पर 10 किलोमीटर से भी लंबा भीषण जाम लग गया। हल्द्वानी में से कैची धाम का जो सफर है वो 2 से 3 घंटे में पूरा होता है, उसे अब तय करने में जानते हैं 9 से 12 घंटे लग रहे हैं। हालात ऐसे थे कि मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर हाईवे तक पैर रखने की जगह नहीं थी, 5 से 6 किलोमीटर तक केवल पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं की कतारें थी और अव्यवस्था इतनी बढ़ गई कि दिल्ली नोएडा जेवर उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों से आए सैकड़ों श्रद्धालु बिना दर्शन किए वापस लौटने को मजबूर हो गए। इसके अलावा होटल्स की प्री बुकिंग होने के बावजूद गाड़ियां कई घंटों जाम में फंसी रहीं, लोग रात 12 बजे तक भी होटल्स में चेक इन नहीं कर पाए, हजारों श्रद्धालुओं छोटे बच्चों को भूखे प्यासे गाड़ियों के अंदर या सड़क किनारे पूरी रात गुजारनी पड़ी। इसके बाद कई लोग इस पूरे हुजूम को देखकर ये सवाल भी पूछने लगे कि ये भक्ति है या सिर्फ हनुमान अंश फिल्म का लोगों पर असर है। देखिए

0: भाई श्रद्धालुओं का। अरे भैया आराम से सबको दर्शन होगा आराम से।
1: आपको यकीन नहीं होगा कि पिछले सिर्फ 3 दिनों में उत्तराखंड में 7,48,000 गाड़ियां धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर पहुंची हैं, जिनमें कुल 2,84,114 गाड़ियां दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में आई। सोचिए 4,63,000 गाड़ियां उत्तराखंड के लोगों की ही रही। अगर हम भूटान देश से तुलना करें तो भूटान में कुल मिलाकर सिर्फ 1,28,000 गाड़ियां हैं, जबकि उत्तराखंड में तो सिर्फ पिछले 3 दिनों में ही करीब 7,50,000 गाड़ियां धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर पहुंची। और बड़ी बात यह है कि बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जैसे जो पहाड़ी इलाके पर्यटकों से भरे रहते हैं, वहां भीड़ ना के बराबर रही। जबकि कैंची धाम अक्सर शांत रहता था, लेकिन इस बार वहां पर लोग भीषण ट्रैफिक जाम, और मतलब आप देख ही रहे कई जगहों पर लोगों के लिए इस हुजूम में गुजरना, आगे बढ़ना बहुत संघर्ष करते लोग नजर आए। और स्थिति यह हो गई कि कैंची धाम आश्रम और बाबा नीब करौरी पर हनुमान अंश फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्माताओं को लोगों से अपील करके ये कहना पड़ा कि वो इस जगह की संवेदनशीलता और इंतजामों का भी ध्यान रखें। कैंची धाम पर अचानक से इतनी भीड़ और इतनी भीड़ का भार ना डाला जाए। हम भी लोगों की भक्ति और आस्था का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन सच बात यही है कि इस भीड़ के पीछे एक बड़ी वजह हनुमान अंश फिल्म है। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि वो कैंची धाम में जाएं और अपनी नजरों से वो देखें जो उन्होंने फिल्म में देखा है, नीब करौरी बाबा के लिए देखा है। और कई लोगों के लिए ये एक स्टेटस का हिस्सा भी बन गया क्योंकि उनको अपनी रील्स डालनी थी। एक बार हमने इस पर भी डीप डाइव किया। अगर सिर्फ इंस्टाग्राम की बात करें तो हाल ही में हैशटैग कैंची धाम पर 4,00,000 से ज्यादा तस्वीरें और वीडियो पोस्ट हो चुके हैं, जबकि कैंची, कैंची धाम मंदिर और हैशटैग बाबा नीब करौरी पर भी लगभग 10,00,000 वीडियोस और नई तस्वीरें हाल में पोस्ट हुई। कई बातें इससे समझ में आती हैं, जैसे देखिए हनुमान अंश फिल्म की सफलता के बाद लोगों में एक उत्सुकता है बहुत ज्यादा, और आस्था नीब करौरी बाबा के लिए बहुत बढ़ा है, और इसीलिए नीब करौरी बाबा के कैंची धाम को देखने की उत्सुकता बढ़ी है। और इस उत्सुकता को समझते हैं और शायद इसी वजह से ज्यादा लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, जब कैंची धाम का नाम सुनते ही मन में एक असीम शांति, देवदार के पेड़ों के बीच से छन कर आती ताजी हवा, नदी के बहते पानी की आवाज गूंजती थी। और कहते हैं कि खुद नीब करौरी बाबा भी, बाबा नीब करौरी महाराज ने इस जगह को किसी भव्य पर्यटन स्थल के रूप में नहीं बल्कि एकांत तपोभूमि और ध्यान केंद्र रूप के रूप में चुना था। लोग अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने, जीवन के शोर से कुछ दूर पल मौन बिताने और आंतरिक शक्ति की तलाश की जगह उन्होंने इसको समझा, और इसीलिए वहां पर अपना यह धाम स्थापित किया और लोग उसी मंशा से वहां पर पहुंचते थे। लेकिन आज आप देख ही रहे हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा हुजूम आ गया है और व्यवस्था कैसे चरमराती दिखी। आज की तारीख में कैंची धाम में वो शांति और जो ध्यान लगाने के लिए लोग पहुंचते थे, वहां पर आप देख ही रहे हैं लोग घंटों बैठकर बाबा नीब करौरी की कुटिया के सामने ध्यान लगाते थे। आज वहां कार्स के हॉर्न, ट्रैफिक पुलिस की सीटियां, बेकाबू भीड़ और एक जो आप देख रहे हैं ना, मतलब शोर वहां पर दिख रहा है। मानसिक सुकून ढूंढने आए लोग अब खुद को 10 किलोमीटर लंबे जाम धक्का मुक्की के बीच फंसा पा रहे हैं। पवित्र आश्रम है, लोगों द्वारा शांति तलाशने का जरिया है। अब वहां पर अगर इस तरह का शोर और उस शोर शराबे में वो जगह फंस जाए तो एक इसकी जो मौलिकता है, जो पवित्रता है, कहीं उसको ना नुकसान हो जाए। हमें लगता है कि कैंची धाम को घूमने का एक हम सबको सोचना चाहिए। आस्था बड़ी चीज है, लेकिन कहीं से भी ये लोगों के लिए अगर सिर्फ रील्स बनाने के लिए या फिर पिकनिक स्पॉट, वीकेंड डेस्टिनेशन जैसा बन जाएगा तो अच्छा नहीं है। मन में श्रद्धा भाव के साथ साथ सबको इस बात का ध्यान रखना होगा। हालांकि ये अपने आप में देखिए चमत्कारी कहिएगा इसको, आस्था और धर्म से जुड़ा हुआ, कि लोगों के मन में फिल्म के बाद ही सही, लेकिन इतना विश्वास और इतनी आस्था बाबा के लिए आई है कि अब सभी लोग ऐसे वहां पहुंच जाएंगे, ये लोगों को शायद पता भी नहीं था। लेकिन हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आज जब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तो इस बात को सबको ध्यान में रखना होगा कि हम सब नीब करौरी बाबा, नीब करौरी महाराज से हमेशा वो सादगी का संदेश याद रखें। हमेशा याद रखें कि उनका संदेश एक ही था, सादगी का और राम नाम जपने का या जो उनका पूजा पाठ भगवान को याद करने का तरीका था, ध्यान पर बहुत जोर देते थे। और उनसे जुड़ना अगर हम सब चाहते हैं तो हमें पहाड़ों पर पहाड़ों की का संरक्षण, क्योंकि उन्होंने सोचिए तमाम जगहों को छोड़कर पहाड़ पर ये जगह चुनी थी जहां पर असीम शांति थी, तो उस भाव का हम सबको सम्मान करना है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार से भी कहना चाहते हैं कि वो इसको देखते हुए सही कदम उठाए और ये तय करे कि कितने लोग एक बार में वहां पर जा सकते हैं, कितने लोग लोगों को जागरूक करने का भी एक तरीका हो सकता है, क्योंकि किसी भी तरह से मतलब कैंची धाम और नीप करौली बाबा का जो संदेश है वो महान संदेश है, सादगी का, भक्ति का, धर्म में लीन होने का, कोई शोर शराबे में कहीं भंग होता है। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि फ्लाई दुबई की जिस फ्लाइट में भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मछार पर हमला हुआ था, क्यों उस फ्लाइट के अब हर क्रू मेंबर को शक के घेरे में माना जा रहा है। द न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से हम बता रहे हैं बहुत बड़ा खुलासा। द न्यूयॉर्क पोस्ट ने इस फ्लाइट में सफर करने वाले एक यात्री डैनियल श्लिच्टर का इंटरव्यू किया। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि फ्लाइट के क्रू मेंबर्स यानी जो एयर होस्टेस है वो ये कह रहे थे कि इसको पायलट मतलब जो हमलावर पायलट था उसके हाथ पैर खोल दिए जाएं और उसे छोड़ दिया जाए। अगर मैं शब्दशः इस इंटरव्यू की बातें पढ़कर बताऊं तो उसमें ये लिखा है कि कुछ यात्रियों ने हेडफोन के तार इकट्ठा करके आरोपी को पायलट के हाथ पैर बांध दिए थे, क्योंकि देखिए सब कुछ दिख ही रहा था वहां पर, मारा हमलावर पायलट ने, इंडियन पायलट घायल थे। आगे ये यात्री बताते हैं बाद में उसे पूरी तरह काबू में रखने के लिए प्लास्टिक जिप टाइज से उसे बांधकर फर्श पर मुंह के बल लिटा दिया गया। और ये वही क्षण था जब कॉकपिट के फर्श पर पड़ा ये को पायलट खुद को जान से मारने के लिए चिल्ला रहा था और फ्लाइट 34,000 फीट की ऊंचाई से 14,000 फीट तक नीचे गिर चुका था। आरोपी की जैसे ही इस को पायलट को बांधा गया तभी फ्लाई दुबई के कुछ क्रू मेंबर्स वहां पर पहुंचे और यात्रियों से उसे तुरंत खोलने की मांग करने लगे। ये हम आपको द न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से बता रहे हैं। इस घटना को नाकाम करने वाले यात्रियों में से एक ज्विका मेंस का कहना है कि क्रू मेंबर्स उनसे कह रहे थे कि इस आतंकवादी को खोल दो और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। दावा है कि बहस के दौरान क्रू मेंबर्स ने यात्रियों से यहां तक कहा कि वो भगवान नहीं है और उन्हें इसको पायलट को बंधक बनाने का कोई अधिकार नहीं है। अब ये सारा द न्यूयॉर्क पोस्ट और एक यात्री के हवाले से छापी गई खबर है। इस पर यात्रियों ने जवाब दिया कि उनका इरादा उसे मारने का नहीं है बल्कि वो सिर्फ खुद की जान बचाना चाहते हैं। इन यात्रियों ने आरोपी को जिंदा रखने के लिए उसे ऑक्सीजन मास्क भी लगाया ताकि जांच एजेंसियां बाद में उससे पूछताछ कर सके। क्रू मेंबर्स की इस अजीब मांग के बाद कॉकपिट के बाहर का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। इजरायली यात्रियों को डर सताने लगा कि कहीं इस आतंकी साजिश में फ्लाइट के कुछ क्रू मेंबर्स भी तो शामिल नहीं है। इससे सभी यात्री सतर्क हो गए। उन्होंने क्रू मेंबर्स से यह कहा कि अब से इस प्लेन का कंट्रोल उनके हाथों में रहेगा, जो वो कहेंगे उन्हें वही करना होगा। द न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट ऐसा दावा करती है कि यात्रियों के एक गुट ने सभी क्रू मेंबर्स को डांटकर कॉकपिट के पास से हटाया, उन्हें पीछे की पांचवी या छठी रो में जाकर बैठने के लिए कह दिया गया। इसके बाद यात्रियों ने अपनी सुरक्षा के लिए फ्लाइट में मौजूद एक शख्स को कॉकपिट के दरवाजे पर गार्ड के रूप में तैनात कर दिया ताकि कोई भी क्रू मेंबर दोबारा कॉकपिट के पास ना आ सके। और अब जब ये पूरी घटना सामने आ रही है तब जानते हैं द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है। ये अखबार लिखता है द वॉल स्ट्रीट जर्नल कि अब जांच एजेंसियों को केवल इस को पायलट की जांच नहीं करनी चाहिए बल्कि इस फ्लाइट में मौजूद पूरे केबिन क्रू के आचरण, उनकी मंशा की भी गहन जांच होनी चाहिए। और सोचिए अगर 1% भी ये आरोप सही पाए जाते हैं तो ये पूरी घटना एक बड़ी आतंकी साजिश का रूप ले लेगी। और जानते हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसराइल के चैनल 12 की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस को पायलट ने शुरुआती पूछताछ में यह कबूल किया है कि वो पहले जुलाई में ही इस विमान को हाईजैक कर तेलवीव में क्रैश कराना चाहता था, लेकिन उस वक्त जिस फ्लाइट को उसने निशाना बनाने के लिए चुना था उसमें उसका एक खास दोस्त ड्यूटी पर तैनात था। और दावा है कि तब अपने दोस्त की जान बचाने के चक्कर में उसने आखिरी समय पर इस आत्मघाती हमले को टाल दिया और सही मौके का इंतजार करने लगा। यानी यहां अगर पूरी कहानी को बारीकी से समझ जाएं तो मुख्य रूप से दो बातें समझ आती हैं। पहला, आरोपों के मुताबिक हो सकता है कि क्रू मेंबर भी इस को पायलट के साथ, अभी भी इस पर बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि एक यात्री के इंटरव्यू और एक मीडिया रिपोर्ट के अलावा अभी कोई और ठोस जानकारी नहीं आई है। लेकिन इसमें दावा यही किया गया है कि कहीं क्रू मेंबर्स भी शामिल तो नहीं थे। आखिर वो हमलावर पायलट के हाथ खोलने की बात क्यों कर रहे थे, ये यात्री के हवाले से दावा है। दूसरा, यह भी हो सकता है कि ये क्रू मेंबर एयरलाइन के उस पुराने प्रोटोकॉल का पालन करने की कोशिश कर रहे थे जिसमें यात्रियों को कानून हाथ में लेने या किसी को बंधक बनाने से रोका जाता है। जाहिर तौर पर क्या कोई कल्पना कर सकता है कि सामान्य स्थिति में कोई किसी पायलट का हाथ बांधे यात्री, बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन ये असामान्य परिस्थितियां थी। हालांकि यहां ये सवाल भी उठता है कि जब को पायलट ने मुख्य पायलट कैप्टन स्मिथ को लहूलुहान किया था, तब ये क्रू मेंबर्स उनके हाथ पैर खोलने की मांग क्यों कर रहे थे, जो हम लगातार पूछ रहे हैं। इन्हें ज्यादा चिंता तो मुख्य पायलट कैप्टन स्मिथ की करनी चाहिए थी, भाई वो भी फ्लाई दुबई के कैप्टन है और वो मेन पायलट थे और उन्हीं पर ये हमले किए गए थे, उनको मारा गया था इस तरह से, तो क्या उनको कैप्टन स्मिथ की चिंता नहीं करनी चाहिए थी। और अगर उनको कैप्टन स्मिथ की चिंता होती तब उनको समझ में आता कि इस को पायलट, इस हमलावर पायलट को काबू में करना, उनका हाथ पैर बांधना, क्योंकि वो इमरजेंसी एक्ट से कई बार कैप्टन स्मिथ को मार चुके थे, तो उनको नियंत्रण में करना सबसे जरूरी था। अब आपको इस को पायलट की कहानी बताते हैं जो अलकायदा के आतंकवादियों को अपनी प्रेरणा और खुद को जिहादी मानता था। ओमान के इस को पायलट का नाम हम्माम अल हम्मामी है, जो 29 साल का है। यह नाम अभी पश्चिमी मीडिया, इजरायली मीडिया और अल जजीरा की रिपोर्ट में सामने आया है, लेकिन खुद यूएई ने इस नाम की आधिकारिक रूप से अभी पुष्टि नहीं की है। अल जजीरा की रिपोर्ट में यह भी दावा है कि इस आरोपी पायलट का जन्म यूएई में ही हुआ था, जबकि उसके माता पिता ओमान से थे और मां सीरिया से थी, और इसी वजह से आगे चलकर उसे ओमान की नागरिकता मिल गई। जो लोग ये कह रहे हैं कि वो यूएई या सीरिया का भी नागरिक था, अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक वो गलत दावा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हम्माम उस दौर में कई सालों तक सीरिया में रहा, जहां जब वहां पर गृह युद्ध चल रहा था, और दावा है कि इसी दौरान वो अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों के संपर्क में आया, उससे जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा भी लेने लगा। इसके अलावा द वीक की रिपोर्ट कहती है कि अभी इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या इस आरोपी को सीरिया में मौजूद किसी आतंकी संगठन के जरिए इसराइल पर हमला करने के लिए कोई बाहरी मदद या लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा था। यह सवाल भी उठ रहा है क्योंकि इस हमले के बाद अलकायदा के समर्थकों द्वारा शुरू की गई एक मैगजीन में इस घटना की तुलना, जानते हैं, सीधा अमेरिका में हुए 9/11 के आतंकी हमले से कर दी गई है। इसमें अलकायदा ने लिखा है कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, इसराइल, अमेरिका और इस्लाम के खिलाफ लड़ने वाले अन्य काफिरों को ले जाने वाले विमान अभी भी आसमान में मंडरा रहे हैं और उन्हें निशाना बनाया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे 11 सितंबर 30 सितंबर ये दो तारीखों को हुआ था। अलकायदा की इस धमकी से इस बात के संकेत मिलते हैं कि एक को पायलट क्या उनके संपर्क में था। स्काई न्यूज की भी एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि हम्माम को 2014 में ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीजा मिला था और वो साल 2015 से 17 के बीच मेलबर्न की एक यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। 2019 में उसका वीजा आधिकारिक तौर पर रद्द किया गया क्योंकि उसने कोर्स छोड़ दिया था और इस दौरान वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए कट्टरपंथी मस्जिदों में भी जाने लगा था, और अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार भी इन दावों की जांच कर रही है। लिंक्डइन के मुताबिक हम्माम ने करीब 7 सालों तक ओमान एयर में काम किया। बड़ी बात यह है कि ओमान एयर को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि हम्माम आतंकी और कट्टरपंथी संगठनों के संपर्क में हो सकता है। उस वक्त ओमान एयर और वहां की सरकार से जुड़े कुछ अधिकारियों ने उसके सोशल मीडिया और दूसरी गतिविधियों की जांच कर ली थी और उसमें यह पाया था कि उसका झुकाव अलकायदा की तरफ बहुत ज्यादा है। इसके बाद ओमान एयर ने उसके विमान उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, उसे डेस्क जॉब पर शिफ्ट किया गया था। सोचिए, ऐसा बैकग्राउंड था इसका। यही नहीं, ओमान के कानून के तहत हम्माम को उस वक्त डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम में डाला गया था। यह ओमान और खाड़ी देशों में चलाया जाने वाला वो प्रोग्राम होता है जिसके तहत आतंकवाद को सही मानने वाले कट्टरपंथियों को यह बताया जाता है कि वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं और उन्हें आतंकवाद का रास्ता छोड़ देना चाहिए। यह बाकायदा एक प्रोग्राम है वहां पर, डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम। इस ओमानी पायलट के लिए ऐसा करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ओमान एयर को उसके सोशल मीडिया पर अलकायदा के ओसामा बिन लादेन और अयमान अल जवाहिरी की तस्वीरें और पोस्ट मिली थी। यही नहीं, वो अलकायदा के कुख्यात सुसाइड बॉम्बर हुमाम खलील अबू मुलाल अल बलावी से काफी प्रेरित था, जिसने 2009 में अफगानिस्तान में अमेरिकी बेस पर खुद को उड़ा दिया था और ये खुद भी यही करना चाहता था। इसने ब्रिटेन की बकिंगम शायर न्यू यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस लर्निंग में एविएशन मैनेजमेंट की पढ़ाई की और ओमान एयर में डेस्क जॉब पर शिफ्ट होने के बाद ये ऐसी एयरलाइन में नौकरी ढूंढने लगा जिसके विमान इसराइल जाते हैं और जिसमें यहूदी यात्री ज्यादा सफर करते हैं। इसी कोशिश के तहत ये 8 महीने पहले फ्लाई दुबई एयरलाइन का हिस्सा बना। और जानते हैं इस घटना में इसकी कोशिश क्या थी। सऊदी अरब के एक अधिकारी ने बताया है कि इसको पायलट ने बिना किसी पछतावे के ये कबूल किया है कि उसका एकमात्र मकसद 174 लोगों से भरे इस विमान को तेल अवीव की धरती पर क्रैश कराना था। वो या तो इस विमान को तेल अवीव के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्रैश कराना चाहता था या वो 9/11 हमले की तरह इस विमान को तेल अवीव की किसी ऊंची इमारत से टकरा कर बड़ा आत्मघाती हमला करना चाहता था। और अगर ऐसा हो जाता तो इस हमले में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग मारे जा सकते थे। और यही कारण है कि आज इस कोपायलट की तारीफ अलकायदा कर रहा है और इस घटना को अपनी जान पर खेलकर रोकने वाले कैप्टन स्मिथ की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। और क्यों कर रही है उसके लिए आप इस नए खुलासे को भी सुनिए। कैप्टन स्मिथ मचार ने बताया कि जब उड़ान के दौरान सब कुछ पूरी तरह सामान्य था तभी अचानक ये कोपायलट अपनी सीट से उठा और ये कहने लगा कि वो नमाज पढ़ना चाहता है। उस वक्त कैप्टन स्मिथ को ये सामान्य लगा क्योंकि कई मुस्लिम पायलट लंबी फ्लाइट्स के दौरान कॉकपिट में नमाज पढ़ते हैं और यहां भी कैप्टन स्मिथ ने बिना कोई शक किए अपना ध्यान सामने की तरफ केंद्रित कर लिया और यही सोचा कि इसको पायलट को वाकई में नमाज पढ़नी होगी। लेकिन हकीकत में ये उसकी एक सोची समझी साजिश थी। जैसे ही कैप्टन स्मिथ ने आगे देखना शुरू किया पीछे से वो नाटक कर रहा था और उसने हमामी ने कॉकपिट में इमरजेंसी के लिए रखी गई जो क्रैश कुल्हाड़ी यानी फायर एक्स है उसको उठा लिया कैप्टन स्मिथ पर पीछे से वार कर दिया। कुल्हाड़ी से सिर और शरीर पर लगातार कई वार होने के बावजूद वो लड़े लेकिन इसकी वजह से जानते हैं कैप्टन स्मिथ खून से लथपथ होकर कॉकपिट के फर्श पर गिर गए। और आप सोच ही सकते हैं कल्पना कर सकते हैं ऐसी धारदार हथियार से हमला हो तो उनके सामने अंधेरा छाने लगा जैसा उन्होंने बताया और बहुत मुश्किल था उनके लिए। इसी दौरान इस कोपायलट ने विमान के कंट्रोल्स को दबाकर विमान को तेजी से नीचे गिराना शुरू किया। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक ये विमान महज 29 सेकंड में 14,000 फीट नीचे गिर गया था जिससे केबिन में यात्री चीखने चिल्लाने लगे थे। कैप्टन स्मिथ ने 17 साल के अपने एविएशन अनुभव से भाप लिया था कि प्लेन क्रैश होने वाला। उन्होंने हिम्मत जुटाई फर्श पर घिसटते हुए वो किसी तरह कॉकपिट को घुमाकर खुलने वाले हैंडल तक पहुंचे और पहली बार में उन्होंने गेट खोल भी दिया। दावा है कि बाहर खड़े क्रू मेंबर्स या यात्री कुछ समझ पाते उससे पहले ही इस कट्टरपंथी को पायलट ने झपट कर कॉकपिट का दरवाजा दोबारा बंद कर दिया और कैप्टन स्मिथ पर फिर से हमला करने लगा। दरवाजा बंद होने के बाद कैप्टन स्मिथ गंभीर रूप से घायल हालत में फर्श पर पड़े थे। उन पर कुल्हाड़ी से वार जारी। कैप्टन स्मिथ ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बताया कि उनके शरीर में बस एक आखिरी लड़ाई बची थी और उन्होंने उस वक्त ऐसा ही किया। इस को पायलट के नीचे होने के बावजूद दूसरी बार कॉकपिट का गेट खोल दिया। इस बार दरवाजा खुलते ही बाहर खड़े इजरायली यात्री तुरंत कॉकपिट के अंदर कूद पड़े। उन्होंने हमलावर को पायलट को दबोचा बांध दिया। फ्लाइट में मौजूद अन्य ऑफ ड्यूटी पायलट्स ने विमान के कंट्रोल्स को संभाला और उसकी सुरक्षित लैंडिंग कराई। सुनिए।
2: यू आर ट्रू हीरो ऑफ द ब्रेव पीपल्स ऑफ इंडिया एंड इजराइल एंड यू आर अ हीरो ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। आई wish you a very speedy and complete recovery. But tell me, I wanted to ask you, how did it all begin? Can you tell me how it began?
3: It was a normal flight and the co-pilot wanted to pray, which a lot of locals, they do pray. And which is not out of the ordinary, but while he was praying, out of respect, I was just looking at the front and not at the back. And suddenly, after I think I would say about 4-5 minutes, there was a big blow to the back of my head. My first thought was that there was a catastrophic damage to the aircraft and something is not right. But then after that, the blow kept coming one after the other. And that's when I realized that it's not the aircraft, it's the other guy who was in the cockpit with me. I had that one last fight left in me that, you know, call it.
1: सुनकर बस ये लगता है कि आज पूरी दुनिया उनकी हिम्मत की दाद क्यों दे रही है। ये ऐसा धारदार हथियार होता है जिससे एक बार चोट कर दी जाए उसके बाद इंसान के लिए शायद उठना मुश्किल हो, लेकिन वो लड़ते रहे और आखिरी उन्होंने कहा कि एक लास्ट जो मेरे में हिम्मत बची थी वो पूरी ताकत लगा के मैंने उसे खोल दिया। इस घटना में ओमान, यूएई और इसराइल तीनों से भारी चूक हुई है और आज हम ये बताना चाहते हैं। ओमान की गलती ये थी कि उसके पास आरोपी के कट्टरपंथी होने के सबसे पुख्ता सबूत थे, लेकिन फिर भी उसने इसके बारे में यूएई की फ्लाई दुबई एयरलाइन को कुछ नहीं बताया। यूएई आमतौर पर विदेशी पायलट की भर्ती में कड़ी जांच करता है, लेकिन हमाम के इस मामले में उसका पूरा सिस्टम पूरी तरह फेल हुआ। इस घटना में इसराइल से भी बहुत बड़ी चूक है। नियम के मुताबिक किसी भी विदेशी विमान के इसराइल की सीमा में घुसने से कुछ घंटे पहले यात्रियों और क्रू मेंबर्स की पूरी लिस्ट उसके सुरक्षा अधिकारियों को भेजी जाती है, और यहां भी फ्लाई दुबई ने यह लिस्ट उसके साथ साझा की थी। लेकिन इसराइल के ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री के सुरक्षा प्रमुख ने कबूल किया है कि मंत्रालय के पास हर विदेशी फ्लाइट के प्रत्येक क्रू मेंबर का बैकग्राउंड चेक करने का ना तो कोई साधन है और ना ही इतनी क्षमता, जिसके कारण वो इस आरोपी पायलट की पहचान नहीं कर पाया और ये पूरी घटना हुई। फ्लाई दुबई, सबसे बड़ी बात आज फ्लाई दुबई को लेकर हो रही है कि ये वही कंपनी है जिसमें ये पायलट नियुक्त थे। ऐसे में उन्होंने बैकग्राउंड चेक ठीक से क्यों नहीं किया, और अगर किया तो क्या जो कट्टरवाद पढ़ना था इस हमलावर पायलट की जिंदगी का, उसको नजरअंदाज किया गया। इस पूरी कहानी में केवल मोरक्को की राष्ट्रीय एयरलाइंस रॉयल एयर मोरक्को ही एकमात्र ऐसी एजेंसी है जिसने हमाम के को रेड फ्लैग को पहचाना था। 2025 में जब ओमान से बैन होने के बाद हमाम ने मोरक्को में नौकरी के लिए आवेदन किया, तो वहां 3 महीने की ट्रेनिंग से उसे सुरक्षा और परफॉर्मेंस के मानकों पर अनफिट पाया गया और मोरक्को ने उसे नौकरी देने से इनकार कर दिया था। इस घटना के बाद कई चीजों को लेकर एक बहस हो रही है। इनमें पहली चीज यह है कि क्या विमान के कॉकपिट में सभी पायलट के धार्मिक गतिविधि पर रोक लगनी चाहिए, जैसे इस मामले में आरोप है कि हमाम ने नमाज पढ़ने का बहाना बनाकर कैप्टन स्मिथ पर पीछे से वार किया था। कैप्टन स्मिथ भी उस पर इसलिए शक नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें लगा कि को पायलट नमाज को लेकर ऐसा झूठ नहीं बोलेगा, और उन्होंने कहा भी नतन्याहू के सामने कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट, यानी सिर्फ सम्मान देते हुए मैं मुड़कर जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो मैंने नहीं देखा, ताकि उनको बाधित ना फील हो। दूसरा, क्या अब दुनिया को यह भी देखा जाएगा कि किसी धर्म के लोग किस धर्म के लोग विमान में उड़ रहे हैं, और क्या पायलट्स के धर्म की अब बात आएगी, क्या लोगों के मन में अविश्वास आएगा। इसराइल की मीडिया में तो प्रमुखता से यह आवाज उठाई जा रही है। अब तक विमान उड़ाने वाला तीसरी बात पायलट्स को नशे की जांच होती है, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है, डोप टेस्ट होता है, लेकिन इस घटना के बाद अब सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बहस यही छिड़ गई है कि ऐसा टेस्ट कैसे होगा जिससे यह पता चले कि वो कट्टरपंथी तो नहीं, आतंकवादी संगठनों से प्रेरित तो नहीं। और ऐसे में जितनी भी एयरलाइन इंडस्ट्री की कंपनीज हैं उनकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उनको बहुत बारीकी से इन पायलट्स का बैकग्राउंड चेक करना होगा, और इन पायलट्स के बैकग्राउंड चेक के साथ साथ उनको बहुत गहन जांच करनी होगी इनको ऐसी संवेदनशील फ्लाइट्स को ले जाते वक्त। खैर, इस घटना की जड़ में एक मूल कारण इसराइल और फिलिस्तीन का विवाद भी है, जिसकी वजह से इस आरोपी पायलट ने तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की इस फ्लाइट को क्रैश कराने की कोशिश की। और ये विवाद इतना संवेदनशील क्यों है, उसके लिए आप फ्रांस के इन दंगों को भी देख सकते हैं। फ्रांस में इस वक्त स्कूल्स की बदहाली, बजट में कटौती, शिक्षकों की कमी के मुद्दे पर हाईस्कूल के छात्रों का एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है, और इसके कारण कई शहरों में रिहायशी इलाकों में हिंसा, आगजनी। लेकिन अब इस आंदोलन में फ्री पैलेस्टाइन के नारों और फिलिस्तीन के झंडों को दिखने से बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। फ्रांस के दक्षिण पंथी नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि आंदोलन अब केवल मासूम स्कूली छात्रों का आंदोलन नहीं रह गया। उनका दावा है कि कट्टर वामपंथी पार्टी और बाहरी ताकतों ने इस छात्र आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। वो जानबूझ कर अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे और धार्मिक प्रतीकों को स्कूलों में ले जा रहे हैं ताकि समाज में ध्रुवीकरण किया जा सके। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस वायरल हुए हैं जहां प्रदर्शनकारी युवा स्कूल के गेट या इमारतों पर फिलिस्तीन का झंडा लगाते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा छात्र नस्लवाद के खिलाफ भी नारे लगा रहे हैं। और जानते हैं छात्रों के इस आंदोलन में फिलिस्तीन के झंडों या फ्री पैलेस्टाइन के नारों की एंट्री कहां से हुई। इन विरोध प्रदर्शनों की मुख्य शुरुआत पेरिस के गरीब और पिछड़े शहरों से हुई थी, जहां बड़ी संख्या में उत्तर अफ्रीकी और मुस्लिम मूल की आबादी रहती है। इन युवाओं में फ्रांस की व्यवस्था के खिलाफ तो गुस्सा है ही, साथ ही वो फिलिस्तीन के मुद्दे के साथ खुद को भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ा हुआ पाते हैं। और बड़ी बात यह है कि फ्रांस की मौजूदा सरकार ने खुद फिलिस्तीन के इन लोगों को अपने यहां शरण दी है। फ्रांस की सरकार हर साल अपने देश में कुछ फिलिस्तीनी नागरिकों या मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देती है। 2025 में 19 फिलिस्तीनी नागरिकों को शरण दी गई, लेकिन अब फ्रांस के दक्षिणपंथी नेता कह रहे हैं कि जिन्हें फ्रांस ने अपनाया वही लोग फिलिस्तीन के झंडे उठाकर छात्र आंदोलन की आड़ में देश को जला रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कोई भी चुनाव सियासत के बड़े सिग्नल लेकर आता है। अब हम वापस देश के खबरों का रुख कर रहे हैं और आज भी जो हुआ है उत्तर प्रदेश में बड़ा दिलचस्प है, आपको देखना चाहिए। आज भी वही हुआ, जब बीजेपी ने 8 राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किए तो यूपी से लेकर केंद्र की सियासत में बदलावों की आहट अब सुनाई पड़ गई है। इन उम्मीदवारों के नाम आपको बताऊं, उससे पहले इस लिस्ट से बीजेपी के 4 टिक मार्क बताती। जाति संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन, महिला प्रतिनिधित्व, संगठन का अनुभव। सबसे पहले देखिए बीजेपी ने इन उम्मीदवारों के जरिए जाति संतुलन कैसे साधा। 8 में से 2 दलित उम्मीदवार हैं, पहली है प्रियंका सिंह रावत और दूसरा चेहरा है विद्यासागर सोनकर। प्रियंका रावत पासी समाज से आती हैं, यूपी में 3.5% पासी आबादी है। विद्यासागर सोनकर खटिक समाज से आते हैं, जिनकी उत्तर प्रदेश में आबादी करीब 1% है। लिस्ट में ओबीसी के 3 चेहरे हैं और तीनों अलग अलग समूहों से हैं। धर्मपाल सिंह 3% आबादी वाली लोधी जाति से, प्रकाश पाल 1% आबादी वाले पाल गडेरिया समाज से, जबकि श्रुति गंगवार 5% कुर्मी आबादी की प्रतिनिधित्व कर रही है। गोपी कृष्णा पांडे और राधाकांत ओझा ब्राह्मण समाज से हैं और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी तकरीबन 7% के आसपास है, जबकि राम प्रताप सिंह चौहान 7% क्षत्रिय आबादी वाली जाति से आते हैं। अब जरा देखिए कि कैसे बीजेपी ने पूरी यूपी को साधा। आंवला से आने वाले धर्मपाल सिंह और बरेली की श्रुति गंगवार रुहेलखंड क्षेत्र से है। बाराबंकी से आने वाली प्रियंका सिंह रावत अवध क्षेत्र की प्रतिनिधि, जबकि आगरा के राम प्रताप सिंह चौहान यूपी के ब्रज क्षेत्र से आते हैं। जौनपुर के विद्यासागर सोनकर और प्रयागराज के राधाकांत ओझा पूर्वांचल से, कानपुर के प्रकाश पाल और कानपुर के ही गोपी कृष्णा पांडे बुंदेलखंड कानपुर क्षेत्र की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये तो हो गया जाति क्षेत्र संतुलन। 2 महिला उम्मीदवार हैं, प्रियंका सिंह रावत और श्रुति गंगवार का नाम भी आपने देख लिया। हालांकि आपको देखना पड़ेगा, श्रुति गंगवार जो है वो संतोष गंगवार की बेटी हैं और इसीलिए विपक्ष आरोप लगा रहा है कि देखिए आप पी से परिवार बात बता रहे थे जब समाजवादी पार्टी ने रामगोपाल यादव को दिया, लेकिन ये भी संतोष गंगवार की बेटी श्रुति गंगवार है। खैर, अब आपको इस लिस्ट में बीजेपी संगठन के अनुभव को मिली तरजीह और 2027 के यूपी चुनाव के संदेश भी बताती हूं। इस नजरिए से बीजेपी लिस्ट में सबसे अहम नाम है राम प्रताप सिंह चौहान का, वो उत्तर प्रदेश संगठन में सक्रिय हैं। राम प्रताप सिंह चौहान पश्चिमी उत्तर प्रदेश इकाई के प्रभारी रहे, यूपी संगठन के अहम चेहरे हैं। राज्यसभा की दावेदारी सौंपकर बीजेपी ने 27 के यूपी चुनाव से केंद्रीय लिंक को और मजबूत करने का संदेश दिया है। बीजेपी ने जिस तरह अपनी लिस्ट बनाई है वो साफ तौर पर अखिलेश यादव के पीडीए के नैरेटिव को चैलेंज देने वाला है। अखिलेश यादव ने राम गोपाल यादव और धनराज नाथवानी को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी आरोप लगा चुकी है कि अखिलेश के पीडीए में पी का मतलब परिवार और पूंजीवाद है। 2027 के यूपी चुनाव के लिए पीडीए अखिलेश का बड़ा दाव है, जिसमें वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पंडित, आदि आबादी, अगड़ा सब शामिल करते हैं, लेकिन राज्यसभा के नॉमिनेशन के जरिए बीजेपी उनके पीडीए के सामने खुद का सबका साथ सबका विकास वाला दाव चलती दिख रही है।
4: ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पार्टी ने जो हम पर भरोसा किया है, हमेशा काम लिया है, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूं और पार्टी का काम और आगे बढ़ा सकूं, उस सेवा के भाव से। यही
5: जिन्होंने मुझ जैसे सामान्य पृष्ठभूमि वाले कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया है, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
6: जो जिम्मेदारी, जो विश्वास।
1: उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के वोट की लड़ाई अभी से शुरू हो गई। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम सवाल गूंज रहा है, क्या अब्दुल केवल दरी बिछाने के लिए है या उसे प्रदेश की राजनीति में वाजिब हिस्सा दिया जाएगा। श्रावस्ती में AIMIM चीफ असदुद्दीन अवैसी की एक रैली हुई, अब वो लगातार एक डायलॉग बार बार हर मंच से कह रहे हैं। उन्होंने फिर समाजवादी पार्टी को अपने निशाने पर लेते हुए यही सवाल उठाया, उनका निशाना यूपी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में मुस्लिम उम्मीदवारों की कम भागीदारी को लेकर था। हम आपको उनका बयान सुनवाते हैं, उसके बाद इस बयान का मतलब मकसद दोनों बताएंगे।
6: अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, दद्दन दरी नहीं बिछाएगा, शौकत दरी नहीं बिछाएगा, अब दद्दन केबल लगाएगा, कुर्सी पर बैठ कर कहेगा बोल इंसाफ करता है या नहीं करता है।
1: असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान का मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी उम्मीदवार चुनते वक्त मुस्लिमों को वो प्रतिनिधित्व नहीं देती है जो उनको मिलना चाहिए। ओवैसी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर्स को यह बताना चाहते हैं कि वो जिस पार्टी को भरपूर समर्थन देते आ रहे हैं, असलियत में वो उनके राजनीतिक रूप से उनको पीछे रखती है। ये सच है कि पारंपरिक रूप से अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं की पसंद समाजवादी पार्टी रही है। साल 2022 में विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन को यूपी के 79% प्रतिशत मुस्लिमों ने वोट किया था, जबकि एनडीए को 8%, अन्य को 13% मुस्लिम मतदाताओं के वोट मिले थे। इसके बाद साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश के 92% मुसलमानों का वोट मिला था, जबकि एनडीए को सिर्फ 2% और अन्य को 6। मतलब यह है कि यूपी में बीजेपी से इतर समाजवादी पार्टी हो या उससे जुड़ा हुआ जो भी गठबंधन, उनको मुस्लिम वोटर्स का पूरा समर्थन मिलता है। इसीलिए हैदराबाद वाले ओवैसी जी जब जब उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरते हैं तो कहते हैं कि जब समर्थन मिलता है तो प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जाता। दरअसल यूपी की कुल आबादी 20 करोड़ है, 19% मुस्लिम है, 11% यादव है। अगर हम समाजवादी पार्टी के चुनावी गणित की बात करें तो साल 2022 में समाजवादी पार्टी ने 347 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें 57 मुस्लिम और 54 यादव उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दिया। सवाल यह उठा कि जिस पार्टी को मुस्लिम वोटर्स का समर्थन मिलता है उसको टिकट बंटवारे में पीछे क्यों रखा गया। 19% आबादी वाले यूपी में सपा ने टिकट बंटवारे में केवल 16% मुस्लिम उम्मीदवारों को ही टिकट क्यों दिया। अब बीजेपी को यह बात सूट करती है, लेकिन सबसे ज्यादा सूट करती है AIMIM वाले असदुद्दीन ओवैसी को। वो कहते हैं कि राज्य की 11% आबादी वाले यादव समाज के 15% उम्मीदवारों को टिकट दिए गए, यानी जिनकी आबादी ज्यादा है और जो पूरा समर्थन करते हैं, एक मुश्त करते हैं, उनको कम, और जिनकी आबादी कम है उनको ज्यादा प्रतिनिधित्व क्यों दिया जाता है। ओवैसी ये भी जानते हैं कि इस वक्त यूपी में सपा के 101 विधायक हैं, जिनमें 28 मुस्लिम हैं और 24 यादव समाज से हैं। परफॉर्मेंस के हिसाब से भी देखें तो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार ज्यादा कामयाब रहे हैं, और यही वजह है कि ओवैसी कटाक्ष कर रहे हैं कि इस बार अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा बल्कि कुर्सी पर बैठेगा। वो बार बार यही कहना चाहते हैं कि आपने छोटे मोटे काम के लिए तो मुस्लिम वोटर को अब्दुल बनाकर रखा हुआ है, लेकिन जब बात कुर्सी की आती है तो अब्दुल से दरी बिछवा लेते हैं और उस पर कुर्सी रखकर खुद बैठ जाते हैं। ये पहली बार नहीं है जब AIMIM की ओर से अब्दुल और दरी का संदर्भ दिया गया। आपको याद होगा बिहार चुनाव से पहले भी AIMIM के नेता शौकत अली ने AI जनरेटेड तस्वीर डाली थी जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति को दरी बिछाते दिखाया गया था। उस वक्त भी 18% मुस्लिम आबादी वाले बिहार में मुस्लिमों की स्थिति पर कटाक्ष किया गया था। यही रणनीति यूपी में दिख रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 73 सीटें यानी करीब 30% सीटें ऐसी हैं जिस पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यूपी के 75 में से 11 मुस्लिम बहुल जिले हैं। 6 जिले तो ऐसे हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 40% से ज्यादा है, जैसे रामपुर में 51%, मुरादाबाद में 47%, बिजनौर में 43%, सहारनपुर में 42%, मुजफ्फरनगर और अमरोहा में 41% मुस्लिम आबादी रहती है। ओवैसी की कोशिश यह है कि मुस्लिम बहुल आबादी वाली सीटों पर पकड़ मजबूत की जाए। जैसे बिहार में कुछ सीटें आ गई और कांग्रेस के लगभग पास पहुंच गए, ऐसे उनको लगता है कि अगर यूपी में भी ये कार्ड खेल दिया तो समाजवादी पार्टी के किले को सेंध लगा देंगे। बढ़ते हैं आगे। जापान के आइची नागोया में एशियन गेम्स 2026 का बिगुल शांत हो चुका है। मेडल टैली में भारत 85 मेडल्स के साथ एशिया के नक्शे पर चौथे स्थान पर मजबूती से डटा है। 21 गोल्ड 27 सिल्वर 37 ब्रॉन्ज के साथ भारत ने अपनी खेल ताकत का लोहा मनवाया है। लेकिन इस पूरे सफर का सबसे बड़ा, सबसे धमाकेदार, सबसे गर्व से भर देने वाला सच जानते हैं क्या है? इस बार मेडल भले ही लड़कों और लड़कियों के बराबर आए हों, लेकिन देश का मस्तक सबसे ऊंचा किया है भारत की बेटियों ने। पुरुषों से कम संख्या में जापान पहुंची हमारी बेटियों ने पुरुषों से ज्यादा गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। जापान की धरती पर भारत ने कुल 486 खिलाड़ियों का दल भेजा था। इनमें 260 पुरुष खिलाड़ी, 226 महिला खिलाड़ी शामिल थे। यानी इस दल में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले काफी कम थी। लेकिन जब बात मैदान में भारत का तिरंगा लहराने की और राष्ट्रगान की थी, तो बेटियों ने बाजी मार दी। पुरुषों ने कुल 38 मेडल जीते, जिनमें 7 गोल्ड शामिल थे। महिलाओं ने भी कुल 38 मेडल ही जीते, लेकिन इनमें 11 गोल्ड मेडल शामिल है। वहीं मिक्स्ड इवेंट्स में भारत को 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, यानी 9 मेडल मिले। पुरुषों के मुकाबले कम संख्या में होने के बावजूद महिलाओं ने 11 गोल्ड जीतकर भारत को मेडल टैली में उज्बेकिस्तान से आगे चौथे नंबर पर बरकरार रखा। ये सिर्फ मेडल के आंकड़े नहीं है, ये उन बेटियों के सपनों की उड़ान है जिन्होंने हर नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है। 17 साल की कुमकुम मोहोड तीरंदाजी में वो कारनामा कर दिखाया जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। कुमकुम ने महिला रिकर्व इंडिविजुअल में भारत को एशियन गेम्स के इतिहास का पहला गोल्ड दिलाया। उन्होंने भारत के लिए लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक कोटा को भी हासिल किया है। गोल्फ के मैदान में प्रणवी उर्स ने व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को पहला ऐतिहासिक गोल्ड दिलाकर 24 साल का सूखा खत्म कर दिया। 44 साल बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल में ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट चाइना को धूल चटाकर हमारी बेटियों ने भारत का परचम लहरा दिया। बॉक्सिंग में भारत को कुल 3 गोल्ड मिले, जिनमें से 2 गोल्ड महिलाओं ने हासिल किए हैं। लवलीना बोरगोहेन और परवीन हुड्डा ने अपने मुक्कों के दम पर सोना जीता। मैरीकॉम के बाद एशियन गेम्स में बॉक्सिंग गोल्ड जीतने वाली लवलीना देश की दूसरी महिला बॉक्सर बनी है। ट्रैप शूटिंग में नीरू ढांडा ने इंडिविजुअल गोल्ड के साथ साथ मिक्स टीम में भी देश को गोल्ड दिलाया। ट्रैक पर विद्या रामराज की वो दौड़ कौन भूल सकता है। विद्या ने 400 मीटर बाधा दौड़ में पीटी उषा का 42 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा। 4x400 मीटर्स रिले में स्वर्णिम रेस दौड़कर भारत की झोली में गोल्ड डाल दिया। और इसी के साथ हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है। कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
1: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।
2: एक दो, एक श्राम।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर, मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।

क्या यूपी में कांग्रेस प्लान बी पर बढ़ेगी? क्या छोटे दलों में विकल्प ढूंढ रही कांग्रेस? क्या यूपी में है राहुल अखिलेश का कुछ सीक्रेट प्लान? उत्तर प्रदेश की कांग्रेसी सियासत के चेहरों ने अब तक जो रुख जाहिर किया है उसी से ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 403 सीटों वाली विधानसभा में 200 सीट मांग कर रही है तो अखिलेश लगातार जीत के आधार पर ही सीट की बात कर रहे हैं। ऊपर से छोटे छोटे दलों के नेता राहुल की परिक्रमा करना शुरू कर चुके हैं, चाहे वो अपनी जनता पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य से राहुल गांधी की मुलाकात हो या यूपी में चौहान लोनिया ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले महान दल के अध्यक्ष संजय चौहान की राहुल से मुलाकात या फिर अपना दल कमेरावादी पार्टी के नेता पंकज निरंजन से राहुल की भेंट। 2022 के पहले बने भागीदारी मोर्चा के ज्यादातर दल कांग्रेस के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी छोटे दलों के नेता बारी बारी से राहुल गांधी से मिल चुके हैं। दरअसल यूपी में जिस तरह समाजवादी गठबंधन में शर्तों की बात सामने आई है उसमें राहुल अखिलेश के सियासत के सीक्रेट मायने कुछ और भी हो सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इन छोटे छोटे दलों को जोड़कर 2017 के पहले के बीजेपी के फार्मूले को अपना रही है, जब अमित शाह ने इन्हीं छोटी पार्टियों और नेताओं को अपने साथ जोड़कर समाजवादी पार्टी को मात दी थी। वैसे छोटे दलों से कांग्रेस की मुलाकातों का एक मायने और है, जिसमें राहुल यूपी में समाजवादी वर्चस्व के मुकाबले विकल्प की तलाश कर सकते हैं। खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ने की मांग की है और लगभग दर्जन पर सीटों की मांग रखी है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कहा है कि सिंबल तो कांग्रेस का ही होगा। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी चेतावनी देती है कि यूपी में कांग्रेस के सामने सिर्फ समाजवादी ही विकल्प है, वरना यूपी में का नाम लेवा प्रतिनिधित्व भी नहीं होता। दरअसल समाजवादी पार्टी बार बार संकेत दे रही है कि यूपी में कांग्रेस का बड़ा भाई समाजवादी है और अखिलेश ने जो जिताऊ कैंडिडेट की शर्त कांग्रेस के सामने रखी है उसमें कांग्रेस छोटे दलों के अंदर जातिगत बुनियाद पर जिताऊ चेहरे तलाश रही है। कुमार अभिषेक लखनऊ आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और रिश्ते नाते ऐसी रेलगाड़ी है, जब जिसका स्टेशन आ जाता है वो उतर जाता है। नमस्कार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: SIR के तहत फॉर्म 6 में बदलाव पर फंस गया चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, हमने चेंज को नहीं दी थी स्वीकृति। AC और केंद्र को दिया नोटिस, ज्ञानेश के तुरंत निलंबन से किया इनकार। फॉर्म 6 को राहुल ने बताया बीजेपी और CEC की साठगांठ का रिजल्ट, कहा अपनाया गया गैर कानूनी तरीका। आग बबूला बीजेपी का पलटवार, कल संसद से EC ऑफिस तक विपक्ष का मार्च। चुनाव से पहले राज्यसभा सीट से जातीय समीकरण साधने में जुटी बीजेपी, लिस्ट में 3 OBC, 2 SC, 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय के नाम। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और BL वर्मा आउट। मायावती ने फिर से भतीजे पर दिखाई दया, कहा राजनीति से ससुर के संन्यास के बाद सुधर गए हैं आकाश, वापस दिया राष्ट्रीय संयोजक का पद। और बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई, जम्मू कश्मीर से वापस भेजे गए 150 लोग, बागडोगरा से BSF भेजेगी सीमा पार, 7 अक्टूबर को एक और कार्रवाई की तैयारी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक, पर आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक में बात 6 अक्टूबर यानी कल, कैसे विपक्ष के सभी सांसद वोट चोरी के मुद्दे को लेकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चढ़ाई करने जा रहे हैं। हम आपको ये बता दें कि पिछले 4 दिनों से लगातार विपक्षी पार्टियां और उनकी छात्र विंग सीईसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और अब कल यानी कि 6 अक्टूबर इंडिया गठबंधन संसद से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च निकालने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आइए हम आपको दिखाएं कि कैसे आज कांग्रेस की छात्र विंग एनएसयूआई ने गणेश कुमार के खिलाफ जिंदा और मुर्दा वाला विरोध प्रदर्शन किया।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर बवाल और विरोध प्रदर्शन अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब 6 अक्टूबर को ज्ञानेश के खिलाफ उतरेगा

0: इंडिया, चुनाव आयोग तक विपक्षी पार्टियों के सांसदों का मान, इंडिया गठबंधन ने बनाई ज्ञानेश को घेरने की रणनीति, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया का अक्टूबर संग्राम, वोट चोरी की लड़ाई ज्ञानेश कुमार पर चढ़ाई,
1: और एन एग्रेसिव नेशनल वाइड कैंपेन अगेंस्ट वोट चोरी, वोट बचाओ देश बचाओ।
0: वोटर चोरी एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन का पूरा प्लान आपको बताएं। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू हुआ संग्राम लगातार जारी है। 2 अक्टूबर को मुंबई में सीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टियों और उसकी छात्र विंग आयसा एसएफआई ने 2 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को भी इंडिया गेट से जंतर मंतर तक सिटीजंस मार्च निकाला। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भड़के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी जान लगा दी। तो 4 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक साथ बीजेपी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई में गर्जना मोर्चा निकाला।
2: हिटलर सर, हिटलर कोणालाही घाबरत नव्हता, पण हिटलर वरती अशी वेळ आली की त्याला स्वतः स्वतःवरती गोळी झाडून आत्महत्या करावी लागली। पण हिटलर गेला आणि हिटलर गेल्यानंतर त्याला एक न्यूरेंबर्ग ट्रायल म्हणून तो एक शब्द आहे। जे अधिकारी त्या हिटलरच्या पापामध्ये सहभागी होते त्यांना शोधून शोधून काढलं, त्यांच्यावरती खटले भरले गेले, काही जणांना फासावर लटकवलं, काही जणांना तुरुंगात चढून टाकलं, तोच क्षण आपल्या देशात उद्या आल्याशिवाय राहणार नाही एवढं भाजप आणि या सगळ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवावं।
3: त्याला एक तर एसआयआर हा रद्द झाला पाहिजे कोणत्याही परिस्थितीत, आणि दुसरं म्हणजे या देशातलं वोटिंग मशीन बंद होऊन बॅलेट पेपरवरती याच्यापुढे मतदान झालं पाहिजे। या दोन गोष्टी झाल्या तर दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल। उद्या कोणाची सत्ता येऊ देत काही फरक पडत नाही।
0: और आज यानी 5 अक्टूबर को भी काँग्रेस की छात्र विंग ने मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जंतर मंतर से कुछ ही दूरी पर रायसीना रोड पर कांग्रेस की छात्र विंग के कार्यकर्ता और नेता राशि बनकर साफ परेड जाते हैं। और अब इनका संदेश क्या है वो आपको इस पोस्टर से साफ साफ समझ में आ जाएगा। जो प्रदर्शनकारी अर्थी बनकर नेता है उस पर रखे पोस्टर में लिखा है, चिंता है हम फिर भी वोटर लिस्ट में मुड़े क्यों।
4: ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर में मुझे मृत घोषित कर दिया है। और हमारी लड़ाई यही है कि जो लाखों लोगों का वोट इस एसआईआर में लाखों लोगों को मृत घोषित किया गया है उनके न्याय की लड़ाई है। क्योंकि लोग फोन चला रहे, लोग घूम रहे, लोग खाना खा रहे, लोग पानी पी रहे हैं, परंतु उनको मृत घोषित कर दिया गया है। सोचिए मैं भी बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मेरा नाम भी एसआईआर से कट गया है, सच्चाई है।
0: जिंदा लाश बनने तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही एनएसयूआई के कार्यकर्ता और नेता जंतर मंतर की तरफ बढ़ते हैं रास्ते में दिल्ली पुलिस और सेंट्रल फोर्सेज से सीधा सामना हो जाता है।
5: अब तक विपक्षी पार्टियों की छात्र विंग सड़कों पर उतरी, ये सारे विपक्षी दल यहां हैं, और अब इंडिया गठबंधन के 19 दल, ये सभी 19 दल 6 अक्टूबर यानी कि कल ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के खिलाफ एक बड़ा मार्च निकालने जा रहे हैं। इस मार्च से ठीक पहले कांग्रेस ने एक बड़ी मीटिंग भी की जिसमें 6 अक्टूबर से लेकर 26 नवंबर तक की पूरी रणनीति बनाई गई। और इतना ही नहीं, इस मीटिंग में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस को कैसे आक्रामकता दिखानी है। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने नेताओं को जेंजी का एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण भी दिया। तो आइए हम आपको दिखाएं क्या है इंडिया गठबंधन का पूरा ज्ञानेश प्लान।
0: लेकिन ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पिछले 4 दिन में जितना भी विरोध प्रदर्शन हुआ है वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है। और अब मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन के 19 दल 6 अक्टूबर से सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। प्लान के मुताबिक अब विपक्षी पार्टियों के सभी सांसद चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे।
6: कल 11 बजे

0: के सभी विपक्ष पार्टियों के सांसद पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक शांतिपूर्वक मार्च करेंगे। सभी को 10:30 बजे का टाइम दिया गया है मकर द्वार पर इकट्ठा होने के लिए। 11 बजे को मार्च हम शुरू करेंगे। शांतिपूर्वक तरीके से ये मार्च निकाला जाएगा निर्वाचन सदन तक। ये कल का प्रोग्राम है।
1: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता जी के ऊपर पूरे देश के लोगों का विश्वास हो चुका है। हालांकि कोई पहली बार हम लोग ये बातें नहीं उठा रहे हैं, ये बातें हम समाजवादी लोग या इंडिया अलायंस के लोग, हमारे नेता अरुण अखिलेश जी और भी विपक्षी दलों के लोग लगातार उठाते चले आ रहे हैं। लेकिन ज्ञानेश गुप्ता जी सरकार की भक्ति में व्यस्त हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को एक सीमा से आगे कोई नहीं दबा सकता। जैसे जैन जी के साथियों ने मिलकर इस्तीफा करा के दिखा दिया देश के शिक्षा मंत्री का, उसी तरह से पूरे देश के लोग, विपक्ष के लोग, जैन जी लोग और भी सब लोग मिलकर, जो लोग लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, जो विश्वास करते हैं कि लोकतंत्र के अंदर ही असली ताकत है, वो ऐसे लोग ज्ञानेश गुप्ता का इस्तीफा करा के छोड़ेंगे, चाहे जितने तरीके संघर्ष करना होगा किया जाएगा।
2: बैठक में हम लोगों का पूरा एक्शन प्लान बना। 6 तारीख को भी जितने पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो सभी प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद से हम लोग जो तमाम नेता हैं, हम लोग राष्ट्रपति जी से भी मिलने जाएंगे। उसके बाद कई जगहों पर रैलियां हैं, वो भी हम लोग करेंगे। जो चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने जो गलती गुनाह ने जो पाप किया है उसका सजा उसको मिलेगा, और उसको बचाने वाले लोग, जो उनको बैठाने वाले लोग हैं, जो पाप कराने वाले लोग हैं, उनको भी छोड़ा दिया जाएगा।
3: जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में भी चुनाव इतना साफ सुथर से हो रहा है, आप तय नहीं पा रहे, इसलिए बिना मुद्दा का मुद्दा खड़े कर लोगों को गुमराह करने, तो ज़रूर लोग बहुत समझदार है, सही ढंग से आपको सबक ज़रूर सिखाएंगे।
4: आज हम इलेक्शन कमीशन पे कोई सवाल करते हैं तो उसका जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं देता है, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं। सामने आके उसे डिफेंड करना शुरू कर जाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सवाल तो इलेक्शन कमीशन से पूछे जा रहे हैं, आप कौन होते हैं उसका जवाब देने वाले? हर बीजेपी का नेता ज्ञानेश कुमार की हिमायत में खड़ा है।
5: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और SIR की प्रक्रिया पर 6 अक्टूबर के मार्च से ठीक पहले कांग्रेस ने एक बैठक की, जिसमें राहुल गांधी से लेकर पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रही। बताया जा रहा है कि इस बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि हमें सतर्क और सक्रिय रहकर इस लड़ाई को लड़ना है, हमें साहसी और आक्रामक होकर लगे रहना चाहिए।
6: राहुल जी ने कहा जनता के बीच जाएं, उनका विश्वास जीतें और हकीकत उनको बयान करें जनता के।
7: आई आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना चाहिए, जिस तरह से हमने सोलन में किया था, हमने एक भैंस को बाजार में लाया और भैंस के ऊपर एक स्लिप लगा दी जिसमें मोदी लिखा था और उसके आगे बीन बजा दी, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स था। तो उसी प्रकार का कुछ ऐसा किया जाए, क्रिएटिव जो हो, तो बिल्कुल अलग हो। राहुल जी बोलते हैं कि कुछ ऐसा करो जो अलग हो, तो अब विल सर्च फॉर दैट।
0: 8 तारीख तक सभी इंडिया जनबंधन की पार्टियां जिले स्तर पर यात्राएं निकालेंगी, प्रदर्शन होगा, बैठकें होंगी वोट चोरी मुद्दे को लेकर और CEC को हटाने की मांग को लेकर। 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर बैठकें होंगी। यही प्रदर्शन, यही यात्राएं, यही मांग 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक खास तौर से कांग्रेस पार्टी की ओर से यह प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक वोट बचाओ देश बचाओ रैलियां राज्य के स्तर पर और जिले के स्तर पर और गांव-गांव में चौपाल आयोजित किए जाएंगे।
5: आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के 19 दल ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अक्टूबर नवंबर संग्राम की पूरी रणनीति तैयार कर चुके हैं, जो 2 अक्टूबर से शुरू हुई है और 26 नवंबर को इंडिया गठबंधन की दिल्ली चलो यात्रा के साथ अंजाम तक पहुंचेगी।
0: 1 नवंबर को रामलीला मैदान में एक महारैली होगा, इसमें सारे इंडिया गठबंधन की पार्टियां और हम निमंत्रण दे रहे हैं सभी विपक्ष पार्टियों को कि 1 नवंबर के रैली रामलीला मैदान में वो शामिल हों और 25 और 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर हमेशा संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 25 और 26 नवंबर को 6 अलग अलग जगहों से, यूपी, राजस्थान, हरियाणा के 6 अलग जगहों से दिल्ली चलो यात्रा होगा और वोट बचाओ देश बचाओ सीसी हटाओ इसी नारे को लेकर ये रैलियां होंगी। और हमारा मकसद ये होगा कि इन 6 जगहों से सारे रैलियां एक जगह दिल्ली में आके एक महाप्रदर्शन करें।
8: जिस जनता ने वोट से बनाया है, कांग्रेस हारी अपने कारणों से, लगातार 3 चुनाव कांग्रेस हार गई, लेकिन अब हार का ठीकरा वो चुनाव आयोग को फेंकना चाहती।
1: संविधान पर, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर किसको भरोसा नहीं है, ये बीजेपी के लोग जवाब दें। पूरा देश जानता है कि देश की हर संवैधानिक संस्था का अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है, कोई कठपुतली बनाने का प्रयास कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
5: 30 सितंबर को दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में वोट चोरी और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर रणनीति तैयार की जाती है, जिसमें मुख्य चुनाव आयोग के इस्तीफे की मांग से लेकर महाभियोग लाने का प्रस्ताव भी पास किया जाता है। 3 घंटे तक चली इस बैठक में 3 बातों पर सहमति बनती है। सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाया जाए, वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों को सार्वजनिक किया जाए, नाम हटाने से पहले वोटर को नोटिस और अपील का मौका मिले, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए।
9: हिंदुस्तान का जो लोकतांत्रिक सिस्टम है, उस पर बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार जी ने आक्रमण किया है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन। वी आर गोइंग टू इंश्योर, दिस इज पर्सनल कमिटमेंट ऑफ ऑल इंडिया लीडर्स, we are going to ensure that the people who have destroyed Indian democracy are punished. Doesn't matter how senior they are, who they are, Indian democracy is bigger than every single person in this country.
5: 6 अक्टूबर का मार्च विपक्ष के लिए अहम है, इसके जरिए जंतर मंतर के अलग अलग प्रदर्शनों को साझा राजनीतिक अभियान का रूप देने की कोशिश है। अक्टूबर में राज्यों में कार्यक्रमों और नवंबर में दिल्ली की बड़ी रैली के जरिए इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की रणनीति है। अब देखना होगा कि ये आंदोलन कितना व्यापक राजनीतिक अभियान बन पाता है।
10: एक तरफ राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं को पुराने अंदाज को छोड़ नए स्टाइल, तीखे और आक्रामक तेवर इख्तियार करने की नसीहत दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक ने अगले 2 महीने का खाका तैयार कर लिया है। लेकिन इसकी अग्नि परीक्षा तो तब होगी जब जनता भी विपक्ष के पीछे चल पड़ती है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।
11: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर इंडिया गठबंधन आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की हिस्सेदारी और भागीदारी को लेकर ओवैसी ने इंडिया गठबंधन के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी अपने चुनावी अभियान का बुगुल फूंक चुके हैं। अपने भाषणों में ओवैसी यही ऐलान कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज अब दरी नहीं बिछाएगा, अब कुर्सी पर बैठेगा। मतलब यही है कि राजनीतिक पार्टियों के वोट बैंक बनकर मुस्लिम समाज अब नहीं रहेगा। ओवैसी के नारे अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा पर राजनीतिक घमासान छिड़ गया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सांसद को अब्दुल नाम पर गुस्सा आ गया, वो आपा खो बैठे। आखिर उत्तर प्रदेश में दरी पॉलिटिक्स का ये खेल है क्या?
12: आप नाम रख दीजिए अब्दुल, अब्दुल क्या होता है? आप किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं अब्दुल कहकर के।
13: अब्दुल के वोटों से बने आप सांसद, अब्दुल के नाम भड़कते हैं आप, अब्दुल के नाम पे गुस्सा आता है आपको।
14: सच्चाई को इनकार करते हैं और जो राइट है, जो जस्टिस होना चाहिए उससे इनकार करते हैं तो ज्यादा तकलीफ होती होगी।
12: आप अब्दुल अब्दुल कहकर के आप खड़ाने की कोशिश करते हैं।
5: यूपी चुनाव में दरी पॉलिटिक्स की एंट्री, मुस्लिमों के बहाने ओवैसी साधे निशाने,
15: गूंगे बहरों की तरह ना बैठे।
5: गठबंधन में एंट्री नहीं तो ओवैसी का खेल, मुस्लिम वोट जोड़ेंगे विपक्ष का खेल बिगाड़ेंगे। ओवैसी की चुनावी डगर, मुसलमानों पर नजर,
16: वे चाहते हैं कि मुसलमान दरी बिछाता रहे, उसको बेशरम किया जाए। मैं तुमसे कह रहा हूं कि दरी अब तुम नहीं बिछाओगे, तुम कुर्सी पर बैठोगे और राज भी करोगे इंशाल्लाह। बरसों आपने समझा कि नहीं कांग्रेस का साथ देंगे, कांग्रेस हमारे मुकद्दर के अच्छे फैसले करेगी। कांग्रेस ने क्या दिया हमको? शहादत बाबरी मस्जिद, हाशिमपुरा, मलियाना दिया।
5: उत्तर प्रदेश चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कहीं चुनावी बिसात बिछ चुकी है तो कहीं बिछाई जा रही है, लेकिन चुनावी दंगल में ओवैसी की दरी पॉलिटिक्स ने समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। ओवैसी अपनी रैलियों में मुसलमानों के सामने एक नारा लगा रहे हैं। नारे का मजमून यही है कि मुस्लिम समाज सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि सत्ता में भागीदार बनेगा। अपने नारे को चुनावी मुद्दा बनाकर ओवैसी खुल्लम खुल्ला समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं।
15: अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, सज्जन दरी नहीं बिछाएगा, शौकत दरी नहीं बिछाएगा, अब गद्दन टेबल लगाएगा, कुर्सी पर बैठ कर कहेगा बोल इंसाफ करता है या नहीं करता है।
5: ओवैसी की दरी पॉलिटिक्स पर सियासी घमासान छिड़ गया। इधर ओवैसी लगातार अपना नारा बुलंद कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अब्दुल नाम सुनकर ही समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्ला नदवी का पारा हाई हो गया।
17: नहीं, हर पार्टी,
18: अरे आप उन्हें शब्दों को वापस लीजिए। अब्दुल मींस क्या होता है, किसे कहते हैं आप अब्दुल? नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा आपकी बात को। अब्दुल अब्दुल लगाया क्या होता है अब्दुल? मुसलमान इस देश के सबसे मुअज्जज शहरी हैं, जिन्होंने देश की कुर्बानी हजारों साल, सैकड़ों साल से देश में कुर्बानियां दी हैं। अब्दुल नाम मत लीजिए मेरे सामने प्लीज। ये आप मजाक मत उड़ाइए, किसी कम्युनिटी का मजाक मत उड़ाइए, कोई अब्दुल नहीं है।
5: जिस नारे के दम पर ओवैसी उत्तर प्रदेश में सियासी उलटफेर की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उसी नारे को समाजवादी पार्टी के सांसद ने मुस्लिम विरोधी बताया। बस फिर क्या था, ओवैसी को समाजवादी पार्टी पर हमला बोलने का एक और मौका मिल गया।
14: हम कहते हैं हम दरी नहीं बिछाएंगे, हम ये कहते हैं कि हम वोट बैंक नहीं है, हमको हमारा हक मिलना चाहिए। हम ये कहते हैं कि मुसलमानों की एक पॉलिटिकल एजेंसी होनी चाहिए। तो अब जाहिर है कि जो लोग सच्चाई को का इनकार करते हैं और जो राइट है, जो जस्टिस होना चाहिए, उससे इनकार करते हैं तो ज्यादा तकलीफ होती होगी।
5: जुबानी जंग समाजवादी पार्टी और ओवैसी के बीच है, लेकिन दरी पॉलिटिक्स में बीजेपी की एंट्री भी हो गई। बीजेपी नेता ने समाजवादी पार्टी के सांसद को जवाब दिया कि अब्दुल कौन है और इसकी संपूर्ण व्याख्या कर डाली।
19: आपकी घर की दीवारों की रंग पॉलिश करता है वो है अब्दुल, आपकी मोटरों के पंजा जोड़ता है वो है अब्दुल, जिसके नाम की आपकी आपने और आपकी पार्टी ने रोटियां सेकी है वो है अब्दुल, बिरयानी में जैसे तेजपात के पत्ते को इस्तेमाल करते हैं वैसे इस्तेमाल किया आपकी पार्टी ने वो है अब्दुल, देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई उसके वोटों से वो है अब्दुल।
20: ये हम हमारे उस सहयोगी साथी और हमारे समाजवादी पार्टी परिवार के हिस्सा हैं। जो लोग हम इस तरह की बात करते हो वो समाज में एक समाज को तोड़ने की और समाज को भटकाने की बात करते हैं।
5: अब सवाल यही है कि दरी पॉलिटिक्स के पीछे की सियासी रणनीति क्या है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट दिया। लोकनीति CSDS पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक 83% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया। नतीजा ये हुआ कि ओवैसी का सियासी सपना टूट गया, क्योंकि AIIMM ने 97 उम्मीदवार उतारे थे लेकिन वो एक सीट भी नहीं जीत पाए।
2: यानी मुस्लिम वोटरों ने ओवैसी को सिरे से खारिज कर दिया। 2024 लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटरों की पहली पसंद अखिलेश और राहुल गांधी थे। लोकनीति सीएसडीएस पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में इंडिया गठबंधन को 92% मुस्लिम समाज का वोट मिला। ऐसे में ओवैसी मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए हिस्सेदारी का दांव चल रहे हैं।
15: उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो या भारत का 1900 मुसलमान हो, ये मुसलमान तुम्हारी बपूती नहीं है, याद रखो, ये तुम्हारे बाप की बपूती नहीं है, हम इंसान हैं, वोटर नहीं है। तुम अगर हमको बपूती समझते हो तो तुमको पता चल जाएगा आने वाले विधानसभा में।
20: समाजवादी पार्टी समाज में न किसी वर्ग को अपनी जागीर न वोट बैंक समझती है।
11: दर्शक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दर्शक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे दुबई से इजराइल जाने वाली फ्लाई दुबई की फ्लाइट के क्रैश प्लेन की इनसाइड स्टोरी। आप देखते रहिए दस्तक।
21: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
22: यार लोन भूल गया मैरी। इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना।
23: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
22: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
23: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन,
24: होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
25: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
22: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
26: आगे आगे,
27: अरे उधर उधर,
26: करेक्ट करेक्ट।
28: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
29: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
30: गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
31: गड़बड़ है।
32: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसोफा, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
33: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस।
34: मेरे पास एक आइडिया है।
33: क्या?
34: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
35: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
34: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
36: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
35: कौन सी बनानी है?
37: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
38: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
39: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
40: इट्स अ माय वे।
41: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
42: जीके मैक्स।
43: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
42: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
43: जेके वॉल मैक्स
42: बेस्ट पेंट,
43: जेके मैक्स।
42: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
44: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU,
45: सोच बदलो और बैंक भी।
46: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है,
47: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
46: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायफ्री जूस।
48: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
49: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
50: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
51: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन के गीत सुना।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: In association with Signature Finest Cardamom Seeds, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
2: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक YouTube पर और बचिए हर क्राइम से।
3: SIR प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों के बीच CEC ज्ञानेश कुमार पर संग्राम बढ़ता जा रहा है। मांग इस्तीफे की हो रही है, शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा तेज होता जा रहा है। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान ने देश की सियासत को सुलगा दिया है। पहले खड़गे का वो बयान सुनिए।
4: मोदी इलीगल प्राइम मिनिस्टर, शाह इलीगल मिनिस्टर, और जितने भी अब चीफ मिनिस्टर्स बने कहां के भी, वो सब इलीगल। सबको डिसॉल्व करना, इलेक्शन कराना और बैलेट पे इलेक्शन कराना, क्योंकि ईवीएम का मिसयूज हो रहा है।
3: खड़गे के मुताबिक 2014 के बाद से बीजेपी की जितनी सरकारें बनी हैं, जितने मंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं, सब इलीगल हैं। खड़गे का ये बयान बीजेपी को तीर की तरफ चुभा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खड़गे को गांधी परिवार का दास बता दिया।
5: मल्लिकार्जुन भले गांधी परिवार के दास हो सकते हैं, देश का लोकतंत्र मजबूत है।
3: शिवराज सिंह चौहान ने भी खड़गे पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि खड़गे चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं।
6: चुनाव हारने पर चुनाव आयोग को बदनाम करना, जनता के जनादेश का अपमान करना, ये कांग्रेस के DNA में है।
3: इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अवैध वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया है। रिजिजू ने सवाल उठाया कि अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राज्यों की सरकारें अवैध हैं, तो क्या खड़गे खुद अवैध सांसद हैं? क्या राहुल गांधी भी अवैध सांसद हैं? रिजिजू ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के मुख्यमंत्रियों का भी जिक्र किया। वहीं राहुल गांधी और खड़गे पर शाहनवाज हुसैन ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, कांग्रेस 140 करोड़ जनता का अपमान कर रही है।
7: मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी को गाली नहीं दे रहे, इलीगल रूप से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नहीं कह रहे, बल्कि देश के 140 करोड़ जनता को गाली दे रहे।
3: अब एक तरफ चुनाव आयोग का विरोध हो रहा है और दूसरी तरफ खड़गे के बयान पर सियासत धधक रही है। आज तक ब्यूरो।

लखनऊ के गोमती नगर में कई सालों बाद इस तरह की बाढ़ दिखी। पूरे इलाके में कई फीट तक पानी भरा है। घर, मकान, दुकान सब पानी में समा गए हैं। गोमती नदी का जल स्तर बढ़ने से रिवर फ्रंट पूरी तरह से डूब गया है। पानी का फैलाव इस कदर बढ़ गया है कि हनुमत धाम मंदिर परिसर, प्राचीन शनि देव मंदिर और लक्ष्मण मेला मैदान के आसपास भारी जलभराव हो गया है। प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान मंदिर परिसर में भी नदी का पानी प्रवेश कर चुका है। जानकार बताते हैं कि 2006 के बाद ये स्थिति आई है, जब गोमती नदी का जल स्तर इतना बढ़ा है। उधर ग्रामीण इलाकों में भी बाढ़ का संकट गहराया हुआ है। बख्शी का तालाब, तहसील के लासा, बहादुरपुर, सुल्तानपुर और अकड़िया मऊ जैसे गांवों में पानी का स्तर कम जरूर हुआ है, लेकिन लोगों की मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों की आवाजाही और मदद के लिए 30 नावें तैनात की हैं। 7 राहत शिविरों में हर इंतजाम की बात कही जा रही है। लखनऊ में बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, कई लोग पलायन भी कर चुके हैं। गोमती का जल स्तर सामान्य से करीब 8 फीट ऊपर चढ़कर 108.14 मीटर के खतरनाक निशान तक पहुंच गया है। अब देखना है पानी कब तक कम होता है और लोगों को राहत कब तक मिल पाती है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ अंकित मिश्रा, लखनऊ आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: स्वागत एक बार फिर से आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। और अब खबर, प्लान क्रैश कांड का, फ्लाई दुबई फ्लाइट की हाईजैकिंग वाली साजिश को लेकर कई सारे बड़े महत्वपूर्ण खुलासे हुए। शुरुआती जांच में आरोपी पायलट ने यह माना कि उसका प्लान था विमान को हाईजैक करने के बाद इजरायली एयरपोर्ट पर क्रैश करने का। पूछताछ के दौरान आरोपी पायलट ने हाईजैक से जुड़ी साजिश को लेकर कई सारे सनसनीखेज खुलासे किए। बड़ी बात यह है कि जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपी पायलट को ओमान की एयरलाइंस ने कट्टरपंथी सोच के चलते निकाल दिया था। आखिर क्या है ओमानी पायलट के प्लान क्रैश की पूरी कहानी देखिए।
1: ओमानी पायलट बोला एक एक राज खोला। हाईजैकिंग के बाद नौगैरा जैसा हमला करता, तेल अवीव में क्रैश करने की थी साजिश। कई महीने पहले बनाया था क्रैश वाला प्लान। कट्टरपंथी सोच ने पायलट को बनाया आतंकी। प्लान क्रैश की इनसाइड स्टोरी। हमाम अल हमामी, यही नाम है ओमानी पायलट का, जिसने फ्लाई दुबई की फ्लाइट को हाईजैक करने की कोशिश की थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि हमामी का प्लान बेहद खतरनाक था। इटली के अखबार कोरियेरे डेला सेरा में छपी रिपोर्ट के मुताबिक हमामी का प्लान कैप्टन स्मिथ को मारकर फ्लाइट को तेल अवीव ले जाना था, जहां पर किसी ऊंची इमारत से वो प्लेन को टकरा देता। प्लान के तहत ही कॉकपिट में हमामी ने नमाज पढ़ने का बहाना बनाया और मौका देखकर धारदार हथियार से कैप्टन स्मिथ पर हमला कर दिया।
2: בואו לעזור בצרחות, אנשים לא הבינו, לא הבינו, אנשים, אני זוכרת את הפרצופים שלהם, יישובים, הדלת נפתחה. זה משהו שעד עכשיו אני לא מצליחה להבין, וזה בטוח הגבורה של הטייס, של קפטן סמית, זה בזכותו באמת, זאת תחילת שרשרת הניסים שהייתה פה. אם הוא לא היה פותח את התא מבפנים, כנראה לא היינו מדברות פה היום, והדלת פשוט נפתחה. זה מה שראיתי. ראיתי את הכל והבנתי ופשוט צעקתי, רוצחים את הטייס, בואו לעזור. בואו לעזור, בצרחות, אנשים לא הבינו, לא הבינו. אנשים, אני זוכרת את הפרצופים שלהם, יישובים, אבל כי זה מרגיש כמו, זה גניה של שניות. ואז המטוס ממש צלה למטה ועפתי.
1: हमामी ने हमला तो कर दिया, लेकिन कैप्टन स्मिथ ने हिम्मत नहीं हारी, लिहाजा प्लेन को हाईजैक करने का ये पहला प्लान नाकाम हो गया। ऐसे में हमामी ने विमान को रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की, ताकि किसी तरह विमान को क्रैश करवा सके। इसी कड़ी में हमामी ने विमान का ऑटो पायलट मोड बंद कर दिया, जिससे प्लेन तेजी से नीचे आने लगा। जांचकर्ताओं को शक है कि हमामी ने प्लेन के दोनों इंजन बंद करने की कोशिश की थी। पायलट स्मिथ ने कॉकपिट के अंदर का पूरा हाल बयान किया है।
3: एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने घाव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे, एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं एंजर में 17 साल से ज्यादा उड़ा था, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ। मुझे पता चलता है बंद करके भी कि चार्ज में क्या हो रहा है। जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे ऐसा सो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है, और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश होगा स्मिथ कर दे, दरवाजा बस वही है, और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल दिया सर, बाकी सब आ गए, और बाकी सबकी भी उतनी उसमें रोल था। बट जान के मैं सबको बोल रहा था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मत दे सकता।
1: इजरायली मीडिया के मुताबिक हमामी का प्लान विमान को तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर टकराना था, लिहाजा जून में ही इजराइल जाकर रेकी की थी। पूछताछ के दौरान हमामी ने कबूल किया है कि इससे पहले जुलाई महीने में उसने प्लेन को क्रैश करवाने की साजिश रची थी, लेकिन आखिरी वक्त पर उसका मत बदल गया क्योंकि विमान में एक करीबी दोस्त मौजूद था। इस बार फिर हमामी ने विमान को हाईजैक करके क्रैश करवाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया।
4: אני והוא תחפנו את הדלת, הטייס שהיה דקור היה פשוט מאוד סמוך לדלת, אז היה קשה לנו לפתוח אותה, אבל נראה לי, לפי דעתי, מסקנה שלי,
5: שהוא הצליח
4: לפתוח.
5: הוא פתח, הוא צריך להגיע למעלה, לא?
4: לפני שהוא התמוטט.
5: לפני שהוא התמוטט, הוא הצליח.
4: הוא הצליח.
5: בתושייה גדולה.
4: כשנכנסתי, ראיתי את המפגע על המכשירים, בין שני הכיסאות, לא היה טייסים על הכיסאות, אחד היה למטה, אחד על המכשירים, ואיתי נכנס עוד אחד, תפסתי את המפגע, עשיתי לו חניקה ומשכתי אותו קודם כל החוצה.
5: מה הוא עשה על המכשירים האלה? מה הוא עשה?
4: הוא ניסה להרוס את המכשירים כדי לנטרל את המטוס.
5: זה מה שאתה ראית?
4: כן.
5: טוב.
4: הוצאנו אותו החוצה, זה היה שניות. המטוס היה עם האף ככה. קראתי לחבר'ה ישראלים איתנו שהיו למטוס, קראתי להם, באו, ניגשו אליי עוד שני חבר'ה, אמרתי להם שריתקנו אותו להזיר, קפצתי בחזרה. לזה משכתי את ההגעים, התחלתי למשוך את ההגעים, ואז
5: אתה משכת את ההגעים?
4: כן.
5: אתה ידעת, אחורה?
4: אחורה. אני רואה תעופה בחקירה, והמטוס התחיל להתאזן עוד קצת, ואז הטייס אמר לי שהוא לוקח את השליטה מפה.
1: वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाई दुबई में नौकरी करने से पहले हमामी ओमान की एयरलाइंस में काम करता था। नौकरी के दौरान मिली शिकायतों के बाद जांच की गई। ओमान में जांच एजेंसियों ने जब हमामी की ऑनलाइन गतिविधियों को खंगाला तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि हमामी कट्टरपंथी सोच से बहुत प्रभावित था, लिहाजा ओमान में हमामी के फ्लाइट उड़ाने पर रोक लगा दी गई। यही नहीं, हमामी को एक डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम में भी भेजा गया था। ओमानी जांच एजेंसियों से गलती ये हुई कि हमामी का बैकग्राउंड जानते हुए भी इसे दूसरे देशों के साथ शेयर नहीं किया। बड़ी बात यह है कि जब इसी साल फरवरी में फ्लाई दुबई ने हमामी को नौकरी पर रखा तो भी यूएई जांच एजेंसियों की तरफ से हमामी के बैकग्राउंड को नहीं खंगाला गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्लाई दुबई ने नौकरी देने से पहले हमामी के बैकग्राउंड की जांच नहीं करवाई। यही वजह है कि हमामी को दुबई से तेल अवीव की फ्लाइट पर तैनाती मिल गई। इसी रूट पर हमामी कई बार उड़ान भर चुका था।
6: He's lying there now. He's this attacker, and he calls out to the air crew, kill me, all right? So it's clear he was suicidal. That's not a question. It was clear he was going to down that plane. Oh, it's not clear, but it looks very likely that he was going to down the plane and with all the passengers in there. And if you couple that with the what I just told you about the Islamist tendencies, that radicalization that were found in his background, I think that's that'll give us a pretty good clue. But again, I don't make final conclusions yet, but that's the indications we have now.
1: ऐसे में अमीराती अधिकारी फ्लाई दुबई के उन कर्मचारियों की जांच कर रहे हैं जो हमामी की भर्ती प्रक्रिया में शामिल थे। मतलब गलती ओमान, यूएई और इजराइल की जांच एजेंसियों से हुई। इसी मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ईरान कनेक्शन का आरोप लगाया जा चुका है।
7: We're working on it right now. They're being very open with us. I would say the answer, based on what I'm hearing, is yes, but we're working on it right now.
8: This guy might have been either put in there by the IRGC or radicalized some other way, and then he tried to take down the plane.
7: It could have been, yeah.
1: अभी तक की जांच में हमामी के रिश्ते किसी आतंकी संगठन से नहीं जुड़े हैं। यही नहीं, आरोपी पायलट के तार ईरान से भी नहीं जुड़ रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के आरोप पर पलटवार करते हुए ईरान ने हाईजैक कांड को इजराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है। ईरान पर पूरी तरह से मनगढ़ंत सबूतों के आधार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इजरायली सरकार गाजा के हालात के साथ साथ ईरान के खिलाफ अपनी आक्रामकता से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है, ताकि ये धारणा बनाई जा सके कि ईरान दुनिया के लिए खतरा है। ये घिसा पिटा हथकंडा है। ईरान का यही कहना है कि फ्लाई दुबई के फ्लाइट कांड से ईरान का नाम जोड़ना अमेरिका और इसराइल की सोची समझी साजिश है। दूसरी तरफ हाईजैक की कोशिश को लेकर जांच एजेंसियों के दावे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की थ्योरी को नकार रहे हैं। हमामी ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने खुद बताया है कि विमान को बेन गुरियन एयरपोर्ट से टकराना चाहता था। प्लान के तहत इसराइल जाने वाली एयरलाइनों के बारे में जानकारी जुटाई और फ्लाई दुबई में नौकरी हासिल की थी। आज तक ब्यूरो।
0: और अब खबर पाकिस्तान की। बलूचिस्तान से लेकर पीओके और अब खैबर पख्तूनवा में भी आसिम मुनीर की सेना के खिलाफ बड़ी बगावत शुरू हो गई। पाकिस्तान में एक बार फिर से बवाल मचा है। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता बार बार के मूड में आ चुके हैं और अब खैबर पख्तूनवा के अलग अलग इलाकों से पीटीआई का कार्यकर्ता इस्लामाबाद की तरफ से बढ़ रहा है। इस आंदोलन की अगुवाई खैबर पख्तूनवा के मुख्यमंत्री सोहेल आफरीदी कर रहे हैं। दिखाएं आपको क्या इस बार इमरान खान की रिहाई संभव हो पाएगी।
1: इमरान खान की रिहाई, पीटीआई ने छेड़ी मुनीर के खिलाफ लड़ाई। खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद कूच, पाकिस्तान में क्या होगा? खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी की आहट, बढ़ गई मुनीर की टेंशन। पीटीआई के हजारों कार्यकर्ता गिरफ्तार, इस्लामाबाद की सीमाएं सील। पुलिस और इमरान की पार्टी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, आगे क्या होगा?
9: और ये आग जो है आपको जुलूस डाली, आप आग लगा रहे हो, पूरे पाकिस्तान में आग लगा
1: रहे। इमरान खान को जेल में गए 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। पिछले दिनों इमरान खान चंद घंटे के लिए बाहर आए। अस्पताल में डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया और फिर से उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के लिए आर पार की जंग छिड़ गई है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सीएम सोहेल अफरीदी की अगुवाई में इमरान के समर्थकों का सैलाब खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद के लिए निकल पड़ा है। इमरान खान के लिए शुरू हुए इस लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में घुसने से रोकने के लिए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने पूरी ताकत झोंक दी है। पाकिस्तान पुलिस से लेकर पाकिस्तान सेना इस्लामाबाद की सीमाओं पर न सिर्फ डटी हुई है बल्कि इमरान खान के समर्थकों को जबरन रोक रही है। इमरान खान की पार्टी के इस्लामाबाद मार्च को लेकर कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई है। इस बीच पंजाब सरकार ने सीमा को सील कर दिया है। डेरा इस्माइल खान से जुड़ी सीमा सील कर दी गई है ताकि प्रदर्शनकारी वहां घुस न पाए। उधर खैबर के सीएम सोहेल अफरीदी ने फिर दावा किया है कि वो हर हाल में इस्लामाबाद पहुंच कर रहेंगे।
10: मैं एब्सोल्युटली नॉट बोलता रहूंगा, जिस तरह मेरे लीडर मेरे कायद ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोला था, इसी तरह मैं उन तमाम ताकतवरों को एब्सोल्युटली नॉट बोलूंगा जो मेरे पख्तूनों के सर का सौदा करेंगे, जो मेरे पख्तूनों के खून से बाहर जजीरे खरीदते हैं हमेशा, मैं उनको एब्सोल्युटली नॉट बोलता रहूंगा। अगर आपकी नजर में ये इमेच्योरिटी है, ना समझी है, तो मैं ऐसा ही सही, मैं तो यही बोलूंगा, जो कर सकते हो कर लो।
1: एक तरफ सोहेल अफरीदी की ललकार और यलगार है इमरान खान की रिहाई के लिए लॉन्ग मार्च निकाला जा रहा है, तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ सरकार खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी या गवर्नर रूल लगाने के विकल्प पर विचार कर रही है ताकि खैबर में उठे बगावत के बवंडर को रोका जा सके। रविवार को खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की ओर शुरू हुए इस मार्च में रास्ते में पड़ने वाले हर इलाके से लोग जुड़ते जा रहे हैं।
11: जब हमारा वजीर आला जो ही लाया मल्ते करेगा उसके मन
12: عمل کریں گے اور آگے بڑھیں گے. جب وہ یا اسلام آباد کی طرف ہو جائیں گے اسلام آباد کی طرف جائیں گے. یہ لانگ مارچ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یا ہمارے معاہدے نہیں مانے جائیں گے. یعنی ہمارے جو ڈیمانڈ ہے, ہمارے جو خان کے ساتھ جو ناجائز ظلم ہو رہا ہے, تقریباً ایک سال سے بے گناہ, تین سال سے بے گناہ قید میں بند ہیں.
1: پارٹی کی پرمکھ مانگوں میں جیل میں بند عمران خان سے تتکال ملاقات اور انہیں ایسے اسپتال لے جانے کا فیصلہ شامل ہے جہاں ان کے نجی ڈاکٹر ان کی جانچ کر پائیں. عمران پچھلے قریب تین سال سے راولپنڈی کی ہائی سیکیورٹی ادیالہ جیل میں بند ہیں. انہیں بھرشٹاچار کے ایک معاملے میں دوشی ٹھہرائے جانے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا. ان کی پارٹی لگاتار ان کی رہائی کی مانگ کر رہی ہے. اس مارچ کے شروع ہوتے ہی پاکستان کی شریف سرکار اور منیر کی سینا کو سخت نردیش ہیں کہ عمران خان کی پارٹی کا ایک بھی کارکرتا اسلام آباد کی سیما میں نہ داخل ہو پائے. ایسے میں پی ٹی آئی کے کارکرتاؤں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے. پولیس نے اب تک 2000 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے. قریب ہفتے بھر میں اس مارچ کے اسلام آباد پہنچنے کی امید لگائی جا رہی ہے. خیبر کی افریدی سرکار اور منیر کی سینا کے بیچ ویسے ہی 36 کا آنکڑا ہے. سہیل افریدی جہاں اپنے علاقے میں سینا کے ظلم کے خلاف لگاتار آواز اٹھاتے رہے ہیں, وہیں شریف سرکار اور منیر کی سینا ان علاقوں میں الگاؤ وادیوں کو بڑھاوا ملنے کے آروپ لگاتی رہی ہے. خیبر میں آتم گھاتی حملوں میں پولیس اور سینا کو حال کے دنوں میں کافی نقصان بھی ہوا ہے. عمران خان کی پارٹی کا کہنا ہے کہ سرکار کے ظلم کے خلاف وہ اسلام آباد مارچ کو کامیاب بنا کر ہی دم لے گی. ہر علاقے سے لوگ اس میں جٹ رہے ہیں اور اپنے چہیتے نیتا کی رہائی کے لیے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. اس وقت پاکستان کئی مورچوں پر گھرا ہوا ہے. انتراشٹریہ استر پر وہ ایران اور سعودی عرب کے بیچ دھرم سنکٹ میں پھنس چکا ہے, تو گھریلو استر پر کئی راجیوں میں بغاوت پاکستان کے حکمرانوں کو چنوتی دے رہی ہے. بلوچستان اور خیبر سے لے کر پی او کے میں فوج اور پولیس کے ظلم کے خلاف لوگ سڑکوں پر اتر رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں شہباز شریف اور آصف منیر کی نیند اڑی ہوئی ہے. آج تک بیورو
0: دستک میں آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ پلیز اپنا بہت خیال رکھیے گا. شبھ راتری.
13: پریزنٹڈ بائی پتنجلی دنت کانتی ٹوتھ پیسٹ کمپلیٹ اورل ہیلتھ کا سچ ان ایسوسیشن ود
14: بھارت کی اپنی الیکٹرک سواری سوکوڈو.
15: سر گیسو فاسٹ کی گروتھ تو چیک کیجیے.
16: گیسو فاسٹ 27%,
15: اینو 9.2%.
17: گڑبڑ ہے.
18: آہا, گیسو فاسٹ والے جیرے کا جادو چلا رہے, اسی لیے ان کے چاہنے والے دن بدن بڑھتے ہی جا رہے. گیسو فاسٹ انڈیا کی ایسیڈیٹی کا اصلی انڈین سولوشن.
19: میرا رتبہ ہے میرا سگنیچر, میرا جذبہ ہے میرا سگنیچر, بے باک ہے میرا سگنیچر. Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbar Group.
20: اور بھائی کہاں گئے تھے گھومنے؟
21: جی کے میکس.
22: ویسے روہن پڑھائی میں کیسا ہے؟
21: جی کے میکس. بیسٹ پٹی؟
22: جے کے وال میکس.
21: بیسٹ پینٹ؟
22: جے کے میکس.
21: باقی سب سوالوں کا پتا نہیں, لیکن موسٹ بیوٹیفل والز کے لیے صرف جے کے میکس پینٹ. جے کے میکس, جے کے میکس پینٹ. خوشیوں کے رنگ.
23: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम.
24: EU
25: सोच बदलो और बैंक भी.
26: یہ ڈائبٹیز مجھے بار بار تھکا دیتا ہے.
27: اسی لیے دوائیوں کے ساتھ لیجیے کپیوا ڈائبٹیز جوس, جس میں ہے

0: सर गैसोफास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसोफास्ट 27%, इनो 9.2%।
1: गड़बड़ है।
2: आहा, गैसोफास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसोफास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbar Group.
4: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
5: GK Max.
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: GK Max. Best पुट्टी?
7: JK Wall Max.
5: Best paint?
8: JK Max.
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन most beautiful walls के लिए सिर्फ JK Max paints. JK Max. JK Max paints. खुशियों के रंग।
9: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
10: AU, सोच बदलो और बैंक भी।
11: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है,
12: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
11: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपिवा डायफ्री जूस।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: In association with Signature Finest Cardamom Seeds,
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
3: एक सौ पचास सीटों की कथित तौर पर मांग की गई थी आप ही की तरफ।
4: किसने किया 150 का? मैंने तो 200 की बात की थी, जिनके साथ हमारा गठबंधन है इंडिया ब्लॉक में। यूपी में तो हम दो पार्टी हैं, मैं बेसिकली तो कांग्रेस और सपा है। दोनों जिम्मेदार हैं, एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं और एक दूसरे को साथ के लेके भी चलना है। तो निश्चित तौर पर सीट शेयरिंग का मामला हमें अक्टूबर में निपटा लेना चाहिए ताकि हम अपने कैंडिडेट्स को टाइम दे पाएं। और हिस्सेदारी सम्मान बराबर होना चाहिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ। और साथ में ये भी कह रहा हूँ, हम लोग लचीले हैं भारत के संविधान की तरह। सम्मान की बात आए तो भारत के संविधान की तरह रिजिड है, सीट शेयरिंग की बात आएगी तो भारत के संविधान की तरह लचीले भी हैं, फ्लेक्सिबल भी हैं। थोड़ा बहुत झुकना पड़ेगा, झुकेंगे, क्योंकि जीतना जरूरी है, तो जीतने के लिए तो लड़ रहे हैं हम।
3: बट वो कह रहे हैं कि बात जीत की जाए सीट।
4: हाँ, तो हम भी तो जीत की कर रहे हैं।
3: आप सीट की बात कर रहे हैं,
4: सीट मिलेगी तभी तो जीतेंगे, चुनाव लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे, बिना लड़े कोई जीतता है क्या?
5: जीत तो महत्वपूर्ण है ही है, गठबंधन पाने की तरीके से एक है, सीटों की संख्या पर कोई झगड़ा नहीं। 403 की 403 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। सिंबल जिस क्षेत्र में जो जीत सकता होगा उस पार्टी का सिंबल होगा। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तय करेंगे। इसमें तो ये तो एक अच्छा बयान है श्री अखिलेश यादव जी।
6: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तो तय है, जहां तक सीट शेयरिंग की बात है ये ना अनुराग भदौरिया तय करेंगे, ना हमारे सांसद एसपी सिंह पटेल साहब तय करेंगे, ना ही कांग्रेस का कोई नेता सांसद तय करेगा। ये समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। लेकिन ये तय है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगी।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: उत्तर प्रदेश की खाली हुई राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी ने अपने 8 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। ये नाम है धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्णा पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार। इन 8 नामों में 2 अनुसूचित जाति है। अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 उम्मीदवारों में एक लोधी, एक पाल और एक कुर्मी जाति के हैं। सवर्ण जातियों में 2 ब्राह्मण और 1 राजपूत है। इन 8 उम्मीदवारों में 2 महिलाएं भी हैं। बीजेपी ने मौजूदा राज्यसभा सांसद रहे किसी को फिर मौका नहीं दिया है। टिकट नहीं पाने वाले जो सबसे खास नाम है वो है केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राज्य मंत्री BL वर्मा। यानी मोदी मंत्री परिषद में जल्द फेरबदल की संभावनाएं और बढ़ गई हैं। इससे पहले रवनीत सिंह बिट्टू का राज्यसभा टिकट कटने के बाद उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। उधर इन 8 नामों के जरिए 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव के समीकरणों को मजबूत करने की बीजेपी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के इन 8 उम्मीदवारों की घोषणा से पहले समाजवादी पार्टी 2 उम्मीदवारों का नामांकन करा चुकी है। फिर SP के उम्मीदवार बने रामगोपाल यादव का नाम तो पहले से तय था, लेकिन धनराज नाथवानी के नाम पर बहस जारी है। NDA समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बड़े अधिकारी परिमल नाथवानी के बेटे धनराज की उम्मीदवारी के बाद बीजेपी अखिलेश यादव के PDA पर सवाल उठा चुकी है
4: कि एक नई पीढ़ी नई सोच के व्यक्ति को मैं भेजने का समाजवादी पार्टी को मौका मिला है और समाजवादी पार्टी इस बदलते हुए दौर में जहां पर कई दलों का बहुत दबदबा है कॉरपोरेट वर्ल्ड में और कई उद्योगपति न केवल उद्योग का कारोबार कर रहे हैं या उद्योग चला रहे हैं, अर्थव्यवस्था में योगदान देने बल्कि समाज में भी वो समय समय पे काम करते हैं, उनकी सेवाएं भी हैं।
3: उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों में 7 पर बीजेपी और 2 पर समाजवादी पार्टी आसानी से अपने अपने उम्मीदवार जिता सकती है। 1 सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी है। ऐसे में अगर विपक्ष की ओर से कोई तगड़ा दावेदार मैदान में उतरता है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। आज तक ब्यूरो

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: आज से बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

एफआईआर के तहत फॉर्म 6 में बदलाव पर फंसा चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, हमने चेंज को नहीं दी थी मंजूरी, ईसी और केंद्र को थमाया नोटिस, ज्ञानेश के तुरंत निलंबन से इनकार। फॉर्म 6 को राहुल गांधी ने बताया बीजेपी ईसी की सांठगांठ का नतीजा, कहा अपनाया गया गैर कानूनी तरीका, बोला बीजेपी का पलटवार, कल संसद से ईसी ऑफिस तक विपक्ष का मार्च। चुनाव से पहले राज्यसभा सीट से जातीय समीकरण साधने में जुटी है बीजेपी, लिस्ट में 3 ओबीसी, 2 एससी और 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय के नाम, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, बीएल वर्मा आउट। मायावती ने फिर भतीजे पर दिखाई दया, कहा सियासत से ससुर के संन्यास के बाद सुधर गए हैं आकाश, वापस किया राष्ट्रीय संयोजक का पद। और बंगाल से आए घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जम्मू कश्मीर से वापस भेजे गए 150 लोग, बागडोगरा से बीएसएफ ने भेजेगी सीमा पास, 7 अक्टूबर को एक और कार्रवाई की तैयारी।

नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आसमान छूती एक इमारत की 43वीं मंजिल पर 29 साल का एक शख्स किराए पर एक कमरा लेता है। पूरी रात वो उसी कमरे में रहता है। फिर अगली सुबह वो उसी 43वीं मंजिल की रेलिंग के दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। इससे पहले वो अपने पिता को एक मैसेज भेजता है कि वो अपनी जान देने जा रहा है। कहानी यहीं से शुरू होती है।

0: ये देश की तीसरी और उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी कुल ऊंचाई है 984 फीट। इस इमारत में बननी है कुल 80 मंजिल। उन 80 में से 68 मंजिल बनकर तैयार है। यहाँ लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया है। यूपी की सबसे ऊंची बिल्डिंग का नाम है सुपरनोवा स्पायरा। पर किसी ऊंची बिल्डिंग की नीचे से ऐसी ऊंचाई वाली तस्वीर शायद ही कभी कोई देखना चाहेगा। मगर जिस शख्स ने खुद बिल्डिंग की रेलिंग पार कर ली हो और बस रेलिंग थामे खड़ा हो, उससे समझ लेना चाहिए कि वो मरने जा रहा है। ये वो तस्वीर है जिसे हम नीचे से ऊंचाई तक और ऊंचाई से नीचे तक ना आपको पूरा दिखा पाएंगे और ना ही आप उसे पूरा देखने की हिम्मत जुटा पाएंगे। पर जितना और जहां तक दिखा सकते हैं, उसी के जरिए आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। ये 29 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर संभव जैन है। गुरुग्राम के करीब मानेसर का रहने वाला संभव जैन गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को नोएडा की सबसे ऊंची इमारत सुपरनोवा स्पायरा में 43वीं मंजिल पर एयरबीएनबी का एक कमरा किराए पर लेता है, रूम नंबर 4228। उसने एयरबीएनबी पर ये रूम 1 अक्टूबर को ही बुक करा दिया था। 2 अक्टूबर को संभव जैन दोपहर 2:30 बजे यहाँ चेक इन करता है। पूरी रात यही अकेला गुजार देता है। फिर 3 अक्टूबर यानी शनिवार की सुबह होती है। सुबह करीब 11:30 बजे संभव जैन के रूम के ठीक बराबर रूम नंबर 4227 में एसी का काम चल रहा था। अचानक उस एसी टेक्नीशियन और उसके साथ मौजूद प्लम्बर की नजर कमरे के बाहर रेलिंग पर पड़ती है। तस्वीर बेहद डरावनी थी। एक शख्स रेलिंग की दूसरी तरफ बेहद खतरनाक ढंग से खड़ा हुआ था। जिस तरह वो रेलिंग की दूसरी तरफ खड़ा था, वैसा 43वीं मंजिल पर करने की कोई सोच भी नहीं सकता। जरा सा हाथ फिसला और मौत तय। इस बीच इतनी ऊंचाई पर रेलिंग की दूसरी तरफ खड़े इस शख्स पर जमीन पर मौजूद कुछ लोगों की भी नजर पड़ती है। वो फौरन उसकी तस्वीरें उतारनी शुरू कर देते हैं। तभी वो शख्स अब रेलिंग की दूसरी तरफ धीरे धीरे सरकना शुरू कर देता है। 43वीं मंजिल पर मौजूद एसी टेक्नीशियन और प्लम्बर ये देखते ही फौरन संभव जैन के करीब जाते हैं। तब तक वहां 2 और लोग पहुंच चुके थे। अब कुल 4 लोग रेलिंग के इस तरफ थे और संभव रेलिंग की उस तरफ। अब सभी संभव को समझाना शुरू करते हैं, उसे वापस इस तरफ आने के लिए कहते हैं, उसे मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनकी हर कोशिश के जवाब में संभव बार बार यही दोहराता है कि अब वो जीना नहीं चाहता, वो डिप्रेशन में है, मरना चाहता है। फिर भी वो उसे बातों में उलझाकर और समझाकर लगातार उसे मनाने की कोशिश करते रहे। ये सिलसिला अगले कई मिनट तक चलता रहा। इधर इस इमारत से लगभग 70 किलोमीटर दूर हरियाणा के मानेसर में संभव के पिता लगातार उसे फोन करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल रेलिंग की दूसरी तरफ जाने से ऐन पहले संभव ने अपने पिता को मोबाइल पर मैसेज भेजा था। इस मैसेज में उसने लिखा था कि वो मरने जा रहा है, साथ ही ये भी लिखा था कि अब उन्हें यानी उसके पिता को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी को पैसे देने पड़ेंगे। मैसेज पढ़ते ही संभव के पिता लगातार उसे फोन कर रहे थे, लेकिन संभव तब तक यहाँ रेलिंग के इस पार पहुंच चुका था। संभव असल में परेशान था। 2 साल पहले यानी 2024 में उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद 2025 में उसे एक बेटा हुआ, लेकिन बेटे की पैदाइश वक्त से पहले हो गई थी, यानी प्री मैच्योर डिलीवरी। इसी की वजह से बेटा बीमार रहता था, उसकी तबीयत हमेशा खराब रहती। बीते 1 साल में उसके इलाज पर 40 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च हो चुके थे। बेटे की बीमारी संभव को परेशान कर ही रही थी कि ठीक उसी वक्त पत्नी से भी उसके रिश्ते खराब हो गए। शादी के 2 साल के अंदर अंदर ही दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद संभव को अपनी पत्नी को एलुमिनी यानी गुजारा भत्ता के तौर पर हर महीने एक अच्छी खासी रकम देनी पड़ती थी। इन सब के अलावा खुद संभव जैन की अपनी सेहत भी पूरी तरह ठीक नहीं थी और इन्हीं सारी परेशानियों के बीच 3 अक्टूबर की सुबह वो इस रेलिंग पर आ खड़ा हुआ। वहां मौजूद लोग अब भी संभव जैन के बिल्कुल पास खड़े थे, इतने पास कि हाथ पकड़कर उसे दूसरी तरफ खींचा जा सकता था, मगर इसमें रिस्क था। रिस्क ये कि संभव रेलिंग से हाथ छोड़ सकता था, इसीलिए चारों पूरी सावधानी से उससे बातें कर रहे थे, उसे अब भी समझाने मनाने के साथ साथ बस उस पल का इंतजार कर रहे थे जब उसे पकड़कर रेलिंग की दूसरी तरफ खींच सके। इधर धीरे धीरे नीचे भी लोग जमा होते जा रहे थे। हर कोई इस डरावने मंजर को अपने कैमरे में कैद करने में लगा था, इस उम्मीद में कि थोड़ी देर बाद शायद वो शख्स रेलिंग की दूसरी तरफ चला जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। पर अफसोस, अब तक कई मिनट बीत चुके थे। फिर वो पल आया जब 4 में से 2-3 लोगों ने हाथ बढ़ाकर संभव जैन का हाथ पकड़ने की कोशिश की। संभव का हाथ उन लोगों के हाथ में आ भी चुका था, मगर तभी
1: गया, गया, गया, गया, गया, गया, गया, गया।

0: तभी शायद हाथ छूट जाता है, या शायद संभव खुद रेलिंग से हाथ हटा लेता है। इसके बाद एक चीख गूंजती है, फिर उसी चीख के साथ साथ एक धमाके जैसी आवाज आती है। चीख 43वीं मंजिल से आई थी। और धमाके की आवाज 43 मंजिल नीचे जाकर जब संभव गिरा, तब वो उसके गिरने के धमाके की आवाज थी। इसके बाद एक संभव जैन नीचे दूर दूर तक टुकड़ों में फैल चुका था। भूपेंद्र चौधरी, नोएडा, आज तक। वृंदावन में मौजूद संत प्रेमानंद महाराज का एक आश्रम पिछले कुछ दिनों से गलत वजहों से चर्चा में है। 25 सितंबर को एक शिष्य आश्रम की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे देता है। इस पूरे मामले की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई है। हालांकि खुदकुशी की वजह अब तक साफ नहीं है, लेकिन खुदकुशी से आयन पहले की चंद तस्वीरें इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े करती हैं।
1: ये हाल के दौर की सबसे चर्चित और सबसे रहस्यमयी सुसाइड मिस्ट्री से जुड़ी तीन तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर एक गली नुमा सड़क की है। सीसीटीवी कैमरे की इस तस्वीर में तारीख 25 सितंबर 2026 की है, जबकि वक्त सुबह के 10:36 हो रहे हैं। सड़क के किनारे कुत्ते आराम फरमा रहे हैं, इक्के दुक्के लोगों की आवाजाही जारी है। तभी अचानक ऊपर से कोई चीज बड़ी तेज आवाज के साथ नीचे आकर गिरती है, और जब तक कुछ समझ में आता है वहां मौजूद लोग ये मंजर देखकर सहम उठते हैं। असल में ऊपर से गिरने वाली ये चीज कोई बेजान शय नहीं, बल्कि हमारे और आपके जैसा ही एक इंसान है, जो शायद काफी ऊंचाई से गिरने के चलते छटपटाकर शांत हो जाता है। अब इस सुसाइड मिस्ट्री से जुड़ी एक और तस्वीर देखिए। ये तस्वीर भी उसी बिल्डिंग की है, जिस बिल्डिंग की ऊंचाई से अभी अभी एक शख्स नीचे आ गिरा है। तस्वीरें उस हादसे से फकत 15 से 16 मिनट पहले की है, इसीलिए कैमरे की घड़ी में वक्त सुबह के 10:15 का शो हो रहा है। कैमरा बिल्डिंग की सीढ़ियों को कैप्चर कर रहा है, और इन्हीं सीढ़ियों से सफेद धोती और पीले रंग का अंगोछा ओढ़े एक शख्स होले होले ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसकी चाल सामान्य नहीं है, बल्कि उसे देखकर लग रहा है कि शायद वो किसी तकलीफ में है और लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा है। उसने अपने हाथ में भी एक पीले रंग का कपड़ा पकड़ रखा है, जबकि उसके शरीर के निचले हिस्से में धोती पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह ऊपर चढ़ता हुआ ये शख्स बिल्डिंग की छत पर पहुंचता है और कैमरे की जद से बाहर चला जाता है। अब इसी वाक्य से जुड़ी ये तीसरी और आखिरी तस्वीर भी देखिए, जो शायद पहले की दोनों तस्वीरों के मुकाबले ज्यादा खतरनाक, ज्यादा बेचैन करने वाली और ज्यादा डरावनी है। सीढ़ियों से ऊपर पहुंचा वही शख्स छत पर काफी देर तक बेचैन नजर आता है। वो कभी छत की मुंडेर पर कुछ देर के लिए बैठा हुआ दिखता है, और फिर बेचैनी के आलम में ही छत पर लेट जाता है। इस दौरान फर्श पर लेटे हुए भी वो अपने दोनों पैर मोड़ कर रखता है, मानो फर्श पर लेटे लेटे अपने जख्मों से थोड़ी राहत पाने की कोशिश कर रहा हो। और फिर अचानक बहुत अप्रत्याशित तरीके से वो उठकर खड़ा होता है, और फिर दौड़कर सीधे छत की मुंडेर पर चढ़ता है और बिल्कुल कोने वाले हिस्से से नीचे कूद जाता है। उसके कूदने की आवाज और शायद लोगों का शोर सुनकर एक शख्स दौड़ता हुआ छत पर आता है और घबरा कर नीचे झांकता हुआ दिखाई देता है, जबकि इसके आगे की तस्वीरें आप पहले ही देख चुके हैं।
2: घटनाक्रम इसमें इस प्रकार रहा कि दिनांक 25/9 को समय लगभग 10:30 बजे पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि मथुरा के सर्वोदय अस्पताल में एक व्यक्ति घायल अवस्था में आके यहाँ पे एडमिट हुआ है। सूचना पे तत्काल पुलिस में जांच स्टार्ट करते हुए जब जानकारी किया गया तो पता लगा कि ये गुरु कृपा कुंज जो कि केली कुंज आश्रम से संबंधित है, वहाँ पे एक इनके साधक रसिक दुलारी शरण जी रहते थे जो दीपक लोधी मूलतः जबलपुर के रहने वाले थे। ये जब अपने आश्रम में रह रहे थे तो उस दौरान इनके द्वारा जो जांच के दौरान प्रकाश में आया कि इनके द्वारा चौथी मंजिल की छत से जाके कूद के इनके द्वारा प्रथम दृष्टया आत्महत्या की किए जाने की घटना सामने आई थी।
1: यानी कुल मिलाकर इन तस्वीरों से साफ है कि चौथी मंजिल से नीचे गिरने वाले शख्स की मौत कोई हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या ही है। लेकिन इस आत्महत्या के इर्द गिर्द इस वाकये से जुड़े इतनी अजीब और चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, जिसने मामले को पेचीदा कर दिया है। और इन बातों में सबसे अजीब बात उस ग्राइंडर मशीन की है जो इस शख्स के कमरे से बरामद हुई, और इल्जाम है कि उसी ग्राइंडर से पहले इस शख्स ने अपने प्राइवेट पार्ट को काटा और फिर उसने ऊपर से छलांग लगा दी। एक सुसाइड मिस्ट्री से जुड़ी इस रहस्यमयी बात की चर्चा आगे करेंगे, लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए सुसाइड करने वाले शख्स के बारे में पहले जान लेना जरूरी है। ये मामला वृंदावन का है और इमारत की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान देने वाले इस शख्स का नाम है दीपक लोधी उर्फ रसिक दुलारी शरण। 25 साल का रसिक दुलारी शरण मशहूर संत प्रेमानंद जी का शिष्य था और करीब 2 साल पहले उनसे दीक्षा लेने के बाद वृंदावन में ही रह रहा था। जिस बिल्डिंग की छत से कूदकर रसिक दुलारी शरण ने खुदकुशी की, उस बिल्डिंग को गुरु कृपा कुंज आश्रम के नाम से जाना जाता है जो वृंदावन के वराह घाट मार्ग पर मौजूद है। इस आश्रम को संत प्रेमानंद के केली कुंज आश्रम से जुड़ा हुआ बताया जाता है। 25 सितंबर की सुबह सवेरे संत प्रेमानंद के एक शिष्य के यूं चौथी मंजिल से कूदकर खुदकुशी करने के मामले ने खुद शिष्य के घर वालों के साथ साथ तमाम लोगों को उलझा दिया है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस सुसाइड की वजह क्या है, इसका रहस्य क्या है।
3: तुम्हारे साले थे प्रेमानंद जी के यहाँ रहते थे, क्या हुआ उनके साथ? सबसे पहले
4: एक्चुअली ये चीज तो हम लोग को पता नहीं है, फोन गया था एक, हम लोग को इस बारे में पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है कि वो गिर गए हैं तो ऑपरेशन के लिए बोल रहे हॉस्पिटल में। उसके द्वारा फिर हम लोग आए तो हम लोग इधर पहुंचे 3 बजे रात को। तो फिर प्रेमानंद महाराज के आश्रम गए तो उन लोग से पूछे तो उन लोगों ने कुछ नहीं बताया कि बाहर बैठे तुम लोग। हम लोग बाहर बैठे हुए थे तो बाहर बैठे थे तो उन्होंने कुछ नहीं बोला कि बैठो, सुबह 8 बजे के बाद मिलना। 8 बजे बैठे रहे तो किसी ने कुछ नहीं पूछा। हम लोग को लगभग 9 बज गया उधर, और उधर से निकले फिर हम लोग आए तो अभी भी कुछ नहीं बताया उन लोग ने। फिर अच्छी जब आए हैं इधर,
3: कब से रह रहे थे यहाँ पे?
4: इधर रह रहे थे 2024 से।
1: अब बात इस सुसाइड केस के सबसे अहम पहलू की, जिसे लेकर रहस्य तो गहरा है ही, चर्चाओं का बाजार भी बेहद गर्म है। सूत्रों की माने तो जब इस सुसाइड केस की जांच करने वृंदावन पुलिस गुरु कृपा कुंज आश्रम में रसिक दुलारी शरण के कमरे में पहुंची तो वहां का मंजर देखकर सोच में पड़ गए। आश्रम के कमरे में एक ग्राइंडर रखा हुआ था जिससे आमतौर पर पत्थर या लोहे जैसी सख्त चीजों को काटने का काम लिया जाता है। इसके साथ ही कमरे में पुलिस को कुछ खून के धब्बे भी मिले, जिससे शक है कि शायद इस ग्राइंडर के जरिए रसिक दुलारी ने खुद को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की थी। वैसे भी जिस तरह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए इस शख्स के लंगड़ा कर चलने और कपड़ों में खून के धब्बों के मौजूद होने की बात सामने आई है, उससे इस बात को मजबूती मिलती है कि शायद इस शख्स ने खुदकुशी करने से पहले अपने आप को घायल किया था। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रसिक दुलारी शरण के शरीर में ऊपर से गिरने से आई चोटों की मौजूदगी का तो जिक्र है ही। सूत्रों का दावा है कि रसिक दुलारी का प्राइवेट पार्ट भी कटा हुआ था और शरीर का वो हिस्सा बेहद लहूलुहान था। उसकी मौत की वजह भी ऊपर से गिरने की वजह से लगी चोटों के साथ साथ हेमरेज यानी ब्लड लॉस को बताया गया है, और मुमकिन है कि इस ब्लड लॉस में उनके प्राइवेट पार्ट का पहले से कटा होना भी एक वजह हो। कुछ सूत्रों का कहना है कि जब पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया तब तक उसका प्राइवेट पार्ट कट कर अलग हो चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर रसिक दुलारी शरण ने खुदकुशी करने से पहले खुद ही अपना प्राइवेट पार्ट काट लिया या फिर खुद को नुकसान पहुंचाया तो उसकी वजह क्या रही? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आश्रम में मौजूद किसी और शख्स ने पहले उसके साथ ज्यादती की हो, उसे नुकसान पहुंचाया हो और फिर अंत में उसने छत से कूद कर जान दे दी हो? फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उसने तफ्तीश के सारे ऑप्शंस खोल रखे हैं।
5: पीएम हुआ कल, क्या रिपोर्ट आई पीएम की? जिस तरह उनका प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था बताया जा रहा है, उससे ब्लीडिंग भी हुई, तो क्या रिपोर्ट आई है पीएम की?
2: पीएम में हेमोरेजिक शॉक है, जिसका तात्पर्य होता है कि ब्लीडिंग ज्यादा हो गई है। तो अभी तक के जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, जो काज ऑफ डेथ है हेमोरेजिक शॉक है।
5: तो जो उनका प्राइवेट पार्ट था वो कट गया, उसके बाद वहीं से ब्लीडिंग हुई, वही डेथ का कारण रहा?
2: ब्लीडिंग होने का सबसे बड़ा रीजन तो यही होगा, इसके बारे में बाकी तो एक्सपर्ट बताएंगे, डॉक्टर बताएंगे। गिरने से भी चोटें आई थी, गिरने से भी इनको चोट आई थी, उसके कारण भी ब्लीडिंग हुई है।
1: उधर इस वारदात की जानकारी मिलने पर जबलपुर से वृंदावन पहुंचे रसिक दुलारी शरण के घर वालों का इल्जाम है कि इस मामले में कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर है जिसकी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ सकती है। उनका कहना है कि जब से दीपक लोधी ने संत प्रेमानंद से दीक्षा ली थी और जब से वो वृंदावन में रह रहा था, तब से उसका संपर्क घर वालों से बिल्कुल खत्म हो चुका था। घर वाले अगर कभी कभार उससे मिलने की कोशिश भी करते थे तो आश्रम की तरफ से उन्हें लंबा इंतजार करवाया जाता था या फिर बैरंग लौटा दिया जाता था। यही वजह है कि वो चाहकर भी संन्यास लेने के बाद कभी दीपक से नहीं मिल सके।
5: हाँ, उनके परिवारी जन भी मौजूद थे, उनके भाई थे, उनके बहनोई थे, उनसे बात हुई तो कभी वो लोग यहाँ आते थे तो बताते कि मिलने नहीं दिया जाता था। उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दी है, तो उसमें क्या कार्रवाई की जा रही है?
2: मृतक के भाई मनीष हैं, इनके द्वारा एक शिकायत दी गई है कि हम लोग यहाँ इनसे मिलने के लिए पूर्व में आए थे तो इनसे इनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी, आश्रम के लोगों से संपर्क किया गया था तो ये आश्रम के लोगों के द्वारा उनका ये कहना है कि हमको मिलने नहीं दिया गया है और वो इसके बारे में उन्होंने एक शिकायत दिया है। शिकायत में उनका ये मांग है कि इसकी गहराई से जांच किया जाए।
1: इस बीच आश्रम के नियम कानूनों को लेकर भी अब कई तरह की बातें कही जा रही हैं। खबरों की माने तो आश्रम में एंट्री के बाद साधकों से उनका मोबाइल फोन और सिम कार्ड तक ले लिया जाता था और उन्हें नया फोन और सिम कार्ड दिया जाता था ताकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटीज पर निगरानी रखी जा सके। पुलिस इन बातों के साथ साथ कई और पहलुओं की भी जांच कर रही है। हालांकि प्राइवेट पार्ट काटने को लेकर ब्रह्मचर्य के पालन से जुड़ी कुछ संभावित थ्योरीज भी सामने आई है। एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि शायद रसिक दुलारी ने ब्रह्मचर्य का ज्यादा ही सख्ती से पालन करने के चक्कर में या फिर किसी अपराध बोध के चलते खुद को नुकसान पहुंचा लिया, अपना प्राइवेट पार्ट काट लिया और फिर हताशा में ऊपर से छलांग लगाकर जान दे दी।
5: जो जांच की आपने अभी तक, तो जो आत्महत्या का मामला है तो उसमें क्या निकल कर आ रहा है, क्यों, क्या कारण रहे जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए?
2: ये अभी तक की जो हमारी जांच है, प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। क्यों ये घटना हुई है, किन कारणों से हुई है, इसके बारे में हम लोग सभी जितने भी एंगल हो सकते हैं गहराई से जांच करेंगे।
1: जबलपुर से धीरज शाह के साथ मदन गोपाल शर्मा, वृंदावन आज तक।
0: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: जो पंजाब में आज सरकार में है उनको लेकर कोर्ट में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने, उसमें दो जजेस के खंडपीठ ने, जस्टिस चीफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा एंड जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने एक पीआईएल पे यह निर्णय दिया है कि भगवंत मान जी के जो ओएसडी हैं और उनके जो करीबी लोग हैं, भ्रष्टाचार का आरोप जो ईडी के कारण उन पर लगा है, उस विषय पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच करे कि भगवंत मान जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और अरविंद केजरीवाल जी के खास हैं, उनके ओएसडी और भगवंत मान जी के खास लोगों द्वारा जिस प्रकार का घोटाला किया जा रहा था, आज पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने उस पर सीबीआई जांच को प्रोसीड करने के लिए कहा है और यह भी कहा है कि 2 महीनों के अंदर लगभग 60 दिनों में सीबीआई इसे कंप्लीट करे और इसका रिपोर्ट सबमिट करे।
8: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: अक्टूबर के महीने में बिहार में बाढ़ की ये तस्वीर छपरा की, जहां गंडक का पानी तबाही मचा रहा है। ड्रोन कैमरे में कैद ये तस्वीरें बाढ़ के कहर को दिखा रही हैं, जहां दूर दूर तक चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर टापू बन गए हैं, खेत खलिहान डूब चुके हैं और सड़कें पानी में गुम हो गई हैं। गंडक के पानी से कई बांध टूटने के बाद 200 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। अब गोपालगंज में बाढ़ के कहर की इस तस्वीर को देखिए। गोपालगंज के शीतलपुर बांध के टूटने के बाद बाढ़ का पानी घरों के साथ साथ स्कूलों में भी घुस गया। किताबें पानी में डूब गईं, स्कूलों में पढ़ाई ठप हो गई है और इसी बीच एक छोटे से बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पानी में डूबी किताबें हाथ में लेकर ये बच्चा शिक्षा मंत्री से सवाल कर रहा है, बाढ़ में किताबें और स्कूल डूब गए, अब पढ़ाई कैसे होगी?
1: स्कूल डूब गया है, घर डूब गया है, इधर की साइड पूरा पानी भर गया है, तो लोग कहाँ जाएंगे, लोग कहाँ पढ़ेंगे, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तो इसीलिए मेरा आपसे ये विनती है कि स्कूल जो है डूबे हैं, जितना भी घर डूबा है, पानी घुसा है, तो इसका कुछ ना कुछ उपाय करे, और ना ऐसे ही रहेगा तो कब तक चलेगा। अभी गंडक नदी का बहाव बहुत तेजी से है, जल स्तर बढ़ रहा है, नेपाल का डैम का पानी होल हो गया है, तो होल से और इतना पानी आ रहा है, तो 5 लाख लीटर पानी अभी यहाँ पे आया है, छोड़ा गया है डैम से। तो आप जो शिक्षा मंत्री हैं, तो यहाँ पे क्यों कोई सुविधा नहीं है? आप तो शायद यहाँ के MLA भी थे, शिक्षा मंत्री हैं आप, तो देख सकते हैं स्कूल डूब गया है, किताबें भीग गई है, घरों में पानी चला गया है।
0: बिहार में बाढ़ के बीच अब सियासत भी तेज हो गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने। विपक्ष जहां सरकार से राहत कार्यों में तेजी लाने और प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने की मांग कर रहा है, वहीं सरकार की ओर से राहत और बचाव के लिए लगातार कदम उठाने का दावा किया जा रहा है। बिहार में बाढ़ सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। एक तरफ बाढ़ पीड़ित राहत के इंतजार में है, तो दूसरी तरफ अभिज्ञान जैसे बच्चे अपनी डूबी हुई किताबों के साथ अपने भविष्य को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। आज तक ब्यूरो,

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

एसआईआर के तहत फॉर्म 6 में बदलाव पर फंसा चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, हमने चेंज को नहीं दी थी मंजूरी, ईसी और केंद्र को थमाया नोटिस, ज्ञानेश के तुरंत निलंबन से इनकार। फॉर्म 6 को राहुल गांधी ने बताया बीजेपी, सीसी की सांठगांठ का नतीजा, कहा अपनाया गया गैर कानूनी तरीका, आग बबूला, बीजेपी का पलटवार, कल संसद से ईसी ऑफिस तक विपक्ष का मार्च। चुनाव से पहले राज्यसभा सीट से जाति समीकरण साधने में जुटी बीजेपी, लिस्ट में 3 ओबीसी, 2 एससी और 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय का नाम, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और वीएल वर्मा आउट। मायावती ने फिर भतीजे पर दिखाई दया, कहा सियासत से ससुर के संन्यास के बाद सुधर गए आकाश, वापस किया राष्ट्रीय संयोजक का पद। और महाराष्ट्र में हिंगोली में पटाखा गोदाम में लगी आग, 2 की मौत हुई, 7 घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

0: एमपीएससी अभ्यर्थियों का पुणे में जोरदार प्रदर्शन, परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक और प्रशासनिक देरी को लेकर चेयरमैन विवेक भीमनवार व सचिव के इस्तीफे की मांग की गई। मुंबई में आदिवासी छात्रों का प्रदर्शन, कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार को बताया आदिवासी विरोधी। आदिवासी छात्रों को हिरासत में लेने पर राहुल गांधी का फडणवीस सरकार पर हमला, बोले अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का 5 लाख रुपए का मुआवजे का आदेश रद्द किया। खाद्य विषाक्तता की शिकायत पर एफडीए की कार्रवाई को जनहित में उचित माना। अकोला एफडीए की बड़ी कार्रवाई, अहमदाबाद से आया 1900 किलो खोया जब्त किया गया। 5 लाख रुपए की कार्रवाई, त्योहार से पहले खाद्य विभाग की छापेमारी। मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, एपी के फाइल बनाने वाला 36 साल का बीटेक ड्रॉप आउट गिरफ्तार। एपी के फाइल के जरिए देश भर में की 150 करोड़ की साइबर ठगी। मुंबई के अनेक बस डिपो में भीषण आग लगी, खाली इलेक्ट्रिक बेस्ट बस जलकर खाक। मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में रामायण के सेट पर लगी थी आग, मच गई थी अफरा तफरी। मुंबई के ऐतिहासिक बाणगंगा टैंक पर सैकड़ों मछलियां मृत मिली हैं। पितृपक्ष के दौरान प्रदूषण की आशंका, बीएमसी ने स्थानीय लोगों और पुजारियों को बैठक बुलाई। हिंगोली में पटाखे के एक गोडाउन में लगी थी भीषण आग, 2 लोगों की मौत हुई है, 7 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अभिनेता अविनाश मिश्रा ने खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 का खिताब जीता है, शानदार प्रदर्शन करके चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम की। साजिद खान की अगली कॉमेडी ड्रामा फिल्म में अक्षय कुमार और आर माधवन पहली बार साथ नजर आएंगे। फिल्म की स्टारकास्ट में दिशा पटानी और श्रिया सरन भी शामिल हैं। अनिल कपूर की फिल्म सूबेदार ने एशियन अकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स में बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब अपने नाम किया, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय सिनेमा का गौरव बढ़ाया। रश्मिका मंदाना महान कर्नाटक संगीत गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी की बायोपिक एमएस अ लेगेसी ऑफ स्क्रीन में नजर आएंगी। रश्मिका ने खुशी जाहिर करते हुए खुद को भाग्यशाली बताया। दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट फिल्म रामायण के प्रमोशन के लिए पहुंचे हैं मुंबई। रणबीर कपूर और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के साथ तस्वीरें खिंचवाई। 5 से 7 अक्टूबर तक होने वाली आरबीआई की एमपीसी की बैठक में होम और कार लोन की ईएमआई बढ़ने का अनुमान। नाइट फ्रैंक के मुताबिक बड़े शहरों में घरों की बिक्री पर दबाव बढ़ गया है। एनसीआर में बिक्री 11% की बड़ी गिरावट देखी गई है। मुंबई बेंगलुरु जैसे बाजारों में हाउसिंग सेल्स में मामूली बढ़त रही। लोकल सर्किल्स के मुताबिक यूपीआर एमडीआर का बोझ ग्राहकों पर पड़ने से बड़ी संख्या में लोग बड़े पेमेंट्स के लिए कैश या कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। सरकार का कहना है कि ये चार्ज ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा। 7 अक्टूबर की बैठक में बड़े सुधारों को मंजूरी दे सकता है जीएसटी काउंसिल। इसके बाद टैक्स अधिकारी बिना कोर्ट ऑर्डर नहीं कर पाएंगे गिरफ्तार। एफएसएसएआई की जांच में एवरेस्ट के प्री पैक जीरा पाउडर के एक बैच में तय सीमा से ज्यादा कीटनाशक अवशेष मिले। क्रिएटिव बेकर्स का लाइसेंस भी सफाई में खामियां मिलने के बाद सस्पेंड किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है महाराष्ट्र के हिंगोली से, जहां पटाखा गोदाम में भीषण आग लगी है और आग लगने से पटाखा गोदाम में ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद 2 लोगों की जान चली गई। मौके पर 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी भी इसमें बताया जा रहा है जो झुलस गया है। फिलहाल यह आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन सबसे पहले कोशिश है कि जल्द से जल्द जो मजदूर भीतर फंसे हुए उन्हें बाहर निकाला जाए। तो 7 लोगों के गंभीर रूप से झुलसने की खबर है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों को यहां से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। 2 लोगों की जान जाने की खबर है। एक फायर सुरक्षाकर्मी भी बुरी तरह से झुलस गया है। ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी एजाज जुड़ गया। एजाज, क्या ताजा जानकारी है, क्या काबू पा लिया गया है आग पर?
1: देखिए, आग पे जो है अभी फिलहाल जो है काबू करने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड लगातार कोशिश कर रही है कि चारों तरफ से आग को बुझाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि कहीं अंदर में और कोई लोग तो फंसे हुए ना हो सके। लेकिन जो दुखद खबर यह है कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 7 से अधिक लोग जो है घायल हो गए हैं। इन घायलों में जो सदर अस्पताल के जो डीन है उनके मुताबिक 3 लोगों की जो हालत गंभीर है, इसलिए उन सभी को दूसरे अस्पताल में जो बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। वहीं इस हादसे में जो है एक फायर ब्रिगेड का कर्मचारी भी है घायल हुआ है, उसका भी जो है इलाज किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ये भी अब जांच कर रही है कि आखिर ये जो चूंकि शहर के बीच में ये गोदाम है, गोदाम में किस तरह इतने सारे पटाखों को रखा गया था, उनके पास वैलिड परमिशन था कि नहीं है, इन सभी चीजों को भी लेकर प्रशासन जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द आग को काबू में पाया जा सके और अंदर में एक बार फिर से जाकर जांच किया जा सके कि अंदर कोई मजदूर फंसा हुआ तो नहीं है, क्योंकि जो दो मजदूर है उनकी अब तक जो है जानकारी मिल पा रही की पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि गंभीर रूप से वो पूरी तरह जो झुलस गया था इस वजह से उसकी अभी पहचान नहीं हो पाई।
0: हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात है और पटाखों की फैक्ट्री है, तो धमाका होने के बाद आग पर काबू पाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। दो लोगों की जान चली गई है, 7 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं और एक फायर कर्मचारी भी इस आग को बुझाने में झुलस गया है, उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे बढ़ेंगे। पुणे में महाराष्ट्र सेवा लोक सेवा आयोग के खिलाफ आवाज बुलंद होती जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कि छात्र एमपीएससी के चेयरमैन के इस्तीफे की मांग पर अब अड़ गए हैं। उनके समर्थन में शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार गुट और साथ ही कांग्रेस के साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी भी खुलकर सामने आई है। पूरा विपक्ष एकजुट होकर कह रहा है कि अगर छात्रों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो पूरे सूबे में जोरदार प्रदर्शन होगा।
2: एमपीएससी यानी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ पुणे में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, भर्ती में देरी और एमपीएससी में कामकाज को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है।
3: पहले तो हमने सत्याग्रह चालू किया था, लेकिन अभी अनशन पे बैठे हैं। हमारी पहली मांग है कि इस्तीफा चाहिए हमें, तो चेयरमैन का नहीं चाहिए। जो बॉडी है पूरी बॉडी हमें बर्खास्त करके जो नई बॉडी आनी चाहिए और हमें पूरा पारदर्शी कारोबार चाहिए। और दूसरी बात तो मैं खुद सोच में पड़ चुका हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि टाइम टेबल फिक्स नहीं है। जैसा यूपीएससी का टाइम टेबल फिक्स है वैसा ही एमपीएससी का टाइम टेबल फिक्स नहीं है। 4 साल हो गए, 4 साल में एक भी एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हुई, तो एग्ज़ाम टाइम पे होना चाहिए और पूरा पारदर्शक। और हमारी पहली मांग यही है कि हमें बस इस्तीफा चाहिए। और क्यों चाहिए तो ये सरकार को भी पता है, क्योंकि बच्चों ने ही सरकार को विद प्रूफ दिए है कि पेपर लीक हुआ था। सरकार ने नहीं, पेपर लीक हुआ ये सरकार ने नहीं खोजा, ये खोज हमने की।
2: छात्रों के प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके भी पहुंचे। दिपके ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए एमपीएससी चेयरमैन विवेक भिनमवार के इस्तीफे की मांग की।
4: महाराष्ट्रात 20 लाख जवळपास एमपीएससी जो विद्यार्थी आहे ज्यांचं भविष्यावर खूप मोठा प्रश्नचिन्ह आहे, कारण की वारंवार पेपर लीक होत असतात आणि त्यानंतरही सरकारला कुठेही याचं सिरियसनेस कळत नाहीये। आणि ज्या मुलांच्या डिमांड आहेत की भिमनवार यांचा राजीनामा झालाच पाहिजे, त्याचा कॉकरोच जनता पार्टी पूर्णपणे समर्थन करते। आणि जोपर्यंत त्यांचा राजीनामा होणार नाही ते हे आंदोलन चालू राहील आणि या आंदोलनाला कॉकरोच जनता पार्टीचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे।
5: कृषी पत्र पोस्ट लागना हाताला, कारण 200 जागा सुटल्या आणि 4 लाख फॉर्म भरले, पुस्तकांनी खोली भरली, दुःख काळ जात पुरले, जाळून काढल्या राती।
2: छात्रों के आंदोलन में मराठी सिंगर और रैपर भी पहुंच रहे हैं। इन छात्रों की मुख्य मांगे हैं एमपीएससी चेयरमैन का इस्तीफा हो, 70,000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा को तुरंत लागू किया जाए, छात्रों से सलाह मशवरे के बाद साफ छवि वाले नए चेयरमैन की नियुक्ति हो, सभी एमपीएससी परीक्षाएं ऑफलाइन हो, परीक्षा से जुड़े कई मामलों की एसआईटी निष्पक्ष जांच करे, राजस्थान की तर्ज पर साल भर आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए एक कैलेंडर बने।
6: जो ओवरऑल सिनेरियो है पूरे कंट्री का इस वक्त, तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग जो प्रोटेस्ट है वो शुरू है, जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट शुरू है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू है, एक जो हमें इलेक्शन कमीशन का ज्ञानेश जी का जो हमें इस्तीफा लेना है वो वाला प्रोटेस्ट शुरू है। सो सर, लुकिंग एट द टोटल सिनेरियो ऑफ आर कंट्री, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे रूलिंग गवर्नमेंट ने ये सोचना चाहिए कि इसमें हम बेटरमेंट कैसे ला सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली देयर आर सम चैलेंजेस, सो उसको बेटरमेंट की ओर ले जाना चाहिए है। आपने जो फॉल्ट्स हुए वो ऑलरेडी आपके एक्शंस ने वो एक्सेप्ट किए हैं। अगर आप खुद री एग्जाम ले रहे हो हमारा, तो इसका मतलब यू आर एक्सेप्टिंग दैट कि फेल्यूअर तो हुआ है कहीं ना कहीं पेपर लीक तो हुआ है, तो अल्टीमेटली जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना चाहिए और उसका इनिशिएशन शुरू होना चाहिए, और जो हमारे अध्यक्ष जी हैं एमपीएससी के, उनका जो राजीनामा है उसका इनिशिएशन आप कीजिए आपके साइड से। अगर आप बोल रहे हो कि वो एक प्रोसीजर है, तो वो प्रोसीजर कब शुरुआत होगी? कैसा है ना, हमारी कंट्री जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट? और ऑल ऑफ जो जितने भी इंस्टीट्यूशन है फिलहाल जिनके ऊपर क्वेश्चन है, वो सबके सब कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, राइट? जैसे एमपीएससी हो गई, इलेक्शन कमीशन हो गया, तो इसके अंदर हम बेटरमेंट कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में गवर्नमेंट ने जल्दी से जल्दी सोचना चाहिए और उसके लिए इनिशिएशन उन्हें प्रोसेस शुरू करना चाहिए, ये हमारी मांग है।
2: इस प्रदर्शन में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत और एनसीपी शरद ग्रुप के विधायक रोहित पवार भी शामिल हुए। छात्रों ने सांकेतिक तौर पर एमपीएससी की एक शव यात्रा निकालकर नया चेयरमैन नियुक्त करने की मांग की।
7: अभी सिर्फ एमपीएससी पे है, वो फोकस वाइड होने तक सरकार को विनती कर रहा, मत रोकिएगा, रुकना नहीं तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा।
2: विपक्ष के नेता विरोध कर रहे छात्रों का समर्थन कर रहे हैं, तो महायुति का आरोप है कि विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने के लिए छात्रों का सहारा ले रही है। कई दिनों से एमपीएससी उम्मीदवार पुणे की सड़कों पर है और परीक्षा प्रक्रिया, भर्ती में देरी और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों पर सवाल उठा रहे हैं। पेपर लीक की कथित गड़बड़ियों की जांच के बाद ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद इस आंदोलन ने जोर पकड़ा था।
8: शुरुआत में विद्यार्थियों ने सत्याग्रह शुरू किया था जिसमें रोहित पवार खुद शामिल थे, लेकिन उसके बाद कल से अनशन पर 5 स्टूडेंट्स बैठ गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सबसे अहम यह है कि खाना और पानी दोनों उन्होंने बंद कर दिया है। अब कल सरकार की कैबिनेट होनी है, उससे पहले अगर इस्तीफा नहीं होता है तो अपनी स्ट्रैटेजी बदली जाएगी और अलग तरीके से आंदोलन करेंगे, यही अब रोहित पवार का भी कहना है। इससे पहले भी पुणे में एक मोर्चा निकला था जिस पूरे मोर्चा में पूरे राज्य भर से लगभग 15,000 से 20,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एमपीएससी से अफेक्ट हुए हैं, जिनको शक है कि महाराष्ट्र का जो आयोग है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा।
0: और वहीं आदिवासी छात्रों के आंदोलन को भी कांग्रेस ने अपना सियासी हथियार बना लिया। राहुल गांधी ने खुद वीडियो संदेश जारी करके फडणवीस सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि छात्रों की मांगों का समाधान नहीं हुआ तो वो खुद आंदोलन में शामिल होंगे। वहीं नासिक से पैदल चलकर मुंबई पहुंचे आदिवासी छात्रों को हिरासत में लेने से सियासी घमासान तेज हो गया।
2: मुंबई में आदिवासी छात्रों के आंदोलन पर सियासी पारा चढ़ गया है। ये आदिवासी छात्र नासिक से मुंबई तक पैदल मार्च कर गए हैं, लेकिन ये लोग जैसे ही मुंबई पहुंचने वाले थे पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस ने आदिवासी छात्र छात्राओं को मुंबई में कांग्रेस मुख्यालय से हिरासत में लिया है।
9: मुंबई में जो आदिवासी छात्र आ रहे थे उन्हें पुलिस ने जब डिटेन करना शुरू किया तो उन्होंने मुंबई के महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में शरण ली है। इस वक्त आप वो सारे छात्र जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये देख सकते हैं। लेकिन इन्हें क्योंकि कांग्रेस ऑफिस से भी डिटेन करने की कोशिश की गई, कई कांग्रेस नेता सामने आए। इस वक्त युवा कांग्रेस से जयश्री थोराट जी हमारे साथ हैं कि आजाद मैदान जो कि डेजिग्नेटेड एरिया है प्रोटेस्ट करने के लिए, वहां पर परमिशन मांगी गई, परमिशन नहीं दी गई तो भी चलकर 48 दिनों के आंदोलन के बाद ये छात्र आ रहे थे, डिटेन किया जा रहा था, इसलिए आज इन्हें यहां पर रुकना पड़ रहा है। क्या कैसे देखती हैं?
10: नहीं, बहुत अनफॉर्चुनेट है। हम उस भारत देश के वासी हैं जहाँ पे मतलब हमने गांधी जी, नेहरू जी और उन सबको, भगत सिंह जी और इन सबको कुछ चीज के लिए लड़ते हुए देखा है, मतलब अपने हक के लिए लड़ते हुए देखा है। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम, किसी और पराई ताकत के अगेंस्ट कभी हम लड़ रहे थे, आज ऐसा दिन आया है जब हमें खुद के गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ाई करनी पड़ रही है, और वो भी किस चीज के लिए? आदिवासी बेसिक हक चाहते हैं उस चीज के लिए, वो अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छी पढ़ाई, बेसिक जो है उस चीज के लिए ये लड़ाई चल रही है।
11: उनका छात्रों के गूंज प्रोग्राम में
2: अब कांग्रेस आदिवासी छात्रों के आंदोलन के मुद्दे को सियासी रूप से भुनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज राहुल गांधी ने वीडियो संदेश जारी कर फडणवीस सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए।
11: छात्रों के गूंज प्रोग्राम में मैं अलग अलग स्टूडेंट ग्रुप से मिला था, जो आदिवासी स्टूडेंट्स हैं उनसे मिला, उनसे बातचीत की, और जो एमपीएससी के प्रोटेस्टर्स हैं उनसे भी मिले था, उनसे भी बातचीत की। देखिए, इनकी जो मांगे हैं ये लेजिटिमेट हैं। ऐप के माध्यम से भी एमपीएससी स्टूडेंट्स ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था, और मैं दोनों स्टूडेंट्स को आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम आपके साथ हैं, घबराइए मत, आपकी मांग पूरी होंगी, सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, आप जो करना चाहते हैं करिए। ये जो आपके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रही हैं एमपीएससी की, आदिवासियों की, ये रुकने वाली नहीं है। इनकी मांगे जल्दी से जल्दी आप पूरे कीजिए, क्योंकि ये रुकने वाले युवा नहीं।
2: कांग्रेस सांसद और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि ये पुलिस की बर्बरता है, क्योंकि सरकार छात्रों के आंदोलन से डर गई।
12: सबसे पहला तो कि महाराष्ट्र में जंगल राज है क्या? या महाराष्ट्र में देश का संविधान है? जिस तरह से हमने देखा कि सुबह 4 बजे मुंबई कांग्रेस के ऑफिस में और सुबह 7 बजे महाराष्ट्र प्रदेश के टिळक भवन के ऑफिस में जिस तरह से आज पुलिस की घुसखोरी हुई, कोई वारंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, और जिस तरह से पुलिस ने घुस के यहाँ पे जो है बच्चों के साथ व्यवहार किया, ये महाराष्ट्र में अपेक्षित नहीं है। जो महाराष्ट्र के बच्चे, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य है, जो हमारी संपत्ति है, आज उनके साथ सबसे बड़ा अगर खिलवाड़ कोई कर रहा है तो महाराष्ट्र सरकार कर रही है। हम देख रहे हैं कि पुलिस, जब हम भी अंदर आए तो आप देखेंगे कि पूरा जो रास्ता है वो छावनी बना के रखा है। आज यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि आप भी पत्रकार हो, आप भी यहाँ बैठे हो, इस तरह से हमारे बच्चों के साथ करना ये अपेक्षित नहीं है। ये बच्चे क्या मांग कर लेके आए हैं जो आप बार बार सवाल पूछ रहे हो कि दो है क्या? मेरा एक सवाल ये बच्चे सब क्या मांगने के लिए आए कि स्कूल को बचाना चाहिए, जितने भी स्कूल महाराष्ट्र के हैं मराठी स्कूल को बचाना चाहिए, ये उनकी मांगनी है।
2: ये आदिवासी छात्र अपनी मांगों को लेकर नासिक से मुंबई पहुंचे। 48 दिनों के लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद पैदल चलकर आए आदिवासी छात्रों को मुंबई पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया था।
9: मुंबई में हम इस वक्त महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का जो कार्यालय है तिलक भवन प्रभा देवी में, उसके बाहर खड़े हैं। यहाँ पर एक बड़ा पुलिस प्रेजेंस जो है आप वो देख पा रहे हैं। ये पुलिस प्रेजेंस इसीलिए है कि आदिवासी स्टूडेंट्स जो है वो तिलक भवन में आकर रुके हुए हैं। अब मुंबई में अलग अलग जगहों से आदिवासी स्टूडेंट्स अलग अलग मांगे लेकर मुंबई आने वाले थे। इस आंदोलन में कुछ लोग जो हैं वो राजभवन तक जाने वाले थे, ऐसी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए पुलिस डिटेन कर रही थी। अब आदिवासी स्टूडेंट्स का ये कहना है कि महिला स्टूडेंट्स तक को देर रात में डिटेन किया गया है, उनको डिटेन कर रास्ते पे छोड़ दिया गया, इसलिए वो लोग यहाँ पर रात गुजारने के लिए तिलक भवन, जो कि कांग्रेस का रीजनल ऑफिस है, उधर आ गए। पुलिस यहाँ पर तिलक भवन के अंदर घुसकर भी उन लोगों को डिटेन किया गया है। अब उनका कहना है कि उनकी जो मांग है वो मराठी स्कूल्स को ट्राइबल एरियाज में महाराष्ट्र के बचाने के लिए ये जो मांग है उसकी परमिशन इन्होंने मांगी थी, और उसके लिए ये स्टूडेंट्स जो हैं ये मुंबई में आए हुए थे, लेकिन इनको किसी और कारण से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, मुंबई पुलिस की तरफ से डिटेन किया गया।
0: और चलिए बात करेंगे चालाक ठग के बारे में। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने एपी के फाइल बनाने वाले एक बड़े ठग को गिरफ्तार किया है। ये 36 साल का है और बीटेक की पढ़ाई बीच में छोड़कर लोगों को ठगने लग गया था। इंदौर के रहने वाले इस आरोपी पर देश भर में 150 करोड़ से ज्यादा के फ्रॉड के आरोप हैं। 13 अगस्त को बायकुला पुलिस इलाके में इस साइबर फ्रॉड ने एपी के फाइल के जरिए एक सीनियर सिटीजन को ठगा था, और जब खुलासा हुआ तो पुलिस खुद हैरान रह गई।
13: मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने एक 36 वर्षीय बीटेक ड्रॉपआउट, यानी इंजीनियरिंग करते समय थर्ड ईयर में वो ड्रॉपआउट कर गया था, ऐसे एक व्यक्ति को पकड़ा है इंदौर से। आपको बता दें कि ये एक एपी के फाइल क्रिएटर है और ये सर्विस प्रोवाइडर था साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग्स के लिए, सिंडिकेट के लिए। ये एपी के फाइल्स बनाकर उन्हें बेचा करता था। इसके द्वारा बनाई गई करीब 2805 एपी के फाइल्स अलग अलग जगह पर इस्तेमाल हुई है, और अभी तक जो मुंबई पुलिस को डिटेल्स मिली है उसमें यह पता चला है कि करीब 150 करोड़ से ज्यादा के फ्रॉड, साइबर फ्रॉड, इसी 36 साल के बीटेक ड्रॉपआउट के बनाए हुए एपीके फाइल्स से ही फ्रॉड किए गए, और 150

0: देश में इस्तेमाल हुए हैं, उसमें से कई 100 फाइल्स महाराष्ट्र में इस्तेमाल हुए हैं और 36 फाइल्स की कंप्लेंट्स मुंबई में भी है। और ये जो केस था, जिस केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए प्रॉपर्टी सेल इस एपी के फाइल डेवलपर या आरोपी तक पहुंची है, तो वो ऐसा केस था कि भाईकला में एक सीनियर सिटीजन को सीनियर सिटीजन कार्ड बनाने के नाम पर एक साइबर फ्रॉडस्टर ने कॉन्टैक्ट किया। ये
1: उधर दक्षिण मुंबई के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व वाले बाणगंगा टैंक में हजारों मछलियां मरी पाई गई, जिससे कि इस हेरिटेज वाटर बॉडी में प्रदूषण की संभावना को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का आरोप यह है कि पितृपक्ष के दौरान पिंडदान अनुष्ठानों के कारण प्रदूषण बढ़ गया था और इसी की वजह से इन मछलियों की जान गई है।
2: ये साल कैसे ऐसे मर गई ऐसे पहले मच्छी?
0: बीएमसी का कहना है कि जो पिंडदान और पितृपक्ष में जो पानी में पूजा सामग्री और अन्य चीजें अर्पण हो रही है, उसके वजह से प्रदूषण बढ़ गया और मछली मर गई।
2: नहीं, ऐसे नहीं मरती थी मछली। कभी मरती थी तो लास्ट होता था तो भले हो जाती थी। ये ऐसा या ऐसा साल कैसा हुआ कि पहले मछली आ जाता मर गई है? वैसे मरती थी नहीं मछली, इसलिए इसी में
0: बीएमसी ने अब मीटिंग भी बुलाई है। बीएमसी मीटिंग बुला रही है और बातचीत करने के लिए आप लोगों को भी बुलाया है। शायद
2: वहाँ सब पहुँच गए हैं वहाँ बीएमसी में बात करने के लिए कि हम सब भाई ऐसे तो मच्छी कभी मरी नहीं, ये साल ऐसे मच्छी मर गई हैं, हम सब ध्यान नहीं है, उसमें किसकी गलती है वो ऊपर वाला जानता है।
1: पीयूष मिश्रा ने नसीरुद्दीन शाह पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला है। मुंबई में सीजेपी के प्रदर्शन में नसीरुद्दीन शाह की मौजूदगी के बाद पीयूष मिश्रा ने सवाल उठाए कि देश के दूसरे बड़े मुद्दों पर उनकी चुप्पी क्यों है। मिश्रा ने खास तौर पर फ्लाई दुबई के कैप्टन स्मिथ मचार की बहादुरी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने यात्रियों की जान बचाई तो नसीरुद्दीन शाह को इस पर भी बोलना चाहिए था। साथ ही साथ उन्होंने एलपीयू और झारखंड छात्र प्रदर्शनों को लेकर भी शाह से सवाल पूछे।
3: हाँ नसीर साहब, आदर करता हूँ, मैं पीयूष मिश्रा हूँ आपका पुराना जानकार। आप अभिजीत दीप के मिले बड़ा अच्छा लगा, मिलन देख के बड़ा अच्छा लगा। अभी सर एक हादसा हो तो टला है, ये तेल अवीव को जाने वाली फ्लाइट, दुबई से जाने वाली फ्लाइट 1073 फ्लाई दुबई से है। इसमें मिस्टर स्मिथ मच्छार ने कमाल किया है, 180 लोगों की जान बचाई। उस पर भी जरा थोड़ा सा कमेंट कीजिए, बधाइयां दीजिए सर, उन्हें अच्छा लगेगा, बेचारे शरीफ आदमी हैं और उन 180 लोगों को जिन जान बचाई हैं उनको और अच्छा लगेगा। दूसरी बात यह कि सर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में भी एक मैसेज भेजिए सर, वहाँ पर भी बच्चे पढ़ते हैं सर, बड़ा खतरनाक हादसा हुआ है, वहाँ पर घमासान हुआ है, लड़कियों के बाल पकड़ के तोड़ा गया है पुलिस के द्वारा, घमासान हुआ है, आगजनी हुई है। आप तो बोल रहे थे ना कि मैं मुझे जितना राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और FTI ने सिखाया उतना बच्चों ने सिखाया है, तो मुझे मालूम नहीं कि बच्चे, ये स्टेटमेंट मेरी समझ नहीं आया एक्चुअली, बच्चे कब से एक्टिंग टीचर हो गई ये मुझे मालूम नहीं, आप मिले तो खुलासा कीजिएगा इसका, लेकिन वहां पर भी उतना ही खतरनाक हादसा हुआ है।
1: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: और अपनी हैसियत के हिसाब से टिकट मांगे कि कितने सीटें उनकी अपने सांसद और विधायक हैं उनकी संख्या को देखते हुए या कितने उनके कार्यकर्ता हैं उनको देखते हुए सीट मांगे, तो मैं समझता हूं कि उनके लिए भी अच्छा रहेगा और गठबंधन के लिए भी अच्छा।
1: सर वो तो ये कह रहे हैं कि हम 150 से कम पे तो मानेंगे ही नहीं।
0: मैं ये कहता हूं उनको 50 सीट देना भी बहुत बड़ी बात होगी, उनको देखना चाहिए। दो तुम्हारे विधायक हैं, पिछली बार तुमने लड़के देख लिए, क्या इससे तुम्हें सबक नहीं मिलता है? अगर हमारे साथ गठबंधन न होता तो उनके जो 6 सांसद जीते हैं एको न जीत।
2: मेरा मानना है कि जब अलायंस से चुनाव लड़ना है तो एक दूसरे पर इस तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी तो नरेंद्र मोदी से नहीं डरते तो वो अमेठी में क्या डरेंगे? अगर इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी लड़ रहे हैं।

0: चल रहा है वो इलीगल इलेक्शन पे चल रहा है. मोदी इलीगल प्राइम मिनिस्टर, शाह इलीगल मिनिस्टर, और जितने भी अब चीफ मिनिस्टर्स बने कहाँ के भी, वो सब इलीगल. सबको डिसॉल्व करना, इलेक्शन कराना और बैलेट पे इलेक्शन कराना, क्योंकि ईवीएम का मिसयूज हो रहा है.
1: मल्लिकार्जुन भले गांधी परिवार के दास हो सकते हैं, देश का लोकतंत्र मजबूत है. कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रहा, ये मुस्लिम लीग कांग्रेस है जो सोची समझी रणनीति के तहत देश के संवैधानिक संस्थान के ऊपर आरोप लगाना, देश में भ्रम फैलाना, ये काम हो गया है राहुल गांधी एंड कंपनी का. या तो वो सत्ता भोगेंगे, नहीं तो देश को जलाने की योजना बनाए.
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com. क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com.
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.

एसआईआर के तहत फॉर्म 6 में बदलाव पर फंसा चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट की 2-2 हमने चेंज नहीं की को मंजूरी नहीं दी, ईसी और केंद्र को थमाया नोटिस, ज्ञानेश के तुरंत निलंबन से इनकार। फॉर्म 6 को राहुल गांधी ने बताया बीजेपी सीईसी की सांठगांठ का नतीजा, कहा अपनाया गया गैरकानूनी तरीका, आग बबूला बीजेपी का पलटवार, संसद से ईसी ऑफिस तक विपक्ष का मार्च। चुनाव से पहले राज्यसभा सीट से जातीय समीकरण साधने में जुटी बीजेपी, लिस्ट में 3 ओबीसी, 2 एससी, 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय का नाम, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, बीएल वर्मा आउट। मायावती ने फिर भतीजे पर दिखाई दया, कहा सियासत से ससुर के संन्यास के बाद सुधर गए आकाश, वापस किया राष्ट्रीय संयोजक का पद। और बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जम्मू कश्मीर से वापस भेजे गए 150 लोग, बागडोगरा से बीएसएफ इन्हें भेजेगी सीमा पार, 7 अक्टूबर को एक और कार्रवाई की तैयारी।

एफआईआर के तहत फॉर्म 6 में बदलाव पर फंस गया चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा, हमने चेंज को मंजूरी नहीं दी थी। चुनाव आयोग और केंद्र को थमाया गया नोटिस, ज्ञानेश कुमार के तुरंत निलंबन से इनकार। ज्ञानेश कुमार पर राहुल गांधी के संगीन आरोप, कहा बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए फॉर्म 6 में किए गए गैरकानूनी और एक तरफा बदलाव, मगर ईसी ऑफिस तक मकर द्वार से आज विपक्षी मार्च। चुनाव से पहले राज्यसभा सीट से जाति समीकरण साधने में जुटी है बीजेपी। लिस्ट में 3 ओबीसी, 2 एससी और 2 ब्राह्मण और एक क्षत्रिय का नाम। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, बीएल वर्मा आउट। मायावती ने फिर से भतीजे में दिखाई दिया, कहा सियासत से ससुर के संन्यास के बाद सुधर गए आकाश, वापस किए राष्ट्रीय संयोजक का पद। प्रधानमंत्री मोदी 11 अक्टूबर को चेन्नई से करेंगे मेट्रो फेज 2 के 14 किलोमीटर पूनम मल्ली बड़ा पलानी सेक्शन का उद्घाटन। तमिलनाडु में चुनावी तैयारियों के बीच बीजेपी का संगठनात्मक मंथन, 7 अक्टूबर को सभी राजस्व जिला मुख्यालयों की सेवा ज्योति रैलियां, राम माधव ने संभाली राज्य प्रभारी की जिम्मेदारी। बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जम्मू कश्मीर से वापस भेजे गए 150 लोग। बागडोगरा में बीएसएफ इन घुसपैठियों को सीमा पार भेजेगी, 7 अक्टूबर को एक और कार्रवाई की तैयारी। पंजाब की महान सरकार पर चौतरफा हमला, सीएमओ भ्रष्टाचार केस की जांच हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी है। बीजेपी ने ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वतखोरी और लगातार हो रही हत्याओं पर मांगा है जवाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में एचएएल के 2000वें एयरो इंजन की डिलीवरी को चिन्हित करेंगे। लगभग 6 दशक की रक्षा उत्पादन यात्रा का अहम पड़ाव। एचएएल कोरापुट में 218 करोड़ की लागत से शक्ति इंजन की दूसरी प्रोडक्शन लाइन की शुरुआत होगी। ध्रुव और प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के लिए बढ़ेगी स्वदेशी इंजन की क्षमता। आईपीएस अधिकारी प्रीता वर्मा का बिहार के डीजीपी पद पर कार्यकाल बढ़ गया, 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं प्रीता वर्मा, गृह विभाग ने जारी किया है आदेश। एमपीएससी अभ्यर्थियों का पुणे में जोरदार प्रदर्शन, परीक्षा में कथित अनियमितताओं को और पेपर लीक और प्रशासनिक देरी को लेकर चेयरमैन विवेक और सचिव के इस्तीफे की मांग। सुप्रीम कोर्ट के बॉम्बे हाईकोर्ट का 5 लाख रुपए का मुआवजे का आदेश रद्द किया गया, खाद्य विषाक्तता की शिकायत पर एफडीए की कार्रवाई को जनहित में उचित माना। अकोला एफडीए की बड़ी कार्रवाई, अहमदाबाद से आया 1900 किलो खोया जब्त किया गया, 5 लाख रुपए की खोई पर कार्रवाई की गई। त्योहार से पहले खाद्य विभाग की छापेमारी। प्रयागराज में होटल रेस्टोरेंट में आप बताना होगा किस तेल में बनाया खाना, शिकायत के लिए QR कोड भी अनिवार्य है। संगरूर में डीसी कार्यालय में तीसरे गेट पर किसानों और पुलिस में झड़प हुई, डीसी कार्यालय के भीतर जाने की कोशिश कर रहे थे किसान, पुलिस ने रोका। किसानों का ऐलान 24 घंटे तक बंद रखेंगे डीसी कार्यालय के गेट। महाराजगंज में करोड़ों रुपए के खर्च करके भेजे गए वेंटिलेटर कोरोना काल से ही पड़े हुए हैं बंद, सीएमओ का बयान पाइपलाइन और संसाधनों की कमी के कारण काम नहीं आ रहे। पटना में दरोगा अभ्यर्थियों पर पुलिस ने भाजी लाठी, एग्जाम के विरोध में प्रदर्शन, छात्र बोले हम वर्दी पहनते, सरकार ने सब कुछ छीन लिया। राम मंदिर की आंतरिक व्यवस्थाओं में बड़े प्रशासनिक बदलाव की तैयारियां तेज हुई, व्यवस्थाओं को लेकर पारदर्शी, अनुशासित और आधुनिक बनाने की तैयारियां। सभी कर्मचारियों और एजेंसियों के कर्मियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर सॉफ्टवेयर से निगरानी की जाएगी। मंदिर परिसर में कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लागू करने की तैयारियां हैं, वीडियो सर्विलांस और फिक्सिंग व्यवस्था की भी तैयारी। करीब 40 नए स्थानों पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे, अलग अलग विभागों के कामकाज के लिए तैयार की जाएगी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कर्मचारियों के पुलिस वेरिफिकेशन पर भी जोर है, चढ़ावे की गिनती की व्यवस्था भी बदलेगी, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी गिनती। अहमदाबाद में बेकाबू हुई कार 180 डिग्री घूमने के बाद सर्विस रोड पर खड़ी हुई कई कारों से टकरा गई, 3 गाड़ियों को पहुंचाया नुकसान, खौफनाक हादसा कैमरे में कैद। गाजियाबाद में रावण के पुतले में पटाखे भरते समय ब्लास्ट हुआ, 5 घायल हुए, ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में शौचालय में छिप कर बैठा किंग कोबरा रेस्क्यू टीम ने समय रहते जंगल में पकड़कर छोड़ा। कोरबा में नामचीन रेस्टोरेंट में टॉयलेट में धोए जा रहे थे बर्तन, वीडियो वायरल हुआ, खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्ती के साथ नोटिस भेजा। जालना के तीर्थपुर में शॉर्ट सर्किट से 9 एकड़ गन्ने की फसल जलकर खाक हुई, किसानों को भारी नुकसान। मेरठ में बाइक चोरी करने वाला गिरोह की पोल खुल गई है, 17 बाइक बरामद की गई, 4 गिरफ्तार। गोपालगंज में गैस सिलेंडर और बाइक की सीट से 25 लीटर से ज्यादा देसी शराब जब्त।
बेतिया में वायरल वीडियो में रुपए लेते हुए नजर आए ओलंपिक डीएम ने सस्पेंड किया। अलवर में टोल पर पैसे कटते ही हथियारबंद युवकों ने लाठी डंडों से किया था टोल पर हमला, सीसीटीवी फुटेज सामने आई। हरिद्वार में पेट्रोल पंप पर टैक्सी चालकों में मारपीट हुई, पुरानी रंजिश के चलते लिया गया था बदला, आगे की जांच में जुटी है पुलिस। मेरठ में चाइनीज मांझे की चपेट में आया था युवा, गला कटा, घायल अस्पताल में भर्ती। संभाजीनगर में बस और बाइक की भीषण टक्कर हुई, दो युवकों और दो साल की बच्ची की मौके पर ही मौत। देहरादून में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को उतार दिया मौत के घाट, 12 घंटे में खुलासा हुआ। ग्वालियर में वॉशिंग सेंटर पर खड़ी हुई दो कारों में भयंकर टक्कर हुई, दो तीन लोग बाल बाल बचे। जामनगर के मजदूरों के कमरों में भीषण आग लगी, मजदूरों के 6 से 7 कमरे जलकर खाक हुए। धर्मशाला के मैक्लॉडगंज में पर्यटकों की भारी भीड़ है, बागसू वाटरफॉल के पास महिलाओं की बिन अनुमति वीडियो बनाने का मामला भी सामने आया। गुजरात के वलसाड में ज्वेलर्स की दुकान में 5 तोला सोने की चोरी हुई है, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सामने आई। ललितपुर में घर से लापता एक गर्भवती महिला और उसके 4 साल के बच्चे का कुएं में शव मिला है, आत्महत्या की आशंका। इटावा में 33 दिन का डिजिटल अरेस्ट, दिल्ली पुलिस सीबीआई बनकर कारोबारी से लूटे 21 लाख रुपए, जेवर बेचने पर मजबूर हुआ था परिवार। आईपीएस सीबीआई चीफ बनकर 6 करोड़ 80 लाख रुपए के लेनदेन का डर दिखाया, 4 बार में ट्रांसफर कराए 21 लाख रुपए। बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से दौरा किया, बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर सीएम ने पीड़ितों से मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया, बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री दी गई। बस्ती में 63 करोड़ रुपए का अटल आवासीय विद्यालय बना है टापू, गंदे पानी से होकर क्लास जाने के लिए मासूम बच्चे मजबूर। चमोली के घस्तोली में आगे बर्फ की सफेद चादर, भारी बर्फबारी से बदला पूरा इलाका, बीआरओ कर रहा है सामरिक मार्ग खोलने का काम। घस्तोली से देवताल तक बर्फ की आगोश में पहाड़ और सड़क माड़ा पास के पास एक क्षेत्र में प्रकृति का अद्भुत नजारा नजर आया, भारी बर्फबारी से पहुंचना मुश्किल। प्रयागराज में यूपीपीएससी इंटरव्यू से पहले पिता का आशीर्वाद, बेटे के बाल संवारते हुए नजर आए पिता, भावुक कर देने वाला वीडियो। बद्रीनाथ धाम में यात्रा से टूटे अब तक के सारे रिकॉर्ड, इस साल अब तक 18,67,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सात समंदर पार रहने वाले लोगों को खींच रहा है काशी के आध्यात्मिक आस्था और सनातन धर्म का आकर्षण, अमेरिका के मिशिगन से काशी पहुंचे जैक्सन। जैक्सन अपने दिवंगत चाचा की अस्थियां लेकर काशी पहुंचे हैं, गंगा तट पर हिंदू विधि विधान से अस्थियां विसर्जित की, श्राद्ध और पिंडदान की प्रक्रिया को पूरा किया। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की काशीपुर राजबाड़ी में आज से शुरू हुई सदियों पुरानी दुर्गा पूजा, लगातार 16 दिन तक अलग अलग विधि और परंपराओं के साथ मां की पूजा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया रामनगरी अयोध्या का दौरा, विधि विधान से रामलला के दर्शन किए, सुख समृद्धि की कामना। मध्य प्रदेश के कुनो में नेशनल पार्क में चीता ने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। भारत में जन्मी 32 महीने की मादा चीता है, 5 शावकों के जन्म के बाद भारत में चीतों की संख्या 60 हो गई है। हरिद्वार के श्यामपुर में एक जंगली हाथी सड़क पर दिखा, कार सवार वीडियो बनाने में जुटे रहे, बाद में जंगल की ओर हाथी के जाने के बाद राहत की सांस ली। राजस्थान के कोटा में 10X स्पोर्ट्स शूटिंग क्लब ने तैयार किए 300 खिलाड़ी, इस साल भी 15 खिलाड़ियों ने जीते हैं गोल्ड। एम्स दिल्ली में ओपीडी मरीजों की एमआरआई और सिटी स्कैन की वेटिंग लिस्ट खत्म होगी, एम्स कर रहा है खास योजना पर काम। निजी लैब से करार कर ओपीडी मरीजों को सिटी स्कैन और एमआरआई टेस्ट जैसे जल्द कराने की योजना पर किया जा रहा है काम, करीब 20 निजी लैब्स ने दिखाई दिलचस्पी। दिल्ली जल बोर्ड ने पानी कनेक्शन में बदल डाले हैं नियम, राजधानी में किराए पर रह रहे किराएदारों को हर फ्लो पर मिल सकेगा अलग पानी का कनेक्शन। दिल्ली जल बोर्ड में पानी और सीवर कनेक्शन से जुड़े हुए नियमों में बदलाव किए गए, नए प्रावधानों का उद्देश्य पानी के नए कनेक्शन आसान बनाना और पानी की कमी को दूर करना। बंगाल की मिट्टी से अमरावती में साकार हो रही है मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं, प्रतिमाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप। अभिनेता अविनाश मिश्रा ने खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 को जीत लिया है, शानदार प्रदर्शन करके चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम की। साजिद खान की अगली कॉमेडी ड्रामा फिल्म में अक्षय कुमार और आर माधवन पहली बार साथ में नजर आएंगे, फिल्म की स्टारकास्ट में दिशा पटानी और श्रेया सरन भी शामिल हैं। अनिल कपूर की फिल्म सूबेदार में एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स में बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब किया अपने नाम, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय सिनेमा का बढ़ाया गौरव। रश्मिका मंदाना महान कर्नाटक संगीत गायिका एम एस
सुबुलक्ष्मी की बायोपिक एमएस लेगेसी ऑन स्क्रीन में निभाएंगी मुख्य भूमिका। रश्मिका ने खुशी जाहिर करते हुए खुद को बताया भाग्यशाली। दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीट फिल्म रामायण के प्रमोशन के लिए पहुंचे मुंबई। रणबीर कपूर और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के साथ तस्वीरें खिंचवाएंगे। फिल्म हनुमान अंश का रिलीज के 59वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल जारी है। फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 400 करोड़ के पार। अब नए अंदाज में देखेंगे अमर अकबर और एंथनी की कहानी। थ्री मंकीज नाम से अब्बास मस्तान की जोड़ी बनाएगी फिल्म। कलपति विजय ने बेटे जैसन विजय की डेब्यू फिल्म सिग्मा को किया है प्रमोट। फिल्म ने 2 दिनों में ही बेहतरीन रिकवरी की। शाहिद कपूर की हिट सीरीज फर्जी 2 में युक्ति थरेजा की एंट्री हुई है। मेकर्स निर्णय सीरीज में फीमेल लीड के तौर पर फाइनल किया है। 5 से 7 अक्टूबर तक होने वाले आरबी की एमपीसी की बैठक में होम और कार लोन की ईएमआई बढ़ने का अनुमान है। महंगाई बढ़ने से करीब 3.5 साल के बाद रेपो रेट और 4.5% के इजाफे की आशंका। नाइट फ्रेंक के मुताबिक बड़े शहरों में घरों की बिक्री पर दबाव बढ़ गया है। एनसीआर में बिक्री 11% की बड़ी गिरावट आई है। लोकल सर्कल्स के सर्वे के मुताबिक यूपीआई एमडीआर का बोझ ग्राहकों पर पड़ने से बड़ी संख्या में लोग बड़े पेमेंट्स के लिए कैश या कार्ड की तरफ लौटेंगे। सरकार का कहना है कि चार्ज ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा। 7 अक्टूबर की बैठक में बड़े सुधारों को मंजूरी दे सकता है जीएसटी काउंसिल। इसके बाद टैक्स अधिकारी बिना कोर्ट ऑर्डर किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। एफएसएसएआई की जांच में एवरेस्ट के प्री पैक्ड जीरा पाउडर के एक बैच में तय सीमा से ज्यादा कीटनाशक अवशेष मिले हैं। क्रिएटिव बेकर्स का लाइसेंस भी सफाई में खामियों के कारण सस्पेंड किया गया। फ्यूल की बढ़ती लागत और कुछ रूट्स पर उड़ानों की संख्या घटने से इस फेस्टिव सीजन हवाई किराया पिछले साल के मुकाबले कई गुना महंगा हुआ है। कुछ घरेलू रूट्स पर किराए भी ज्यादा दर्ज किए गए। पीएम के प्रधान सचिव और पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारतीय अर्थव्यवस्था के 8% विकास दर के करीब पहुंचने का भरोसा जताया। मजबूत घरेलू मांग और निवेश के दम पर आ रही ग्रोथ में तेजी। सोने की कीमतों में जारी गिरावट के बीच इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे आने की आशंका। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी महंगाई और डॉलर की चाल से तय होगी सोने की दिशा। अगस्त के 65 रुपए से घटकर चीनी का रिटेल भाव करीब 53 रुपए पर आ गया है। इस राहत के बावजूद त्योहारों से पहले चावल और खाने के तेल जैसे जरूरी सामानों के दाम बढ़ने से किराना बिल पर दबाव बरकरार। अफोर्डेबल हाउसिंग की घट गई बिक्री। डेवलपर्स ने सरकार से इसकी परिभाषा बदलने की मांग रखी है। क्रेडाई ने नेटकॉन में सस्ते घरों की सप्लाई बढ़ाने के लिए दिया है सुझाव। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्की में रूस का डबल अटैक। रेस्क्यू के दौरान रूसी सेना ने बरसाए बम। कई इमारतों में लगी आग। 3 की मौत हुई, 25 घायल हुए। कैरेबियन सागर में अमेरिका की सेना का हमला। संदिग्ध ड्रग तस्कर की नाव को बनाया गया था निशाना। हमले में 4 लोगों की मौत हुई। अमेरिकी सेना ने हवाई हमले का जारी किया है वीडियो। यूएन और मानवाधिकार संगठन ने हमले पर उठाए सवाल। जर्मन खुफिया एजेंसी के प्रमुख मार्टिन जेगर का बड़ा बयान। कहा जर्मनी को रूस ने के साथ टकराव का खतरा है। रूस लगातार साइबर और ड्रोन हमलों के जरिए बना रहा है दबाव। फ्लाई दुबई विमान के हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा फैसला। इजरायल आने वाले विदेशी उड़ानों की होगी सुरक्षा की जांच। फ्लाई दुबई विमान के को पायलट ने पायलट पर किया था कुल्हाड़ी से हमला। 7 अक्टूबर के हमले में 3 साल पूरे होने पर यरूशलम में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा गजा में हमास का शासन खत्म होगा। स्पेन के पीएम पेट्रो सांचेस ने किया मध्यावधि चुनाव का ऐलान। 29 नवंबर को होगी वोटिंग। संसद में हाउसिंग बिल गिरने और देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद फैसला। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2026 का ऐलान किया गया। 3 वैज्ञानिकों को मेडिसिन का नोबेल। रोशनी की मदद से दिमाग की नसों को नियंत्रित करने के लिए खोजी है तकनीक। ट्रंप के बाद एलन मस्क ने एआई का नाम बदलने का ऐलान किया। मस्क ने कहा स्पेसएक्स एआई का नाम बदलकर अब स्पेसएक्स एसआई किया जाएगा। यहां एसआई का मतलब है सुपर इंटेलिजेंस। फ्रांस में खराब शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन। राजधानी पेरिस समेत कई शहरों में सड़कों पर उतरे हजारों छात्र। स्कूल की खराब स्थिति को लेकर सवाल उठाए गए। ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू ने आवासों की तलाशी के वारंट को रद्द कराने के लिए दायर किया याचिका। गुरुवार को होगी मामले की सुनवाई। एथेंस से जुड़े मामलों में छापेमारी हुई थी।

अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्लाई दुबई के विमान में हुई घटना को लेकर नए नए खुलासे और दावे हो रहे हैं। जिस वक्त हजारों फीट की ऊंचाई पर कॉकपिट में खून से लथपथ कैप्टन स्मिथ 174 लोगों को बचाने के लिए जंग लड़ रहे थे, तब यात्रियों ने ओमानी को पायलट को अपनी जान पर खेलकर काबू में किया। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि जब यात्री उस आतंकी को, क्योंकि उन्होंने देखा कि कैसे वो हमलावर पायलट इंडियन कैप्टन पर हमले कर चुका था, खून बह रहा था, खून से वो लथपथ थे, ऐसे में यात्री तो अपनी तरफ से पहल कर रहे थे। हमलावर पायलट को वो धर दबोचने में कामयाब भी हुए, लेकिन ऐसे वक्त पर फ्लाई दुबई के क्रू मेंबर्स उस हमलावर पायलट को छुड़ाने पर क्यों अड़े थे? क्या ये सिर्फ पुराना एयरलाइन प्रोटोकॉल था या फिर इस खौफनाक साजिश में क्रू मेंबर्स की भी कोई भूमिका थी? अब इसकी जांच होने वाली है। आज इसे लेकर न्यूयॉर्क पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल के सनसनीखेज दावों की पड़ताल भी हम करेंगे। और अगली खबर पाकिस्तान से, जहां एक बार फिर बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और इस्लामाबाद की ओर कूच कर रहे हैं। सरकार और इमरान समर्थकों के बीच बातचीत पूरी तरह बेनतीजा रहने के बाद खैबर पख्तूनख्वा से निकला ये भारी काफिला अब इस्लामाबाद की दहलीज पर खड़ा है। उधर इमरान समर्थकों के इस हुजूम को रोकने के लिए इस्लामाबाद को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। देखिए

और इसके बाद आपको बताएंगे कि फ्रांस में दंगों की आग क्यों भड़क रही है। एक के बाद एक पेरिस से उठी विरोध की चिंगारी अब पूरे फ्रांस को सुलगा रही है। सड़कों पर उठता धुआं, पत्थरों की बौछार, ताले में कैद करीब 500 हाई स्कूल। ये गुस्सा फ्रांस के कई प्रमुख शहरों में दंगे का रूप ले चुका है। सवाल है, आखिर फ्रांस में ये आग क्यों भड़की? प्रदर्शनों के दौरान फिलिस्तीन और अल्जीरिया के झंडे देखे जाने के बाद कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या यह सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को लेकर आक्रोश है या कोई बड़ी साजिश? क्या रशिया के लैब से कोरोना जैसे किसी नए घातक वायरस की शुरुआत हो चुकी है? साइबेरिया के रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक 28 साल की महिला रिसर्चर की संदिग्ध मौत ने पूरी दुनिया में आखिर क्यों हड़कंप मचा दिया है? दावा है कि लैब में बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस वाले टेस्ट ट्यूब टूटने से यह संक्रमण फैला, जिसके बाद 200 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। और रशिया की एजेंसियां जहां इन दावों से इनकार कर रही हैं, वहीं अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसियां इस पर नजर बनाए रखने का दावा कर रही हैं। इस पूरी कहानी के दो पहलू हैं, क्योंकि आरोप लगता है कि वेस्टर्न मीडिया हमेशा रशिया के खिलाफ प्रोपोगंडा फैलाता है। क्या यह प्रोपोगंडा का हिस्सा है या कि वाकई ये बड़ी घटना है और पूरे विश्व को इस वक्त सावधानी बरतने की जरूरत है? अगली खबर, अमेरिका और इसराइल के साथ एक और बड़े युद्ध की आशंका के बीच ईरान ने अपनी रक्षा रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। तेहरान के चौराहों पर लगे मिलिट्री कैंप्स में अब सिर्फ पुरुष जवान ही नहीं बल्कि आम ईरानी महिलाएं भी हैंडगन और भारी हथियारों से निशाना साधती नजर आ रही है। हमने कुछ ही देर पहले आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया था कि कैसे महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही थी हथियार चलाने की, लेकिन इधर दुश्मन के खात्मे के मकसद के साथ तेहरान में महिलाओं का एक खास दस्ता तैयार किया जा रहा है।

अगली खबर एआई से जुड़े खतरों के को लेकर दुनिया में बहस और तेज हो चुकी है। अब ओपन एआई के सेफ्टी लीडर रहे डेविड रॉबिन्सन के इस्तीफे ने एआई की दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। रॉबिन्सन ने बड़ा खुलासा किया, चेताया है कि एआई कंपनियां ट्रायल एंड एरर के खतरनाक रास्ते पर हैं। उन्होंने कई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अब संभलने का वक्त आ चुका है। सवाल यह है कि आखिर क्यों डेविड रॉबिन्सन ने कहा कि एआई से नहीं बल्कि इसकी बेकाबू रफ्तार से डरने की जरूरत है। और अगली खबर, बड़ी खबर देश के अंदर की, सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सस्पेंड करने या उनके कामकाज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो सिर्फ खबरों के आधार पर फैसला नहीं ले सकते हैं। हालांकि फॉर्म 6 में हुए बदलावों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग दोनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इधर राहुल गांधी ने दावा किया कि ज्ञानेश कुमार का फैसला अवैध साबित हो चुका है, जिसे चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक करते हुए पूरी तरह खारिज किया। चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी की पोस्ट में दिया गया बयान गुमराह करने वाला है। बिहार में एसआईआर के लिए 24 जून 2025 को जारी किया गया आदेश चुनाव आयोग में सबकी मंजूरी से जारी किया गया था। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 के अपने फैसले में सही ठहराया था, चुनाव आयोग ये कह रहा है। लेकिन वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि फॉर्म 6 में जो बदलाव किए गए हैं उसको सुप्रीम कोर्ट की मुहर नहीं लगी थी। अगली खबर, इलाज के नाम पर अस्पतालों की फार्मेसी में लूट का कितना बड़ा खेल चल रहा है, इसका सनसनीखेज खुलासा लखनऊ एफएसडीए की रिपोर्ट में हुआ है। फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जब उत्तर प्रदेश की 214 अस्पताल फार्मेसीज की जांच की तो होश उड़ गए। जो पॉलीमाइक्सिन बी इंजेक्शन अस्पताल सिर्फ 74 रुपए में खरीदता है, 74 रुपीज, उस पर एमआरपी ठोकी गई है 4,980 रुपए, यानी सीधे 6,600% से ज्यादा का मुनाफा। सिर्फ यही नहीं, 6 रुपए का सर्जिकल डिवाइस 163 रुपए में बेचा जा रहा है, यानी 2,600% से ज्यादा का मुनाफा। आईसीयू और गंभीर संक्रमण से जूझते मरीजों की लाचारी पर छपे इस मनमाने रेट कार्ड ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। और अगली खबर, आपकी रसोई में रखा जीरा पाउडर स्वाद का तड़का बढ़ा रहा है या सेहत बिगाड़ रहा है? FSSAI ने मशहूर ब्रांड एवरेस्ट के पैकेट बंद जीरा पाउडर को बाजार से तुरंत वापस मंगवाने के निर्देश दिए हैं। लैब जांच में इसके एक सैंपल में खतरनाक पेस्टिसाइड पाया गया, जिसके बाद इसे इंसानी स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया गया। अगर आपके घर में भी एवरेस्ट का जीरा पाउडर है तो बैच नंबर चेक कीजिए। FSSAI ने बैच नंबर E08066871 को वापस लेने का आदेश दिया है। फिलहाल उस पर कंपनी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन FSSAI का ऑर्डर था बड़ा है, इसलिए हमने आपको बताया कंपनी इस बैच को वापस लेने की प्रक्रिया अब शुरू करेगी। और अब हम आपको कैची धाम की वो हुजूम दिखाएंगे जिस पर काफी बहस हो रही है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। इस बार 3 दिनों के लॉन्ग वीकेंड पर बाबा नीप करौरी महाराज के आश्रम कैची धाम में आस्था और पर्यटन का ऐसा जनसैलाब उमड़ा है कि पूरे नैनीताल भवाली रूट का ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। नैनीताल भवाली भीमताल अल्मोड़ा हाईवे पर 10 किलोमीटर से भी लंबा भीषण जाम लग गया। हल्द्वानी में से कैची धाम का जो सफर है वो 2 से 3 घंटे में पूरा होता है, उसे अब तय करने में जानते हैं 9 से 12 घंटे लग रहे हैं। हालात ऐसे थे कि मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर हाईवे तक पैर रखने की जगह नहीं थी, 5 से 6 किलोमीटर तक केवल पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं की कतारें थी और अव्यवस्था इतनी बढ़ गई कि दिल्ली नोएडा जेवर उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों से आए सैकड़ों श्रद्धालु बिना दर्शन किए वापस लौटने को मजबूर हो गए। इसके अलावा होटल्स की प्री बुकिंग होने के बावजूद गाड़ियां कई घंटों जाम में फंसी रहीं, लोग रात 12 बजे तक भी होटल्स में चेक इन नहीं कर पाए, हजारों श्रद्धालुओं छोटे बच्चों को भूखे प्यासे गाड़ियों के अंदर या सड़क किनारे पूरी रात गुजारनी पड़ी। इसके बाद कई लोग इस पूरे हुजूम को देखकर ये सवाल भी पूछने लगे कि ये भक्ति है या सिर्फ हनुमान अंश फिल्म का लोगों पर असर है। देखिए

0: आपको यकीन नहीं होगा कि पिछले सिर्फ 3 दिनों में उत्तराखंड में 7,48,000 गाड़ियां धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर पहुंची हैं, जिनमें कुल 2,84,114 गाड़ियां दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में आई। सोचे 4,63,000 गाड़ियां उत्तराखंड के लोगों की ही रही। अगर हम भूटान देश से तुलना करें तो भूटान में कुल मिलाकर सिर्फ 1,28,000 गाड़ियां हैं, जबकि उत्तराखंड में तो सिर्फ पिछले 3 दिनों में ही करीब 7,50,000 गाड़ियां धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर पहुंची हैं। और बड़ी बात यह है कि बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जैसे जो पहाड़ी इलाके पर्यटकों से भरे रहते हैं, वहां भीड़ ना के बराबर रही। जबकि कैंची धाम अक्सर शांत रहता था, लेकिन इस बार वहां पर लोग भीषण ट्रैफिक जैम और मतलब आप देख ही रहे हैं कई जगहों पर लोगों के लिए इस हुजूम में गुजरना, आगे बढ़ना बहुत संघर्ष करते लोग नजर आए। और स्थिति यह हो गई कि कैंची धाम आश्रम और बाबा नीप करौरी पर हनुमान अंश फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्माताओं को लोगों से अपील करके ये कहना पड़ा कि वो इस जगह की संवेदनशीलता और इंतजामों का भी ध्यान रखें। कैंची धाम पर अचानक से इतनी भीड़ और इतनी भीड़ का भार ना डाला जाए। हम भी लोगों की भक्ति और आस्था का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन सच बात यही है कि इस भीड़ के पीछे एक बड़ी वजह हनुमान अंश फिल्म है। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि वो कैंची धाम में जाएं और अपनी नजरों से वो देखें जो उन्होंने फिल्म में देखा है, नीप करौरी बाबा के लिए देखा है। और कई लोगों के लिए ये एक स्टेटस का हिस्सा भी बन गया क्योंकि उनको अपनी रील्स डालनी थी। एक बार हमने इस पर भी डीप डाइव किया। अगर सिर्फ इंस्टाग्राम की बात करें तो हाल ही में हैशटैग कैंची धाम पर 4,00,000 से ज्यादा तस्वीरें और वीडियो पोस्ट हो चुके हैं, जबकि कैंची धाम मंदिर और हैशटैग बाबा नीप करौरी पर भी लगभग 10,00,000 वीडियोस और नई तस्वीरें हाल में पोस्ट हुई है। कई बातें इससे समझ में आती हैं, जैसे देखिए हनुमान अंश फिल्म की सफलता के बाद लोगों में एक उत्सुकता है बहुत ज्यादा और आस्था नीप करौरी बाबा के लिए बहुत बढ़ा है, और इसीलिए नीप करौरी बाबा के कैंची धाम को देखने की उत्सुकता बढ़ी है। और इस उत्सुकता को समझते हैं और शायद इसी वजह से ज्यादा लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, जब कैंची धाम का नाम सुनते ही मन में एक असीम शांति, देवदार के पेड़ों के बीच से छन कर आती ताजी हवा, नदी के बहते पानी की आवाज गूंजती थी। और कहते हैं कि खुद नीप करौरी बाबा नीप करौरी महाराज ने इस जगह को किसी भव्य पर्यटन स्थल के रूप में नहीं बल्कि एकांत तपोभूमि और ध्यान केंद्र रूप के रूप में चुना था। लोग अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने, जीवन के शोर से कुछ दूर पल मौन बिताने और आंतरिक शक्ति की तलाश की जगह उन्होंने इसको समझा और इसीलिए वहां पर अपना ये धाम स्थापित किया और लोग उसी मंशा से वहां पर पहुंचते थे। लेकिन आज आप देख ही रहे हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा हुजूम आ गया है और व्यवस्था कैसे चरमराती दिखी। आज की तारीख में कैंची धाम में वो शांति और जो ध्यान लगाने के लिए लोग पहुंचते थे वहां पर आप देख ही रहे हैं, लोग घंटों बैठकर बाबा नीप करौरी की कुटिया के सामने ध्यान लगाते थे। आज वहां कार्स के हॉर्न, ट्रैफिक पुलिस की सीटियां, बेकाबू भीड़ और एक जो आप देख रहे हैं ना, मतलब शोर वहां पर दिख रहा है। मानसिक सुकून ढूंढने आए लोग अब खुद को 10 किलोमीटर लंबे जाम धक्का मुक्की के बीच फंसा पा रहे हैं। पवित्र आश्रम है, लोगों द्वारा शांति तलाशने का जरिया है। अब वहां पर अगर इस तरह का शोर और उस शोर शराबे में वो जगह फंस जाए तो एक इसकी जो मौलिकता है, जो पवित्रता है, कहीं उसको ना नुकसान हो जाए। हमें लगता है कि कैंची धाम को घूमने का एक हम सबको सोचना चाहिए। आस्था बड़ी चीज है, लेकिन कहीं से भी ये लोगों के लिए अगर सिर्फ रील्स बनाने के लिए या फिर पिकनिक स्पॉट, वीकेंड डेस्टिनेशन जैसा बन जाएगा तो अच्छा नहीं है। मन में श्रद्धा भाव के साथ साथ सबको इस बात का ध्यान रखना होगा। हालांकि ये अपने आप में देखिए चमत्कार ही कहिएगा इसको, आस्था और धर्म से जुड़ा हुआ, कि लोगों के मन में फिल्म के बाद ही सही, लेकिन इतना विश्वास और इतनी आस्था बाबा के लिए आई है कि अब सभी लोग ऐसे वहां पहुंच जाएंगे, ये लोगों को शायद पता भी नहीं था। लेकिन हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आज जब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तो इस बात को सबको ध्यान में रखना होगा कि हम सब नीप करौरी बाबा, नीप करौरी महाराज से हमेशा वो सादगी का संदेश याद रखें। हमेशा याद रखें कि उनका संदेश एक ही था, सादगी का और राम नाम जपने का, या जो उनका पूजा पाठ भगवान को याद करने का तरीका था, ध्यान पर बहुत जोर देते थे। और उनसे जुड़ना अगर हम सब चाहते हैं तो हमें पहाड़ों पर पहाड़ों की का संरक्षण, क्योंकि उन्होंने सोची तमाम जगहों को छोड़कर पहाड़ पर ये जगह चुनी थी जहां पर असीम शांति थी। तो उस भाव का हम सबको सम्मान करना है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार से भी कहना चाहते हैं कि वो इसको देखते हुए सही कदम उठाए और ये तय करे कि कितने लोग एक बार में वहां पर जा सकते हैं, कितने लोग लोगों को जागरूक करने का भी एक तरीका हो सकता है। क्योंकि किसी भी तरह से मतलब कैंची धाम और नीप करौली बाबा का जो संदेश है वो महान संदेश है, सादगी का, भक्ति का, धर्म लीन होने का, कोई शोर शराबे में कहीं भंग होता है। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि फ्लाई दुबई की जिस फ्लाइट में भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मछार पर हमला हुआ था, क्यों उस फ्लाइट के अब हर क्रू मेंबर को शक के घेरे में माना जा रहा है। द न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से हम बता रहे हैं बहुत बड़ा खुलासा। द न्यूयॉर्क पोस्ट ने इस फ्लाइट में सफर करने वाले एक यात्री डैनियल स्लिच्टर का इंटरव्यू किया। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि फ्लाइट के क्रू मेंबर्स यानी जो एयर होस्टेस हैं वो ये कह रहे थे कि इसको पायलट मतलब जो हमलावर पायलट था उसके हाथ पैर खोल दिए जाएं और उसे छोड़ दिया जाए। अगर मैं शब्दशः इस इंटरव्यू की बातें पढ़कर बताऊं तो उसमें यह लिखा है कि कुछ यात्रियों ने हेडफोन के तार इकट्ठा करके आरोपी को पायलट के हाथ पैर बांध दिए थे। क्योंकि देखिए सब कुछ दिख ही रहा था वहां पर, मारा हमलावर पायलट ने, इंडियन पायलट घायल थे। आगे ये यात्री बताते हैं बाद में उसे पूरी तरह काबू में रखने के लिए प्लास्टिक जिप टाइज से उसे बांधकर फर्श पर मुंह के बल लिटा दिया गया। और ये वही क्षण था जब कॉकपिट के फर्श पर पड़ा ये को पायलट खुद को जान से मारने के लिए चिल्ला रहा था और फ्लाइट 34,000 फीट की ऊंचाई से 14,000 फीट तक नीचे गिर चुका था। आरोपी की जैसे ही इस को पायलट को बांधा गया तभी फ्लाई दुबई के कुछ क्रू मेंबर्स वहां पर पहुंचे और यात्रियों से उसे तुरंत खोलने की मांग करने लगे। ये हम आपको द न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से बता रहे हैं। इस घटना को नाकाम करने वाले यात्रियों में से एक ज्विका मेंस का कहना है कि क्रू मेंबर्स उनसे कह रहे थे कि इस आतंकवादी को खोल दो और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। दावा है कि बहस के दौरान क्रू मेंबर्स ने यात्रियों से यहां तक कहा कि वो भगवान नहीं है और उन्हें इसको पायलट को बंधक बनाने का कोई अधिकार नहीं है। अब ये सारा द न्यूयॉर्क पोस्ट और एक यात्री के हवाले से छापी गई खबर है। इस पर यात्रियों ने जवाब दिया कि उनका इरादा उसे मारने का नहीं है बल्कि वो सिर्फ खुद की जान बचाना चाहते हैं। इन यात्रियों ने आरोपी को जिंदा रखने के लिए उसे ऑक्सीजन मास्क भी लगाया ताकि जांच एजेंसियां बाद में उससे पूछताछ कर सके। क्रू मेंबर्स की इस अजीब मांग के बाद कॉकपिट के बाहर का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। इजरायली यात्रियों को डर सताने लगा कि कहीं इस आतंकी साजिश में फ्लाइट के कुछ क्रू मेंबर्स भी तो शामिल नहीं है। इससे सभी यात्री सतर्क हो गए। उन्होंने क्रू मेंबर्स से ये कहा कि अब से इस प्लेन का कंट्रोल उनके हाथों में रहेगा, जो वो कहेंगे उन्हें वही करना होगा। द न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट ऐसा दावा करती है कि यात्रियों के एक गुट ने सभी क्रू मेंबर्स को डांटकर कॉकपिट के पास से हटाया, उन्हें पीछे की पांचवी या छठी रो में जाकर बैठने के लिए कह दिया गया। इसके बाद यात्रियों ने अपनी सुरक्षा के लिए फ्लाइट में मौजूद एक शख्स को कॉकपिट के दरवाजे पर गार्ड के रूप में तैनात कर दिया ताकि कोई भी क्रू मेंबर दोबारा कॉकपिट के पास ना आ सके। और अब जब ये पूरी घटना सामने आ रही है तब जानते हैं द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है। ये अखबार लिखता है द वॉल स्ट्रीट जर्नल कि अब जांच एजेंसियों को केवल इस को पायलट की जांच नहीं करनी चाहिए बल्कि इस फ्लाइट में मौजूद पूरे केबिन क्रू के आचरण, उनकी मंशा की भी गहन जांच होनी चाहिए। और सोचिए अगर 1% भी ये आरोप सही पाए जाते हैं तो ये पूरी घटना एक बड़ी आतंकी साजिश का रूप ले लेगी। और जानते हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसराइल के चैनल 12 की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस को पायलट ने शुरुआती पूछताछ में यह कबूल किया है कि वो पहले जुलाई में ही इस विमान को हाईजैक कर तेलवीव में क्रैश कराना चाहता था, लेकिन उस वक्त जिस फ्लाइट को उसने निशाना बनाने के लिए चुना था उसमें उसका एक खास दोस्त ड्यूटी पर तैनात था। और दावा है कि तब अपने दोस्त की जान बचाने के चक्कर में उसने आखिरी समय पर इस आत्मघाती हमले को टाल दिया और सही मौके का इंतजार करने लगा। यानी यहां अगर पूरी कहानी को बारीकी से समझ जाएं तो मुख्य रूप से दो बातें समझ आती हैं। पहला, आरोपों के मुताबिक हो सकता है कि क्रू मेंबर भी इस को पायलट के साथ, अभी भी इस पर बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि एक यात्री के इंटरव्यू और एक मीडिया रिपोर्ट के अलावा अभी कोई और ठोस जानकारी नहीं आई है। लेकिन इसमें दावा यही किया गया है कि कहीं क्रू मेंबर्स भी शामिल तो नहीं थे? आखिर वो हमलावर पायलट के हाथ खोलने की बात क्यों कर रहे थे? ये यात्री के हवाले से दावा है। दूसरा, यह भी हो सकता है कि एक क्रू मेंबर एयरलाइन के उस पुराने प्रोटोकॉल का पालन करने की कोशिश कर रहे थे जिसमें यात्रियों को कानून हाथ में लेने या किसी को बंधक बनाने से रोका जाता है। जाहिर तौर पर क्या कोई कल्पना कर सकता है कि सामान्य स्थिति में कोई किसी पायलट का हाथ बांधे यात्री? बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन यह असामान्य परिस्थितियां थी। हालांकि यहां यह सवाल भी उठता है कि जब को पायलट ने मुख्य पायलट कैप्टन स्मिथ को लहूलुहान किया था, तब ये क्रू मेंबर्स उनके हाथ पैर खोलने की मांग क्यों कर रहे थे, जो हम लगातार पूछ रहे हैं। इन्हें ज्यादा चिंता तो मुख्य पायलट कैप्टन स्मिथ की करनी चाहिए थी, भाई वो भी फ्लाई दुबई के कैप्टन है और वो मेन पायलट थे और उन्हीं पर ये हमले किए गए थे, उनको मारा गया था इस तरह से, तो क्या उनको कैप्टन स्मिथ की चिंता नहीं करनी चाहिए थी? और अगर उनको कैप्टन स्मिथ की चिंता होती तब उनको समझ में आता कि इस को पायलट, इस हमलावर पायलट को काबू में करना, उनका हाथ पैर बांधना, क्योंकि वो इमरजेंसी एक्ट से कई बार कैप्टन स्मिथ को मार चुके थे, तो उनको नियंत्रण में करना सबसे जरूरी था। अब आपको इस को पायलट की कहानी बताते हैं जो अलकायदा के आतंकवादियों को अपनी प्रेरणा और खुद को जिहादी मानता था। ओमान के इस को पायलट का नाम हम्माम अल हम्मामी है, जो 29 साल का है। यह नाम अभी पश्चिमी मीडिया, इजरायली मीडिया और अल जजीरा की रिपोर्ट में सामने आया है, लेकिन खुद यूएई ने इस नाम की आधिकारिक रूप से अभी पुष्टि नहीं की है। अल जजीरा की रिपोर्ट में यह भी दावा है कि इस आरोपी पायलट का जन्म यूएई में ही हुआ था, जबकि उसके माता पिता ओमान से थे और मां सीरिया से थी, और इसी वजह से आगे चलकर उसे ओमान की नागरिकता मिल गई। जो लोग ये कह रहे हैं कि वो यूएई या सीरिया का भी नागरिक था, अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक वो गलत दावा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हम्माम उस दौर में कई सालों तक सीरिया में रहा, जहां जब वहां पर गृह युद्ध चल रहा था, और दावा है कि इसी दौरान वो अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों के संपर्क में आया, उससे जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा भी लेने लगा। इसके अलावा द वीक की रिपोर्ट कहती है कि अभी इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या इस आरोपी को सीरिया में मौजूद किसी आतंकी संगठन के जरिए इसराइल पर हमला करने के लिए कोई बाहरी मदद या लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा था। यह सवाल भी उठ रहा है क्योंकि इस हमले के बाद अलकायदा के समर्थकों द्वारा शुरू की गई एक मैगजीन में इस घटना की तुलना, जानते हैं, सीधा अमेरिका में हुए 9/11 के आतंकी हमले से कर दी गई है। इसमें अलकायदा ने लिखा है कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, इसराइल, अमेरिका और इस्लाम के खिलाफ लड़ने वाले अन्य काफिरों को ले जाने वाले विमान अभी भी आसमान में मंडरा रहे हैं और उन्हें निशाना बनाया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे 11 सितंबर 30 सितंबर ये दो तारीखों को हुआ था। अलकायदा की इस धमकी से इस बात के संकेत मिलते हैं कि एक को पायलट क्या उनके संपर्क में था। स्काई न्यूज की भी एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि हम्माम को 2014 में ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीजा मिला था और वो साल 2015 से 17 के बीच मेलबर्न की एक यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। 2019 में उसका वीजा आधिकारिक तौर पर रद्द किया गया क्योंकि उसने कोर्स छोड़ दिया था और इस दौरान वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए कट्टरपंथी मस्जिदों में भी जाने लगा था, और अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार भी इन दावों की जांच कर रही है। लिंक्डइन के मुताबिक हम्माम ने करीब 7 सालों तक ओमान एयर में काम किया। बड़ी बात यह है कि ओमान एयर को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि हम्माम आतंकी और कट्टरपंथी संगठनों के संपर्क में हो सकता है। उस वक्त ओमान एयर और वहां की सरकार से जुड़े कुछ अधिकारियों ने उसके सोशल मीडिया और दूसरी गतिविधियों की जांच कर ली थी और उसमें यह पाया था कि उसका झुकाव अलकायदा की तरफ बहुत ज्यादा है। इसके बाद ओमान एयर ने उसके विमान उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, उसे डेस्क जॉब पर शिफ्ट किया गया था। सोचिए, ऐसा बैकग्राउंड था इसका। यही नहीं, ओमान के कानून के तहत हम्माम को उस वक्त डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम में डाला गया था। ये ओमान और खाड़ी देशों में चलाया जाने वाला वो प्रोग्राम होता है जिसके तहत आतंकवाद को सही मानने वाले कट्टरपंथियों को यह बताया जाता है कि वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं और उन्हें आतंकवाद का रास्ता छोड़ देना चाहिए। ये बाकायदा एक प्रोग्राम है वहां पर, डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम। इस ओमानी पायलट के लिए ऐसा करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ओमान एयर को उसके सोशल मीडिया पर अलकायदा के ओसामा बिन लादेन और आयमान अल जवाहिरी की तस्वीरें और पोस्ट मिली थी। यही नहीं, वो अलकायदा के कुख्यात सुसाइड बॉम्बर हुमाम खलील अबू मुलाल अल बलावी से काफी प्रेरित था, जिसने 2009 में अफगानिस्तान में अमेरिकी बेस पर खुद को उड़ा दिया था। और ये खुद भी यही करना चाहता था। इसलिए ब्रिटेन की बकिंगम शायर न्यू यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस लर्निंग में एविएशन मैनेजमेंट की पढ़ाई की और ओमान एयर में डेस्क जॉब पर शिफ्ट होने के बाद ये ऐसी एयरलाइन में नौकरी ढूंढने लगा जिसके विमान इसराइल जाते हैं और जिसमें यहूदी यात्री ज्यादा सफर करते हैं। इसी कोशिश के तहत ये 8 महीने पहले फ्लाई दुबई एयरलाइन का हिस्सा बना। और जानते हैं इस घटना में इसकी कोशिश क्या थी। सऊदी अरब के एक अधिकारी ने बताया है कि इस को पायलट ने बिना किसी पछतावे के ये कबूल किया है कि उसका एकमात्र मकसद 174 लोगों से भरे इस विमान को तेल अवीव की धरती पर क्रैश कराना था। वो या तो इस विमान को तेल अवीव के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्रैश कराना चाहता था या वो 9/11 हमले की तरह इस विमान को तेल अवीव की किसी ऊंची इमारत से टकराकर बड़ा आत्मघाती हमला करना चाहता था। और अगर ऐसा हो जाता तो इस हमले में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग मारे जा सकते थे। और यही कारण है कि आज इस को पायलट की तारीफ अलकायदा कर रहा है और इस घटना को अपनी जान पर खेलकर रोकने वाले कैप्टन स्मिथ की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। और क्यों कर रही है उसके लिए आप इस नए खुलासे को भी सुनिए। कैप्टन स्मिथ मचार ने बताया कि जब उड़ान के दौरान सब कुछ पूरी तरह सामान्य था तभी अचानक ये को पायलट अपनी सीट से उठा और ये कहने लगा कि वो नमाज पढ़ना चाहता है। उस वक्त कैप्टन स्मिथ को ये सामान्य लगा क्योंकि कई मुस्लिम पायलट लंबी फ्लाइट्स के दौरान कॉकपिट में नमाज पढ़ते हैं और यहां भी कैप्टन स्मिथ ने बिना कोई शक किए अपना ध्यान सामने की तरफ केंद्रित कर लिया और यही सोचा कि इसको पायलट को वाकई में नमाज पढ़नी होगी। लेकिन हकीकत में ये उसकी एक सोची समझी साजिश थी। जैसे ही कैप्टन स्मिथ ने आगे देखना शुरू किया पीछे से वो नाटक कर रहा था और उसने हमामी ने कॉकपिट में इमरजेंसी के लिए रखी गई जो क्रैश कुल्हाड़ी यानी फायर एक्स है उसको उठा लिया कैप्टन स्मिथ पर पीछे से वार कर लिया। कुल्हाड़ी से सिर और शरीर पर लगातार कई वार होने के बावजूद वो लड़े लेकिन इसकी वजह से जानते हैं कैप्टन स्मिथ खून से लथपथ होकर कॉकपिट के फर्श पर गिर गए। और आप सोच ही सकते हैं कल्पना कर सकते हैं ऐसी धारदार हथियार से हमला हो तो उनके सामने अंधेरा छाने लगा जैसा उन्होंने बताया और बहुत मुश्किल था उनके लिए। इसी दौरान इस को पायलट ने विमान के कंट्रोल्स को दबाकर विमान को तेजी से नीचे गिराना शुरू किया। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक यह विमान महज 29 सेकंड में 14,000 फीट नीचे गिर गया था जिससे केबिन में यात्री चीखने चिल्लाने लगे थे। कैप्टन स्मिथ ने 17 साल के अपने एविएशन अनुभव से भाप लिया था कि प्लेन क्रैश होने वाला। उन्होंने हिम्मत जुटाई फर्श पर घिसटते हुए वो किसी तरह कॉकपिट को घुमाकर खुलने वाले हैंडल तक पहुंचे और पहली बार में उन्होंने गेट खोल भी दिया। दावा है कि बाहर खड़े क्रू मेंबर्स या यात्री कुछ समझ पाते उससे पहले ही इस कट्टरपंथी को पायलट ने झपट कर कॉकपिट का दरवाजा दोबारा बंद कर दिया और कैप्टन स्मिथ पर फिर से हमला करने लगा। दरवाजा बंद होने के बाद कैप्टन स्मिथ गंभीर रूप से घायल हालत में फर्श पर पड़े थे। उन पर कुल्हाड़ी से वार जारी। कैप्टन स्मिथ ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बताया कि उनके शरीर में बस एक आखिरी लड़ाई बची थी और उन्होंने उस वक्त ऐसा ही किया। इस को पायलट के नीचे होने के बावजूद दूसरी बार कॉकपिट का गेट खोल दिया। इस बार दरवाजा खुलते ही बाहर खड़े इजरायली यात्री तुरंत कॉकपिट के अंदर कूद पड़े। उन्होंने हमलावर को पायलट को दबोचा बांध दिया। फ्लाइट में मौजूद अन्य ऑफ ड्यूटी पायलट्स ने विमान के कंट्रोल्स को संभाला और उसकी सुरक्षित लैंडिंग कराई। सुनिए।
1: यू आर ट्रू हीरो ऑफ द ब्रेव पीपल्स ऑफ इंडिया एंड इजराइल एंड यू आर हीरो ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। आई wish you a very speedy and complete recovery. But tell me, I wanted to ask you, how did it all begin? Can you tell me how it began?
2: It was a normal flight and the co-pilot wanted to pray, which a lot of locals, they do pray. And which is not out of the ordinary, but while he was praying, out of respect, I was just looking at the front and not at the back. And suddenly, after I think I would say about 4-5 minutes, there was a big blow to the back of my head. My first thought was that there was a catastrophic damage to the aircraft and something is not right. But then after that, the blow kept coming one after the other. And that's when I realized that it's not the aircraft, it's the other guy who was in the cockpit with me. I had that one last fight left in me that, you know, call it.
0: सुनकर बस ये लगता है कि आज पूरी दुनिया उनकी हिम्मत की दाद क्यों दे रही है। ये ऐसा धारदार हथियार होता है जिससे एक बार चोट कर दी जाए उसके बाद इंसान के लिए शायद उठना मुश्किल हो, लेकिन वो लड़ते रहे और आखिरी उन्होंने कहा कि एक लास्ट जो मेरे में हिम्मत बची थी वो पूरी ताकत लगा के मैंने उसे खोल दिया। इस घटना में ओमान, यूएई और इसराइल तीनों से भारी चूक हुई है और आज हम ये बताना चाहते हैं। ओमान की गलती ये थी कि उसके पास आरोपी के कट्टरपंथी होने के सबसे पुख्ता सबूत थे, लेकिन फिर भी उसने इसके बारे में यूएई की फ्लाई दुबई एयरलाइन को कुछ नहीं बताया। यूएई आमतौर पर विदेशी पायलट्स की भर्ती में कड़ी जांच करता है, लेकिन हमाम के इस मामले में उसका पूरा सिस्टम पूरी तरह फेल हुआ। इस घटना में इसराइल से भी बहुत बड़ी चूक है। नियम के मुताबिक किसी भी विदेशी विमान के इसराइल की सीमा में घुसने से कुछ घंटे पहले यात्रियों और क्रू मेंबर्स की पूरी लिस्ट उसके सुरक्षा अधिकारियों को भेजी जाती है, और यहां भी फ्लाई दुबई ने यह लिस्ट उसके साथ साझा की थी। लेकिन इसराइल के ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री के सुरक्षा प्रमुख ने कबूल किया है कि मंत्रालय के पास हर विदेशी फ्लाइट के प्रत्येक क्रू मेंबर का बैकग्राउंड चेक करने का ना तो कोई साधन है और ना ही इतनी क्षमता, जिसके कारण वो इस आरोपी पायलट की पहचान नहीं कर पाया और ये पूरी घटना हुई। फ्लाई दुबई, सबसे बड़ी बात आज फ्लाई दुबई को लेकर हो रही है कि ये वही कंपनी है जिसमें ये पायलट नियुक्त थे। ऐसे में उन्होंने बैकग्राउंड चेक ठीक से क्यों नहीं कहा किया, और अगर किया तो क्या जो कट्टरवाद पढ़ना था इस हमलावर पायलट की जिंदगी का उसको नजरअंदाज किया गया। इस पूरी कहानी में केवल मोरक्को की राष्ट्रीय एयरलाइंस रॉयल एयर मोरक्को ही एकमात्र ऐसी एजेंसी है जिसने हमाम के को रेड फ्लैग को पहचाना था। 2025 में जब ओमान से बैन होने के बाद हमाम ने मोरक्को में नौकरी के लिए आवेदन किया तो वहां 3 महीने की ट्रेनिंग से उसे सुरक्षा और परफॉर्मेंस के मानकों पर अनफिट पाया गया और मोरक्को ने उसे नौकरी देने से इनकार कर दिया था। इस घटना के बाद कई चीजों को लेकर एक बहस हो रही है। इनमें पहली चीज यह है कि क्या विमान के कॉकपिट में सभी पायलट्स के धार्मिक गतिविधि पर रोक लगनी चाहिए, जैसे इस मामले में आरोप है कि हमाम ने नमाज पढ़ने का बहाना बनाकर कैप्टन स्मिथ पर पीछे से वार किया था। कैप्टन स्मिथ भी उस पर इसलिए शक नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें लगा कि को पायलट नमाज को लेकर ऐसा झूठ नहीं बोलेगा, और उन्होंने कहा भी नतन्याहू के सामने कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट, यानी सिर्फ सम्मान देते हुए मैं मुड़कर जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो मैंने नहीं देखा, ताकि उनको बाधित ना फील हो। दूसरा, क्या अब दुनिया को यह भी देखा जाएगा कि किस धर्म के लोग विमान में उड़ रहे हैं, और क्या पायलट्स के धर्म की अब बात आएगी, क्या लोगों के मन में अविश्वास आएगा। इसराइल की मीडिया में तो प्रमुखता से ये आवाज उठाई जा रही है। अब तक विमान उड़ाने वाला तीसरी बात पायलट्स को नशे की जांच होती है, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है, डोप टेस्ट होता है, लेकिन इस घटना के बाद अब सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बहस यही छिड़ गई है कि ऐसा टेस्ट कैसे होगा जिससे ये पता चले कि वो कट्टरपंथी तो नहीं, आतंकवादी संगठनों से प्रेरित तो नहीं। और ऐसे में जितनी भी एयरलाइन इंडस्ट्री की कंपनीज हैं उनकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उनको बहुत बारीकी से इन पायलट्स का बैकग्राउंड चेक करना होगा, और इन पायलट्स के बैकग्राउंड चेक के साथ साथ उनको बहुत गहन जांच करनी होगी इनको ऐसी संवेदनशील फ्लाइट्स को ले जाते वक्त। खैर, इस घटना की जड़ में एक मूल कारण इसराइल और फिलिस्तीन का विवाद भी है, जिसकी वजह से इस आरोपी पायलट ने तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की इस फ्लाइट को क्रैश कराने की कोशिश की। और यह विवाद इतना संवेदनशील क्यों है उसके लिए आप फ्रांस के इन दंगों को भी देख सकते हैं।

फ्री पैलेस्टाइन के नारों और फिलिस्तीन के झंडों को दिखने से बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। फ्रांस के दक्षिण पंथी नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि आंदोलन अब केवल मासूम स्कूली छात्रों का आंदोलन नहीं रह गया। उनका दावा है कि कट्टर वामपंथी पार्टी और बाहरी ताकतों ने इस छात्र आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। वो जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे और धार्मिक प्रतीकों को स्कूलों में ले जा रहे हैं ताकि समाज में ध्रुवीकरण किया जा सके। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस वायरल हुए हैं जहां प्रदर्शनकारी युवा स्कूल के गेट या इमारतों पर फिलिस्तीन का झंडा लगाते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा छात्र नस्लवाद के खिलाफ भी नारे लगा रहे हैं और जानते हैं छात्रों के इस आंदोलन में फिलिस्तीन के झंडों या फ्री पैलेस्टाइन के नारों की एंट्री कहां से हुई। इन विरोध प्रदर्शनों की मुख्य शुरुआत पेरिस के गरीब और पिछड़े शहरों से हुई थी जहां बड़ी संख्या में उत्तर अफ्रीकी और मुस्लिम मूल की आबादी रहती है। इन युवाओं में फ्रांस की व्यवस्था के खिलाफ तो गुस्सा है ही, साथ ही वो फिलिस्तीन के मुद्दे के साथ खुद को भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ा हुआ पाते हैं। और बड़ी बात यह है कि फ्रांस की मौजूदा सरकार ने खुद फिलिस्तीन के इन लोगों को अपने यहां शरण दी है। फ्रांस की सरकार हर साल अपने देश में कुछ फिलिस्तीनी नागरिकों या मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देती है। 2025 में 19 फिलिस्तीनी नागरिकों को शरण दी गई, लेकिन अब फ्रांस के दक्षिणपंथी नेता कह रहे हैं कि जिन्हें फ्रांस ने अपनाया वही लोग फिलिस्तीन के झंडे उठाकर छात्र आंदोलन की आड़ में देश को जला रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कोई भी चुनाव सियासत के बड़े सिग्नल लेकर आता है। अब हम वापस देश के खबरों का रुख कर रहे हैं और आज भी जो हुआ है उत्तर प्रदेश में बड़ा दिलचस्प है, आपको देखना चाहिए। आज भी वही हुआ जब बीजेपी ने 8 राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किए तो यूपी से लेकर केंद्र की सियासत में बदलावों की आहट अब सुनाई पड़ गई है। इन उम्मीदवारों के नाम आपको बताऊं उससे पहले इस लिस्ट से बीजेपी के 4 टिक मार्क बताती हूं। जाति संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन, महिला प्रतिनिधित्व, संगठन का अनुभव। सबसे पहले देखिए बीजेपी ने इन उम्मीदवारों के जरिए जाति संतुलन कैसे साधा। 8 में से 2 दलित उम्मीदवार हैं। पहली है प्रियंका सिंह रावत और दूसरा चेहरा है विद्यासागर सोनकर। प्रियंका रावत पासी समाज से आती हैं, यूपी में 3.5% पासी आबादी है। विद्यासागर सोनकर खटिक समाज से आते हैं जिनकी उत्तर प्रदेश में आबादी करीब 1% है। लिस्ट में ओबीसी के 3 चेहरे हैं और तीनों अलग अलग समूहों से हैं। धर्मपाल सिंह 3% आबादी वाली लोधी जाति से, प्रकाश पाल 1% आबादी वाले पाल गडेरिया समाज से, जबकि श्रुति गंगवार 5% कुर्मी आबादी की प्रतिनिधित्व कर रही है। गोपी कृष्णा पांडे और राधाकांत ओझा ब्राह्मण समाज से हैं और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी तकरीबन 7% के आसपास है, जबकि राम प्रताप सिंह चौहान 7% क्षत्रिय आबादी वाली जाति से आते हैं। अब जरा देखिए कि कैसे बीजेपी ने पूरी यूपी को साधा। आंवला से आने वाले धर्मपाल सिंह और बरेली की श्रुति गंगवार रुहेलखंड क्षेत्र से है। बाराबंकी से आने वाली प्रियंका सिंह रावत अवध क्षेत्र की प्रतिनिधि, जबकि आगरा के राम प्रताप सिंह चौहान यूपी के ब्रज क्षेत्र से आते हैं। जौनपुर के विद्यासागर सोनकर और प्रयागराज के राधाकांत ओझा पूर्वांचल से, कानपुर के प्रकाश पाल और कानपुर के ही गोपी कृष्णा पांडे बुंदेलखंड कानपुर क्षेत्र की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये तो हो गया जाति क्षेत्र संतुलन। 2 महिला उम्मीदवार हैं, प्रियंका सिंह रावत और श्रुति गंगवार का नाम भी आपने देख लिया। हालांकि आपको देखना पड़ेगा श्रुति गंगवार जो हैं वो संतोष गंगवार की बेटी हैं और इसीलिए विपक्ष आरोप लगा रहा है कि देखिए आप पी से परिवार बात बता रहे थे जब समाजवादी पार्टी ने रामगोपाल यादव को दिया, लेकिन ये भी संतोष गंगवार की बेटी श्रुति गंगवार है। खैर अब आपको इस लिस्ट में बीजेपी संगठन के अनुभव को मिली तरजीह और 2027 के यूपी चुनाव के संदेश भी बताती हूं। इस नजरिए से बीजेपी लिस्ट में सबसे अहम नाम है राम प्रताप सिंह चौहान का। वो उत्तर प्रदेश संगठन में सक्रिय हैं। राम प्रताप सिंह चौहान पश्चिमी उत्तर प्रदेश इकाई के प्रभारी रहे, यूपी संगठन के अहम चेहरे हैं। राज्यसभा की दावेदारी सौंपकर बीजेपी ने 27 के यूपी चुनाव से केंद्रीय लिंक को और मजबूत करने का संदेश दिया है। बीजेपी ने जिस तरह अपनी लिस्ट बनाई है वो साफ तौर पर अखिलेश यादव के पीडीए के नैरेटिव को चैलेंज देने वाला है।
अखिलेश यादव ने राम गोपाल यादव और धनराज नाथवानी को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी आरोप लगा चुकी है कि अखिलेश के पीडीएम में पी का मतलब

0: और पूंजीवाद है। 2027 के यूपी चुनाव के लिए पीडी अखिलेश का बड़ा दाव है, जिसमें वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पंडित, आदि आबादी, अगड़ा सब शामिल करते हैं, लेकिन राज्यसभा के नॉमिनेशन के जरिए बीजेपी उनके पीडीए के सामने खुद का सबका साथ सबका विकास वाला दाव चलती दिख रही है।
1: ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पार्टी ने जो हम पर भरोसा किया है, हमेशा काम लिया है, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूं और पार्टी का काम और आगे बढ़ा सकूं, सेवा के भाव से।
2: जिन्होंने मुझ जैसे सामान्य पृष्ठभूमि वाले कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया है, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
3: जो जिम्मेदारी, जो विश्वास।
0: उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के वोट की लड़ाई अभी से शुरू हो गई। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम सवाल गूंज रहा है, क्या अब्दुल केवल दरी बिछाने के लिए है या उसे प्रदेश की राजनीति में वाजिब हिस्सा दिया जाएगा। श्रावस्ती में AIMIM चीफ असदुद्दीन वैसी की एक रैली हुई, अब वो लगातार एक डायलॉग बार बार हर मंच से कह रहे हैं। उन्होंने फिर समाजवादी पार्टी को अपने निशाने पर लेते हुए यही सवाल उठाया। उनका निशाना यूपी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में मुस्लिम उम्मीदवारों की कम भागीदारी को लेकर था। हम आपको उनका बयान सुनवाते हैं, उसके बाद इस बयान का मतलब मकसद दोनों बताएंगे।
4: अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, जद्दन दरी नहीं बिछाएगा, शौकत दरी नहीं बिछाएगा, अब जद्दन केबल लगाएगा, कुर्सी पर बैठ कर कहेगा बोल इंसाफ करता है या नहीं करता है।
0: असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान का मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी उम्मीदवार चुनते वक्त मुस्लिमों को वो प्रतिनिधित्व नहीं देती है जो उनको मिलना चाहिए। ओवैसी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर्स को ये बताना चाहते हैं कि वो जिस पार्टी को भरपूर समर्थन देते आ रहे हैं, असलियत में वो उनके राजनीतिक रूप से उनको पीछे रखती है। ये सच है कि पारंपरिक रूप से अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं की पसंद समाजवादी पार्टी रही है। साल 2022 में विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन को यूपी के 79% प्रतिशत मुस्लिमों ने वोट किया था, जबकि एनडीए को 8%, अन्य को 13% मुस्लिम मतदाताओं के वोट मिले थे। इसके बाद साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश के 92% मुसलमानों का वोट मिला था, जबकि एनडीए को सिर्फ 2% और अन्य को 6%। मतलब यह है कि यूपी में बीजेपी से इतर समाजवादी पार्टी हो या उससे जुड़ा हुआ जो भी गठबंधन, उनको मुस्लिम वोटर्स का पूरा समर्थन मिलता है। इसीलिए हैदराबाद वाले ओवैसी जी जब जब उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरते हैं तो कहते हैं कि जब समर्थन मिलता है तो प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जाता। दरअसल यूपी की कुल आबादी 20 करोड़ है, 19% मुस्लिम है, 11% यादव है। अगर हम समाजवादी पार्टी के चुनावी गणित की बात करें तो साल 2022 में समाजवादी पार्टी ने 347 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें 57 मुस्लिम और 54 यादव उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दिया। सवाल यह उठा कि जिस पार्टी को मुस्लिम वोटर्स का समर्थन मिलता है उसको टिकट बंटवारे में पीछे क्यों रखा गया। 19% आबादी वाले यूपी में सपा ने टिकट बंटवारे में केवल 16% मुस्लिम उम्मीदवारों को ही टिकट क्यों दिया। अब बीजेपी को यह बात सूट करती है, लेकिन सबसे ज्यादा सूट करती है AIMIM वाले असदुद्दीन ओवैसी को। वो कहते हैं कि राज्य की 11% आबादी वाले यादव समाज के 15% उम्मीदवारों को टिकट दिए गए, यानी जिनकी आबादी ज्यादा है और जो पूरा समर्थन करते हैं, एक मुश्त करते हैं, उनको कम, और जिनकी आबादी कम है उनको ज्यादा प्रतिनिधित्व क्यों दिया जाता है। वो वैसे ये भी जानते हैं कि इस वक्त यूपी में सपा के 101 विधायक हैं, जिनमें 28 मुस्लिम हैं और 24 यादव समाज से हैं। परफॉर्मेंस के हिसाब से भी देखें तो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार ज्यादा कामयाब रहे हैं, और यही वजह है कि ओवैसी कटाक्ष कर रहे हैं कि इस बार अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा बल्कि कुर्सी पर बैठेगा। वो बार बार यही कहना चाहते हैं कि आपने छोटे मोटे काम के लिए तो मुस्लिम वोटर को अब्दुल बनाकर रखा हुआ है, लेकिन जब बात कुर्सी की आती है तो अब्दुल से दरी बिछवा लेते हैं और उस पर कुर्सी रखकर खुद बैठ जाते हैं। ये पहली बार नहीं है जब AIMIM की ओर से अब्दुल और दरी का संदर्भ दिया गया। आपको याद होगा बिहार चुनाव से पहले भी AIMIM के नेता शौकत अली ने AI जनरेटेड तस्वीर डाली थी जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति को दरी बिछाते दिखाया गया था। उस वक्त भी 18% मुस्लिम आबादी वाले बिहार में मुस्लिमों की स्थिति पर कटाक्ष किया गया था। यही रणनीति यूपी में दिख रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 73 सीटें यानी करीब 30% सीटें ऐसी हैं जिस पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यूपी के 75 में से 11 मुस्लिम बहुल जिले हैं। 6 जिले तो ऐसे हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 40% से ज्यादा है, जैसे रामपुर में 51%, मुरादाबाद में 47%, बिजनौर में 43%, सहारनपुर में 42%, मुजफ्फरनगर और अमरोहा में 41% मुस्लिम आबादी रहती है। ओवैसी की कोशिश यह है कि मुस्लिम बहुल आबादी वाली सीटों पर पकड़ मजबूत की जाए। जैसे बिहार में कुछ सीटें आ गई और कांग्रेस के लगभग पास पहुंच गए, ऐसे उनको लगता है कि अगर यूपी में भी ये कार्ड खेल दिया तो समाजवादी पार्टी के किले को सेंध लगा देंगे। बढ़ते आगे, जापान के आइची नागोया में एशियन गेम्स 2026 का बिगुल शांत हो चुका है। मेडल टैली में भारत 85 मेडल्स के साथ एशिया के नक्शे पर चौथे स्थान पर मजबूती से डटा है। 21 गोल्ड, 27 सिल्वर, 37 ब्रॉन्ज के साथ भारत ने अपनी खेल ताकत का लोहा मनवाया है। लेकिन इस पूरे सफर का सबसे बड़ा, सबसे धमाकेदार, सबसे गर्व से भर देने वाला सच जानते हैं क्या है? इस बार मेडल भले ही लड़कों और लड़कियों के बराबर आए हों, लेकिन देश का मस्तक सबसे ऊंचा किया है भारत की बेटियों ने। पुरुषों से कम संख्या में जापान पहुंची हमारी बेटियों ने पुरुषों से ज्यादा गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। जापान की धरती पर भारत ने कुल 486 खिलाड़ियों का दल भेजा था। इनमें 260 पुरुष खिलाड़ी, 226 महिला खिलाड़ी शामिल थे। यानी इस दल में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले काफी कम थी, लेकिन जब बात मैदान में भारत का तिरंगा लहराने की और राष्ट्रगान की थी तो बेटियों ने बाजी मार दी। पुरुषों ने कुल 38 मेडल जीते जिनमें 7 गोल्ड शामिल थे। महिलाओं ने भी कुल 38 मेडल ही जीते लेकिन इनमें 11 गोल्ड मेडल शामिल थे। वहीं मिक्स्ड इवेंट्स में भारत को 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज यानी 9 मेडल मिले। पुरुषों के मुकाबले कम संख्या में होने के बावजूद महिलाओं ने 11 गोल्ड जीतकर भारत को मेडल टैली में उज्बेकिस्तान से आगे चौथे नंबर पर बरकरार रखा। ये सिर्फ मेडल के आंकड़े नहीं है, ये उन बेटियों के सपनों की उड़ान है जिन्होंने हर नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है। 17 साल की कुमकुम मोहोड तीरंदाजी में वो कारनामा कर दिखाया जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। कुमकुम ने महिला रिकर्व इंडिविजुअल में भारत को एशियन गेम्स के इतिहास का पहला गोल्ड दिलाया। उन्होंने भारत के लिए लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक कोटा को भी हासिल किया है। गोल्फ के मैदान में प्रणवी उर्स ने व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को पहला ऐतिहासिक गोल्ड दिलाकर 24 साल का सूखा खत्म कर दिया। 44 साल बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल में ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट चाइना को धूल चटाकर हमारी बेटियों ने भारत का परचम लहरा दिया। बॉक्सिंग में भारत को कुल 3 गोल्ड मिले जिनमें से 2 गोल्ड महिलाओं ने हासिल किए हैं। लवलीना बोरगोहेन और परवीन हुड्डा ने अपने मुक्कों के दम पर सोना जीता। मैरीकॉम के बाद एशियन गेम्स में बॉक्सिंग गोल्ड जीतने वाली लवलीना देश की दूसरी महिला बॉक्सर बनी है। ट्रैप शूटिंग में नीरू ढांडा ने इंडिविजुअल गोल्ड के साथ साथ मिक्स टीम में भी देश को गोल्ड दिलाया। ट्रैक पर विद्या रामराज की वो दौड़ कौन भूल सकता है। विद्या ने 400 मीटर बाधा दौड़ में पीटी उषा का 42 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा। 4x400 मीटर्स रिले में स्वर्णिम रेस दौड़कर भारत की झोली में गोल्ड डाल दिया। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और रिश्ते नाते ऐसी रेलगाड़ी है जब जिसका स्टेशन आ जाता है वो उतर जाता है। नमस्कार।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: बीजेपी ने यूपी में 8 सीटों के लिए उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी ने उम्मीदवार चुनने में जातिगत समीकरण का खासा ख्याल रखा है, साथ ही 27 के चुनाव ध्यान में रखते हुए 2 महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया गया है। सभी प्रत्याशी यूपी से ही आते हैं।
1: यूपी में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों की जिस लिस्ट का इंतजार था वो खत्म हुआ। बीजेपी ने आज अपने सभी 8 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया। खास बात ये रही कि इस बार सभी 8 उम्मीदवार नए हैं, मतलब किसी भी पुराने चेहरे को रिपीट नहीं किया गया। नए उम्मीदवारों में 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय चेहरा है। इनमें 3 ओबीसी उम्मीदवार हैं, 2 एससी उम्मीदवार हैं। ओबीसी में लोधी, पाल, कुर्मी समुदाय के उम्मीदवार हैं। महिला प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया है, 2 महिलाओं को टिकट मिला है।
2: ये सिर्फ मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है, पूरे महिलाओं को, पूरी नारी शक्ति को एक जिम्मेदारी मिली है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना इस बात को सिद्ध करता है कि हमारी पार्टी, हमारे आदरणीय नेतागण, हमारे आदरणीय मोदी जी जो कहते हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात, महिला नेतृत्व की बात, आज उन्होंने इस लिस्ट में 2 महिलाओं के नाम से सिद्ध किया है कि महिलाएं देश की प्रगति में, राष्ट्र को आगे ले जाने में कितनी अहम भूमिका है।
3: मुझ जैसे एक सामान्य पृष्ठभूमि के कार्यकर्ता को जो अविचल 36 साल से अधिक समय से पार्टी का आहार निष्काम कर रहा था, उसको आज मौका दिया है और प्रदेश में संदेश देने का काम किया है कि कोई भी कार्यकर्ता अगर निष्ठापूर्वक लगे रहेगा तो पार्टी के नेतृत्व का ध्यान उस पर अवश्य है और ये आज मुझे उम्मीदवार बनाने से पार्टी में संदेश जाएगा।
1: मतलब बीजेपी ने अपना संदेश स्पष्ट कर दिया है। एक तो जातिगत समीकरण को साधा गया है, दूसरा महिलाओं को मौका मिला है, तीसरा सवर्ण मतदाताओं के लिए भी मैसेज है। 27 में यूपी में चुनाव है और राज्यसभा टिकट बांटने में इसका खासा ख्याल रखा गया है, तभी तो सभी 8 उम्मीदवार यूपी के हैं। इसके अलावा पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल बीएल वर्मा और हरदीप सिंह पुरी का टिकट काट दिया गया है। बता दें कि यूपी में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, इनमें 10 सीटों पर 16 अक्टूबर को चुनाव होना है, 6 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी की राजनीति में अगली खबर है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर। अब कांग्रेस की ओर से नई डिमांड कर दी गई है। कांग्रेस कह रही है कि यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस कम से कम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के लिए 50 सीट भी ज्यादा है।
1: यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर गदर मची है। कहा जा रहा था कि कांग्रेस 150 सीटें चाहती है, लेकिन कांग्रेस अब इससे आगे की बात कर रही है।
4: इसने किया 150 का, मैंने तो 200 की बात की थी। मैं शुरू से कह रहा हूँ बराबर का सम्मान और बराबर की इज्जत, बराबर का हिस्सा।
1: लेकिन राजेंद्र पाल गौतम को समाजवादी पार्टी के नेता 2 टूक जवाब देते हैं।
5: मैं ये कहता हूँ उनको 50 सीट देना भी बहुत बड़ी बात होगी, उनको देखना चाहिए। 2 तुम्हारे विधायक हैं, पिछली बार तुमने लड़के देख लिए, क्या इससे तुम्हें सबक नहीं मिलता है?
1: अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि जीत ही सीट का आधार है।
6: जीत ही आधार है, जीत ही सीट का आधार है।
1: और जीत बोले तो आखिरी चुनाव यानी 2024 लोकसभा में मेरी जीत, और वो जीत कुछ ऐसी थी कि 80 में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती और 6 कांग्रेस को मिली थी। इसे विधानसभा के अनुपात में बांटा जाए तो 37 लोकसभा के हिसाब से अखिलेश के हिस्से 347 सीटें बनती हैं और कांग्रेस के हिस्से 56। लेकिन कांग्रेस की हसरतें 56 से 200 तक पहुंच चुकी हैं और हौसला बढ़ता ही जा रहा है। अब कांग्रेस ने उन्हीं इमरान मसूद को कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, जो लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं और 403 सीटों पर लड़ने की चेतावनी देते रहते हैं। पॉलिटिकल मैसेजिंग के तौर पर कांग्रेस ने अपने पत्ते सामने रख दिए हैं। अब बारी समाजवादी पार्टी की ओर से फैसला लेने की है और वो कांग्रेस की सीटों वाली शर्तों के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन करना चाहती है या बीजेपी को हराने के मिशन के साथ। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
0: यूपी में 2027 की सियासी जंग से पहले दलित वोट बैंक पर भी सियासत तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही का नाम संत रविदास नगर भदोही करने का ऐलान कर दिया है। तो योगी सरकार के इस फैसले के पीछे क्या है सम्मान, कल्याण और विकास का सियासी फॉर्मूला, आइए दिखाते हैं आपको।
7: यूपी के चुनावी मौसम में दलित वोटों के लिए हर दल के तरकश में अलग लगती है, और इसी में से एक तीर बीजेपी ने अब यूपी में आजमाया है, जो दलित सियासत में प्रतीकों के तौर पर इस्तेमाल होते आ रहे हैं। सीएम योगी ने ऐसा ही एक ऐलान यूपी में किया, जहां भदोही का नाम संत रविदास के नाम पर किया गया है।
8: कालीन उद्योग के लिए जाना जाने वाला भदोही जनपद आने वाले समय में मध्यकालीन सन जिन्होंने अपनी साधना के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम किया था, ऐसे सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर भदोही जाना जाएगा।
7: भदोही नहीं, नामकरण की बात हो तो कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बहाल किया गया है। वहीं अनुपूरक बजट में डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए 407 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत अंबेडकर, संत रविदास, संत कबीर, ज्योतिबा फुले और महर्षि वाल्मीकि के प्रतिमाओं के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा पर काम होगा। बीजेपी कहती है कि अखिलेश यादव की सरकार ने दलित विरोधी सोच के कारण जिन महापुरुषों के नाम पर रखे गए जिलों, संस्थानों के नाम बदल डाले थे, उनका पुनर्नामकरण करके बीजेपी सम्मान दे रही है।
9: पूर्व में भी भदोही का नाम संत रविदास नगर था, किंतु अखिलेश यादव की दलित विरोधी सोच के नाते से उन्होंने संत रविदास नगर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों के नाम बदले थे। आज उसको सही किया गया है।
10: समाजवादी पार्टी समाज में न किसी वर्ग को अपनी जागीर न वोट बैंक समझती है। वो सभी वर्गों को अपना साथी, सहयोगी और समाजवादी पार्टी के परिवार का हिस्सा समझती है।
7: मतलब ये कि दलितों को रिझाने के लिए दाव चलाए जाने लगे हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: आखिर यूपी में अब्दुल कौन है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अब्दुल अब किसी की दरी नहीं उठाएगा, यानी अब्दुल के वोट का अब कोई भी पार्टी राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। समस्या यह है कि ओवैसी के इन सवालों से समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा नाराज हो रही है।
11: अब्दुल दरी नहीं दिखाएगा, सज्जन दरी नहीं दिखाएगा, शौकत दरी नहीं दिखाएगा।
12: आप नाम मत लीजिए अब्दुल, अब्दुल क्या होता है? आप किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं अब्दुल कह करके।
13: क्यों मौलाना साहब, क्यों लग रहा है आपको इतना बुरा अब्दुल का नाम पर? गाली है अब्दुल।
14: चुनाव से पहले अब्दुल पर घमासान, किसकी तरफ है यूपी का मुसलमान? अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, इस बार किस तरफ जाएगा? यूपी में मुस्लिम वोटों पर हंगामा मचा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ओवैसी के बीच घमासान मचा है कि कौन लेकर जाएगा मुस्लिम वोट, यूपी का मुसलमान किसकी तरफ जाएगा।
15: ओवैसी बोलता है कि एम जिंदा कौम है, दरी नहीं बिछाएंगे बाबा और भैया, अब तुमको दरी बिछाना पड़ेगा हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर उत्तर प्रदेश
14: अपनी रैलियों में ओवैसी अक्सर कहते हैं कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, और इसी अब्दुल पर हंगामा छिड़ गया है। मुस्लिम पॉलिटिक्स में अब्दुल शब्द मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है, खुद ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता इस शब्द यानी अब्दुल का इस्तेमाल करते हैं। अब्दुल का राजनीतिक मतलब निकाला जाता है उस मुसलमान से जिसे राजनीतिक पार्टियां अपना वोट बैंक समझती हैं। इसीलिए ओवैसी कहते हैं कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, यानी अब्दुल अब उन पार्टियों के लिए वोट बैंक नहीं बनेगा जिनके वोटों पर जीत कर ये पार्टियां उन्हें भूल जाती है।
11: अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, सज्जन दरी नहीं बिछाएगा, शौकत दरी नहीं बिछाएगा। अब सज्जन टेबल लगाएगा, कुर्सी पर बैठ कर कहेगा बोल इंसाफ करता है या नहीं करता है। इस मिजाज को आपको पैदा करना है। नौजवानों, आने वाला मुस्तकबिल आपका है, आने वाला मुस्तकबिल आपका है। बुजुर्गों, आपने बरसों इन जालिमों का साथ दिया, इन्होंने झूठ बोलकर आपके ख्वाबों को मिसमार कर दिया, चिकना चूर कर दिया। एक बार मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप अपना वोट देकर यहां से मजलिस के विधायक को कामयाब करिए।
14: ऐसा नहीं है कि ओवैसी ने मुसलमानों के लिए अब्दुल शब्द पहली बार कहा हो, वो पहले भी कहते रहे हैं, लेकिन इस बार विवाद हुआ है रामपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी से पूछे गए सवाल पर, असल में रामपुर में मोहिबुल्ला नदवी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसी में एक पत्रकार ने उनसे अब्दुल के नाम पर यह सवाल पूछ लिया तो नदवी बुरी तरह से भड़क गए।
12: मुसलमान इस देश के सबसे मोहतर शहरी
16: है, इसके चुनाव की क्या तैयारी है? और हर पार्टी जो है 27 के चुनाव में अब्दुल को याद करती, इस वक्त अब्दुल कहाँ है?
12: क्या मतलब आप नाम लीजिए, अब्दुल अब्दुल क्या होता है? आप किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं अब्दुल कहकर के?
16: नहीं, हर पार्टी
12: आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। अब्दुल मींस क्या होता है?
16: हर पार्टी
12: किसे कहते हैं अब्दुल का? नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा आपकी बात को। अब्दुल अब्दुल लगाया क्या होता है? अब्दुल
16: बताइए,
12: मुसलमान इस देश के सबसे मोहतर शहरी हैं, जिन्होंने देश की कुर्बानी हजारों साल सैकड़ों साल से देश में कुर्बानियां दी है। कांग्रेस पार्टी के आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी पे देख लीजिए, सब लोग हैं। आप अब्दुल अब्दुल कहकर के आप खड़ाने की कोशिश करते हैं।
14: रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद को लग रहा है कि ऐसे अब्दुल का नाम लेकर मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्हें आपत्ति है कि मुसलमानों को अब्दुल कहा जा रहा है। ये करीब 5 साल पहले का रामपुर का ही बयान है और जो ये अब्दुल कह रहे हैं ये कभी आजम खान के करीबी हुआ करते थे और उन्हीं की सभा में इन्होंने ये अब्दुल वाला बयान दिया था। इनका नाम है फसाहत अली शानू। अब ये बीजेपी में है और अब्दुल के नाम पर जब मौजूदा रामपुर के सांसद को आपत्ति हुई तो इन्होंने उन्हें बताया कि अब्दुल कौन है।
13: क्यों मौलाना साहब, क्यों लग रहा है आपको इतना बुरा? अब्दुल के नाम पर गाली है? अब्दुल आपकी घर की दीवारों की रंग पॉलिश करता है, वो है अब्दुल। आपकी मोटरों के पंजा जोड़ता है, वो है अब्दुल। जिसके नाम के आपकी आपने और आपकी पार्टी ने रोटियां सेकी है, वो है अब्दुल। देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई उसके वोटों से, वो है अब्दुल। जमाने से आज भी थाने में पिटता आ रहा है, वो है अब्दुल। आपने तो इमामत की कीमत कबूल ली, आप तो मस्जिद में नमाज पढ़ाते पढ़ाते सांसद बन गए। अब्दुल के वोटों से बने आप सांसद, अब्दुल के नाम पे भड़कते हैं आप, अब्दुल के नाम पे गुस्सा आता है आपको। आपकी पार्टी ने राज्यसभा में किसको भेजा है? नथवानी को भेजा है, और जो राज्यसभा में नथवानी को भेजा है वो भी अब्दुल की वजह से भेजा है। अब्दुल ने आपकी पार्टी की यह हैसियत बनाई कि आपकी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी।
14: यूपी के मुसलमानों के मन में यह भी सवाल है जिसका जिक्र फसाहत अली शानू भी कर रहे हैं कि जब राज्यसभा देने की बारी आई तो समाजवादी पार्टी ने धनराज परिमल नाथवानी को राज्यसभा भेजा, ना कि किसी मुसलमान नेता को। यहीं से यह नैरेटिव बनता है कि अब्दुल इन पार्टियों के लिए कब तक दरी बिछाएगा।
15: पूछेंगे समाजवादी थी तो क्या था? समाजवादी थी तो वाई था, वाई का फायदा था। अब बाबा बन गए तो टी का फायदा है, टी का फायदा है। ना वो एम बोलते ना ये एम बोलते, कोई एम नहीं बोलता। ओवैसी बोलता है कि एम जिंदा कौम है। दरी नहीं बिछाएंगे बाबा और भैया, अब तुमको दरी बिछाना पड़ेगा हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला।
14: कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: आज तक ये खबर का असर हुआ है। पिछले शुक्रवार को हमने बिहार के जर्जर स्कूलों से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाई थी, उसके बाद बिहार सरकार की नींद खुली है। छात्रों को स्कूल से शिफ्ट कर दिया गया है और मरम्मत का काम शुरू हो गया है।
17: अब ये हिस्सा देखिए स्कूल का, ये आप देख के समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या है। यहाँ खड़ा होना भी कितना आप कह सकते हैं ये यहाँ पर खतरनाक है, क्योंकि जिस जगह पर आप ये देख रहे होंगे ये पूरा ये ढांचा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक टेम्पोररी व्यवस्था की गई है पिलर का रूप देने के लिए।
14: बिहार के दरभंगा के इस स्कूल की हालत जिसने भी देखी वो गुस्से से भर गया। आक्रोशित होने वाली बात ये तो थी ही कि कैसे एक स्कूल की इमारत बेंच के भरोसे खड़ी है।
7: उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात बिहार के शिक्षा विभाग की अनदेखी थी, जो बार बार स्कूल प्रिंसिपल की गुहार लगाने के बावजूद सोता रहा। इसकी वजह से सालों से जान जोखिम में डालकर सैकड़ों बच्चे इस खतरनाक स्कूल में पढ़ने को मजबूर थे। जब कुछ नहीं हुआ तो आज तक ने इस स्कूल को लेकर बिहार सरकार को खबरदार किया। आखिरकार बिहार सरकार हरकत में आई। सालों से सोया बिहार का शिक्षा विभाग भी एकाएक जागा और कीरतपुर प्राथमिक विद्यालय को गोसवा मध्य विद्यालय में शिफ्ट कर दिया। आज तक पर यह खबर दिखाए जाने के बाद ही बिहार के शिक्षा विभाग ने स्कूल शिफ्ट करने का आदेश जारी कर दिया। ये देखिए, शुक्रवार को यह आदेश जारी हुआ और रविवार को बच्चे दूसरे स्कूल में जाने लगे।
18: ये झरझर के गिर रहा है, बहुत डर है।
19: हाँ, हाँ। कभी किसी को बच्चे को चोट भी लगा था, इससे गिरा था इसके पहले?
18: गिरता था लेकिन सर बचा लिया।
19: हाँ, जब बरसात होता था
18: तो पानी टपकता था।
19: हाँ, तो मन में डर भी लगा रहता था।
18: हाँ।
19: अब जा रही हो दूसरे स्कूल तो वहाँ ठीक है ना सर?
18: हाँ।
7: 2 अक्टूबर को आज तक संवाददाता रोहित सिंह दरभंगा के इस स्कूल में गए थे। उन्होंने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे बच्चों की जान जोखिम में डालकर स्कूल चल रहा है। आज तक पर ये रिपोर्ट चलने के बाद अगले ही दिन बिहार के शिक्षा विभाग ने अपने अफसरों को स्कूल के निरीक्षण के लिए दौड़ाया और मौत के साए में पड़ते बच्चों को राहत मिल गई।
20: इसी खबर को जब आज तक ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया तो बिहार सरकार ने इसको संज्ञान में लिया और आदेश निकाला गया कि जिला प्रशासन को आदेश दिया गया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। इस दर्जर भवन पर पठन पाठन का काम जो है वो नहीं हो और आनन फानन में एक आदेश प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा स्कूल के प्रिंसिपल को भेजा गया, जिसमें यह बताया गया कि स्कूल में पठन पाठन का काम अब अगले दिनों से जब भी स्कूल खुलेगा तो नहीं होगा। इन बच्चों को टीचर यहां से लेके जो है वो गोसवा मध्य विद्यालय लेके जाएंगे, जहां स्कूल को शिफ्ट किया गया है, क्योंकि बच्चे को अभी ये पूरी जानकारी नहीं हो पाई है। और जो यहाँ प्रिंसिपल है वो भी हम लोग के साथ है, टीचर लोग भी, अब ये लोग प्रस्थान कर रहे हैं। हम खुद प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे, वो अपने कार्यालय में कुछ कागजी खाना पूर्ति करके निकल रहे हैं और वो दूसरे स्कूल की तरफ जाएंगे। सर ये बताइए कि क्या कहेंगे, खबर आज तक ने दिखाई तो क्या हुआ और आप अभी क्या आदेश आया आप लोग को?
21: मुझे आदेश आया है कि विभागीय पत्र के अनुसार मेरा विद्यालय दूसरे जगह शिफ्ट किया गया, मध्य विद्यालय गोसवा में जी।
19: फिर
21: हम लोग तो सभी बच्चे और शिक्षक वहाँ पहुँच जाएंगे जी, जा रहे हैं अभी तुरंत लेकर के।
19: तो क्या यहाँ वाकई क्या स्थिति का खतरा था?
21: हाँ, यहाँ तो खतरा था।
7: आज तक के खबरदार करने के बाद स्कूल की मरम्मत के लिए बजरी भी स्कूल पहुँच चुकी है। बच्चे पासी के दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब बच्चे सुरक्षित होकर पढ़ेंगे। रोहित सिंह के साथ प्रहलाद कुमार, दरभंगा आज तक।
0: पाकिस्तान में इमरान खान की सेहत और रिहाई को लेकर की जा रही मांगों को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। उनकी पार्टी पीटीआई अब निर्णायक लड़ाई लड़ने के मूड में आ चुकी है। खैबर के अलग अलग इलाकों से हजारों लोगों को जुटाया जा रहा है और इस्लामाबाद कूच करने की अपील की जा रही है।
22: सड़कों पर इकट्ठा हजारों की भीड़, ढोल नगाड़ों पर नाचते लोग, हाथों में पार्टी के झंडे और जगह जगह लगी इमरान खान की तस्वीरें। दरअसल इमरान खान की पार्टी का ये लॉन्ग मार्च सितंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होना था। इस बीच सरकार के साथ बातचीत का दौर शुरू हुआ और कुछ दिनों के लिए मार्च को टाल दिया गया, लेकिन सरकार के साथ बात अब नाकाम हो गई है और पीटीआई ने ये मार्च शुरू कर दिया है। रविवार को खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की ओर शुरू हुए इस मार्च से रास्ते में पड़ने वाले हर इलाके से लोग जुड़ते जा रहे हैं।
23: जब हमारा वजीर आला जो ही लाए अमल तय करेगा अमल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब वो या इस्लामाबाद की तरफ हो जाएंगे, इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे।
22: पार्टी की प्रमुख मांगों में जेल में बंद इमरान खान से तत्काल मुलाकात और उन्हें ऐसे अस्पताल ले जाने का फैसला शामिल है जहां उनके निजी डॉक्टर उनकी जांच कर सकें।
2: इमरान पिछले करीब 3 साल से रावलपिंडी की हाई सिक्योरिटी अदियाला जेल में बंद हैं। उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उनकी पार्टी लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रही है। फिलहाल जो हालात हैं, ये हफ्ता शहबाज शरीफ और मुरीद की रातों की नींद उड़ाने वाला हो सकता है। पीटीआई के समर्थक इस्लामाबाद पहुंच पाए तो भी और ना पहुंच पाए तो भी, क्योंकि जब जब जुल्म हुए हैं, लोगों की बगावत ने सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाई ही हैं। आज तक ब्यूरो।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: एसआईआर के तहत फॉर्म 6 में बदलाव पर फंसा चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, हमने चेंज नहीं की को मंजूरी नहीं दी, ईसी और केंद्र को थमाया नोटिस, ज्ञानेश के तुरंत निलंबन से इनकार। फॉर्म 6 को राहुल गांधी ने बताया बीजेपी सीईसी की सांठगांठ का नतीजा, कहा अपनाया गया गैरकानूनी तरीका, आग बबूला बीजेपी का पलटवार, संसद से ईसी ऑफिस तक विपक्ष का मार्च। चुनाव से पहले राज्यसभा सीट से जाती समीकरण साधने में जुटी बीजेपी, लिस्ट में 3 ओबीसी, 2 एससी, 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय का नाम, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, बीएल वर्मा आउट। मायावती ने फिर भतीजे पर दिखाई दया, कहा सियासत से ससुर के संन्यास के बाद सुधर गए आकाश, वापस किया राष्ट्रीय संयोजक का पद। और बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जम्मू कश्मीर से वापस भेजे गए 150 लोग, बागडोगरा से बीएसएफ इन्हें भेजेगी सीमा पार, 7 अक्टूबर को एक और कार्रवाई की तैयारी। बीजेपी ने यूपी में 8 सीटों के लिए उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी ने उम्मीदवार चुनने में जातिगत समीकरण का खासा ख्याल रखा है, साथ ही 27 के चुनाव ध्यान में रखते हुए 2 महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया गया है। सभी प्रत्याशी यूपी से ही आते हैं।
1: यूपी में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों की जिस लिस्ट का इंतजार था वो खत्म हुआ। बीजेपी ने आज अपने सभी 8 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया। खास बात ये रही कि इस बार सभी 8 उम्मीदवार नए हैं, मतलब किसी भी पुराने चेहरे को रिपीट नहीं किया गया। नए उम्मीदवारों में 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय चेहरा है। इनमें 3 ओबीसी उम्मीदवार हैं, 2 एससी उम्मीदवार हैं। ओबीसी में लोधी, पाल, कुर्मी समुदाय के उम्मीदवार हैं। महिला प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया है, 2 महिलाओं को टिकट मिला है।
2: ये सिर्फ मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है, पूरे महिलाओं को, पूरी नारी शक्ति को एक जिम्मेदारी मिली है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना इस बात को सिद्ध करता है कि हमारी पार्टी, हमारे आदरणीय नेतागण, हमारे आदरणीय मोदी जी जो कहते हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात, महिला नेतृत्व की बात, आज उन्होंने इस लिस्ट में 2 महिलाओं के नाम से सिद्ध किया है कि महिलाएं देश की प्रगति में, राष्ट्र को आगे ले जाने में कितनी अहम भूमिका है।
3: मुझ जैसे एक सामान्य पृष्ठभूमि के कार्यकर्ता को जो अविचल 36 साल से अधिक समय से पार्टी का आहार निष्काम कर रहा था, उसको आज मौका दिया है और प्रदेश में संदेश देने का काम किया है कि कोई भी कार्यकर्ता अगर निष्ठापूर्वक लगे रहेगा तो पार्टी के नेतृत्व का ध्यान उस पर अवश्य है और ये आज मुझे उम्मीदवार बनाने से पार्टी में संदेश जाएगा।
1: मतलब बीजेपी ने अपना संदेश स्पष्ट कर दिया है, एक तो जातिगत समीकरण को साधा गया है, दूसरा महिलाओं को मौका मिला है, तीसरा सवर्ण मतदाताओं के लिए भी मैसेज है। 27 में यूपी में चुनाव है और राज्यसभा टिकट बांटने में इसका खासा ख्याल रखा गया है, तभी तो सभी 8 उम्मीदवार यूपी के हैं। इसके अलावा पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल बीएल वर्मा और हरदीप सिंह पुरी का टिकट काट दिया गया है। बता दें कि यूपी में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, इनमें 10 सीटों पर 16 अक्टूबर को चुनाव होना है, 6 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी की राजनीति में अगली खबर है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर। अब कांग्रेस की ओर से नई डिमांड कर दी गई है। कांग्रेस कह रही है कि यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस कम से कम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के लिए 50 सीट भी ज्यादा है।
1: यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर गदर मची है। कहा जा रहा था कि कांग्रेस 150 सीटें चाहती है, लेकिन कांग्रेस अब इससे आगे की बात कर रही है।
4: इसने किया 150 का, मैंने तो 200 की बात की थी। मैं शुरू से कह रहा हूँ बराबर का सम्मान और बराबर की इज्जत, बराबर का हिस्सा।
1: लेकिन राजेंद्र पाल गौतम को समाजवादी पार्टी के नेता 2 टूक जवाब देते हैं।
5: मैं ये कहता हूँ उनको 50 सीट देना भी बहुत बड़ी बात होगी, उनको देखना चाहिए। 2 तुम्हारे विधायक हैं, पिछली बार तुमने लड़के देख लिए, क्या इससे तुम्हें सबक नहीं मिलता?
1: अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि जीत ही सीट का आधार है।
6: जीत ही आधार है, जीत ही सीट का आधार है।
1: और जीत बोले तो आखिरी चुनाव यानी 2024 लोकसभा में मेरी जीत। और वो जीत कुछ ऐसी थी कि 80 में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती और 6 कांग्रेस को मिली थी। इसे विधानसभा के अनुपात में बांटा जाए तो 37 लोकसभा के हिसाब से अखिलेश के हिस्से 347 सीटें बनती हैं और कांग्रेस के हिस्से 56। लेकिन कांग्रेस की हसरतें 56 से 200 तक पहुंच चुकी हैं और हौसला बढ़ता ही जा रहा है। अब कांग्रेस ने उन्हीं इमरान मसूद को कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, जो लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं और 403 सीटों पर लड़ने की चेतावनी देते रहते हैं। पॉलिटिकल मैसेजिंग के तौर पर कांग्रेस ने अपने पत्ते सामने रख दिए हैं। अब बारी समाजवादी पार्टी की ओर से फैसला लेने की है और वो कांग्रेस की सीटों वाली शर्तों के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन करना चाहती है या बीजेपी को हराने के मिशन के साथ। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: यूपी में 2027 की सियासी जंग से पहले दलित वोट बैंक पर भी सियासत तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही का नाम संत रविदास नगर भदोही करने का ऐलान कर दिया है। तो योगी सरकार के इस फैसले के पीछे क्या है सम्मान, कल्याण और विकास का सियासी फॉर्मूला, आइए दिखाते हैं आपको।
7: यूपी के चुनावी मौसम में दलित वोटों के लिए हर दल के तरकश में अलग लगती है और इसी में से एक तीर बीजेपी ने अब यूपी में आजमाया है, जो दलित सियासत में प्रतीकों के तौर पर इस्तेमाल होते आ रहे हैं। सीएम योगी ने ऐसा ही एक ऐलान यूपी में किया, जहां भदोही का नाम संत रविदास के नाम पर किया गया है।
8: कालीन उद्योग के लिए जाना जाने वाला भदोही जनपद आने वाले समय में मध्यकालीन संत जिन्होंने अपनी साधना के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम किया था, ऐसे सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर भदोही जाना जाएगा।
7: भदोही नहीं, नामकरण की बात हो तो कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बहाल किया गया है। वहीं अनुपूरक बजट में डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए 407 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत अंबेडकर, संत रविदास, संत कबीर, ज्योतिबा फुले और महर्षि वाल्मीकि के प्रतिमाओं के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा पर काम होगा। बीजेपी कहती है कि अखिलेश यादव की सरकार ने दलित विरोधी सोच के कारण जिन महापुरुषों के नाम पर रखे गए जिलों, संस्थानों के नाम बदल डाले थे, उनका पुनर्नामकरण करके बीजेपी सम्मान दे रही है।
9: पूर्व में भी भदोही का नाम संत रविदास नगर था, किंतु अखिलेश यादव की दलित विरोधी सोच के नाते से उन्होंने संत रविदास नगर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों के नाम बदले थे, आज उसको सही किया गया है।
10: समाजवादी पार्टी समाज में न किसी वर्ग को अपनी जागीर न वोट बैंक समझती है, वो सभी वर्गों को अपना साथी, सहयोगी और समाजवादी पार्टी के परिवार का हिस्सा समझती है।
7: मतलब ये कि दलितों को रिझाने के लिए दाव चलाए जाने लगे हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: आखिर यूपी में अब्दुल कौन है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अब्दुल अब किसी की दरी नहीं उठाएगा, यानी अब्दुल के वोट का अब कोई भी पार्टी राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। समस्या यह है कि ओवैसी के इन सवालों से समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा नाराज हो रही है।
11: अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, सज्जन दरी नहीं बिछाएगा, शौकत दरी नहीं बिछाएगा।
12: आप नाम मत लीजिए अब्दुल, अब्दुल क्या होता है, आप किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं अब्दुल कह करके।
13: क्यों मौलाना साहब, क्यों लग रहा है आपको इतना बुरा अब्दुल का नाम पर, गाली है अब्दुल।
7: चुनाव से पहले अब्दुल पर घमासान, किसकी तरफ है यूपी का मुसलमान, अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, इस बार किस तरफ जाएगा। यूपी में मुस्लिम वोटों पर हंगामा मचा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ओवैसी के बीच घमासान मचा है कि कौन लेकर जाएगा मुस्लिम वोट, यूपी का मुसलमान किसकी तरफ जाएगा।
14: ओवैसी बोलता है कि एम जिंदा कौम है, दरी नहीं बिछाएंगे बाबा और भैया, अब तुमको दरी बिछाना पड़ेगा हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर उत्तर प्रदेश
7: अपनी रैलियों में ओवैसी अक्सर कहते हैं कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा और इसी अब्दुल पर हंगामा छिड़ गया है। मुस्लिम पॉलिटिक्स में अब्दुल शब्द मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है,
15: खुद ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता इस शब्द यानी अब्दुल का इस्तेमाल करते हैं। अब्दुल का राजनीतिक मतलब निकाला जाता है उस मुसलमान से जिसे राजनीतिक पार्टियां अपना वोट बैंक समझती हैं। इसीलिए ओवैसी कहते हैं कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, यानी अब्दुल अब उन पार्टियों के लिए वोट बैंक नहीं बनेगा जिनके वोटों पर जीत कर ये पार्टियां उन्हें भूल जाती हैं।
11: अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, सज्जन दरी नहीं बिछाएगा, शौकत दरी नहीं बिछाएगा, अब सज्जन टेबल लगाएगा, कुर्सी पर बैठ कर कहेगा बोल इंसाफ करता है या नहीं करता है। इस मिजाज को आपको पैदा करना है। नौजवानों, आने वाला मुस्तकबिल आपका है, आने वाला मुस्तकबिल आपका है। बुजुर्गों, आपने बरसों इन जालिमों का साथ दिया, इन्होंने झूठ बोलकर आपके ख्वाबों को मिसमार कर दिया, चिकना चूर कर दिया। एक बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप अपना वोट देकर यहां से मजलिस के विधायक को कामयाब करिए।
15: ऐसा नहीं है कि ओवैसी ने मुसलमानों के लिए अब्दुल शब्द पहली बार कहा हो, वो पहले भी कहते रहे हैं।
12: अब्दुल अब्दुल क्या होता है?
15: लेकिन इस बार विवाद हुआ है रामपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी से पूछे गए सवाल पर। असल में रामपुर में मोहिबुल्ला नदवी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसी में एक पत्रकार ने उनसे अब्दुल के नाम पर ये सवाल पूछ लिया तो नदवी पूरी तरह से भड़क गए।
12: मुसलमान इस देश के सबसे मोहतर शहरी
16: है, इसके चुनाव की क्या तैयारी
17: है? और हर पार्टी जो है 27 के चुनाव में अब्दुल को याद करती है, इस वक्त अब्दुल कहाँ है?
12: क्या मतलब? आप नाम मत लीजिए, अब्दुल अब्दुल क्या होता है? आप किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं अब्दुल कहकर के?
17: नहीं, हर पार्टी नहीं,
12: आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। अब्दुल प्रिंस क्या होता है?
17: हर पार्टी
12: किसे कहते हैं अब्दुल का? नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा आपकी बात को। अब्दुल अब्दुल लगाया क्या होता है? अब्दुल
17: बताइए,
12: मुसलमान इस देश के सबसे मोहतर शहरी है, जिन्होंने देश की कुर्बानी हजारों साल सैकड़ों साल से देश में कुर्बानियां दी है। कांग्रेस पार्टी के आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी पे देख लीजिए, सब लोग हैं। आप अब्दुल अब्दुल कहकर के आप खड़ाने की कोशिश करते हैं।
15: रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद को लग रहा है कि ऐसे अब्दुल का नाम लेकर मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्हें आपत्ति है कि मुसलमानों को अब्दुल कहा जा रहा है। ये करीब 5 साल पहले का रामपुर का ही बयान है और जो ये अब्दुल कह रहे हैं ये कभी आजम खान के करीबी हुआ करते थे और उन्हीं की सभा में इन्होंने ये अब्दुल वाला बयान दिया था। इनका नाम है फसाहत अली शानू। अब ये बीजेपी में है और अब्दुल के नाम पर जब मौजूदा रामपुर के सांसद को आपत्ति हुई तो इन्होंने उन्हें बताया कि अब्दुल कौन है।
13: क्यों मौलाना साहब, क्यों लग रहा है आपको इतना बुरा? अब्दुल के नाम पर गाली है? अब्दुल आपकी घर की दीवारों की रंग पॉलिश करता है, वो है अब्दुल। आपकी मोटरों के पंचर जोड़ता है, वो है अब्दुल। जिसके नाम के आपकी आपने और आपकी पार्टी ने रोटियां सेकी है, वो है अब्दुल। देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई उसके वोटों से, वो है अब्दुल। जमाने से आज भी थाने में पिटता आ रहा है, वो है अब्दुल। आपने तो इमामत की कीमत कबूल ली, आप तो मस्जिद में नमाज पढ़ाते पढ़ाते सांसद बन गए। अब्दुल के वोटों से बने आप सांसद। अब्दुल के नाम पे भड़कते हैं आप, अब्दुल के नाम पे गुस्सा आता है आपको। आपकी पार्टी ने राज्यसभा में किसको भेजा है? नथवानी को भेजा है। और जो राज्यसभा में नथवानी को भेजा है वो भी अब्दुल की वजह से भेजा है। अब्दुल ने आपकी पार्टी की यह हैसियत बनाई कि आपकी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी।
15: यूपी के मुसलमानों के मन में यह भी सवाल है जिसका जिक्र फसाहत अली शानू भी कर रहे हैं कि जब राज्यसभा देने की बारी आई तो समाजवादी पार्टी ने धनराज परिमल नाथवानी को राज्यसभा भेजा, ना कि किसी मुसलमान नेता को। यहीं से यह नैरेटिव बनता है कि अब्दुल इन पार्टियों के लिए कब तक दरी बिछाएगा।
14: पूछेंगे समाजवादी थी तो क्या था? समाजवादी थी तो वाई था, वाई का फायदा था। अब बाबा बन गए तो टी का फायदा है, टी का फायदा है। ना वो एम बोलते ना ये एम बोलते, कोई एम नहीं बोलता। ओवैसी बोलता है कि एम जिंदा कौम है, दरी नहीं बिछाएंगे बाबा और भैया, अब तुमको दरी बिछाना पड़ेगा हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला।
15: कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: सीसी के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सीसी ज्ञानेश कुमार के तुरंत निलंबन करने की मांग से इनकार कर दिया। साथ ही साथ चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर बवाल और विरोध प्रदर्शन अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब 6 अक्टूबर को ज्ञानेश के खिलाफ उतरेगा इंडिया। चुनाव आयोग तक विपक्षी पार्टियों के सांसदों का मान। इंडिया गठबंधन ने बनाई ज्ञानेश को घेरने की रणनीति। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया का अक्टूबर संग्राम। वोट चोरी की लड़ाई ज्ञानेश कुमार पर चढ़ाई।
1: फॉर एन एग्रेसिव नेशनल वाइड कैंपेन अगेंस्ट वोट चोरी, वोट बचाओ देश बचाओ।
0: वोटर चोरी SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन का पूरा प्लान आपको बताएं। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू हुआ संग्राम लगातार जारी है। 2 अक्टूबर को मुंबई में CJP ने विरोध प्रदर्शन किया।
2: मेरा रंग दे बसंती चोला ज्ञान उठा ले छो, मेरा रंग दे बसंती चोला।
0: दिल्ली में आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टियों और उसकी छात्र विंग ISA SFI ने 2 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को भी इंडिया गेट से जंतर मंतर तक सिटीजंस मार्च निकाला। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भड़के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी जान लगा दी। तो 4 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक साथ BJP और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई में गर्जना मोर्चा निकाला।
3: हिटलर सर, हिटलर कोणालाही घाबरत नव्हता, पण हिटलर वरती अशी वेळ आली की त्याला स्वतः स्वतःवरती गोळी झाडून आत्महत्या करावी लागली। पण हिटलर गेला आणि हिटलर गेल्यानंतर त्याला एक न्यूरेमबर्ग ट्रायल म्हणून तो एक शब्द आहे। जे अधिकारी त्या हिटलरच्या पापामध्ये सहभागी होते त्यांना शोधून शोधून काढलं, त्यांच्यावरती खटले भरले गेले, काही जणांना फासावर लटकवलं, काही जणांना तुरुंगात चढून टाकलं। तोच क्षण आपल्या देशात उद्या आल्याशिवाय राहणार नाही एवढं भाजप आणि या सगळ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवावं।
4: त्याला एक तर SIR हा रद्द झाला पाहिजे कोणत्याही परिस्थितीत, आणि दुसरं म्हणजे या देशातलं वोटिंग मशीन बंद होऊन बॅलेट पेपरवरती याच्यापुढे मतदान झालं पाहिजे। या दोन गोष्टी झाल्या तर दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल। उद्या कोणाची सत्ता येऊ देत काही फरक पडत नाही।
0: और आज यानी 5 अक्टूबर को भी कांग्रेस की छात्र विंग ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जंतर मंतर से कुछ ही दूरी पर रायसीना रोड पर कांग्रेस की छात्र विंग के कार्यकर्ता और नेता लाशें बनकर सड़क पर लेट जाते हैं। और अब इनका संदेश क्या है वो आपको इस पोस्टर से साफ साफ समझ में आ जाएगा। जो प्रदर्शनकारी अर्थी बनकर लेता है उस पर रखे पोस्टर में लिखा है, जिंदा है हम फिर भी वोटर लिस्ट में मुड़े क्यों।
5: ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन ने SIR में मुझे मृत घोषित कर दिया है और हमारी लड़ाई यही है कि जो लाखों लोगों का वोट इस SIR में लाखों लोगों को मृत घोषित किया गया है उनके न्याय की लड़ाई है। क्योंकि लोग फोन चला रहे, लोग घूम रहे, लोग खाना खा रहे, लोग पानी पी रहे हैं, परंतु उनको मृत घोषित कर दिया गया है। सोचिए मैं भी बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मेरा नाम भी SIR से कट गया है, सच्चाई है।
0: जिंदा लाश बनने तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही NSUI के कार्यकर्ता और नेता जंतर मंतर की तरफ बढ़ते हैं रास्ते में दिल्ली पुलिस और सेंट्रल फोर्सेज से सीधा सामना हो जाता है। ये देखिए कैसे CISF और दिल्ली पुलिस की महिला ब्रिगेड प्रदर्शनकारियों को उठा उठा कर बस में भर रही है। ये भी देखिए कैसे एक प्रदर्शनकारी को 2 CISF और 1 दिल्ली पुलिस का जवान उठा कर ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की छात्र विंग के प्रदर्शनकारियों को बस में भर कर हिरासत में ले लिया।
6: शर्म करो। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान पर विवाद छिड़ चुका है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है। बीजेपी और आरएसएस सनातन धर्म को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है।
7: एक बार फिर से हिंदुत्व पर सियासत सुलग रही है, एक बार फिर हिंदुत्व पर राजनीति तेज हो रही है और ये हो रहा है कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व वाले इस बयान में।
8: इस देश में जिस प्रकार सनातन धर्म को हिंदू हिंदू करते रहे, ये आरएसएस विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुत्व और सावरकर जी ने उसको हिंदुत्व नाम दे दिया, उसकी वजह से पूरे देश में हिंदू मुसलमानों के अंदर, हिंदू और सिखों के बीच में, हिंदू ईसाइयों के बीच में आपने खाई पैदा कर दी।
7: दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार मध्य प्रदेश से हुआ। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय पर निशाना साधा।
9: इस तरह से अनर्गल बयानबाजी करना बिना तथ्यों के, यह आपत्तिजनक भी है और खेदपूर्ण भी है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह के इस तरह के तथ्यहीन बयान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो किन तथ्यों के आधार पर इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो राम को बदनाम कर रहे हैं।
7: उधर महाराष्ट्र में भी दिग्विजय सिंह के बयान की गूंज सुनाई दी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भड़क उठे।
10: आरएसएस हो, ये सारी जो संगठनाएं हैं, ये महाराष्ट्र, ये देश में, देश को, जो हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, उसको और ताकतवर बनाने के लिए, हिंदुओं को संगठित रखने के लिए दिन रात काम करते हैं। वो सभी की सभी चीजें हिंदुओं के बारे में बोलना और वहां कभी भी इस्लाम और कुरान पे बोलने की हिम्मत ये कांग्रेस वाले कभी करते नहीं है। इसलिए तो हम लोग कांग्रेस को मुस्लिम लीग के बी लीग बी टीम बुलाते हैं ना।
7: अब चारों ओर से दिग्विजय पर पलटवार हो रहे हैं और हिंदुत्व पर अब सियासत तेज हो रही है। आज तक भी
6: आज तक ये खबर का असर हुआ है। पिछले शुक्रवार को हमने बिहार के जर्जर स्कूलों से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाई थी। उसके बाद बिहार सरकार की नींद खुली है। छात्रों को स्कूल से शिफ्ट कर दिया गया है और मरम्मत का काम शुरू हो गया है।
11: अब ये हिस्सा देखिए स्कूल का, ये आप देख के समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या है। यहाँ खड़ा होना भी कितना, आप कह सकते हैं ये यहाँ पर खतरनाक है, क्योंकि जिस जगह पर आप ये देख रहे होंगे, ये पूरा ये ढांचा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक टेम्पोररी व्यवस्था की गई है पिलर का रूप देने के लिए।
7: बिहार के दरभंगा के इस स्कूल की हालत जिसने भी देखी वो गुस्से से भर गया। आक्रोशित होने वाली बात ये तो थी ही कि कैसे एक स्कूल की इमारत बेंच के भरोसे खड़ी है। उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात बिहार के शिक्षा विभाग की अनदेखी थी, जो बार बार स्कूल प्रिंसिपल की गुहार लगाने के बावजूद सोता रहा। इसकी वजह से सालों से जान जोखिम में डालकर सैकड़ों बच्चे इस खतरनाक स्कूल में पढ़ने को मजबूर थे। जब कुछ नहीं हुआ तो आज तक ने इस स्कूल को लेकर बिहार सरकार को खबरदार किया। आखिरकार बिहार सरकार

0: आज तक पर यह खबर दिखाए जाने के बाद ही बिहार के शिक्षा विभाग ने स्कूल शिफ्ट करने का आदेश जारी कर दिया। ये देखिए, शुक्रवार को ये आदेश जारी हुआ और रविवार को बच्चे दूसरे स्कूल में जाने लगे।
1: ये झर झर के गिर रहा है, बहुत डर है।
2: हाँ, तो कभी किसी को बच्चे को चोट ही लगा था, इससे गिरा था इसके पहले?
1: गिरता था लेकिन सर बचा लिया।
2: हाँ, जब बरसात होता था तो
1: पानी टपकता था।
2: हाँ, तो मन में डर भी लगा रहता था।
1: हाँ,
2: अब जा रही हो दूसरे स्कूल तो वहाँ ठीक है ना सर?
1: हाँ।
0: 2 अक्टूबर को आज तक संवाददाता रोहित सिंह दरभंगा के इस स्कूल में गए थे। उन्होंने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे बच्चों की जान जोखिम में डालकर स्कूल चल रहा है। आज तक पर ये रिपोर्ट चलने के बाद अगले ही दिन बिहार के शिक्षा विभाग ने अपने अफसरों को स्कूल के निरीक्षण के लिए दौड़ाया और मौत के साए में पड़ते बच्चों को राहत मिल गई।
3: इसी खबर को जब आज तक ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया तो बिहार सरकार ने इसको संज्ञान में लिया और आदेश निकाला गया कि जिला प्रशासन को आदेश दिया गया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। इस जर्जर भवन पर पठन पाठन का काम जो है वो नहीं हो और आनन फानन में एक आदेश प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा स्कूल के प्रिंसिपल को भेजा गया जिसमें यह बताया गया कि स्कूल में पठन पाठन का काम अब अगले दिनों से जब भी स्कूल खुलेगा तो नहीं होगा। इन बच्चों को टीचर यहां से लेके जो है वो गोसवा मध्य विद्यालय लेके जाएंगे जहां स्कूल को शिफ्ट किया गया है, क्योंकि बच्चे को अभी ये पूरी जानकारी नहीं हो पाई है। और जो यहां प्रिंसिपल है वो भी हम लोग के साथ है, टीचर लोग भी, अब ये लोग प्रस्थान कर रहे हैं। हम खुद प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे, वो अपने कार्यालय में कुछ कागजी खाना पूर्ति करके निकल रहे हैं और वो दूसरे स्कूल की तरफ जाएंगे। सर ये बताइए कि क्या कहेंगे, खबर आज तक ने दिखाई तो क्या हुआ और आप अभी क्या आदेश आया आप लोग को?
4: मुझे आदेश आया है कि विभागीय पत्र के अनुसार मेरा विद्यालय दूसरे जगह शिफ्ट किया गया, मध्य विद्यालय गोसवा में जी।
2: फिर
4: हम लोग तो सभी बच्चे और शिक्षक वहाँ पहुँच जाएंगे जी, जा रहे हैं अभी तुरंत लेकर के।
2: तो क्या यहाँ वाकई क्या स्थिति का खतरा था?
4: हाँ, यहाँ तो खतरा था।
0: आज तक के खबरदार करने के बाद स्कूल की मरम्मत के लिए बजरी भी स्कूल पहुंच चुकी है। बच्चे पास ही के दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब बच्चे सुरक्षित होकर पढ़ेंगे। रोहित सिंह के साथ प्रहलाद कुमार, दरभंगा आज तक।
5: पाकिस्तान में इमरान खान की सेहत और रिहाई को लेकर की जा रही मांगों को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। उनकी पार्टी पीटीआई अब निर्णायक लड़ाई लड़ने के मूड में आ चुकी है। खैबर के अलग अलग इलाकों से हजारों लोगों को जुटाया जा रहा है और इस्लामाबाद कूच करने की अपील की जा रही है।
6: सड़कों पर इकट्ठा हजारों की भीड़, ढोल नगाड़ों पर नाचते लोग, हाथों में पार्टी के झंडे और जगह जगह लगी इमरान खान की तस्वीरें। दरअसल इमरान खान की पार्टी का ये लॉन्ग मार्च सितंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होना था। इस बीच सरकार के साथ बातचीत का दौर शुरू हुआ और कुछ दिनों के लिए मार्च को टाल दिया गया, लेकिन सरकार के साथ बात अब नाकाम हो गई है और पीटीआई ने ये मार्च शुरू कर दिया है। रविवार को खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की ओर शुरू हुए इस मार्च से रास्ते में पड़ने वाले हर इलाके से लोग जुड़ते जा रहे हैं।
7: जब हमारा वजीर आला जो ही लाया अमल तय करेगा उस पे अमल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब वो या इस्लामाबाद की तरफ हो जाएंगे, इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे।
6: पार्टी की प्रमुख मांगों में जेल में बंद इमरान खान से तत्काल मुलाकात और उन्हें ऐसे अस्पताल ले जाने का फैसला शामिल है जहां उनके निजी डॉक्टर उनकी जांच कर सकें। इमरान पिछले करीब 3 साल से रावलपिंडी की हाई सिक्योरिटी अदियाला जेल में बंद हैं। उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उनकी पार्टी लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रही है। फिलहाल जो हालात हैं, ये हफ्ता शहबाज शरीफ और मुरीद की रातों की नींद उड़ाने वाला हो सकता है। पीटीआई के समर्थक इस्लामाबाद पहुंच पाए तो भी और ना पहुंच पाए तो भी, क्योंकि जब जब जुल्म हुए हैं लोगों की बगावत ने सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाई ही हैं। आज तक ब्यूरो।
5: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।

0: एसआईआर के तहत फॉर्म 6 में बदलाव पर फंसा चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट की 2-2 हमने चेंज नहीं की को मंजूरी नहीं दी, ईसी और केंद्र को थमाया नोटिस, ज्ञानेश के तुरंत निलंबन से इनकार। फॉर्म 6 को राहुल गांधी ने बताया बीजेपी सीईसी की सांठगांठ का नतीजा, कहा अपनाया गया गैरकानूनी तरीका, आग बबूला बीजेपी का पलटवार, संसद से ईसी ऑफिस तक विपक्ष का मार्च। चुनाव से पहले राज्यसभा सीट से जातीय समीकरण साधने में जुटी बीजेपी, लिस्ट में 3 ओबीसी, 2 एससी, 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय का नाम, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, बीएल वर्मा आउट। मायावती ने फिर भतीजे पर दिखाई दया, कहा सियासत से ससुर के संन्यास के बाद सुधर गए आकाश, वापस किया राष्ट्रीय संयोजक का पद। और बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जम्मू कश्मीर से वापस भेजे गए 150 लोग, बागडोगरा से बीएसएफ इन्हें भेजेगी सीमा पार, 7 अक्टूबर को एक और कार्रवाई की तैयारी। बीजेपी ने यूपी में 8 सीटों के लिए उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी ने उम्मीदवार चुनने में जातिगत समीकरण का खासा ख्याल रखा है, साथ ही 27 के चुनाव ध्यान में रखते हुए 2 महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया गया है। सभी प्रत्याशी यूपी से ही आते हैं।
1: यूपी में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों की जिस लिस्ट का इंतजार था वो खत्म हुआ। बीजेपी ने आज अपने सभी 8 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया। खास बात ये रही कि इस बार सभी 8 उम्मीदवार नए हैं, मतलब किसी भी पुराने चेहरे को रिपीट नहीं किया गया। नए उम्मीदवारों में 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय चेहरा है। इनमें 3 ओबीसी उम्मीदवार हैं, 2 एससी उम्मीदवार हैं। ओबीसी में लोधी, पाल, कुर्मी समुदाय के उम्मीदवार हैं। महिला प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया है, 2 महिलाओं को टिकट मिला है।
2: ये सिर्फ मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है, पूरे महिलाओं को, पूरी नारी शक्ति को एक जिम्मेदारी मिली है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना इस बात को सिद्ध करता है कि हमारी पार्टी, हमारे आदरणीय नेतागण, हमारे आदरणीय मोदी जी जो कहते हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात, महिला नेतृत्व की बात, आज उन्होंने इस लिस्ट में 2 महिलाओं के नाम से सिद्ध किया है कि महिलाएं देश की प्रगति में, राष्ट्र को आगे ले जाने में कितनी अहम भूमिका है।
3: मुझ जैसे एक सामान्य पृष्ठभूमि के कार्यकर्ता को जो अविचल 36 साल से अधिक समय से पार्टी का आहार निष्काम कर रहा था, उसको आज मौका दिया है और प्रदेश में संदेश देने का काम किया है कि कोई भी कार्यकर्ता अगर निष्ठापूर्वक लगे रहेगा तो पार्टी के नेतृत्व का ध्यान उस पर अवश्य है और ये आज मुझे उम्मीदवार बनाने से पार्टी में संदेश जाएगा।
1: मतलब बीजेपी ने अपना संदेश स्पष्ट कर दिया है, एक तो जातिगत समीकरण को साधा गया है, दूसरा महिलाओं को मौका मिला है, तीसरा सवर्ण मतदाताओं के लिए भी मैसेज है। 27 में यूपी में चुनाव है और राज्यसभा टिकट बांटने में इसका खासा ख्याल रखा गया है, तभी तो सभी 8 उम्मीदवार यूपी के हैं। इसके अलावा पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल बीएल वर्मा और हरदीप सिंह पुरी का टिकट काट दिया गया है। बता दें कि यूपी में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, इनमें 10 सीटों पर 16 अक्टूबर को चुनाव होना है, 6 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी की राजनीति में अगली खबर है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर। अब कांग्रेस की ओर से नई डिमांड कर दी गई है। कांग्रेस कह रही है कि यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस कम से कम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के लिए 50 सीट भी ज्यादा है।
1: यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर गदर मची है। कहा जा रहा था कि कांग्रेस 150 सीटें चाहती है, लेकिन कांग्रेस अब इससे आगे की बात कर रही है।
4: इसने किया 150 का, मैंने तो 200 की बात की थी। मैं शुरू से कह रहा हूँ बराबर का सम्मान और बराबर की इज्जत, बराबर का हिस्सा।
1: लेकिन राजेंद्र पाल गौतम को समाजवादी पार्टी के नेता 2 टूक जवाब देते हैं।
5: मैं ये कहता हूँ उनको 50 सीट देना भी बहुत बड़ी बात होगी, उनको देखना चाहिए। 2 तुम्हारे विधायक हैं, पिछली बार तुमने लड़के देख लिए, क्या इससे तुम्हें सबक नहीं मिलता है?
1: अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि जीत ही सीट का आधार है।
6: जीत ही आधार है, जीत ही सीट का आधार है।
1: और जीत बोले तो आखिरी चुनाव यानी 2024 लोकसभा में मेरी जीत। और वो जीत कुछ ऐसी थी कि 80 में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती और 6 कांग्रेस को मिली थी। इसे विधानसभा के अनुपात में बांटा जाए तो 37 लोकसभा के हिसाब से अखिलेश के हिस्से 347 सीटें बनती हैं और कांग्रेस के हिस्से 56। लेकिन कांग्रेस की हसरतें 56 से 200 तक पहुंच चुकी हैं और हौसला बढ़ता ही जा रहा है। अब कांग्रेस ने उन्हीं इमरान मसूद को कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, जो लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं और 403 सीटों पर लड़ने की चेतावनी देते रहते हैं। पॉलिटिकल मैसेजिंग के तौर पर कांग्रेस ने अपने पत्ते सामने रख दिए हैं। अब बारी समाजवादी पार्टी की ओर से फैसला लेने की है और वो कांग्रेस की सीटों वाली शर्तों के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन करना चाहती है या बीजेपी को हराने के मिशन के साथ। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: यूपी में 2027 की सियासी जंग से पहले दलित वोट बैंक पर भी सियासत तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही का नाम संत रविदास नगर भदोही करने का ऐलान कर दिया है। तो योगी सरकार के इस फैसले के पीछे क्या है सम्मान, कल्याण और विकास का सियासी फॉर्मूला, आइए दिखाते हैं आपको।
7: यूपी के चुनावी मौसम में दलित वोटों के लिए हर दल के तरकश में अलग अलग तीर हैं और इसी में से एक तीर बीजेपी ने अब यूपी में आजमाया है, जो दलित सियासत में प्रतीकों के तौर पर इस्तेमाल होते आ रहे हैं। सीएम योगी ने ऐसा ही एक ऐलान यूपी में किया, जहां भदोही का नाम संत रविदास के नाम पर किया गया है।
8: कालीन उद्योग के लिए जाना जाने वाला भदोही जनपद आने वाले समय में मध्यकालीन संत जिन्होंने अपनी साधना के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम किया था, ऐसे सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर भदोही जाना जाएगा।
7: भदोही नहीं, नामकरण की बात हो तो कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बहाल किया गया है। वहीं अनुपूरक बजट में डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए 407 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत अंबेडकर, संत रविदास, संत कबीर, ज्योतिबा फुले और महर्षि वाल्मीकि के प्रतिमाओं के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा पर काम होगा। बीजेपी कहती है कि अखिलेश यादव की सरकार ने दलित विरोधी सोच के कारण जिन महापुरुषों के नाम पर रखे गए जिलों, संस्थानों के नाम बदल डाले थे, उनका पुनर्नामकरण करके बीजेपी सम्मान दे रही है।
9: पूर्व में भी भदोही का नाम संत रविदास नगर था, किंतु अखिलेश यादव की दलित विरोधी सोच के नाते से उन्होंने संत रविदास नगर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों के नाम बदले थे, आज उसको सही किया गया है।
10: समाजवादी पार्टी समाज में न किसी वर्ग को अपनी जागीर न वोट बैंक समझती है, वो सभी वर्गों को अपना साथी, सहयोगी और समाजवादी पार्टी के परिवार का हिस्सा समझती है।
7: मतलब ये कि दलितों को रिझाने के लिए दाव चलाए जाने लगे हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: आखिर यूपी में अब्दुल कौन है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अब्दुल अब किसी की दरी नहीं उठाएगा, यानी अब्दुल के वोट का अब कोई भी पार्टी राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। समस्या यह है कि ओवैसी के इन सवालों से समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा नाराज हो रही है।
11: अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, सज्जन दरी नहीं बिछाएगा, शौकत दरी नहीं बिछाएगा।
12: आप नाम मत लीजिए अब्दुल, अब्दुल क्या होता है, आप किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं अब्दुल कह करके।
13: क्यों मौलाना साहब, क्यों लग रहा है आपको इतना बुरा अब्दुल का नाम पर, गाली है अब्दुल।
7: चुनाव से पहले अब्दुल पर घमासान, किसकी तरफ है यूपी का मुसलमान, अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, इस बार किस तरफ जाएगा। यूपी में मुस्लिम वोटों पर हंगामा मचा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ओवैसी के बीच घमासान मचा है कि कौन लेकर जाएगा मुस्लिम वोट, यूपी का मुसलमान किसकी तरफ जाएगा।
14: ओवैसी बोलता है कि एम जिंदा कौम है, दरी नहीं बिछाएंगे बाबा और भैया, अब तुमको दरी बिछाना पड़ेगा हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर उत्तर प्रदेश
7: अपनी रैलियों में ओवैसी अक्सर कहते हैं कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा और इसी अब्दुल पर हंगामा छिड़ गया है। मुस्लिम पॉलिटिक्स में अब्दुल शब्द मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है, खुद ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता इस शब्द यानी अब्दुल का इस्तेमाल करते हैं। अब्दुल का राजनीतिक मतलब निकाला जाता है उस मुसलमान से जिसे राजनीतिक पार्टियां अपना वोट बैंक समझती हैं। इसीलिए ओवैसी कहते हैं कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, यानी अब्दुल अब उन पार्टियों के लिए वोट बैंक नहीं बनेगा जिनके वोटों पर जीत कर ये पार्टियां उन्हें भूल जाती हैं।
11: अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, सज्जन दरी नहीं बिछाएगा, शौकत दरी नहीं बिछाएगा, अब सज्जन टेबल लगाएगा, कुर्सी पर बैठ कर कहेगा बोल इंसाफ करता है या नहीं करता है। इस मिजाज को आपको पैदा करना है। नौजवानों, आने वाला मुस्तकबिल आपका है, आने वाला मुस्तकबिल आपका है। बुजुर्गों, आपने बरसों इन जालिमों का साथ दिया, इन्होंने झूठ बोलकर आपके ख्वाबों को मिसमार कर दिया, चिकनाचूर कर दिया। एक बार मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को आप अपना वोट देकर यहां से मजलिस के विधायक को कामयाब करिए।
7: ऐसा नहीं है कि ओवैसी ने मुसलमानों के लिए अब्दुल शब्द पहली बार कहा हो, वो पहले भी कहते रहे हैं।
12: अब्दुल अब्दुल क्या होता है?
7: लेकिन इस बार विवाद हुआ है रामपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी से पूछे गए सवाल पर। असल में रामपुर में मोहिबुल्ला नदवी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसी में एक पत्रकार ने उनसे अब्दुल के नाम पर ये सवाल पूछ लिया तो नदवी बुरी तरह से भड़क गए।
12: मुसलमान इस देश के सबसे मोहतर शहरी
15: है, और हर पार्टी जो है 27 के चुनाव में अब्दुल को याद करती, इस वक्त अब्दुल कहां है?
12: क्या मतलब आप नाम मत लीजिए, अब्दुल अब्दुल क्या होता है? आप किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं अब्दुल कह करके?
15: नहीं, हर पार्टी नहीं,
12: आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। अब्दुल मिंच क्या होता है?
15: हर पार्टी
12: किसे कहते हैं अब्दुल का? नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा आपकी बात को। अब्दुल अब्दुल लगाया क्या होता है? अब्दुल
15: बताइए,
12: मुसलमान इस देश के सबसे मोहतर शहरी है, जिन्होंने देश की कुर्बानी हजारों साल सैकड़ों साल से देश में कुर्बानियां दी हैं। कांग्रेस पार्टी के आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी में देख लीजिए, सब लोग हैं। आप अब्दुल अब्दुल कहकर के आप खड़ाने की कोशिश करते हैं।
7: रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद को लग रहा है कि ऐसे अब्दुल का नाम लेकर मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्हें आपत्ति है कि मुसलमानों को अब्दुल कहा जा रहा है। ये करीब 5 साल पहले का रामपुर का ही बयान है, और जो ये अब्दुल कह रहे हैं ये कभी आजम खान के करीबी हुआ करते थे, और उन्हीं की सभा में इन्होंने ये अब्दुल वाला बयान दिया था। इनका नाम है फसाहत अली शानू, अब ये बीजेपी में है, और अब्दुल के नाम पर जब मौजूदा रामपुर के सांसद को आपत्ति हुई तो इन्होंने उन्हें बताया कि अब्दुल कौन है।
13: क्यों मौलाना साहब, क्यों लग रहा है आपको इतना बुरा? अब्दुल के नाम पर गाली है अब्दुल? आपकी घर की दीवारों की रंग पॉलिश करता है वो है अब्दुल, आपकी मोटरों के पंचर जोड़ता है वो है अब्दुल, जिसके नाम के आपकी आपने और आपकी पार्टी ने रोटियां सीखी है वो है अब्दुल, देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई उसके वोटों से वो है अब्दुल, जमाने से आज भी थाने में पिटता आ रहा है वो है अब्दुल। आपने तो इमामत की कीमत कबूल ली, आप तो मस्जिद में नमाज पढ़ाते पढ़ाते सांसद बन गए, अब्दुल के वोटों से बने आप सांसद, अब्दुल के नाम पे भड़कते हैं आप, अब्दुल के नाम पे गुस्सा आता है आपको? आपकी पार्टी ने राज्यसभा में किसको भेजा है? नथवानी को भेजा है, और जो राज्यसभा में नथवानी को भेजा है वो भी अब्दुल की वजह से भेजा है। अब्दुल ने आपकी पार्टी की यह हैसियत बनाई कि आपकी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी।
7: यूपी के मुसलमानों के मन में यह भी सवाल है, जिसका जिक्र फसाहत अली शानू भी कर रहे हैं, कि जब राज्यसभा देने की बारी आई तो समाजवादी पार्टी ने धनराज परिमल नाथवानी को राज्यसभा भेजा, ना कि किसी मुसलमान नेता को। यहीं से यह नैरेटिव बनता है कि अब्दुल इन पार्टियों के लिए कब तक दरी बिछाएगा।
14: पूछेंगे समाजवादी थी तो क्या था? समाजवादी थी तो वाई था, वाई का फायदा था, अब बाबा बन गए तो टी का फायदा है, टी का फायदा है। ना वो एम बोलते ना ये एम बोलते, कोई एम नहीं बोलता। ओवैसी बोलता है कि एम जिंदा कौम है, दरी नहीं बिछाएंगे बाबा और भैया, अब तुमको दरी बिछाना पड़ेगा हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला।
16: कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: सीसी के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सीसी ज्ञानेश कुमार के तुरंत निलंबन करने की मांग से इनकार कर दिया। साथ ही साथ चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर बवाल और विरोध प्रदर्शन अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब 6 अक्टूबर को ज्ञानेश के खिलाफ उतरेगा इंडिया। चुनाव आयोग तक विपक्षी पार्टियों के सांसदों का मान। इंडिया गठबंधन ने बनाई ज्ञानेश को घेरने की रणनीति। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया का अक्टूबर संग्राम। वोट चोरी की लड़ाई ज्ञानेश कुमार पर चढ़ाई।
1: फॉर एन अग्रेसिव नेशनल वाइड कैंपेन अगेंस्ट वोट चोरी, वोट बचाओ देश बचाओ।
0: वोटर चोरी SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन का पूरा प्लान आपको बताएं। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू हुआ संग्राम लगातार जारी है। 2 अक्टूबर को मुंबई में CJP ने विरोध प्रदर्शन किया।
2: मेरा रंग दे बसंती चोला, ज्ञान उठा ले छो, मेरा रंग दे बसंती चोला।
0: दिल्ली में आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टियों और उसकी छात्र विंग ISI SFI ने 2 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को भी इंडिया गेट से जंतर मंतर तक सिटीजन्स मार्च निकाला। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भड़के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी जान लगा दी। तो 4 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक साथ BJP और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई में गर्जना मोर्चा निकाला।
3: हिटलर सर, हिटलर कोणालाही घाबरत नव्हता, पण हिटलर वरती अशी वेळ आली की त्याला स्वतः स्वतःवरती गोळी झाडून आत्महत्या करावी लागली। पण हिटलर गेला आणि हिटलर गेल्यानंतर त्याला एक न्यूरेमबर्ग ट्रायल म्हणून तो एक शब्द आहे। जे अधिकारी त्या हिटलरच्या पापामध्ये सहभागी होते त्यांना शोधून शोधून काढलं, त्यांच्यावरती खटले भरले गेले, काही जणांना फासावर लटकवलं, काही जणांना तुरुंगात चढून टाकलं, तोच क्षण आपल्या देशात उद्या आल्याशिवाय राहणार नाही एवढं भाजप आणि या सगळ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवावं।
4: त्याला एक तर SIR हा रद्द झाला पाहिजे कोणत्याही परिस्थितीत, आणि दुसरं म्हणजे या देशातलं वोटिंग मशीन बंद होऊन बॅलेट पेपर वरती याच्यापुढे मतदान झालं पाहिजे। या दोन गोष्टी झाल्या तर दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल। उद्या कोणाचीही सत्ता येऊ देत काही फरक पडत नाही।
0: और आज यानी 5 अक्टूबर को भी काँग्रेस की छात्र विंग ने मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जंतर मंतर से कुछ ही दूरी पर रायसीना रोड पर कांग्रेस की छात्र विंग के कार्यकर्ता और नेता लाशें बनकर सड़क पर लेट जाते हैं। और अब इनका संदेश क्या है वो आपको इस पोस्टर से साफ साफ समझ में आ जाएगा। जो प्रदर्शनकारी अर्थी बनकर लेता है उस पर रखे पोस्टर में लिखा है, जिंदा है हम फिर भी वोटर लिस्ट में मुड़ते क्यों?
5: ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन ने SIR में मुझे मृत घोषित कर दिया है और हमारी लड़ाई यही है कि जो लाखों लोगों का वोट इस SIR में लाखों लोगों को मृत घोषित किया गया है उनके न्याय की लड़ाई है। क्योंकि लोग फोन चला रहे, लोग घूम रहे, लोग खाना खा रहे, लोग पानी पी रहे हैं, परंतु उनको मृत घोषित कर दिया गया है। सोचिए मैं भी बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मेरा नाम भी SIR से कट गया है, सच्चाई है।
0: जिंदा लाश बनने तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही NSUI के कार्यकर्ता और नेता जंतर मंतर की तरफ बढ़ते हैं रास्ते में दिल्ली पुलिस और सेंट्रल फोर्सेज से सीधा सामना हो जाता है। ये देखिए कैसे CISF और दिल्ली पुलिस की महिला ब्रिगेड प्रदर्शनकारियों को उठा उठा कर बस में भर रही है। ये भी देखिए कैसे एक प्रदर्शनकारी को 2 CISF और 1 दिल्ली पुलिस का जवान उठा कर ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की छात्र विंग के प्रदर्शनकारियों को बस में भर कर हिरासत में ले लिया।
6: शर्म करो। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान पर विवाद छिड़ चुका है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है। बीजेपी और आरएसएस सनातन धर्म को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है।
7: एक बार फिर से हिंदुत्व पर सियासत सुलग रही है, एक बार फिर हिंदुत्व पर राजनीति तेज हो रही है और ये हो रहा है कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व वाले इस बयान पर।
8: इस देश में जिस प्रकार सनातन धर्म को हिंदू हिंदू करते रहे, ये आरएसएस विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुत्व और सावरकर जी ने उसको हिंदुत्व नाम दे दिया, उसकी वजह से पूरे देश में हिंदू मुसलमानों के अंदर, हिंदू और सिखों के बीच में, हिंदू ईसाइयों के बीच में आपने खाई पैदा कर दी।
7: दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार मध्य प्रदेश से हुआ। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय पर निशाना साधा।
9: इस तरह से अनर्गल बयानबाजी करना बिना तथ्यों के, यह आपत्तिजनक भी है और खेदपूर्ण भी है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह के इस तरह के तथ्यहीन बयान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो किन तथ्यों के आधार पर इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो राम को बदनाम कर रहे हैं।
7: उधर महाराष्ट्र में भी दिग्विजय सिंह के बयान की गूंज सुनाई दी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भड़क उठे।
10: आरएसएस हो, ये सारी जो संगठनाएं हैं, ये महाराष्ट्र, ये देश में, देश को, जो हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, उसको और ताकतवर बनाने के लिए, हिंदुओं को संगठित रखने के लिए दिन रात काम करते हैं। वो सभी की सभी चीजें हिंदुओं के बारे में बोलना और वहां कभी भी इस्लाम और कुरान पे बोलने की हिम्मत, ये कांग्रेस वाले कभी करते नहीं है। इसलिए तो हम लोग कांग्रेस को मुस्लिम लीग के बी लीग बी टीम बुलाते हैं ना।
7: अब चारों ओर से दिग्विजय पर पलटवार हो रहे हैं और हिंदुत्व पर अब सियासत तेज हो रही है। आज तक भी
6: आज तक ये खबर का असर हुआ है। पिछले शुक्रवार को हमने बिहार के जर्जर स्कूलों से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाई थी। उसके बाद बिहार सरकार की नींद खुली है, छात्रों को स्कूल से शिफ्ट कर दिया गया है और मरम्मत का काम शुरू हो गया है।
11: अब ये हिस्सा देखिए स्कूल का, ये आप देख के समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या है। यहाँ खड़ा होना भी कितना, आप कह सकते हैं ये यहाँ पर खतरनाक है, क्योंकि जिस जगह पर आप ये देख रहे होंगे, ये पूरा ये ढांचा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक टेम्पोररी व्यवस्था की गई है पिलर का रूप देने के लिए।
7: बिहार के दरभंगा के इस स्कूल की हालत जिसने भी देखी वो गुस्से से भर गया। आक्रोशित होने वाली बात ये तो थी ही कि कैसे एक स्कूल की इमारत बेंच के भरोसे खड़ी है। उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात बिहार के शिक्षा विभाग की अनदेखी थी, जो बार बार स्कूल प्रिंसिपल की गुहार लगाने के बावजूद सोता रहा। इसकी वजह से सालों से जान जोखिम में डालकर सैकड़ों बच्चे इस खतरनाक स्कूल में पढ़ने को मजबूर थे। जब कुछ नहीं हुआ तो आज तक ने इस स्कूल को लेकर बिहार सरकार को खबरदार किया। आखिरकार बिहार सरकार हरकत में आई। सालों से सोया बिहार का शिक्षा विभाग भी एकाएक जागा और कीरतपुर प्राथमिक विद्यालय को गोसवा मध्य विद्यालय में शिफ्ट कर दिया। आज तक पर यह खबर दिखाए जाने के बाद ही बिहार के शिक्षा विभाग ने स्कूल शिफ्ट करने का आदेश जारी कर दिया। ये देखिए, शुक्रवार को यह आदेश जारी हुआ और रविवार को बच्चे दूसरे स्कूल में जाने लगे।
12: तो कभी किसी को, बच्चे को चोट भी लगा था, इससे गिरा था इसके पहले,
13: गिरता था लेकिन सर बचा लिया।
12: हाँ, जब बरसात होता था
13: तो पानी टपकता था।
12: हाँ, तो मन में डर भी लगा रहता था।
13: हाँ,
12: अब जा रही हो दूसरे स्कूल तो वहाँ ठीक है ना सर?
13: हाँ।
7: 2 अक्टूबर को आज तक संवाददाता रोहित सिंह दरभंगा के इस स्कूल में गए थे। उन्होंने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे बच्चों की जान जोखिम में डालकर स्कूल चल रहा है। आज तक पर यह रिपोर्ट चलने के बाद अगले ही दिन बिहार के शिक्षा विभाग ने अपने अफसरों को स्कूल के निरीक्षण के लिए दौड़ाया और मौत के साए में पड़ते बच्चों को राहत मिल गई।
14: इसी खबर को जब आज तक ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया तो बिहार सरकार ने इसको संज्ञान में लिया और आदेश निकाला गया कि जिला प्रशासन को आदेश दिया गया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए, इस जर्जर भवन पर पठन पाठन का काम जो है वो नहीं हो। और आनंद फानंद में एक आदेश प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा स्कूल के प्रिंसिपल को भेजा गया जिसमें यह बताया गया कि स्कूल में पठन पाठन का काम अब अगले दिनों से जब भी स्कूल खुलेगा तो नहीं होगा। इन बच्चों को टीचर यहां से लेके जो है वो गोसवा मध्य विद्यालय लेके जाएंगे जहां स्कूल को शिफ्ट किया गया है, क्योंकि बच्चे को अभी ये पूरी जानकारी नहीं हो पाई है। और जो यहाँ प्रिंसिपल है वो भी हम लोग के साथ है, टीचर लोग भी, अब ये लोग प्रस्थान कर रहे हैं। हम खुद प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे, वो अपने कार्यालय में कुछ कागजी खाना पूर्ति करके निकल रहे हैं और वो दूसरे स्कूल की तरफ जाएंगे। सर ये बताइए कि क्या कहेंगे, खबर आज तक ने दिखाई तो क्या हुआ और आप अभी क्या आदेश आया आप लोग को?
15: मुझे आदेश आया है कि विभागीय पत्र के अनुसार मेरा विद्यालय दूसरे जगह शिफ्ट किया गया, मध्य विद्यालय गोसवा में जी।
16: फिर
15: हम लोग तो सभी बच्चे और शिक्षक वहाँ पहुँच जाएंगे जी, जा रहे हैं अभी तुरंत लेकर के।
16: तो क्या यहाँ वाकई क्या स्थिति का खतरा था?
15: हाँ यहाँ तो खतरा था।
7: आज तक के खबरदार करने के बाद स्कूल की मरम्मत के लिए बजरी भी स्कूल पहुँच चुकी है, बच्चे पास ही के दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब बच्चे सुरक्षित होकर पढ़ेंगे। रोहित सिंह के साथ प्रहलाद कुमार, दरभंगा आज तक।
6: पाकिस्तान में इमरान खान की सेहत और रिहाई को लेकर की जा रही मांगों को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। उनकी पार्टी पीटीआई अब निर्णायक लड़ाई लड़ने के मूड में आ चुकी है। खैबर के अलग अलग इलाकों से हजारों लोगों को जुटाया जा रहा है और इस्लामाबाद कूच करने की अपील की जा रही है।
17: सड़कों पर इकट्ठा हजारों की भीड़, ढोल नगाड़ों पर नाचते लोग, हाथों में पार्टी के झंडे और जगह जगह लगी इमरान खान की तस्वीरें। दरअसल इमरान खान की पार्टी का ये लॉन्ग मार्च सितंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होना था। इस बीच सरकार के साथ बातचीत का दौर शुरू हुआ और कुछ दिनों के लिए मार्च को टाल दिया गया, लेकिन सरकार के साथ बात अब नाकाम हो गई है और पीटीआई ने ये मार्च शुरू कर दिया है। रविवार को खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की ओर शुरू हुए इस मार्च से रास्ते में पड़ने वाले हर इलाके से लोग जुड़ते जा रहे हैं।
18: जब हमारा वजीर आला जो ही लाया अमल तय करेगा उसके अमल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब वो या इस्लामाबाद की तरफ हो जाएंगे, इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे।
17: पार्टी की प्रमुख मांगों में जेल में बंद इमरान खान से तत्काल मुलाकात और उन्हें ऐसे अस्पताल ले जाने का फैसला शामिल है जहां उनके निजी डॉक्टर उनकी जांच कर सकें। इमरान पिछले करीब 3 साल से रावलपिंडी की हाई सिक्योरिटी अदियाला जेल में बंद हैं। उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उनकी पार्टी लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रही है। फिलहाल जो हालात हैं, ये हफ्ता शहबाज शरीफ और मुरीद की रातों की नींद उड़ाने वाला हो सकता है। पीटीआई के समर्थक इस्लामाबाद पहुंच पाए तो भी और ना पहुंच पाए तो भी, क्योंकि जब जब जुल्म हुए हैं लोगों की बगावत ने सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाई ही हैं। आज तक ब्यूरो।
6: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: एसआईआर के तहत फॉर्म 6 में बदलाव पर फंसा चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट की 2-2 हमने चेंज नहीं की को मंजूरी नहीं दी। ईसी और केंद्र को थमाया नोटिस। ज्ञानेश के तुरंत निलंबन से इनकार। फॉर्म 6 को राहुल गांधी ने बताया बीजेपी सीईसी की सांठगांठ का नतीजा का अपनाया गया गैरकानूनी तरीका। आग बबूला बीजेपी का पलटवार। संसद से ईसी ऑफिस तक विपक्ष का मार्च। चुनाव से पहले राज्यसभा सीट से जातीय समीकरण साधने में जुटी बीजेपी। लिस्ट में 3 ओबीसी, 2 एससी, 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय का नाम। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, बीएल वर्मा आउट। मायावती ने फिर भतीजे पर दिखाई दया। कहा सियासत से ससुर के संन्यास के बाद सुधर गए आकाश। वापस किया राष्ट्रीय संयोजक का पद। और बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर से वापस भेजे गए 150 लोग। बागडोगरा से बीएसएफ इन्हें भेजेगी सीमा पार। 7 अक्टूबर को एक और कार्रवाई की तैयारी। बीजेपी ने यूपी में 8 सीटों के लिए उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी ने उम्मीदवार चुनने में जातिगत समीकरण का खासा ख्याल रखा है। साथ ही 27 के चुनाव ध्यान में रखते हुए 2 महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया गया है। सभी प्रत्याशी यूपी से ही आते हैं।
1: यूपी में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों की जिस लिस्ट का इंतजार था वो खत्म हुआ। बीजेपी ने आज अपने सभी 8 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया। खास बात ये रही कि इस बार सभी 8 उम्मीदवार नए हैं, मतलब किसी भी पुराने चेहरे को रिपीट नहीं किया गया। नए उम्मीदवारों में 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय चेहरा है। इनमें 3 ओबीसी उम्मीदवार हैं, 2 एससी उम्मीदवार हैं। ओबीसी में लोधी, पाल, कुर्मी समुदाय के उम्मीदवार हैं। महिला प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया है। 2 महिलाओं को टिकट मिला है।
2: ये सिर्फ मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है, पूरे महिलाओं को, पूरी नारी शक्ति को एक जिम्मेदारी मिली है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना इस बात को सिद्ध करता है कि हमारी पार्टी, हमारे आदरणीय नेतागण, हमारे आदरणीय मोदी जी जो कहते हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात, महिला नेतृत्व की बात, आज उन्होंने इस लिस्ट में 2 महिलाओं के नाम से सिद्ध किया है कि महिलाएं देश की प्रगति में, राष्ट्र को आगे ले जाने में कितनी अहम भूमिका है।
3: मुझ जैसे एक सामान्य पृष्ठभूमि के कार्यकर्ता को जो अविचल 36 साल से अधिक समय से पार्टी का आहार निष्काम कर रहा था, उसको आज मौका दिया है और प्रदेश में संदेश देने का काम किया है कि कोई भी कार्यकर्ता अगर निष्ठापूर्वक लगे रहेगा तो पार्टी के नेतृत्व का ध्यान उस पर अवश्य है और ये आज मुझे उम्मीदवार बनाने से पार्टी में संदेश जाएगा।
1: मतलब बीजेपी ने अपना संदेश स्पष्ट कर दिया है। एक तो जातिगत समीकरण को साधा गया है, दूसरा महिलाओं को मौका मिला है, तीसरा सवर्ण मतदाताओं के लिए भी मैसेज है। 27 में यूपी में चुनाव है और राज्यसभा टिकट बांटने में इसका खासा ख्याल रखा गया है, तभी तो सभी 8 उम्मीदवार यूपी के हैं। इसके अलावा पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल बीएल वर्मा और हरदीप सिंह पुरी का टिकट काट दिया गया है। बता दें कि यूपी में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, इनमें 10 सीटों पर 16 अक्टूबर को चुनाव होना है। 6 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी की राजनीति में अगली खबर है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर। अब कांग्रेस की ओर से नई डिमांड कर दी गई है। कांग्रेस कह रही है कि यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस कम से कम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के लिए 50 सीट भी ज्यादा है।
1: यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर गदर मची है। कहा जा रहा था कि कांग्रेस 150 सीटें चाहती है, लेकिन कांग्रेस अब इससे आगे की बात कर रही है।
4: इसने किया 150 का, मैंने तो 200 की बात की थी। मैं शुरू से कह रहा हूँ बराबर का सम्मान और बराबर की इज्जत, बराबर का हिस्सा।
1: लेकिन राजेंद्र पाल गौतम को समाजवादी पार्टी के नेता 2 टूक जवाब देते हैं।
5: मैं ये कहता हूँ उनको 50 सीट देना भी बहुत बड़ी बात होगी, उनको देखना चाहिए। 2 तुम्हारे विधायक हैं, पिछली बार तुमने लड़के देख लिए, क्या इससे तुम्हें सबक नहीं मिलता है?
1: अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि जीत ही सीट का आधार है।
6: जीत ही आधार है, जीत ही सीट का आधार है।
1: और जीत बोले तो आखिरी चुनाव यानी 2024 लोकसभा में मेरी जीत, और वो जीत कुछ ऐसी थी कि 80 में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती और 6 कांग्रेस को मिली थी। इसे विधानसभा के अनुपात में बांटा जाए तो 37 लोकसभा के हिसाब से अखिलेश के हिस्से 347 सीटें बनती हैं और कांग्रेस के हिस्से 56। लेकिन कांग्रेस की हसरतें 56 से 200 तक पहुंच चुकी हैं और हौसला बढ़ता ही जा रहा है। अब कांग्रेस ने उन्हीं इमरान मसूद को कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, जो लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं और 403 सीटों पर लड़ने की चेतावनी देते रहते हैं। पॉलिटिकल मैसेजिंग के तौर पर कांग्रेस ने अपने पत्ते सामने रख दिए हैं। अब बारी समाजवादी पार्टी की ओर से फैसला लेने की है और वो कांग्रेस की सीटों वाली शर्तों के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन करना चाहती है या बीजेपी को हराने के मिशन के साथ। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: यूपी में 2027 की सियासी जंग से पहले दलित वोट बैंक पर भी सियासत तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही का नाम संत रविदास नगर भदोही करने का ऐलान कर दिया है। तो योगी सरकार के इस फैसले के पीछे क्या है सम्मान, कल्याण और विकास का सियासी फॉर्मूला, आइए दिखाते हैं आपको।
7: यूपी के चुनावी मौसम में दलित वोटों के लिए हर दल के तरकश में अलग लगती है और इसी में से एक तीर बीजेपी ने अब यूपी में आजमाया है, जो दलित सियासत में प्रतीकों के तौर पर इस्तेमाल होते आ रहे हैं। सीएम योगी ने ऐसा ही एक ऐलान यूपी में किया, जहां भदोही का नाम संत रविदास के नाम पर किया गया है।
8: कालीन उद्योग के लिए जाना जाने वाला भदोही जनपद आने वाले समय में मध्यकालीन संत जिन्होंने अपनी साधना के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम किया था, ऐसे सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर भदोही जाना जाएगा।
7: भदोही नहीं, नामकरण की बात हो तो कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बहाल किया गया है। वहीं अनुपूरक बजट में डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए 407 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत अंबेडकर, संत रविदास, संत कबीर, ज्योतिबा फुले और महर्षि वाल्मीकि के प्रतिमाओं के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा पर काम होगा। बीजेपी कहती है कि अखिलेश यादव की सरकार ने दलित विरोधी सोच के कारण जिन महापुरुषों के नाम पर रखे गए जिलों, संस्थानों के नाम बदल डाले थे, उनका पुनर्नामकरण करके बीजेपी सम्मान दे रही है।
9: पूर्व में भी भदोही का नाम संत रविदास नगर था, किंतु अखिलेश यादव की दलित विरोधी सोच के नाते से उन्होंने संत रविदास नगर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों के नाम बदले थे, आज उसको सही किया गया है।
10: समाजवादी पार्टी समाज में न किसी वर्ग को अपनी जागीर न वोट बैंक समझती है, वो सभी वर्गों को अपना साथी, सहयोगी और समाजवादी पार्टी के परिवार का हिस्सा समझती है।
7: मतलब ये कि दलितों को रिझाने के लिए दाव चलाए जाने लगे हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: आखिर यूपी में अब्दुल कौन है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अब्दुल अब किसी की दरी नहीं उठाएगा, यानी अब्दुल के वोट का अब कोई भी पार्टी राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। समस्या यह है कि ओवैसी के इन सवालों से समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा नाराज हो रही है।
11: अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, सज्जन दरी नहीं बिछाएगा, शौकत दरी नहीं बिछाएगा।
12: आप नाम मत लीजिए अब्दुल, अब्दुल क्या होता है, आप किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं अब्दुल कह करके।
13: क्यों मौलाना साहब, क्यों लग रहा है आपको इतना बुरा अब्दुल का नाम पर, गाली है अब्दुल।
7: चुनाव से पहले अब्दुल पर घमासान, किसकी तरफ है यूपी का मुसलमान, अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, इस बार किस तरफ जाएगा। यूपी में मुस्लिम वोटों पर हंगामा मचा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ओवैसी के बीच घमासान मचा है कि कौन लेकर जाएगा मुस्लिम वोट, यूपी का मुसलमान किसकी तरफ जाएगा।
14: ओवैसी बोलता है कि एम जिंदा कौम है, दरी नहीं बिछाएंगे बाबा और भैया, अब तुमको दरी बिछाना पड़ेगा हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला।
7: यहाँ पर अपनी रैलियों में ओवैसी अक्सर कहते हैं कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा और इसी अब्दुल पर हंगामा छिड़ गया है। मुस्लिम पॉलिटिक्स में अब्दुल शब्द मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है।
15: खुद ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता इस शब्द यानी अब्दुल का इस्तेमाल करते हैं। अब्दुल का राजनीतिक मतलब निकाला जाता है उस मुसलमान से जिसे राजनीतिक पार्टियां अपना वोट बैंक समझती हैं। इसीलिए ओवैसी कहते हैं कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, यानी अब्दुल अब उन पार्टियों के लिए वोट बैंक नहीं बनेगा जिनके वोटों पर जीत कर ये पार्टियां उन्हें भूल जाती हैं।
11: अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, सद्दन दरी नहीं बिछाएगा, शौकत दरी नहीं बिछाएगा, अब सद्दन टेबल लगाएगा, कुर्सी पर बैठ कर कहेगा बोल इंसाफ करता है या नहीं करता है। इस मिजाज को आपको पैदा करना है। नौजवानों, आने वाला मुस्तकबिल आपका है, आने वाला मुस्तकबिल आपका है। बुजुर्गों, आपने बरसों इन जालिमों का साथ दिया, इन्होंने झूठ बोलकर आपके ख्वाबों को मिसमार कर दिया, चिकना चूर कर दिया। एक बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप अपना वोट देकर यहां से मजलिस के विधायक को कामयाब करिए।
15: ऐसा नहीं है कि ओवैसी ने मुसलमानों के लिए अब्दुल शब्द पहली बार कहा हो, वो पहले भी कहते रहे हैं।
12: अब्दुल अब्दुल क्या होता है?
15: लेकिन इस बार विवाद हुआ है रामपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी से पूछे गए सवाल पर। असल में रामपुर में मोहिबुल्ला नदवी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसी में एक पत्रकार ने उनसे अब्दुल के नाम पर ये सवाल पूछ लिया तो नदवी बुरी तरह से भड़क गए।
12: मुसलमान इस देश के सबसे मोहब्बत शहरी है,
16: और हर पार्टी जो है 27 के चुनाव में अब्दुल को याद करती है। इस वक्त अब्दुल कहाँ है?
12: क्या मतलब आप नाम मत लीजिए, अब्दुल अब्दुल क्या होता है? आप किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं अब्दुल कह करके?
16: नहीं, हर पार्टी नहीं,
12: आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। अब्दुल मीन्स क्या होता है?
16: हर पार्टी
12: किसे कहते हैं? मैं नहीं समझ पा रहा आपकी बात को। अब्दुल अब्दुल लगाया क्या होता है? अब्दुल
16: बताइए,
12: मुसलमान इस देश के सबसे मोहब्बत शहरी है, जिन्होंने देश की कुर्बानी हजारों साल सैकड़ों साल से देश में कुर्बानियां दी हैं। कांग्रेस पार्टी के आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी में देख लीजिए, सब लोग हैं। आप अब्दुल अब्दुल कहकर के आप खड़ाने की कोशिश करते हैं।
15: रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद को लग रहा है कि ऐसे अब्दुल का नाम लेकर मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्हें आपत्ति है कि मुसलमानों को अब्दुल कहा जा रहा है। ये करीब 5 साल पहले का रामपुर का ही बयान है, और जो ये अब्दुल कह रहे हैं ये कभी आजम खान के करीबी हुआ करते थे और उन्हीं की सभा में इन्होंने ये अब्दुल वाला बयान दिया था। इनका नाम है फसाहत अली शानू, अब ये बीजेपी में है, और अब्दुल के नाम पर जब मौजूदा रामपुर के सांसद को आपत्ति हुई तो इन्होंने उन्हें बताया कि अब्दुल कौन है।
13: क्यों मौलाना साहब, क्यों लग रहा है आपको इतना बुरा? अब्दुल के नाम पर गाली है अब्दुल? आपकी घर की दीवारों की रंग पॉलिश करता है वो है अब्दुल, आपकी मोटरों के पंचर जोड़ता है वो है अब्दुल, जिसके नाम की आपकी आपने और आपकी पार्टी ने रोटियां सेकी है वो है अब्दुल, देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई उसके वोटों से वो है अब्दुल, जमाने से आज भी थाने में पिटता आ रहा है वो है अब्दुल। आपने तो इमामत की कीमत कबूल ली, आप तो मस्जिद में नमाज पढ़ाते पढ़ाते सांसद बन गए, अब्दुल के वोटों से बने आप सांसद, अब्दुल के नाम पे भड़कते हैं आप, अब्दुल के नाम पे गुस्सा आता है आपको। आपकी पार्टी ने राज्यसभा में किसको भेजा है? नथवानी को भेजा है, और जो राज्यसभा में नथवानी को भेजा है वो भी अब्दुल की वजह से भेजा है। अब्दुल ने आपकी पार्टी की यह हैसियत बनाई कि आपकी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी।
15: यूपी के मुसलमानों के मन में यह भी सवाल है, जिसका जिक्र फसाहत अली शानू भी कर रहे हैं, कि जब राज्यसभा देने की बारी आई तो समाजवादी पार्टी ने धनराज परिमल नाथवानी को राज्यसभा भेजा, ना कि किसी मुसलमान नेता को। यहीं से यह नैरेटिव बनता है कि अब्दुल इन पार्टियों के लिए कब तक दरी बिछाएगा।
14: पूछेंगे समाजवादी थी तो क्या था? समाजवादी थी तो वाई था, वाई का फायदा था, अब बाबा बन गए तो टी का फायदा है, टी का फायदा है। ना वो एम बोलते ना ये एम बोलते, कोई एम नहीं बोलता। ओवैसी बोलता है कि एम जिंदा कौम है, दरी नहीं बिछाएंगे बाबा और भैया, अब तुमको दरी बिछाना पड़ेगा हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला।
15: कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: सीसी के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सीसी ज्ञानेश कुमार के तुरंत निलंबन करने की मांग से इनकार कर दिया। साथ ही साथ चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर बवाल और विरोध प्रदर्शन अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब 6 अक्टूबर को ज्ञानेश के खिलाफ उतरेगा इंडिया। चुनाव आयोग तक विपक्षी पार्टियों के सांसदों का मान। इंडिया गठबंधन ने बनाई ज्ञानेश को घेरने की रणनीति। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया का अक्टूबर संग्राम। वोट चोरी की लड़ाई ज्ञानेश कुमार पर चढ़ाई।
1: और एन एग्रेसिव नेशनल वाइड कैंपेन अगेंस्ट वोट चोरी। वोट बचाओ देश बचाओ।
0: वोटर चोरी SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन का पूरा प्लान आपको बताएं। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू हुआ संग्राम लगातार जारी है। 2 अक्टूबर को मुंबई में CJP ने विरोध प्रदर्शन किया।
2: मेरा रंग दे बसंती चोला ज्ञान उठा ले छो। मेरा रंग दे बसंती चोला
0: दिल्ली में आम आदमी पार्टी लेफ्ट पार्टियों और उसकी छात्र विंग ISA SFI ने 2 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को भी इंडिया गेट से जंतर मंतर तक सिटीजंस मार्च निकाला। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भड़के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी जान लगा दी। तो 4 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक साथ BJP और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई में गर्जना मोर्चा निकाला।
3: हिटलर सर, हिटलर कोणालाही घाबरत नव्हता, पण हिटलर वरती अशी वेळ आली की त्याला स्वतः स्वतःवरती गोळी झाडून आत्महत्या करावी लागली। पण हिटलर गेला आणि हिटलर गेल्यानंतर त्याला एक न्यूरेंबर्ग ट्रायल म्हणून तो एक शब्द आहे। जे अधिकारी त्या हिटलरच्या पापामध्ये सहभागी होते त्यांना शोधून शोधून काढलं, त्यांच्यावरती खटले भरले गेले, काही जणांना फासावर लटकवलं, काही जणांना तुरुंगात चढून टाकलं, तोच क्षण आपल्या देशात उद्या आल्याशिवाय राहणार नाही एवढं भाजप आणि या सगळ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवावं।
4: त्याला एक तर SIR हा रद्द झाला पाहिजे कोणत्याही परिस्थितीत, आणि दुसरं म्हणजे या देशातलं वोटिंग मशीन बंद होऊन बॅलेट पेपरवरती याच्यापुढे मतदान झालं पाहिजे। या दोन गोष्टी झाल्या तर दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल। उद्या कोणाची सत्ता येऊ देत काही फरक पडत नाही।
0: और आज यानी 5 अक्टूबर को भी कांग्रेस की छात्र विंग ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जंतर मंतर से कुछ ही दूरी पर रायसीना रोड पर कांग्रेस की छात्र विंग के कार्यकर्ता और नेता लाशें बनकर साफ पर देख जाते हैं। और अब इनका संदेश क्या है वो आपको इस पोस्टर से साफ साफ समझ में आ जाएगा। जो प्रदर्शनकारी अर्थी बनकर लेता है उस पर रखे पोस्टर में लिखा है, जिंदा है हम फिर भी वोटर लिस्ट में मुड़ते क्यों।
5: ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन ने SIR में मुझे मृत घोषित कर दिया है। और हमारी लड़ाई यही है कि जो लाखों लोगों का वोट इस SIR में लाखों लोगों को मृत घोषित किया गया है उनके न्याय की लड़ाई है। क्योंकि लोग फोन चला रहे, लोग घूम रहे, लोग खाना खा रहे, लोग पानी पी रहे हैं, परंतु उनको मृत घोषित कर दिया गया है। सोचिए मैं भी बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मेरा नाम भी SIR से कट गया है। सच्चाई है,
0: जिंदा लाश बनने तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही NSUI के कार्यकर्ता और नेता जंतर मंतर की तरफ बढ़ते हैं रास्ते में दिल्ली पुलिस और सेंट्रल फोर्सेज से सीधा सामना हो जाता है। ये देखिए कैसे CISF और दिल्ली पुलिस की पहला ब्रिगेड प्रदर्शनकारियों को उठा उठा कर बस में भर रही है। ये भी देखिए कैसे एक प्रदर्शनकारी को 2 CISF और 1 दिल्ली पुलिस का जवान उठाकर ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की छात्र विंग के प्रदर्शनकारियों को बस में भर कर हिरासत में ले लिया।
6: शर्म करो। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान पर विवाद छिड़ चुका है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है। बीजेपी और आरएसएस सनातन धर्म को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है।
7: एक बार फिर से हिंदुत्व पर सियासत सुलग रही है, एक बार फिर हिंदुत्व पर राजनीति तेज हो रही है और ये हो रहा है कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व वाले इस बयान में।
8: इस देश में जिस प्रकार सनातन धर्म को हिंदू हिंदू करते रहे, ये आरएसएस विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुत्व और सावरकर जी ने उसको हिंदुत्व नाम दे दिया, उसकी वजह से पूरे देश में हिंदू मुसलमानों के अंदर, हिंदू और सिखों के बीच में, हिंदू ईसाइयों के बीच में आपने खाई पैदा कर दी।
7: दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार मध्य प्रदेश से हुआ। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय पर निशाना साधा।
9: इस तरह से अनर्गल बयानबाजी करना बिना तथ्यों के, यह आपत्तिजनक भी है और खेदपूर्ण भी है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह के इस तरह के तथ्यहीन बयान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो किन तथ्यों के आधार पर इस तरह की बातें कर रहे हैं? वो राम को बदनाम कर रहे हैं?
7: उधर महाराष्ट्र में भी दिग्विजय सिंह के बयान की गूंज सुनाई दी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भड़क उठे।
10: आरएसएस हो, ये सारी जो संगठनाएं हैं, ये महाराष्ट्र, ये देश में, देश को, जो हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, उसको और ताकतवर बनाने के लिए, हिंदुओं को संगठित रखने के लिए दिन रात काम करते हैं। वो सभी की सभी चीजें हिंदुओं के बारे में बोलना और वहां कभी भी इस्लाम और कुरान पे बोलने की हिम्मत ये कांग्रेस वाले कभी करते नहीं है। इसलिए तो हम लोग कांग्रेस को मुस्लिम लीग के बी लीग बी टीम बुलाते हैं ना।
7: अब चारों ओर से दिग्विजय पर पलटवार हो रहे हैं और हिंदुत्व पर अब सियासत तेज हो रही है। आज तक भी
6: आज तक ये खबर का असर हुआ है। पिछले शुक्रवार को हमने बिहार के जर्जर स्कूलों से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाई थी। उसके बाद बिहार सरकार की नींद खुली है। छात्रों को स्कूल से शिफ्ट कर दिया गया है और मरम्मत का काम शुरू हो गया है।
11: अब ये हिस्सा देखिए स्कूल का, ये आप देख के समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या है। यह खड़ा होना भी कितना, आप कह सकते हैं ये यहाँ पर खतरनाक है, क्योंकि जिस जगह पर आप ये देख रहे होंगे, ये पूरा ये ढांचा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक टेम्पोररी व्यवस्था की गई है पिलर का रूप देने के लिए।
7: बिहार के दरभंगा के इस स्कूल की हालत जिसने भी देखी वो गुस्से से भर गया। आक्रोशित होने वाली बात ये तो थी ही कि कैसे एक स्कूल की इमारत बेंच के भरोसे खड़ी है। उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात

0: परेशान करने वाली बात बिहार के शिक्षा विभाग की अनदेखी थी, जो बार बार स्कूल प्रिंसिपल की गुहार लगाने के बावजूद सोता रहा। इसकी वजह से सालों से जान जोखिम में डालकर सैकड़ों बच्चे इस खतरनाक स्कूल में पढ़ने को मजबूर थे। जब कुछ नहीं हुआ तो आज तक ने इस स्कूल को लेकर बिहार सरकार को खबरदार किया। आखिरकार बिहार सरकार हरकत में आई। सालों से सोया बिहार का शिक्षा विभाग भी एकाएक जागा और कीरतपुर प्राथमिक विद्यालय को गोसवा मध्य विद्यालय में शिफ्ट कर दिया। आज तक पर यह खबर दिखाए जाने के बाद ही बिहार के शिक्षा विभाग ने स्कूल शिफ्ट करने का आदेश जारी कर दिया। ये देखिए, शुक्रवार को यह आदेश जारी हुआ और रविवार को बच्चे दूसरे स्कूल में जाने लगे।
1: ये धर धर के गिर रहा है, बहुत डर है।
2: हाँ, तो कभी किसी को बच्चे को चोट ही लगा था, इससे गिरा था इसके पहले?
1: गिरता था लेकिन सर बचा लो।
2: हाँ, जब बरसात होता था तो
1: पानी टपकता था।
2: हाँ, तो मन में डर भी लगा रहता था।
1: हाँ,
2: अब जा रही हो दूसरे स्कूल तो वहाँ ठीक है ना सब?
1: हाँ।
0: 2 अक्टूबर को आज तक संवाददाता रोहित सिंह दरभंगा के इस स्कूल में गए थे। उन्होंने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे बच्चों की जान जोखिम में डालकर स्कूल चल रहा है। आज तक पर ये रिपोर्ट चलने के बाद अगले ही दिन बिहार के शिक्षा विभाग ने अपने अफसरों को स्कूल के निरीक्षण के लिए दौड़ाया और मौत के साए में पढ़ते बच्चों को राहत मिल गई।
3: इसी खबर को जब आज तक ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया तो बिहार सरकार ने इसको संज्ञान में लिया और आदेश निकाला गया कि जिला प्रशासन को आदेश दिया गया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। इस जर्जर भवन पर पठन पाठन का काम जो है वो नहीं हो और आनन फानन में एक आदेश प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा स्कूल के प्रिंसिपल को भेजा गया, जिसमें यह बताया गया कि स्कूल में पठन पाठन का काम अब अगले दिनों से जब भी स्कूल खुलेगा तो नहीं होगा। इन बच्चों को टीचर यहां से लेके जो है वो गोसवा मध्य विद्यालय लेके जाएंगे, जहां स्कूल को शिफ्ट किया गया है, क्योंकि बच्चे को अभी ये पूरी जानकारी नहीं हो पाई है। और जो यहां प्रिंसिपल है वो भी हम लोग के साथ है, टीचर लोग भी, अब ये लोग प्रस्थान कर रहे हैं। हम खुद प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे, वो अपने कार्यालय में कुछ कागजी खाना पूर्ति करके निकल रहे हैं और वो दूसरे स्कूल की तरफ जाएंगे। सर ये बताइए कि क्या कहेंगे, खबर आज तक ने दिखाई तो क्या हुआ और आप अभी क्या आदेश आया आप लोग को?
4: मुझे आदेश आया है कि विभागीय पत्र के अनुसार मेरा विद्यालय दूसरे जगह शिफ्ट किया गया, मध्य विद्यालय गोसवा में जी।
2: फिर आज
4: हम लोग तो सभी बच्चे और शिक्षक वहाँ पहुँच जाएंगे जी, जा रहे हैं अभी तुरंत लेकर के।
2: तो क्या यहाँ वाकई क्या स्थिति का खतरा था?
4: हाँ, यहाँ तो खतरा था।
0: आज तक के खबरदार करने के बाद स्कूल की मरम्मत के लिए बजरी भी स्कूल पहुँच चुकी है। बच्चे पासी के दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब बच्चे सुरक्षित होकर पढ़ेंगे। रोहित सिंह के साथ प्रहलाद कुमार, दरभंगा आज तक।
5: पाकिस्तान में इमरान खान की सेहत और रिहाई को लेकर की जा रही मांगों को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। उनकी पार्टी पीटीआई अब निर्णायक लड़ाई लड़ने के मूड में आ चुकी है। खैबर के अलग अलग इलाकों से हजारों लोगों को जुटाया जा रहा है और इस्लामाबाद कूच करने की अपील की जा रही है।
6: सड़कों पर इकट्ठा हजारों की भीड़, ढोल नगाड़ों पर नाचते लोग, हाथों में पार्टी के झंडे और जगह जगह लगी इमरान खान की तस्वीरें। दरअसल इमरान खान की पार्टी का ये लॉन्ग मार्च सितंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होना था। इस बीच सरकार के साथ बातचीत का दौर शुरू हुआ और कुछ दिनों के लिए मार्च को टाल दिया गया, लेकिन सरकार के साथ बात अब नाकाम हो गई है और पीटीआई ने ये मार्च शुरू कर दिया है। रविवार को खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की ओर शुरू हुए इस मार्च से रास्ते में पड़ने वाले हर इलाके से लोग जुड़ते जा रहे हैं।
7: जब हमारा वजीर आला जो ही लाया अमल तय करेगा उसके अमल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब वो या इस्लामाबाद की तरफ हो जाएंगे, इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे।
6: पार्टी की प्रमुख मांगों में जेल में बंद इमरान खान से तत्काल मुलाकात और उन्हें ऐसे अस्पताल ले जाने का फैसला शामिल है जहां उनके निजी डॉक्टर उनकी जांच कर सकें। इमरान पिछले करीब 3 साल से

0: रावलपिंडी की हाई सिक्योरिटी अदियाला जेल में बंद है। उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उनकी पार्टी लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रही है। फिलहाल जो हालात हैं, ये हफ्ता शहबाज शरीफ और मुरीद की रातों की नींद उड़ाने वाला हो सकता है। पीटीआई के समर्थक इस्लामाबाद पहुंच पाए तो भी और ना पहुंच पाए तो भी, क्योंकि जब जब जुल्म हुए हैं, लोगों की बगावत ने सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाई ही हैं। आज तक ब्यूरो।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: एसआईआर के तहत फॉर्म 6 में बदलाव पर फंसा चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, हमने चेंज नहीं की को मंजूरी नहीं दी। ईसी और केंद्र को थमाया नोटिस, ज्ञानेश के तुरंत निलंबन से इनकार। फॉर्म 6 को राहुल गांधी ने बताया बीजेपी सीईसी की सांठगांठ का नतीजा, का अपनाया गया गैरकानूनी तरीका। आग बबूला बीजेपी का पलटवार, संसद से ईसी ऑफिस तक विपक्ष का मार्च। चुनाव से पहले राज्यसभा सीट से जातीय समीकरण साधने में जुटी बीजेपी। लिस्ट में 3 ओबीसी, 2 एससी, 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय का नाम। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, बीएल वर्मा आउट। मायावती ने फिर भतीजे पर दिखाई दया, कहा सियासत से ससुर के संन्यास के बाद सुधर गए आकाश, वापस किया राष्ट्रीय संयोजक का पद। और बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जम्मू कश्मीर से वापस भेजे गए 150 लोग, बागडोगरा से बीएसएफ इन्हें भेजेगी सीमा पार। 7 अक्टूबर को एक और कार्रवाई की तैयारी। बीजेपी ने यूपी में 8 सीटों के लिए उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी ने उम्मीदवार चुनने में जातिगत समीकरण का खासा ख्याल रखा है, साथ ही 27 के चुनाव ध्यान में रखते हुए 2 महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया गया है। सभी प्रत्याशी यूपी से ही आते हैं।
1: यूपी में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों की जिस लिस्ट का इंतजार था वो खत्म हुआ। बीजेपी ने आज अपने सभी 8 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया। खास बात ये रही कि इस बार सभी 8 उम्मीदवार नए हैं, मतलब किसी भी पुराने चेहरे को रिपीट नहीं किया गया। नए उम्मीदवारों में 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय चेहरा है। इनमें 3 ओबीसी उम्मीदवार हैं, 2 एससी उम्मीदवार हैं। ओबीसी में लोधी, पाल, कुर्मी समुदाय के उम्मीदवार हैं। महिला प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया है, 2 महिलाओं को टिकट मिला है।
2: ये सिर्फ मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है, पूरे महिलाओं को, पूरी नारी शक्ति को एक जिम्मेदारी मिली है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना इस बात को सिद्ध करता है कि हमारी पार्टी, हमारे आदरणीय नेतागण, हमारे आदरणीय मोदी जी जो कहते हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात, महिला नेतृत्व की बात, आज उन्होंने इस लिस्ट में 2 महिलाओं के नाम से सिद्ध किया है कि महिलाएं देश की प्रगति में, राष्ट्र को आगे ले जाने में कितनी अहम भूमिका है।
3: मुझ जैसे एक सामान्य पृष्ठभूमि के कार्यकर्ता को जो अविचल 36 साल से अधिक समय से पार्टी का आहार निष्काम कर रहा था, उसको आज मौका दिया है और प्रदेश में संदेश देने का काम किया है कि कोई भी कार्यकर्ता अगर निष्ठापूर्वक लगे रहेगा तो पार्टी के नेतृत्व का ध्यान उस पर अवश्य है और ये आज मुझे उम्मीदवार बनाने से पार्टी में संदेश जाएगा।
1: मतलब बीजेपी ने अपना संदेश स्पष्ट कर दिया है। एक तो जातिगत समीकरण को साधा गया है, दूसरा महिलाओं को मौका मिला है, तीसरा सवर्ण मतदाताओं के लिए भी मैसेज है। 27 में यूपी में चुनाव है और राज्यसभा टिकट बांटने में इसका खासा ख्याल रखा गया है, तभी तो सभी 8 उम्मीदवार यूपी के हैं। इसके अलावा पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल बीएल वर्मा और हरदीप सिंह पुरी का टिकट काट दिया गया है। बता दें कि यूपी में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, इनमें 10 सीटों पर 16 अक्टूबर को चुनाव होना है। 6 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी की राजनीति में अगली खबर है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर। अब कांग्रेस की ओर से नई डिमांड कर दी गई है। कांग्रेस कह रही है कि यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस कम से कम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के लिए 50 सीट भी ज्यादा है।
1: यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर गदर मची है। कहा जा रहा था कि कांग्रेस 150 सीटें चाहती है, लेकिन कांग्रेस अब इससे आगे की बात कर रही है।
4: इसने किया 150 का, मैंने तो 200 की बात की थी। मैं शुरू से कह रहा हूँ बराबर का सम्मान और बराबर की इज्जत, बराबर का हिस्सा।
1: लेकिन राजेंद्र पाल गौतम को समाजवादी पार्टी के नेता 2 टूक जवाब देते हैं।
5: मैं ये कहता हूँ उनको 50 सीट देना भी बहुत बड़ी बात होगी, उनको देखना चाहिए। 2 तुम्हारे विधायक हैं, पिछली बार तुमने लड़के देख लिए, क्या इससे तुम्हें सबक नहीं मिलता है?
1: अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि जीत ही सीट का आधार है।
6: जीत ही आधार है, जीत ही सीट का आधार है।
1: और जीत बोले तो आखिरी चुनाव यानी 2024 लोकसभा में मिली जीत, और वो जीत कुछ ऐसी थी कि 80 में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती और 6 कांग्रेस को मिली थी। इसे विधानसभा के अनुपात में बांटा जाए तो 37 लोकसभा के हिसाब से अखिलेश के हिस्से 347 सीटें बनती हैं और कांग्रेस के हिस्से 56। लेकिन कांग्रेस की हसरतें 56 से 200 तक पहुंच चुकी हैं और हौसला बढ़ता ही जा रहा है। अब कांग्रेस ने उन्हीं इमरान मसूद को कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, जो लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं और 403 सीटों पर लड़ने की चेतावनी देते रहते हैं। पॉलिटिकल मैसेजिंग के तौर पर कांग्रेस ने अपने पत्ते सामने रख दिए हैं। अब बारी समाजवादी पार्टी की ओर से फैसला लेने की है और वो कांग्रेस की सीटों वाली शर्तों के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन करना चाहती है या बीजेपी को हराने के मिशन के साथ। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: यूपी में 2027 की सियासी जंग से पहले दलित वोट बैंक पर भी सियासत तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही का नाम संत रविदास नगर भदोही करने का ऐलान कर दिया है। तो योगी सरकार के इस फैसले के पीछे क्या है सम्मान, कल्याण और विकास का सियासी फॉर्मूला, आइए दिखाते हैं आपको।
7: यूपी के चुनावी मौसम में दलित वोटों के लिए हर दल के तरकश में अलग लगती है और इसी में से एक तीर बीजेपी ने अब यूपी में आजमाया है, जो दलित सियासत में प्रतीकों के तौर पर इस्तेमाल होते आ रहे हैं। सीएम योगी ने ऐसा ही एक ऐलान यूपी में किया, जहां भदोही का नाम संत रविदास के नाम पर किया गया है।
8: कालीन उद्योग के लिए जाना जाने वाला भदोही जनपद आने वाले समय में मध्यकालीन संत जिन्होंने अपनी साधना के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम किया था, ऐसे सद्गुरु रविदास जी महाराज के नाम पर भदोही जाना जाएगा।
7: भदोही नहीं, नामकरण की बात हो तो कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बहाल किया गया है। वहीं अनुपूरक बजट में डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए 407 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत अंबेडकर, संत रविदास, संत कबीर, ज्योतिबा फुले और महर्षि वाल्मीकि के प्रतिमाओं के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा पर काम होगा। बीजेपी कहती है कि अखिलेश यादव की सरकार ने दलित विरोधी सोच के कारण जिन महापुरुषों के नाम पर रखे गए जिलों, संस्थानों के नाम बदल डाले थे, उनका पुनर्नामकरण करके बीजेपी सम्मान दे रही है।
9: पूर्व में भी भदोही का नाम संत रविदास नगर था, किंतु अखिलेश यादव की दलित विरोधी सोच के नाते से उन्होंने संत रविदास नगर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों के नाम बदले थे, आज उसको सही किया गया है।
10: समाजवादी पार्टी समाज में न किसी वर्ग को अपनी जागीर न वोट बैंक समझती है, वो सभी वर्गों को अपना साथी, सहयोगी और समाजवादी पार्टी के परिवार का हिस्सा समझती है।
7: मतलब ये कि दलितों को रिझाने के लिए दाव चलाए जाने लगे हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: आखिर यूपी में अब्दुल कौन है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अब्दुल अब किसी की दरी नहीं उठाएगा, यानी अब्दुल के वोट का अब कोई भी पार्टी राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। समस्या यह है कि ओवैसी के इन सवालों से समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा नाराज हो रही है।
11: अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, सज्जन दरी नहीं बिछाएगा, शौकत दरी नहीं बिछाएगा।
12: आप नाम मत लीजिए अब्दुल, अब्दुल क्या होता है, आप किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं अब्दुल कह करके।
13: क्यों मौलाना साहब, क्यों लग रहा है आपको इतना बुरा अब्दुल का नाम पर, गाली है अब्दुल।
14: चुनाव से पहले अब्दुल पर घमासान, किसकी तरफ है यूपी का मुसलमान? अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, इस बार किस तरफ जाएगा? यूपी में मुस्लिम वोटों पर हंगामा मचा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ओवैसी के बीच घमासान मचा है कि कौन लेकर जाएगा मुस्लिम वोट, यूपी का मुसलमान किसकी तरफ जाएगा।
15: ओवैसी बोलता है कि एम जिंदा कौम है, दरी नहीं बिछाएंगे बाबा और भैया, अब तुमको दरी बिछाना पड़ेगा हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला।
14: यहाँ पर अपनी रैलियों में ओवैसी अक्सर कहते हैं कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा और इसी अब्दुल पर हंगामा छिड़ गया है। मुस्लिम पॉलिटिक्स में अब्दुल शब्द मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है,
16: खुद ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता इस शब्द यानी अब्दुल का इस्तेमाल करते हैं। अब्दुल का राजनीतिक मतलब निकाला जाता है उस मुसलमान से जिसे राजनीतिक पार्टियां अपना वोट बैंक समझती हैं। इसीलिए ओवैसी कहते हैं कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, यानी अब्दुल अब उन पार्टियों के लिए वोट बैंक नहीं बनेगा जिनके वोटों पर जीत कर ये पार्टियां उन्हें भूल जाती हैं।
11: अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, सज्जन दरी नहीं बिछाएगा, शौकत दरी नहीं बिछाएगा, अब सज्जन टेबल लगाएगा, कुर्सी पर बैठ कर कहेगा बोल इंसाफ करता है या नहीं करता है। इस मिजाज को आपको पैदा करना है नौजवानों, आने वाला मुस्तकबिल आपका है, आने वाला मुस्तकबिल आपका है। बुजुर्गों, आपने बरसों इन जालिमों का साथ दिया, इन्होंने झूठ बोलकर आपके ख्वाबों को मिसमार कर दिया, चिकना चूर कर दिया। एक बार मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को आप अपना वोट देकर यहां से मजलिस के विधायक को कामयाब करिए।
16: ऐसा नहीं है कि ओवैसी ने मुसलमानों के लिए अब्दुल शब्द पहली बार कहा हो, वो पहले भी कहते रहे हैं।
12: अब्दुल क्या होता है?
16: लेकिन इस बार विवाद हुआ है रामपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी से पूछे गए सवाल पर। असल में रामपुर में मोहिबुल्ला नदवी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसी में एक पत्रकार ने उनसे अब्दुल के नाम पर ये सवाल पूछ लिया तो नदवी पूरी तरह से भड़क गए।
12: मुसलमान इस देश के सबसे मोहतर शहरी हैं
17: जी, झगड़ा इसके चुनाव की क्या तैयारी
18: आ रहा है, और हर पार्टी जो है 27 के चुनाव में अब्दुल को याद करती, इस वक्त अब्दुल कहां?
12: क्या मतलब, आप नाम लीजिए अब्दुल, अब्दुल क्या होता है? आप किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं अब्दुल कह करके?
18: नहीं, हर पार्टी नहीं,
12: आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। अब्दुल मिंच क्या होता है?
18: हर पार्टी
12: किसे कहते हैं? बार नहीं समझ पा रहा आपकी बात को। अब्दुल अब्दुल लगाया क्या होता है? अब्दुल
18: बताइए,
12: मुसलमान इस देश के सबसे मोहतर शहरी हैं जिन्होंने देश की कुर्बानी हजारों साल सैकड़ों साल से देश में कुर्बानियां दी हैं। कांग्रेस पार्टी के आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी में देख लीजिए, सब लोग हैं। आप अब्दुल अब्दुल कहकर के आप खड़ाने की कोशिश करते हैं।
16: रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद को लग रहा है कि ऐसे अब्दुल का नाम लेकर मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्हें आपत्ति है कि मुसलमानों को अब्दुल कहा जा रहा है। ये करीब 5 साल पहले का रामपुर का ही बयान है, और जो ये अब्दुल कह रहे हैं ये कभी आजम खान के करीबी हुआ करते थे, और उन्हीं की सभा में इन्होंने ये अब्दुल वाला बयान दिया था। इनका नाम है फसाहत अली शानू, अब ये बीजेपी में है, और अब्दुल के नाम पर जब मौजूदा रामपुर के सांसद को आपत्ति हुई तो इन्होंने उन्हें बताया कि अब्दुल कौन है।
13: क्यों मौलाना साहब, क्यों लग रहा है आपको इतना बुरा? अब्दुल के नाम पर गाली है? अब्दुल आपकी घर की दीवारों की रंग पॉलिश करता है वो है अब्दुल, आपकी मोटरों के पंचर जोड़ता है वो है अब्दुल, जिसके नाम की आपकी आपने और आपकी पार्टी ने रोटियां सेकी है वो है अब्दुल, देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई उसके वोटों से वो है अब्दुल, जमाने से आज भी थाने में पिटता आ रहा है वो है अब्दुल। आपने तो इमामत की कीमत कबूल ली, आप तो मस्जिद में नमाज पढ़ाते पढ़ाते सांसद बन गए, अब्दुल के वोटों से बने आप सांसद, अब्दुल के नाम पे भड़कते हैं आप, अब्दुल के नाम पे गुस्सा आता है आपको? आपकी पार्टी ने राज्यसभा में किसको भेजा है? नथवानी को भेजा है, और जो राज्यसभा में नथवानी को भेजा है वो भी अब्दुल की वजह से भेजा है। अब्दुल ने आपकी पार्टी की यह हैसियत बनाई कि आपकी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी।
16: यूपी के मुसलमानों के मन में यह भी सवाल है जिसका जिक्र फसाहत अली शानू भी कर रहे हैं कि जब राज्यसभा देने की बारी आई तो समाजवादी पार्टी ने धनराज परिमल नाथवानी को राज्यसभा भेजा, ना कि किसी मुसलमान नेता को। यहीं से यह नैरेटिव बनता है कि अब्दुल इन पार्टियों के लिए कब तक दरी बिछाएगा।
15: पूछेंगे समाजवादी थी तो क्या था? समाजवादी थी तो वाई था, वाई का फायदा था, अब बाबा बन गए तो टी का फायदा है, टी का फायदा है। ना वो एम बोलते ना ये एम बोलते, कोई एम नहीं बोलता। ओवैसी बोलता है कि एम जिंदा कौम है, दरी नहीं बिछाएंगे बाबा और भैया, अब तुमको दरी बिछाना पड़ेगा हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला।
16: कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: सीसी के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सीसी ज्ञानेश कुमार के तुरंत निलंबन करने की मांग से इनकार कर दिया। साथ ही साथ चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर बवाल और विरोध प्रदर्शन अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब 6 अक्टूबर को ज्ञानेश के खिलाफ उतरेगा इंडिया। चुनाव आयोग तक विपक्षी पार्टियों के सांसदों का मान। इंडिया गठबंधन ने बनाई ज्ञानेश को घेरने की रणनीति। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया का अक्टूबर संग्राम। वोट चोरी की लड़ाई ज्ञानेश कुमार पर चढ़ाई।
1: फॉर एन अग्रेसिव नेशनल वाइड कैंपेन अगेंस्ट वोट चोरी, वोट बचाओ देश बचाओ।
0: वोटर चोरी SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन का पूरा प्लान आपको बताएं। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू हुआ संग्राम लगातार जारी है। 2 अक्टूबर को मुंबई में CJP ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टियों और उसकी छात्र विंग ISI SFI ने 2 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को भी इंडिया गेट से जंतर मंतर तक सिटीजन्स मार्च निकाला। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भड़के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी जान लगा दी। तो 4 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक साथ BJP और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई में गर्जना मोर्चा निकाला।
2: हिटलर सर, हिटलर कोणालाही घाबरत नव्हता, पण हिटलर वरती अशी वेळ आली की त्याला स्वतः स्वतःवरती गोळी झाडून आत्महत्या करावी लागली। पण हिटलर गेला आणि हिटलर गेल्यानंतर त्याला एक न्यूरेंबर्ग ट्रायल म्हणून तो एक शब्द आहे। जे अधिकारी त्या हिटलरच्या पापामध्ये सहभागी होते त्यांना शोधून शोधून काढलं, त्यांच्यावरती खटले भरले गेले, काही जणांना फासावर लटकवलं, काही जणांना तुरुंगात चढून टाकलं, तोच क्षण आपल्या देशात उद्या आल्याशिवाय राहणार नाही। एवढं भाजप आणि या सगळ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवावं।
3: त्याला एक तर SIR हा रद्द झाला पाहिजे कोणत्याही परिस्थितीत, आणि दुसरं म्हणजे या देशातलं वोटिंग मशीन बंद होऊन बॅलेट पेपर वरती याच्या पुढे मतदान झालं पाहिजे। या दोन गोष्टी झाल्या तर दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल। उद्या कोणाचीही सत्ता येऊ देत काही फरक पडत नाही।
0: और आज यानी 5 अक्टूबर को भी काँग्रेस की छात्र विंग ने मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जंतर मंतर से कुछ ही दूरी पर रायसीना रोड पर कांग्रेस की छात्र विंग के कार्यकर्ता और नेता लाशें बनकर सड़क पर लेट जाते हैं। और अब इनका संदेश क्या है वो आपको इस पोस्टर से साफ साफ समझ में आ जाएगा। जो प्रदर्शनकारी अर्थी बनकर लेता है उस पर रखे पोस्टर में लिखा है, जिंदा है हम फिर भी वोटर लिस्ट में मुड़े क्यों?
4: ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन ने SIR में मुझे मृत घोषित कर दिया है। और हमारी लड़ाई यही है कि जो लाखों लोगों का वोट इस SIR में लाखों लोगों को मृत घोषित किया गया है उनके न्याय की लड़ाई है। क्योंकि लोग फोन चला रहे, लोग घूम रहे, लोग खाना खा रहे, लोग पानी पी रहे हैं, परंतु उनको मृत घोषित कर दिया गया है। सोचिए मैं भी बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मेरा नाम भी SIR से कट गया है, सच्चाई है।
0: जिंदा लाश बनने तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही NSUI के कार्यकर्ता और नेता जंतर मंतर की तरफ बढ़ते हैं रास्ते में दिल्ली पुलिस और सेंट्रल फोर्सेज से सीधा सामना हो जाता है। ये देखिए कैसे CISF और दिल्ली पुलिस की महिला ब्रिगेड प्रदर्शनकारियों को उठा उठा कर बस में भर रही है। ये भी देखिए कैसे एक प्रदर्शनकारी को 2 CISF और 1 दिल्ली पुलिस का जवान उठा कर ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की छात्र विंग के प्रदर्शनकारियों को बस में भर कर हिरासत में ले लिया।
5: शर्म करो। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान पर विवाद छिड़ चुका है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है। बीजेपी और आरएसएस सनातन धर्म को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है।
6: एक बार फिर से हिंदुत्व पर सियासत सुलग रही है, एक बार फिर हिंदुत्व पर राजनीति तेज हो रही है और ये हो रहा है कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व वाले इस बयान पर।
7: इस देश में जिस प्रकार सनातन धर्म को हिंदू हिंदू करते रहे, ये आरएसएस विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुत्व और सावरकर जी ने उसको हिंदुत्व नाम दे दिया, उसकी वजह से पूरे देश में हिंदू मुसलमानों के अंदर, हिंदू और सिखों के बीच में, हिंदू ईसाइयों के बीच में आपने खाई पैदा कर दी।
6: दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार मध्य प्रदेश से हुआ। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय पर निशाना साधा।
8: इस तरह से अनर्गल बयानबाजी करना बिना तथ्यों के यह आपत्तिजनक भी है और खेदपूर्ण भी है, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह के इस तरह के तथ्यहीन बयान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो किन तथ्यों के आधार पर इस तरह की बातें कर रहे हैं, राम को बदनाम कर रहे।
6: उधर महाराष्ट्र में भी दिग्विजय सिंह के बयान की गूंज सुनाई दी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भड़क उठे।
9: आरएसएस हो, ये सारी जो संगठनाएं हैं, ये महाराष्ट्र, ये देश में, देश को, जो हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, उसको और ताकतवर बनाने के लिए, हिंदुओं को संगठित रखने के लिए दिन रात काम करते हैं। वो सभी की सभी चीजें हिंदुओं के बारे में बोलना और वहां कभी भी इस्लाम और कुरान पे बोलने की हिम्मत, ये कांग्रेस वाले कभी करते नहीं है। इसलिए तो हम लोग कांग्रेस को मुस्लिम लीग के बी लीग बी टीम बुलाते हैं ना।
6: अब चारों ओर से दिग्विजय पर पलटवार हो रहे हैं और हिंदुत्व पर अब सियासत तेज हो रही है। आज तक दिन,
5: आज तक ये खबर का असर हुआ है। पिछले शुक्रवार को हमने बिहार के जर्जर स्कूलों से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाई थी। उसके बाद बिहार सरकार की नींद खुली है, छात्रों को स्कूल से शिफ्ट कर दिया गया है और मरम्मत का काम शुरू हो गया है।
10: अब ये हिस्सा देखिए स्कूल का, ये आप देख के समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या है। यहाँ खड़ा होना भी कितना, आप कह सकते हैं ये यहाँ पर खतरनाक है, क्योंकि जिस जगह पर आप ये देख रहे होंगे, ये पूरा ये ढांचा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक टेम्पोररी व्यवस्था की गई है पिलर का रूप देने के लिए।
6: बिहार के दरभंगा के इस स्कूल की हालत जिसने भी देखी वो गुस्से से भर गया। आक्रोशित होने वाली बात ये तो थी ही कि कैसे एक स्कूल की इमारत बेंच के भरोसे खड़ी है। उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात बिहार के शिक्षा विभाग की अनदेखी थी, जो बार बार स्कूल प्रिंसिपल की गुहार लगाने के बावजूद सोता रहा। इसकी वजह से सालों से जान जोखिम में डालकर सैकड़ों बच्चे इस खतरनाक स्कूल में पढ़ने को मजबूर थे। जब कुछ नहीं हुआ तो आज तक ने इस स्कूल को लेकर बिहार सरकार को खबरदार किया। आखिरकार बिहार सरकार हरकत में आई। सालों से सोया बिहार का शिक्षा विभाग भी एकाएक जागा और कीरतपुर प्राथमिक विद्यालय को गोसवा मध्य विद्यालय में शिफ्ट कर दिया। आज तक पर यह खबर दिखाए जाने के बाद ही बिहार के शिक्षा विभाग ने स्कूल शिफ्ट करने का आदेश जारी कर दिया। ये देखिए, शुक्रवार को यह आदेश जारी हुआ और रविवार को बच्चे दूसरे स्कूल में जाने लगे।
11: तो कभी किसी को, बच्चे को चोट भी लगा था, इससे गिरा था इसके पहले,
12: गिरता था लेकिन सर बचा लिया।
11: हाँ, जब बरसात होता था
12: तो पानी टपकता था।
11: हाँ, तो मन में डर भी लगा रहता था।
12: हाँ,
11: अब जा रही हो दूसरे स्कूल तो वहाँ ठीक है ना सर?
12: हाँ।
6: 2 अक्टूबर को आज तक संवाददाता रोहित सिंह दरभंगा के इस स्कूल में गए थे। उन्होंने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे बच्चों की जान जोखिम में डालकर स्कूल चल रहा है। आज तक पर ये रिपोर्ट चलने के बाद अगले ही दिन बिहार के शिक्षा विभाग ने अपने अफसरों को स्कूल के निरीक्षण के लिए दौड़ाया और मौत के साए में पड़ते बच्चों को राहत मिल गई।
13: इसी खबर को जब आज तक ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया तो बिहार सरकार ने इसको संज्ञान में लिया और आदेश निकाला गया कि जिला प्रशासन को आदेश दिया गया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए, इस जर्जर भवन पर पठन पाठन का काम जो है वो नहीं हो। और आनंद फानंद में एक आदेश प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा स्कूल के प्रिंसिपल को भेजा गया जिसमें यह बताया गया कि स्कूल में पठन पाठन का काम अब अगले दिनों से जब भी स्कूल खुलेगा तो नहीं होगा। इन बच्चों को टीचर यहां से लेके जो है वो गोसवा मध्य विद्यालय लेके जाएंगे जहां स्कूल को शिफ्ट किया गया है, क्योंकि बच्चे को अभी ये पूरी जानकारी नहीं हो पाई है। और जो यहाँ प्रिंसिपल है वो भी हम लोग के साथ है, टीचर लोग भी, अब ये लोग प्रस्थान कर रहे हैं। हम खुद प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे, वो अपने कार्यालय में कुछ कागजी खाना पूर्ति करके निकल रहे हैं और वो दूसरे स्कूल की तरफ जाएंगे। सर ये बताइए कि क्या कहेंगे, खबर आज तक ने दिखाई तो क्या हुआ और आप अभी क्या आदेश आया आप लोग को?
14: मुझे आदेश आया है कि विभागीय पत्र के अनुसार मेरा विद्यालय दूसरे जगह शिफ्ट किया गया, मध्य विद्यालय गोसवा में जी।
15: फिर
14: हम लोग तो सभी बच्चे और शिक्षक वहाँ पहुँच जाएंगे जी, जा रहे हैं अभी तुरंत लेकर के।
15: तो क्या यहाँ वाकई क्या स्थिति का खतरा था?
14: हाँ यहाँ तो खतरा था।
6: आज तक के खबरदार करने के बाद स्कूल की मरम्मत के लिए बजरी भी स्कूल पहुँच चुकी है, बच्चे पासी के दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब बच्चे सुरक्षित होकर पढ़ेंगे। रोहित सिंह के साथ प्रहलाद कुमार, दरभंगा आज तक।
5: पाकिस्तान में इमरान खान की सेहत और रिहाई को लेकर की जा रही मांगों को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। उनकी पार्टी पीटीआई अब निर्णायक लड़ाई लड़ने के मूड में आ चुकी है। खैबर के अलग अलग इलाकों से हजारों लोगों को जुटाया जा रहा है और इस्लामाबाद कूच करने की अपील की जा रही है।
16: सड़कों पर इकट्ठा हजारों की भीड़, ढोल नगाड़ों पर नाचते लोग, हाथों में पार्टी के झंडे और जगह जगह लगी इमरान खान की तस्वीरें। दरअसल इमरान खान की पार्टी का ये लॉन्ग मार्च सितंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होना था। इस बीच सरकार के साथ बातचीत का दौर शुरू हुआ और कुछ दिनों के लिए मार्च को टाल दिया गया, लेकिन सरकार के साथ बात अब नाकाम हो गई है और पीटीआई ने ये मार्च शुरू कर दिया है। रविवार को खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की ओर शुरू हुए इस मार्च से रास्ते में पड़ने वाले हर इलाके से लोग जुड़ते जा रहे हैं।
17: जब हमारा वजीर आला जो ही लाया अमल तय करेगा उसके अमल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब वो या इस्लामाबाद की अमल करेंगे और आगे बढ़ेंगे जब वो या इस्लामाबाद की तरफ हो जाएंगे इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे।
16: पार्टी की प्रमुख मांगों में जेल में बंद इमरान खान से तत्काल मुलाकात और उन्हें ऐसे अस्पताल ले जाने का फैसला शामिल है जहां उनके निजी डॉक्टर उनकी जांच कर सकें। इमरान पिछले करीब 3 साल से गिरफ्तार किया गया था, उनकी पार्टी लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रही है। फिलहाल जो हालात है ये हफ्ता शहबाज शरीफ और मुरीब की रातों की नींद उड़ाने वाला हो सकता है। पीटीआई के समर्थक इस्लामाबाद पहुंच पाए तो भी और ना पहुंच पाए तो भी, क्योंकि जब जब जुल्म हुए हैं लोगों की बगावत ने सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाई ही हैं। आज तक ब्यूरो।
5: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: एसआईआर के तहत फॉर्म 6 में बदलाव पर फंसा चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट की 2-2 हमने चेंज नहीं की को मंजूरी नहीं दी, ईसी और केंद्र को थमाया नोटिस, ज्ञानेश के तुरंत निलंबन से इनकार। फॉर्म 6 को राहुल गांधी ने बताया बीजेपी सीईसी की सांठगांठ का नतीजा, कहा अपनाया गया गैरकानूनी तरीका, आग बबूला बीजेपी का पलटवार, संसद से ईसी ऑफिस तक विपक्ष का मार्च। चुनाव से पहले राज्यसभा सीट से जाती समीकरण साधने में जुटी बीजेपी, लिस्ट में 3 ओबीसी, 2 एससी, 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय का नाम, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, बीएल वर्मा आउट। मायावती ने फिर भतीजे पर दिखाई दया, कहा सियासत से ससुर के संन्यास के बाद सुधर गए आकाश, वापस किया राष्ट्रीय संयोजक का पद। और बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जम्मू कश्मीर से वापस भेजे गए 150 लोग, बागडोगरा से बीएसएफ इन्हें भेजेगी सीमा पार, 7 अक्टूबर को एक और कार्रवाई की तैयारी। बीजेपी ने यूपी में 8 सीटों के लिए उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी ने उम्मीदवार चुनने में जातिगत समीकरण का खासा ख्याल रखा है, साथ ही 27 के चुनाव ध्यान में रखते हुए 2 महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया गया है। सभी प्रत्याशी यूपी से ही आते हैं।
1: यूपी में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों की जिस लिस्ट का इंतजार था वो खत्म हुआ। बीजेपी ने आज अपने सभी 8 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया। खास बात ये रही कि इस बार सभी 8 उम्मीदवार नए हैं, मतलब किसी भी पुराने चेहरे को रिपीट नहीं किया गया। नए उम्मीदवारों में 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय चेहरा है। इनमें 3 ओबीसी उम्मीदवार हैं, 2 एससी उम्मीदवार हैं। ओबीसी में लोधी, पाल, कुर्मी समुदाय के उम्मीदवार हैं। महिला प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया है, 2 महिलाओं को टिकट मिला है।
2: ये सिर्फ मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है, पूरे महिलाओं को, पूरी नारी शक्ति को एक जिम्मेदारी मिली है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना इस बात को सिद्ध करता है कि हमारी पार्टी, हमारे आदरणीय नेतागण, हमारे आदरणीय मोदी जी जो कहते हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात, महिला नेतृत्व की बात, आज उन्होंने इस लिस्ट में 2 महिलाओं के नाम से सिद्ध किया है कि महिलाएं देश की प्रगति में, राष्ट्र को आगे ले जाने में कितनी अहम भूमिका है।
3: मुझ जैसे एक सामान्य पृष्ठभूमि के कार्यकर्ता को जो अविचल 36 साल से अधिक समय से पार्टी का आहार निष्काम कर रहा था, उसको आज मौका दिया है और प्रदेश में संदेश देने का काम किया है कि कोई भी कार्यकर्ता अगर निष्ठापूर्वक लगे रहेगा तो पार्टी के नेतृत्व का ध्यान उस पर अवश्य है और ये आज मुझे उम्मीदवार बनाने से पार्टी में संदेश जाएगा।
1: मतलब बीजेपी ने अपना संदेश स्पष्ट कर दिया है, एक तो जातिगत समीकरण को साधा गया है, दूसरा महिलाओं को मौका मिला है, तीसरा सवर्ण मतदाताओं के लिए भी मैसेज है। 27 में यूपी में चुनाव है और राज्यसभा टिकट बांटने में इसका खासा ख्याल रखा गया है, तभी तो सभी 8 उम्मीदवार यूपी के हैं। इसके अलावा पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल बीएल वर्मा और हरदीप सिंह पुरी का टिकट काट दिया गया है। बता दें कि यूपी में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, इनमें 10 सीटों पर 16 अक्टूबर को चुनाव होना है, 6 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी की राजनीति में अगली खबर है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर। अब कांग्रेस की ओर से नई डिमांड कर दी गई है। कांग्रेस कह रही है कि यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस कम से कम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के लिए 50 सीट भी ज्यादा है।
1: यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर गदर मची है। कहा जा रहा था कि कांग्रेस 150 सीटें चाहती है, लेकिन कांग्रेस अब इससे आगे की बात कर रही है।
4: इसने किया 150 का, मैंने तो 200 की बात की थी। मैं शुरू से कह रहा हूँ बराबर का सम्मान और बराबर की इज्जत, बराबर का हिस्सा।
1: लेकिन राजेंद्र पाल गौतम को समाजवादी पार्टी के नेता 2 टूक जवाब देते हैं।
5: मैं ये कहता हूँ उनको 50 सीट देना भी बहुत बड़ी बात होगी, उनको देखना चाहिए। 2 तुम्हारे विधायक हैं, पिछली बार तुमने लड़के देख लिए, क्या इससे तुम्हें सबक नहीं मिलता है?
1: अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि जीत ही सीट का आधार है।
6: जीत ही आधार है, जीत ही सीट का आधार है।
1: और जीत बोले तो आखिरी चुनाव यानी 2024 लोकसभा में मेरी जीत, और वो जीत कुछ ऐसी थी कि 80 में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती और 6 कांग्रेस को मिली थी। इसे विधानसभा के अनुपात में बांटा जाए तो 37 लोकसभा के हिसाब से अखिलेश के हिस्से 347 सीटें बनती हैं और कांग्रेस के हिस्से 56। लेकिन कांग्रेस की हसरतें 56 से 200 तक पहुंच चुकी हैं और हौसला बढ़ता ही जा रहा है। अब कांग्रेस ने उन्हीं इमरान मसूद को कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, जो लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं और 403 सीटों पर लड़ने की चेतावनी देते रहते हैं। पॉलिटिकल मैसेजिंग के तौर पर कांग्रेस ने अपने पत्ते सामने रख दिए हैं। अब बारी समाजवादी पार्टी की ओर से फैसला लेने की है और वो कांग्रेस की सीटों वाली शर्तों के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन करना चाहती है या बीजेपी को हराने के मिशन के साथ। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: यूपी में 2027 की सियासी जंग से पहले दलित वोट बैंक पर भी सियासत तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही का नाम संत रविदास नगर भदोही करने का ऐलान कर दिया है। तो योगी सरकार के इस फैसले के पीछे क्या है सम्मान, कल्याण और विकास का सियासी फॉर्मूला, आइए दिखाते हैं आपको।
7: यूपी के चुनावी मौसम में दलित वोटों के लिए हर दल के तरकश में अलग अलग तीर हैं और इसी में से एक तीर बीजेपी ने अब यूपी में आजमाया है, जो दलित सियासत में प्रतीकों के तौर पर इस्तेमाल होते आ रहे हैं। सीएम योगी ने ऐसा ही एक ऐलान यूपी में किया, जहां भदोही का नाम संत रविदास के नाम पर किया गया है।
8: कालीन उद्योग के लिए जाना जाने वाला भदोही जनपद आने वाले समय में मध्यकालीन संत जिन्होंने अपनी साधना के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम किया था, ऐसे सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर भदोही जाना जाएगा।
7: भदोही नहीं, नामकरण की बात हो तो कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बहाल किया गया है। वहीं अनुपूरक बजट में डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए 407 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत अंबेडकर, संत रविदास, संत कबीर, ज्योतिबा फुले और महर्षि वाल्मीकि के प्रतिमाओं के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा पर काम होगा। बीजेपी कहती है कि अखिलेश यादव की सरकार ने दलित विरोधी सोच के कारण जिन महापुरुषों के नाम पर रखे गए जिलों, संस्थानों के नाम बदल डाले थे, उनका पुनर्नामकरण करके बीजेपी सम्मान दे रही है।
9: पूर्व में भी भदोही का नाम संत रविदास नगर था, किंतु अखिलेश यादव की दलित विरोधी सोच के नाते से उन्होंने संत रविदास नगर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों के नाम बदले थे, आज उसको सही किया गया है।
10: समाजवादी पार्टी समाज में न किसी वर्ग को अपनी जागीर न वोट बैंक समझती है, वो सभी वर्गों को अपना साथी, सहयोगी और समाजवादी पार्टी के परिवार का हिस्सा समझती है।
7: मतलब ये कि दलितों को रिझाने के लिए दाव चलाए जाने लगे हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: आखिर यूपी में अब्दुल कौन है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अब्दुल अब किसी की दरी नहीं उठाएगा, यानी अब्दुल के वोट का अब कोई भी पार्टी राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। समस्या यह है कि ओवैसी के इन सवालों से समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा नाराज हो रही है।
11: अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, सज्जन दरी नहीं बिछाएगा, शौकत दरी नहीं बिछाएगा।
12: आप नाम मत लीजिए अब्दुल, अब्दुल क्या होता है, आप किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं अब्दुल कह करके।
13: क्यों मौलाना साहब, क्यों लग रहा है आपको इतना बुरा अब्दुल का नाम पर, गाली है अब्दुल।
7: चुनाव से पहले अब्दुल पर घमासान, किसकी तरफ है यूपी का मुसलमान, अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, इस बार किस तरफ जाएगा। यूपी में मुस्लिम वोटों पर हंगामा मचा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ओवैसी के बीच घमासान मचा है कि कौन लेकर जाएगा मुस्लिम वोट, यूपी का मुसलमान किसकी तरफ जाएगा।
14: ओवैसी बोलता है कि एम जिंदा कौम है, दरी नहीं बिछाएंगे बाबा और भैया, अब तुमको दरी बिछाना पड़ेगा हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर उत्तर प्रदेश
7: अपनी रैलियों में ओवैसी अक्सर कहते हैं कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा और इसी अब्दुल पर हंगामा छिड़ गया है। मुस्लिम पॉलिटिक्स में अब्दुल शब्द मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है,
15: खुद ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता इस शब्द यानी अब्दुल का इस्तेमाल करते हैं। अब्दुल का राजनीतिक मतलब निकाला जाता है उस मुसलमान से जिसे राजनीतिक पार्टियां अपना वोट बैंक समझती हैं। इसीलिए ओवैसी कहते हैं कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, यानी अब्दुल अब उन पार्टियों के लिए वोट बैंक नहीं बनेगा जिनके वोटों पर जीत कर ये पार्टियां उन्हें भूल जाती हैं।
11: अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, सज्जन दरी नहीं बिछाएगा, शौकत दरी नहीं बिछाएगा, अब सज्जन टेबल लगाएगा, कुर्सी पर बैठ कर कहेगा बोल इंसाफ करता है या नहीं करता है। इस मिजाज को आपको पैदा करना है। नौजवानों, आने वाला मुस्तकबिल आपका है, आने वाला मुस्तकबिल आपका है। बुजुर्गों, आपने बरसों इन जालिमों का साथ दिया, इन्होंने झूठ बोलकर आपके ख्वाबों को मिसमार कर दिया, चिकना चूर कर दिया। एक बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप अपना वोट देकर यहां से मजलिस के विधायक को कामयाब करिए।
15: ऐसा नहीं है कि ओवैसी ने मुसलमानों के लिए अब्दुल शब्द पहली बार कहा हो, वो पहले भी कहते रहे हैं।
12: अब्दुल क्या होता है?
15: लेकिन इस बार विवाद हुआ है रामपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी से पूछे गए सवाल पर। असल में रामपुर में मोहिबुल्ला नदवी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसी में एक पत्रकार ने उनसे अब्दुल के नाम पर ये सवाल पूछ लिया तो नदवी बुरी तरह से भड़क गए।
12: मुसलमान इस देश के सबसे मोहतर शहरी
16: है, और हर पार्टी जो है 27 के चुनाव में अब्दुल को याद करती, इस वक्त अब्दुल का
12: क्या मतलब? आप नाम मत लीजिए, अब्दुल अब्दुल क्या होता है? आप किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं अब्दुल कहकर के?
16: नहीं, हर पार्टी नहीं,
12: आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। अब्दुल मीन्स क्या होता है?
16: हर पार्टी
12: किसे कहते हैं अब्दुल का? नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा आपकी बात को। अब्दुल अब्दुल लगाया क्या होता है? अब्दुल
16: बताइए,
12: मुसलमान इस देश के सबसे मोहतर शहरी है, जिन्होंने देश की कुर्बानी हजारों साल सैकड़ों साल से देश में कुर्बानियां दी है। कांग्रेस पार्टी के आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी में देख लीजिए, सब लोग हैं। आप अब्दुल अब्दुल कहकर के आप खड़ाने की कोशिश करते हैं।
15: रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद को लग रहा है कि ऐसे अब्दुल का नाम लेकर मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्हें आपत्ति है कि मुसलमानों को अब्दुल कहा जा रहा है। ये करीब 5 साल पहले का रामपुर का ही बयान है, और जो ये अब्दुल कह रहे हैं ये कभी आजम खान के करीबी हुआ करते थे, और उन्हीं की सभा में इन्होंने ये अब्दुल वाला बयान दिया था। इनका नाम है फसाहत अली शानू, अब ये बीजेपी में है, और अब्दुल के नाम पर जब मौजूदा रामपुर के सांसद को आपत्ति हुई तो इन्होंने उन्हें बताया कि अब्दुल कौन है।
13: क्यों मौलाना साहब, क्यों लग रहा है आपको इतना बुरा? अब्दुल के नाम पर गाली है? अब्दुल आपकी घर की दीवारों की रंग पॉलिश करता है, वो है अब्दुल। आपकी मोटरों के पंचर जोड़ता है, वो है अब्दुल। जिसके नाम के आपकी आपने और आपकी पार्टी ने रोटियां सेकी है, वो है अब्दुल। देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई उसके वोटों से, वो है अब्दुल। जमाने से आज भी थाने में पिटता आ रहा है, वो है अब्दुल। आपने तो इमामत की कीमत कबूल ली, आप तो मस्जिद में नमाज पढ़ाते पढ़ाते सांसद बन गए। अब्दुल के वोटों से बने आप सांसद, अब्दुल के नाम पे भड़कते हैं आप, अब्दुल के नाम पे गुस्सा आता है आपको। आपकी पार्टी ने राज्यसभा में किसको भेजा है? नथवानी को भेजा है, और जो राज्यसभा में नथवानी को भेजा है वो भी अब्दुल की वजह से भेजा है। अब्दुल ने आपकी पार्टी की यह हैसियत बनाई कि आपकी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी।
15: यूपी के मुसलमानों के मन में यह भी सवाल है, जिसका जिक्र फसाहत अली शानू भी कर रहे हैं, कि जब राज्यसभा देने की बारी आई तो समाजवादी पार्टी ने धनराज परिमल नाथवानी को राज्यसभा भेजा, ना कि किसी मुसलमान नेता को। यहीं से यह नैरेटिव बनता है कि अब्दुल इन पार्टियों के लिए कब तक दरी बिछाएगा।
14: पूछेंगे समाजवादी थी तो क्या था? समाजवादी थी तो वाई था, वाई का फायदा था। अब बाबा बन गए तो टी का फायदा है, टी का फायदा है। ना वो एम बोलते ना ये एम बोलते, कोई एम नहीं बोलता। ओवैसी बोलता है कि एम जिंदा कौम है, नहीं बिछाएंगे बाबा और भैया, अब तुमको दरी बिछाना पड़ेगा हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला।
15: कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: सीसी के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सीसी ज्ञानेश कुमार के तुरंत निलंबन करने की मांग से इनकार कर दिया। साथ ही साथ चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर बवाल और विरोध प्रदर्शन अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब 6 अक्टूबर को ज्ञानेश के खिलाफ उतरेगा इंडिया। चुनाव आयोग तक विपक्षी पार्टियों के सांसदों का मान। इंडिया गठबंधन ने बनाई ज्ञानेश को घेरने की रणनीति। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया का अक्टूबर संग्राम। वोट चोरी की लड़ाई ज्ञानेश कुमार पर चढ़ाई।
1: फॉर एन अग्रेसिव नेशनल वाइड कैंपेन अगेंस्ट वोट चोरी, वोट बचाओ देश बचाओ।
0: वोटर चोरी SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन का पूरा प्लान आपको बताएं। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू हुआ संग्राम लगातार जारी है। 2 अक्टूबर को मुंबई में CJP ने विरोध प्रदर्शन किया।
2: मेरा रंग दे बसंती चोला ज्ञान उठा ले छो, मेरा रंग दे बसंती चोला।
0: दिल्ली में आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टियों और उसकी छात्र विंग ISA SFI ने 2 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को भी इंडिया गेट से जंतर मंतर तक सिटीजंस मार्च निकाला। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भड़के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी जान लगा दी। तो 4 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक साथ BJP और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई में गर्जना मोर्चा निकाला।
3: हिटलर सर, हिटलर कोणालाही घाबरत नव्हता, पण हिटलर वरती अशी वेळ आली की त्याला स्वतः स्वतःवरती गोळी झाडून आत्महत्या करावी लागली। पण हिटलर गेला आणि हिटलर गेल्यानंतर त्याला एक न्यूरेमबर्ग ट्रायल म्हणून तो एक शब्द आहे। जे अधिकारी त्या हिटलरच्या पापामध्ये सहभागी होते त्यांना शोधून शोधून काढलं, त्यांच्यावरती खटले भरले गेले, काही जणांना फासावर लटकवलं, काही जणांना तुरुंगात चढून टाकलं। तोच क्षण आपल्या देशात उद्या आल्याशिवाय राहणार नाही, एवढं भाजप आणि या सगळ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवावं।
4: त्याला एक तर SIR हा रद्द झाला पाहिजे कोणत्याही परिस्थितीत, आणि दुसरं म्हणजे या देशातलं वोटिंग मशीन बंद होऊन बॅलेट पेपरवरती याच्यापुढे मतदान झालं पाहिजे। या दोन गोष्टी झाल्या तर दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल। उद्या कोणाची सत्ता येऊ देत काही फरक पडत नाही।
0: और आज यानी 5 अक्टूबर को भी कांग्रेस की छात्र विंग ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जंतर मंतर से कुछ ही दूरी पर रायसीना रोड पर कांग्रेस की छात्र विंग के कार्यकर्ता और नेता लाशें बनकर सड़क पर लेट जाते हैं। और अब इनका संदेश क्या है वो आपको इस पोस्टर से साफ साफ समझ में आ जाएगा। जो प्रदर्शनकारी अर्थी बनकर लेता है उस पर रखे पोस्टर में लिखा है, जिंदा है हम फिर भी वोटर लिस्ट में मुड़े क्यों।
5: ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन ने SIR में मुझे मृत घोषित कर दिया है और हमारी लड़ाई यही है कि जो लाखों लोगों का वोट इस SIR में लाखों लोगों को मृत घोषित किया गया है उनके न्याय की लड़ाई है। क्योंकि लोग फोन चला रहे, लोग घूम रहे, लोग खाना खा रहे, लोग पानी पी रहे हैं, परंतु उनको मृत घोषित कर दिया गया है। सोचिए मैं भी बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ और मेरा नाम भी SIR से कट गया है, सच्चाई है।
0: जिंदा लाश बनने तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही NSUI के कार्यकर्ता और नेता जंतर मंतर की तरफ बढ़ते हैं रास्ते में दिल्ली पुलिस और सेंट्रल फोर्सेज से सीधा सामना हो जाता है। ये देखिए कैसे CISF और दिल्ली पुलिस की महिला ब्रिगेड प्रदर्शनकारियों को उठा उठा कर बस में भर रही है। ये भी देखिए कैसे एक प्रदर्शनकारी को 2 CISF और 1 दिल्ली पुलिस का जवान उठा कर ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की छात्र विंग के प्रदर्शनकारियों को बस में भर कर हिरासत में ले लिया।
6: पहन लो। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान पर विवाद छिड़ चुका है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है। बीजेपी और आरएसएस सनातन धर्म को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है।
7: एक बार फिर से हिंदुत्व पर सियासत सुलग रही है, एक बार फिर हिंदुत्व पर राजनीति तेज हो रही है और ये हो रहा है कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व वाले इस बयान में।
8: इस देश में जिस प्रकार सनातन धर्म को हिंदू हिंदू करते रहे, ये आरएसएस विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुत्व और सावरकर जी ने उसको हिंदुत्व नाम दे दिया, उसकी वजह से पूरे देश में हिंदू मुसलमानों के अंदर, हिंदू और सिखों के बीच में, हिंदू ईसाइयों के बीच में आपने खाई पैदा कर दी।
7: दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार मध्य प्रदेश से हुआ। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय पर निशाना साधा।
9: इस तरह से अनर्गल बयानबाजी करना बिना तथ्यों के, यह आपत्तिजनक भी है और खेदपूर्ण भी है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह के इस तरह के तथ्यहीन बयान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो किन तथ्यों के आधार पर इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो राम को बदनाम कर रहे हैं।
7: उधर महाराष्ट्र में भी दिग्विजय सिंह के बयान की गूंज सुनाई दी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भड़क उठे।
10: आरएसएस हो, ये सारी जो संगठनाएं हैं, ये महाराष्ट्र, ये देश में, देश को, जो हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, उसको और ताकतवर बनाने के लिए, हिंदुओं को संगठित रखने के लिए दिन रात काम करते हैं। वो सभी की सभी चीजें हिंदुओं के बारे में बोलना और वहां कभी भी इस्लाम और कुरान पे बोलने की हिम्मत, ये कांग्रेस वाले कभी करते नहीं है। इसलिए तो हम लोग कांग्रेस को मुस्लिम लीग के बी लीग बी टीम बुलाते हैं ना।
7: अब चारों ओर से दिग्विजय पर पलटवार हो रहे हैं और हिंदुत्व पर अब सियासत तेज हो रही है। आज तक दिन
6: आज तक ये खबर का असर हुआ है। पिछले शुक्रवार को हमने बिहार के जर्जर स्कूलों से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाई थी। उसके बाद बिहार सरकार की नींद खुली है, छात्रों को स्कूल से शिफ्ट कर दिया गया है और मरम्मत का काम शुरू हो गया है।
11: अब ये हिस्सा देखिए स्कूल का, ये आप देख के समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या है। यहाँ खड़ा होना भी कितना, आप कह सकते हैं ये

0: आक्रोशित होने वाली बात ये तो थी ही कि कैसे एक स्कूल की इमारत बेंच के भरोसे खड़ी है। उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात बिहार के शिक्षा विभाग की अनदेखी थी, जो बार बार स्कूल प्रिंसिपल की गुहार लगाने के बावजूद सोता रहा। इसकी वजह से सालों से जान जोखिम में डालकर सैकड़ों बच्चे इस खतरनाक स्कूल में पढ़ने को मजबूर थे। जब कुछ नहीं हुआ तो आज तक ने इस स्कूल को लेकर बिहार सरकार को खबरदार किया। आखिरकार बिहार सरकार हरकत में आई। सालों से सोया बिहार का शिक्षा विभाग भी एकाएक जागा और कीरतपुर प्राथमिक विद्यालय को गोसवा मध्य विद्यालय में शिफ्ट कर दिया। आज तक पर यह खबर दिखाए जाने के बाद ही बिहार के शिक्षा विभाग ने स्कूल शिफ्ट करने का आदेश जारी कर दिया। ये देखिए, शुक्रवार को ये आदेश जारी हुआ और रविवार को बच्चे दूसरे स्कूल में जाने लगे।
1: ये धर धर के गिर रहा है, बहुत डर है।
2: हाँ, तो कभी किसी को बच्चे को चोट भी लगा था, इससे गिरा था इसके पहले?
1: गिरता था लेकिन सर बचा लिया।
2: हाँ, जब बरसात होता था तो
1: पानी टपकता था।
2: तो मन में डर भी लगा रहता था।
1: हाँ।
2: अब जा रही हो दूसरे स्कूल तो वहाँ ठीक है ना सब?
1: हाँ।
0: 2 अक्टूबर को आज तक संवाददाता रोहित सिंह दरभंगा के इस स्कूल में गए थे। उन्होंने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे बच्चों की जान जोखिम में डालकर स्कूल चल रहा है। आज तक पर ये रिपोर्ट चलने के बाद अगले ही दिन बिहार के शिक्षा विभाग ने अपने अफसरों को स्कूल के निरीक्षण के लिए दौड़ाया और मौत के साए में पढ़ते बच्चों को राहत मिल गई।
3: इसी खबर को जब आज तक ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया तो बिहार सरकार ने इसको संज्ञान में लिया और आदेश निकाला गया कि जिला प्रशासन को आदेश दिया गया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। इस जर्जर भवन पर पठन पाठन का काम जो है वो नहीं हो और आनन फानन में एक आदेश प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा स्कूल के प्रिंसिपल को भेजा गया, जिसमें यह बताया गया कि स्कूल में पठन पाठन का काम अब अगले दिनों से जब भी स्कूल खुलेगा तो नहीं होगा। इन बच्चों को टीचर यहां से लेके जो है वो गोसवा मध्य विद्यालय लेके जाएंगे, जहां स्कूल को शिफ्ट किया गया है। क्योंकि बच्चे को अभी ये पूरी जानकारी नहीं हो पाई है और जो यहाँ प्रिंसिपल है वो भी हम लोग के साथ है, टीचर लोग भी, अब ये लोग प्रस्थान कर रहे हैं। हम खुद प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे, वो अपने कार्यालय में कुछ कागजी खाना पूर्ति करके निकल रहे हैं और वो दूसरे स्कूल की तरफ जाएंगे। सर ये बताइए कि क्या कहेंगे, खबर आज तक ने दिखाई तो क्या हुआ और आप अभी क्या आदेश आया आप लोग को?
4: मुझे आदेश आया है कि विभागीय पत्र के अनुसार मेरा विद्यालय दूसरे जगह शिफ्ट किया गया, मध्य विद्यालय गोसवा में जी।
2: फिर
4: हम लोग तो सभी बच्चे और शिक्षक वहाँ पहुँच जाएंगे जी, जा रहे हैं अभी तुरंत लेकर के।
2: तो क्या यहाँ वाकई क्या स्थिति का खतरा था?
4: हाँ, यहाँ तो खतरा था।
0: आज तक के खबरदार करने के बाद स्कूल की मरम्मत के लिए बजरी भी स्कूल पहुँच चुकी है। बच्चे पासी के दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब बच्चे सुरक्षित होकर पढ़ेंगे। रोहित सिंह के साथ प्रहलाद कुमार, दरभंगा आज तक।
5: पाकिस्तान में इमरान खान की सेहत और रिहाई को लेकर की जा रही मांगों को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। उनकी पार्टी पीटीआई अब निर्णायक लड़ाई लड़ने के मूड में आ चुकी है। खैबर के अलग अलग इलाकों से हजारों लोगों को जुटाया जा रहा है और इस्लामाबाद कूच करने की अपील की जा रही है।
6: सड़कों पर इकट्ठा हजारों की भीड़, ढोल नगाड़ों पर नाचते लोग, हाथों में पार्टी के झंडे और जगह जगह लगी इमरान खान की तस्वीरें। दरअसल इमरान खान की पार्टी का ये लॉन्ग मार्च सितंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होना था। इस बीच सरकार के साथ बातचीत का दौर शुरू हुआ और कुछ दिनों के लिए मार्च को टाल दिया गया, लेकिन सरकार के साथ बात अब नाकाम हो गई है और पीटीआई ने ये मार्च शुरू कर दिया है। रविवार को खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की ओर शुरू हुए इस मार्च में रास्ते में पड़ने वाले हर इलाके से लोग जुड़ते जा रहे हैं।
7: जब हमारा वजीर आला जो ही लाया अमल तय करेगा उसके अमल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब वो या इस्लामाबाद की तरफ हो जाएंगे, इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे।
6: पार्टी की प्रमुख

0: मांगों में जेल में बंद इमरान खान से तत्काल मुलाकात और उन्हें ऐसे अस्पताल ले जाने का फैसला शामिल है जहां उनके निजी डॉक्टर उनकी जांच कर सकें। इमरान पिछले करीब 3 साल से रावलपिंडी की हाई सिक्योरिटी अदियाला जेल में बंद हैं। उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उनकी पार्टी लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रही है। फिलहाल जो हालात हैं, ये हफ्ता शहबाज शरीफ और मुरीद की रातों की नींद उड़ाने वाला हो सकता है। पीटीआई के समर्थक इस्लामाबाद पहुंच पाए तो भी और ना पहुंच पाए तो भी, क्योंकि जब जब जुल्म हुए हैं, लोगों की बगावत ने सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाई ही हैं। आज तक ब्यूरो।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: एसआईआर के तहत फॉर्म 6 में बदलाव पर फंसा चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, हमने चेंज नहीं की को मंजूरी नहीं दी, ईसी और केंद्र को थमाया नोटिस, ज्ञानेश के तुरंत निलंबन से इनकार। फॉर्म 6 को राहुल गांधी ने बताया बीजेपी सीईसी की सांठगांठ का नतीजा, कहा अपनाया गया गैरकानूनी तरीका, आग बबूला बीजेपी का पलटवार, संसद से ईसी ऑफिस तक विपक्ष का मार्च। चुनाव से पहले राज्यसभा सीट से जातीय समीकरण साधने में जुटी बीजेपी, लिस्ट में 3 ओबीसी, 2 एससी, 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय का नाम, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, बीएल वर्मा आउट। मायावती ने फिर भतीजे पर दिखाई दया, कहा सियासत से ससुर के संन्यास के बाद सुधर गए आकाश, वापस किया राष्ट्रीय संयोजक का पद। और बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जम्मू कश्मीर से वापस भेजे गए 150 लोग, बागडोगरा से बीएसएफ इन्हें भेजेगी सीमा पार, 7 अक्टूबर को एक और कार्रवाई की तैयारी। बीजेपी ने यूपी में 8 सीटों के लिए उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी ने उम्मीदवार चुनने में जातिगत समीकरण का खासा ख्याल रखा है, साथ ही 27 के चुनाव ध्यान में रखते हुए 2 महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया गया है। सभी प्रत्याशी यूपी से ही आते हैं।
1: यूपी में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों की जिस लिस्ट का इंतजार था वो खत्म हुआ। बीजेपी ने आज अपने सभी 8 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया। खास बात ये रही कि इस बार सभी 8 उम्मीदवार नए हैं, मतलब किसी भी पुराने चेहरे को रिपीट नहीं किया गया। नए उम्मीदवारों में 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय चेहरा है। इनमें 3 ओबीसी उम्मीदवार हैं, 2 एससी उम्मीदवार हैं। ओबीसी में लोधी, पाल, कुर्मी समुदाय के उम्मीदवार हैं। महिला प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया है, 2 महिलाओं को टिकट मिला है।
2: ये सिर्फ मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है, पूरे महिलाओं को, पूरी नारी शक्ति को एक जिम्मेदारी मिली है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना इस बात को सिद्ध करता है कि हमारी पार्टी, हमारे आदरणीय नेतागण, हमारे आदरणीय मोदी जी जो कहते हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात, महिला नेतृत्व की बात, आज उन्होंने इस लिस्ट में 2 महिलाओं के नाम से सिद्ध किया है कि महिलाएं देश की प्रगति में, राष्ट्र को आगे ले जाने में कितनी अहम भूमिका है।
3: मुझ जैसे एक सामान्य पृष्ठभूमि के कार्यकर्ता को जो अविचल 36 साल से अधिक समय से पार्टी का आहार निष्काम कर रहा था, उसको आज मौका दिया है और प्रदेश में संदेश देने का काम किया है कि कोई भी कार्यकर्ता अगर निष्ठापूर्वक लगे रहेगा तो पार्टी के नेतृत्व का ध्यान उस पर अवश्य है और ये आज मुझे उम्मीदवार बनाने से पार्टी में संदेश जाएगा।
1: मतलब बीजेपी ने अपना संदेश स्पष्ट कर दिया है। एक तो जातिगत समीकरण को साधा गया है, दूसरा महिलाओं को मौका मिला है, तीसरा सवर्ण मतदाताओं के लिए भी मैसेज है। 27 में यूपी में चुनाव है और राज्यसभा टिकट बांटने में इसका खासा ख्याल रखा गया है, तभी तो सभी 8 उम्मीदवार यूपी के हैं। इसके अलावा पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल बीएल वर्मा और हरदीप सिंह पुरी का टिकट काट दिया गया है। बता दें कि यूपी में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, इनमें 10 सीटों पर 16 अक्टूबर को चुनाव होना है, 6 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी की राजनीति में अगली खबर है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर। अब कांग्रेस की ओर से नई डिमांड कर दी गई है। कांग्रेस कह रही है कि यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस कम से कम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के लिए 50 सीट भी ज्यादा है।
1: यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर गदर मची है। कहा जा रहा था कि कांग्रेस 150 सीटें चाहती है, लेकिन कांग्रेस अब इससे आगे की बात कर रही है।
4: इसने किया 150 का, मैंने तो 200 की बात की थी। मैं शुरू से कह रहा हूँ बराबर का सम्मान और बराबर की इज्जत, बराबर का हिस्सा।
1: लेकिन राजेंद्र पाल गौतम को समाजवादी पार्टी के नेता 2 टूक जवाब देते हैं।
5: मैं ये कहता हूँ उनको 50 सीट देना भी बहुत बड़ी बात होगी, उनको देखना चाहिए। 2 तुम्हारे विधायक हैं, पिछली बार तुमने लड़के देख लिए, क्या इससे तुम्हें सबक नहीं मिलता है?
1: अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि जीत ही सीट का आधार है।
6: जीत ही आधार है, जीत ही सीट का आधार है।
1: और जीत बोले तो आखिरी चुनाव यानी 2024 लोकसभा में मेरी जीत, और वो जीत कुछ ऐसी थी कि 80 में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती और 6 कांग्रेस को मिली थी। इसे विधानसभा के अनुपात में बांटा जाए तो 37 लोकसभा के हिसाब से अखिलेश के हिस्से 347 सीटें बनती हैं और कांग्रेस के हिस्से 56। लेकिन कांग्रेस की हसरतें 56 से 200 तक पहुंच चुकी हैं और हौसला बढ़ता ही जा रहा है। अब कांग्रेस ने उन्हीं इमरान मसूद को कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, जो लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं और 403 सीटों पर लड़ने की चेतावनी देते रहते हैं। पॉलिटिकल मैसेजिंग के तौर पर कांग्रेस ने अपने पत्ते सामने रख दिए हैं। अब बारी समाजवादी पार्टी की ओर से फैसला लेने की है और वो कांग्रेस की सीटों वाली शर्तों के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन करना चाहती है या बीजेपी को हराने के मिशन के साथ। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: यूपी में 2027 की सियासी जंग से पहले दलित वोट बैंक पर भी सियासत तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही का नाम संत रविदास नगर भदोही करने का ऐलान कर दिया है। तो योगी सरकार के इस फैसले के पीछे क्या है सम्मान, कल्याण और विकास का सियासी फॉर्मूला, आइए दिखाते हैं आपको।
7: यूपी के चुनावी मौसम में दलित वोटों के लिए हर दल के तर्कश में अलग अलग तीर है और इसी में से एक तीर बीजेपी ने अब यूपी में आजमाया है, जो दलित सियासत में प्रतीकों के तौर पर इस्तेमाल होते आ रहे हैं। सीएम योगी ने ऐसा ही एक ऐलान यूपी में किया, जहां भदोही का नाम संत रविदास के नाम पर किया गया है।
8: कालीन उद्योग के लिए जाना जाने वाला भदोही जनपद आने वाले समय में मध्यकालीन सन जिन्होंने अपनी साधना के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम किया था, ऐसे सद्गुरु रविदास जी महाराज के नाम पर भदोही जाना जाएगा।
7: भदोही नहीं, नामकरण की बात हो तो कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बहाल किया गया है। वहीं अनुपूरक बजट में डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए 407 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत अंबेडकर, संत रविदास, संत कबीर, ज्योतिबा फुले और महर्षि वाल्मीकि के प्रतिमाओं के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा पर काम होगा। बीजेपी कहती है कि अखिलेश यादव की सरकार ने दलित विरोधी सोच के कारण जिन महापुरुषों के नाम पर रखे गए जिलों, संस्थानों के नाम बदल डाले थे, उनका पुनर्नामकरण करके बीजेपी सम्मान दे रही है।
9: पूर्व में भी भदोही का नाम संत रविदास नगर था, किंतु अखिलेश यादव की दलित विरोधी सोच के नाते से उन्होंने संत रविदास नगर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों के नाम बदले थे, आज उसको सही किया गया है।
10: समाजवादी पार्टी समाज में न किसी वर्ग को अपनी जागीर न वोट बैंक समझती है, वो सभी वर्गों को अपना साथी, सहयोगी और समाजवादी पार्टी के परिवार का हिस्सा समझती है।
7: मतलब ये कि दलितों को रिझाने के लिए दाव चलाए जाने लगे हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: आखिर यूपी में अब्दुल कौन है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अब्दुल अब किसी की दरी नहीं उठाएगा, यानी अब्दुल के वोट का अब कोई भी पार्टी राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। समस्या यह है कि ओवैसी के इन सवालों से समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा नाराज हो रही है।
11: अब्दुल दरी नहीं दिखाएगा, सज्जन दरी नहीं दिखाएगा, शौकत दरी नहीं दिखाएगा।
12: आप नाम मत लीजिए अब्दुल, अब्दुल क्या होता है, आप किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं अब्दुल कह करके।
13: क्यों मौलाना साहब, क्यों लग रहा है आपको इतना बुरा अब्दुल का नाम पर, गाली है अब्दुल।
7: चुनाव से पहले अब्दुल पर घमासान, किसकी तरफ है यूपी का मुसलमान? अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, इस बार किस तरफ जाएगा? यूपी में मुस्लिम वोटों पर हंगामा मचा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ओवैसी के बीच घमासान मचा है कि कौन लेकर जाएगा मुस्लिम वोट, यूपी का मुसलमान किसकी तरफ जाएगा।
14: ओवैसी बोलता है कि एम जिंदा कौम है, दरी नहीं बिछाएंगे बाबा और भैया, अब तुमको दरी बिछाना पड़ेगा हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर उत्तर प्रदेश
7: अपनी रैलियों में ओवैसी अक्सर कहते हैं कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा और इसी अब्दुल पर हंगामा छिड़ गया है। मुस्लिम पॉलिटिक्स में अब्दुल शब्द मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है,
15: खुद ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता इस शब्द यानी अब्दुल का इस्तेमाल करते हैं। अब्दुल का राजनीतिक मतलब निकाला जाता है उस मुसलमान से जिसे राजनीतिक पार्टियां अपना वोट बैंक समझती हैं। इसीलिए ओवैसी कहते हैं कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, यानी अब्दुल अब उन पार्टियों के लिए वोट बैंक नहीं बनेगा जिनके वोटों पर जीत कर ये पार्टियां उन्हें भूल जाती हैं।
11: अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, सज्जन दरी नहीं बिछाएगा, शौकत दरी नहीं बिछाएगा, अब सज्जन टेबल लगाएगा, कुर्सी पर बैठ कर कहेगा बोल इंसाफ करता है या नहीं करता है। इस मिजाज को आपको पैदा करना है नौजवानों, आने वाला मुस्तकबिल आपका है, आने वाला मुस्तकबिल आपका है। बुजुर्गों, आपने बरसों इन जालिमों का साथ दिया, इन्होंने झूठ बोलकर आपके ख्वाबों को मिसमार कर दिया, चिकना चूर कर दिया। एक बार मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को आप अपना वोट देकर यहां से मजलिस के विधायक को कामयाब करिए।
15: ऐसा नहीं है कि ओवैसी ने मुसलमानों के लिए अब्दुल शब्द पहली बार कहा हो, वो पहले भी कहते रहे हैं।
12: अब्दुल अब्दुल क्या होता है?
15: लेकिन इस बार विवाद हुआ है रामपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी से पूछे गए सवाल पर। असल में रामपुर में मोहिबुल्ला नदवी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसी में एक पत्रकार ने उनसे अब्दुल के नाम पर ये सवाल पूछ लिया तो नदवी पूरी तरह से भड़क गए।
12: मुसलमान इस देश के सबसे मोहतर शहरी है
16: जी, सत्ताईस के चुनाव की क्या तैयारी है? और हर पार्टी जो है 27 के चुनाव में अब्दुल को याद करती, इस वक्त अब्दुल कहाँ है?
12: क्या मतलब, आप नाम मत लीजिए, अब्दुल अब्दुल क्या होता है? आप किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं अब्दुल कहकर के?
16: नहीं, हर पार्टी नहीं,
12: आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। अब्दुल प्रिंस क्या होता है?
16: हर पार्टी
12: किसे कहते हैं? मैं नहीं समझ पा रहा आपकी बात को। अब्दुल अब्दुल लगाया क्या होता है? अब्दुल
16: बताइए,
12: मुसलमान इस देश के सबसे मोहतर शहरी है जिन्होंने देश की कुर्बानी हजारों साल सैकड़ों साल से देश में कुर्बानियां दी है। कांग्रेस पार्टी के आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी में देख लीजिए, सब लोग हैं। आप अब्दुल अब्दुल कहकर के आप घटाने की कोशिश करते हैं।
15: रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद को लग रहा है कि ऐसे अब्दुल का नाम लेकर मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्हें आपत्ति है कि मुसलमानों को अब्दुल कहा जा रहा है। ये करीब 5 साल पहले का रामपुर का ही बयान है और जो ये अब्दुल कह रहे हैं ये कभी आजम खान के करीबी हुआ करते थे और उन्हीं की सभा में इन्होंने ये अब्दुल वाला बयान दिया था। इनका नाम है फसाहत अली शानू, अब ये बीजेपी में है और अब्दुल के नाम पर जब मौजूदा रामपुर के सांसद को आपत्ति हुई तो इन्होंने उन्हें बताया कि अब्दुल कौन है।
13: क्यों मौलाना साहब, क्यों लग रहा है आपको इतना बुरा? अब्दुल के नाम पर गाली है? अब्दुल आपकी घर की दीवारों की रंग पॉलिश करता है वो है अब्दुल, आपकी मोटरों के पंचा जोड़ता है वो है अब्दुल, जिसके नाम के आपकी आपने और आपकी पार्टी ने रोटियां सेकी है वो है अब्दुल, देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई उसके वोटों से वो है अब्दुल, जमाने से आज भी थाने में पिटता आ रहा है वो है अब्दुल, आपने तो इमामत की कीमत कबूल ली, आप तो मस्जिद में नमाज पढ़ाते पढ़ाते सांसद बन गए, अब्दुल के वोटों से बने आप सांसद, अब्दुल के नाम पे भड़कते हैं आप, अब्दुल के नाम पे गुस्सा आता है आपको? आपकी पार्टी ने राज्यसभा में किसको भेजा है? नथवानी को भेजा है, और जो राज्यसभा में नथवानी को भेजा है वो भी अब्दुल की वजह से भेजा है। अब्दुल ने आपकी पार्टी की यह हैसियत बनाई कि आपकी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी।
15: यूपी के मुसलमानों के मन में यह भी सवाल है जिसका जिक्र फसाहत अली शानू भी कर रहे हैं कि जब राज्यसभा देने की बारी आई तो समाजवादी पार्टी ने धनराज परिमल नाथवानी को राज्यसभा भेजा, ना कि किसी मुसलमान नेता को। यहीं से यह नैरेटिव बनता है कि अब्दुल इन पार्टियों के लिए कब तक दरी बिछाएगा।
14: पूछेंगे समाजवादी थी तो क्या था? समाजवादी थी तो वाई था, वाई का फायदा था, अब बाबा बन गए तो टी का फायदा है, टी का फायदा है। ना वो एम बोलते ना ये एम बोलते, कोई एम नहीं बोलता। ओवैसी बोलता है कि एम जिंदा कौम है, दरी नहीं बिछाएंगे बाबा और भैया, अब तुमको दरी बिछाना पड़ेगा हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला।
15: कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: सीसी के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सीसी ज्ञानेश कुमार के तुरंत निलंबन करने की मांग से इनकार कर दिया। साथ ही साथ चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर बवाल और विरोध प्रदर्शन अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब 6 अक्टूबर को ज्ञानेश के खिलाफ उतरेगा इंडिया। चुनाव आयोग तक विपक्षी पार्टियों के सांसदों का मान। इंडिया गठबंधन ने बनाई ज्ञानेश को घेरने की रणनीति। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया का अक्टूबर संग्राम। वोट चोरी की लड़ाई ज्ञानेश कुमार पर चढ़ाई।
1: फॉर एन अग्रेसिव नेशनल वाइड कैंपेन अगेंस्ट वोट चोरी, वोट बचाओ देश बचाओ।
0: वोटर चोरी SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन का पूरा प्लान आपको बताएं। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू हुआ संग्राम लगातार जारी है। 2 अक्टूबर को मुंबई में CJP ने विरोध प्रदर्शन किया।
2: मेरा रंग दे बसंती चोला ज्ञान उठा ले छो, मेरा रंग दे बसंती चोला।
0: दिल्ली में आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टियों और उसकी छात्र विंग ISA SFI ने 2 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को भी इंडिया गेट से जंतर मंतर तक सिटीजंस मार्च निकाला। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भड़के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी जान लगा दी। तो 4 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक साथ BJP और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई में गर्जना मोर्चा निकाला।
3: हिटलर सर, हिटलर कोणालाही घाबरत नव्हता, पण हिटलर वरती अशी वेळ आली की त्याला स्वतः स्वतःवरती गोळी झाडून आत्महत्या करावी लागली। पण हिटलर गेला आणि हिटलर गेल्यानंतर त्याला एक न्यूरेमबर्ग ट्रायल म्हणून तो एक शब्द आहे। जे अधिकारी त्या हिटलरच्या पापामध्ये सहभागी होते त्यांना शोधून शोधून काढलं, त्यांच्यावरती खटले भरले गेले, काही जणांना फासावर लटकवलं, काही जणांना तुरुंगात चढून टाकलं। तोच क्षण आपल्या देशात उद्या आल्याशिवाय राहणार नाही एवढं भाजप आणि या सगळ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवावं।
4: त्याला एक तर SIR हा रद्द झाला पाहिजे कोणत्याही परिस्थितीत, आणि दुसरं म्हणजे या देशातलं वोटिंग मशीन बंद होऊन बॅलेट पेपरवरती याच्यापुढे मतदान झालं पाहिजे। या दोन गोष्टी झाल्या तर दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल। उद्या कोणाची सत्ता येऊ देत काही फरक पडत नाही।
0: और आज यानी 5 अक्टूबर को भी कांग्रेस की छात्र विंग ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जंतर मंतर से कुछ ही दूरी पर रायसीना रोड पर कांग्रेस की छात्र विंग के कार्यकर्ता और नेता लाशें बनकर सड़क पर लेट जाते हैं। और अब इनका संदेश क्या है वो आपको इस पोस्टर से साफ साफ समझ में आ जाएगा। जो प्रदर्शनकारी अर्थी बनकर लेता है उस पर रखे पोस्टर में लिखा है, चिंता है हम फिर भी वोटर लिस्ट में मुड़े क्यों।
5: ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन ने SIR में मुझे मृत घोषित कर दिया है और हमारी लड़ाई यही है कि जो लाखों लोगों का वोट इस SIR में लाखों लोगों को मृत घोषित किया गया है उनके न्याय की लड़ाई है। क्योंकि लोग फोन चला रहे, लोग घूम रहे, लोग खाना खा रहे, लोग पानी पी रहे हैं, परंतु उनको मृत घोषित कर दिया गया है। सोचिए मैं भी बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मेरा नाम भी SIR से कट गया है, सच्चाई है।
0: जिंदा लाश बनने तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही NSUI के कार्यकर्ता और नेता जंतर मंतर की तरफ बढ़ते हैं रास्ते में दिल्ली पुलिस और सेंट्रल फोर्सेज से सीधा सामना हो जाता है। ये देखिए कैसे CISF और दिल्ली पुलिस की महिला ब्रिगेड प्रदर्शनकारियों को उठा उठा कर बस में भर रही है। ये भी देखिए कैसे एक प्रदर्शनकारी को 2 CISF और 1 दिल्ली पुलिस का जवान उठा कर ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की छात्र विंग के प्रदर्शनकारियों को बस में भर कर हिरासत में ले लिया।
6: शर्म करो। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान पर विवाद छिड़ चुका है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है। बीजेपी और आरएसएस सनातन धर्म को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है।
7: एक बार फिर से हिंदुत्व पर सियासत सुलग रही है, एक बार फिर हिंदुत्व पर राजनीति तेज हो रही है और ये हो रहा है कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व वाले इस बयान में।
8: इस देश में जिस प्रकार सनातन धर्म को हिंदू हिंदू करते रहे, ये आरएसएस विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुत्व और सावरकर जी ने उसको हिंदुत्व नाम दे दिया, उसकी वजह से पूरे देश में हिंदू मुसलमानों के अंदर, हिंदू और सिखों के बीच में, हिंदू ईसाइयों के बीच में आपने खाई पैदा कर दी।
7: दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार मध्य प्रदेश से हुआ। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय पर निशाना साधा।
9: इस तरह से अनर्गल बयानबाजी करना बिना तथ्यों के, यह आपत्तिजनक भी है और खेदपूर्ण भी है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह के इस तरह के तथ्यहीन बयान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो किन तथ्यों के आधार पर इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो राम को बदनाम कर रहे हैं।
7: उधर महाराष्ट्र में भी दिग्विजय सिंह के बयान की गूंज सुनाई दी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भड़क उठे।
10: आरएसएस हो, ये सारी जो संगठनाएं हैं, ये महाराष्ट्र, ये देश में, देश को, जो हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, उसको और ताकतवर बनाने के लिए, हिंदुओं को संगठित रखने के लिए दिन रात काम करते हैं। वो सभी की सभी चीजें हिंदुओं के बारे में बोलना और वहां कभी भी इस्लाम और कुरान पे बोलने की हिम्मत ये कांग्रेस वाले कभी करते नहीं है। इसलिए तो हम लोग कांग्रेस को मुस्लिम लीग के बी लीग बी टीम बुलाते हैं ना।
7: अब चारों ओर से दिग्विजय पर पलटवार हो रहे हैं और हिंदुत्व पर अब सियासत तेज हो रही है। आज तक भी
6: आज तक ये खबर का असर हुआ है। पिछले शुक्रवार को हमने बिहार के जर्जर स्कूलों से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाई थी। उसके बाद बिहार सरकार की नींद खुली है, छात्रों को स्कूल से शिफ्ट कर दिया गया है और मरम्मत का काम शुरू हो गया है।
11: अब ये हिस्सा देखिए स्कूल का, ये आप देख के समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या है। यहाँ खड़ा होना भी कितना, आप कह सकते हैं ये यहाँ पर खतरनाक है, क्योंकि जिस जगह पर आप ये देख रहे होंगे, ये पूरा ये ढांचा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक टेम्पोररी व्यवस्था की गई है पिलर का रूप देने के लिए।
7: बिहार के दरभंगा के इस स्कूल की हालत जिसने भी देखी वो गुस्से से भर गया। आक्रोशित होने वाली बात ये तो थी ही कि कैसे एक स्कूल की इमारत बेंच के भरोसे खड़ी है। उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात बिहार के शिक्षा विभाग की अनदेखी थी, जो बार बार स्कूल प्रिंसिपल की गुहार लगाने के बावजूद सोता रहा। इसकी वजह से सालों से जान जोखिम में डालकर सैकड़ों बच्चे इस खतरनाक स्कूल में पढ़ने को मजबूर थे। जब कुछ नहीं हुआ तो आज तक ने इस स्कूल को लेकर बिहार सरकार को खबरदार किया। आखिरकार बिहार सरकार हरकत में आई। सालों से सोया बिहार का शिक्षा विभाग भी एकाएक जागा और कीरतपुर प्राथमिक विद्यालय को गोसवा मध्य विद्यालय में शिफ्ट कर दिया। आज तक पर यह खबर दिखाए जाने के बाद ही बिहार के शिक्षा विभाग ने स्कूल शिफ्ट करने का आदेश जारी कर दिया। ये देखिए, शुक्रवार को यह आदेश जारी हुआ और रविवार को बच्चे दूसरे स्कूल में जाने लगे।
12: कभी किसी को बच्चे को चोट ही लगा था, इससे गिरा था, इसके पहले
13: गिरता था लेकिन सर बचा ले।
12: हाँ, जब बरसात होता था तो
13: पानी टपकता था।
12: हाँ, तो मन में डर भी लगा रहता था।
13: हाँ,
12: अब जा रही हो दूसरे स्कूल तो वहाँ ठीक है ना सर?
13: हाँ।
7: 2 अक्टूबर को आज तक संवाददाता रोहित सिंह दरभंगा के इस स्कूल में गए थे। उन्होंने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे बच्चों की जान जोखिम में डालकर स्कूल चल रहा है। आज तक पर यह रिपोर्ट चलने के बाद अगले ही दिन बिहार के शिक्षा विभाग ने अपने अफसरों को स्कूल के निरीक्षण के लिए दौड़ाया और मौत के साए में पड़ते बच्चों को राहत मिल गई।
14: इसी खबर को जब आज तक ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया तो बिहार सरकार ने इसको संज्ञान में लिया और आदेश निकाला गया कि जिला प्रशासन को आदेश दिया गया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए, इस जर्जर भवन पर पठन पाठन का काम जो है वो नहीं हो। और आनंद फानंद में एक आदेश प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा स्कूल के प्रिंसिपल को भेजा गया, जिसमें यह बताया गया कि स्कूल में पठन पाठन का काम अब अगले दिनों से जब भी स्कूल खुलेगा तो नहीं होगा। इन बच्चों को टीचर यहां से लेके जो है वो गोसवा मध्य विद्यालय लेके जाएंगे, जहां स्कूल को शिफ्ट किया गया है, क्योंकि बच्चे को अभी ये पूरी जानकारी नहीं हो पाई है। और जो यहाँ प्रिंसिपल है वो भी हम लोग के साथ है, टीचर लोग भी, अब ये लोग प्रस्थान कर रहे हैं। हम खुद प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे, वो अपने कार्यालय में कुछ कागजी खाना पूर्ति करके निकल रहे हैं और वो दूसरे स्कूल की तरफ जाएंगे। सर ये बताइए कि क्या कहेंगे, खबर आज तक नहीं दिखाई तो क्या हुआ और आप अभी क्या आदेश आया आप लोग को?
15: मुझे आदेश आया है कि विभागीय पत्र के अनुसार मेरा विद्यालय दूसरे जगह शिफ्ट किया गया, मध्य विद्यालय गोसवा में जी।
14: फिर
15: हम लोग तो सभी बच्चे और शिक्षक वहाँ पहुँच जाएंगे जी, जा रहे हैं अभी तुरंत लेकर के।
14: तो क्या यहाँ वाकई क्या स्थिति का खतरा था?
15: हाँ यहाँ तो खतरा था।
7: आज तक के खबरदार करने के बाद स्कूल की मरम्मत के लिए बजरी भी स्कूल पहुँच चुकी है, बच्चे पासी के दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब बच्चे सुरक्षित होकर पढ़ेंगे। रोहित सिंह के साथ प्रहलाद कुमार, दरभंगा आज तक।
6: पाकिस्तान में इमरान खान की सेहत और रिहाई को लेकर की जा रही मांगों को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। उनकी पार्टी पीटीआई अब निर्णायक लड़ाई लड़ने के मूड में आ चुकी है। खैबर के अलग अलग इलाकों से हजारों लोगों को जुटाया जा रहा है और इस्लामाबाद कूच करने की अपील की जा रही है।
16: सड़कों पर इकट्ठा हजारों की भीड़, ढोल नगाड़ों पर नाचते लोग, हाथों में पार्टी के झंडे और जगह जगह लगी इमरान खान की तस्वीरें। दरअसल इमरान खान की पार्टी का ये लॉन्ग मार्च सितंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होना था। इस बीच सरकार के साथ बातचीत का दौर शुरू हुआ और कुछ दिनों के लिए मार्च को टाल दिया गया, लेकिन सरकार के साथ बात अब नाकाम हो गई है और पीटीआई ने ये मार्च शुरू कर दिया है। रविवार को खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की ओर शुरू हुए इस मार्च में रास्ते में पड़ने वाले हर इलाके से लोग जुड़ते जा रहे हैं।
17: जब हमारा वजीर आला जो ही लाया अमल तय करेगा उसके ये अमल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब वो या इस्लामाबाद की तरफ हो जाएंगे, इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे।
16: पार्टी की प्रमुख मांगों में जेल में बंद इमरान खान से तत्काल मुलाकात और उन्हें ऐसे अस्पताल ले जाने का फैसला शामिल है जहां उनके निजी डॉक्टर उनकी जांच कर सकें। इमरान पिछले करीब 3 साल से रावलपिंडी की हाई सिक्योरिटी अदियाला जेल में बंद हैं। उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उनकी पार्टी लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रही है। फिलहाल जो हालात हैं, ये हफ्ता शहबाज शरीफ और मुरीद की रातों की नींद उड़ाने वाला हो सकता है। पीटीआई के समर्थक इस्लामाबाद पहुंच पाए तो भी और ना पहुंच पाए तो भी, क्योंकि जब जब जुल्म हुए हैं लोगों की बगावत ने सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाई ही हैं। आज तक ब्यूरो।
6: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: एसआईआर के तहत फॉर्म 6 में बदलाव पर फंसा चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट की 2-2 हमने चेंज नहीं की को मंजूरी नहीं दी, ईसी और केंद्र को थमाया नोटिस, ज्ञानेश के तुरंत निलंबन से इनकार। फॉर्म 6 को राहुल गांधी ने बताया बीजेपी सीईसी की सांठगांठ का नतीजा, कहा अपनाया गया गैरकानूनी तरीका, आग बबूला बीजेपी का पलटवार, संसद से ईसी ऑफिस तक विपक्ष का मार्च। चुनाव से पहले राज्यसभा सीट से जातीय समीकरण साधने में जुटी बीजेपी, लिस्ट में 3 ओबीसी, 2 एससी, 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय का नाम, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, बीएल वर्मा आउट। मायावती ने फिर भतीजे पर दिखाई दया, कहा सियासत से ससुर के संन्यास के बाद सुधर गए आकाश, वापस किया राष्ट्रीय संयोजक का पद। और बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जम्मू कश्मीर से वापस भेजे गए 150 लोग, बागडोगरा से बीएसएफ इन्हें भेजेगी सीमा पार, 7 अक्टूबर को एक और कार्रवाई की तैयारी। बीजेपी ने यूपी में 8 सीटों के लिए उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी ने उम्मीदवार चुनने में जातिगत समीकरण का खासा ख्याल रखा है, साथ ही 27 के चुनाव ध्यान में रखते हुए 2 महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया गया है। सभी प्रत्याशी यूपी से ही आते हैं।
1: यूपी में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों की जिस लिस्ट का इंतजार था वो खत्म हुआ। बीजेपी ने आज अपने सभी 8 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया। खास बात ये रही कि इस बार सभी 8 उम्मीदवार नए हैं, मतलब किसी भी पुराने चेहरे को रिपीट नहीं किया गया। नए उम्मीदवारों में 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय चेहरा है। इनमें 3 ओबीसी उम्मीदवार हैं, 2 एससी उम्मीदवार हैं। ओबीसी में लोधी, पाल, कुर्मी समुदाय के उम्मीदवार हैं। महिला प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया है, 2 महिलाओं को टिकट मिला है।
2: ये सिर्फ मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है, पूरे महिलाओं को, पूरी नारी शक्ति को एक जिम्मेदारी मिली है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना इस बात को सिद्ध करता है कि हमारी पार्टी, हमारे आदरणीय नेतागण, हमारे आदरणीय मोदी जी जो कहते हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात, महिला नेतृत्व की बात, आज उन्होंने इस लिस्ट में 2 महिलाओं के नाम से सिद्ध किया है कि महिलाएं देश की प्रगति में, राष्ट्र को आगे ले जाने में कितनी अहम भूमिका है।
3: मुझ जैसे एक सामान्य पृष्ठभूमि के कार्यकर्ता को जो अविचल 36 साल से अधिक समय से पार्टी का आहार निष्काम कर रहा था, उसको आज मौका दिया है और प्रदेश में संदेश देने का काम किया है कि कोई भी कार्यकर्ता अगर निष्ठापूर्वक लगे रहेगा तो पार्टी के नेतृत्व का ध्यान उस पर अवश्य है और ये आज मुझे उम्मीदवार बनाने से पार्टी में संदेश जाएगा।
1: मतलब बीजेपी ने अपना संदेश स्पष्ट कर दिया है, एक तो जातिगत समीकरण को साधा गया है, दूसरा महिलाओं को मौका मिला है, तीसरा सवर्ण मतदाताओं के लिए भी मैसेज है। 27 में यूपी में चुनाव है और राज्यसभा टिकट बांटने में इसका खासा ख्याल रखा गया है, तभी तो सभी 8 उम्मीदवार यूपी के हैं। इसके अलावा पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल बीएल वर्मा और हरदीप सिंह पुरी का टिकट काट दिया गया है। बता दें कि यूपी में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, इनमें 10 सीटों पर 16 अक्टूबर को चुनाव होना है, 6 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी की राजनीति में अगली खबर है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर। अब कांग्रेस की ओर से नई डिमांड कर दी गई है। कांग्रेस कह रही है कि यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस कम से कम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के लिए 50 सीट भी ज्यादा है।
1: यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर गदर मची है। कहा जा रहा था कि कांग्रेस 150 सीटें चाहती है, लेकिन कांग्रेस अब इससे आगे की बात कर रही है।
4: इसने किया 150 का, मैंने तो 200 की बात की थी। मैं शुरू से कह रहा हूँ बराबर का सम्मान और बराबर की इज्जत, बराबर का हिस्सा।
1: लेकिन राजेंद्र पाल गौतम को समाजवादी पार्टी के नेता 2 टूक जवाब देते हैं।
5: मैं ये कहता हूँ उनको 50 सीट देना भी बहुत बड़ी बात होगी, उनको देखना चाहिए। 2 तुम्हारे विधायक हैं, पिछली बार तुमने लड़के देख लिए, क्या इससे तुम्हें सबक नहीं मिलता है?
1: अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि जीत ही सीट का आधार है।
6: जीत ही आधार है, जीत ही सीट का आधार है।
1: और जीत बोले तो आखिरी चुनाव यानी 2024 लोकसभा में मिली जीत, और वो जीत कुछ ऐसी थी कि 80 में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती और 6 कांग्रेस को मिली थी। इसे विधानसभा के अनुपात में बांटा जाए तो 37 लोकसभा के हिसाब से अखिलेश के हिस्से 347 सीटें बनती हैं और कांग्रेस के हिस्से 56। लेकिन कांग्रेस की हसरतें 56 से 200 तक पहुंच चुकी हैं और हौसला बढ़ता ही जा रहा है। अब कांग्रेस ने उन्हीं इमरान मसूद को कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, जो लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं और 403 सीटों पर लड़ने की चेतावनी देते रहते हैं। पॉलिटिकल मैसेजिंग के तौर पर कांग्रेस ने अपने पत्ते सामने रख दिए हैं। अब बारी समाजवादी पार्टी की ओर से फैसला लेने की है और वो कांग्रेस की सीटों वाली शर्तों के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन करना चाहती है या बीजेपी को हराने के मिशन के साथ। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: यूपी में 2027 की सियासी जंग से पहले दलित वोट बैंक पर भी सियासत तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही का नाम संत रविदास नगर भदोही करने का ऐलान कर दिया है। तो योगी सरकार के इस फैसले के पीछे क्या है सम्मान, कल्याण और विकास का सियासी फॉर्मूला, आइए दिखाते हैं आपको।
7: यूपी के चुनावी मौसम में दलित वोटों के लिए हर दल के तरकश में अलग लगती है और इसी में से एक तीर बीजेपी ने अब यूपी में आजमाया है, जो दलित सियासत में प्रतीकों के तौर पर इस्तेमाल होते आ रहे हैं। सीएम योगी ने ऐसा ही एक ऐलान यूपी में किया, जहां भदोही का नाम संत रविदास के नाम पर किया गया है।
8: कालीन उद्योग के लिए जाना जाने वाला भदोही जनपद आने वाले समय में मध्यकालीन संत जिन्होंने अपनी साधना के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम किया था, ऐसे सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर भदोही जाना जाएगा।
7: भदोही नहीं, नामकरण की बात हो तो कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बहाल किया गया है। वहीं अनुपूरक बजट में डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए 407 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत अंबेडकर, संत रविदास, संत कबीर, ज्योतिबा फुले और महर्षि वाल्मीकि के प्रतिमाओं के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा पर काम होगा। बीजेपी कहती है कि अखिलेश यादव की सरकार ने दलित विरोधी सोच के कारण जिन महापुरुषों के नाम पर रखे गए जिलों, संस्थानों के नाम बदल डाले थे, उनका पुनर्नामकरण करके बीजेपी सम्मान दे रही है।
9: पूर्व में भी भदोही का नाम संत रविदास नगर था, किंतु अखिलेश यादव की दलित विरोधी सोच के नाते से उन्होंने संत रविदास नगर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों के नाम बदले थे, आज उसको सही किया गया है।
10: समाजवादी पार्टी समाज में न किसी वर्ग को अपनी जागीर न वोट बैंक समझती है, वो सभी वर्गों को अपना साथी, सहयोगी और समाजवादी पार्टी के परिवार का हिस्सा समझती है।
7: मतलब ये कि दलितों को रिझाने के लिए दाव चलाए जाने लगे हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: आखिर यूपी में अब्दुल कौन है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अब्दुल अब किसी की दरी नहीं उठाएगा, यानी अब्दुल के वोट का अब कोई भी पार्टी राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। समस्या यह है कि ओवैसी के इन सवालों से समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा नाराज हो रही है।
11: अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, सज्जन दरी नहीं बिछाएगा, शौकत दरी नहीं बिछाएगा।
12: आप नाम मत लीजिए अब्दुल, अब्दुल क्या होता है, आप किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं अब्दुल कह करके।
13: क्यों मौलाना साहब, क्यों लग रहा है आपको इतना बुरा अब्दुल का नाम पर, गाली है अब्दुल।
7: चुनाव से पहले अब्दुल पर घमासान, किसकी तरफ है यूपी का मुसलमान, अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, इस बार किस तरफ जाएगा। यूपी में मुस्लिम वोटों पर हंगामा मचा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ओवैसी के बीच घमासान मचा है कि कौन लेकर जाएगा मुस्लिम वोट, यूपी का मुसलमान किसकी तरफ जाएगा।
14: ओवैसी बोलता है कि एम जिंदा कौम है, दरी नहीं बिछाएंगे बाबा और भैया, अब तुमको दरी बिछाना पड़ेगा हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला।
7: यहाँ पर अपनी रैलियों में ओवैसी अक्सर कहते हैं कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा और इसी अब्दुल पर हंगामा छिड़ गया है। मुस्लिम पॉलिटिक्स में अब्दुल शब्द मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है,
15: खुद ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता इस शब्द यानी अब्दुल का इस्तेमाल करते हैं। अब्दुल का राजनीतिक मतलब निकाला जाता है उस मुसलमान से जिसे राजनीतिक पार्टियां अपना वोट बैंक समझती हैं। इसीलिए ओवैसी कहते हैं कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, यानी अब्दुल अब उन पार्टियों के लिए वोट बैंक नहीं बनेगा जिनके वोटों पर जीत कर ये पार्टियां उन्हें भूल जाती हैं।
11: अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, सज्जन दरी नहीं बिछाएगा, शौकत दरी नहीं बिछाएगा, अब सज्जन टेबल लगाएगा, कुर्सी पर बैठ कर कहेगा बोल इंसाफ करता है या नहीं करता है। इस मिजाज को आपको पैदा करना है। नौजवानों, आने वाला मुस्तकबिल आपका है, आने वाला मुस्तकबिल आपका है। बुजुर्गों, आपने बरसों इन जालिमों का साथ दिया, इन्होंने झूठ बोलकर आपके ख्वाबों को मिसमार कर दिया, चिकना चूर कर दिया। एक बार मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को आप अपना वोट देकर यहां से मजलिस के विधायक को कामयाब करिए।
15: ऐसा नहीं है कि ओवैसी ने मुसलमानों के लिए अब्दुल शब्द पहली बार कहा हो, वो पहले भी कहते रहे हैं।
12: अब्दुल अब्दुल क्या होता है?
15: लेकिन इस बार विवाद हुआ है रामपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी से पूछे गए सवाल पर। असल में रामपुर में मोहिबुल्ला नदवी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसी में एक पत्रकार ने उनसे अब्दुल के नाम पर ये सवाल पूछ लिया तो नदवी बुरी तरह से भड़क गए।
12: मुसलमान इस देश के सबसे मुअज्जज शहरी हैं।
16: जी, झगड़ा इसके चुनाव की क्या तैयारी है? और हर पार्टी जो है 27 के चुनाव में अब्दुल को याद करती, इस वक्त अब्दुल कहाँ है?
12: क्या मतलब, आप नाम मत लीजिए, अब्दुल अब्दुल क्या होता है? आप किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं अब्दुल कह करके?
16: नहीं, हर पार्टी नहीं,
12: आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। अब्दुल प्रिंस क्या होता है?
16: हर पार्टी
12: किसे कहते हैं? मैं नहीं समझ पा रहा आपकी बात को। अब्दुल अब्दुल लगाया क्या होता है? अब्दुल
16: बताइए,
12: मुसलमान इस देश के सबसे मुअज्जज शहरी हैं, जिन्होंने देश की कुर्बानी हजारों साल सैकड़ों साल से देश में कुर्बानियां दी हैं। कांग्रेस पार्टी के आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी में देख लीजिए, सब लोग हैं। आप अब्दुल अब्दुल कहकर के आप खड़ाने की कोशिश करते हैं।
15: रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद को लग रहा है कि ऐसे अब्दुल का नाम लेकर मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्हें आपत्ति है कि मुसलमानों को अब्दुल कहा जा रहा है। ये करीब 5 साल पहले का रामपुर का ही बयान है और जो ये अब्दुल कह रहे हैं ये कभी आजम खान के करीबी हुआ करते थे और उन्हीं की सभा में इन्होंने ये अब्दुल वाला बयान दिया था। इनका नाम है फसाहत अली शानू। अब ये बीजेपी में है और अब्दुल के नाम पर जब मौजूदा रामपुर के सांसद को आपत्ति हुई तो इन्होंने उन्हें बताया कि अब्दुल कौन है।
13: क्यों मौलाना साहब, क्यों लग रहा है आपको इतना बुरा? अब्दुल के नाम पर गाली है? अब्दुल आपकी घर की दीवारों की रंग पॉलिश करता है वो है अब्दुल, आपकी मोटरों के पंचर जोड़ता है वो है अब्दुल, जिसके नाम की आपकी आपने और आपकी पार्टी ने रोटियां सेकी है वो है अब्दुल, देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई उसके वोटों से वो है अब्दुल, जमाने से आज भी थाने में पिटता आ रहा है वो है अब्दुल। आपने तो इमामत की कीमत कबूल ली, आप तो मस्जिद में नमाज पढ़ाते पढ़ाते सांसद बन गए, अब्दुल के वोटों से बने आप सांसद, अब्दुल के नाम पे भड़कते हैं आप, अब्दुल के नाम पे गुस्सा आता है आपको। आपकी पार्टी ने राज्यसभा में किसको भेजा है? नथवानी को भेजा है, और जो राज्यसभा में नथवानी को भेजा है वो भी अब्दुल की वजह से भेजा है। अब्दुल ने आपकी पार्टी की यह हैसियत बनाई कि आपकी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी।
15: यूपी के मुसलमानों के मन में यह भी सवाल है जिसका जिक्र फसाहत अली शानू भी कर रहे हैं कि जब राज्यसभा देने की बारी आई तो समाजवादी पार्टी ने धनराज परिमल नाथवानी को राज्यसभा भेजा, ना कि किसी मुसलमान नेता को। यहीं से यह नैरेटिव बनता है कि अब्दुल इन पार्टियों के लिए कब तक दरी बिछाएगा।
14: पूछेंगे समाजवादी थी तो क्या था? समाजवादी थी तो वाई था, वाई का फायदा था, अब बाबा बन गए तो टी का फायदा है, टी का फायदा है। ना वो एम बोलते ना ये एम बोलते, कोई एम नहीं बोलता। ओवैसी बोलता है कि एम जिंदा कौम है, दरी नहीं बिछाएंगे बाबा और भैया, अब तुमको दरी बिछाना पड़ेगा हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला।
15: कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: सीसी के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सीसी ज्ञानेश कुमार के तुरंत निलंबन करने की मांग से इनकार कर दिया। साथ ही साथ चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर बवाल और विरोध प्रदर्शन अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब 6 अक्टूबर को ज्ञानेश के खिलाफ उतरेगा इंडिया। चुनाव आयोग तक विपक्षी पार्टियों के सांसदों का मान। इंडिया गठबंधन ने बनाई ज्ञानेश को घेरने की रणनीति। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया का अक्टूबर संग्राम। वोट चोरी की लड़ाई ज्ञानेश कुमार पर चढ़ाई।
1: फॉर एन अग्रेसिव नेशनल वाइड कैंपेन अगेंस्ट वोट चोरी, वोट बचाओ देश बचाओ।
0: वोटर चोरी SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन का पूरा प्लान आपको बताएं। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू हुआ संग्राम लगातार जारी है। 2 अक्टूबर को मुंबई में CJP ने विरोध प्रदर्शन किया।
2: मेरा रंग दे बसंती चोला ज्ञान उठा ले छो, मेरा रंग दे बसंती चोला
0: दिल्ली में आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टियों और उसकी छात्र विंग ISI SFI ने 2 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को भी इंडिया गेट से जंतर मंतर तक सिटीजंस मार्च निकाला। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भड़के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी जान लगा दी। तो 4 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक साथ BJP और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई में गर्जना मोर्चा निकाला।
3: हिटलर सर, हिटलर कोणालाही घाबरत नव्हता, पण हिटलर वरती अशी वेळ आली की त्याला स्वतः स्वतःवरती गोळी झाडून आत्महत्या करावी लागली। पण हिटलर गेला आणि हिटलर गेल्यानंतर त्याला एक न्यूरेमबर्ग ट्रायल म्हणून तो एक शब्द आहे। जे अधिकारी त्या हिटलरच्या पापामध्ये सहभागी होते त्यांना शोधून शोधून काढलं, त्यांच्यावरती खटले भरले गेले, काही जणांना फासावर लटकवलं, काही जणांना तुरुंगात चढून टाकलं, तोच क्षण आपल्या देशात उद्या आल्याशिवाय राहणार नाही एवढं भाजप आणि या सगळ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवावं।
4: त्याला एक तर SIR हा रद्द झाला पाहिजे कोणत्याही परिस्थितीत, आणि दुसरं म्हणजे या देशातलं वोटिंग मशीन बंद होऊन बॅलेट पेपर वरती याच्या पुढे मतदान झालं पाहिजे। या दोन गोष्टी झाल्या तर दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल। उद्या कोणाची सत्ता येऊ देत काही फरक पडत नाही।
0: और आज यानी 5 अक्टूबर को भी काँग्रेस की छात्र विंग ने मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जंतर मंतर से कुछ ही दूरी पर रायसीना रोड पर कांग्रेस की छात्र विंग के कार्यकर्ता और नेता लाशें बनकर सड़क पर लेट जाते हैं। और अब इनका संदेश क्या है वो आपको इस पोस्टर से साफ साफ समझ में आ जाएगा। जो प्रदर्शनकारी अर्थी बनकर लेता है उस पर रखे पोस्टर में लिखा है, जिंदा है हम फिर भी वोटर लिस्ट में मुड़ते क्यों।
5: ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन ने SIR में मुझे मृत घोषित कर दिया है और हमारी लड़ाई यही है कि जो लाखों लोगों का वोट इस SIR में लाखों लोगों को मृत घोषित किया गया है उनके न्याय की लड़ाई है। क्योंकि लोग फोन चला रहे, लोग घूम रहे, लोग खाना खा रहे, लोग पानी पी रहे हैं, परंतु उनको मृत घोषित कर दिया गया है। सोचिए मैं भी बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मेरा नाम भी SIR से कट गया है, सच्चाई है।
0: जिंदा लाश बनने तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही NSUI के कार्यकर्ता और नेता जंतर मंतर की तरफ बढ़ते हैं रास्ते में दिल्ली पुलिस और सेंट्रल फोर्सेज से सीधा सामना हो जाता है। ये देखिए कैसे CISF और दिल्ली पुलिस की महिला ब्रिगेड प्रदर्शनकारियों को उठा उठा कर बस में भर रही है। ये भी देखिए कैसे एक प्रदर्शनकारी को 2 CISF और 1 दिल्ली पुलिस का जवान उठा कर ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की छात्र विंग के प्रदर्शनकारियों को बस में भर कर हिरासत में ले लिया।
6: शर्म करो। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान पर विवाद छिड़ चुका है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है। बीजेपी और आरएसएस सनातन धर्म को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है।
7: एक बार फिर से हिंदुत्व पर सियासत सुलग रही है, एक बार फिर हिंदुत्व पर राजनीति तेज हो रही है और ये हो रहा है कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व वाले इस बयान में।
8: इस देश में जिस प्रकार सनातन धर्म को हिंदू हिंदू करते रहे, ये आरएसएस विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुत्व और सावरकर जी ने उसको हिंदुत्व नाम दे दिया, उसकी वजह से पूरे देश में हिंदू मुसलमानों के अंदर, हिंदू और सिखों के बीच में, हिंदू ईसाइयों के बीच में आपने खाई पैदा कर दी।
7: दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार मध्य प्रदेश से हुआ। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय पर निशाना साधा।
9: इस तरह से अनर्गल बयानबाजी करना बिना तथ्यों के यह आपत्तिजनक भी है और खेदपूर्ण भी है, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह के इस तरह के तथ्यहीन बयान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो किन तथ्यों के आधार पर इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो राम को बदनाम कर रहे हैं।
7: उधर महाराष्ट्र में भी दिग्विजय सिंह के बयान की गूंज सुनाई दी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भड़क उठे।
10: आरएसएस हो, ये सारी जो संगठनाएं हैं, ये महाराष्ट्र, ये देश में, देश को, जो हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, उसको और ताकतवर बनाने के लिए, हिंदुओं को संगठित रखने के लिए दिन रात काम करते हैं। वो सभी की सभी चीजें हिंदुओं के बारे में बोलना और वहां कभी भी इस्लाम और कुरान पे बोलने की हिम्मत, ये कांग्रेस वाले कभी करते नहीं है। इसलिए तो हम लोग कांग्रेस को मुस्लिम लीग के बी लीग बी टीम बुलाते हैं ना।
7: अब चारों ओर से दिग्विजय पर पलटवार हो रहे हैं और हिंदुत्व पर अब सियासत तेज हो रही है। आज तक भी
6: आज तक ये खबर का असर हुआ है। पिछले शुक्रवार को हमने बिहार के जर्जर स्कूलों से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाई थी। उसके बाद बिहार सरकार की नींद खुली है। छात्रों को स्कूल से शिफ्ट कर दिया गया है और मरम्मत का काम शुरू हो गया है।

0: इतना आप कह सकते हैं ये यहाँ पर खतरनाक है, क्योंकि जिस जगह पर आप ये देख रहे होंगे, ये पूरा ये ढांचा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक टेम्पोररी व्यवस्था की गई है पिलर का रूप देने के लिए।
1: बिहार के दरभंगा के इस स्कूल की हालत जिसने भी देखी वो गुस्से से भर गया। आक्रोशित होने वाली बात ये तो थी ही कि कैसे एक स्कूल की इमारत बेंच के भरोसे खड़ी है। उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात बिहार के शिक्षा विभाग की अनदेखी थी, जो बार बार स्कूल प्रिंसिपल की गुहार लगाने के बावजूद सोता रहा। इसकी वजह से सालों से जान जोखिम में डालकर सैकड़ों बच्चे इस खतरनाक स्कूल में पढ़ने को मजबूर थे। जब कुछ नहीं हुआ तो आज तक ने इस स्कूल को लेकर बिहार सरकार को खबरदार किया। आखिरकार बिहार सरकार हरकत में आई। सालों से सोया बिहार का शिक्षा विभाग भी एकाएक जागा और कीरतपुर प्राथमिक विद्यालय को गोसवा मध्य विद्यालय में शिफ्ट कर दिया। आज तक पर यह खबर दिखाए जाने के बाद ही बिहार के शिक्षा विभाग ने स्कूल शिफ्ट करने का आदेश जारी कर दिया। ये देखिए, शुक्रवार को ये आदेश जारी हुआ और रविवार को बच्चे दूसरे स्कूल में जाने लगे।
2: ये झर झर के गिर रहा है, बहुत डर है।
3: हाँ, तो कभी किसी को बच्चे को चोट भी लगा था, इससे गिरा था इसके पहले।
2: गिरता था लेकिन सर बचा लिया।
3: हाँ, जब बरसात होता था
2: तो पानी टपकता था।
3: हाँ, तो मन में डर भी लगा रहता था।
2: हाँ,
3: अब जा रही हो दूसरे स्कूल तो वहाँ ठीक है ना सब।
2: हाँ।
1: 2 अक्टूबर को आज तक संवाददाता रोहित सिंह दरभंगा के इस स्कूल में गए थे। उन्होंने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे बच्चों की जान जोखिम में डालकर स्कूल चल रहा है। आज तक पर ये रिपोर्ट चलने के बाद अगले ही दिन बिहार के शिक्षा विभाग ने अपने अफसरों को स्कूल के निरीक्षण के लिए दौड़ाया और मौत के साए में पड़ते बच्चों को राहत मिल गई।
4: इसी खबर को जब आज तक ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया तो बिहार सरकार ने इसको संज्ञान में लिया और आदेश निकाला गया कि जिला प्रशासन को आदेश दिया गया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। इस जर्जर भवन पर पठन पाठन का काम जो है वो नहीं हो और आनन फानन में एक आदेश प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा स्कूल के प्रिंसिपल को भेजा गया, जिसमें यह बताया गया कि स्कूल में पठन पाठन का काम अब अगले दिनों से जब भी स्कूल खुलेगा तो नहीं होगा। इन बच्चों को टीचर यहां से लेके जो है वो गोसवा मध्य विद्यालय लेके जाएंगे, जहां स्कूल को शिफ्ट किया गया है, क्योंकि बच्चे को अभी ये पूरी जानकारी नहीं हो पाई है। और जो यहां प्रिंसिपल है वो भी हम लोग के साथ है, टीचर लोग भी, अब ये लोग प्रस्थान कर रहे हैं। हम खुद प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे, वो अपने कार्यालय में कुछ कागजी खाना पूर्ति करके निकल रहे हैं और वो दूसरे स्कूल की तरफ जाएंगे। सर ये बताइए कि क्या कहेंगे, खबर आज तक ने दिखाई तो क्या हुआ और आप अभी क्या आदेश आया आप लोग को?
5: मुझे आदेश आया है कि विभागीय पत्र के अनुसार मेरा विद्यालय दूसरे जगह शिफ्ट किया गया, मध्य विद्यालय गोसवा में जी।
3: फिर
5: हम लोग तो सभी बच्चे और शिक्षक वहाँ पहुँच जाएंगे जी, जा रहे हैं अभी तुरंत लेकर के।
3: तो क्या यहाँ वाकई क्या स्थिति का खतरा था?
5: हाँ, यहाँ तो खतरा था।
1: आज तक के खबरदार करने के बाद स्कूल की मरम्मत के लिए बजरी भी स्कूल पहुँच चुकी है। बच्चे पास ही के दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब बच्चे सुरक्षित होकर पढ़ेंगे। रोहित सिंह के साथ प्रहलाद कुमार, दरभंगा आज तक।
6: पाकिस्तान में इमरान खान की सेहत और रिहाई को लेकर की जा रही मांगों को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। उनकी पार्टी पीटीआई अब निर्णायक लड़ाई लड़ने के मूड में आ चुकी है। खैबर के अलग अलग इलाकों से हजारों लोगों को जुटाया जा रहा है और इस्लामाबाद कूच करने की अपील की जा रही है।
7: सड़कों पर इकट्ठा हजारों की भीड़, ढोल नगाड़ों पर नाचते लोग, हाथों में पार्टी के झंडे और जगह जगह लगी इमरान खान की तस्वीरें।
8: दरअसल इमरान खान की पार्टी का ये लॉन्ग मार्च सितंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होना था। इस बीच सरकार के साथ बातचीत का दौर शुरू हुआ और कुछ दिनों के लिए मार्च को टाल दिया गया, लेकिन सरकार के साथ बात अब नाकाम हो गई है और पीटीआई ने

0: यह बात शुरू कर दिया है। रविवार को खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की ओर शुरू हुए इस बात से रास्ते में पड़ने वाले हर इलाके से लोग जुड़ते जा रहे हैं।
1: जब हमारा वजीर आला जो ही लाया अमल तय करेगा उस पे अमल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब वो या इस्लामाबाद की तरफ हो जाएंगे, इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे।
0: पार्टी की प्रमुख मांगों में जेल में बंद इमरान खान से तत्काल मुलाकात और उन्हें ऐसे अस्पताल ले जाने का फैसला शामिल है जहां उनके निजी डॉक्टर उनकी जांच कर सकें। इमरान पिछले करीब 3 साल से रावलपिंडी की हाई सिक्योरिटी अदियाला जेल में बंद हैं। उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उनकी पार्टी लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रही है। फिलहाल जो हालात हैं, ये हफ्ता शहबाज शरीफ और मुरीद की रातों की नींद उड़ाने वाला हो सकता है। पीटीआई के समर्थक इस्लामाबाद पहुंच पाए तो भी और ना पहुंच पाए तो भी, क्योंकि जब जब जुल्म हुए हैं लोगों की बगावत ने सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाई ही हैं। आज तक ब्यूरो।
2: और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: एसआईआर के तहत फॉर्म 6 में बदलाव पर फंसा चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट की 2-2 हमने चेंज नहीं की को मंजूरी नहीं दी, ईसी और केंद्र को थमाया नोटिस, ज्ञानेश के तुरंत निलंबन से इनकार। फॉर्म 6 को राहुल गांधी ने बताया बीजेपी सीईसी की सांठगांठ का नतीजा, कहा अपनाया गया गैरकानूनी तरीका, आग बबूला बीजेपी का पलटवार, संसद से ईसी ऑफिस तक विपक्ष का मार्च। चुनाव से पहले राज्यसभा सीट से जातीय समीकरण साधने में जुटी बीजेपी, लिस्ट में 3 ओबीसी, 2 एससी, 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय का नाम, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, बीएल वर्मा आउट। मायावती ने फिर भतीजे पर दिखाई दया, कहा सियासत से ससुर के संन्यास के बाद सुधर गए आकाश, वापस किया राष्ट्रीय संयोजक का पद। और बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जम्मू कश्मीर से वापस भेजे गए 150 लोग, बागडोगरा से बीएसएफ इन्हें भेजेगी सीमा पार, 7 अक्टूबर को एक और कार्रवाई की तैयारी। बीजेपी ने यूपी में 8 सीटों के लिए उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी ने उम्मीदवार चुनने में जातिगत समीकरण का खासा ख्याल रखा है, साथ ही 27 के चुनाव ध्यान में रखते हुए 2 महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया गया है। सभी प्रत्याशी यूपी से ही आते हैं।
1: यूपी में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों की जिस लिस्ट का इंतजार था वो खत्म हुआ। बीजेपी ने आज अपने सभी 8 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया। खास बात ये रही कि इस बार सभी 8 उम्मीदवार नए हैं, मतलब किसी भी पुराने चेहरे को रिपीट नहीं किया गया। नए उम्मीदवारों में 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय चेहरा है। इनमें 3 ओबीसी उम्मीदवार हैं, 2 एससी उम्मीदवार हैं। ओबीसी में लोधी, पाल, कुर्मी समुदाय के उम्मीदवार हैं। महिला प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया है, 2 महिलाओं को टिकट मिला है।
2: ये सिर्फ मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है, पूरे महिलाओं को, पूरी नारी शक्ति को एक जिम्मेदारी मिली है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना इस बात को सिद्ध करता है कि हमारी पार्टी, हमारे आदरणीय नेतागण, हमारे आदरणीय मोदी जी जो कहते हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात, महिला नेतृत्व की बात, आज उन्होंने इस लिस्ट में 2 महिलाओं के नाम से सिद्ध किया है कि महिलाएं देश की प्रगति में, राष्ट्र को आगे ले जाने में कितनी अहम भूमिका है।
3: मुझ जैसे एक सामान्य पृष्ठभूमि के कार्यकर्ता को जो अविचल 36 साल से अधिक समय से पार्टी का आहार निष्काम कर रहा था, उसको आज मौका दिया है और प्रदेश में संदेश देने का काम किया है कि कोई भी कार्यकर्ता अगर निष्ठापूर्वक लगे रहेगा तो पार्टी के नेतृत्व का ध्यान उस पर अवश्य है और ये आज मुझे उम्मीदवार बनाने से पार्टी में संदेश जाएगा।
1: मतलब बीजेपी ने अपना संदेश स्पष्ट कर दिया है, एक तो जातिगत समीकरण को साधा गया है, दूसरा महिलाओं को मौका मिला है, तीसरा सवर्ण मतदाताओं के लिए भी मैसेज है। 27 में यूपी में चुनाव है और राज्यसभा टिकट बांटने में इसका खासा ख्याल रखा गया है, तभी तो सभी 8 उम्मीदवार यूपी के हैं। इसके अलावा पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल बीएल वर्मा और हरदीप सिंह पुरी का टिकट काट दिया गया है। बता दें कि यूपी में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, इनमें 10 सीटों पर 16 अक्टूबर को चुनाव होना है, 6 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी की राजनीति में अगली खबर है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर। अब कांग्रेस की ओर से नई डिमांड कर दी गई है। कांग्रेस कह रही है कि यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस कम से कम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के लिए 50 सीट भी ज्यादा है।
1: यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर गदर मची है। कहा जा रहा था कि कांग्रेस 150 सीटें चाहती है, लेकिन कांग्रेस अब इससे आगे की बात कर रही है।
4: इसने किया 150 का, मैंने तो 200 की बात की थी। मैं शुरू से कह रहा हूँ बराबर का सम्मान और बराबर की इज्जत, बराबर का हिस्सा।
1: लेकिन राजेंद्र पाल गौतम को समाजवादी पार्टी के नेता 2 टूक जवाब देते हैं।
5: मैं ये कहता हूँ उनको 50 सीट देना भी बहुत बड़ी बात होगी, उनको देखना चाहिए। 2 तुम्हारे विधायक हैं, पिछली बार तुमने लड़के देख लिए, क्या इससे तुम्हें सबक नहीं मिलता?
1: अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि जीत ही सीट का आधार है।
6: जीत ही आधार है, जीत ही सीट का आधार है।
1: और जीत बोले तो आखिरी चुनाव यानी 2024 लोकसभा में मेरी जीत। और वो जीत कुछ ऐसी थी कि 80 में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती और 6 कांग्रेस को मिली थी। इसे विधानसभा के अनुपात में बांटा जाए तो 37 लोकसभा के हिसाब से अखिलेश के हिस्से 347 सीटें बनती हैं और कांग्रेस के हिस्से 56। लेकिन कांग्रेस की हसरतें 56 से 200 तक पहुंच चुकी हैं और हौसला बढ़ता ही जा रहा है। अब कांग्रेस ने उन्हीं इमरान मसूद को कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, जो लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं और 403 सीटों पर लड़ने की चेतावनी देते रहते हैं। पॉलिटिकल मैसेजिंग के तौर पर कांग्रेस ने अपने पत्ते सामने रख दिए हैं। अब बारी समाजवादी पार्टी की ओर से फैसला लेने की है और वो कांग्रेस की सीटों वाली शर्तों के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन करना चाहती है या बीजेपी को हराने के मिशन के साथ। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: यूपी में 2027 की सियासी जंग से पहले दलित वोट बैंक पर भी सियासत तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही का नाम संत रविदास नगर भदोही करने का ऐलान कर दिया है। तो योगी सरकार के इस फैसले के पीछे क्या है सम्मान, कल्याण और विकास का सियासी फॉर्मूला, आइए दिखाते हैं आपको।
7: यूपी के चुनावी मौसम में दलित वोटों के लिए हर दल के तरकश में अलग अलग तीर है और इसी में से एक तीर बीजेपी ने अब यूपी में आजमाया है, जो दलित सियासत में प्रतीकों के तौर पर इस्तेमाल होते आ रहे हैं। सीएम योगी ने ऐसा ही एक ऐलान यूपी में किया, जहां भदोही का नाम संत रविदास के नाम पर किया गया है।
8: कालीन उद्योग के लिए जाना जाने वाला भदोही जनपद आने वाले समय में मध्यकालीन संत जिन्होंने अपनी साधना के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम किया था, ऐसे सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर भदोही जाना जाएगा।
7: भदोही नहीं, नामकरण की बात हो तो कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बहाल किया गया है। वहीं अनुपूरक बजट में डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए 407 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत अंबेडकर, संत रविदास, संत कबीर, ज्योतिबा फुले और महर्षि वाल्मीकि के प्रतिमाओं के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा पर काम होगा। बीजेपी कहती है कि अखिलेश यादव की सरकार ने दलित विरोधी सोच के कारण जिन महापुरुषों के नाम पर रखे गए जिलों, संस्थानों के नाम बदल डाले थे, उनका पुनर्नामकरण करके बीजेपी सम्मान दे रही है।
9: पूर्व में भी भदोही का नाम संत रविदास नगर था, किंतु अखिलेश यादव की दलित विरोधी सोच के नाते से उन्होंने संत रविदास नगर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों के नाम बदले थे, आज उसको सही किया गया है।
10: समाजवादी पार्टी समाज में न किसी वर्ग को अपनी जागीर न वोट बैंक समझती है, वो सभी वर्गों को अपना साथी, सहयोगी और समाजवादी पार्टी के परिवार का हिस्सा समझती है।
7: मतलब ये कि दलितों को रिझाने के लिए दाव चलाए जाने लगे हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: आखिर यूपी में अब्दुल कौन है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अब्दुल अब किसी की दरी नहीं उठाएगा, यानी अब्दुल के वोट का अब कोई भी पार्टी राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। समस्या यह है कि ओवैसी के इन सवालों से समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा नाराज हो रही है।
11: अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, सज्जन दरी नहीं बिछाएगा, शौकत दरी नहीं बिछाएगा।
12: आप नाम मत लीजिए अब्दुल, अब्दुल क्या होता है, आप किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं अब्दुल कह करके।
13: क्यों मौलाना साहब, क्यों लग रहा है आपको इतना बुरा अब्दुल का नाम पर, गाली है अब्दुल।
7: चुनाव से पहले अब्दुल पर घमासान, किसकी तरफ है यूपी का मुसलमान, अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, इस बार किस तरफ जाएगा। यूपी में मुस्लिम वोटों पर हंगामा मचा है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी और ओवैसी के बीच घमासान मचा है कि कौन लेकर जाएगा मुस्लिम वोट, यूपी का मुसलमान किसकी तरफ जाएगा।
14: ओवैसी बोलता है कि एम जिंदा कौम है, दरी नहीं बिछाएंगे बाबा और भैया, अब तुमको दरी बिछाना पड़ेगा हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर उत्तर प्रदेश
7: अपनी रैलियों में ओवैसी अक्सर कहते हैं कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा और इसी अब्दुल पर हंगामा छिड़ गया है। मुस्लिम पॉलिटिक्स में अब्दुल शब्द मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है,
15: खुद ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता इस शब्द यानी अब्दुल का इस्तेमाल करते हैं। अब्दुल का राजनीतिक मतलब निकाला जाता है उस मुसलमान से जिसे राजनीतिक पार्टियां अपना वोट बैंक समझती हैं। इसीलिए ओवैसी कहते हैं कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, यानी अब्दुल अब उन पार्टियों के लिए वोट बैंक नहीं बनेगा जिनके वोटों पर जीत कर ये पार्टियां उन्हें भूल जाती हैं।
11: अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, सज्जन दरी नहीं बिछाएगा, शौकत दरी नहीं बिछाएगा, अब सज्जन टेबल लगाएगा, कुर्सी पर बैठ कर कहेगा बोल इंसाफ करता है या नहीं करता है। इस मिजाज को आपको पैदा करना है। नौजवानों, आने वाला मुस्तकबिल आपका है, आने वाला मुस्तकबिल आपका है। बुजुर्गों, आपने बरसों इन जालिमों का साथ दिया, इन्होंने झूठ बोलकर आपके ख्वाबों को मिसमार कर दिया, चिकना चूर कर दिया। एक बार मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को आप अपना वोट देकर यहां से मजलिस के विधायक को कामयाब करिए।
15: ऐसा नहीं है कि ओवैसी ने मुसलमानों के लिए अब्दुल शब्द पहली बार कहा हो, वो पहले भी कहते रहे हैं।
12: अब्दुल अब्दुल क्या होता है?
15: लेकिन इस बार विवाद हुआ है रामपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी से पूछे गए सवाल पर। असल में रामपुर में मोहिबुल्ला नदवी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसी में एक पत्रकार ने उनसे अब्दुल के नाम पर ये सवाल पूछ लिया तो नदवी पूरी तरह से भड़क गए।
12: मुसलमान इस देश के सबसे मुअज्जम शहरी
16: है और हर पार्टी जो है 27 के चुनाव में अब्दुल को याद करती, इस वक्त अब्दुल कहाँ है?
12: क्या मतलब आप नाम लीजिए, अब्दुल अब्दुल क्या होता है? आप किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं अब्दुल कह करके?
16: नहीं, हर पार्टी
12: आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। अब्दुल प्रिंस क्या होता है?
16: हर पार्टी
12: किसे कहते हैं अब्दुल का? नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा आपकी बात को। अब्दुल अब्दुल लगाया क्या होता है? अब्दुल
16: बताइए,
12: मुसलमान इस देश के सबसे मुअज्जम शहरी है जिन्होंने देश की कुर्बानी हजारों साल सैकड़ों साल से देश में कुर्बानियां दी हैं। कांग्रेस पार्टी के आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी में देख लीजिए, सब लोग हैं। आप अब्दुल अब्दुल कहकर के आप खड़ाने की कोशिश करते हैं।
15: रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद को लग रहा है कि ऐसे अब्दुल का नाम लेकर मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्हें आपत्ति है कि मुसलमानों को अब्दुल कहा जा रहा है। ये करीब 5 साल पहले का रामपुर का ही बयान है और जो ये अब्दुल कह रहे हैं ये कभी आजम खान के करीबी हुआ करते थे और उन्हीं की सभा में इन्होंने ये अब्दुल वाला बयान दिया था। इनका नाम है फसाहत अली शानू। अब ये बीजेपी में है और अब्दुल के नाम पर जब मौजूदा रामपुर के सांसद को आपत्ति हुई तो इन्होंने उन्हें बताया कि अब्दुल कौन है।
13: क्यों मौलाना साहब, क्यों लग रहा है आपको इतना बुरा? अब्दुल के नाम पर गाली है? अब्दुल आपकी घर की दीवारों की रंग पॉलिश करता है, वो है अब्दुल। आपकी मोटरों के पंचर जोड़ता है, वो है अब्दुल। जिसके नाम के आपकी आपने और आपकी पार्टी ने रोटियां सीखी है, वो है अब्दुल। देश की 30 नंबर की पार्टी बन गई उसके वोटों से, वो है अब्दुल। जमाने से आज भी थाने में पिटता आ रहा है, वो है अब्दुल। आपने तो इमामत की कीमत कबूल ली, आप तो मस्जिद में नमाज पढ़ाते पढ़ाते सांसद बन गए। अब्दुल के वोटों से बने आप सांसद। अब्दुल के नाम पे भड़कते हैं आप, अब्दुल के नाम पे गुस्सा आता है आपको। आपकी पार्टी ने राज्यसभा में किसको भेजा है? नथवानी को भेजा है। और जो राज्यसभा में नथवानी को भेजा है वो भी अब्दुल की वजह से भेजा है। अब्दुल ने आपकी पार्टी की यह हैसियत बनाई कि आपकी पार्टी देश की 30 नंबर की पार्टी बनी।
15: यूपी के मुसलमानों के मन में यह भी सवाल है जिसका जिक्र फसाहत अली शानू भी कर रहे हैं कि जब राज्यसभा देने की बारी आई तो समाजवादी पार्टी ने धनराज परिमल नाथवानी को राज्यसभा भेजा, ना कि किसी मुसलमान नेता को। यहीं से यह नैरेटिव बनता है कि अब्दुल इन पार्टियों के लिए कब तक दरी बिछाएगा।
14: पूछेंगे समाजवादी थी तो क्या था? समाजवादी थी तो वाई था, वाई का फायदा था। अब बाबा बन गए तो टी का फायदा है, टी का फायदा है। ना वो एम बोलते ना ये एम बोलते, कोई एम नहीं बोलता। ओवैसी बोलता है कि एम जिंदा कौम है, दरी नहीं बिछाएंगे बाबा और भैया, अब तुमको दरी बिछाना पड़ेगा हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला।
15: कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: सीसी के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सीसी ज्ञानेश कुमार के तुरंत निलंबन करने की मांग से इनकार कर दिया। साथ ही साथ चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर बवाल और विरोध प्रदर्शन अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब 6 अक्टूबर को ज्ञानेश के खिलाफ उतरेगा इंडिया। चुनाव आयोग तक विपक्षी पार्टियों के सांसदों का मान। इंडिया गठबंधन ने बनाई ज्ञानेश को घेरने की रणनीति। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया का अक्टूबर संग्राम। वोट चोरी की लड़ाई ज्ञानेश कुमार पर चढ़ाई।
1: फॉर एन अग्रेसिव नेशनल वाइड कैंपेन अगेंस्ट वोट चोरी, वोट बचाओ देश बचाओ।
0: वोटर चोरी SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन का पूरा प्लान आपको बताएं। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू हुआ संग्राम लगातार जारी है। 2 अक्टूबर को मुंबई में CJP ने विरोध प्रदर्शन किया।
2: मेरा रंग दे बसंती चोला ज्ञान उठा ले छो, मेरा रंग दे बसंती चोला।
0: दिल्ली में आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टियों और उसकी छात्र विंग ISI SFI ने 2 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को भी इंडिया गेट से जंतर मंतर तक सिटीजंस मार्च निकाला। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भड़के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी जान लगा दी। तो 4 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक साथ BJP और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई में गर्जना मोर्चा निकाला।
3: हिटलर सर, हिटलर कोणालाही घाबरत नव्हता, पण हिटलर वरती अशी वेळ आली की त्याला स्वतः स्वतःवरती गोळी झाडून आत्महत्या करावी लागली। पण हिटलर गेला आणि हिटलर गेल्यानंतर त्याला एक न्यूरेमबर्ग ट्रायल म्हणून तो एक शब्द आहे। जे अधिकारी त्या हिटलरच्या पापामध्ये सहभागी होते त्यांना शोधून शोधून काढलं, त्यांच्यावरती खटले भरले गेले, काही जणांना फासावर लटकवलं, काही जणांना तुरुंगात चढून टाकलं, तोच क्षण आपल्या देशात उद्या आल्याशिवाय राहणार नाही एवढं भाजप आणि या सगळ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवावं।
4: त्याला एक तर SIR हा रद्द झाला पाहिजे कोणत्याही परिस्थितीत, आणि दुसरं म्हणजे या देशातलं वोटिंग मशीन बंद होऊन बॅलेट पेपर वरती याच्यापुढे मतदान झालं पाहिजे। या दोन गोष्टी झाल्या तर दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल। उद्या कोणाचीही सत्ता येऊ देत काही फरक पडत नाही।
0: और आज यानी 5 अक्टूबर को भी कांग्रेस की छात्र विंग ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जंतर मंतर से कुछ ही दूरी पर रायसीना रोड पर कांग्रेस की छात्र विंग के कार्यकर्ता और नेता लाशे बनकर साफ परेड जाते हैं। और अब इनका संदेश क्या है वो आपको इस पोस्टर से साफ साफ समझ में आ जाएगा। जो प्रदर्शनकारी अर्थी बनकर लेता है उस पर रखे पोस्टर में लिखा है, जिंदा है हम फिर भी वोटर लिस्ट में मुड़े क्यों।
5: ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन ने SIR में मुझे मृत घोषित कर दिया है और हमारी लड़ाई यही है कि जो लाखों लोगों का वोट इस SIR में लाखों लोगों को मृत घोषित किया गया है उनके न्याय की लड़ाई है। क्योंकि लोग फोन चला रहे, लोग घूम रहे, लोग खाना खा रहे, लोग पानी पी रहे हैं, परंतु उनको मृत घोषित कर दिया गया है। सोचिए मैं भी बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मेरा नाम भी SIR से कट गया है, सच्चाई है।
0: जिंदा लाश बनने तक तो ठीक था लेकिन जैसे ही NSUI के कार्यकर्ता और नेता जंतर मंतर की तरफ बढ़ते हैं रास्ते में दिल्ली पुलिस और सेंट्रल फोर्सेज से सीधा सामना हो जाता है। ये देखिए कैसे CISF और दिल्ली पुलिस की महिला ब्रिगेड प्रदर्शनकारियों को उठा उठा कर बस में भर रही है। ये भी देखिए कैसे एक प्रदर्शनकारी को 2 CISF और 1 दिल्ली पुलिस का जवान उठाकर ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की छात्र विंग के प्रदर्शनकारियों को बस में भर कर हिरासत में ले लिया।
6: कांग्रेस कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान पर विवाद छिड़ चुका है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है। बीजेपी और आरएसएस सनातन धर्म को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है।
7: एक बार फिर से हिंदुत्व पर सियासत सुलग रही है, एक बार फिर हिंदुत्व पर राजनीति तेज हो रही है और ये हो रहा है कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व वाले इस बयान में।
8: इस देश में जिस प्रकार सनातन धर्म को हिंदू हिंदू करते रहे, ये आरएसएस विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुत्व और सावरकर जी ने उसको हिंदुत्व नाम दे दिया, उसकी वजह से पूरे देश में हिंदू मुसलमानों के अंदर, हिंदू और सिखों के बीच में, हिंदू ईसाइयों के बीच में आपने खाई पैदा कर दी।
6: आज तक ये खबर का असर हुआ है। पिछले शुक्रवार को हमने बिहार के जर्जर स्कूलों से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाई थी, उसके बाद बिहार सरकार की नींद खुली है। छात्रों को स्कूल से शिफ्ट कर दिया गया है और मरम्मत का काम शुरू हो गया है।
9: अब ये हिस्सा देखिए स्कूल का, ये आप देख के समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या है। यहाँ खड़ा होना भी कितना आप कह सकते हैं ये यहाँ पर खतरनाक है, क्योंकि जिस जगह पर आप ये देख रहे होंगे, ये पूरा ये ढांचा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक टेम्पोररी व्यवस्था की गई है पिलर का रूप देने के लिए।
7: बिहार के दरभंगा के इस स्कूल की हालत जिसने भी देखी वो गुस्से से भर गया। आक्रोशित होने वाली बात ये तो थी ही कि कैसे एक स्कूल की इमारत बेंच के भरोसे खड़ी है। उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात बिहार के शिक्षा विभाग की अनदेखी थी, जो बार बार स्कूल प्रिंसिपल की गुहार लगाने के बावजूद सोता रहा। इसकी वजह से सालों से जान जोखिम में डालकर सैकड़ों बच्चे इस खतरनाक स्कूल में पढ़ने को मजबूर थे। जब कुछ नहीं हुआ तो आज तक ने इस स्कूल को लेकर बिहार सरकार को खबरदार किया। आखिरकार बिहार सरकार हरकत में आई। सालों से सोया बिहार का शिक्षा विभाग भी एकाएक जागा और कीरतपुर प्राथमिक विद्यालय को गोसवा मध्य विद्यालय में शिफ्ट कर दिया। आज तक पर यह खबर दिखाए जाने के बाद ही बिहार के शिक्षा विभाग ने स्कूल शिफ्ट करने का आदेश जारी कर दिया। ये देखिए, शुक्रवार को ये आदेश जारी हुआ और रविवार को बच्चे दूसरे स्कूल में जाने लगे।
10: ये झर झर के गिर रहा है, बहुत डर है।
11: हाँ, तो कभी किसी को बच्चे को चोट भी लगा था, इससे गिरा था इसके पहले?
10: गिरता था लेकिन सर बचा लिया।
11: हाँ, जब बरसात होता था तो
10: पानी टपकता था।
11: हाँ, तो मन में डर भी लगा रहता था।
10: हाँ,
11: अब जा रही हो दूसरे स्कूल तो वहाँ ठीक है ना
10: सर?
7: 2 अक्टूबर को आज तक संवाददाता रोहित सिंह दरभंगा के इस स्कूल में गए थे। उन्होंने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे बच्चों की जान जोखिम में डालकर स्कूल चल रहा है। आज तक पर ये रिपोर्ट चलने के बाद अगले ही दिन बिहार के शिक्षा विभाग ने अपने अफसरों को स्कूल के निरीक्षण के लिए दौड़ाया और मौत के साए में पड़ते बच्चों को राहत मिल गई।
12: इसी खबर को जब आज तक ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया तो बिहार सरकार ने इसको संज्ञान में लिया और आदेश निकाला गया कि जिला प्रशासन को आदेश दिया गया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। इस जर्जर भवन पर पठन पाठन का काम जो है वो नहीं हो और आनंद फानंद में एक आदेश प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा स्कूल के प्रिंसिपल को भेजा गया, जिसमें यह बताया गया कि स्कूल में पठन पाठन का काम अब अगले दिनों से जब भी स्कूल खुलेगा तो नहीं होगा। इन बच्चों को टीचर यहां से लेके जो है वो गोसवा मध्य विद्यालय लेके जाएंगे, जहां स्कूल को शिफ्ट किया गया है, क्योंकि बच्चे को अभी ये पूरी जानकारी नहीं हो पाई है। और जो यहां प्रिंसिपल है वो भी हम लोग के साथ है, टीचर लोग भी, अब ये लोग प्रस्थान कर रहे हैं। हम खुद प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे, वो अपने कार्यालय में कुछ कागजी खाना पूर्ति करके निकल रहे हैं और वो दूसरे स्कूल की तरफ जाएंगे। सर ये बताइए कि क्या कहेंगे, खबर आज तक ने दिखाई तो क्या हुआ और आप अभी क्या आदेश आया आप लोग को?
13: मुझे आदेश आया है कि विभागीय पत्र के अनुसार मेरा विद्यालय दूसरे जगह शिफ्ट किया गया मध्य विद्यालय घोसवा में जी।
14: फिर
13: हम लोग तो सभी बच्चे और शिक्षक वहाँ पहुँच जाएंगे जी, जा रहे हैं अभी तुरंत लेकर के।
14: तो क्या यहाँ वाकई क्या स्थिति का खतरा था?
13: हाँ यहाँ तो खतरा था।
7: आज तक के खबरदार करने के बाद स्कूल की मरम्मत के लिए बजरी भी स्कूल पहुंच चुकी है। बच्चे पासी के दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब बच्चे सुरक्षित होकर पढ़ेंगे।
6: पाकिस्तान में इमरान खान की सेहत और रिहाई को लेकर की जा रही मांगों को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। उनकी पार्टी पीटीआई अब निर्णायक लड़ाई लड़ने के मूड में आ चुकी है। खैबर के अलग अलग इलाकों से हजारों लोगों को जुटाया जा रहा है और इस्लामाबाद कूच करने की अपील की जा रही है।
15: सड़कों पर इकट्ठा हजारों की भीड़, ढोल नगाड़ों पर नाचते लोग, हाथों में पार्टी के झंडे और जगह जगह लगी इमरान खान की तस्वीरें। दरअसल इमरान खान की पार्टी का ये लॉन्ग मार्च सितंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होना था। इस बीच सरकार के साथ बातचीत का दौर शुरू हुआ और कुछ दिनों के लिए मार्च को टाल दिया गया, लेकिन सरकार के साथ बात अब नाकाम हो गई है और पीटीआई ने ये मार्च शुरू कर दिया है। रविवार को खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की ओर शुरू हुए इस मार्च में रास्ते में पड़ने वाले हर इलाके से लोग जुड़ते जा रहे हैं।
16: जब हमारा वजीर आला जो ही लाया अमल तय करेगा उस पे अमल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब वो या इस्लामाबाद की तरफ हो जाएंगे, इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे।
15: पार्टी की प्रमुख मांगों में जेल में बंद इमरान खान से तत्काल मुलाकात और उन्हें ऐसे अस्पताल ले जाने का फैसला शामिल है जहां उनके निजी डॉक्टर उनकी जांच कर सकें। इमरान पिछले करीब 3 साल से रावलपिंडी की हाई सिक्योरिटी अदियाला जेल में बंद हैं। उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उनकी पार्टी लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रही है। फिलहाल जो हालात हैं, ये हफ्ता शहबाज शरीफ और मुरीद की रातों की नींद उड़ाने वाला हो सकता है। पीटीआई के समर्थक इस्लामाबाद पहुंच पाएं तो भी और ना पहुंच पाएं तो भी, क्योंकि जब जब जुल्म हुए हैं लोगों की बगावत ने सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाई ही हैं। आज तक ब्यूरो।
6: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: एसआईआर के तहत फॉर्म 6 में बदलाव पर फंसा चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट के दो टूक, हमने चेंज नहीं की को मंजूरी नहीं दी, ईसी और केंद्र को थमाया नोटिस, ज्ञानेश के तुरंत निलंबन से इनकार। फॉर्म 6 को राहुल गांधी ने बताया बीजेपी सीईसी की सांठगांठ का नतीजा, का अपनाया गया गैरकानूनी तरीका, आग बबूला बीजेपी का पलटवार, संसद से ईसी ऑफिस तक विपक्ष का मार्च। चुनाव से पहले राज्यसभा सीट से जातीय समीकरण साधने में जुटी बीजेपी, लिस्ट में 3 ओबीसी, 2 एससी, 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय का नाम, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, बीएल वर्मा आउट। मायावती ने फिर भतीजे पर दिखाई दया, कहा सियासत से ससुर के संन्यास के बाद सुधर गए आकाश, वापस किया राष्ट्रीय संयोजक का पद। और बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जम्मू कश्मीर से वापस भेजे गए 150 लोग, बागडोगरा से बीएसएफ इन्हें भेजेगी सीमा पार, 7 अक्टूबर को एक और कार्रवाई की तैयारी। बीजेपी ने यूपी में 8 सीटों के लिए उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी ने उम्मीदवार चुनने में जातिगत समीकरण का खासा ख्याल रखा है, साथ ही 27 के चुनाव ध्यान में रखते हुए 2 महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया गया है। सभी प्रत्याशी यूपी से ही आते हैं।
1: यूपी में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों की जिस लिस्ट का इंतजार था वो खत्म हुआ। बीजेपी ने आज अपने सभी 8 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया। खास बात ये रही कि इस बार सभी 8 उम्मीदवार नए हैं, मतलब किसी भी पुराने चेहरे को रिपीट नहीं किया गया। नए उम्मीदवारों में 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय चेहरा है। इनमें 3 ओबीसी उम्मीदवार हैं, 2 एससी उम्मीदवार हैं। ओबीसी में लोधी, पाल, कुर्मी समुदाय के उम्मीदवार हैं। महिला प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया है, 2 महिलाओं को टिकट मिला है।
2: ये सिर्फ मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है, पूरे महिलाओं को, पूरी नारी शक्ति को एक जिम्मेदारी मिली है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना इस बात को सिद्ध करता है कि हमारी पार्टी, हमारे आदरणीय नेतागण, हमारे आदरणीय मोदी जी जो कहते हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात, महिला नेतृत्व की बात, आज उन्होंने इस लिस्ट में 2 महिलाओं के नाम से सिद्ध किया है कि महिलाएं देश की प्रगति में, राष्ट्र को आगे ले जाने में कितनी अहम भूमिका है।
3: मुझ जैसे एक सामान्य पृष्ठभूमि के कार्यकर्ता को जो अविचल 36 साल से अधिक समय से पार्टी का आहार निष्काम कर रहा था, उसको आज मौका दिया है और प्रदेश में संदेश देने का काम किया है कि कोई भी कार्यकर्ता अगर निष्ठापूर्वक लगे रहेगा तो पार्टी के नेतृत्व का ध्यान उस पर अवश्य है और ये आज मुझे उम्मीदवार बनाने से पार्टी में संदेश जाएगा।
1: मतलब बीजेपी ने अपना संदेश स्पष्ट कर दिया है, एक तो जातिगत समीकरण को साधा गया है, दूसरा महिलाओं को मौका मिला है, तीसरा सवर्ण मतदाताओं के लिए भी मैसेज है। 27 में यूपी में चुनाव है और राज्यसभा टिकट बांटने में इसका खासा ख्याल रखा गया है, तभी तो सभी 8 उम्मीदवार यूपी के हैं। इसके अलावा पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल बीएल वर्मा और हरदीप सिंह पुरी का टिकट काट दिया गया है। बता दें कि यूपी में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, इनमें 10 सीटों पर 16 अक्टूबर को चुनाव होना है, 6 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी की राजनीति में अगली खबर है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर। अब कांग्रेस की ओर से नई डिमांड कर दी गई है। कांग्रेस कह रही है कि यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस कम से कम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के लिए 50 सीट भी ज्यादा हैं।